0: राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
1: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
0: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
1: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
1: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
0: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
2: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
1: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40-60% संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
1: तारीख नोट करिए, 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा, तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
4: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में, कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
1: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के

0: जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: एक मोर्चा बंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
2: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
3: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
2: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
3: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
4: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
3: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
4: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
3: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
4: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
3: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है?
4: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं।

0: तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
0: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
1: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा?
0: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
1: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
0: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
1: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
0: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
2: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
3: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
4: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী।
1: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझकर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
5: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
1: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से ऑसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
6: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
1: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का यह अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
6: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है,
1: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
6: एक घरेलू कामगार
2: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही 2 विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
1: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
7: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
1: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
8: जो कम्प्लेन है, कम्प्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আর সন্দীপন সাহা, ইসমে কোই হামারি রোল নেই। উনোনে আপনি খুদ এমএলএ কা সিগনেচার ফলস করকে ভেজ রা হ্যায় অ্যাসেম্বলি কে অন্দর, জো হামারি মন্দির হ্যায়, গণতন্ত্র কা মন্দির হ্যায়, ওয়া ভেজ রা হ্যায়, ইয়ে বহুত বঙ্গাল কে লিয়ে।
2: আর আব আপকে হামারে ইয়ানি কি জনতা কে হিত কি খবর, গরীব মজদুর প্রবাসী মজদুর ছোটে রেহড়ি ঠেলে ওয়ালে দোকানদার ও বেরোজগার ইয়া সবসে অধিক খানা বানানে কে লিয়ে ছোটু সিলিন্ডার ইয়ানি কি 5 কিলো ওয়ালে সিলিন্ডার পর নির্ভর করতে হ্যায়, লেকিন আব ওহি ছোটু সিলিন্ডার 11 রুপে মহঙ্গা হো গয়া, দো মহিনে মে 323 রুপে ছোটু কে দাম বড় গয়ে।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हों, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपये इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपये की थी, महीने के हो गए 15 रुपये।
5: पहले 500 रुपये का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर।
5: भरा हुआ सिलेंडर 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का
3: खाली सिलेंडर।
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है वो।
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपये आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपये केजी हो गया।
6: 250 रुपये किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, हाँ। उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं, बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बंगाल में ममता के धरने को लेकर संग्राम, कोलकाता पुलिस ने नहीं दी इजाजत। ममता ने कहा सड़क पर बैठने का हक, चुनाव के बाद हमले और हिंसा को लेकर टीएमसी बीजेपी में तनातनी बढ़ी। बिहार में मदरसों को लेकर सख्त हुई सम्राट सरकार, शिक्षा विभाग ने दिए अनुदान की जांच के आदेश, शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखेगी 3 सदस्यीय कमेटी। सीबीएसई ऑनलाइन मार्किंग विवाद में एक्शन में शिक्षा मंत्रालय, कोएम्ट एजुकेटर कंपनी को ठेका दिए जाने पर रिपोर्ट तलब, दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। और चुनावी तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का सख्त बयान, गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी, कहा सुधर जाओ नहीं तो पीढ़ियां याद रखेंगी अंजाम।

देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाश 24 घंटे में हत्या की दो वारदातें। उस्मानपुर में नाबालिग को बेरहमी से मारा। मॉडल टाउन में 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या।

0: सुबह सवेरे के सबसे पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिसने देश की राजधानी दिल्ली में तार तार हो रही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक 17 साल के नाबालिग युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हमलावरों की संख्या 15 से 16 के बीच थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि शरीर पर चाकू के एक दर्जन से ज्यादा वार हैं। मारे गए युवक का नाम अभिषेक है। अभी तक पुलिस को आरोपियों का सुराग नहीं लगा है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए दिल्ली पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी। अब सोचिए, उस्मानपुर का इलाका, 15 से 16 आरोपी आते हैं और उसके बाद एक 17 साल के नाबालिग युवक को चाकू से गोद कर हत्या कर देते हैं। शरीर पर जितने अंग नहीं उससे ज्यादा निशान हैं और ये सब बेखौफ अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति का जीता जागता सबूत हैं और ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। अब राजनीतिक खबरें। जून के महीने में बीजेपी का सियासी शेड्यूल का राजनीतिक पारा बहुत बढ़ने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद इस वक्त देश से लेकर कम से कम 5 ऐसे बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी है, क्योंकि इसी जून के महीने में कईयों को देश से लेकर राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, कईयों को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कई कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी तो विदाई भी होगी मंत्रिमंडल से और संगठन से भी। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो फिर से बहुतों को चौंकाने वाले हैं? देखिए दिलचस्प रिपोर्ट।
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
4: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40-60% संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है, लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
5: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
2: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा हैं। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: तो एक तरफ दिल्ली में सियासी घेरेबंदी है, तो दूसरी मोर्चाबंदी योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है, तो क्या वो लहर 2027 तक यूपी में भी चलेगी? इसलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावणकंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्य नाम के युवक को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। ये और बात है कि चुनाव के पहले कई बार मुद्दा वो होता है जो जनता से जुड़ा होता है।
6: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
2: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गयी। और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
6: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
2: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
7: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
7: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
7: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है?
7: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
7: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
2: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा?
7: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
2: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जात में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
7: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
2: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
7: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
0: और अब बात बंगाल की, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कलिता मांझी शामिल हैं। कलिता मांझी 12 साल पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दूसरों के घरों में काम करने वाली कलिता मांझी चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री बन गई।
8: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
9: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী।
2: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान हो, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के ओसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी, तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
10: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
2: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। 2 साल बाद ओसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से ओसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं, जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
11: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
2: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धवान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की माँ रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
11: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है।
2: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
11: एक घरेलू कामगार
0: कलिता मांझी को मंत्री की कुर्सी मिली। उधर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता चली गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद विधायक भी अब उनके हाथ से जाने लगे हैं? वजह यह है कि तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, लेकिन 60 गायब थे। इससे पहले ही दो विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत कर दी कि उनके फर्जी दस्तखत लगाकर टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया है।
2: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
12: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
2: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
13: जो कॉम्प्लेन है कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
15: देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का दुनिया पर कैसा है हाल, किस राशि की बढ़ेंगी मुश्किलें और कौन सी राशि होगी मालामाल, जानिए मेरे साथ बृहस्पति का क्या है महापरिवर्तन। सिर्फ
16: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म delicious breakfast right before it ends.
17: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलिशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
17: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

बंगाल में ममता के धरने को लेकर संग्राम, कोलकाता पुलिस ने नहीं दी इजाजत। ममता ने कहा सड़क पर बैठने का हक। चुनाव के बाद हमले और हिंसा को लेकर टीएमसी बीजेपी में तनातनी बढ़ी। बिहार में मदरसों को लेकर सख्त हुई सम्राट सरकार। शिक्षा विभाग ने दिए अनुदान की जांच के आदेश। शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखेगी 3 सदस्यीय कमेटी। सीबीएसई ऑनलाइन मार्किंग विवाद में एक्शन में शिक्षा मंत्रालय। कोएम्ट एजुकेटर कंपनी को ठेका दिए जाने पर रिपोर्ट तलब। दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। और चुनावी तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का सख्त बयान। गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी। कहा सुधर जाओ नहीं तो पीढ़ियां याद रखेंगी अंजाम।

0: देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाश, 24 घंटे में हत्या की दो वारदातें। उस्मानपुर में नाबालिग को बेरहमी से मारा, मॉडल टाउन में 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। खबर बंगाल से इसलिए जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी लंबे समय सत्ता में रहने के बाद चुनाव हार चुकी हैं और अब चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरना देने वाली हैं। लेकिन इसे लेकर के सियासी बवाल मच गया है। बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस पर धरने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया है। कलकत्ता पुलिस ने ममता बनर्जी को धरना देने की अनुमति नहीं दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अकेले सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगी। ममता ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस को धरने की इजाजत नहीं दी है।
1: टीएमसी नेताओं पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने को लेकर एक बार फिर तनाव पैदा हो गया है। टीएमसी ने दावा किया है कि पुलिस ने आज कोलकाता में होने वाले धरने की अनुमति नहीं दी है। आरोप है कि रानी रासमणि एवेन्यू पर मंच बनाने के लिए लाया गया सामान भी वहां से हटवा दिया गया।
2: इधर का आदमी आया था, देखा गया आदमी भी खड़ा हुआ है बात लेके, इधर बोल रहा है पुलिस इधर उधर नहीं देंगे, मंच बनने के लिए नहीं देंगे, स्टेज बनाने के लिए रुकावट कर रहा है, रुकावट कर रहा है कि हम लोग को इधर कोई स्टेज बनाने नहीं देंगे।
1: चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला एक सुनियोजित साजिश थी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान खतरे में।
3: एक अभिषेक को जैसा आप पिटाया, जैसा मरा, पुलिस का पास पूरा इंफॉर्मेशन था और लोकल कोई नहीं था, बाहर से आप लेके आया। एक दिन पहले वो लोगों को खाना का पैकेट भेज रहा था, वो वीडियो हमारे पास है। आपने पूरा तैयार किया है बीजेपी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और अरेस्ट किया किसको? जो तृणमूल कांग्रेस का वर्कर अभिषेक को बचाने गया।
4: उनका दल के कितने लोगों का गुस्सा है ये देखना चाहिए, इसको इंक्वायरी होना चाहिए, उनको इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए बताइए ना।
1: वहीं जिस हिंसा को लेकर ममता बीजेपी को निशाना बना रही है, उसे बीजेपी टीएमसी की अंदरूनी कलह का नतीजा बता रही है। कुल मिलाकर आज कोलकाता में भारी हंगामे के आसार हैं। ममता ने कहा है कि अगर धरने के लिए जगह नहीं मिली तो वह सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: दरअसल बंगाल चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी चौतरफा मुसीबत में घिरी हैं। जंग बीजेपी से नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर भी चल रही वो बगावत से भी है, क्योंकि फर्जी दस्तखत मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सीआईडी जांच टीएमसी के ही दो नेताओं की शिकायत पर शुरू हुई है।
1: विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। संदीपन साह का कहना है कि टीएमसी में नैतिकता की कोई जगह नहीं है और उन्हें सच बोलने की वजह से निशाना बनाया गया है। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि वे पार्टी के फैसले को चुनौती नहीं देंगे बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि सच्चाई अंततः सामने आएगी। इस बीच सीआईडी ने फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। उनसे 8 जून को पूछताछ की जाएगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी की ओर से विधानसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा गया था जिसमें वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की सिफारिश की गई थी। इस प्रस्ताव पर पार्टी के करीब 70 नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षर थे। हालांकि पत्र की जांच में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए।
5: टीएमसी बंगाल के जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को यह मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है।
1: इस मामले में शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच दो टीएमसी विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह की शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं बंगाल में अब नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कलिता मांझी भी शामिल हैं। कलिता मांझी 12 साल पहले बीजेपी से जुड़ी थी और आज पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री बन गई। लेकिन सबसे अहम बात है कि दूसरों के घरों में काम करने वाली कलिता मांझी चुनाव लड़ने तक भी काम करती रही, आज कैबिनेट मंत्री बन गई है।
6: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान हो, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी, तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझकर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
7: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
6: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें वर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
8: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
6: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्दवान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती है बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
8: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है,
6: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
0: एक घरेलू मई के महीने में मौसम का पारा ऊपर गया तो जून के महीने में बीजेपी का सियासी शेड्यूल और उसका राजनीतिक पारा बहुत बढ़ने वाला है। अब पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जीतने के बाद इस वक्त देश से लेकर कम से कम 5 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कईयों को देश से लेकर राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, किसी को संगठन में कुर्सी मिलनी है, कुछ चेहरे तो ऐसे भी होंगे जिनकी विदाई हो जाएगी, विदाई मंत्रिमंडल से होगी, विदाई संगठन से हो सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं? देखिए दिलचस्प रिपोर्ट।

0: अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
1: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
0: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
1: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
1: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
0: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है।
2: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
1: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40-60% संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
1: तारीख नोट करिए, 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा, जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
4: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार

0: जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
1: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
2: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: और अब खबर जनता के हितों से जुड़ी हुई खबर, वो जिसका सीधा सरोकार आपसे है, हमसे है। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा, सबसे ज्यादा खाना बनाने के लिए वो छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर होते हैं। लेकिन अब वही सिलेंडर 11 रुपए और महंगा हो चुका है। 2 महीने में 323 रुपए उस छोटू से सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं 850 रुपए इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपए की थी, महीने के हो गए 15 रुपए।
5: पहले 500 रुपए का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर
5: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर था?
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है बोझ।
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850-850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपए आसपास था, लेकिन कुछ दिन से 250 रुपए केजी हो गया।
6: 250 रुपए किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया। लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
3: अगली खबर गुजरात से। सूरत के जहांगीराबाद इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। संस्कृति चूड़ा आवास के गेट के बाहर एक गलत तरीके से आ रही बाइक सवार की लापरवाही से जोरदार टक्कर हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अब फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ये तस्वीर आती है अचानक से बेहद तेज रफ्तार में, और उसके बाद ये हादसा होता है। और बाइक सवार एक तो गलत तरीके से, ये देखिए, गलत तरीके से रॉन्ग साइड से आ रहा है, और वो भी आवास के गेट के ठीक बाहर, अब गेट के बाहर आदमी लेफ्ट राइट देखेगा और फिर अपने गंतव्य की ओर निकलता है रवाना। लेकिन वो इतनी रफ्तार, देखिए भाई, इतनी रफ्तार से आता है कि सामने वाले को बेहद बुरी तरीके से कुचल देता है। अब सीसीटीवी, हालांकि मुझे लग रहा है कि रात की तस्वीरें हैं और इसीलिए ऐसे में पहचान करना आरोपी की मुश्किल होगी, लेकिन इस सीसीटीवी के जरिए आसपास देखा जाएगा, उसके नंबर प्लेट मिल जाए। लेकिन ये लापरवाही देखिए, और इन तस्वीरों से हमें ये सबक लेना चाहिए कि सड़कों पर अगर आप यातायात करते हैं तो पूरी सड़क आपकी अकेले की नहीं है, वो एक सार्वजनिक संपत्ति है, तो इसलिए नियम कानून से चलें, रफ्तार पर नियंत्रण रखें, वरना यह हादसा, चोट सामने वाले को भी लगी, जो बाइक चला रहा उसको भी लगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से। खरगोन में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा बवाल हो गया। दामखेड़ा गांव था जहां गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, थाना इंचार्ज को बंधक बनाने और चक्का जाम की भी जानकारी सामने आई। लगभग 4 घंटे हंगामा चला और इस हंगामे के बाद हालात पर काबू पाया गया। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गुस्साए लोग थे तो पुलिस पर ही देखे, पुलिस को ही दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं। एक युवक था, उसकी मौत हुई और उसके बाद गुस्सा किस पर फूटा? पुलिस वालों पर, क्योंकि उन्हीं के नाकामी के चलते ये घटना हुई और इसीलिए लोगों की नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने पुलिस वालों को भी दौड़ा लिया था। वो कहते हैं कि कई बार वर्दी वालों की जिम्मेदारी होती है कि हर घटना की जांच पड़ताल अच्छे से करें, लोगों को संतुष्ट करना ये पुलिस की प्राथमिक ड्यूटी है, ये उनका दायित्व है, वरना नाराजगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने लेकर के आती हैं। बहरहाल पुलिस ने मामले में उसके बाद कानूनी व्यवस्था पर काबू पाने की कोशिश की, हालात में काबू पाने की कोशिश की, अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। उधर रेवाड़ी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अनाज मंडी के पीछे एक 4 लेन की सड़क थी, वहां एक अचानक थार गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी चलते चलते आग का गोला बन गई। गाड़ी का धुआं उठते देख जो गाड़ी का चालक था उसने सूझबूझ दिखाई, गाड़ी रोक दी और तुरंत गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी, उसकी जान बाल बाल बच गई। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो ये वो थार गाड़ी जो आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, हालांकि उसके कारण अलग है, लेकिन यहां पर इस चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अचानक गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद लपटें उठी और जो ड्राइवर था उसने सूझबूझ दिखाई और तुरंत गाड़ी से छलांग लगा दी।
8: डीजल में भाई, डीजल में।
3: इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बंगाल में ममता के धरने को लेकर संग्राम, कोलकाता पुलिस ने नहीं दी इजाजत। ममता ने कहा सड़क पर बैठने का हक। चुनाव के बाद हमले और हिंसा को लेकर टीएमसी बीजेपी में तनातनी बढ़ी। बिहार में मदरसों को लेकर सख्त हुई सम्राट सरकार। शिक्षा विभाग ने दिए अनुदान की जांच के आदेश। शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखेगी 3 सदस्यीय कमेटी। सीबीएसई ऑनलाइन मार्किंग विवाद में एक्शन में शिक्षा मंत्रालय। कोएम्प्ट एजुकेटर कंपनी को ठेका दिए जाने पर रिपोर्ट तलब। दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। और चुनावी तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का सख्त बयान। गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी। कहा सुधर जाओ नहीं तो पीढ़ियां याद रखेंगी अंजाम।

देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाश 24 घंटे में हत्या की दो वारदातें। उस्मानपुर में नाबालिग को बेरहमी से मारा। मॉडल टाउन में 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या।

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र की विशेष प्रस्तुति बृहस्पति का महापरिवर्तन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देव गुरु बृहस्पति आज से अपनी राशि बदल रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर और हम सबके जीवन पर बड़ा असर डालेगा। देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, ज्योतिष में दो ही ग्रहों के परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एक बृहस्पति देव और एक शनि देव। अब 12 साल में एक बार बृहस्पति उच्च राशि में जाते हैं, तो अब बृहस्पति आज अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। तो बृहस्पति के परिवर्तन की स्थिति क्या है? बृहस्पति देव अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, अब बृहस्पति 2 जून को अर्ली मॉर्निंग कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है और बृहस्पति यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। तो बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के हिसाब से ये बृहस्पति की सबसे मजबूत स्थिति है। बृहस्पति देव कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे। इस परिवर्तन का प्रभाव प्राकृतिक स्थिति पर, क्लाइमेट पर, मौसम पर, प्राकृतिक आपदाओं पर और बाजार पर, फाइनेंशियल मार्केट पर, वैल्यूएबल धातुओं पर इस परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक के समय में प्रकृति में बड़े सारे जबरदस्त परिवर्तन होंगे और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें भी बड़े सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। तो अगले 5 महीने तक बृहस्पति कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे। तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा? देखिए, बृहस्पति देव की चाल 2 जून से बदल गई है और बृहस्पति अभी भी अतिचारी स्थिति में हैं, यानी उनकी गति सामान्य से ज्यादा है। दुनिया भर में अशांति की और उपद्रव की स्थिति बनेगी, पैसों रुपयों को लेकर, बिजनेस को लेकर के दुनिया के देशों में अशांति फैलेगी। बृहस्पति के परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव जलवायु पर पड़ेगा और मौसम पर पड़ेगा। जलवायु और मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे और बृहस्पति वित्त के कोष के स्वामी हैं, इसीलिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भी
बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं। इस समय जो फाइनेंशियल मार्केट है या कीमती धातुओं का जो बाजार है, उस बाजार में बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। महंगाई इस समय काफी ज्यादा बढ़ सकती है और महंगाई से लोगों को मुश्किलें भी हो सकती हैं। देखिए, बृहस्पति धर्म के भी स्वामी हैं, इसीलिए केवल भारत देश में ही नहीं, दुनिया भर में धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे और धार्मिक मामलों को लेकर के दुनिया भर में विवाद भी होगा। धर्म के नाम पर झगड़े, लड़ाइयां बढ़ेंगी, विवाद बढ़ेंगे। तो बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, ये अगले 5 महीने में दुनिया भर में बड़े परिवर्तन करवाएगा और इस परिवर्तन से हर व्यक्ति, हर आदमी प्रभावित होगा।

राशियों पर कैसा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। बेवजह के बदनामी की, बेवजह के अपयश की संभावना बन सकती है। हालांकि इस बृहस्पति की वजह से संपत्ति लाभ के योग और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। अगर आपकी राशि मेष है तो इस समय महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस समय छोटा सा गलत निर्णय भी आपको मुश्किलों में डाल सकता है। सोच समझकर निर्णय लीजिएगा और कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको अपयश मिले, जिससे आपके जीवन में बदनामी हो। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों की अगर बात करें तो बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन से इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, खास तौर से इनके स्वास्थ्य के मामले में और इनके करियर के मामले में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य और करियर के मामलों में सतर्क रहना होगा। अगर आप कहीं पर पैसा लगाने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, संपत्ति में, मार्केट में, सोने चांदी में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी के निर्णयों से बचना होगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं किए जाएंगे, वरना आपका पैसा डूब सकता है।

अगले 5 महीने में जो परिवर्तन होते हैं उन पर नजर बनाए रखिएगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यंत फायदेमंद दिख रहा है। इस समय मिथुन वालों को धन का लाभ हो सकता है, पारिवारिक मुश्किलें समाप्त होंगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और जीवन में ख्याति की प्राप्ति होगी। धन लाभ, पारिवारिक सुख, नाम यश और ख्याति की प्राप्ति होती दिख रही है। आपके वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आपकी कही हुई बात काम करेगी, सत्य होगी और आपके करियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा। करियर में आप ताकतवर हो जाएंगे, आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। लेकिन मिथुन वालों को सावधान रहना होगा, इस समय कोई बड़ी बीमारी हो सकती है जिसको लेकर मिथुन वालों को सतर्क रहना होगा। कोई बड़ी बीमारी परेशान कर सकती है, लेकिन करियर के मामले में, धन के मामले में, परिवार के मामले में आपका आने वाला समय आपके लिए सफलता दिखा रहा है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा। आर्थिक रूप से चीजें बेहतर रहेंगी, आर्थिक स्थिरता आपकी बनी रहेगी और आपके करियर में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। करियर के मामले पहले की तुलना में थोड़े बेहतर होंगे। विवाह के मामले में और संतान प्राप्ति के मामले में आपको लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है और संतान प्राप्ति के योग भी इस समय आपके बनेंगे, ये संभावना दिख रही है। कर्क वालों को ध्यान देना है कि इस समय इनकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बेवजह के विवादों से बचें, क्योंकि पारिवारिक जीवन में विवाद हो सकते हैं और स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि। बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन से आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक मामले और वैवाहिक मामलों में समस्या आ सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद और वैवाहिक मामलों में बेवजह की दिक्कतें हो सकती हैं। सिंह वाले सतर्क रहें, महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं और अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो एकदम से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपको सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर नौकरी में या करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय आपका बदलाव हो सकता है।
सिंह वाले मुख्यतः अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता बनाए रखें तो इनके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है। इस समय इस साल में जब तक बृहस्पति कर्क में हैं, संतान की उन्नति होगी और आर्थिक रूप से जीवन में सुधार होगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, संपत्ति का लाभ हो सकता है और करियर में आपके बड़े बदलाव हो सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बनेगी। लेकिन जो भी परिवर्तन आप करेंगे, परिवर्तन अनुकूल रहेगा। पैसे रुपए का आपको फायदा होगा, आर्थिक लाभ होगा, नए काम का आरंभ हो सकता है। नए काम के आरंभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कन्या वाले

हो सकता है और आर्थिक रूप से फायदा भी हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन अनुकूल दिख रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। धन का लाभ होने की संभावना बन रही है, पैसे रुपए का फायदा आपको हो सकता है। करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी और विशेष रूप से जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव कर पाएंगे, जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे और अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी हो सकता है। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और जो आपका स्थान परिवर्तन होगा वो कुल मिला जुलाकर अनुकूल रहेगा, कुल मिला जुलाकर फायदेमंद बना रहेगा। तुला वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन जीवन की तमाम रुकावटों को दूर कर देगा। तुला वाले इस समय कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, इस समय कोई बड़ा रोग ना हो जाए, उसको लेकर के सतर्क रहें। शरीर में गांठें या पेट की बड़ी समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि, पहले जो परेशानियां चली आ रही थी वो परेशानियां अब आपकी कम हो जाएंगी। स्वास्थ्य के और पारिवारिक मामले आपके बेहतर होंगे, सेहत में मन के हालात में सुधार होगा, पारिवारिक मामले और स्वास्थ्य बेहतर होगा। करियर और धन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी, करियर और धन के मामले में आपको लाभ होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय मनचाही शादी हो सकती है, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है और अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग आपके बन सकते हैं। जीवन के तनाव, मुश्किलें और रुकावटें दूर होंगी, जीवन में आगे बढ़ने का बेहतर मौका वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होगा। धनु राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, इसीलिए आपके करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है। निगेटिव तरीके से आपके करियर में बदलाव होगा और इस परिवर्तन में, इस बदलाव में परिवार से दूर आपको जाना पड़ेगा। हालांकि कोई पद मिल सकता है, कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है, करियर में बदलाव के कुछ दिनों बाद जब प्रेशर कम होगा तब आपको सफलता मिल सकती है। धनु राशि के जो लोग हैं स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखेंगे, अपने पेट, लिवर और डायबिटीज के मामले में धनु वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। और करियर में जो परिवर्तन होगा, बुद्धिमानी ये कहती है कि उस परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिएगा। मकर राशि,
मकर राशि वालों की जो स्वास्थ्य की समस्याएं, मानसिक चिंताएं चली आ रही थी, वो स्वास्थ्य की समस्याएं हल होती जाएंगी। स्वास्थ्य और मन दोनों आपका बेहतर होगा। करियर में आपका प्रमोशन हो सकता है, करियर में आपका डेवलपमेंट हो सकता है, करियर में सफलता मिल सकती है। जो काम और जो चीजें बीच में रुकी हुई थी वो रास्ते पे आनी शुरू होंगी। ऑफिस का प्रेशर, तनाव और दबाव कम होगा। स्वास्थ्य का मामला, ऑफिस का मामला दोनों बेहतर होगा। धन का लाभ होगा आपको। अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है और संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकते हैं। धन का लाभ होना, प्रेशर कम होना, स्वास्थ्य बेहतर होना, ये सब मकर वालों के लिए दिख रहा है बृहस्पति के राशि परिवर्तन की वजह से। कुंभ राशि, सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा।

लेकर सावधान रहें। करियर की स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है, करियर में कोई रिस्क मत लें। जैसी स्थिति चल रही है वैसी चलने दें, वरना करियर में बड़ी मुश्किल पैदा होगी। आध्यात्मिक मामले में, स्पिरिचुअल मामले में आपको फायदा होगा, लेकिन गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इस समय जोश में आकर के कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। मीन राशि, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन आपको मुश्किलों से निकालने आया है। करियर में बड़ा परिवर्तन आपके हो सकता है, करियर की मुश्किलें आपकी कम होंगी, धार्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। पूजा पाठ, पूजा उपासना, मंदिरों में जाना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब इस समय बढ़ेगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और आपके जीवन में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक मामले आपके बेहतर होंगे, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। जो रिश्तों में दिक्कतें आ गई थीं, जो नजदीकी रिश्ते टूट रहे थे, उनके बेहतर होने की स्थिति बन जाएगी। तो बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए अच्छा है, मिथुन के लिए अच्छा है, तुला के लिए अच्छा है, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, इनके लिए अच्छा है, लेकिन मुख्यतः मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? अब से लेकर 31 अक्टूबर तक रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। उगते हुए सूर्य को अर्पित करें तो अच्छा है। रोज सवेरे हल्दी मिला जल सूर्य देव को अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। नियमित रूप से किसी धर्म स्थान में जाएं, जो मंदिर हैं वहां जाएं, आश्रम जाएं, मंदिर में जाकर, धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें। सात्विकता और पवित्रता बनाए रखें। बृहस्पति देव उच्च राशि में जा रहे हैं, तो इस समय जितने पवित्र भाव से रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति देव का जो ये राशि परिवर्तन है, इसमें कुछ सावधानियों का, कुछ चीजों का हम सबको पालन करना चाहिए। पहली बात ये है कि चूंकि देव गुरु अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, इसीलिए भोजन को बिल्कुल सात्विक बनाइए। अपने आहार, विचार और व्यवहार को सात्विक रखिए। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल बंद रखिएगा 2 जून से 31 अक्टूबर तक। दूसरी बात यह है कि कहीं भी पैसा लगाना होगा या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा, सावधानी रखिएगा।
क्योंकि इस समय गलत इन्वेस्टमेंट से बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जमीन खरीदें, आप मार्केट में पैसा लगाएं, आप कीमती धातुएं खरीदें, जो भी खरीदना चाहें सोच समझकर सावधानी से पैसे का इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं तो इस समय आपका पैसा डूब सकता है। जिन लोगों की कुंडलियों के लिए बृहस्पति अनुकूल नहीं है, खराब ग्रह माना जाता है, ऐसे लोगों को 31 अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। खास तौर से पेट के मामले में, लीवर के मामले में, डाइजेशन और डायबिटीज के मामले में इनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। यानी जिनका बृहस्पति नकारात्मक प्लेनेट है, जैसे वृषभ लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए, कन्या लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए, मकर लग्न के लिए और कुंभ लग्न के लिए, लग्न के लिए बृहस्पति अनुकूल नहीं माने जाते, तो अगर इनके जीवन में कोई दिक्कत बृहस्पति की वजह से पहले ही है तो इस समय वो दिक्कत बढ़ सकती है, इस समय वो समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को पेट की या लीवर की दिक्कत है, जिन लोगों के खान पान में या पेट के मामले में कष्ट रहता है, ऐसे लोग इस समय विशेष सावधानी बनाए रखें और बृहस्पति के राशि परिवर्तन से अगर आपके स्वास्थ्य पर या आपके जीवन पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर जाके दर्शन और प्रार्थना करें और बृहस्पतिवार को मंदिर में केले का दान करें या बृहस्पतिवार को किसी गरीब आदमी को केला दें या गाय को केला खिलाएं, तो बृहस्पति की जो मैक्सिमम नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता बनर्जी का धरना, रानी रशमोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी को धरने की इजाजत नहीं मिली, मंच बनाने का सामान पुलिस ने हटा दिया। बंगाल में पोस्टपोल हिंसा पर सियासी संग्राम मचा, टीएमसी ने बीजेपी पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाया। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमलों को लेकर के टीएमसी का विरोध तेज हुआ है, राज्य भर में अब टीएमसी का प्रदर्शन होगा। सोनारपुर हमले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, टीएमसी ने कहा कि विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। हमले को लेकर के टीएमसी और बीजेपी भी आमने सामने है, ममता ने कल्याण बनर्जी से मुलाकात कर बीजेपी की नई सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गंभीर आरोप कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, धरने की अनुमति रोकने पर भी ममता ने सरकार को घेरा। विपक्ष के नेता के पद पर नामांकन पर भी घमासान मचा है, हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच में अभिषेक बनर्जी को फिर तलब किए गए। टीएमसी में सियासी विवाद बढ़ गया है, संदीपन साहा ने हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। नामांकन पत्र विवाद पर सीआईडी की जांच भी तेज हो गई है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 नेताओं को निष्कासित किया गया है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए हैं, कांग्रेस आलाकमान के साथ कैबिनेट पर अब उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर के भी मंथन तेज हो गया है, 3 जून को अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। कांग्रेस में पदों को लेकर के भी हलचल मची है, नए प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट में संतुलन बनाने पर भी अब पार्टी में चर्चा हो रही है। उधर दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन जैसी भी एक बैठक हो रही है, दावेदारों की सक्रियता बढ़ी है, कई मंत्रियों को बदले जाने की भी संभावना है। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर भी कांग्रेस में मंथन होगा, कांग्रेस को मजबूत नतीजों की उम्मीद है। आज नीट और सीबीएसई मुद्दों पर संसदीय समिति समीक्षा करेगी, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया गया है। इस बैठक में ओएसएम सिस्टम, 3 भाषा नीति, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर पूरी विस्तृत चर्चा होगी और उस पर जवाब तलब किए जाएंगे। साथ ही नीट और एनटीए परीक्षा प्रणाली पर भी बैठक में मंथन होने वाली है, सीबीटी और पेन पेपर मोड पर भी विचार किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक जांच की रिपोर्ट समिति के सामने, सीबीआई ने प्रगति की जानकारी भी दी। परीक्षा सुधारों पर भी जोर देने की बात हो रही है, संसदीय समिति ने पारदर्शिता और सिस्टम सुधार की बात कही। नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट यह है कि आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई रिमांड 5 दिन के लिए फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, सीबीआई ने दावा किया कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए जांच अभी भी जारी है। 10 लाख में गेस्ट पेपर खरीद और 15 लाख में बेचने का आरोप भी है, वित्तीय लेनदेन की जांच भी चल रही है, कई राज्यों तक इस नेटवर्क की पड़ताल फैली है। संसदीय समिति में नीट यूजी और सीबीएसई मुद्दों पर सर्वसम्मति, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार पर जोर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की मांग भी उन्होंने की है और प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, संगठन विस्तार और 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन। बूथ स्तर को मजबूत करने की रणनीति पर जोर, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पर भी चर्चा। युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर भी पार्टी का फोकस। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और आउटरीच रणनीति पर भी विचार। बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर। दिल्ली में 11 से 12 जून को ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक होगी, यह फोरम सिटीज फॉर पीपल थीम पर केंद्रित होगा। राजस्थान के सांची और गुजरात के भुज सीमा चौकियों के बाद अब अमित शाह त्रिपुरा जाएंगे, त्रिपुरा के लंकामूरा सीमा चौकी को 5 जून को जवानों के साथ संवाद करेंगे। भारत ने फ्रांस को 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है, कहा मेक इन इंडिया के तहत करीब 90 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल किया गया, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता होगी इन ड्रोन से। भारतीय सेना को ऐसे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले मिलेंगे, बालू फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।
दिल्ली के मेहरौली में बिल्डिंग गिरने के मामले में मालिक करमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 घरों को जमींदोज कर दिया गया। यूपीएटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने वाले एक और युवक को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला मोहम्मद शेख पुलिस के हत्थे चढ़ा। भोपाल में ट्विशा की मौत का सीन सीबीआई ने रिक्रिएट किया। पुतले की मां गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली। ट्विशा शर्मा मौत मामले में गवाह नीरज दुबे का आरोप यह है कि समर्थ सिंह के दोस्तों ने मारपीट भी की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज हवा के साथ बारिश से तापमान गिरा। लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के नागौर में भी मौसम ने मिजाज बदला। बारिश के साथ ओले पड़े। लोगों को गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के अमरावती में झमाझम बारिश हुई। लोगों को 45 डिग्री की तपिश से राहत मिली। तेज हवा और गरज के साथ एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के जालना में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान जताया। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक मौसम ने करवट बदली। आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। पर्यटकों को जम्मू कश्मीर अब का मौसम सुहाना लग रहा है। अनंतनाग जिले के डेडबल इलाके कापरान में पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। दरअसल ये इलाका बेरीनाग से 20 किलोमीटर दूर छुपा है। शांत हिल डेस्टिनेशन है और मनमोहक नजारे अब सैलानियों को यहां अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तेलंगाना में गरीब और बेघर परिवारों के लिए बड़ी सौगात। 17 सितंबर को 1,00,000 घर देने का ऐलान किया सरकार ने। मेरठ में पैसों के विवाद में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर नाले में फेंका गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हैरत में डाल देने वाली तस्वीर सामने आई। पूरा परिवार बाल बाल बचा। मध्य प्रदेश के शहडोल में डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कंप्यूटर शिक्षिका की हत्या करने वाले सिरफिरे छात्र को उम्र कैद हुई। एक तरफा प्यार में उसने वारदात को अंजाम दिया था। अमरावती से कार जलाने एक महिला नागपुर पहुंची। सीसीटीवी से राज खोला। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अवैध संबंध में एक हत्या का मामला सामने आया है। बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। खरगोन में एक युवक की संदिग्ध मौत पर लोग भड़के। उन्होंने पुलिस के जवानों को पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोगों ने थाने

में पुलिस कस्टडी में एक मजदूर की मौत हो गई। पत्नी ने आरोप लगाया कि शरीर पर गर्म पानी डाला गया। इस मामले की जांच के लिए दबाव बढ़ रहा है। उज्जैन के 16 साल के रिश्ते पर 5 साल का प्यार इस कदर भारी पड़ा कि पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। 24 घंटे में ही लेकिन कत्ल का खुलासा हो गया। हाजीपुर के राघोपुर क्षेत्र में 34 साल पुराने जानलेवा मामले में 85 साल के बुजुर्ग को दोषी पाया गया। 2 जून को अब इस मामले में अदालत सजा का ऐलान करेगी। ग्वालियर से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस में पनिहार के पास एक भीषण आग लग गई अचानक, जिसके चलते बस में अफरा तफरी मची। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भी भीषण आग लग गई। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की पहली मंजिल में यह आग लगी, जिसके चलते नुकसान का अब पता लगाया जा रहा है। कारणों की जांच जारी है। हमीरपुर जिला के जलाड़ी के पास नेशनल हाईवे धस गया और 6 फुट गहरे गड्ढे में एक महिला गिर गई। बैतूल में ट्रेन में सीट विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। प्लेटफॉर्म पर उतार कर उसे पीटा गया और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक नाबालिग चेन स्नेचर्स गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 6 नाबालिग समेत 9 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के अररिया में पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने अपने पिता के पत्थर से मार मार कर हमला कर दिया, हत्या कर दी और अब एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित करके मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में 2,37,00,000 की 7 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो एक महिला की मदद से नशे का पूरा साम्राज्य चलाता था। गुजरात के सूरत के जहांगीराबाद इलाके में 2 बाइकों के बीच टक्कर हुई। ये टक्कर आसपास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। गलत तरीके से आ रहे बाइक ने टक्कर मारी। आर्थिक मोर्चे पर भारत मजबूत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का घाटा तय सीमा के भीतर ही रहा है। राजकोषीय घाटा 4.4% पर ही रहा। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री आज भारत आने वाले हैं। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। हमारी आपकी ईएमआई और लोन की ब्याज दर पर असर डालने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक 3 से 5 जून के बीच होने वाली है। कमजोर रुपए, महंगे क्रूड ऑयल, मॉनसून की चिंता के बीच ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रहने की उम्मीद है। उधर विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजार से करीब 33,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। अब कमजोर रुपए, कंपनियों की सुस्त कमाई, दूसरे बाजारों में बेहतर मौके मिलने से अब देश में बिकवाली बढ़ी है। यूपीआई से पैसे भेजते समय रिसीवर का बैंक में दर्ज असली नाम अब स्क्रीन पर दिखने वाला नियम लागू हो चुका है। एनपीसीएल ने फर्जी भुगतान और गलत अकाउंट्स में पैसे जाने की घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाया है। खबरें पश्चिम एशिया से। अमेरिका ने ईरान की रेडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया है। जवाबी हमले में ईरानी एयरबेस को अमेरिका ने निशाना बनाया है। अमेरिका के इन हमलों पर ईरान भड़क चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध विराम के बीच ईरानी ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने धोखा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अपने इस्तीफे से जुड़ी अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस है मैं लोगों के लिए काम करता रहूंगा। ईरानी न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है। जब तक लेबनन और गाजा में इजरायली हमले नहीं रुकते, तब तक ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को बेरूत में हमले तेज करने के आदेश दिए हैं। नेतन्याहू के आदेश के बाद बेरूत समेत दाहिया तमाम इलाकों में अब हड़कंप मच गया है। उधर रूस युद्ध के बीच यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। अटलांटिक महासागर में फ्रांस की सेना ने रूस से आ रहे तेल टैंकर को रोक दिया है। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ है। रिहायशी इमारतों, अनाज के गोदामों को निशाना बनाया, 6 लोग घायल हुए हैं। म्यांमार के नामखाम टाउन में भीषण विस्फोट हुआ है। हादसे में 55 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 25 महिलाएं शामिल हैं। दक्षिण कोरिया के डिजोन शहर में हनवा एयरोस्पेस प्लांट में ब्लास्ट हो गया। आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। केन्या में अमेरिकी नागरिकों के लिए इबोला क्वारंटीन सेंटर बनाने पर बवाल मच गया है। न्यूनकी शहर में सड़कों पर लोग सैकड़ों प्रदर्शनकारी उतरे हैं।
फिल्म वेलकम टू जंगल का नया

गाना ऊंचा लंबा कद रिलीज हो गया। गाने में डांस करते दिखे अक्षय कुमार और दिशा पाटनी। देओल परिवार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं दो नए स्टार। बॉबी देओल ने किया खुलासा। बॉबी देओल ने बताया कि एक्टर बनना चाहते हैं बेटे आर्यमन और धर्म। फिर बदली आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा की रिलीज डेट। अब 10 जुलाई की जगह 3 जुलाई को सिनेमाघरों में फिल्म लगेगी। फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट की बहस की खबर पर बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ी। कहा कि खबर देखकर मैं भी हैरान था। बॉबी ने आलिया के काम की तारीफ की। तो इस हफ्ते रिलीज होने वाली कुल 5 फिल्में साउथ सुपरस्टार चरण की, बेदी, वरुण धवन की, मृणाल ठाकुर की जवानी, इश्क होना है रिलीज होगी।

0: तो अब खबर विस्तार से। सूरत के जहांगीराबाद इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। संस्कृति सूडा आवास गेट के पास एक गलत तरीके से गलत दिशा से आ रही बाइक सवार की ऐसी लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद वहां जोरदार टक्कर हो गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। अब फुटेज के आधार पर पुलिस जांच शुरू कर रही है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें विचलित करती हैं और देखिए कैसे सवाल खड़े करती हैं कि गलत दिशा में आते हुए तेज रफ्तार बाइक की वजह से यह हादसा हुआ। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा बवाल हो गया। दामखेड़ा गांव में लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। थाना इंचार्ज को बंधक बनाने और चक्का जाम की जानकारी भी सामने आई। चार घंटे तक बवाल चला, हंगामा मचा, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने अब मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उधर मुजफ्फरनगर में माता अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा के दौरान हुड़दंग का मामला सामने आया है। बाइक पर स्टंट और तलवार फरसा लहराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया, हथियार बरामद किए। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। गुजरात के सूरत में एक 60 साल के बुजुर्ग पर फिल्मी अंदाज में हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय 3 बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग का पीछा किया, उन पर लाठी से हमला किया। हालांकि बुजुर्ग बाल बाल बच गए, लेकिन पूरी वारदात वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने तस्वीरों से आरोपियों की पहचान शुरू की है, जांच शुरू की है और उनकी तलाश जारी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम। एंड विद देयर मोबाइल ऐप ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज इजी। However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA member FDIC.
5: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
16: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले है वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
17: आप देखे हैं उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के उसका दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे बंगला में एक तो बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: আনুগত্য ঘোষণ করি
7: দাঁড়ায়
6: ভয় বা
7: আর
6: পক্ষপাত
7: বিবেচনার নগরী
8: হালে বঙ্গাল বস ইতনা হ্যাঁ কি কহীন সত্তা কা জশ্ন হ্যাঁ কহীন সিয়াসত বেহাল কহীন শুভেন্দু কে 35 মন্ত্রীয় ওয়ালি ক্যাবিনেট কে সামনে সত্তা কা কালীন বিছা হ্যাঁ তো কহীন সড়ক কে সংগ্রাম সে নিকলি সিয়াসত কে ওজুদ পর সওয়াল মন্ডরা রহা হ্যাঁ 4 মই তক বঙ্গাল কি সত্তা কি কমান সম্ভালনে ওয়ালি মমতা বন্দরজী বড়ি পরেশানি মে ঘিরতি দিখ রহি হ্যাঁ एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन हो रहा है ऊपर से टीएमसी के नेताओं पर जनता का हिंसक रिएक्शन दिख रहा है इधर टीएमसी के सांसद आपस में भी संग्राम करे बैठे हैं और अब टीएमसी के नेताओं ने खुलेआम पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया पहले तो टीएमसी के पंचायत से पार्लियामेंट तक स्तर के नेता इस्तीफे पर इस्तीफा देते रहे अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी और ये पहली बार नहीं हुआ 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी 6 मई को बैठक बुलाई गई विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे 19 मई को बैठक बुलाई गई फिर 35 विधायक गायब मिले 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे टीएमसी की झोली में कुल है 80 इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे फिर मामला संज्ञान में आया तो बंगाल पुलिस की सीआईडी ने फर्जी दस्तखत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया 4 सदस्यों की जांच टीम की निगरानी डीआईजी रैंक के अफसर को मिली पूछताछ का समय अभिषेक बनर्जी को दिया गया लेकिन अभिषेक ने खराब सेहत का हवाला दिया पेश नहीं हुए अब टीएमसी कहती है अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से लेकर अदालत तक की जाएगी लेकिन टीएमसी ये नहीं बता रही कि कार्यकर्ताओं नेताओं के उठते भरोसे और पार्टी की एकता के बिखरते तिनके को कैसे संभाला जाए दरअसल नई सरकार टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है टीएमसी के पंचायत और वार्ड स्तर के नेताओं से लेकर सांसदों तक के दफ्तरों में सरकारी सामान मिल रहा है इसे लेकर बीजेपी का कैडर आक्रामक है विरोध प्रदर्शनों की आज टीएमसी के नेताओं तक पहुंच रही है लेकिन उन्हें नेतृत्व की मदद नहीं मिल रही कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

मंच का सामान, दीदी बोली सड़क पर बैठने का हक, भतीजे अभिषेक को सीआईडी ने भेजा दूसरा समन। कई घंटे मेंटेनेंस बोर्ड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई रीवैल्यूएशन पोर्टल। ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच, अफसरों पर गिर सकती है गाज, आज संसदीय समिति की बैठक।

सुधर जाओ वरना पीढ़ियां याद रखेंगी अंजाम। दिल्ली में बेखौफ बदमाश, 24 घंटे में हत्या की दो वारदात। उस्मानपुर में नाबालिग को बेरहमी से गोदा, मॉडल टाउन में 25 साल

0: से फिर हटा ईरान, होर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान ट्रंप ने हिजबुल्ला से की बात, नेतन्याहू को फटकारा, कहा क्या तुम पागल हो गए हो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरों का जिक्र होगा, आपको बताएंगे कि बंगाल में ममता की धरने वाली जिद आखिर क्यों है, साथ ही खबर टीएमसी नेता के घर पर हमले की भी होगी, खबर दिल्ली की भी जहां एक युवक को बेरहमी से मार दिया गया, साथ ही आपको दिखाएंगे गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, और वही खबर टिशा केस की भी आपको बताएंगे कि कैसे गिरिबाला असमर्थ की मुश्किल अब बढ़ चुकी है, एक खबर सीबीएसई से जुड़ी भी जिसको लेकर विवाद भी आपको दिखाएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि ट्रंप क्यों बोले डील की परवाह नहीं है, और खबर मौसम की भी दिखाएंगे कि क्या हुआ बीते 24 घंटे में और क्या है पूर्वानुमान। तो सबसे पहले खबर होगी पश्चिम बंगाल में सियासी टकराव की। दरअसल चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरना देने की तैयारी में है, लेकिन इसे लेकर सियासी बवाल बच गया है। दरअसल टीएमसी ने पुलिस पर धरने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अकेले सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगी। ममता ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलकाता में पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी है, ये टीएमसी आरोप लगा रही है, और उन्होंने कहा है कि उसके बाद भी वो धरने पर बैठेंगी। सड़क पर धरना देने वाली है आज ममता बनर्जी। अभिषेक को लेकर सीबीआई का नोटिस भी है, और वही विधायक सहित 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगा रही है। तो अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने इसे सुनियोजित हमला करार दिया है। तो बीजेपी कह रही है कि ये पार्टी में नाराजगी का नतीजा है।
2: टीएमसी नेताओं पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने को लेकर एक बार फिर तनाव पैदा हो गया है। टीएमसी ने दावा किया है कि पुलिस ने आज कोलकाता में होने वाले धरने की अनुमति नहीं दी है। आरोप है कि रानी रासमणी एवेन्यू पर मंच बनाने के लिए लाया गया सामान भी वहां से हटवा दिया गया।
3: इधर का आदमी आया था, देखो आदमी भी खड़ा हुआ है पास लेके, इधर बोल रहा है पुलिस इधर उधर नहीं देंगे, मंच बनने के लिए दे देंगे, स्टेज बनाने के लिए रुकावट कर रहा है, कि हम लोग को इधर कोई स्टेज बनाने नहीं देंगे।
2: चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला एक सुनियोजित साजिश थी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान खतरे में है।
4: एक अभिषेक को जैसा आप पिटाया, जैसा मरा, पुलिस का पास पूरा इंफॉर्मेशन था और लोकल कोई नहीं था, बाहर से आप लेके आया। एक दिन पहले वो लोगों को खाना का पैकेट भेज रहा था, वो वीडियो हमारे पास है। आपने पूरा तैयार किया है बीजेपी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और अरेस्ट किया किसको, जो तृणमूल कांग्रेस का वर्कर अभिषेक को बचाने गया।
5: उनका दल के कितने लोगों का गुस्सा है ये देखना चाहिए, इसको इंक्वायरी होना चाहिए, उनको इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए बताइए ना।
2: वहीं जिस हिंसा को लेकर ममता बीजेपी को निशाना बना रही है, उसे बीजेपी टीएमसी की अंदरूनी कलह का नतीजा बता रही है। कुल मिलाकर आज कोलकाता में भारी हंगामे के आसार हैं। ममता ने कहा है कि अगर धरने के लिए जगह नहीं मिली तो वह सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर नाराज हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक रत्ना देवनाथ ने अभिषेक पर हमले के लिए सोनारपुर को धन्यवाद कहा है।
6: কর্মের ফল তো অবশ্যই সবাই পাবে, কিন্তু এবার ওনারা যদি ভোটে জিতে আবার পুনরায় আসতেন, তাহলে ওনারা আমাদের বাঙালিদের কি আর বাঙালি থাকতে দিতেন না। এবং আমরা কত রক্তক্ষয়করণ যে হতো সেটা ওনারা বুঝতেও পারছেন না। আর সোনারপুরের বাসিন্দাদের আমি ধন্যবাদ জানাই এই জন্যই যে উনি যে এখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে ওনার ত্বকের যত্ন নিতে পারছেন না, চুলের যত্ন নিতে পারছেন না, সেই জন্য সোনারপুরের বাসিন্দারা তার ত্বকের যত্ন, তার চুলের যত্ন, চুল যাতে সিল্কি হয় সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন, এর জন্য সোনারপুরের বাসিন্দাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই।
0: तो वही बंगाल में एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर सियासत तेज है तो दूसरी ओर फर्जी दस्तखत मामले में भी नोटिस थमा दिया गया है। दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि सीआईडी जांच टीएमसी के ही दो नेताओं की शिकायत पर शुरू हुई है।
2: विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। संदीपन साह का कहना है कि टीएमसी में नैतिकता की कोई जगह नहीं है और उन्हें सच बोलने की वजह से निशाना बनाया गया है। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि वे पार्टी के फैसले को चुनौती नहीं देंगे बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि सच्चाई अंततः सामने आएगी। इस बीच सीआईडी ने फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। उनसे 8 जून को पूछताछ की जाएगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी की ओर से विधानसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा गया था जिसमें वरिष्ठ विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की सिफारिश की गई थी। इस प्रस्ताव पर पार्टी के करीब 70 नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षर थे। हालांकि पत्र की जांच में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए।
7: टीएमसी बंगाल के जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को यह मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है।
2: इस मामले में शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच दो टीएमसी विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह की शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो देखिए बंगाल में हिंसा थम नहीं रही और एक और नई तस्वीर अब उत्तर 24 परगना से सामने आई है। वहां पर पटियाला इलाके में टीएमसी पार्षद के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। नाराज लोगों ने पार्षद के घर में तोड़फोड़ की, कार के शीशे भी तोड़ डाले। साथ ही देर रात तक ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल भी रहा। पुलिस ने टीएमसी नेता आशीष चक्रवर्ती को जबरन वसूली, अत्याचार और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान ये बवाल हुआ तब भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। उसके बाद भी भीड़ ने घर पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। टीएमसी पार्षद को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। देर रात तक कल ये बवाल मचा है, पार्षद के घर पर हमला किया गया, नाराज लोगों ने ये हमला किया और अभी जो अपडेट आ रहा है गिरफ्तारी एक हो चुकी है। इस पूरे मामले में टीएमसी पार्षद के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूटा उत्तर 24 परगना में, जो उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गेट तोड़े गए उत्तर 24 परगना में टीएमसी पार्षद के खिलाफ, कुछ इस तरीके से कल देर रात तक बवाल मचा है जिसके बाद टीएमसी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते एक बड़ी खबर का जो कि सीबीएसई से जुड़ी हुई है। दरअसल बोर्ड ने 12वीं परीक्षा की कॉपी के रीवैल्यूएशन और नंबरों की दोबारा जांच की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल कल से मेंटेनेंस मोड में था जो कि अब शुरू हो गया है। सीबीएसई ने आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया के मार्गदर्शन का एक वीडियो भी जारी किया है। साथ ही सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में मिले नंबर को जो छात्र चुनौती देना चाहते हैं उनके लिए अब ये मौका है। अब तक रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया को लेकर छात्र लगातार शिकायत कर रहे थे। सीबीएसई रिवैल्यूएशन पोर्टल अब एक्टिव हो गया है जो कि कई घंटे से मेंटेनेंस मोड में था। जो छात्र इसको लेकर शिकायत कर रहे थे, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, अब देखिए जो पोर्टल इतने समय से मेंटेनेंस में था अब वो एक बार फिर से चालू हो गया है।
8: पूजा, देखिए इंटरनेट पे खासतौर पे एक्स प्लेटफॉर्म पे बीते कई दिनों से छात्रों ने और अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने रेड फ्लैग किया था कि किस तरह से ऑनमार्क पोर्टल में कई सारे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि छात्रों की कॉपी एक्सेस कर पाना, कई सारे आईडीज को एक्सेस कर पाना, इस तरह के दावे किए गए थे। सीबीएसई ने टेक्निकल टीम्स को, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इस काम पर लगाया था। ऑनमार्क पोर्टल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, री वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन के लिए पोर्टल बनाया गया है। तो उस पर्टिकुलर पोर्टल को ठीक करने के लिए, उसकी साइबर सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स को लगाया गया था। अब छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि अगर वो अपनी मार्कशीट को वेरीफाई करना चाहते हैं या री एवेल्युएशन कराना चाहते हैं अपने नंबरों का, तो ऑनमार्क पोर्टल चालू है। छात्रों के लिए एक वीडियो भी अपलोड किया गया है। पूजा।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग प्रक्रिया पर सवाल लगातार उठे हैं, तो अब शिक्षा मंत्रालय एक्शन में आया है। मंत्रालय ने संबंधित कंपनियों को दिए गए ठेके पर रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटा लिए हैं। कंपनी की तकनीकी पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है, साथ ही टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को इस खरीद प्रक्रिया के दौरान दी गई सभी मंजूरियों के पूरे रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसमें टेंडर की पात्रता शर्तें और बिड एवेल्यूएशन, साथ ही टेक्निकल अप्रूवल्स और बाकी सभी तरह के क्लियरेंस भी शामिल है। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की गई। पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर आज संसदीय समिति की एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में सीबीएसई पोर्टल को लेकर आ रही शिकायतों की समीक्षा की जाएगी, साथ ही एनटीए और सीबीएसई में हुई गलतियों की जांच और भविष्य में परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समाधान पर बैठक में चर्चा होगी। 12वीं की परीक्षा की समीक्षा संसदीय समिति करेगी। एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीबीएसई पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और आगे ऐसी गलतियां ना हो और परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समाधान पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अब खबर सियासत से जुड़ी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतिक बैठक बुलाई है और आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ यूपी बीजेपी के नेता मिलने वाले हैं। आज और कल यानी कि 3 जून तक ये बैठक होनी है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव को लेकर भी मंथन किए जा रहे हैं। दरअसल पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो एक तरफ बीजेपी यूपी पर फोकस करने में जुट गई है तो दूसरी ओर कर्नाटक में नई सरकार को लेकर कांग्रेस का मंथन होने वाला है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के नेता आज पार्टी आलाकमान से दिल्ली में मिलने वाले हैं और ये मुलाकात सोमवार को होनी थी लेकिन अब आज होने जा रही है। महज एक दिन का समय बचा है जब डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। बुधवार को शिवकुमार के साथ कई मंत्रियों की भी शपथ होने की उम्मीद है और अब तक नामों पर फैसला नहीं हुआ है और इसी मुद्दे पर जीके शिवकुमार और सुधा रवैया आज दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिल रहे हैं ताकि मंत्री पद के दावेदारों पर फैसला आसानी से लिया जा सके। साथ ही आज की बैठक में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी बात होने की उम्मीद है। अब तक डीके शिवकुमार ही ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और अब खबर बिहार से जुड़ी। मदरसों को लेकर सम्राट चौधरी सरकार सख्त हो गई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने मदरसों को दिए जा रहे अनुदान की जांच के आदेश दिए हैं और सभी जिलों में शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जांच के लिए स्थानीय स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी जो कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता की भी जांच करेगी। ये जांच अवैध और फर्जी मदरसों का पता लगाने, छात्रों की वास्तविक संख्या, शिक्षकों की उपस्थिति का पता लगाने और साथ ही सरकारी अनुदान का उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। दरअसल अनुदानित मदरसों को शिक्षकों और बच्चों का पूरा डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया है। अब एक बड़ी खबर दिल्ली से। दरअसल दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक 17 साल के नाबालिग युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की संख्या 15 से 16 के बीच थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि शरीर पर चाकू के एक दर्जन से ज्यादा वार है। मारे गए युवक का नाम अभिषेक है और अभी तक पुलिस को आरोपियों का सुराग नहीं मिला है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। उस्मानपुर में 15 से 16 आरोपियों ने यह हमला किया। अभिषेक नाम के युवक पर हमला किया गया, चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए। दिल्ली में एक बार फिर से संगीन वारदात सामने आई है। तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद अब पुलिस प्रशासन ने इलाके में अपराधियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। वहां पर ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इसके तहत असामाजिक तत्वों को पहचानकर उन पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी है।
9: ये गाजियाबाद का वही खोड़ा इलाका है जहां सूर्य प्रताप नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने 28 मई को खोड़ा इलाके में चाकू मारकर उसकी जान ले ली थी। अब उस खोड़ा को पुलिस अपराध मुक्त बनाने निकली है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है, अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है।
10: सब क्षेत्रों में जो अपराधी हैं उनके घर पे उनका सत्यापन किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार कहीं पे अगर इनपुट है तो सबसे सर्च की कार्रवाई की जाएगी, एवं राजस्व की भी टीम है जो कि इन अपराधियों के रिकॉर्ड इनके द्वारा कहीं कोई कब्जा तो नहीं किया गया है उन सब चीजों को वेरीफाई की।
9: ऑपरेशन क्लीन का आज दूसरा दिन है, 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा। बीजेपी कह रही है कि जिहादी मानसिकता वाले नहीं बचेंगे।
11: एक जिहादी जिसने ये कुकर्त किया वो कहां गया? जो जिहादी इस तरीके का कुकर्त करेगा वो ऊपर जाएगा, आप निश्चित समझिए कोई बच नहीं पाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार सबके साथ खड़ी है, न्याय के लिए खड़ी है, लेकिन जिस तरीके की जिहादी मानसिकता इसे कुचल दिया जाएगा।
9: अभी एक दिन पहले ही गाजियाबाद प्रशासन ने मारे गए आरोपी असद के पिता के घर पर नोटिस चिपकाया और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। मयंक कॉट के साथ अंशुल सिंह, गाजियाबाद आज तक।
0: गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि दोस्ती की आड़ में चूरेबाजी कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने लगे हाथ अपराधियों को चेतावनी भी दे डाली है।
12: आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में चूरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
0: और अब अगली खबर भोपाल से, जहां पर टिशा मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। एक दिन पहले जांच अधिकारियों ने गिरिबाला सिंह और समर्थ की मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और अब आज दोनों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है।
9: त्विशा शर्मा की मौत को लेकर उठे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश है, मौके से सुराग जुटाने की तैयारी है, साथ ही तैयारी है समर्थ और गिरिबाला के अब तक के बयानों की पुष्टि की। सीबीआई अधिकारी इसी मकसद से सोमवार को भोपाल के कटारा हिल्स पहुंचे, दो पुतले भी साथ लेकर गए थे। गिरिबाला और समर्थ भी सीबीआई टीम के साथ ही थे। जांच अधिकारियों ने दोनों की मौजूदगी में छत पर जाकर क्राइम सीन पर फंदे से लटकने की घटना को रिक्रिएट किया। गिरिबाला अधिकारियों को बताती रही कि 12 मई की रात उन्होंने क्या देखा था, फंदे से ट्विशा को कैसे उतारा था, इसका भी रिक्रिएशन किया गया। समर्थ ने बयान दिया था कि उसने ही ट्विशा को फंदे से उतारा था, जबकि गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली थी। उसी बयान के आधार पर सीबीआई ने मां बेटे को घर ले जाकर तफ्तीश की। रिक्रिएशन के लिए 80 किलो का डमी पुतला इस्तेमाल किया गया। करीब 3 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की प्रक्रिया की गई। उसके बाद दोनों आरोपियों के साथ सीबीआई टीम मौके से रवाना हो गई। आज गिरिबाला और समर्थ की सीबीआई की 5 दिन की हिरासत खत्म हो रही है। जांच एजेंसी दोनों को अदालत में पेश करेगी। धर्मेंद्र साहू के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: अब एक दर्दनाक खबर यूपी के हापुड़ से, जहां पर बड़ी लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली है। वहां पर पुलिया के निर्माण के लिए 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई भी बैरिकेटिंग नहीं लगी थी। उसी गड्ढे में बाइक सवार युवक जाकर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने इस गड्ढे को खुदवाया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुर्घटना नहीं बल्कि निर्माण एजेंसी और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने आरोपी ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग भी की है। अब खबर पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से जुड़ी हुई। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि एक बार फिर से एक कार्गो वेसल को निशाना बनाया गया है। इराकी अधिकारियों के अनुसार खाड़ी में 2 विस्फोटों की चपेट में आए वेसल को इराक के उमकसर के पास देखा गया और इनमें से एक विस्फोट कथित तौर पर ड्रोन हमले के कारण हुआ था और ये जानकारी इराकी पोर्ट्स कंपनी मीडिया ने भी दी। इराकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि जहाज पर इराक के उमकासर से 40 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में हमला हुआ था।

0: तो कार्गो वेसल पर ड्रोन से हमला किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। और इस सब के बाद ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अभी आपको हम दिखाते हैं। ट्रंप ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते ईरान के साथ डील की संभावना है, अगले हफ्ते हो सकती है डील, दोबारा खुल सकते हैं होर्मुज, दोबारा होर्मुज को खोला जा सकता है, डील की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ईरान से बातचीत बंद हो तो भी परवाह नहीं की जाएगी, हमें तेल की कीमतों की चिंता नहीं है, और अभी कुछ दिनों बाद डील होने की संभावना जताई जा रही है। ये ट्रंप का बयान इस सब के बाद सामने आया है। उधर लेबनान पर इजराइल के विनाशकारी हमलों को लेकर ट्रंप ने खुद मध्यस्थता की कमान संभाली है। उन्होंने नेतन्याहू और हिजबुल्ला के साथ बातचीत का दावा भी किया। ट्रंप का कहना है कि अब दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे।
1: लेबनान पर इजरायली हमलों से भड़के ईरान की धमकियों का असर दिखाई दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मध्यस्थता की कमान संभाली है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस मामले में बातचीत करने का दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि अब इजरायली सेना बेरूत पर हमला नहीं करेगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और यह तय हुआ है कि बेरूत में सेना नहीं भेजी जाएगी। जो सैनिक वहां पहुंचने वाले थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के साथ बातचीत में गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी है। इजराइल उन पर हमला नहीं करेगा और वे इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा ईरान की धमकी के बाद सामने आया है। दरअसल इजराइल ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है। आरोप है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम का दायरा लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लागू होता है। किसी एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान की तंसीम समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को पूरी तरह बंद कर दिया है। 16 अप्रैल को हुए युद्ध विराम समझौते के कुछ समय बाद ही इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले दोबारा शुरू कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो पश्चिमी एशिया में जारी संकट के बीच दूसरे मोर्चे पर रूस यूक्रेन के बीच भी तनातनी बढ़ी है। एक तरफ फिर से रूस ने कीव को निशाना बनाया तो रूस के एयर स्ट्राइक में कीव में एक 9 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। ताजा तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हमले के बाद इमारत से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई है। कीव पर हमले की तस्वीर, रूसी हमले में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई। अब बात कर लेते हैं मौसम की। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक मौसम पूरी तरह से बदल गया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव से भी दो चार होना पड़ा। दरअसल अहमदाबाद में तेज आंधी और बारिश हुई, जैसलमेर में तूफानी बारिश देखने को मिली, वहीं नागौर में तो बारिश के साथ ओले तक गिरे हैं। अमरावती और जालना में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है, हालांकि हीटवेव से राहत मिलने का अनुमान जताया गया है। और अब वक्त हो गया है सुपर 8 का। में फिर से दिखा रफ्तार का कहर, कार ने सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल। आगरा में एक शख्स को सड़क पर 2 महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल। रेवाड़ी में थार में अचानक से लगी आग, धुआं उठते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर बचाई जान। सूरत में रॉन्ग साइड पर बाइक चलाना पड़ा भारी, एक बाइक के सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत। खरगोन में युवक की मौत पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, थाना इंचार्ज को बनाया बंद। मुजफ्फरनगर में शोभा यात्रा में हुड़दंग, बाइक पर स्टंट और तलवार फरसा लहराने का वीडियो हुआ वायरल। सूरत में मॉर्निंग वॉक से लौटते समय 3 बाइक सवारों ने किया बुजुर्ग पर लाठी से वार, वारदात सीसीटीवी में कैद। बैतूल में ट्रेन में सीट विवाद के बाद युवक की हत्या, प्लेटफॉर्म पर उतार कर पीटा, आरोपी फरार। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, that seemed odd. To the bank, and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: अपनी इलेक्ट्रिक सवार
8: Oh no, बहुत बोर लग रहा है
9: take a date, not bites.
10: No added sugar, preservative के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
9: लायन डेट नट बाइट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्विशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
7: पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के दावों पर क्या सोचता है आम मुसलमान?
8: ये राजनीतिक जुमला है और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज्यादा है, तो इसके बाद अगर आप हमें भुई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है। बांग्लादेशी अपना जगह पे है, वो अपना बॉर्डर क्रॉस के आ रहा है, वो हम लोग का राजनीतिक फेलियर है ममता बनर्जी का, जो उन लोग को यहाँ रोहिंग्या बोल कर रखने के लिए छोड़ दिया कि रोहिंग्या है, या कहीं पर आकर के बर्मा से आके बस गया, उसको बांग्लादेशी आप करार दे दीजिए या बर्मा का लोग को करार दे दीजिए।
7: बांग्लादेश से लगते जिलों में मुस्लिम आबादी में विस्फोट के दावों पर क्या है बंगाल के मुस्लिम नागरिकों की राय? क्या बंगाल में किसी साजिश के तहत आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है? बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की दशकों पुरानी बीमारी को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या वोट के लिए बंगाल में अवैध घुसपैठियों को आने दिया गया? पश्चिम बंगाल हो या फिर असम, बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में घुसपैठ सबसे आगे रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हर नेता ये साबित करने में लगा रहा कि ममता घुसपैठियों को बसा रही हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना वोट बैंक मानती हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल जीतने के लिए कई रणनीति पर काम किया, जिसमें एक रणनीति घुसपैठ से बंगाल की संस्कृति को हो रहे नुकसान की थी। इस नैरेटिव को फैलाने के लिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया, जिसका नाम इश्तिहार रखने पर बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और इसे घुसपैठियों के बंगाल की संस्कृति पर पड़ने वाले असर से जोड़ा। ममता पर तुष्टिकरण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी ने साल 1905 के लाल इश्तिहार शब्द की याद दिलाई और दावा किया कि ममता ने ऐसा सांप्रदायिक भावना पैदा करने के लिए किया है, क्योंकि उस समय ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए हिंदुओं के प्रति विद्वेष फैलाने के मकसद से जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम भी इश्तिहार था। बंगाली बनाम पारसी की इस जंग का बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा हुआ। बीजेपी की जीत के बाद जिस तरह से TMC के दफ्तरों से आधार कार्ड मिलना शुरू हुए, उससे सवाल उठा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बसाकर उन्हें बंगाल की योजना में हकदार बनाकर उनके वोट से जीतती रही।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

बैठने का हक, भतीजे अभिषेक को सीआईडी ने भेजा दूसरा समन। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री इवेल्युएशन पोर्टल। ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच। सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग से सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया। गाजियाबाद के खोड़ा में यूपी पुलिस चला रही है 3 दिन का ऑपरेशन क्लीन। हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसने की मुहिम। सीएम योगी बोले, सुधर जाओ वरना पीढ़ियां याद रखेंगे अंजाम। दिल्ली में बेखौफ बदमाश, 24 घंटे में हत्या की दो वारदात। उस्मानपुर में नाबालिग को बेरहमी से गोदा। मॉडल टाउन में 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। लिबनान हमले से नाराज होकर शांति वार्ता से फिर हटा ईरान। हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान। ट्रंप ने हिजबुल्ला से की बात। नेतन्याहू को फटकारा, कहा क्या तुम पागल हो गए हो। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीबीएसई मार्किंग विवाद को लेकर एक बड़ी खबर। संसदीय समिति ने शिक्षा विभाग के सचिव को तलब किया है। शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार को बुलाया गया, साथ ही सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह को भी तलब किया गया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर आज संसदीय समिति की एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में सीबीएसई पोर्टल को लेकर आ रही शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीएसई पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतों से पहले तलब किया गया। 12वीं की परीक्षा की समीक्षा संसदीय समिति करेगी ताकि आगे ऐसी गड़बड़ियां सामने ना आए, उसको लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

बनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता बनर्जी का धरना रानी रशमोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी को नहीं मिली धरने की इजाजत, मंच बनाने का सामान भी पुलिस ने हटाया। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा पर सियासी संग्राम, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया सुनियोजित हमले का आरोप। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी का विरोध तेज, राज्यभर में प्रदर्शन। सोनारपुर हमले में 5 आरोपी गिरफ्तार, टीएमसी बोली विपक्ष को डराने की कोशिश। हमले को लेकर टीएमसी बीजेपी आमने सामने, ममता ने कल्याण बनर्जी से मुलाकात कर साधा सरकार पर निशाना। ममता बनर्जी का गंभीर आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार, धरने की अनुमति रोकने पर सरकार को घेरा। विपक्ष के नेता पद के नामांकन पर घमासान, हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच में फिर से तलब हुए अभिषेक बनर्जी। टीएमसी में बढ़ा सियासी विवाद, संदीपन साहा ने हस्ताक्षरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नामांकन पत्र विवाद पर सीआईडी की जांच तेज, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दो नेता निष्कासित। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे कांग्रेस आलाकमान के साथ कैबिनेट पर अहम बैठक। कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर मंथन तेज, 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। कांग्रेस में पदों को लेकर हलचल तेज, नए प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट संतुलन पर चर्चा। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन जैसी बैठक, दावेदारों की सक्रियता बढ़ी, साथ ही कई मंत्री बदलने की संभावना। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर भी मंथन, कांग्रेस को मजबूत नतीजों की उम्मीद। आज नीट और सीबीएसई मुद्दों पर संसदीय समिति की करेगी समीक्षा, शिक्षा मंत्रालय तक। ओएसएम सिस्टम, 3 भाषा नीति और ऑन स्क्रीन मार्किंग पर समिति में होगी विस्तृत चर्चा। नीट और एनटीए परीक्षा प्रणाली पर बड़ा मंथन, सीबीटी और पेन पेपर मोड पर विचार। नीट यूजी पेपर लीक की जांच रिपोर्ट समिति के सामने, सीबीआई ने दी प्रगति की जानकारी। परीक्षा सुधारों पर जोर, संसदीय समिति ने पारदर्शिता और सिस्टम सुधार की बात कही। नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई रिमांड 5 दिन के लिए, आरोपी की रिमांड बढ़ी। ब्राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, सीबीआई का दावा, पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक जांच होनी चाहिए। 10 लाख में गैस पेपर खरीद और साथ ही 15 लाख में बेचने का आरोप, वित्तीय लेनदेन की जांच जारी, कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की पड़ताल। संसदीय समिति में नीट यूजी और सीबीएसई मुद्दों पर सर्वसम्मति, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों पर जोर। दिग्विजय सिंह का बयान, शिक्षा मंत्री के पर इस्तीफे की मांग, पीएम की भूमिका पर भी उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, संगठन विस्तार और 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन। बूथ स्तर को मजबूत करने की रणनीति पर जोर, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पर चर्चा। युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर पार्टी का फोकस। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और आउटरीच रणनीति पर विचार। आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली में 11 से 12 जून को ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक होगी, ये फोरम सिटीज फॉर पीपल थीम पर होगा केंद्रित। राजस्थान के सांचू और गुजरात के भुज सीमा चौकियों के बाद अब अमित शाह जाएंगे त्रिपुरा का लंकामुरा सीमा चौकी और साथ ही 5 जून को जवानों के साथ करेंगे संवाद। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल लड़ाकू विमानों को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मेक इन इंडिया के तहत करीब 90 विमान भारत में ही बनेंगे। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली के महरौली में बिल्डिंग गिरने के कारण इस पूरे मामले में मालिक कर्मवीर गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 घर जमीन दोस्त। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने वाले एक और युवक को किया गिरफ्तार, आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला मोहम्मद शेख अरेस्ट। भोपाल में जुशा की मौत का सीन सीबीआई ने रिक्रिएट किया, पुतले की मां गिरिबाला ने खोली फंदे की गांठ। ऋषा शर्मा मौत मामले में गवाह नीरज दुबे का आरोप, समर्थ सिंह के दोस्तों ने भी मारपीट की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज हवा के साथ आई बारिश से गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। राजस्थान के नागौर में भी बदला मौसम, बारिश के साथ ओले भी पड़े, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई झमाझम बारिश, लोगों को 45 डिग्री की तपिश से मिली राहत।

नशे का साम्राज्य। सूरत के जहांगीराबाद इलाके में दो बाइक की भीषण टक्कर हुई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हुआ भारत, वित्तीय वर्ष 2025-26 का घाटा तय समय के भीतर रहा, राजकोषीय घाटा 4.4% पर आया। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री आज आएंगे भारत, भारत ब्रिटेन एफटीए को लागू करने पर होगी बात। ईएमआई और लोन की ब्याज दर पर असर डालने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक 3 से 5 जून के बीच होगी। कमजोर रुपये, महंगे क्रूड और मॉनसून की चिंता के बीच ब्याज दरें स्थिर रहने के उम्मीद। विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजार से करीब 33,000 करोड़ रुपए निकाले। कमजोर रुपये, कंपनियों की सुस्त कमाई और दूसरे बाजारों में बेहतर मौके मिलने से बिकवाली बढ़ी। यूपीआई से पैसे भेजते समय रिसीवर का बैंक में दर्ज असली नाम स्क्रीन पर दिखने वाला नियम लागू। एनपीसीआई ने फर्जी भुगतान और गलत अकाउंट में पैसे जाने की घटनाएं रोकने के लिए उठाया कदम। अमेरिका ने ईरान की रडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर किया हमला, जवाबी हमले में ईरानी एयरबेस को बनाया गया निशाना। अमेरिकी हमलों पर भड़का ईरान, विदेश मंत्रालय ने कहा युद्ध विराम के बीच ईरानी ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने धोखा दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने अपने इस्तीफे से जुड़ी अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं काम करता रहूंगा। ईरानी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, ईरान ने अमेरिका के साथ रुकी बातचीत, कहा जब तक लेबनान और गाजा में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को बेरूत में हमले तेज करने का आदेश दिया। नेतन्याहू के आदेश के बाद बेरूत में हड़का। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी सेना ने रूस से आ रहे तेल टैंकर को रोका। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना का भीषण हमला, रिहायशी इमारतों और अनाज के गोदाम को बनाया गया निशाना, 6 लोग घायल। म्यांमार के नामखाम टाउन में भीषण विस्फोट हुआ, हादसे में 55 लोगों की मौत, कई लोग घायल, मृतकों में 25 महिलाएं शामिल। दक्षिण कोरिया के डिजोन शहर में हनवा एरोस्पेस प्लांट में ब्लास्ट हुआ, आग लगते ही 5 लोगों की मौत हुई, 2 लोग हुए घायल। केन्या में अमेरिकी नागरिकों के लिए इबोला क्वारंटीन सेंटर बनाने का बवाल, ननयुकी शहर में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना उछलम्बकद रिलीज हुआ, गाने में डांस करते दिखे अक्षय कुमार और दिशा पाटनी। देओल परिवार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले 2 नए स्टार हैं। दरअसल बॉबी देओल ने खुलासा किया है कि बॉबी देओल ने बताया कि एक्टर बनना चाहते हैं बेटे आर्यमन और धर्म। फिर से बदली आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा की रिलीज डेट, अब 10 जुलाई की जगह 3 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट से बहस कर की खबर पर बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी, बोले खबर देखकर मैं भी हैरान, बॉबी ने आलिया के काम की तारीफ की। इस हफ्ते रिलीज होने वाली है 5 फिल्में, साउथ सुपरस्टार रामचरण की पेडी, वरुण धवन मृणाल ठाकुर की है जवानी तो इश्क होना है भी होंगी रिलीज।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र रात के 10:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल

मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। राशि, करियर में लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

तो होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

क्या धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

बाधा समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे ये टेक्नोलॉजी कंपनियों का खर्च घटा देगी और कर्मचारियों पर निर्भरता कम करेगी, लेकिन कुछ ही महीनों में तस्वीर बदलती दिख रही है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट और उबर जैसी दिग्गज कंपनियों को महसूस होने लगा है कि एआई इस्तेमाल करने का खर्च उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा है। ऐसे में कंपनियां अपनी योजनाओं में फेरबदल कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 6 महीने पहले हजारों कर्मचारियों को क्लॉड कोड इस्तेमाल करने की छूट दी थी। कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर एआई कोडिंग टूल्स इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन खर्च तेजी से बढ़ने के बाद कंपनी ने कई लाइसेंस बंद करने शुरू कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकेली कंपनी नहीं है, उबर ने भी माना है कि एआई टूल्स पर उसका पूरा 2026 का बजट साल के पहले 4 महीनों में ही खत्म हो गया। पहले कंपनियों ने कर्मचारियों को ज्यादा एआई इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब वो इसके बढ़ते खर्च से परेशान हैं। कंपनियों की बदलती रणनीति उस सोच पर सवाल खड़े कर रही है जिसमें माना जा रहा था कि एआई इंसानों से सस्ता साबित होगा। असल में एआई मॉडल्स हर सवाल, हर जवाब और हर प्रोसेस पर टोकन्स के हिसाब से पैसा लेते हैं। इस्तेमाल बढ़ने के साथ कंपनियों का खर्च भी तेजी से बढ़ता जाता है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2030 तक एजेंटिक एआई के इस्तेमाल से हर महीने 120 क्वाड्रिलियन टोकन्स तक की खपत हो सकती है। वहीं गार्टनर का कहना है कि 2030 तक एआई मॉडल्स चलाने की लागत 90% तक घट सकती है, लेकिन कंपनियों के कुल बिल कम नहीं होंगे। एजेंटिक एआई एक टास्क पूरा करने में सामान्य मॉडल से ज्यादा टोकन्स खर्च करता है और इस्तेमाल बढ़ने की रफ्तार टोकन की कीमत घटने से ज्यादा तेज हो सकती है। एनवीडिया ने माना है कि उनकी टीम में कंप्यूट कॉस्ट कर्मचारियों के खर्च से कहीं ज्यादा हो चुकी है। हेल्थ केयर से लेकर कोडिंग और कस्टमर सर्विस तक कंपनियां एआई एजेंट्स पर बड़ा दाम लगा रही हैं। एनवीडिया का कहना है कि भविष्य में हर कर्मचारी के साथ 100 एआई एजेंट्स काम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ते खर्च ने कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। एआई को लेकर दुनिया में जिस टेक रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, उसकी असली कीमत धीरे धीरे सामने आने लगी है। कंपनियां प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एआई पर पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन बढ़ता कंप्यूट बिल नई चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में वही कंपनियां ज्यादा फायदा उठा पाएंगी जो एआई इस्तेमाल और लागत के बीच सही संतुलन बना सके। आदित्य के रा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

बंगाल में आज होने वाले ममता के धरने पर महासंग्राम, टीएमसी का दावा, पुलिस ने हटाया मंच का सामान, दीदी बोली सड़क पर बैठने का हक, भतीजे अभिषेक को सीआईडी ने भेजा दूसरा समन। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल, ओएसएन केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच, सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग से सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया। गाजियाबाद के खोड़ा में यूपी पुलिस चला रही है 3 दिन का ऑपरेशन क्लीन, हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसने की मुहिम, सीएम योगी बोले सुधर जाओ वरना पीढ़ियां याद रखेंगी अंजाम। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफाल के लिए रिक्वेस्ट लेटर, मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे, 3.25 लाख करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील। लेबनान हमले से नाराज होकर शांति वार्ता से फिर हटा ईरान, हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान, ट्रंप ने हिजबुल्ला से की बात, नेतन्याहू को फटकारा, कहा क्या तुम पागल हो गए हो।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। यूपी में 2027 की चुनावी लड़ाई, दिल्ली में हो रही है तैयारी। आज से दिल्ली में बीजेपी यूपी को लेकर 2 दिन का मंथन शुरू करने वाली है, इस पर बुलेटिन में होगी बात। योगी का अल्टीमेटम, गाजियाबाद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप, यूपी की इस बड़ी खबर पर होगी चर्चा। फर्जी सिग्नेचर विवाद में टीएमसी में जबरदस्त अंदरूनी घमासान, निष्कासित टीएमसी विधायक ने अभिषेक बैनर्जी पर की आरोपों की बौछार। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जो देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। जी हां, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपी के री इवैल्यूएशन और नंबर्स की दोबारा जांच की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल कल से मेंटेनेंस मोड में था, जो अब शुरू हो चुका है। सीबीएसई ने आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया के मार्गदर्शन के लिए एक वीडियो जारी किया है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले नंबर को जो छात्र चुनौती देना चाहते हैं उनके लिए ये मौका है। अब तक री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को लेकर छात्र लगातार शिकायत कर रहे थे। और इस बीच सीबीएसई ऑनलाइन मार्किंग विवाद को शिक्षा मंत्रालय का इस पर एक्शन शुरू हो चुका है। मंत्रालय ने संबंधित कंपनियों को दिए गए ठेके पर रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटा लिए हैं। कंपनी की तकनीकी पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों को इस खरीद प्रक्रिया के दौरान दी गई सभी मंजूरियों के पूरे रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें टेंडर की पात्रता शर्तें, बिड इवैल्यूएशन, टेक्निकल अप्रूवल्स और बाकी सभी तरह से क्लियरेंस शामिल हैं। और इस बीच सीबीएसई विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। संजय समिति ने शिक्षा विभाग के सचिव को तलब किया है। शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार को बुलाया गया है। साथ ही सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह को भी तलब किया गया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को लेकर संजय समिति की अहम बैठक होगी और इस बैठक में सीबीएसई पोर्टल को लेकर आ रही शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। सीबीएसई और एनटीए में हुई गलतियों की जांच और भविष्य में परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समाधान पर बैठक में चर्चा होगी।

संजय समिति ने शिक्षा विभाग के दो बड़े अधिकारियों को तलब किया है। सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह को भी बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। इसके अलावा सीबीएसई पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। एक बार दोबारा रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। छात्रों को प्रक्रिया समझाई गई है एक वीडियो के माध्यम से कि कैसे अपने मार्क्स रीवैल्यूएट करवा सकते हैं। संजय समिति की बैठक मार्किंग विवाद को लेकर होगी।

0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, एक तो रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी और पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए, इसको लेकर क्या फैसला किया गया है, और जो ये दो बड़े अधिकारी हैं सीबीएसई के, इन तक कैसे पहुंची है अब सीबीआई और इनसे किस तरीके से पूछताछ की जाएगी?
1: देखिए, आज बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट्री पैनल यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन जो है उसने सीबीएसई के चेयरपर्सन को बुलाया है और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में उनको भी तलब किया गया है। इसके साथ साथ इस मीटिंग में छात्र होंगे, सीबीएसई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो इस बैठक में मौजूद होंगे और टेक्निकल एंगल पे संभवतः सवाल करने के लिए असिस्टेंस पाने के लिए पैनल ने सीईआरटी इन जो है भारत सरकार का एक ऐसा विंग जो कंप्यूटर टेक्निकलिटीज को देखता है उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके डीजी को बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर जो ओएसएम का सिस्टम है ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर जो बवाल हुआ, छात्रों ने कहा कि उनके नंबर कम आए हैं, उन्होंने सिस्टम पे उंगलियां उठाई, सिस्टम में खामियां नजर आई और अब सीबीएसई उसको ठीक करके ऑन मार्क पोर्टल पे भी जो साइबर सिक्योरिटी का इश्यू था उसको भी ठीक कर वापस लाया गया। लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल इन बड़े अधिकारियों से सवाल पूछेगा आखिरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई और छात्रों से समझने की कोशिश करेगा कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नेहा आप शुरू में कह रही थी कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम है या री इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो पोर्टल अब सीबीएसई का सुचारू हो गया है, उस सिस्टम को ठीक कर दिया गया है और इसका कारण यह है कि पहले हमने देखा था कि कई सारे छात्रों ने ऑनलाइन खासतौर पे एक्स प्लेटफॉर्म पे आकर बताया था कि किस तरह से ये पोर्टल ऑन मार्क पोर्टल जो है वो वल्नरेबल है, उसमें साइबर सिक्योरिटी के कई सारे थ्रेट हैं और उसके बाद साइबर एक्सपर्ट्स को जो है वो सीबीएसई ने इंतजाम किया, उनकी मदद ली और अब उस पूरे सिस्टम को ठीक करके सीबीएसई का दावा है कि छात्रों के लिए खोल दिया गया। नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब सीबीएसई विवाद में शिक्षा मंत्रालय पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली है तो विश्वास है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित होगी, लेकिन उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया।
2: धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए।
0: और अब बात पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की। चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरना देने वाली हैं, लेकिन इसे लेकर सियासी तनातनी है। टीएमसी ने पुलिस पर धरने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगी। ममता ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
3: ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी में नंबर 2 और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी और बीजेपी की जुबानी जंग में कल ममता बनर्जी कुछ और आरोपों के साथ फिर सामने आई। उन्होंने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया कि अभिषेक पार्टी की अंदरूनी कलह या जनता के गुस्से का शिकार बनी।
4: अभिषेक को जैसा पिटाया, जैसा मारा, पुलिस का पास पूरा इन्फॉर्मेशन था और लोकल कोई नहीं था, बाहर से अब लेके आया। एक दिन पहले वो लोगों खाना का पैकेट भेज रहा था, वो वीडियो हमारे पास है। आपने पूरा तैयार किया है बीजेपी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और अरेस्ट किया किसको? जो तृणमूल कांग्रेस का वर्कर अभिषेक को बचाने गया, एक सांबादिक भी, मींस एक प्रेस जर्नलिस्ट, उन्होंने भी अभिषेक को बचाने गया। महिला को भी आप नहीं छोड़ा जो उसको साथ गया था। लकीली वो गोली छोड़ू रास्ता था इसी के लिए, वो बाइक में जा रहा था तो बाइक में उसका माथा में हेलमेट था, पत्थर छुड़ा, वो पत्थर माथा में लगने से, हेलमेट नहीं रहने से उसका स्पॉट डेथ हो जाता।
3: ममता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद बीजेपी टीएमसी को चुन चुन कर निशाना बना रही है। ममता के मुताबिक टीएमसी के करीब 2,500 दफ्तर तोड़ दिए गए, 10,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कई पार्टी दफ्तरों में ताला डाल दिया गया, काउंसिलरों को निकलने नहीं दिया जा रहा, उनके जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं, यहां तक कि सांसदों और विधायकों पर भी पार्टी तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है।
4: एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो पुलिस को देके। उसका बाद बीजेपी का फोन जाता है, पुलिस कहता है एमएलए को अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो।
3: अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ ममता आज कोलकाता के रानी रासमणी एवेन्यू पर धरना देने वाली है, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि पुलिस ने ऐन वक्त पर धरने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
5: हम लोगों का खत पुलिस में चला गया था, आज जब डेकोरेटर यहाँ पर आए थे तो वो लोग बोला पुलिस फोर्स आया, नहीं आपको परमिशन नहीं है। तो ऐसा जो इतना दिन तक जो नियम था जो वो रिसीव करके अगर कुछ उनका सजेशन देना था तो लेटर ऑफ दो दिन आप लोग इन्फॉर्म कर सकते थे, ये करो वो करो, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट में वो ब्लॉक कर दिया पुलिस। ममता बनर्जी को रास्ते में उतरने से उनका दिक्कत है ना।
3: ममता के धरने को लेकर कोलकाता में तकरार बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ममता रुकने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि चाहे आप मुझे रोको या गिरफ्तार करो, मैं वहां जरूर जाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर धरना दूंगी, मैं झुकूंगी नहीं। संकेत साफ हैं, आज बंगाल का सियासी पारा गर्म रहने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तापस, पुलिस प्रशासन ममता को इजाजत नहीं दे रहा है धरने की, ऐसे में ममता बनर्जी क्या करने वाली हैं, कहां पर और कैसे धरना करेंगी वो?
6: जी देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से रानी राजमणी रोड पे आज धरने के लिए चिट्ठी दी गई थी कोलकाता पुलिस को, लेकिन पुलिस की ओर से रानी राजमणी रोड में परमिशन नहीं दिया गया और उन्हें मंजूरी मिली लेकिन वर्बली मिली है कि वाई चैनल में वो लोग बैठ सकते हैं और दो घंटे के लिए वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो वाई चैनल में बैठने को तैयार है लेकिन उन्हें 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक उन्हें बैठने की अनुमति दी जाए, जिसके बारे में पुलिस की ओर से अभी भी कोई पुष्टि नहीं की गई है और आधिकारिक रूप से अभी तक कोलकाता पुलिस के पास नए सिरे से कोई परमिशन के लिए चिट्ठी भी नहीं भेजी गई है, तृणमूल भेजेगा भी नहीं, ये कल कुणाल घोष ने साफ कर दिया था। तो ऐसे में देखना यह होगा कि ममता बनर्जी आज दोपहर के तकरीबन 2 बजे पहुंचेंगी तो वहां पर क्या बंदोबस्त रहता है, क्या पुलिस उन्हें बैठने की इजाजत देती है, क्या 2 घंटे से ज्यादा उन्हें बैठने की अनुमति मिलेगी, इस बारे में हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने रवैया को बहुत साफ कर दिया और ये कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो धरने पर बैठेंगे, चाहे गिरफ्तार होना पड़ा तो वो गिरफ्तारी स्वीकार करेंगे, अगर वैसा भी कुछ उससे भी आगे अगर बढ़ना पड़ा तो वो दिल्ली जाकर धरना देंगी। तो ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पे जानी जाती है और एक बार फिर विरोधी दल के प्रतिनिधि के तौर पर एक बार ममता बनर्जी को हम फिर देखेंगे और चुनाव हारने के बाद ये पहली दफे होगी कि ममता बनर्जी सड़कों पर आएंगी और विरोध प्रदर्शन करने बैठेगी।
0: ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक और विवाद के घेरे में है, ये विवाद है फर्जी सिग्नेचर से जुड़ा हुआ। इस मामले में सीआईडी पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमा चुकी है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी मुद्दे को उठाने वाले 2 विधायकों को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है।
7: 19 तारीख पार्टी का मीटिंग में जब हम लोग दूसरी बार गए थे, वहां जब साइन किया गया था तो बोला गया था 19 तारीख मीटिंग है मगर आप साइन कर रहे हैं, मगर डेट दीजिए 6 तारीख। अगर आप पूछेंगे आप तब क्यों नहीं बोले, इतना हिम्मत नहीं था। फिर जब साइन कर रहे थे तब देखे हम, मैं और संदीपन थोड़ा पीछे साइन किया था, मैंने बाद में, पहले बहुत लोग का साइन हो गया था। देखा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग मीटिंग में नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी का ऑफिस के कुछ लोग खाता लेकर घूम रहे थे तो वो लोग ने ये नाम सिग्नेचर वगैरह देखे, जो एमएलए है नहीं उन लोगों का नाम हुआ है।
8: इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आईन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश है।
0: इस बीच इन दोनों ने विधायकों के नाम का खुलासा सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया और उन्होंने ही पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि ऋतब्रज बैनर्जी और संदीपन साहा ने ही फर्जी सिग्नेचर की शिकायत की है।
9: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है।
0: और अभी पूरा मामला समझिए। 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई। विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन दे चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। स्पीकर ने ही पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हो गए। टीएमसी का यह कहना है कि दोनों विधायकों को इस बात पर पार्टी के भीतर पहले बात करनी चाहिए थी।
5: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी का अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में। स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
0: तापस से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, अब क्या एक्शन लेने की तैयारी है इन दोनों विधायकों के खिलाफ, क्योंकि बात जो वो कह रहे हैं उसके साक्ष्य उसके सबूत क्या मौजूद हैं जिस पर वो ये कह सकते हैं कि हाँ ये चीज गलत थी और इसीलिए हमने कॉल आउट किया है?
6: जी बेशक, जो जो आरोप लगाया गया उसके खिलाफ जो भी सबूत है, दस्तावेज है, वो ऋतब्रत बंदोपाध्याय और ऋतब्रत भट्टाचार्य और साथ में संदीपन साहा के पास बकायदा मौजूद है और वो उन्होंने इन चीजों को लेकर स्पीकर के सामने भी साझा किया है। और अभी पब्लिक डोमेन में भी यह है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार इतने सारे लोग वहां पर मौजूद भी नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी उनके सिग्नेचर्स किए गए थे। अरूप रॉय एक और कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उस दिन वो उस दिन जो मिनट्स का जो सिग्नेचर कॉपी सीआईडी ने उन्हें दिखाया था उनके सिग्नेचर उनके नाम की जगह जो सिग्नेचर था वो उनका नहीं था। तो उसके बाद आप देख रहे कि एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता सामने आकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि या उस दिन वो लोग मौजूद नहीं थे या फिर उनके सिग्नेचर नहीं थे। ऐसे में एक केस फाइल हुआ है जिसकी तहकीकात सीआईडी कर रही है। एसआईटी की टीम इस समय अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है लेकिन वो बीमार रहने के कारण कल वो शामिल नहीं हो पाए थे इन्वेस्टिगेशन में। अगली सोमवार को उन्हें बुलाया गया क्योंकि उनके नोटपैड पर ही ये चिट्ठी भेजा गया था विधानसभा के स्पीकर को और जिसमें तमाम विधायकों के सिग्नेचर्स थे। तो ये कैसे हुआ ये जानना बेहद जरूरी था। अगर यहां पर कोई फर्जी काम किया गया है तो वो गैरकानूनी है, कल शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर कह दिया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अगर ये गैरकानूनी एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ या फिर पार्टी के और सदस्यों के खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति इस समय तृणमूल के अंदरूनी राजनीति में बना हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो तृणमूल कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं वो नाराज है और कहीं ना कहीं तृणमूल का एक आशंका है कि कहीं अगर ये तमाम जो नाराज विधायक है अगर वो पार्टी से अलग होने की कोशिश करते तो आगे जाकर तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है और अपने पार्टी को बचाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं ऋतब्रत बैनर्जी का आरोप यह है कि उन्होंने जहांगीर खान के खिलाफ बयान दिया था, इसी वजह से उन पर एक्शन हुआ।
7: मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे? ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी के खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ।
0: वही ऋतुप्रताप बैनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को अभिषेक बैनर्जी की रेड आई से मुक्ति मिली है।
7: उलुबेरिया सरकार है कौन, उसका पैसा अभिषेक तक पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि जब बोले अभिषेक को बोला दिखा जाएगा लिख के दे दीजिए, क्या दिखा जाएगा क्या लिख के दे दीजिए, बार बार बोले पार्टी के अंदर कोई बोल के कुछ फायदा नहीं है। अभी बंगाल के अंदर ये अभिषेक बैनर्जी का जो रेड आई था उससे बंगाल को राहत मिली है, तो लोग इसलिए अपने नाराजगी जता रहे हैं। पार्टी के अंदर ममता बैनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बैनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
0: और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतिक बैठक बुलाई है और आज ही दिल्ली में बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ यूपी बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे। आज और कल यानी 3 जून तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में सांगठनिक बदलाव को लेकर मंथन होने वाला है। पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। आज और कल ये बैठक चलेगी जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। नितिन नवीन इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो सुगबुगाहट तेज हो गई है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं बीजेपी की ओर से। संगठन में नए चेहरों को मौका मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। अब नए चेहरे अगर शामिल किए जा रहे हैं तो जाति के आधार पर किए जा रहे हैं, कितना उनका वहां पर वर्चस्व है उसके आधार पर किए जा रहे हैं, क्या रहेगा यहां पर एजेंडा?
10: देखिए बिल्कुल, क्योंकि यूपी की जो नई टीम बन रही है, पंकज चौधरी अध्यक्ष पद को ग्रहण करे हुए जो है अब 5 महीने से ज्यादा हो गए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये भी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 6 संभाग में जो है पूरे उत्तर प्रदेश को बांटते हैं। पश्चिम है, ब्रज है, काशी है, अवध क्षेत्र है, गोरखपुर क्षेत्र, तो इस तरीके से क्षेत्रों को बांटा गया। इन क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो संगठन में कैसे हो, तो तमाम इस तरीके के जो समीकरण है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो, पूरी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है वो जो है संगठन में पंकज चौधरी की नई टीम बनेगी, क्योंकि 2027 की शुरुआत में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत भली भांति जानती है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है वो दिल्ली की जो है वो कुर्सी होती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी दिल्ली से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है दिल्ली, तो इस चीज को भली भांति जानते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ उस चीज को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में नहीं देखना चाहती है। और इससे पहले जब कैबिनेट विस्तार किया गया तब भी जो है सारे समीकरणों को देखा गया, उसके बाद अगर आप देखें तो अब नई टीम बनाई जा रही है। 3 बार पहले मंथन हो चुका है दिल्ली में, पंकज चौधरी का, वहां के जो संगठन मंत्री है धर्मपाल का, उनका, नितिन नवीन के साथ। अब एक फाइनल राउंड है, इस फाइनल राउंड के अंदर जो नाम आएंगे उन पर केंद्रीय नेतृत्व गहन चर्चा करेगा और उसके बाद जो है नई टीम पंकज चौधरी की कैसी होगी वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सभी को साथ लेकर चलना पंकज चौधरी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है वो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है थोड़ी सी राह मुश्किल होगी और इसीलिए इतना मंथन जो है वो
0: मंथन किया जा रहा है। आज और कल ये बैठक होने वाली है, तो एक तरफ बीजेपी यूपी पर फोकस करने में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में नई सरकार को लेकर कांग्रेस का मंथन होने वाला है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता आज पार्टी आलाकमान से दिल्ली में मिलेंगे। ये मुलाकात सोमवार को होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, संभावना यह है कि आज मुलाकात होगी। महज 1 दिन का समय बचा है जब डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। बुधवार को शिवकुमार के साथ कई मंत्रियों के भी शपथ लेने की उम्मीद है लेकिन अब तक नामों पर फैसला नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने वाले हैं ताकि मंत्री पद के दावेदारों पर फैसला लिया जा सके। साथ ही आज की बैठक में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बात होने की उम्मीद है। अब तक डीके शिवकुमार ही ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
11: एक नई टीम, नया लुक, परफॉर्मर्स, गो गेटर्स, एक्चुअली जो सरकार का के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों को उसमें लेने की बात हो रही है। इसीलिए जाहिर सी बात है जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है उनको सारा नॉलेज है कि सीएलपी में कौन काम करें कौन नहीं करें, कौन से मिनिस्टर्स का क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, उनको सब पता है। तो वो खुद भी आ रहे हैं, डीके शिवकुमार साहब भी आ रहे हैं, हमारे इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब यहाँ पे, जीएसओ वेणुगोपाल जी हैं, अध्यक्ष जी और एलओपी राहुल जी के साथ में बैठ के सारा डिस्कशन करेंगे।
12: आई थिंक मिस्टर डीके शिवकुमार द पार्टी हैज चोजन हिम एंड ही इज गोइंग टू टेक ओथ ऑन 3rd of June एट 4:05 PM एंड आई थिंक इज वेरी डायनेमिक लीडर, वेरी पोटेंशियल लीडर, ही हैज गॉट आइडियाज, he can definitely bring lot many changes in Karnataka and national politics also, and he has been a true congressman from day one.
0: Rahul Gautam mere sahyogi jud gaye hain tamam jankari ke sath. Rahul kal ye ek baithak honi thi, aaj ye baithak ho sakti hai ya fir nahi, aur agar hogi to kitne baje hogi, kya sanket mil rahe hain?
13: देखिए आज ये बैठक जरूर होगी क्योंकि कल यानी 3 तारीख को कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार, और साथ में ही उनका जो मंत्रिमंडल है, बताया जा रहा है कि 10 से 15 जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ में शपथ लेंगे। तो जाहिर है आज नामों को तय करना पड़ेगा। कल रात को मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो पुष्कर गए थे एक कांग्रेस के कार्यक्रम में, जिसकी वजह से टाइम मैच नहीं हो, रात को नहीं मिल पाए आला कमान से डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया। लेकिन दोनों लोगों ने मुलाकात करी, केसी वेणुगोपाल से, रणदीप सुरजेवाला से, इन दोनों की भी आपस में मुलाकात हुई, और बताया जा रहा है कि एक मोटी माटी लिस्ट तैयार कर ली गई है जिसको लेकर आज मंथन होगा, जिसमें बताया जा रहा है राहुल केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, और फिर उसको पूरा अमली जामा पहनाया जाएगा। कोशिश है कि
0: दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद होंगे और आज ही ये बैठक होगी। और अब बात गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड की करेंगे। पुलिस ने इलाके में अपराधियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है, वहां ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इसके तहत असामाजिक तत्वों को पहचान कर उन पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी।
14: ये गाजियाबाद का वही खोड़ा इलाका है जहां सूर्य प्रताप नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने 28 मई को खोड़ा इलाके में चाकू मारकर उसकी जान ले ली थी। अब उस खोड़ा को पुलिस अपराध मुक्त बनाने निकली है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है, अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है।
15: सब क्षेत्रों में जो अपराधी हैं उनके घर पे उनका सत्यापन किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार कहीं पे अगर इनपुट है तो सबसे सर्च की कार्रवाई की जाएगी, एवं राजस्व की भी टीम है जो कि इन अपराधियों के रिकॉर्ड्स, इनके द्वारा कहीं कोई कब्जा तो नहीं किया गया है, उन सब चीजों को वेरीफाई की।
14: ऑपरेशन क्लीन का आज दूसरा दिन है, 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा। बीजेपी कह रही है कि जिहादी मानसिकता वाले नहीं बचेंगे।
16: एक जिहादी जिसने ये कुकर्त किया वो कहां गया? जो जेहादी इस तरीके का कुकर्त करेगा वो ऊपर जाएगा, आप निश्चित समझिए कोई बच नहीं पाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार सबके साथ खड़ी है, न्याय के लिए खड़ी है, लेकिन जिस तरीके की जेहादी मानसिकता इसे कुचल दिया जाएगा।
14: अभी एक दिन पहले ही गाजियाबाद प्रशासन ने मारे गए आरोपी असद के पिता के घर पर नोटिस चिपकाया और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। मयंक कॉट के साथ अंशुल सिंह, गाजियाबाद आज तक।
0: वहीं गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कल कहा था कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लगे हाथ अपराधियों को चेतावनी भी दी है।
17: आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
0: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

संग्राम टीएमसी का दावा, पुलिस ने ठाया मंच का सामान, दीदी बोली सड़क पर बैठने का हक, भतीजे अभिषेक को सीआईडी ने भेजा दूसरा समन। कई घंटे मेंटेनेंस बोर्ड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री वैल्यूएशन पोर्टल, ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच, सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग से सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया। गाजियाबाद के खोड़ा में यूपी पुलिस चला रही है 3 दिन का ऑपरेशन क्लीन, हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसने की मुहिम, सीएम योगी बोले सुधर जाओ वरना पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत सरकार को भेजा 114 राफाल के रिक्वेस्ट लेटर, मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे, 3.25 लाख करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील। लेबनान हमले से नाराज होकर शांति वार्ता से फिर हटा ईरान, हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान, ट्रंप ने हिजबुल्ला से की बात, नेतन्याहू को फटकारा, क्या तुम पागल हो गए हो।

9:30 बज गए हैं, बुलेटिन में वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, आरोपी शुभम खेरनार की सीबीआई रिमांड 5 दिन बढ़ाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में, सीबीआई का दावा पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक पहुंचना जरूरी है। 10 लाख में गैस पेपर खरीद और 15 लाख में बेचने का आरोप, वित्तीय लेन देन की जांच जारी, कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की पड़ताल। संघीय समिति में नीट यूजी और सीबीएसई मुद्दों पर सर्वसम्मति, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार पर जोर। दिग्विजय सिंह का बयान, शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की मांग, पीएम की भूमिका पर उठे सवाल। नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बदलेगा परीक्षा का मोड, पेन पेपर ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा। आज भी सांसद सुधाकर सिंह को झटका, नीट परीक्षा सीबीटी में कराने की मांग नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतिम समय में बदलाव नहीं हो सकता है। सीबीएसई ने खोला मार्क्स वेरिफिकेशन और री वैल्युएशन पोर्टल, छात्र अब कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई ने जारी किया वेरिफिकेशन री वैल्युएशन लिंक, छात्रों को वीडियो के जरिए दी गई जानकारी। सीबीएसई ओएसएम गड़बड़ी का संसद सख्त, शिक्षा सचिव, सीबीएसई चेयरमैन और सीईआरटी एनडीजी तलब। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले का विरोध, आज ममता बैनर्जी धरने से करेंगी रानी रश्मोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बैनर्जी को नहीं मिली धरने की इजाजत, मंच बनाने का सामान पुलिस ने हटाया। बंगाल कोर्ट को लिंचा पर सियासी संग्राम, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया सुनियोजित हमले का आरोप। अभिषेक और कल्याण बैनर्जी पर हमलों को लेकर टीएमसी का विरोध तेज, राजभर में प्रदर्शन। सुनारपुर हमले में 5 आरोपी गिरफ्तार, टीएमसी बोली विपक्ष को डराने की कोशिश। हमले को लेकर टीएमसी बीजेपी आमने सामने, ममता ने कल्याण बैनर्जी से मुलाकात कर साधा सरकार पर निशाना। ममता बैनर्जी का गंभीर आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार, धरने की अनुमति रोकने पर सरकार को घेरा। विपक्ष के नेता पद के नामांकन पर घमासान, हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच में फिर तलब हुए अभिषेक बैनर्जी। टीएमसी बड़ा सियासी विवाद, संदीपन साहा ने हस्ताक्षरों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नामांकन पत्र विवाद में सीआईडी की जांच तेज, पार्टी विरोधी गतिविधियों में आरोप में 2 नेता निष्कासित। डीके शिवकुमार सरदार मैया दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस आला कमान के साथ कैबिनेट की अहम बैठक। कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर मंथन तेज, 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। कांग्रेस से पदों को लेकर हलचल, नए प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट संतुलन पर चर्चा। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन जैसी बैठक, दावेदारों की सक्रियता बढ़ी, कई मंत्री बदलने की संभावना। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर मंथन, कांग्रेस को मजबूत नतीजों की उम्मीद। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, संगठन विस्तार और 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन। बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर जोर, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की चर्चा। युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर पार्टी का फोकस, सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और आउटरीच रणनीति पर विचार। आगामी चुनावी तैयारी को लेकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली में 11 और 12 जून को ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक, ये फोरम सिटीज फॉर पीपल थीम पर होगा केंद्रित। राजस्थान के सांची और गुजरात के बुद्ध सीमा चौकी के बाद अमित शाह जाएंगे त्रिपुरा और लंका मुरा सीमा चौकी। भारत ने फ्रांस को भेजा 14 राफाल लड़ाकू विमान का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मेक इन इंडिया के तहत करीब 90 विमान भारत में ही बनेंगे। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, 500 फीट की रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, बालू फोर्ज को मिला कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली के मेरौली में बिल्डिंग देने के मामले में मालिक कर्मवीर गिरफ्तार, गैर आतन हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 घर जमीन दोस्त। भोपाल की शाह की मौत का सीन सीबीआई ने रिपोर्ट किया, पुत्र मां गिरबाला ने खोली फंदे की गांठ। विशा शर्मा मौत मामले रवा नीरज दुबे का आरोप, समर सिंह के दोस्तों ने मारपीट की। यूपी एरिया सदावा, जय से जुड़े आरोपी शहबाज सिद्दीकी ने कबूला, पाकिस्तान से निर्देश मिलते फिदायीन हमला करने को तैयार था। शहबाज के मोबाइल से आतंकी चैट और ऑडियो बरामद, पुलवामा हमले का समर्थन और सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध से जुड़ी सामग्री मिली। बघा में अस्पताल की बदहाली पर भड़के मंत्री, औचक निरीक्षण हुई गंदगी। लखनऊ के जेएमयू में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवा घोटाले की आशंका, जांच में 2 करोड़ रुपए की अनियमितताएं आए सामने। प्रदेश के जैन में तेज हवा के साथ आई बारिश से गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के नागौर में बदला मौसम, बारिश के साथ ओले पड़े, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के अमरावती में झमाझम बारिश, 45 डिग्री तपिश से मिली राहत। तेज हवा और गरज के साथ 1 घंटे तक हुई जोरदार बारिश, बारिश में भीगते नजर आए लोग। महाराष्ट्र जालना में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने आने वाले दिन में बारिश का जताया अनुमान।
गुजरात के अहमदाबाद में अचानक बदला मौसम, आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से लाई राहत। राजस्थान के जैसलमेर में लोगों को गर्मी से राहत, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। पड़कों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, अनंतनाग जिले का डेड बल काफरान। वेरी नाम से 20 किलोमीटर दूर छुपा है ये शांत हिल स्टेशन, मनमोहक नजारे खींच रहे हैं सैलानियों को। नवसारी और डांग जिले में तूफानी बारिश, कई जगह पेड़ उखड़ कर गिर गए। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून के बिलों में 10% अतिरिक्त अधिभार पर रोक। बिजली बिल नहीं होगा महंगा, फिलहाल निगाहें यूपीपीसीएल के जवाब पर टिके हैं, जिसके बाद तय होगा कि अतिरिक्त शुल्क वसूला जाए या नहीं। सुल्तानपुर में 96 घंटे से अंधेरे में हैं ग्रामीण, आंधी तूफान के बाद पानी के लिए त्राहिमाम। यूपी जलौन में तूफान के बाद 96 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए तरस रहे गांव। गाजियाबाद में डीएम की सख्ती से भू माफियाओं पर प्रहार, बुजुर्ग महिला को मिला अपना आशियाना। रजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान का आज 11वां दिन, मंजाकोट सेक्टर के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी। कानपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार का प्रदर्शन, फांसी की मांग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र नाबालिग से रेप मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में पेशी। लुधियाना में मशीन टूल्स फैक्ट्री में गैस लीक में 3 लोगों की मौत, मामले की जांच जारी। दिल्ली से करतार नगर में गोलीबारी की घटना, गोली लगने से एक बच्चा घायल। सालगुल में कारोबारी की पत्नी गला काटकर हत्या, दोनों कान काटे, खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा मिला। हथियारों की तलाश पुलिस की 6 टीमें। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग बना खूनी, साजिश की वजह यूट्यूब देखकर रचा मर्डर प्लान, पति पत्नी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ी। हापुड़ में निर्माण कार्य में लापरवाही से युवक की मौत, 60 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की गई जान। सानपुर में कारोबारी की पत्नी गला रेतकर हत्या, खून से लथपथ शव बेड पर मिला। हथियारों की तलाश में 6 टीमें गठित। सुल्तानपुर पुलिस के सामने चलते रहे लाठी डंडे, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। पीलीभीत में बकरीद के दिन एसपी कार्यालय में बकरे की कुर्बानी करने के आरोप में एसपी जिला महासचिव नफीस अंसारी खिलाफ मामला दर्ज। सोनभद्र में अवैध संबंध में हत्या, बेटे ने कर दिया पिता का कत्ल। लुधियाना के एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, 3 लोगों की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। इंदौर में बेरू घाट की फूटी नर्मदा की पाइपलाइन, लाखों लीटर पानी बहा। बैतूल में ट्रेन में सीट विवाद के बाद युवक की हत्या, प्लेटफॉर्म पर उतार कर पीटा। दिल्ली न्यूज

इस हफ्ते रिलीज होने वाली है फिल्म साउथ सुपरस्टार रामचरण की पेडी, वरुण धवन मृणाल ठाकुर की है जवानी तो इश्क होनी भी है लॉन्च। हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका की योजना को स्वीकार किया जिसके तहत वो इसराइल पर हमला रोक देगा, बदले में इसराइल लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला नहीं करेगा। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने समझौते की पुष्टि की लेकिन चेतावनी दी कि अगर हिज़्बुल्लाह हमले बंद नहीं करता है तो बेरूत पर हमले जारी रहेंगे। लेबनान के समर्थन में ईरान की राजधानी तेहरान प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों समर्थक। कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा देश में यहूदी विरोधी भावनाएं सबसे ऊंचे स्तर पर, घृणा का मुकाबला करने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रोमानिया ने अपने देश पर हुए ड्रोन हमले का मुद्दा उठाया, कहा रूस ने जानबूझकर गलाटी शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया जिसमें दो नागरिक घायल हो गए। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, शहर में श्रमिक संघों और छात्रों ने जमकर मचाया उत्पात। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप से ठीक पहले हिंसक प्रदर्शन, वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए शिक्षकों ने राजधानी के जोकालो चौक को किया जाम। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ 2013 में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने सड़क पर उतरे लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने ओपन एआई और सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ दायर किया मुकदमा। बेलारूस की विश्व नंबर एक खिलाड़ी इरीना सबालेंका फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल पहुंची, जापानी प्लेयर नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से दी मात।

0: और इस बीच खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर उस्मानपुर इलाके में 17 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की संख्या 15 से 16 के बीच थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई, शरीर पर चाकू के एक दर्जन से ज्यादा वार है। मारे गए युवक का नाम अभिषेक है। अभी तक पुलिस ने आरोपियों का सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आपसी रंजिश का मामला है?
1: जी बिल्कुल, आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। और जिस तरीके से इस वारदात को नेहा अंजाम दिया गया, उससे यह भी लग रहा है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। क्योंकि दो लड़के जाते हैं, अभिषेक के घर जाते हैं और वहां से बातचीत के लिए उसे बुला के लाते हैं। करीब 100 मीटर दूर पर जो नाला है न्यू उस्मानपुर का, वहां पर लेकर के पहुंचते हैं। उस वक्त रात के करीब 10:24 हो रहे थे, बातचीत कर रहे होते। 5 से 6 लड़कों ने अभिषेक को घेरा हुआ था और अचानक से उनमें से एक ने चाकू निकाला और वो बेहद बुरी तरीके से लगातार उस पर वार करने लगा। अभिषेक किसी तरीके से उनके चंगुल से छूट के बगल में जो गली है उसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी में ये पूरा जो वाकया है वो कैप्चर हुआ है। और वो लेकिन गली में कुछ दूर जाता है, गिर जाता है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, वो भाग नहीं पाया, बहुत ज्यादा खून बह गया था और मौके पे ही अभिषेक की मौत हो गई थी। जानकारी यह है कि करीब 2 से 3 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक डिटेन किया है, क्योंकि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुराना झगड़ा बताया जा रहा है और अब पुलिस जो बाकी आरोपी हैं, जिनमें से मेन जिसने चाकू मारा था, उसकी तलाश में जुटी हुई है। कई टीमें लगी हुई है और लगातार रेड जारी है। जी नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर, फिल्म काला हिरण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभिनेता सलमान खान की लीगल टीम ने फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी से जुड़े लोगों को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में फिल्म के निर्माता निर्देशक से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और उससे जुड़े पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री हटाने की मांग की है। कानूनी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं होने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिल्म का निर्माण अमित जानी कर रहे हैं, जो पहले भी कई विवादित और चर्चित विषयों पर आधारित फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। अमित जानी से पहले कन्हैया लाल मर्डर केस पर आधारित फिल्म का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की घटना को दिखाया गया था। कानूनी विवाद के बाद काला हिरण की रिलीज और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है?
2: देखिए, ये विवाद फिलहाल बढ़ता दिख रहा है नेहा, और फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी को लेकर एक बड़ा विवाद है। और सलमान खान की जो लीगल टीम है उसने फिल्म से जुड़े लोगों को एक कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में फिल्म के निर्माता निर्देशक से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और उससे जुड़े पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री हटाने की मांग की गई है। कानूनी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं होने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिल्म का निर्माण अमित जानी कर रहे हैं, जो पहले भी कई विवादित और चर्चित विषयों पर आधारित फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। अमित जानी से पहले कन्हैया लाल मर्डर केस पर आधारित फिल्म का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की घटना को किया है। और फिल्म का निर्देशन जो है वो भारत श्रीनेत

0: हैं, जबकि निर्माता जो है वो अमित जानी है। फिलहाल अगर निर्माताओं की बात समझी जाए तो उनका ये कहना है कि फिल्म वास्तविक कानूनी संघर्षों और एक्शन आधारित घटनाओं से प्रेरित है तथा इसे इंटरनेशनल और हॉलीवुड स्टाइल ट्रीटमेंट के साथ तैयार किया गया है। अगर आप पोस्टर की बात करें जो सामने दिखाई पड़ता है, उस पोस्टर में लाल और नीले रंग की प्रभावशाली थीम के बीच में मुख्य किरदार को आक्रामक और रहस्यमय अंदाज में दिखाया गया है, जो फिल्म की सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कहानी की ओर संकेत करता है। फिलहाल जो फिल्म है उसका टीजर 20 जून को रिलीज किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस लीगल टीम के रिस्पांस के बाद जो अमित जानी का रिस्पांस आया है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि लीगल नोटिस देकर काला हिरण मूवी जुड़े लोगों को धमकाने में
1: ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
5: Oh, ouch.
4: However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: Sokudo,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
9: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
13: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले है वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
14: आप देखे हैं उसका सर पर अटैक हुआ था, कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी झूठा प्रपंच बना के उसका दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे बंगला में तो बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।
15: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हाल ही बंगाल बस इतना है कि कहीं सत्ता का जश्न है, कहीं सियासत बेहाल, कहीं शुभेंदु के 35 मंत्रियों वाली कैबिनेट के सामने सत्ता का कालीन बिछा है, तो कहीं सड़क के संग्राम से निकली सियासत के वजूद पर सवाल मंडरा रहा है। 4 मई तक बंगाल की सत्ता की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी अब बड़ी परेशानी में घिरती दिख रही हैं। एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन हो रहा है, ऊपर से टीएमसी के नेताओं पर जनता का हिंसक रिएक्शन दिख रहा है। इधर टीएमसी के सांसद आपस में भी संग्राम करे बैठे हैं और अब टीएमसी के नेताओं ने खुलेआम पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो टीएमसी के पंचायत से पार्लियामेंट तक स्तर के नेता इस्तीफे पर इस्तीफा देते रहे। अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे। अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैलिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे। फिर मामला संज्ञान में आया तो बंगाल पुलिस की CID ने फर्जी दस्तखत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 सदस्यों की जांच टीम की निगरानी DIG रैंक के अफसर को मिली। पूछताछ का समय अभिषेक बनर्जी को दिया गया, लेकिन अभिषेक ने खराब सेहत का हवाला दिया, पेश नहीं हुए। अब TMC कहती है अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से लेकर अदालत तक की जाएगी, लेकिन TMC ये नहीं बता रही कि कार्यकर्ताओं नेताओं के उठते भरोसे और पार्टी की एकता के बिखरते तिनके को कैसे संभाला जाए। दरअसल नई सरकार TMC के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। TMC के पंचायत और वार्ड स्तर के नेताओं से लेकर सांसदों तक के दफ्तरों में सरकारी सामान मिल रहा है। इसे लेकर BJP का कैडर आक्रामक है। विरोध प्रदर्शनों की आज TMC के नेताओं तक पहुंच रही है, लेकिन उन्हें नेतृत्व की मदद नहीं मिल रही। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: महंगाई की मार से राहत मिलने का इंतजार कर रहे लोगों की नजर इस हफ्ते RBI की पॉलिसी पर टिकी है। घर की EMI से लेकर बिजनेस की उधारी तक हर जेब पर असर डालने वाला फैसला 5 जून को आने वाला है, लेकिन इस बार कहानी केवल ब्याज दरों की नहीं है। इस बार तस्वीर में कमजोर रुपया, महंगा होता क्रूड ऑयल और मानसून की चिंता भी शामिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 जून के बीच होने जा रही है। बाजार और ज्यादातर एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि RBI फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन आने वाले संकेतों पर इस बार पैनी नजर रहेगी क्योंकि महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में बदलाव की संभावना है। दरअसल पिछले करीब 100 दिनों से जारी पश्चिम एशिया संकट ने आर्थिक समीकरण बदल दिए हैं। क्रूड ऑयल की सप्लाई, शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर तो दबाव बढ़ ही गया है, साथ ही कंपनियों की लागत और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी दबाव में इजाफा हुआ है। इसी बीच मौसम भी आरबीआई की चिंता बढ़ा रहा है और आईएमडी के मुताबिक 2026 में सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका है। अल नीनो के असर से बारिश कम रहेगी जिससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है। इन चुनौतियों के बीच कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई अपने महंगाई अनुमान को बढ़ा सकता है और ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर सकता है। महंगाई के साथ रुपया भी आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस साल भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा कमजोर हुई है, जो एक दशक की सबसे खराब गिरावट मानी जा रही है। मई में रुपया एक वक्त तो 96.83।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: खतरा, कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में है पार्टी से निकाले गए एमएलए। अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व को चुनौती देने वाले नेता बना सकते हैं अलग गुट। बंगाल में आज होने वाले ममता बैनर्जी के धरने पर महासंग्राम, टीएमसी का दावा, पुलिस ने हटाया मंच का सामान, दीदी बोली सड़क पर बैठने का हक, भतीजे अभिषेक को सीआईडी ने भेजा दूसरा समन। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल, ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच। सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग से सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 रफाल के लिए रिक्वेस्ट लेटर, मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे, 3.25 लाख करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील। लेबनान हमले से नाराज होकर शांति वार्ता से फिर हटा ईरान, हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान, ट्रंप ने हिजबुल्ला से की बात, नेतन्याहू को फटकारा, कहा क्या तुम पागल हो गए हो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। आज सुबह में आपका स्वागत है। 10 बजे के बुलेटिन में बात चार बड़ी खबरों की। पहले बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां ममता बैनर्जी के प्रस्तावित धरने को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि पुलिस ने धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। वहीं फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी के दो विधायक निष्कासित होने के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम को लेकर, जिस पर आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण की तैयारियों को के बीच कर्नाटक की सियासत में आखिर क्या क्या चल रहा है। तो दो दिन बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चुनावी हार का एक महीना पूरा होने जाएगा, और चुनावी हार के बाद से बंगाल में सियासी हलचल बड़ी हुई है। तमाम मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। इस बीच आज ममता बैनर्जी सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक ममता बैनर्जी के धरने की इजाजत नहीं दी है, जिसे लेकर तनातनी बढ़ी हुई है। वहीं चुनावी हार का असर टीएमसी पर भी साफ दिख रहा है। कल ममता बैनर्जी की बुलाई बैठक में 60 विधायकों के न पहुंचने की खबर आई। उधर फर्जी हस्ताक्षर मामले में एक्शन लेते हुए ममता बैनर्जी ने कल शाम दो विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी की पेशी के लिए उसको दूसरा समन भी जारी कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हमले के आरोपों पर मचा हुआ है। बयानबाजी लगातार जारी है, सड़कों पर संग्राम दिख रहा है, बंगाल में सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। तो बात पश्चिम बंगाल की ही कर रहे हैं, जहां से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आई है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा अब मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए दो टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। बीती रात ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी के विधायकों से मुलाकात भी की है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। कल टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि निष्कासित दोनों विधायक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने दक्षिण कोलकाता के एक होटल में कुछ विधायकों के साथ एक गुप्त बैठक भी की है। तो आपको बता दें कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है, वो एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि क्या टीएमसी के अंदर अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है, क्या एक नया गुट वहां पर उत्पन्न हो सकता है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो अब अभिषेक बैनर्जी से अपनी नाराजगी खुलकर जताने लगे हैं, और ऐसे में जो दो निष्कासित विधायक हैं उनके नेतृत्व में उनको लाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि कोलकाता के विधायक जो हैं उनके साथ एक होटल में मीटिंग की है, और ये मीटिंग की गई है उन नेताओं द्वारा जिन्हें निष्कासित किया गया था टीएमसी द्वारा। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, बड़ी दिक्कत हो जाएगी टीएमसी के लिए अगर एक और गुट बन जाता है। इंद्रजीत, टीएमसी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत पैदा होती हुई नजर आ रही है?
1: देखिए, काफी बड़ी मुश्किल चुनौती इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के लिए इस वक्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दो विधायक उनको निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से कल, ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा। लेकिन वो कल रात को कोलकाता में स्थित जो एमएलए हॉस्टल है, जहाँ पे सब एमएलए अमूमन रहते हैं, वहां पे वो दिखे। और बाकी बहुत सारे ऐसे तृणमूल के नवनिर्वाचित विधायक थे जो वहां पे मौजूद थे उस वक्त, उनसे उनकी बातचीत भी हुई, और इसी से ये अटकलें लगाई जा रही है कि तृणमूल के अंदर एक गुट बनाने की कोशिश मुहिम इस वक्त शुरू हो गई है। और जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ज्यादातर ऐसे एमएलए किससे बात हो रही है जो इस वक्त तृणमूल के अंदर अभिषेक बनर्जी का जो नेतृत्व है उसको बनर्जी खुद वो कल हमारे साथ ये उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी से उनकी मुलाकात नहीं होती थी। आईपैक का जो रूप है अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनकी भी काफी खासा नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि इस वक्त तृणमूल के अंदर ही ऐसे ही गुट बनाने की कोशिश हो रही है जो सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को सवाल चुनौती कर दे।
0: जी शुक्रिया इंद्रजीत इस सारी जानकारी के लिए। तो नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, टीएमसी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी भड़क गए और उन्होंने सीधे अभिषेक बैनर्जी को टारगेट पर ले लिया।
2: मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है, अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
0: तो ऋतव्रत बैनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को अभिषेक बैनर्जी की रेड आई से मुक्ति मिली है।
2: उलुवेरिया सरकार है कौन, उसका पैसा अभिषेक तक पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि जब बोले अभिषेक को बोला दिखा जाएगा लिख के दे दीजिए, क्या दिखा जाएगा क्या लिख के दे दीजिए, बार बार बोले पार्टी के अंदर कोई बोल के कुछ फायदा नहीं है। अभी बंगाल के अंदर ये अभिषेक बैनर्जी का जो रेड आई था उससे बंगाल को राहत मिली है, तो लोग इसलिए अपने नाराजगी जता रहे हैं। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है, अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
0: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का। अनुपम, जिस तरीके से अब खुलकर, हालांकि निष्कासित हैं लेकिन नेता रहे, जिस तरह से खुलकर बोल रहे हैं वो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस वक्त टीएमसी की?
3: जी देखिए, टीएमसी अभी अपने दौर की बहुत बड़ी मुश्किल में है, इतना मैं आपको साफ कह सकता हूं, क्योंकि इस तरह की खुलकर बोलना ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। टीएमसी के विधायक लगातार खुल के बोल रहे हैं और जो खबर अंदर से आ रही है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त बागी हो चुके हैं, जो इस वक्त अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व किसी भी तरह मानने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि अब उनको मौका मिला है। दरअसल जब तक टीएमसी सत्ता में थी तब तक इन विधायकों को मौका ही नहीं मिल पा रहा था, और ये सच्ची बात है कि बहुत सारे ऐसे विधायक थे वो अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए उनको समय लेना पड़ता था, उनसे नॉर्मली मिल नहीं पाते थे। हम कई सारे विधायकों से हमारी बातचीत चल रही है, वो बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का सिक्योरिटी दायरा ऐसा था उन तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगता था, उनसे बात करने के लिए समय लगता था, लेकिन अब जब सत्ता जा चुकी है, जब सारी सुविधाएँ जा चुकी हैं, तब ये जो बागी लोग हैं ये मुखर हो रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी टूट होने की संभावना अब साफ दिख रही है। आप देखिए ना, परसों जो मीटिंग हुई ममता बनर्जी के घर में, 80 विधायक चुन के आए हैं, कम संख्या नहीं है, 294 में से 80 विधायक जीते हैं टीएमसी के, लेकिन 60 विधायक उस मीटिंग में हाजिर नहीं हुए। ये तीसरी मीटिंग थी, पहली मीटिंग में लगभग 9 विधायक नदारद थे, दूसरी मीटिंग में लगभग 30-35 विधायक नदारद थे, और ये तीसरी मीटिंग इसमें तो 60 विधायक ही गायब हो गए, सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि 50 से 60 विधायक तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जो नेतृत्व जो आदेश दे रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं। बाद में पार्टी को कहना पड़ा कि वो अपने इलाके में व्यस्त थे, नहीं आ पाए, लेकिन अरूप राय जो हावड़ा में वरिष्ठ हैं, उन विधायक मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं, मुझे कोई फोन ही नहीं कर रहा
0: है। अनुपम, आप हमारे साथ बने रहे। दरअसल पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी कलह छिड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी में लगातार उथल पुथल मची हुई है। इस बीच टीएमसी ने अपने दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद हुई जिसमें उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच इन्हीं दोनों टीएमसी विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को दी गई शिकायत के आधार पर की गई। इस मामले की वजह से ही ये पूरा जो सिचुएशन है, जो स्थिति, वो गंभीर होती जा रही है, क्योंकि अब इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को एक और समन भेजकर 8 जून को पेश होने को कह दिया है।
2: 19 तारीख पार्टी का मीटिंग में जब हम लोग दूसरी बार गए थे, वहां जब साइन किया गया था तो बोला गया था 19 तारीख मीटिंग है, मगर आप साइन कर रहे हैं, मगर डेट दीजिए 6 तारीख। अगर आप पूछेंगे आप तब क्यों नहीं बोले, इतना हिम्मत नहीं था। फिर जब साइन कर रहे थे तब देखे हम, मैं और संदीपन थोड़ा पीछे साइन किया था, मैंने बाद में, पहले बहुत लोग का साइन हो गया था। देखा ऐसे बहुत सारे नाम है जो लोग मीटिंग में नहीं है। अभिषेक बैनर्जी का ऑफिस के कुछ लोग खाता लेकर घूम रहे थे, तो वो लोग ने ये नाम सिग्नेचर वगैरह देखे, जो एमएलए है नहीं उन लोगों का नाम हुआ है।
4: इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के, उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के, उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आईन है उस आईन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश है।
0: आइए सुनते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं और साथ ही क्या जवाब दे रहे हैं टीएमसी के कुणाल बैनर्जी।
5: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है।
6: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट, वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी का अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में। स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
0: तो टीएमसी के नेता कुणाल घोष इसे एंटी पार्टी एक्टिविटी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता का। तापस, अगर ये मामला जिस तरह की शिकायत आ रही है वाकई में ऐसा निकलता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि ये सीधा वार है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के, उनके हस्ताक्षर का मामला है।
7: जी बिल्कुल, देखिए अगर हस्ताक्षर को लेकर इस तरह के आरोप सामने खड़े हो रहे हैं तो इसको लेकर जांच भी चल रही है। सीआईडी की क्यूडीबी टीम जो है, राइटिंग एक्सपर्ट की टीम है, 4 मेंबर का एसआईटी बनाया गया, वो इसकी छानबीन कर रहे हैं। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ऐसे हैंडराइटिंग नमूने जहां लोगों तकरीबन कई सारे विधायकों के जो हैंडराइटिंग के नमूने उसे कलेक्ट किया गया था, उसके साथ जो उनके ऑन रिकॉर्ड जो सिग्नेचर्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। तो ऐसे में किसने ये किया, अगर ये फर्जी सिग्नेचर रहा है तो किसने किया? अरूप राय जो एक वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने भी कल साफ कह दिया कि जो सीआईडी की तरफ से दिखाया गया था वो उनका सिग्नेचर नहीं था। तो उनका सिग्नेचर किसने किया, ब्लॉक लेटर्स में सिग्नेचर किसने किया? और क्योंकि ये लेटर पैड जो था वो अभिषेक बनर्जी का लेटर पैड था, और उस लेटर पैड से ही वो चिट्ठी भेजा गया था विधानसभा स्पीकर के पास। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसमें अभिषेक बनर्जी या किसी और का हाथ है कि जानबूझकर लोग विधानसभा स्पीकर को गुमराह करने की कोशिश की गई थी? क्या इतने सारे विधायक तैयार नहीं थे जो एलओपी उन्हें चुनने के लिए एकमत नहीं थे पार्टी के साथ? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन ये गंभीर आरोप है, क्योंकि अगर ये फॉर्जरी है सिग्नेचर की वो भी विधानसभा में, तो ये बहुत बड़ी एक साजिश के तहत जो संदीपन शाह और ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि लगातार कि इस तरीके की घटनाएं जो है पार्टी में नया नहीं है, पहले भी बहुत सारी चीजें,
0: बहुत बड़े आरोप हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब बात करते हैं ममता बनर्जी के सियासी मोर्चे की। चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरना देने की तैयारी में है, जिसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। टीएमसी ने पुलिस पर धरने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगा दिया है। ममता बैनर्जी ने कहा है कि वो अकेले सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगी। इसके साथ ही ममता बैनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं।
8: आमी कल के कमिटी के परमिशन दिए थी 7 दिन आगे। परमिशन माने पुलिस के इंफॉर्मेशन दी तो है दिए थी। आज के स्टेज करते गए बोले ना ना इखड़े कोड़ा जावे ना जस्ट एक धरना माने 100 जन लोग रास्ता बसे एक धरना दीते पारबे ना। पुलिस बोलछे ना ना एखान थेके मीटिंग शिफ्ट करुन आबार लिखुन कल के प्रोग्राम आज के कि करे मीटिंग शिफ्ट करबे दलेर प्रथम सारीर नेता लोकसभा যাকে আপনারা সারাক্ষণ গালাগালি দিয়ে বেড়ান দলের থার্ড লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি সেকেন্ড লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টির লিডার অব লোকসভা পার্লামেন্টে তাকে আপনারা যেভাবে অ্যাটাক করলেন যেভাবে মারলেন তার চোখ এখনো অক্ষত আছে কিনা আমরা জানি না। ডাক্তার ডাকা হয়েছে কারণ এখানে তো আবার হাসপাতালকেও বারণ করে দিয়েছেন যাতে কোনো হসপিটাল ট্রিটমেন্ট না করে। ওপিডিতে স্ক্যান করতে ভয় পাচ্ছে। এ কোন রাজত্বে আমরা এলাম? এটা কোন তুগলকি কাণ্ড চলছে? এটা কোন লঙ্কা কাণ্ড চলছে? লঙ্কা কাণ্ড তো হয়েছিল সীতামাকে উদ্ধার করার জন্য, আর আপনারা পুরো বাংলাটাকে লুম্পেনদের হাতে তুলে দিয়েছেন।
0: মমতা ব্যানার্জি কে ধরনে কো পুলিশ কি ইজাজত নহি মিলি তো সিয়াসি তনাতনি শুরু হো গই হ্যায়। টিএমসি কি ওর সে আরোপো কা আব দৌর ভি শুরু হো গয়া হ্যায়।
9: আমি ডেকোরেটর কা আদমি আয়া থা, ডেকোরেটর আমি ভি খড়া হুয়া হ্যায় বাত লেকে, ইধার বোল রহা হ্যায় পুলিশ ইধার অগ্রসর নহি রহেগো, পাঁচ বান্দে কে দে দেখে স্টেজ বানানে কে লিয়ে ও লোগ রুকাবট কর রহা হ্যায়, রুকাবট কর রহা হ্যায় যে হাম লোগ কো ইধার ওহি स्टेज बनाने नहीं देंगे।
10: अभिषेक के ऊपर उनका दल के कितने लोगों का गुस्सा है ये देखना चाहिए, इसको इंक्वायरी होना चाहिए, उनको इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए बताइए ना।
0: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का। अनुपम, स्टेज नहीं है, परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, क्या फिर भी विरोध प्रदर्शन करेंगी ममता बैनर्जी?
3: जी देखिए, ममता बनर्जी ने कल ही साफ कर दिया था कि परमिशन नहीं होने के बावजूद वो सड़कों पर उतरेंगी और वो घर से निकलेंगी, जो धरना स्थल है वहीं पर वो प्रोटेस्ट करेंगी। इस बीच अगर उनको रोका जाता है तो जहां पर उनको रोका जाएगा वहीं पर वो धरने पर बैठ जाएंगी, अगर धरना नहीं देने दिया जाता है तो वो सड़कों पर बैठ जाएंगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो वो गिरफ्तार हो जाएंगी। तो ममता बनर्जी ने कल ही साफ कर दिया है कि वो धरने पर आज जरूर बैठेंगी। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की भूमिका क्या होती है, क्या पुलिस उन्हें रोकती है या फिर उन्हें दूसरे किसी स्थल पर धरना करने की इजाजत दी जाती है। क्योंकि एक जो सुनने में आ रहा है कि पुलिस की ओर से कहा गया था कि आप रानी रासमनी एवेन्यू में न करकर पास ही में वाई चैनल है वहां पर कीजिए। कल जब मंच वगैरह जो लगाया गया था टीएमसी की ओर से, उसे पुलिस ने खोल दिया। तो ऐसे में उसके बाद ही ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि वो उसी जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगी, चाहे पुलिस उन्हें अनुमति दे या न दे।
0: जी अनुपम, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नजर रहेगी हमारी इस पूरे धरने प्रदर्शन पर। तो एक ओर ममता बैनर्जी अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने इस हमले को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर संग्राम और बढ़ सकता है।
11: कर्मेर फल तो अवश्य सबाई पावे, किन्तु एबार ओनारा जदि भोटे जीते आबार पुनराय आसतेन তাহলে ওনারা আমাদের বাঙালিদের কি আর বাঙালি থাকতে দিতেন না? এবং আমরা কত রক্তক্ষয় খরণ যে হতো সেটা ওনারা বুঝতেও পারছেন না। আর সোনারপুরের বাসিন্দাদের আমি ধন্যবাদ জানাই এই জন্যই যে উনি যে এখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে ওনার ত্বকের যত্ন নিতে পারছেন না, চুলের যত্ন নিতে পারছেন না, সেই জন্য সোনারপুরের বাসিন্দারা তার ত্বকের যত্ন, তার চুলের যত্ন, চুল যাতে সিল্কি হয় সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন, এর জন্য সোনারপুরের বাসিন্দাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই।
0: আর আব রুক করতে হ্যায় ইস ওয়াক্ত আ রহি বড়ি খবর কা। বঙ্গাল মে হিংসা থম নহি রহি হ্যায়। एक और नई तस्वीर अब उत्तरी 24 परगना से सामने आई है। वहां पटुलिया इलाके में टीएमसी पार्षद के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। नाराज लोगों ने पार्षद के घर में तोड़फोड़ भी की है। कार के शीशे भी तोड़ डाले हैं। देर तक मामला आउट ऑफ कंट्रोल यानी काबू के बाहर रहा। पुलिस ने टीएमसी नेता आशीष चक्रवर्ती को जबरन वसूली, अत्याचार और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान ये बवाल हुआ है। तब भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी वहां मौजूद थे, उसके बावजूद भी भीड़ ने घर पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतिक बैठक बुलाई है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता मिलने वाले हैं। आज और कल यानी कि 3 जून तक ये बैठक होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में सांगठनिक बदलाव को लेकर मंथन होने वाला है। पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, अहम बैठक है ये, क्या क्या हो सकता है इस बैठक में?
12: देखिए बिल्कुल ये अहम बैठक तो होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 राउंड की जो है वो बैठक हो चुकी है और अब पंकज चौधरी की जो टीम का स्वरूप है वो कैसा होगा, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आज संगठन की रूपरेखा क्या होगी उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले संगठन के अंदर, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, इसका ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ये कहा जाता है राजनीति के अंदर कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री की कुर्सी होकर जो है वो दिल्ली जाती है, तो इस चीज को भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी बहुत अच्छी तरीके से भलीभांति जानता है। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने समझा और अब उसके बाद जो टीम बनाने का है, नई टीम कैसी होगी, इसका स्वरूप कैसा होगा, ये सारी चीजें जो है एनालाइज करने के बाद जो है
0: जी मांझी, और इस मीटिंग पर रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश पर फोकस करने में जुटी हुई है तो दूसरी ओर कर्नाटक में नई सरकार को लेकर कांग्रेस का मंथन होने वाला है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता आज पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये मुलाकात सोमवार को होनी थी लेकिन अब ये आज होने जा रही है। महज एक दिन का समय बचा है जब डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बुधवार को डीके शिवकुमार के साथ कई मंत्रियों के भी शपथ लेने की उम्मीद है लेकिन अब तक नामों पर फैसला नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया आज दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिल रहे हैं ताकि मंत्री पद के दावेदारों पर फैसला लिया जा सके। साथ ही आज की बैठक में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी बात होने की उम्मीद है। अब तक डीके शिवकुमार की ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
13: एक नई टीम, नया लुक, परफॉर्मर्स, गो गेटर्स, एक्चुअली जो सरकार का के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों को उसमें लेने की बात हो रही है। इसीलिए जाहिर सी बात है जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है उनको सारा नॉलेज है कि सीएलपी में कौन काम करें कौन नहीं करें, कौन से मिनिस्टर्स का क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, उनको सब पता है। तो वो खुद भी आ रहे हैं, डीके शिवकुमार साहब भी आ रहे हैं, हमारे इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब यहाँ पे, जीएसओ वेणुगोपाल जी हैं, अध्यक्ष जी और एलओपी राहुल जी के साथ में बैठ के सारा डिस्कशन करेंगे।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
16: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
18: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
19: सोकुडो।
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
11: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हाकिमपुर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
5: उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे. प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. बिल में 10% अतिरिक्त सरचार्ज फिलहाल नहीं लगेगा. यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की निगाहें अब यूपीपीसीएल के जवाब पर टिकी हैं, जिसके बाद ही अतिरिक्त शुल्क को लेकर कोई फैसला हो सकता है. सुल्तानपुर में 96 घंटे से अंधेरा है. गांव वाले अंधेरे में हैं. आंधी तूफान के बाद पानी के लिए त्राहिमाम है. शोपीस बने हैं सूखे कुएं और खराब हैंडपंप. यूपी के जालौन में तूफान के बाद 96 घंटे से बिजली गुल है. पानी के लिए तरस रहे हैं गांव वाले. प्रदेश के कई इलाकों में मौसम से कहर बरप रहा है. पीलीभीत में बकरीद के दिन समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बकरे की कुर्बानी देने के आरोप में एसपी जिला महासचिव नफीस अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. जांच शुरू. यूपी एटीएस का दावा, जैश से जुड़े आरोपी शाहबाज सिद्दीकी के ने गुनाह कबूला है. पाकिस्तान से निर्देश मिलते ही फदाइन हमला करने को तैयार था. शाहबाज के मोबाइल से आतंकी चैट और ऑडियो बरामद. पुलवामा हमले का समर्थन और सर्जिकल स्ट्राइक्स के विरोध से जुड़ी सामग्री मिली. बगहा में अस्पताल की बदहाली पर भड़के मंत्री. औचक निरीक्षण में मिली गंदगी, बदहाल शौचालय और अवैध वसूली की शिकायत. लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवा घोटाले की आशंका. जांच में 2 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई. कैंसर मरीजों के नाम पर महंगे इंजेक्शनों की संदिग्ध खपत. केजीएमयू में बजट 10 लाख से बढ़कर 45 लाख रुपए पहुंचा. मरीजों के नाम पर बार बार महंगे इंजेक्शन दिखाए. संभल में 46 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को पुनर्वास की सौगात. संभल में 100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित. सूर्या हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा. बोले, हत्या पर चुप्पी और एनकाउंटर पर सवाल क्यों. काला हिरण फिल्म बना रहे यूपी के फिल्मकार को सलमान खान की लीगल टीम ने भेजा नोटिस. रिलीज रोकने की मांग. काला हिरण फिल्म की शूटिंग संभल और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई, जबकि इसके निर्माता आमिर जानी यूपी के हैं. काला हिरण विवाद पर आमिर जानी का पलटवार. नोटिस का मकसद डराना. कहा, ग्लैमर के आगे नहीं झुकेंगे. सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला काटकर हत्या. दोनों कान भी काटे. खून से लथपथ शव बेड पर मिला. हथियारों की तलाश में पुलिस की 6 टीमें जुटी. हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़. 1 बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार. फतेहपुर में प्रेम प्रसंग बना खूनी. साजिश की वजह यूट्यूब देखकर रचा मर्डर प्लान. पति पत्नी गिरफ्तार. यूपी के गोंडा में अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ी. घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा. हापुड़ में निर्माण कार्य में लापरवाही. यूपी के गोंडा में अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ी. घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा. हापुड़ में निर्माण कार्य में लापरवाही से युवक की मौत. 7 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की गई जान.
2: आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
5: और बात गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड की। वारदात के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इलाके में अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि गाजियाबाद पुलिस ने इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू कर दिया है। इसके तहत असामाजिक तत्वों को पहचान कर उन पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आखिर शुरू हुआ उस कत्ल की वारदात से जिसमें दोस्तों ने ही अपने दोस्त पर चाकू चला दिए। सूर्या नाम के एक लड़के के ऊपर उसके दोस्त असद ने वार किया जिसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। एनकाउंटर में असद की मौत हो गई है, लेकिन मामला गर्माता रहा। और पश्चिम बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर उत्तर प्रदेश में 2027 तक भी चलेगी? इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों को की दुर्गति रावण कंस जैसी होगी। फिर गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
6: कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है? जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
7: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
6: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
7: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
2: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
7: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
2: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
7: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
7: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है।
2: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
7: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
2: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
7: सबका साथ सबका विकास के

0: हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं। दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
1: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
0: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
1: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
2: गाजियाबाद में सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या और फिर पुलिस के एक्शन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का हमला बोला है वो अपराधियों को साफ संदेश माना जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि एनकाउंटर में मारे गए सूर्या के हत्यारे को लेकर उसके इलाके में लोगों ने क्या कहा। सूर्या के हत्यारे के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का माहौल कैसा है।
1: दोस्ती कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा।
0: गाजियाबाद में कुर्बानी दिखाने के नाम पर हुई हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ भड़क गए, असद जैसे नौजवानों के परिवारों को खबरदार कर रहे हैं।
1: अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति।
0: 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या उसके दोस्त असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद में कर दी। इस वारदात के 50 से 55 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया। असद के पिता के इस घर पर आगे बुलडोजर की कार्रवाई पर मुनादी होने लगी।
3: नायब तहसीलदार गाजियाबाद, आपके द्वारा काम थोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है, नोटिस निरस्त करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटा लें, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा।
0: असद का ये घर मौकाए वारदात से थोड़ी ही दूर है जहाँ सूर्या की हत्या हुई। इस वारदात के बाद जब असद का एनकाउंटर हो जाता है तो उसके पड़ोसी उसे जानने वाले कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, वारदात को लेकर क्या बताना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पहुंचते हैं जहां एनकाउंटर के समर्थन में एक राय नजर आती है।
4: जिसने भी करा है बहुत गलत करा है, भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो एनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश ही थे।
5: पुलिस की कार्रवाई किस तरह लगते हैं, मुठभेड़ की कार्रवाई
4: बहुत बढ़िया हुआ, ये बढ़िया गया है, जिनने भी करा ये कार्रवाई होगी बहुत बढ़िया करा
5: है। पुलिस का एनकाउंटर भी सामने आया
6: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर वो नहीं होता तो उसके हो सकता है बढ़ती, मतलब उसकी हौसले बुलंद होते उसके,
5: तो लगता है सही कार्रवाई प्रशासन को
6: बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ इस कार्रवाई
7: एनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं ऐसे ही कार्रवाई करें, ऐसा करिए, किसी की हिम्मत नहीं करेगी किसी का एनकाउंटर वो करने घटना कर दे, ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की।
0: असद के एनकाउंटर को लेकर खोड़ा इलाके में कोई विरोध नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खोड़ा इलाके के लोग मानते हैं कि असद के गुनाह की वजह से वर्षों के भाईचारे पर सवाल या निशान लग गया, जबकि इससे पहले दावा है खोड़ा में ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई।
7: बिल्कुल भाईचारा जी, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, आज तक 35 साल हो गए मुझे खोड़ा के अंदर, 55 से 5 साल का 44 साल।

0: मतलब आप
1: हम
0: क्या है?
1: लोग के बदनामी हो रही है। और इतना बढ़िया यहाँ पे भाईचारे बन के हम लोग रहते, जो भी आज तक ऐसा कोई हरकत हुआ नहीं। इसने जो करा है बहुत गलत करा है।
0: जो उसने हरकत करी असद में, वो भी ईद के दिन, अगर झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे। अगर दिक्कत थी उसे, उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है सबको, मतलब हो गई उससे। अगर उससे कोई दिक्कत थी तो हत्या नहीं करनी।
2: असद कुछ महीने पहले ही खोड़ा के इस घर में रहने आया था। पड़ोसियों का कहना है कि असद की हरकतें ठीक नहीं थी, जिसने ईद पर इस वारदात को अंजाम देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसीलिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी।
1: ये जो लड़का था गलत टाइप का था, उधमबाजी करता रहता था, नशे में रहता था, और जो सूर्या को बहाने से बुला के जो मारा है बहुत ज्यादा गलत है। गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोचा उसका तो एनकाउंटर हो गया, उसके जो साथ वाले पकड़े गए ना, उनके उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, और उनके घर पे भी लोग चलना चाहिए।
3: भाषा जो ज्यादा करेगा वैसे भरेगा। हमारे हिसाब से वो बच्चा मरा वो बहुत गलत मरा, और हमें उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ में खुशी बात की, इससे बच्चों को सीख मिलेगी। जो ये नई नई उम्र के लड़के हैं, जो सुबह शाम आवारा गर्दी करते फिरते हैं, दोस्त यारी में करते फिरते हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा सीख मिलेगी।
2: सूर्या की मां ने बेटे के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की थी। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। एनकाउंटर के बाद प्रशासन की टीम असद के पिता के घर पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चिपका दिया।
4: इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है, और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है, और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है, और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहाँ पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा।
2: सूर्या की हत्या के बाद पूरे इलाके में भले शांति हो लेकिन तनाव अब भी है। सूर्या के घर के बाहर उसकी फोटो लगाकर परिवार और पड़ोसी बैठे हैं। आसपास के लोग सूर्या को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लोगों के मन में अब भी गुस्सा भीतर ही भीतर धधक रहा है।
5: गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद अब पुलिस प्रशासन ने इलाके में अपराधियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। वहां ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इसके तहत असामाजिक तत्वों को पहचान कर उन पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी है।
6: ये गाजियाबाद का वही खोड़ा इलाका है जहां सूर्य प्रताप नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने 28 मई को खोड़ा इलाके में चाकू मारकर उसकी जान ले ली थी। अब उस खोड़ा को पुलिस अपराध मुक्त बनाने निकली है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है।
7: सब क्षेत्रों में जो अपराधी हैं उनके घर पे उनका सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कहीं पे अगर इनपुट है तो सबसे सर्च की कार्रवाई की जाएगी, एवं राजस्व की भी टीम है जो कि इन अपराधियों के रिकॉर्ड जिनके द्वारा कहीं कोई कब्जा तो नहीं किया गया है उन सब चीजों को वेरीफाई की।
6: ऑपरेशन क्लीन का आज दूसरा दिन है। 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा। बीजेपी कह रही है कि जिहादी मानसिकता वाले नहीं बचेंगे।
5: और अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। खबर आ रही है पंजाब के अमृतसर से, जहां ये कहा जा रहा है कि अमृतसर में स्कूल फीस बढ़ने के दबाव से परेशान 12वीं की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। खबर यह है कि जहरीला पदार्थ पिया है, जिसके बाद छात्रा की हालत बिगड़ने लगी। जब परिजन उसे अस्पताल ले गए हैं, इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त अमृतसर से, जहां ये बताया जा रहा है कि स्कूल फीस के चलते छात्रा ने आत्महत्या कथित तौर पर कर ली है। ये खबर इस वक्त अमृतसर से आ रही है। हमारे सहयोगी अमन इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमन, क्या पता चल रहा है इस पूरे मामले में?
8: देखिए, ये स्कूल है DDIS जो अमृतसर फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर स्थित है, और 17 वर्षीय अमन ज्योत थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई अस्पताल से कि उसने जहरीला पदार्थ निकला और अपनी जान ले ली। अस्पताल के जब वो जेरे इलाज थी, अस्पताल में थी, तो उसने वीडियो भी एक बनाया, जो वीडियो सामने आया कि स्कूल की ओर से जो प्रिंसिपल शबनम शर्मा और उनकी क्लास टीचर आकांक्षा शर्मा है, उन्होंने 11 मई को स्कूल बुलाया और 20,000 की फीस के दबाव के चलते उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया और इतना ज्यादा टॉर्चर उन्होंने सहा कि उन्होंने जान लेने की कोशिश की और जहरीला पदार्थ निकल लिया और उसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया और 31 मई को उनकी जान चली गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया है। एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस की प्रतिक्रिया सामने आई है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप देखिए सारा कुछ बाद में जब जान चली गई 17 वर्षीय अमनजोत की, उसके बाद सारा अमला हरकत में आ रहा है। लेकिन पहले ही ऐसे स्कूल्स पर शिक्षा क्रांति के नाम पर जो बड़े दावे हैं और जो निगरानी रखने की जरूरत थी वो नहीं रखी गई, एक की जान चली गई। और क्या 20,000 की फीस बढ़ाई गई थी या पेंडिंग थी, कितने समय से पेंडिंग थी और क्या क्राइटेरिया है जो एफिलेटेड स्कूल CBSE से है, तो अगर किसी की फीस पेंडिंग है तो इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा कि कोई अपनी जान ले लेगा। ये ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस अमनजोत के मामले ने पीछे छोड़ दिए और साथ साथ पंजाब सरकार हो, एजुकेशन सिस्टम हो।
5: जी अमन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि इस आत्महत्या के मामले में अब पंजाब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। एक बड़ा एक्शन इस वक्त पंजाब सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, यह खबर इस वक्त आ रही है, इस वक्त की ताजा खबर। दरअसल आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला अब दर्ज किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और आत्महत्या के लिए उकसाने यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला हो सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमन का। अमन, क्या जानकारी है इस बारे में, क्या एक्शन लिया जा रहा है अब सरकार की तरफ से?
8: कट गया था। हाँ जी
5: अमन, बताइए क्या एक्शन लिया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे ये टेक्नोलॉजी कंपनियों का खर्च घटा देगी और कर्मचारियों पर निर्भरता कम करेगी, लेकिन कुछ ही महीनों में तस्वीर बदलती दिख रही है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट और उबर जैसी दिग्गज कंपनियों को महसूस होने लगा है कि एआई इस्तेमाल करने का खर्च उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा है। ऐसे में कंपनियां अपनी योजनाओं में फेरबदल कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 6 महीने पहले हजारों कर्मचारियों को क्लाउड कोड इस्तेमाल करने की छूट दी थी। कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर एआई कोडिंग टूल्स इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन खर्च तेजी से बढ़ने के बाद कंपनी ने कई लाइसेंस बंद करने शुरू कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकेली कंपनी नहीं है, उबर ने भी माना है कि एआई टूल्स पर उसका पूरा 2026 का बजट साल के पहले 4 महीनों में ही खत्म हो गया। पहले कंपनियों ने कर्मचारियों को ज्यादा एआई इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब वो इसके बढ़ते खर्च से परेशान हैं। कंपनियों की बदलती रणनीति उस सोच पर सवाल खड़े कर रही है जिसमें माना जा रहा था कि एआई इंसानों से सस्ता साबित होगा। असल में एआई मॉडल्स हर सवाल, हर जवाब और हर प्रोसेस पर टोकन्स के हिसाब से पैसा लेते हैं। इस्तेमाल बढ़ने के साथ कंपनियों का खर्च भी तेजी से बढ़ता जाता है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2030 तक एजेंटिक एआई के इस्तेमाल से हर महीने 120 क्वाड्रिलियन टोकन्स तक की खपत हो सकती है। वहीं गार्टनर का कहना है कि 2030 तक एआई मॉडल्स चलाने की लागत 90% तक घट सकती है, लेकिन कंपनियों के कुल बिल कम नहीं होंगे। एजेंटिक एआई एक टास्क पूरा करने में सामान्य मॉडल से ज्यादा टोकन्स खर्च करता है और इस्तेमाल बढ़ने की रफ्तार टोकन की कीमत घटने से ज्यादा तेज हो सकती है। एनवीडिया ने माना है कि उनकी टीम में कंप्यूट कॉस्ट कर्मचारियों के खर्च से कहीं ज्यादा हो चुकी है। हेल्थ केयर से लेकर कोडिंग और कस्टमर सर्विस तक कंपनियां एआई एजेंट्स पर बड़ा दाम लगा रही हैं। एनवीडिया का कहना है कि भविष्य में हर कर्मचारी के साथ 100 एआई एजेंट्स काम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ते खर्च ने कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। एआई को लेकर दुनिया में जिस टेक रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, उसकी असली कीमत धीरे धीरे सामने आने लगी है। कंपनियां प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एआई पर पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन बढ़ता कंप्यूट बिल नई चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में वही कंपनियां ज्यादा फायदा उठा पाएंगी जो एआई इस्तेमाल और लागत के बीच सही संतुलन बना सके। आदित्य के राणा आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की शतक आज तक के साथ। नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, आरोपी शुभम खैर नारगे सीबीआई रिमांड 5 दिन बढ़ाए गए। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशे के बाद से 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सीबीआई का दावा है कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क के तह तक पहुंचना जरूरी है। 10 लाख में गैस पेपर खरीद और 15 लाख में बेचने का आरोप है। वित्तीय लेन देन की जांच जारी है, कई राज्यों तक इस नेटवर्क की पड़ताल। नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी पर कार्रवाई का दबाव है, नोटिस के बाद खुद अवैध निर्माण तोड़ा। बीड नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक नोटिस जारी होने के बाद उठाया गया यह कदम। नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि इस साल नहीं बदलेगा परीक्षा का मोड भी, और पेन पेपर ओएमआर मोड में ही परीक्षा होगी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को बड़ा झटका, नीट परीक्षा सीबीटी में करवाने की मांग अब नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया अंतरिम समय में बदलाव नहीं कर सकते। सीबीआई ने भी मार्क्स वेरिफिकेशन और रीएवेल्युएशन पोर्टल खोला है और छात्र अब आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने जारी किया वेरिफिकेशन री इवैल्यूएशन लिंक, छात्रों को वीडियो के जरिए जानकारी भी दी गई। सीबीएसई ओएसएम गड़बड़ी पर सांसद भी सख्त हैं, शिक्षा सचिव सीबीएसई चेयरमैन और सीईआरटी इनडीजी भी तलब किए गए।
0: अभिषेक बैनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता का धरना, रानी रश्मोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बैनर्जी को नहीं मिली धरने की इजाजत, मंच बनाने का सामान पुलिस ने हटाया। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा पर सियासी संग्राम, टीएमसी ने बीजेपी को लगाया सुनियोजित हमले का आरोप। अभिषेक और कल्याण बैनर्जी पर हमलों को लेकर टीएमसी का विरोध तेज, राज्य भर में प्रदर्शन। सुनारपुर हमले में 5 आरोपी गिरफ्तार, टीएमसी बोली विपक्ष को डराने की कोशिश। हमले को लेकर टीएमसी बीजेपी आमने सामने, ममता ने कल्याण बैनर्जी से मुलाकात कर साधा सरकार पर निशाना। ममता बैनर्जी के गंभीर आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार, धरने की अनुमति रोकने पर सरकार को घेरा। विपक्ष नेता पद के नामांकन पर घमासान, हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच में फिर तलब हुए अभिषेक बैनर्जी। टीएमसी बड़ा सियासी विवाद, संदीप अंसार ने हस्ताक्षर के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नामांकन पत्र विवाद पर सीआईडी की जांच तेज, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप पे दो नेता निष्कासित। डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ भैया दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस आला कमान के साथ कैबिनेट पर अहम बैठक।
1: कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर मंथन तेज, 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। कांग्रेस में पदों को लेकर हलचल भी, नई प्रदेशाध्यक्ष और कैबिनेट संतुलन पर भी चर्चा। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन जैसी बैठक, दावेदारों की सक्रियता बढ़ी, मंत्री बदलने की भी संभावना। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर भी मंथन, कांग्रेस को मजबूत नतीजों की उम्मीद है। दिल्ली के मेहरोली में बिल्डिंग गिरने के मामले में मालिक कर्मवीर गिरफ्तार, खैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, 6 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सैकड़ों सड़क जो है चौड़ीकरण के लिए, यहां 150 से ज्यादा घर जमींदोज किए गए। भोपाल में मित्र की मौत का सीन सीबीआई ने किया रिक्रिएट, पुतले की मां गिरीबाला ने फंदे की गांठ खोली। विशय शर्मा मौत मामले में गवाह नीरज दुबे का आरोप है कि समर सिंह के दोस्तों ने मारपीट की। प्रयागराज में कोचिंग सेंटर सील होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, डिजिटल लाइब्रेरी के सहारे तैयारियां जारी।
0: सूर्य हत्याकांड को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा, बोले हत्या पर चुप्पी और एनकाउंटर पर सवाल क्यों। संभल में 46 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को पुनर्वास की सौगात, संभल में 100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित। काला हिरण फिल्म पर कानूनी विवाद, सलमान खान की लीगल टीम ने भेजा नोटिस, रिलीज रोकने की मांग। काला हिरण फिल्म की शूटिंग संभल और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश कई शहरों में हुई, जबकि इसके निर्माता अमित जानी यूपी के हैं। काला हिरण विवाद पर अमित जानी का पलटवार, नोटिस का मकसद डराना, ग्लैमर के आगे नहीं झुकेंगे। यूपी एटीएस का दावा, जय से जुड़े आरोपी शहबाज सिद्दीकी ने कबूला, पाकिस्तान से देश मिलते ही फिदायीन हमला करने को था तैयार। शहबाज के मोबाइल से आतंकी चैट और ऑडियो बरामद, पुलवामा हमले का समर्थन और सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध से जुड़ी सामग्री मिली। बघा में अस्पताल की बदहाली पर भड़के मंत्री, औचक निरीक्षण में मिली गंदगी, बदहाल शौचालय और अवैध वसूली की शिकायत। लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवा घोटाले की आशंका, जांच में 2 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई। कैंसर मरीजों के नाम पर महंगे इंजेक्शन की संदिग्ध खपत, केजीएमयू में बजट 10 लाख से बढ़कर 45 लाख रुपए पहुंचा।
1: गुजरात के अहमदाबाद में अचानक बदला मौसम, आंधी के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के जैसलमेर में भी गर्मी से लोगों को राहत मिली, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पर्यटकों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। अनंतनाग जिले के डेडबल कापरान में खूबसूरत मौसम। खेड़ा में मौसम ने अचानक करवट बदली है और बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल भी हुई, जनजीवन प्रभावित हुआ। नवसारी और डांग जिले में तूफानी बारिश, कई जगहों पर पेड़ उखड़ कर भी गिर गए। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून के बिलों में 10% अतिरिक्त अधिभार पर रोक। बिजली बिल नहीं होगा महंगा फिलहाल, निगाहें यूपी पीसीएल के जवाब पर टिकी है, जिसके बाद यह तय होगा अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा या नहीं। सुल्तानपुर में 96 घंटे से अंधेरे में है ग्रामीण, आधा आंधी तूफान के चलते पानी के चलते त्राहिमाम है और शोपीस बन गए हैं सूखे कुएं और खराब हैंडपंप। यूपी के जालंधर में तूफान के चलते 96 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए गांव वाले तरस रहे हैं। बिलासपुर में पानी की किल्लत है, 120 करोड़ के दो बैराज अधूरे हैं, 5 साल के बाद भी काम पूरा नहीं।
0: रजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान का आज 11वां दिन, मंजाकोट सेक्टर के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी। कानपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार का प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। लुधियाना में मशीन टूल्स फैक्ट्री में गैस लीक से 3 की मौत, मामले की जांच जारी। दिल्ली के करतारनगर में गोलीबारी की घटना, गोली लगने से एक बच्चा घायल। सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला काटकर हत्या, दोनों कान काटे, खून से लथपथ शव बेड पर मिला। हत्यारों की तलाश में पुलिस की 6 टीमें जुटी। हापुड़ पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह, यूट्यूब देखकर रचा मर्डर प्लान, पति पत्नी गिरफ्तार। गोंडा में अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ी, घंटों चला ड्रामा। हापुड़ में निर्माण कार्य में लापरवाही से युवक की मौत, 7 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की गई जान।
1: सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला रेतकर हत्या, खून से लथपथ शव बेड पर मिला। सहारनपुर पुलिस के सामने चलते रहे लाठी डंडे, दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। पीलीभीत में बकरीद के दिन एसपी कार्यालय में बकरे की कुर्बानी करने का आरोप, जिला महासचिव नफीस अंसारी के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। बिलासपुर में सन के आशिक ने लड़की का हाथ मांगा और पिता के मना करने पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, वीडियो वायरल। अलवर में दर्दनाक हादसा, 11,000 केवी लाइन का तार गिर गया, बाइक सवार दो लोग जिंदा जलकर उनकी मौत। इंदौर के भेरू घाट पर नर्मदा की पाइपलाइन फूट गई, लाखों लीटर पानी बह गया। बैतूल में ट्रेन के सीट विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई, प्लेटफॉर्म पर उतारकर आरोपी को पीटा और उसके बाद फरार आरोपी। दिल्ली के न्यू उस्मान नगर में नाबालिग के चाकू मारकर हत्या, मामले की जांच जारी है। उत्तरकाशी में रहे सभी तरीके से महिला ट्रैकर गायब हो गए, 30 मई से लापता है, पुलिस राजस्व वन विभाग एसडीआरएफ जांच कर रहे हैं। पंजाब के मोहाली में किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरे।
0: भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत, सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला, देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े लड़ाकू विमान समझौते की तैयारी। फ्रांस लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में होगी 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद। समझौते के तहत भारत से बनेंगे 90 राफेल लड़ाकू विमान। गाजियाबाद में डीएम की सख्ती से भू माफियाओं पर प्रहार, बुजुर्ग महिला को मिला अपना आशियाना। उत्तरकाशी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तीर्थयात्रियों की मिली जुली प्रतिक्रिया, यमुनोत्री धाम के तीर्थपुरोहितों को पूजा कराने को लेकर आपसी विवाद के आरोप लगे। रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन के स्थापना दिवस में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, अधिकारियों ने लगाए पौधे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। जलगांव में महाराष्ट्र मंत्री गिरीश महाजन ने आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस का किया उद्घाटन, का स्वास्थ्य पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
1: इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का धमाल, एक्शन क्राइम और फैमिली ड्रामा का फुल डोज मिलेगा, रिलीज होगी गुल्लक, धुरंधर और मां बहन। तमिल सिनेमा के अभिनेता सूर्य के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी करुप्पू, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं मोहनलाल के दृश्यम 3, रिलीज के 12 दिन के बाद कमाई 100 करोड़ के क्लब में। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज नाक का ट्रेलर रिलीज, वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, अभिनेता अली फजल मुख्य भूमिका में। खतरों के खिलाड़ी 15 का पहला बीटीएस प्रोमो जारी। धमाकेदार एक्शन में रोहित शेट्टी। टीवी पर जल्द ही लौटने वाला है ये स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी। फिल्म वेलकम टू द जंगल का एक नया गाना ऊंचा लंबा कद रिलीज है। गाने में डांस करते हुए दिखाई दिया अक्षय कुमार, दिशा पाटनी। देओल परिवार में से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं दो नए स्टार। बॉबी देओल ने किया खुलासा। बॉबी देओल ने बताया कि एक्टर बनना चाहते हैं बेटे आर्यमन और धर्म। फिल्म बदली आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ के स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा की अब रिलीज डेट बदल गई है। 10 जुलाई की जगह 3 जुलाई को रिलीज हो गई। फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट से बहस की खबर पर बॉबी देओल ने भी चुप्पी तोड़ी और बोले कि खबर देखकर मैं खुद हैरान था। इस हफ्ते रिलीज होने वाली है 5 फिल्में। साउथ सुपरस्टार रामचरण के पेडी, वरुण धवन, मृणाल ठाकुर की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज होगी।
0: हिजबुल्ला ने अमेरिका की इस योजना को स्वीकार किया जिसके तहत वो इसराइल पर हमला रोक देगा। बदले में इसराइल लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला नहीं करेगा। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने समझौते की पुष्टि की लेकिन चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्ला हमले बंद नहीं करता है तो बेरूत पर हमले जारी रहेंगे। लेबनान के समर्थन में ईरान की राजधानी तेहरान प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने हिजबुल्ला के झंडे लहराए और लेबनानी लोगों के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा देश में यहूदी विरोधी भावनाएं सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, घृणा का मुकाबला करने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रोमानिया ने अपने देश पर हुए ड्रोन हमले का मुद्दा उठाया कहा रूस ने जानबूझकर गलाथी शहर के कंपार्टमेंट को निशाना बनाया। चिली के राष्ट्रपति जॉस एंटोनियो कास्ट ने पहली राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, श्रमिक संघों और छात्रों ने जमकर मचाया उत्पात। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप से ठीक पहले हिंसक प्रदर्शन, वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ 2013 में हिंसक प्रदर्शन दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा में ओपन एआई और सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा, कहा कंपनी ने जानबूझकर गंभीर जोखिम को छुपाया। बेलारूस की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी एरीना साबालेंका फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापानी प्लेयर नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से दी मात।

0: और अब खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां पर स्कूल फीस के दबाव से परेशान 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद छात्रा के परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मरने से पहले छात्रा ने स्कूल प्रशासन पर फीस के लिए मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाया। छात्रा ने वीडियो में कहा कि फीस के लिए स्कूल प्रिंसिपल उससे अलग कमरे में लेकर गई, इससे वो परेशान थी, उसने ये कदम इसीलिए उठाया। छात्रा ने भी कहा कि 11 मई को उसे स्कूल बुलाया गया था, जहां उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, उस क्लास के ग्रुप से भी हटा दिया गया। वीडियो में उसने कहा इसकी मौजूदा हालत के लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है। उसने मामले में न्याय की मांग करते हुए उसे इंसाफ मिलने की मांग की है। परिवार वालों के मुताबिक छात्रा को स्कूल फीस के करीब 20,000 रुपए बकाया थे। उसका आरोप है कि फीस जमा करवाने के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
1: 11 मई में स्कूल वाले से मुझे अलग रूम से बुलाया गया, तो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर भी था। सारे 11 महीनों में जो सारे क्लास के ग्रुप से रूम भी था, मैंने करके ही कर लिया। ये सिचुएशन आज मैं अपनी जिंदगी बहुत बदली जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं बचना ही नहीं बचना पा रही हूँ। मैंने इंसाफ जरूर मिलना चाहिए।
2: हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज जिस खबर पर हमारे साथ है, अमन ये तो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि पंजाब की आप सरकार तो स्कूलों की तस्वीर बदल देने वाली बात करती है, तमाम तरह के दावे होते हैं, और 12वीं की छात्रा की जान चली गई, क्या एक्शन लिया है पंजाब सरकार ने अभी तक?
3: देखिए, इस मामले में अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया है, और ये इस पे जो शिक्षा मंत्री है पंजाब के हरजोत बैंस, उन्होंने बयान भी दिया है। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब एक 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची की जान चली गई। अमजोत इसका नाम था, 17 वर्षीय, और DDIS स्कूल है ये फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर अमृतसर में। ये अपनी मासी सरबजीत के साथ रहती थी और पढ़ाई के लिए डेली स्कूल जाती थी, और हो सकता है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले जो पेंडेंसी होती है स्कूल फीस की वो 20,000 पेंडिंग थी। लेकिन 11 मई को स्कूल बुलाया गया, उसके बाद फोन के जरिए, मैसेजेस के जरिए, इस वीडियो में जैसा इसने अमजोत ने कहा है कि इस पर दबाव बनाया जा रहा था और लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, बुलाकर भी, फोन पर भी, मैसेजेस के जरिए भी। और आकांक्षा शर्मा नाम लिया है उसने कि क्लास टीचर है, शबनम शर्मा इस DDIS स्कूल की प्रिंसिपल है, एक प्राइवेट स्कूल है जो CBSE से एफिलेटेड है। इन्होंने दबाव बनाया और उसके चलते इसने जहरीला पदार्थ निगल लिया और उसके बाद अपनी जान दे दी, और अस्पताल में भर्ती भी थी लेकिन 1 से 2 दिन भर्ती होने के बाद जान चली गई। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है सिस्टम पर। जैसा आपने भी जिक्र किया कि पंजाब में बड़ा दावा किया जाता है कि शिक्षा क्रांति है, स्कूल ऑफ एमिनेंस है, और खासकर प्राइवेट स्कूल्स की एक शिकायत प्राइवेट स्कूल्स को लेकर रहती है कि अपनी मनमानी करते हैं, फीस के लिए दबाव बनाते हैं, और सरकार को बायपास कर कहीं ना कहीं इस तरीके का स्कूल के, चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों, उनको परेशान किया जाता है। और 4 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, आखिरी 8 महीने बचे हैं, लेकिन उसमें भी आकर अगर ऐसे केसेस सामने आए, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अब पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, जो इस परिजन है इस जिसकी जान गई बच्ची के, उसके बयान दर्ज किए हैं, और साथ साथ जो DDIS स्कूल है उनको भी बुलाकर उनके बयान और उनका पक्ष पुलिस की ओर से जाना जाएगा। लेकिन अबिटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज कर लिया गया है, और बड़ा सवाल पंजाब सरकार पर है कि क्यों ऐसे प्राइवेट स्कूल पर नकेल नहीं कसी गई, क्यों ध्यान नहीं रखा गया, और जब सब कुछ किया भी जा रहा है, एक्शन लेने की बात की भी जा रही है, वो तब जब एक बच्ची की 17 वर्षीय की जान चली गई। और ऐसे कई मामले हो सकते हैं जो दबे कुचले होंगे किसी ना किसी स्कूल्स में, लेकिन उनको भी देखने और सरकार के मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे केसेस जब किसी की जान चली जाती है या कोई विक्टिमाइज हो जाता है तब जाकर सामने आते हैं। राजीव,
0: इसके अलावा अमन, जिस तरीके से अब ये वीडियो प्रूफ है पुलिस के पास, जिसमें छात्रा ने बाकायदा नाम लिए हैं कुछ लोगों के, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन हुआ है?
3: देखिए, अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया है इसी वीडियो के आधार पर, और शिक्षा विभाग, जैसे हरजोत बैंस ने दावा भी किया है कि पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जान चली गई तो एक वीडियो जो एविडेंस है वो सबसे बड़ा एविडेंस होता है किसी भी कोई अगर अपनी जान ले ले या इस तरीके की घटना में, और उसी के चलते ये परिजनों के बयान दर्ज किए गए और वीडियो को एविडेंस मानकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन,
2: जो स्कूल है स्कूल का नाम भी बताएं, कौन सा वो स्कूल है, कितने रुपए की फीस के लिए वो परेशान कर रहा था, कितने समय पहले फीस दी गई थी और कितने समय हो गया था फीस दिए हुए, जरा वो भी बताएं कि मेंटल टॉर्चर करने लगे ये लोग।
3: देखिए, ये DDIS स्कूल है और ये फतेहगढ़ चूड़ियां अमृतसर से फतेहगढ़ चूड़ियां के रोड पर स्थित है, सीबीएसई से अफिलेटेड है और 20,000 की फीस बताई जा रही है जो पेंडिंग थी, जिसको लेकर दबाव था। तो हो सकता है, क्योंकि अगर नॉर्मल स्कूल में आप देखिए 3 से 4 महीने की फीस हो सकता है पेंडिंग हो, और टॉर्चर भी पिछले 1 से 2 महीने से लगातार किया जा रहा था, जिसके चलते 11 मई को स्कूल भी अमजोत को बुलाया गया और स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी निकाल दिया गया, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या स्कूल जाते हैं तो उनके लिए बड़ी समस्या एक तरीके से मानी जाती है, क्योंकि अगर आप स्कूल के ग्रुप से हटा दिए गए, स्कूल की फीस को लेकर आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, और वो भी तब जब गर्मियों की छुट्टियां हैं, क्योंकि 25 मई से गर्मियों की छुट्टियां पंजाब स्कूल्स में की गई थी, और आप देखिए कि अब 1 जून को आकर जो स्कूल का काम है या गर्मियों की छुट्टियों में जो असाइनमेंट्स थी, तो उसको लेकर भी एक बड़ा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे अगर फीस नहीं दिए तो क्या वो अपना होमवर्क करेंगे नहीं करेंगे, क्या स्कूल को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या
0: बड़ी खबर बता दें, पंजाब अमृतसर में छात्रा की आत्महत्या का मामला, जिससे पंजाब सरकार का एक्शन हुआ है। 17 साल की छात्रा की आत्महत्या के मामले में शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस ने एक्शन में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर जांच शुरू करवाई है। स्कूल प्रशासन और मामले से जुड़े हर दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है।
4: एक बड़ी मन भा की खबर, 17 साल की एक बच्ची ने सुसाइड किया है, जिस एलज करती है कि स्कूल ने उसको परेशान किया वक् वक् कारण करके, फीस ना भरन का होर कारण करके, उसनों बड़ा सीरीयसली लेंदे हुए असी बैटमेंट टू सुसाइड का जोड़ा है FIR दर्ज की, स्कूल अथॉरिटीज प्लस जो जो भी इन्वॉल्व होंगे उसके सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए।
2: सख्त लफ्ज है, उस पर काफी जो है दबाव दिया गया है, फोर बताया गया कि हम तो बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन भी लगातार जुड़े हैं, लेकिन अमन ये दर्शा रहे हैं कि मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, वो जिसको चाहे उसको परेशान कर रहे हैं, सरकार की अगर सख्ती होती एक्चुअल में तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती।
3: देखिए, कोई मिडल विंडो नहीं है, ये सबसे बड़ा खच्चा जाहिर किया जाता है, स्कूल हो कोई भी सरकारी सिस्टम हो, कि अगर कोई आम बच्चा या कोई पेरेंट भी अगर है उसको कोई शिकायत है किसी स्कूल से, वो कंप्लेंट कहाँ दर्ज करवाई भी जाती है, तो क्यों सरकार जब तक कोई बड़ा ऐसा कदम ना उठा ले या कोई बड़ा इस तरीके का केस सामने ना आए तब तक कार्रवाई की बात नहीं की जाती। आप देखिए 31 मई को इसकी जान गई और अब जाकर आ रहा है कि इस पर स्कूल पर एक्शन लिया जाएगा, मामला दर्ज किया जाएगा, तो स्कूल प्रशासन को लेकर एजुकेशन सिस्टम पहले कहां सोया हुआ था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या परिजनों की शिकायत के बाद भी लोकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, तो वो क्या कर रहे थे, वो क्या प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि हजारों की तादाद में प्राइवेट स्कूल्स हैं, और ऐसी खास करके सरकार हो जो शिक्षा क्रांति के लिए दावा करती हो, तो ऐसे में क्या कदम उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को लेकर पिछले 4 सालों में उठाए, अगर उठाए होते तो ऐसे केसेस सामने ना आते। और इसके अलावा दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो पिछले 4 साल में हुए, किसी को आवाजाही के लिए समस्या आई, किसी को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्या आई, कोई वेपन लेकर स्कूल में चला गया, किसी बच्चे के गोली मार दी, तो ऐसी चीजों को लेकर सरकार ने क्या किया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और प्राइवेट स्कूल्स की इन फीस की रेगुलराइजेशन को लेकर और कैसे हैंडल करना है, अगर 20,000 की फीस पेंडिंग थी तो सरकार ने क्या उस परिवार की मदद की, सरकार ने कोशिश नहीं की कि क्या बच्चे की फीस खुद सरकार दे सके या बीच में हेल्प आउट कर सके या स्कूल को डायरेक्शन दे सके, ऐसे कई सवाल हैं जो पेरेंट्स के मन में होंगे, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं है, क्योंकि 17 साल की बच्ची की जान चली गई और वो कारण था फीस। और ऐसे केसेस आप पिछले 15 से 20 सालों में देखिए कि लगातार ऐसे केसेस हैं, लेकिन कोई इसका पक्का हल निकालने की कोशिश पंजाब सरकार ने नहीं की है।
0: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बार फिर आपको बता दें कि अमृतसर की घटना, जहां पर छात्रा ने सुसाइड कर लिया और आत्महत्या की वजह बताई कि स्कूल उसे परेशान कर रहा था, फीस के चलते टॉर्चर कर रहा था, 20,000 रुपए फीस के बकाया था, जिसके चलते उसे बार बार मानसिक तौर पर प्रताड़ना दी जा रही थी, और इसी को लेकर अब छात्रा ने मरने से पहले जो वीडियो बनाया है उसे अब साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करके स्कूल पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और उन लोगों पर भी जिनका नाम छात्रा ने इस वीडियो में लिया है।
2: ये घटना एक बार फिर से दर्शा रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं कैसे गिद्ध की तरह उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर होती है, बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं उससे उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, और एक बच्चे की जान चली गई है, उसने खुदकुशी कर ली है और उसे मजबूर किया गया है, इंतजार कार्रवाई का ही रहेगा। अब रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
6: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
15: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था, दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: टीएमसी में बड़ा टूट का खतरा, कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में पार्टी से निकाले गए एमएलए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बड़ी बगावत के संकेत, बीजेपी बोली यहां कोई जगह नहीं।
1: पंजाब में स्कूल की मनमानी पर दिल दहला देने वाली खबर, अमृतसर में 12वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड, 20,000 के बकाया फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप।
0: कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल, ओएसएन केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच, सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग ने सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया।
1: भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल के लिए रिक्वेस्ट लेटर, मेक इन इंडिया के तहत 90 जहाज भारत में बनेंगे, 3.25 लाख करोड़ में फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी डील।
0: लेबनान अनले से नाराज होकर शांति वार्ता से फिर हटाए ईरान, होर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान, ट्रंप ने हिज़्बुल्लाह से की बात, नेतन्याहू को फटकारा, कहा क्या तुम पागल हो गए हो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: टीएमसी की चुनावी हार के बाद से ही पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज है, तमाम मुद्दों पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। इस बीच आज ममता बैनर्जी सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालने का ऐलान कर चुकी हैं, हालांकि पुलिस ने अब तक ममता बैनर्जी के धरने की इजाजत ही नहीं दी है।
1: उधर चुनावी हार का असर टीएमसी पर साफ दिख रहा है, कल ममता बैनर्जी की बुलाई गई बैठक में 60 विधायकों के न पहुंचने की खबर, यानी 80 में से 60 आए ही नहीं। उधर फर्जी हस्ताक्षर के मामले में एक्शन लेते हुए ममता बैनर्जी ने कल शाम 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ममता बैनर्जी के इस एक्शन के बाद से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है।
0: सूत्रों के मुताबिक कल निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क साधा, बीती रात ऋतव्रत बैनर्जी और संदीप अंसाह ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी ने इसके भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई।
1: तो पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान खूब बढ़ा हुआ है, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस में बगावत की अटकलें लग रही हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी प्रमुख ममता बैनर्जी के धरने को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है। ममता बैनर्जी का यह धरना अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी समेत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का विरोध है। इस बीच में नाराज टीएमसी विधायकों ने देर रात एक बैठक की है।
0: ममता बैनर्जी ने इस मोर्चे से पहले टीएमसी से निकाले गए 2 बागी विधायक अब पार्टी को तोड़ने में जुट गए हैं, अभिषेक बैनर्जी पर हमला बोलते हुए दूसरे विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, और खबर यह भी है कि देर रात तक बैठकों का दौर चला, माना जा रहा है कि आगे का घटनाक्रम टीएमसी की चिंता बढ़ा सकता है। तो यह हार के साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं, टीएमसी के अंदर कलेश है, अंदरूनी फूट की खबर है, और ये कहा जा रहा है कि देर रात एक बैठक बुलाई गई नाराज विधायकों के साथ।
3: ममता बैनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है, अभिषेक बैनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
4: टीएमसी के टिकट से चुनाव जीते ऋतव्रत बनर्जी को एक दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, भर भर कर दिल से गुबार निकाला और निशाने पर रहे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी।
3: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है, अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
4: ऋतव्रत बैनर्जी ने कई सवाल किए जो सीधे बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजे से जुड़े थे, इन सवालों के जरिए यह एहसास दिलाने की कोशिश कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है अभिषेक बैनर्जी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो इन हमलों के बीच सवाल ये है कि क्या बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बैनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बैनर्जी ही सबसे बड़े विलन बन गए हैं, अब स्थिति ये है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया, बीती रात ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि टीएमसी का दावा है कि दोनों विधायकों पर एक्शन पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर किया गया है और इसका टीएमसी के भविष्य पर कोई असर नहीं होगा।
5: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी का अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए। अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
4: लेकिन इन दावों के बीच पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी हुई है। कल ममता बनर्जी की बैठक में 60 विधायकों के ना पहुंचने को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। दरअसल बंगाल में 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली टीएमसी इस चुनाव में महज 80 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद से ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन नाराजगी चरम पर तब दिखी जब सोनारपुर में भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर ही हमला बोल दिया। भले ही टीएमसी इस हमले के बीच बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब खबरें टीएमसी के भीतर से आ रही हैं। उसे साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। हालात के बाद अब टीएमसी नए संकट काल से गुजर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
1: हमारे संवाददाता अनुपम भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुपम, जब टीएमसी के बड़े बड़े नेता ये कहने लगे कि आप टीएमसी के सिंबल पर जीते हो, ममता का फोटो दिखाकर जीते हो, तो यानी कि ये बात अब असंतोष और नाराजगी से बहुत आगे बढ़ चली है। क्या अब बड़ी प्लानिंग चल रही है टीएमसी के भीतर, जो 60 विधायक खासतौर पर जो नहीं गए थे और दो तो खैर बाहर निकाल दिए गए?
6: जी बिल्कुल, देखिए बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब छोटी मोटी दरार जैसी कोई बात नहीं है, एक बड़ी टूट फूट हो सकती है ऐसी भी संभावना नजर आ रही है, आशंका नजर आ रही है। क्योंकि जो बागी विधायक हैं, अब चूंकि कुणाल घोष की बातों से भी स्पष्ट हो जा रहा है कि ये बागी विधायक एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक दूसरे को फोन किया जा रहा है और एक अलग गुट बनाने की भी एक प्रक्रिया चल रही है, ऐसी भी अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो जो ममता बनर्जी के आवास पर 3 बार जो बैठक बुलाई गई, सबसे पहले बैठक 6 या 7 मई को बुलाई गई जहां 9 विधायक अनुपस्थित थे। इसके बाद दूसरी बैठक 19 तारीख को बुलाई गई जहां लगभग 30-35 जो विधायक हैं वो अनुपस्थित थे, और जो 2 दिन पहले ममता बनर्जी के आवास पर बैठक बुलाई गई उसमें 60 विधायक अनुपस्थित हो गए। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के सेकेंड इन कमान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो असंतोष है वो काफी बढ़ चुका है। अब एक ऐसा भी गुट तैयार हो गया है जो खुद को अलग करने की कोशिश में भी जुट गया है। तो ऐसे में कई सारी खबरें आ रही हैं, अटकलें काफी तेज चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या फिलहाल टीएमसी के लिए उभर कर सामने आ रही है। इसको टीएमसी कैसे एड्रेस करेगी ये अभी टीएमसी को खुद
0: हमारे साथ। इस बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी भी दागी टीएमसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ।
1: ये बड़ी खबर है, ये समीक भट्टाचार्य का बड़ा बयान है और एक संकेत भी है कि दरवाजे बंद हैं टीएमसी नेताओं के लिए, बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। हालांकि पहले लिए, लेकिन अभी जो इस समय बगावत जो फूट दिखाई दे रही है तो उसमें समीक भट्टाचार्य का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या है।
7: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इम्पोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं, जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
0: अनुपम मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, समीक भट्टाचार्य के इस बयान के बाद तो कम से कम ये लग रहा है कि जो नाराज और असंतोष विधायक हैं टीएमसी के, वो बीजेपी में तो नहीं जा सकते हैं, और बीजेपी इतने लार्ज नंबर से जीती है कि इसका इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है, तो क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाने की फिराक में?
6: जी देखिए, बीजेपी के पास नंबर्स काफी हैं, 208 विधायक हैं उनके पास, तो बहुत ज्यादा विधायकों को लेकर वो करेगी क्या, सबसे बड़ी बात यह है। और शमिक भट्टाचार्य ने इससे पहले भी कई बार कहा है कि अभी टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, तो ऐसे में अभी जो संभावना नजर आ रही है कि टीएमसी दो टुकड़ों में ना टूट जाए, जो नया गुट अभी कोशिश कर रहा है, जो अंदर से खबर आ रही है कि वो एक नया अलग गुट बनाने की, अलग पार्टी बनाने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे में इन सारी अटकलों पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, जो खबर है कि कुछ लोग जो बागी हो चुके हैं वो अलग होने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी जो है दो हिस्सों में टूट सकती है, ये संभावना, ये आशंका अभी ज्यादा बलवान हो रही है।
1: ठीक है अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। तो पश्चिम बंगाल में मेरी हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, पार्टी के नेता खुलकर असंतोष जता रहे हैं, पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ज्यादातर बोल रहे हैं और उनके निशाने पर हैं।
0: और हम लोग के बीच सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि बगावत का सुर बुलंद करने वाले नेताओं के निशाने पर अभिषेक बैनर्जी ही है? क्या अभिषेक की कार्यशैली बंगाल में टीएमसी की हार की वजह बनी?
8: कंप्लेन है, कंप्लेन जो टीएमसी का एमएलए ने किया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है।
9: यूं तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद से ही ये खबरें सामने आने लगी थी कि टीएमसी में सब ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन पहले ही सूबे की सियासत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पार्टी के अंदरूनी खींचतान से पर्दा पूरी तरह हटा दिया। मुद्दा फर्जी हस्ताक्षर का उठा, जांच की आंच अभिषेक बैनर्जी तक पहुंची, सीआईडी ने अभिषेक को दूसरा समन जारी किया और

0: दरअसल पिछले कुछ सालों में अभिषेक बनर्जी का कद पार्टी में तेजी से बढ़ा। इस दौरान उन्होंने कई पुराने नेताओं को किनारे किया। राजनीतिक अनुभव कम होने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे बढ़ाया, जिसे लेकर पहले भी नाराजगी की बातें सामने आई थी। और अब जब टीएमसी सत्ता से बाहर हो चुकी है तो इसका साइड इफेक्ट साफ दिखने लगा है।
1: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटरसाइड में जाना पड़ता था।
0: उधर पार्टी में खींचतान और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयानों को लेकर तो ममता बनर्जी का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीते दिनों अभिषेक पर हुए हमलों को लेकर ममता का गुस्सा भड़का हुआ है।
2: দলের প্রথম সারির নেতা লোকসভা যাকে আপনারা সারাক্ষণ গালাগালি দিয়ে বেড়ান, দলের থার্ড লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি, সেকেন্ড লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টির লিডার অব লোকসভা পার্লামেন্টে, তাকে আপনারা যেভাবে অ্যাটাক করলেন, যেভাবে মারলেন, তার চোখ এখনো অক্ষত আছে কিনা আমরা জানি না। ডাক্তার ডাকা হয়েছে, কারণ এখানে তো আবার হাসপাতালকেও বারণ করে দিয়েছেন যাতে কোনো হসপিটাল ট্রিটমেন্ট না করে, ওপিডিতে স্ক্যান করতে ভয় পাচ্ছে। এই কোন রাজত্বে আমরা এলাম?
0: টিএমসি মে খিচতান কে বাদ অভিষেক বনার্জি নিশানে পর আয়ে তো বিজেপি ভি হামলাবার হো গই। বিধায়ক রত্না দেবনাথ নে অভিষেক পর হামলে কো উনকি করনি কা নতিজা বতা দিয়া।
3: কর্মের ফল তো অবশ্যই সবাই পাবে, কিন্তু এবার ওনারা যদি ভোটে জিতে আবার পুনরায় আসতেন, তাহলে ওনারা আমাদের বাঙালিদের কি আর বাঙালি থাকতে দিতেন না? এবং আমরা কত রক্তক্ষয়ক্ষরণ যে হতো সেটা ওনারা বুঝতেও পারছেন না। আর সোনারপুরের বাসিন্দাদের আমি ধন্যবাদ জানাই এই জন্যই যে উনি যে এখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে ওনার ত্বকের যত্ন নিতে পারছেন না, চুলের যত্ন নিতে পারছেন না, সেই জন্য সোনারপুরের বাসিন্দারা তার ত্বকের যত্ন, তার চুলের যত্ন, চুল যাতে সিল্কি হয় সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন, এর জন্য সোনারপুরের বাসিন্দাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই।
0: চুনাবী হার কে বাদ টিএমসি মে হাহাকার মচা হ্যায়। पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी से ये मुश्किल और बढ़ती दिख रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? बंगाल में पिछले कुछ दिन से जारी घटनाक्रम से तो कम से कम ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं।
5: अब ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, पार्टी नेताओं के असंतोष भरे बयान सामने आ रहे हैं, जो टीएमसी की चुनौतियों के हर दिन बढ़ते हुए मुश्किलात को दर्शा रहा है।
0: जिस पश्चिम बंगाल के शासन सत्ता में एक महीने पहले तक ममता बनर्जी का आदेश ही सर्वोपरि था, अब वहां हालात ये है कि ममता के प्रस्तावित धरने को पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। घटनास्थल से टेंट हटा दिए गए और प्रशासन के इस कदम से नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया।
2: आमी कल के एक मीटिंग में परमिशन दिए थी 7 दिन आगे, परमिशन माने पुलिस के इन्फॉर्मेशन दी तो है दिए थी, आज के स्टेज करते गए बोले ना ना এখানে করা যাবে না, জাস্ট একটা ধর্ণা, মানে 100 জন লোক রাস্তাতেও বসে একটা ধর্ণা দিতে পারবে না। পুলিশ বলছে না না এখান থেকে মিটিং শিফট করুন, আবার লিখুন কালকে প্রোগ্রাম, আজকে কি করে মিটিং শিফট করবে?
0: हालांकि चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के लिए ये पहला झटका नहीं है। बंगाल में लगातार ऐसे एक्शन हो रहे हैं जो ममता के साथ पूरी पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 4 मई तक बंगाल की सत्ता की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी अब बड़ी परेशानी में घिरती दिख रही हैं। एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन हो रहा है, ऊपर से टीएमसी के नेताओं पर जनता का हिंसक रिएक्शन हो रहा है। इधर टीएमसी के सांसद आपस में ही संग्राम मचाए बैठे हैं और अब टीएमसी के नेताओं ने खुलेआम पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले तो टीएमसी के पंचायत से पार्लियामेंट तक स्तर के नेता इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे थे, अब हालत यह है कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठकों का बहिष्कार करने लगे हैं। यहां तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों के अटेंडेंस लगी तो

0: 10 एब्सेंट। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक एब्सेंट। 31 मई को बैठक बुलाई, अब 60 विधायक एब्सेंट। टीएमसी की झोली में कुल है ही 80, उनमें भी अब 60-60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
1: किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
0: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है। अगर जल्द इसे दूर नहीं किया गया तो पूरी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
2: बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने धरने को ममता बनर्जी पर हमला बोला है।
3: देखिए, प्रजातंत्र में अगर ममता को लोकतंत्र में कोई आस्था होती तो जो वेस्ट बंगाल में परिणाम आया है वो जिस तरह से वहाँ की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकारने का काम किया है तो ये परिणाम तो जनता के द्वारा दिया गया है। अब उस परिणाम के बाद आप देख रहे हैं कितना भी आक्रोश है जनता में, लोग चोर चोर कह रहे हैं, कट मनी जिस तरीके से करप्शन था यही मुद्दा ही था चुनाव में, लोगों ने वोट किया है अभिषेक बनर्जी के कट मनी पे, करप्शन पे। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस हर इलाके में क्लब बना करके और एक पैसा वसूलती थी तो उसके खिलाफ प्रचंड बहुमत से आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब उसके बाद अगर जनता कहीं कोई आक्रोश कर रहा है तो उसके बाद धरने पर बैठने की बात कर रही है, तो ये जनता के उस जनादेश को का अपमान कर रही है। और अब इंडी गठबंधन की बात कर रही है, कल तक उस इंडी गठबंधन को वो नहीं सोचती थी, तो अब उनको लगता है कि शायद उनको जनता ने जो परिणाम दे दिया है तो अब वो इस इंडी गठबंधन को एक ढाल बनाना चाहती। इंडी गठबंधन की एकता के लिए काम तो बाद में करेंगी, पहले उनके पार्टी के जो विधायक हैं अभी जो नव निर्वाचित हुए हैं वो उनके द्वारा जब बैठक बुलाई जा रही तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक उनकी बैठक में जा रहे हैं।
4: और आईपीएल में बेंगलुरु की जीत के बाद से विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ वृंदावन पहुंचे। उन्होंने यहां पर वृंदावन ब्रज के प्रमुख संत प्रेमानंद के आश्रम में जाकर आशीर्वाद लिया है। ये तस्वीरें सामने, इससे पहले भी विराट कोहली जाते रहे, एक बार फिर पहुंचे।
2: आईपीएल से पहले भी वो पहुंचे थे आशीर्वाद लेने, उनके गुरु हैं के साथ उनकी पत्नी अनुष्का भी मौजूद थी और अब जीत के बाद भी प्रेमानंद जी के दरबार वो पहुंचे हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। उसके बाद माथे पर टीका तिलक आप देख ही सकते हैं। दोनों मियां बीवी वृंदावन पहुंचे हैं।
4: तो आईपीएल में आरसीबी जीती है, विराट कोहली ने सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका हमेशा की तरह इस बार भी निभाई, फाइनल मैच में भी जीत के हीरो रहे और जीतने के बाद वो सीधा वृंदावन पहुंचे।
2: रुके यहां से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach in association with
6: Bharat ki apni electric sawari.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Hey, sports fans. TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
10: Swing and a foul out of play off to the left.
9: Big 12 Radio.
11: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
9: Talk Sport.
12: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
9: And more. Search sports to find the stations covering your team.
13: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले हैं वहां, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहां? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
14: आप देखे हैं उसका सर पर अटैक हुआ था, कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के उसका दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे बंगला में एक बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

महंगाई की मार से राहत मिलने का इंतजार कर रहे लोगों की नजर इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी पर टिकी है। घर की ईएमआई से लेकर बिजनेस की उधारी तक हर जेब पर असर डालने वाला फैसला 5 जून को आने वाला है। लेकिन इस बार कहानी केवल ब्याज दरों की नहीं है, इस बार तस्वीर में कमजोर रुपया, महंगा होता क्रूड ऑयल और मानसून की चिंता भी शामिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 जून के बीच होने जा रही है। बाजार और ज्यादातर एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन आने वाले संकेतों पर इस बार पैनी नजर रहेगी, क्योंकि महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में बदलाव की संभावना है। दरअसल पिछले करीब 100 दिनों से जारी पश्चिम एशिया संकट ने आर्थिक समीकरण बदल दिए हैं। क्रूड ऑयल की सप्लाई, शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर तो दबाव बढ़ ही गया है, साथ ही कंपनियों की लागत और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी दबाव में इजाफा हुआ है। इसी बीच मौसम भी आरबीआई की चिंता बढ़ा रहा है और आईएमडी के मुताबिक 2026 में सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका है। अल नीनो के असर से बारिश कम रहेगी, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है। इन चुनौतियों के बीच कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई अपने महंगाई अनुमान को बढ़ा सकता है और ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर सकता है। महंगाई के 7 रुपया भी आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस साल भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा कमजोर हुई है, जो एक दशक की सबसे खराब गिरावट मानी जा रही है। मई में रुपया एक वक्त तो 96.83 प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपए पर दबाव पड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई रुपए को संभालने के लिए दूसरे रास्ते अपनाएगा। इसमें फॉरेक्स मार्केट में दखल और लिक्विडिटी मैनेजमेंट जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। भारत के पास करीब 680 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद रिजर्व में करीब 47 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्तर पर बना हुआ है। बॉन्ड मार्केट भी आने वाले समय की चिंता दिखाने लगा है। सरकारी बॉन्ड यील्ड हाल के हफ्तों में ऊपर गई है, जिससे निवेशकों के बीच महंगाई को लेकर सतर्कता बढ़ी है। आरबीआई की पिछली रिपोर्ट में चालू कारोबारी साल के लिए 6.9% ग्रोथ और 4.6% महंगाई का अनुमान दिया गया था, लेकिन बदलते वैश्विक हालात के बीच इन आंकड़ों पर दोबारा नजर पड़ सकती है। 5 जून को रेपो रेट में बदलाव हो या ना हो, लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि आरबीआई आने वाले महीनों में महंगाई, रुपया और आर्थिक रफ्तार को लेकर क्या संकेत देता है, क्योंकि वही तय करेगा कि ईएमआई का बोझ कितना रहेगा और जेब पर दबाव कितना बढ़ेगा। आदित्य के राणा आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: टीएमसी पर बढ़ा टूट का खतरा, गए असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में है पार्टी से निकाले गए एमएलए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बड़ी बगावत के संकेत, बीजेपी बोली यहां कोई जगह नहीं। पंजाब में स्कूल की मनमानी पर दिल दहला देने वाली खबर, अमृतसर में 12वीं क्लास के छात्र ने किया सुसाइड, 20,000 की बकाया फीस के लिए मानसिक प्रताड़ना का आरोप। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री इवेल्युएशन पोर्टल, ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की अब होगी जांच, सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग के सचिव को संसदीय समिति ने किया तलब। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाने के बाद प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी साथ, हर बड़े टूर्नामेंट के मौके के बाद जाते हैं वृंदावन। लेबनान हमले से नाराज होकर शांति वार्ता से फिर हटा ईरान, होर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान, ट्रंप ने हिजबुल्ला से की बात, नेतन्याहू को फटकार, कहा क्या तुम पागल हो गए।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
2: Bharat ki apni electric.
0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं सिलसिले की, सबसे पहले आपको खबर देते हैं पंजाब के अमृतसर से, जहां स्कूल फीस के लिए इतना दबाव बनाया गया कि 12वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया, अपनी जान ही दे दी, खुदकुशी कर ली, सुसाइड किया है, और खुदकुशी करने से पहले छात्रा ने स्कूल प्रशासन पर फीस के लिए मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाया। छात्रा ने बकायदा वीडियो में कहा फीस के लिए स्कूल प्रिंसिपल उसे अलग कमरे में लेकर गई थी, परेशान किया गया था और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। छात्रा ने यह भी कहा कि 11 मई को उसे स्कूल बुलाया गया था, जहां पर काफी मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, उसे क्लास के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया।
3: स्कूल की जो प्रिंसिपल है शबनम शर्मा और आकांक्षा शर्मा जो क्लास टीचर हैं, इन दोनों ने दबाव बनाया, अलग कमरे में बुलाकर बार बार टॉर्चर किया जा रहा था फीस के लिए, और 11 मई से अब तक आकर फोन मैसेजेस के जरिए ग्रुप से हटाना, पढ़ाई को लेकर बड़ी असमंजस थी, जिसके चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया अमजोत ने, और 17 वर्षीय 12वीं में पढ़ने वाली अमजोत ने अपनी जान दे दी। और इस मामले में शिक्षा मंत्री जो हरजोत बैंस हैं, उन्होंने कहा है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि शिक्षा क्रांति का नाम लेकर और दावा करने वाली सरकार क्यों आत्महत्या के बाद ही हरकत में आई, क्यों पहले इन प्राइवेट स्कूल्स, चाहे वो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, अमृतसर के या और जगह के जो ये स्कूल्स हैं, क्यों उन पर निगरानी नहीं रखी जाती।
0: अब बात करते हैं भोपाल से ट्विशा मौत मिस्र की, जिसकी जांच चल रही है, सीबीआई ट्विशा की सास गिरीबाला और पति समर्थ को लेकर सीबीआई ऑफिस से भी निकल रहे हैं, आज दोनों की हिरासत खत्म हो रही है, दोनों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, इससे पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह इस खबर पर जुड़ गए, रविश पाल सिंह इस मामले में अब तक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कह रहे हैं, आज क्या क्या हो रहा है।
4: पहले समर्थ को हम दिखाते हैं, समर्थ यहाँ पे जा रहा है, समर्थ को सीबीआई टीम अपने साथ लेके रवाना हो रही है। समर्थ जी बताइए, आप क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, समर्थ कुछ बोलेंगे तो समर्थ है जिसको सीबीआई लेके गई है अंदर, और हमने सवाल पूछने की कोशिश की है फिर से, सामने आप तस्वीरों में देखिए कोर्ट रूम है जहाँ लेके जाया जा रहा है समर्थ गिरीबाला को, पुलिस सुरक्षा में लेके गया है, और 5 दिनों की रिमांड जो है आज पूरी हो रही है, दोपहर 2 बजे से पहले कोर्ट में पेश करना था दोनों को, और दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद और सीन रिक्रिएशन के बाद फिलहाल सीबीआई आज पहुंच गई है कोर्ट में, माना जा रहा है कि सीबीआई एजेंट की रिमांड आगे बढ़ाने को लेकर के कोर्ट से मांग कर सकती है।
0: जी रविश, सीबीआई से तो रिमांड, सीबीआई रिमांड बढ़ाने की आप बता रहे कि मांग करेंगे, लेकिन क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया गया, क्या उसमें कुछ विरोधाभासी दिखाई दिया अब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को?
4: देखिए ये बातें सीबीआई जो है आज कोर्ट को बताएगी, जो भी अगर विरोधाभास उन्हें दिखा होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि क्राइम सीन का इकलौता मकसद यही होता है कि जो बयान दिए हैं आरोपियों ने, क्या घटना वैसे ही हुबहू हुई थी, क्या उन्होंने त्विशा को जब फंदे से उतारा, उस बेल्ट को खोला, फिर फंदे से उतार के उसे नीचे लेके गए, उससे पहले उसे सीपीआर देने की कोशिशें हुई, तो वो तमाम चीजें कल सीबीआई ने सीन रिक्रिएशन के दौरान देखी है, उसे रिकॉर्ड भी किया है। इसके बाद अब सीबीआई जो उनके पास डिजिटल एविडेंस मौजूद है, जो बयान पुराने मौजूद हैं, जो एफआईआर की कॉपी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे वो पूरी टाइम फ्रेम को मैच किया जाएगा और उसके बाद सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कई चीजों को लेकर के अभी भी सवाल जो है वो अनुत्तर है, इसीलिए फिलहाल सीबीआई इनकी जो है रिमांड आज बढ़ाने की मांग कर सकती है।
0: बहुत शुक्रिया रविश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आज दिल्ली में डबल मर्डर की खबर से भी सनसनी फैल गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कल रात को कुछ ही घंटों में चाकूबाजी की दो वारदातें हुई, जिसमें दो मर्डर कर दिए गए, दो हत्या हुई। न्यू उस्मानपुर में 16 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई, तो चंद घंटों के बाद न्यू उस्मानपुर इलाके में ही भगत सिंह कॉलोनी में 26 साल के एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला।
5: दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में चाकूबाजी की दो वारदातों में दो लोगों की जान चली गई और दोनों वारदातें महज कुछ घंटों के अंतराल पर हुई। पहली वारदात 10:30 बजे के आसपास न्यू उस्मानपुर इलाके में उस वक्त हुई जब एक 16 साल के नाबालिग को उसके घर से बुलाकर 6 लोगों ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस अभी इस मामले में आरोपियों को ढूंढ ही रही थी, रेड कर ही रही थी कि खबर आई कि कुछ ही दूरी पर 26 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अब पुलिस ने एक अलग से टीम बनाई है ताकि दोनों मामलों में जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब बड़ी खबर आपको देते हैं। गोरेगांव महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक अवैध रूप से बनाए गए मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। इस अवैध मजार के खिलाफ एक्शन चल रहा है। हमारी संवाददाता विद्या भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और विद्या अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो जो एक्शन इस समय चल रहा है वो तस्वीरें दिखाएं।
6: जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं। ये दरअसल आरे का इलाका है, सरकारी जमीन है और यहाँ पर अवैध तरीके से जो एक दरगाह बनाई हुई थी उसके ऊपर ये अवैध एक्शन जो है एक्शन लिया जा रहा है, अवैध कार्रवाई के ऊपर। और इसकी वजह से आप देख लीजिए फिलहाल जेसीबी से लेके काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो दरगाह है उसको पूरी तरीके से डिमोलिश करके जमीन को वापस सरकारी जो इस्तेमाल के लिए इसको खोला जाएगा। लेकिन ये जो पूरा आरे का इलाका है, दरअसल डेयरी फार्म यानी कि डेयरी का आप देख लीजिए जो काफी सारे तबेले हैं यहाँ पे डेयरी प्रमोशन के लिए ये बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग तबेले के अलावा यहाँ पे जैसे ये बनाए गए हैं अवैध तरीके से, उसको डिमोलिश करने की पूरी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि दरगाह काफी पुरानी है, तकरीबन 20-30 साल से तो लोगों ने यहाँ पे देखी है, लेकिन धीरे धीरे ये दरगाह बढ़ा है अपने आप में और ये इसकी वजह से नजर में आ गया प्रशासन के और अब जाके ये थोड़ा कार्रवाई, इनको दरअसल नोटिस भी दिया गया था, इनको कहा गया था कि अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप खुद तोड़ दीजिए या फिर आप प्रूव करिए इसकी अवैधता, लेकिन ये लोग प्रूव नहीं कर पाए और उसके बाद इस तरह की थोड़ा कार्रवाई फिलहाल प्रशासन कर रही है।
0: जी विद्या बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 12:12 रिपोर्टर में बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता से भी बड़ी खबर आ रही है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने वाली है? क्या पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किए गए ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी के लिए एकनाथ शिंदे साबित होंगे? खबर है कि निष्कासित किए गए टीएमसी के दो विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने बीती रात कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों से मुलाकात की है। अब इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि टीएमसी के भीतर एक नया समूह आकार ले सकता है। विधायक हॉस्टल में उनसे मिलने पहुंचे पश्चिमी मिदनापुर के एक महिला विधायक, उसमें शामिल थी। ऋतव्रत और संदीपन से मिलने के कई विधायक भी पहुंचे और उनके मुताबिक हम पार्टी तोड़कर कोई अलग दल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम टीएमसी के झंडे तले ही काम करेंगे।
7: पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बगावत का सिलसिला जारी है। संदीपन साहा और ऋतुव्रत बैनर्जी, ये दो तृणमूल के नवनिर्वाचित विधायक, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन निलंबित होने के बाद भी, बावजूद वो ऐसे बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के विधायकों से मिले और सोमवार रात को, मतलब कल रात को एमएलए हॉस्टल में वो दिखे। उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे, कहा जा रहा है, बागी विधायक है जिनसे उनकी बातचीत हो रही है और एक प्लान बनाया जा रहा है ताकि तृणमूल कांग्रेस में एक फूट हो, एक दरार हो, एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है पार्टी के अंदर ही। तो सवाल इस वक्त ये है कि क्या ऋतुव्रत बैनर्जी, जो दूसरे एमएलए इसके साथ बात कर रहे हैं, और कुणाल घोष ने ये शंका भी जताई कि इस तरह का मीटिंग क्यों हो रहा है, सबको अपने विवेक से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो निर्दल विधायक के रूप में जीत के नहीं आए, ममता बनर्जी का सिंबल लेके वो जीत के आए, तो क्यों इस तरह का फोन कॉल्स और इस तरह का मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये शंका है कि तृणमूल टूट सकती है और सवाल इस वक्त ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर ऋतुव्रत बनर्जी बन सकते हैं एकनाथ शिंदे। कैमरा पर्सन ऑर्गो के साथ इंद्रजीत, आज तक कोलकाता।
0: ऋतुव्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अभिषेक पर पार्टी को हाईजैक करने का सीधा आरोप लगाया।
8: उलुवेरिया सरकार है कौन, उसका पैसा अभिषेक तक पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि जब बोले अभिषेक को, बोला दिखा जाएगा, लिख के दे दीजिए। क्या दिखा जाएगा, क्या लिख के दे दीजिए, बार बार बोले पार्टी के अंदर कोई बोल के कुछ फायदा नहीं है। अभी बंगाल के अंदर ये अभिषेक बनर्जी का जो रेड आई था, उससे बंगाल को राहत मिली है, तो लोग इसलिए अपने नाराजगी जता रहे हैं। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
0: इस बीच में बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के किसी बागी नेता का स्वागत हम तो नहीं करने वाले, बीजेपी का तृणमूलीकरण हम नहीं होने देंगे, यानी कि संकेत दरवाजे बंद रहेंगे।
9: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
0: जिस फर्जी सिग्नेचर कांड में कल टीएमसी ने अपने दो विधायकों संदीप बंसाहा और ऋतुव्रत बनर्जी को निष्कासित किया है, उसी मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फिर से समन भेजा है। अभिषेक बनर्जी को 8 जून को सीआईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने स्वास्थ्य संबंधित कारणों का हवाला देते हुए सीआईडी से पूछताछ में शामिल होने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था।
10: देखिए, पश्चिम बंगाल में यह हस्ताक्षर को लेकर जो विवाद छिड़ा है, इसमें एक के बाद एक नई पहलू सामने आ रहा है। कहीं ये बताया जा रहा है कि विधायक मौजूद नहीं थे लेकिन उनका सिग्नेचर है, कहीं पर सिग्नेचर है तो उनके साथ ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं करता। इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता बागी होते हुए नजर आ रहे। तो दूसरे छोर पर हमने देखा है कि संदीपन साहा और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जैसे लोग सामने आकर खुलकर बोलने लगे और उन्हें बाकायदा पार्टी से एक्सपेल किया गया, ये गया एक पहलू। तो दूसरे छोर पर अभिषेक बनर्जी को इसी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने बुलाया है और 8 जून का वक्त दिया गया है। अब देखना यह होगा कि वो अपने सेहत का हवाला देते हुए, वो पिछले सोमवार जाने से मना कर दिए थे, अब अगले 8 तारीख को वो पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उनको घेर कर है, क्योंकि उनकी ही चिट्ठी के बलबूते पर ये हस्ताक्षर किया गया था और उनके तरफ से इन विधायकों के हस्ताक्षर को विधानसभा के स्पीकर के सामने रखा गया था, उसके बाद ये धांधली सामने आई थी। अब देखना ये होगा, एक तरफ पार्टी के अंदर में लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी दिख रही है तो दूसरे छोर पर कानूनी तौर पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है।
0: कर्नाटक में कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार, यह भी बड़ी खबर आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जबरदस्त हलचल चल रही है, आलाकमान के साथ बैठक भी की जाएगी। अब क्या है इस बैठक का एजेंडा, बता रहे हैं आज तक संवाददाता राहुल गौतम।
10: कर्नाटका में नई कैबिनेट को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार के साथ साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कल यानी 3 जून को डी के शिव कुमार कर्नाटका के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उससे पहले वो दिल्ली में मौजूद हैं। उनके साथ में सिद्धारमैया, जिन्होंने इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं और ये तमाम लोग जाकर आलाकमान से मिलेंगे। और बताया जा रहा है कि 10 से 15 मंत्री पहले फेज के अंदर शपथ ले सकते हैं डीके शिव कुमार के साथ में, और फिर जो दूसरा फेज होगा वो राज्यसभा चुनावों के बाद होगा। ना सिर्फ मंत्रियों को लेकर फैसला होगा, बताया जा रहा है कि नए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी फैसला होगा। बताया जा रहा है कि इसके अंदर कई नामों को लेकर चर्चा जारी है, जिसमें सतीश जारकीहोली हैं, ईश्वर खांडे हैं, बी के हरि प्रसाद हैं और तमाम लोगों को पार्टी बात कर रही है, ताकि जो नया KPCC अध्यक्ष है उसका नाम तय किया जा सके। दरअसल अब तक डी के शिव कुमार KPCC अध्यक्ष थे, लेकिन क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो जाहिर है अब ये पद खाली होगा और अब इसके लिए नए व्यक्ति का चयन किया जाएगा।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब खबर बिहार से, जहां पर मदरसों को लेकर सम्राट चौधरी सरकार सख्त हो गई है। शिक्षा विभाग ने मदरसों को दिए जा रहे अनुदान की जांच के आदेश दिए हैं। सभी जिलों में शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जांच के लिए स्थानीय स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी, जो कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच भी करेगी।
11: बिहार की सम्राट सरकार ने मदरसों को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है। सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार जिन मदरसों को अनुदान देती है और उन मदरसों की अब फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग की जो त्रिस्तरीय समिति होती है, वो समिति भौतिक सत्यापन करेगी मदरसों का और ये देखेगी कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है या नहीं।
0: इधर लखनऊ के KGMU में दवा घोटाला हुआ और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक।
12: यूपी के सबसे बड़े अस्पताल KGMU में कैंसर दवा के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। हर मरीज को 1 महीने में एक ऐसी इंजेक्शन लगाई जाती है जिसकी कीमत 8 से 10 हजार है, लेकिन जो फाइलों में दर्ज है उसके मुताबिक एक मरीज को लगभग 8 से 10 इंजेक्शन दिए गए हैं और ये सब कुछ KGMU की फाइलों में दर्ज हो गया है। माना जा रहा है कि इसी कैंसर के इंजेक्शन के नाम पर करोड़ों के वारे नारे कर दिए गए हैं, यानी कि एक मरीज पर जो 8 से 10 हजार रुपये प्रति महीना होता है वो तकरीबन 80 हजार से 1 लाख दिखाया गया है और यही एक बड़ी ऐसी गड़बड़ी पकड़ी गई है। माना जा रहा है कि कैंसर के इंजेक्शन के नाम पर ये करोड़ों का घोटाला है।
0: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या हत्याकांड के बाद से अब पुलिस प्रशासन ने इलाके में अपराधियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इसके तहत असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है।
13: गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में सूर्या हत्याकांड के बाद अब गाजियाबाद पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। इलाके में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। आज क्लीन स्वीप का दूसरा दिन है। इसका मकसद इलाके में अपराधियों की पहचान करना, उनकी प्रॉपर्टी की पहचान करना, अवैध कब्जों की पहचान करना और उनको मुक्त कराना है। पहले दिन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे, ड्रोन से इलाके की निगरानी की गई, तमाम जो अपराधी हैं उनके घरों की तलाशी ली गई, उसके अलावा स्निफर डॉग की भी मदद ली गई। पूरे 3 दिन तक ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए एक एक अपराधी की पहचान की जाएगी।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब यूपी वासियों के लिए एक अच्छी खबर। बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने यूपी में प्रस्तावित 10% के अतिरिक्त बिजली टैरिफ वसूली पर रोक लगा दी है।
14: उत्तर प्रदेश में 3,73,00,000 विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन ने 10% फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जो भार उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं पर डाला था, इस पूरा मामला उत्तर प्रदेश के नियामक आयोग में गया, जो कि संवैधानिक संस्था है। इस पूरे सरचार्ज को पूरी तरीके से गैर कानूनी माना गया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन इसको किसी भी समय वापस ले सकता है। इस आदेश के बाद 3,73,00,000 उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बढ़ोतरी होने वाली थी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: अब आज CBSE के 12वीं परीक्षा की कॉपी के री एवेल्युएशन और नंबरों की दोबारा जांच की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। CBSE का री एवेल्युएशन पोर्टल कल से मेंटेनेंस मोड में था, जो कि अब शुरू हो गया है।
15: CBSE ने अपने छात्रों के लिए ऑन मार्क पोर्टल को आज से फिर से लाइव कर दिया है, यानी कि छात्र अब अपने वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन की एप्लीकेशंस को इस वेबसाइट के जरिए भर पाएंगे। लेकिन CBSE का ऑन स्क्रीन सिस्टम, मार्किंग सिस्टम विवादों के घेरे में लगातार रह रहा है। बीते दिनों में एथिकल हैकर्स और CBSE के अपने ही स्टूडेंट्स ने साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ऑन मार्क पोर्टल की जो खामियां थी उसको एक्सपोज कर दिया था, अथॉरिटीज को मेल करके इसकी जानकारी दी थी और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर स्क्रीनशॉट्स डालकर सरकार और CBSE के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, जिसके सहारे विपक्ष ने सरकार और CBSE दोनों पर हमला बोला था। अब CBSE का कहना है कि बीते दिनों में उसने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मदद लेकर और IITs से एक्सपर्ट्स की मदद लेकर इस पोर्टल को दुरुस्त कर लिया है, साइबर सिक्योरिटी एंगल को भी बेहतर कर दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने आज CBSE के चेयरपर्सन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भारत सरकार को तलब किया है बैठक के लिए, जिसमें CBSE के छात्र भी रहेंगे और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उनसे सवाल पूछेगी ऑन स्क्रीन सिस्टम में ग्लिचेस के बारे में।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप अगले रिपोर्टर मुंबई से महाराष्ट्र के लाडली बहन योजना में 80 लाख लाभार्थियों को हटाने पर विवाद छिड़ गया है, और पूरी खबर बता रहे हैं आज तक संवाददाता ऋत्विक भालेकर।
16: महाराष्ट्र की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना में EKYC और कड़े नियमों के बाद अब करीब 80 लाख लाभार्थियों की संख्या कम होते नजर आ रही है। अपात्र को हटाने के इस कड़े नियम के बाद कुल मिलाकर जो सक्रिय खाते थे उनमें भारी कमी दिख रही है और करीब 2.25 करोड़ तक ये सक्रिय खाते अब आके नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये संख्या कम हो रही है उसके बाद अब इस योजना के बजट पर भी इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। जिस योजना पर महाराष्ट्र सरकार 36 करोड़ खर्चा करता था वो अब सिर्फ 26 करोड़ तक आकर रुक गई है।
0: अब एक खबर बॉलीवुड की फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी को लेकर नया विवाद सामने आया। एक्टर सलमान खान ने फिल्म से जुड़े हुए लोगों को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में फिल्म के निर्माता निर्देशक से फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने, उससे जुड़े हुए पोस्टर्स और अन्य प्रचार सामग्री हटाने की मांग की गई है। कानूनी नोटिस में चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं होने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सलमान खान की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस पर फिल्म के निर्माता अमित जानी ने कहा कि सलमान फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस देकर अब धमकाने लगे हैं।
17: हमेशा चर्चाओं में रहने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी की नई फिल्म काला हिरण को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। अब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की टीम ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है और उस लीगल नोटिस में ये साफ कहा गया है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाएं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर फिल्म के जितने पोस्टर्स, फोटोज आदि जानकारियां हैं उन्हें हटाएं, वरना कानूनी कार्रवाई फिल्म निर्माताओं के खिलाफ की जाएगी। अमित जानी जो है वो इसका जवाब देते हुए कहते नजर आते हैं कि सलमान खान अपने ग्लैमर का फायदा उठाते हुए हम पर दबाव बना रहे हैं।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे आज से रात, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: और अब पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। पटना में नीट छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रहे एक छात्रा ने कंकड़बाग स्थित राधे कृष्ण हॉस्टल में सुसाइड कर लिया है। मृतका समस्तीपुर की रहने वाली है, श्रुति कुमारी नाम बताया जा रहा है। 2024 से ही हॉस्टल में रहकर श्रुति पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। ये पटना से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी के पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि छात्रा ने अपनी जान क्यों दी, लेकिन समस्तीपुर की रहने वाली ये छात्रा तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी। संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, क्यों खुदकुशी की छात्रा ने?
18: देखिए, पुलिस अभी तहकीकात कर रही है राजीव, लेकिन जिस तरह से एक तो नीट की परीक्षा को लेकर के एक विवाद और उसके बाद रीनीट का जो फैसला हुआ, कहीं ना कहीं उससे हो सकता है कि ये छात्रा प्रभावित हो। और जो जानकारी अब तक सामने आ रही है, 2024 से ये पटना के राधे कृष्ण गर्ल्स हॉस्टल है जो पत्रकार नगर थाना इलाका है उस इलाके में है, और वहीं पर ये रह करके छात्रा तैयारी कर रही थी नीट परीक्षा की। और अब आज सुबह उसी हॉस्टल के कुछ दूसरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ये जानकारी मिली, और उसके बाद जब देखा गया उसके कमरे में तो वो पंखे से झूलते हुए
0: बॉडी नजर आई है। खबर भी है शशि भूषण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 12:12 रिपोर्ट है, मैं रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: सीएम योगी का कुशीनगर का दौरा, जनसभा को किया संबोधित, विकास कार्यों का लोकार्पण, समाजवादी पार्टी को कहा जंगल पार्टी। लखनऊ में कल शाम को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी, कई अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सूर्या हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, गौहत्या पर चेताया, पीढ़ियां याद करेंगी। अयोध्या में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह का बड़ा दावा, 2027 में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार, विधानसभा चुनाव गोसाईगंज सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में जल्द चुनाव की अटकलों पर सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर ने दिया बयान, कहा कि एनडीए में कोई हताशा नहीं है, निराश तो समाजवादी पार्टी है। चंदौली में महिला सभा की अध्यक्ष गार्गी पटेल को मारपीट का मामला आया है सामने, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अस्पताल में मुलाकात की। सभा के प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर भी बड़ा हमला, कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के लोग दलित, शोषितों, वंचितों पर हमला कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर वार, कहा कि रविवार को मन की बात करेंगे और अगले दिन जनता की जेब पर बात करेंगे। सूर्या हत्याकांड को लेकर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा, बोले कि हत्या पर चुप्पी और एनकाउंटर पर सवाल आखिर क्यों। यूपी में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, बिल में 10% अतिरिक्त सरचार्ज फिलहाल नहीं लगेगा। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की निगाहें अब यूपीपीसीएल के जवाब पर टिकी है, जिसके बाद से अतिरिक्त शुल्क को लेकर कोई फैसला हो सकता है। सुल्तानपुर में 96 घंटे अंधेरे में गांव वाले हैं और आंधी तूफान के बाद से पानी को लेकर भी कोहराम है और शोपीस बने कुएं और हैंडपंप। यूपी के जालौन में तूफान के बाद 96 घंटे से बिजली गुल, गांव वाले तरस रहे हैं। पीलीभीत में बकरीद के दिन समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बकरी की कुर्बानी देने के आरोप में एसपी जिला महासचिव नफीस अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज, जांच शुरू। यूपी एटीएस का दावा, जैश से जुड़े हुए आरोपी शहबाज सिद्दीकी ने अपना गुनाह कबूल किया है, पाकिस्तान से मिले निर्देश और फिदायीन हमले का प्लान था। शहबाज के मोबाइल से आतंकी चैट ऑडियोस बरामद, पुलवामा हमले का समर्थन, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, इससे जुड़ी हुई सामग्री भी मिली। बगहा में अस्पताल की बदहाली को देखकर मंत्री भड़क गया, औचक निरीक्षण में गंदगी मिली, बदहाल शौचालय, अवैध वसूली की भी शिकायतें थी। लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों के दवा घोटाले की आशंका, जांच में 2 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। कैंसर मरीजों के नाम पर महंगे इंजेक्शन की संदिग्ध खपत, केजीएमयू के बजट 10 लाख से बढ़ाकर 45 लाख रुपए भी पहुंच गया, मरीजों के नाम पर बार बार महंगे इंजेक्शन दिखाए गए। संभल में 46 साल के बाद दंगा पीड़ित परिवार को पुनर्वास की सौगात, संभल में 100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। काला हिरण फिल्म बना रहे यूपी के फिल्मकार को सलमान खान की लीगल टीम ने भेजा नोटिस, रिलीज रोकने की भी मांग। काला हिरण फिल्म की शूटिंग संभल और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई, जबकि निर्माता अमित जानी यूपी के रहने वाले। काला हिरण विवाद पर अमित जानी का पलटवार, नोटिस का मकसद डराना है, ग्लैमर के आगे हम झुकेंगे नहीं कहा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ पहुंचे वृंदावन, संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। योगी का चुनावी यज्ञ, और अब सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। सीएम योगी ने कुशीनगर के कार्यक्रम में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी से माफिया और मच्छर दोनों को खत्म किया है। माफिया और
2: कोई व्यवस्था नहीं,
1: माफिया बेरोजगारी फैलाता था, मच्छर बीमार।
2: इस वीडियो में आपने देखा होगा, सरकार ने, जनता जनार्दन ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं, 90,000 गरीबों के लिए, 3,14,000 से अधिक गरीबों को लिए एक एक शौचालय बने। कोई अनुमान करता था ये बनेगा, लेकिन वह भी बन रहा है, वे भी बने हैं। कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? अरे आपके कुशीनगर में ही ये फाजिल नगर विधानसभा में तो मुझे कई बार आना पड़ा था, और कसियां विधानसभा में भी कई बार मैं आया था। जब भूख से मुसहरों की मौत होती थी तो मैं वहां पर हालचाल लेने के लिए जरूर आता था। भूख से मौत आज से 9 वर्ष पहले की सच्चाई कुशीनगर की थी। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था? कोई पर्व और त्यौहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया।
1: उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी राजनीति की राह साफ नजर आने लगी है। विपक्ष चाहे जो मुद्दे उठाए, मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी महासंग्राम में अपना रास्ता साफ कर रखा है। यूपी में बीजेपी की चुनावी राजनीति के लिए दो सबसे बड़े आधार तय किए गए हैं, जिनमें एक है सख्त कानून व्यवस्था और दूसरा है हिंदुत्व।
2: माफिया में तो साहस नहीं, किसी गुंडे में तो साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और पत्रों पैदा कर दे। माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
3: शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। परित्राण आय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम।
4: उत्तर प्रदेश के चुनावी हवन कुंड में सीएम योगी की आहुति के दो सबसे बड़े मंत्र हैं कानून व्यवस्था और हिंदुत्व, जिनके अनवरत जब से सत्ता के महासमर में बीजेपी को लगातार दो बार विजय का आशीष मिला है। और तीसरी बार चुनावी रणभूमि में उतरने से पहले सीएम योगी ने अपने आयुध तैयार कर लिए हैं, जिसमें सख्त कानून व्यवस्था की मिसाल पेश करने के लिए सीएम कभी वोट की ताकत से माफिया को मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं तो कभी दुष्ट के संहार के लिए शस्त्र उठाने की प्रेरणा देते हैं।
3: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
4: और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार सूबे में दुर्जनों का इंसाफ कर रही है, वो कहीं बुलडोजर की शक्ल में तो कहीं एनकाउंटर की शक्ल में नजर आता है। और यही मिसाल गाजियाबाद में बकरीद का न्योता देकर सूर्या चौहान की हत्या करने वाले कातिल के मामले में भी नजर आया, जब यूपी पुलिस ने सूर्या चौहान की हत्या के 72 घंटों के अंदर मुख्य आरोपी के एनकाउंटर से लेकर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और अब पूरी कॉलोनी में ऑपरेशन क्लीन स्वीप वाली बुलडोजर तैयारी कर रखी है, उसे यूपी सरकार और पुलिस के सुशासन मंत्र का साफ अंदाजा लगता है।
3: हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
4: सीएम योगी इन दिनों देश और समाज के अपराधियों को रावण कंस से लेकर खरदूषण तक के सर्व नामों से नवाज रहे हैं, उनके विनाश के लिए हिंसा पथ को भी अख्तियार करने से नहीं चूकने की बातें कह रहे हैं और उनकी ये बातें चुनिंदा मामलों में शासन प्रशासन की शैली में नजर भी आती है।
5: अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि एक सोच में बदलाव है,

0: थोड़ा सहमा हुआ है। इसी नवनीत विहार इलाके में बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या हुई थी। हत्या का मुख्य आरोपी असद तो मारा गया, लेकिन बाकी आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। लेकिन अब कानून का कहर उस घर और मोहल्ले पर टूटने वाला है जहां असद रहता था।
1: आपके द्वारा काम थोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70।
0: अब नवनीत विहार की ये गलियां सहमी हुई है। 15 दिन की मियाद के बाद चस्पा हुए ये नोटिस मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का न्योता है। ड्रोन कैमरे, स्निफर डॉग्स, निगरानी उपकरण, दर्जनों जवान अब इस मोहल्ले में हिस्ट्री शीटरों और बदमाशों के घरों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बाजारों में सन्नाटा है। कई व्यापारी सुरक्षा कारणों और तनावपूर्ण माहौल के चलते दुकानें खोलने से बच रहे हैं। अब 3 दिन तक इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर और डीसीपी धवल जायसवाल खुद इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं।
2: प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दशा में जो अपराधी तत्व है वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है, घाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे।
0: इस ऑपरेशन क्लीन के तहत अब पूरे इलाके भर में हिस्ट्री शीटरों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के घरों पर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस टीमों ने अलग अलग इलाकों में पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और उनके घरों की तलाशी ले रही है।
3: सब क्षेत्रों में जो अपराधी हैं उनके घर पे उनका सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कहीं पे अगर इनपुट है तो सबसे सर्च की कार्रवाई की जाएगी। एवं राजस्व की भी टीम है जो कि इन अपराधियों के रिकॉर्ड जिनके द्वारा कहीं कोई कब्जा तो नहीं किया गया है उन सब चीजों को वेरीफाई की।
0: उधर सूर्या चौहान की हत्या के बाद लगातार नेताओं और जनप्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ है। तरह तरह के धार्मिक और सामाजिक संगठनों से लेकर नेताओं तक की आवाजाही और मदद दी जा रही है। सूर्या चौहान के भाई को नौकरी की घोषणा हुई है। सूर्या चौहान के नाम पर सड़क बनाने का वादा हुआ है। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार को न्याय का वचन दिया है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हर संभव मदद की बात कही है। पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने 1,00,000 रुपए की मदद दी है। और फिर सूर्या की हत्या को लेकर ओपी राजभर जैसे नेता भी हैं, जो समाजवादी पार्टी पर अपराध में भी धर्म, जाति, मजहब की राजनीति का सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सूर्या के कातिलों पर कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों परेशान है। समाजवादी पार्टी सूर्या चौहान की हत्या पर खामोशी और एनकाउंटर पर मातम पुरसी क्यों कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। यूपी में पिछले वर्षों में हुए एनकाउंटर के आंकड़े लेकर आए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि साल 2024 में यूपी में किए गए 207 एनकाउंटरों के विश्लेषण में से 125 एनकाउंटर में पीडीएफ वर्ग के लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, अखिलेश का आरोप था कि एनकाउंटर करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स के 21 अधिकारियों में से केवल 2 अधिकारी ही पीडीएफ वर्ग से आते हैं और बुलडोजर एक्शन में भी 24 मामलों में से 22 पीड़ित पीडीएफ वर्ग के ही थे। हालांकि अपराध और अपराधी में धर्म और जाति गिन रहे अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि सूबे की पूरी आबादी में ही पीडीए की हिस्सेदारी 70% से अधिक है और उस लिहाज से अपराध के खिलाफ कार्रवाई में भी वही हिस्सेदारी नजर आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
4: और अब आपको दिखाते हैं कि कल गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में पुलिस के जांच पड़ताल के बाद हालात क्या है।
5: गाजियाबाद के खोड़ा की तस्वीर इन दिनों बदली बदली है। जगह जगह पर पुलिस मौजूद आपको नजर आएगी। सिर्फ गाजियाबाद की पुलिस नहीं बल्कि आसपास के जिलों की पुलिस भी इस वक्त खोड़ा इलाके में गश्त कर रही है। आप देखिए, ये जनपद मेरठ की पुलिस है, AHT, वहां की पुलिस यहां पर आई हुई है। यानी आसपास के तमाम इलाकों की पुलिस को यहां पर इस वक्त बुलाया गया है और बड़ी संख्या में हर चौराहे पर हर जगह आपको पुलिस नजर आएगी। दरअसल ऑपरेशन क्लीन स्वीप गाजियाबाद पुलिस के द्वारा खोड़ा में चलाया जा रहा है। जिनके खिलाफ भी कोई भी मामला दर्ज है उनके घर पुलिस पहुंच रही है। कहीं किसी ने हथियार तो नहीं जुटा रखा, क्या इन्वॉल्वमेंट है, उन सब की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर गाजियाबाद के खोड़ा के क्राइम को कंट्रोल किया जा सके।

0: सके, और जिस तरीके की सूर्या की दिन दहाड़े हत्या की गई, ऐसी वारदात दोबारा न होने पाए। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सियासत में सत्ता और विपक्ष के मुद्दे भी निकलते जाएंगे। आज विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की बात करता है, तो सरकार विकास, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दावे करती है, लेकिन वोटों की असली लड़ाई जिस पिच पर लड़ी जा रही है वो है हिंदुत्व, हिंदुत्व पर। और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज है वो क्लियर है कि यूपी में बीजेपी हिंदुत्व के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी, और इसकी तस्वीर साफ तौर पर नजर आती है जब यूपी के मुख्यमंत्री एक तरफ बिजनौर के मंच से 1645 विस्थापित पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को जमीन स्वामित्व का प्रमाण पत्र देती है, दूसरी ओर संभल में 1978 के दंगा पीड़ित पुनर्वास के लिए 100 वर्ग मीटर जमीन का एक पट्टा देने का फैसला किया जाता है। बिजनौर के कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों को जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपते हुए सीएम योगी यह बताना भी नहीं भूलते कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकारों ने तुष्टिकरण नहीं की होती तो पाकिस्तान से आए हिंदुओं का हक दे दिया गया होता और आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता, और इसी मंच से सीएम योगी वक्फ की जमीनों का ताना देना भी भूलते नहीं।
2: पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्त के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना यही होता है।
1: एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं, उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के सिलसिले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है, और कुशीनगर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम बदला जाएगा ये जानकारी दी है। फाजिल नगर का नाम अब पावागढ़ होगा, ये बड़ी खबर इस समय आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि फाजिल नगर का नाम बदला जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा पावागढ़। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व ब्रांड सियासत का टेम्पलेट बन चुके संभल में भी अब एक बड़ा फैसला किया गया है। जिस संभल में 2024 में हालात ये थे कि पुलिस के ऊपर गोलियां चलती थी, जिस संभल में दंगे की तारीख और कालिख से उसके वजूद की पहचान हुआ करती थी, आज वहां शासन प्रशासन का ऐसा डंडा चला है कि पुलिस की पहरेदारी से लेकर थानेदारी तक चुस्त है। अवैध कब्जों से जमीनें मुक्त कराई जा रहे हैं, अब उन जमीनों पर उन्हीं संभल के निवासियों को फिर से बसाने की कोशिशें हो रही हैं जो 1978 के दंगे में यहां से भागने को मजबूर हुए थे। संभल प्रशासन ने फैसला किया कि संभल में अवैध कब्रिस्तान के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन 1978 के उन दंगा पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा जो कभी संभल के बाशिंदे थे और दंगे में उन्हें पलायन करना पड़ा था। राम शरण दास सस्तोगी का परिवार वैसा ही एक पीड़ित परिवार था जिनकी 1978 में चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। संभल के शेरखां सराय इलाके के रहने वाले रस्तोगी परिवार को अब उसे संभल में पुनर्वास की तैयारियां की गई हैं।
3: हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी जमीन पर है जो कि इस वक्त शेरखां सराय इलाके में स्थित है, और आप यहां पर जो देख सकते हैं यही वो पूरी जमीन है जिसको यहां पर जो है बीते 10 महीने पहले प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तान की कब्रों को हटा करके जो यहां पर जो है कब्जा मुक्त जो है कराया गया था। इस जगह पर बनी हुई जो भी कब्रें थी या जो पूरा कब्रिस्तान था उसको फिलहाल जमींदोज कर दिया गया था, और आप यहां जो देखेंगे तो देखिए यही वो पीछे की जगह आपको यहां पर जो नज़र आएगी जहां पर ये पूरा कब्रिस्तान जो है बना हुआ था, और अगस्त 2025 में इस पूरे कब्रिस्तान को बुलडोजर के जरिए यहां पर जो ध्वस्त कर दिया गया था। और उसके बाद अब जब ये जमीन प्रशासन के कब्जे में आ चुकी है तो अब 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को इस जमीन का पट्टा दिया जाएगा। हवन पूजन होगा, पहले विधि विधान के साथ हवन पूजन किया जाएगा। उस हवन पूजन के बाद संभल के DM अंकित खंडेलवाल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी इस पूरी जमीन का यानी 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा उस दंगा पीड़ित परिवार को देने का काम करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो 1978 के इसी दंगा पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और संभल दंगे में जिस तरीके से उनके परिवार के व्यक्ति रामशरण दास रस्तोगी की नृशंस हत्या कर दी गई थी और उनके शव को तराजू से बांध करके कुएं में डाल दिया गया था, उस कहानी को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ उस परिवार से कहा था कि अगर आप कोई कागज लाएंगे तो हम संभल में उनका कब्जा वापस दिलाएंगे, जिसके बाद अब ये पहल संभल के प्रशासन ने की है और उसी दंगा पीड़ित परिवार को यानी जो संभल से पलायन कर चुका था अब उस परिवार को यहां पर बसाने के लिए तैयारी की जा रही है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
1: और एक ब्रेक का वक्त हो चला है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
6: Are you ready to move? With CME Federal Credit Union, you can start your home buying journey. Open an Ohio Homebuyer Plus account and earn 6.5% APY for up to 5 years. Ready to buy? Lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether your first home or next chapter, CME is here for the journey every step of the way. Learn more at cmefcu.org.
7: APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility and approval required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for additional details.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Truth.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
8: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in. for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
14: Sanitary Solutions.
15: Hexa.

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है। सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं। कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

सीएमसी पर बढ़ा टूट का खतरा, कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में पार्टी से निकाले गए एमएलए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बड़ी बगावत के संकेत, बीजेपी बोली यहां कोई जगह नहीं। यूपी के चुनावी संग्राम में कानून व्यवस्था होगा योगी का सबसे बड़ा एजेंडा, कुशीनगर में सीएम ने कहा माफिया और मच्छर को साफ कर देंगे, फाजिलनगर का नाम होगा पावागढ़। पंजाब में स्कूल की मनमानी पर दिलदराने वाली खबर, अमृतसर में 12वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड, 20,000 का बकाया फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री वैल्युएशन पोर्टल, ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की जांच होगी, सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग के सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी थी साथ, हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, आरोपी शुभम खेरना की सीबीआई रिमांड 5 दिन बढ़ी। राउज एवन्यू कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, सीबीआई का दावा पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक पहुंचना जरूरी। नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी पर कार्रवाई का दबाव, नोटिस के बाद खुद तोड़ा अवैध निर्माण। बीड नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक नोटिस जारी होने के बाद उठाया गया ये कदम। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर आरजेडी का केंद्र सरकार पर हमला, छात्रों की परेशानियों का उठाया मुद्दा। ईटीयूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बदलेगा परीक्षा का मोड, पेन पेपर ओएमआर बोर्ड में होगा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को झटका, नीट परीक्षा सीबीटी में कराने की मांग नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतिम समय में बदलाव नहीं। सीबीएसई ने खोला मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्युएशन पोर्टल, छात्र अब कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई ने जारी किया वेरिफिकेशन रीवैल्युएशन लिंक, छात्रों को वीडियो के जरिए दी जानकारी। सीबीएसई ओएसएम गड़बड़ी पर संसद सख्त, शिक्षा सचिव सीबीएसई चेयरमैन और सीआरटी इन डीजी तलब। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता का धरना, रानी रश्मोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बैनर्जी को नहीं मिले धरने की इजाजत, मंच बनाने का सामान हटाया गया। टीएमसी पर बीजेपी का हमला, समीर भट्टाचार्य बोले पार्टी में अंदरूनी कलह से, ध्यान भटकाने के लिए ममता बैनर्जी कर रही है प्रदर्शन। टीएमसी सरकार पर बीजेपी का तीखा वार, समीर भट्टाचार्य ने कहा जनता ममता को प्रदर्शन करने नहीं देगी, टीएमसी के खिलाफ है जनता। बैरकपुर कैंट इलाके में टीएमसी की ट्रेड यूनियन विंग ध्वस्त, सेना क्षेत्र से अवैध कब्जे को लेकर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों पर केएमसी नोटिस का विवाद, जवाब देने के बावजूद राहत नहीं मिलने पर कोर्ट का रोक। देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 8,750 फर्जी बेटिंग वेबसाइट एप्स पर कसा शिकंजा। अवैध बेटिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप और फर्जी यूआरएल्स को किया गया ब्लॉक, कई लोगों को क्रेडिट आधारित बेटिंग से हुआ भारी नुकसान। बेटिंग में लगाए गए पैसों की ट्रैकिंग और ऑपरेटर्स की पहचान के लिए तकनीकी जांच जारी। सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ राज की दलील पूरी, कल होगी अगली सुनवाई। सीएम योगी का कुशीनगर का दौरा, जनसभा को किया संबोधित, विकास कार्यों का लोकार्पण, समाजवादी पार्टी को कहा जंगल पार्टी। लखनऊ में कल शाम सीएम योगी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी बोले दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, गो हत्या पर भी जताया पीढ़ियां याद करेंगी, ऐसा अंजाम होगा। अयोध्या में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह का बड़ा दावा, 2027 से फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, विधानसभा चुनाव गोसाईगंज सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में जल चुनाव की अटकलों पर सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर का बयान, बोले एनडीए में कोई हताश नहीं। चंदौली महिला सभा की अध्यक्ष गार्गी पटेल से मारपीट का मामला, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अस्पताल में की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, का पूरे प्रदेश में बीजेपी के लोग कर रहे हैं दलित शोषितों और वंचितों पर हमला। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम को महंगाई मैन कहा, रविवार को मन की बात करेंगे, अगले दिन जनता की जेब की बात करेंगे। प्रयागराज में कोचिंग सेंटर सील होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, डिजिटल लाइब्रेरी के सहारे जारी है तैयारी। मदरसों की जांच पर आरजेडी प्रवक्ता का बयान, कहा मदरसों की जांच के नाम पर सरकार माहौल बनाने की कोशिश न करे। सूर्या हत्याकांड लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा, बोले हत्या पर चुप्पी और एनकाउंटर पर सवाल क्यों। संभल में 46 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार से पुनर्वास की सौगात, संभल में 100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित। काला हिरण फिल्म पर कानूनी विवाद, सलमान खान की लीगल टीम ने भेजा नोटिस, रिलीज रोकने की मांग। काला हिरण फिल्म की शूटिंग संभल और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश कई शहरों में, जबकि इसके निर्माता अमित जानी यूपी के। काला हिरण विवाद पर अमित जानी का पलटवार, नोटिस का मकसद डराना, ग्लैमर के आगे नहीं झुकेंगे। यूपी एटीएस का दावा, जय श्रीड़े आरोपी शाहबाज सिद्दीकी ने कबूला, पाकिस्तान से निर्देश मिलते फिदायीन हमला करने को था तैयार। शाहबाज के मोबाइल से आतंकी चैट और ऑडियो बरामद, पुलवामा हमले का समर्थन और सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध से जुड़ी सामग्री मिली। बगा में अस्पताल की बदहाली पर भड़के मंत्री, औचक निरीक्षण में मिली शौचालय में गंदगी, बदहाल और अवैध वसूली की शिकायत। लखनऊ केजीएमयू में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवा घोटाले की आशंका, जांच में 2 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई। कैंसर मरीजों के नाम पर महंगे इंजेक्शन की संदिग्ध खपत, केजीएमयू में बजट 10 लाख रुपए से बढ़कर 45 लाख रुपए पहुंचा, मरीजों के नाम पर बार बार महंगे इंजेक्शन दिखाए गए। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान के जैसलमेर में लोगों को गर्मी से मिली राहत, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। पर्यटकों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, अनंतनाग जिले का डेड बल का अपराध। केरला में मौसम ने ली करवट, बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल होने से जनजीवन प्रभावित।
नवसारी और डांग जिले में तूफानी बारिश, कई जगहों के पेड़ उखड़कर गिर गए। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून के बिलों में 10% अतिरिक्त अधिभार पर रोक। बिजली बिल नहीं होना महंगा, फिलहाल निगाहें यूपीपीसीएल के जवाब पर टिकी, जिसके बाद तय होगा कि अतिरिक्त शुल्क वसूला जाए या फिर नहीं। सुल्तानपुर में 96 घंटे अंधेरे में ग्रामीण, आंधी तूफान के बाद पानी के लिए त्राहिमाम, शोपीस बने सूखे कुएं और खराब हैंडपंप। यूपी के जलौन में तूफान के बाद 96 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए तरस रहे गांव। बिलासपुर में पानी की किल्लत, 120 करोड़ के 2 बैराज अधूरे, 5 साल बाद भी काम पूरा नहीं। मुंबई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरकत अली शाह बाबा दरगाह को ध्वस्त किया जा रहा है, बीजेपी भाजपा ने हटाने की मांग की थी। दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बिल्डिंग गिरने की खबर, 3 लोगों को मलबे से निकाला गया। दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। अमृतसर में स्कूल फीस के दबाव में परेशान 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, अस्पताल में तोड़ा दम। डीजल की बढ़ती कीमतों और खरीदारों की कमी से किसान भारी संकट में, फसल की लागत नहीं मिलने पर किसान तैयार फसल कर रहे नष्ट। चेन्नई में 23 साल की युवक की हत्या की, गांजा बिक्री का विरोध करने पर युवक को उतारा मौत के घाट। सुल्तानपुर के सामने चलते रहे लाठी डंडे, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। पीलीभीत में बकरीद के दिन एसपी कार्यालय में बकरी की कुर्बानी करने के आरोप में एसपी जिला महासचिव नफीस अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी। बिलासपुर में संकी आशिक ने लड़की का हाथ मांगा, पिता के मना करने पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी फुटेज वायरल। अलवर में दर्दनाक हादसा, 11,000 केवी लाइन का तार गिरा, बाइक सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। रजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान का 11वां दिन, मंजाकोट सेक्टर के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी। कानपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार ने किया प्रदर्शन। हरियाणा कुरुक्षेत्र नाबालिग रेप मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। लुधियाना में मशीन टूल्स फैक्ट्री में गैस लीक से 3 की मौत, मामले की जांच जारी। दिल्ली के करतार नगर में गोलीबारी की घटना, गोली लगने से 1 बच्चा घायल। सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी गला काटकर हत्या, दोनों कान काटे, खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा मिला। हत्यारों की तलाश में पुलिस की 6 टीमें जुटी। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह, यूट्यूब देखकर रचा मर्डर प्लान, पति पत्नी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। हापुड़ में निर्माण कार्य में लापरवाही से युवक की मौत, 7 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की गई जान। इंदौर के भेरू घाट पर फूटी नर्मदा की पाइपलाइन, लाखों लीटर पानी बहा। बैतूल में ट्रेन में सीट विवाद के बाद युवक की हत्या, प्लेटफॉर्म पर उतारकर पीटा, आरोपी फरार। दिल्ली में न्यूज कानपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, मामले की जांच जारी। उत्तरकाशी में रहस्यमयी तरीके से महिला ट्रैकर हुई गायब, 30 मई से लापता, पुलिस राजस्व वन विभाग एसडीआरएफ कर रहा है मामले की जांच। पंजाब के मोहाली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत, सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। गाजियाबाद में डीएम की सख्ती से भू माफियाओं पर प्रहार, बुजुर्ग महिला को मिला अपना आशियाना। उत्तरकाशी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तीर्थ यात्रियों को मिली जिली प्रतिक्रिया मिली, यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों पर पूजा कराने को लेकर आपसी विवाद के लगाया आरोप। उत्तराखंड रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन की स्थापना दिवस मनाया, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ ने स्थापना दिवस में शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। स्थापना दिवस के मौके पर अधिकारियों ने लगाए पौधे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में सीएम धामी ने अभ्यर्थियों का बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। कर्तव्य भवन में रक्षा मंत्री से मिले सीडीएस जनरल राजा सुब्रमण्यम, सैन्य समन्वय और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा। इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का धमाल, एक्शन क्राइम और फैमिली ड्रामा का मिलेगा फुल डोज, रिलीज होगी गुल्लक और फिल्म माँ बहन। अभिनेता सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी करप्पू, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करी है मोहनलाल की दृश्यम 3, रिलीज के 12 दिन बाद कमाई 100 करोड़ के करीब। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज राख का ट्रेलर लॉन्च, वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और अभिनेता अली फजल की मुख्य भूमिका। कदर के खिलाड़ी सीजन 15 का पहला बीटीएस प्रोमो जारी, धमाकेदार एक्शन में दिखे रोहित शेट्टी। हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका की उस योजना को स्वीकार किया जिसके तहत वो इसराइल पर हमला रोक देगा, बदले में इसराइल लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला नहीं करेगा।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समझौते की पुष्टि की लेकिन चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्ला हमले बंद नहीं करता है तो बेरूत पर हमले जारी रहेंगे। लेबनान के समर्थन में ईरान की राजधानी तेहरान प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा देश में यहूदी विरोधी भावनाएं सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रोमानिया में अपने देश पर हुए ड्रोन हमले का मुद्दा उठाया, कहा रूस में जानबूझकर गलाटी शहर के एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ते पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और श्रमिक संघों और छात्रों ने इस पर जमकर मचाया उत्पात। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप से ठीक पहले हिंसक प्रदर्शन, वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए शिक्षकों ने राजधानी के जोकालो चौक को किया जाम। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ 2013 में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने ओपन एआई और सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ दायर किया मुकदमा। बेलारूस की विश्व नंबर एक खिलाड़ी इरीना सांबालेंका फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जापानी प्लेयर नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से दी शिकस्त।

0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर विपक्ष और माफिया पर सीधा हमला बोला। कुशीनगर में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद सीएम योगी ने जनसभा में कहा कि हमने यूपी में माफिया और मच्छर दोनों को खत्म कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में माफिया बेरोजगारी और मच्छर बीमारी फैलाते थे, इन दोनों को प्रदेश से खत्म किया गया।
1: याद करिए, आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक। आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहन और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सेलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं।
0: वहीं कुशीनगर में सीएम योगी ने फाजिल नगर का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फाजिल नगर का नया नाम पावागढ़ होगा।
1: सरकार की विकास की एक सरकार की अपना एक विजन होता है, यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर, विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी का और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के उसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है, अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी।
0: और अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठने वाली हैं। चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ उनका यह धरना है। धरने की हालांकि पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन इसको लेकर सियासी बवाल तेज है। टीएमसी ने पुलिस पर धरने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले ही सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे। अनुपम मिश्र में से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, इजाजत नहीं मिली है तो अब ममता बनर्जी कहां प्रदर्शन करने वाली है, कहां धरना देंगी?
2: जी देखिए, सबसे पहले मैं वो जगह दिखाता हूं जहां पर टीएमसी का धरना प्रदर्शन होना था, रानी रासमणि एवेन्यू। यहां पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि यहां पर जो धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है, नहीं मिली है। ऐसे में ममता बनर्जी ने कल साफ कर दिया था कि वो अगर अनुमति नहीं मिली है तब भी वो इसी जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगी, चाहे उन्हें गिरफ्तार क्यों न कर लिया जाए। तो 2 बजे के आसपास ममता बनर्जी अपने घर से निकलेंगी। इस वक्त वहां कुणाल घोष, दोला सेन और मदन मित्र तीनों के साथ बैठक चल रही है। बैठक के बाद उम्मीद की जा रही कि ममता बनर्जी यहां पहुंचेंगी, लेकिन यहां पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती देखने को आ रही है। दूसरी ओर टीएमसी नेता कार्यकर्ता भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, नदारद हैं इस इलाके से। सिर्फ और सिर्फ फोर्स यहां पर दिख रही है, कोलकाता पुलिस के अधिकारी हैं, महिला जो पुलिसकर्मी हैं वो भी भारी संख्या में तैनात किए गए हैं, काफी संख्या में जो आला अधिकारी हैं वो भी यहां इस वक्त मौजूद हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी ममता बनर्जी जब यहां पहुंचती हैं तो फिर क्या होता है।
0: ठीक है, लौट रही है आपके पास। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी कई और विधायकों को संपर्क किया है। बीती रात ऋतव्रत बैनर्जी और संदीप अंसाहा ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई। कल टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि निष्कासित दोनों विधायक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने दक्षिण कोलकाता के एक होटल में कुछ विधायकों के साथ गुप्त बैठक की है, ये प्राइवेट मीटिंग हुई है उन असंतोषी विधायकों के साथ जो इस वक्त पार्टी से नाराज हैं। तो टीएमसी निष्कासित किए जाने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी भड़क गए, उन्होंने सीधे अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको।
3: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 16 तारीख 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
0: इस बीच बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के किसी बागी नेता का बीजेपी में स्वागत नहीं होगा, बीजेपी का तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे।
4: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
0: वक्त एक ब्रेक का उछला है, देखते रहिए। आज
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
12: What you got for me, Jack?
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free. Sokudo.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर
3: गया।
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
11: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
12: गिरिवाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है, और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की, और अब गिरिवाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिवाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

टीएमसी में बड़ा टूट का खतरा, कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में हैं पार्टी से निकाले गए एमएलए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, बड़ी बगावत के संकेत, बीजेपी बोली यहां कोई जगह नहीं है। यूपी के चुनावी संग्राम में कानून व्यवस्था होगी योगी का सबसे बड़ा एजेंडा, कुशीनगर में सीएम ने कहा माफिया और मच्छर को साफ कर देंगे, फाजिलनगर का नया नाम होगा पावागढ़। पंजाब में स्कूल की मनमानी पर दिल दहलाने वाली खबर, अमृतसर में 12वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड, 20,000 की बकाया फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री वैल्युएशन पोर्टल, ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच, सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग से सचिव को संजय समिति ने तलब किया। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी साथ, हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में बात आज शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हुई दो खबरों की होगी। अमृतसर में स्कूल फीस के लिए एक छात्रा को इतना टॉर्चर किया गया कि उसने जान दे दी। वहीं पटना के हॉस्टल में भी एक छात्रा की खुदकुशी की खबर सामने आ रही। शुरुआत अमृतसर से कर रहे हैं, जहां पर एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां पर फीस ना देने पर छात्रा को इतना प्रताड़ित किया गया, इस दबाव से परेशान होकर 12वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ करके पीकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले छात्रा ने स्कूल प्रशासन पर फीस के लिए मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया। छात्रा ने वीडियो में कहा कि फीस के लिए स्कूल प्रिंसिपल उसे अलग कमरे में लेकर गई, इससे वो परेशान थी और उसने ऐसा कदम उठाया है। छात्रा ने भी कहा कि 11 मई को उसे स्कूल बुलाया गया था, जहां उसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, उसे क्लास के ग्रुप से भी हटा दिया गया था।
1: 11 मई में स्कूल वाले से मैंने अलग रूम से बुलाया गया, तो बहुत ज्यादा मैंने टॉर्चर किया था। 11 मई में मेरे सारे क्लास के ग्रुप से रूम में टॉर्चर किया था।
0: अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, जिस तरीके से छात्रा बयान दे रही है, उसका बकायदा वीडियो है, अब इसी आधार पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है। जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक?
2: देखिए, उन पर ही ये मामला दर्ज किया गया है। और गगनदीप सिंह है जो एसीपी अमृतसर है, उनका भी बयान सामने आया कि धारा 108 बीएनएस की जो है अबेटमेंट टू सुसाइड की, उसके तहत प्रिंसिपल जो ये इस डीडीआईएस की स्कूल की प्रिंसिपल है वो और आकांक्षा शर्मा जो टीचर है, इन दोनों के ऊपर 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है और इनकी तलाश जारी है और इनको गिरफ्तार भी जल्द किया जाएगा। साथ साथ अपनी कंप्लेंट में जो रविंदर सिंह है, जो इस लड़की के पिता थे, उन्होंने भी ये लिखा है कि उसकी छवि पर, उसकी करेक्टर पर पर्सनल बयानबाजी की गई, टिप्पणियां की गई स्कूल की ओर से, जिससे वो आहत थी और 3 महीने से उसको परेशान किया जा रहा था। 10वीं और 11वीं का सर्टिफिकेट तक उस अमजोत को नहीं दिया गया, जिससे तंग आकर जब वो 11 मई को स्कूल गई, फिर 22 मई को अपनी माता के साथ स्कूल गई, तब भी उसको ना सर्टिफिकेट दिया गया। बाकायदा स्कूल की फीस को लेकर उसको तंग किया गया और इसी से तंग आकर उसने जहरीला पदार्थ निकला और अपनी जान दे दी। अस्पताल की वीडियो काफी कुछ बयां करती है, एक मुख्य एविडेंस है जिसको पुलिस ने इस केस फाइल में जोड़ा है। और साथ साथ जो मृतक की मां है, उसका भी बयान सामने आया है कि 22 मई को वो खुद अमजोत के साथ स्कूल गई थी, स्कूल स्टाफ को मनाने की, समझाने की कोशिश भी की कि आम गरीब परिवार की किस तरीके के हालात होते हैं, लेकिन ना तो सर्टिफिकेट दिया गया, ना फीस पर कोई सहमति बनी। उल्टा स्कूल का अब ये कहना है कि प्रिंसिपल की ओर से या टीचर्स की ओर से कोई ऐसा तंग परेशान या टॉर्चर नहीं किया गया। उनका कहना है कि 3 महीने से स्कूल में अमजोत नहीं आई और साथ साथ कोई भी टॉर्चर या मेंटली हरासमेंट नहीं की गई। और
0: अमन, जब इस छात्रा को इस तरह का प्रेशर फील हो रहा था, क्या उसने ये बात अपने माता पिता या किसी दोस्त या किसी अन्य टीचर को स्कूल में या फिर वहां के प्रिंसिपल से इस मामले में कोई शिकायत, अगर वो इतनी ही परेशान थी?
2: देखिए, माँ बाप को जरूर बताया, जो लड़की की मासी थी सरबजीत कौर, उसी के पास वो पढ़ाई के लिए रहती थी, उसको और अपनी माता को जरूर बताया कि अगर वॉशरूम भी जाना है तब भी टीचर्स की ओर से तंग परेशान किया जा रहा था। एक एक घंटा क्लासरूम के बाहर खड़ा किया जा रहा था, पनिशमेंट दी जा रही थी, फिर स्कूल के पर्सनल काम टीचर्स के और प्रिंसिपल के, स्टाफ के पर्सनल काम उनसे करवाए जा रहे थे पढ़ाई की बजाय, और टिप्पणियां पर्सनल की जा रही थी उसके करेक्टर को लेकर, जिससे वो काफ़ी परेशान थी दो से तीन महीनों से। और हर बात उसने अपनी माँ से शेयर करी। जो माता का बयान उसकी सामने आया भी है, उसमें वो सारा कुछ बयां किया जा रहा है कि लड़की काफ़ी परेशान थी और इससे पहले उसकी 98% मार्क्स भी आए थे, 5वीं से वो स्कूल में जब से जा रही है तब से उसकी परसेंटेज अच्छी रही है, पढ़ने वाली थी, आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन सब
0: सपने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पटना की, जहां की हॉस्टल में रह रही छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। जानकारी के मुताबिक 17 साल की छात्रा समस्तीपुर की रहने वाली थी और 2024 से हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। 10 दिन पहले वो अपने गाँव से लौटी थी, आज उसका शव हॉस्टल के कमरे से लटका पाया गया। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, कोई सुसाइड नोट, कोई जानकारी कि किस वजह से ये कदम उठाया गया?
3: देखिए नेहा, कोई सुसाइड नोट तो मिला नहीं है, लेकिन इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। ये राधा कृष्ण गर्ल्स हॉस्टल है जहां तीसरे तल्ले पे छात्रा रहती थी, उसके दूसरे रूम पार्टनर्स भी रहते थे। और थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई पटना के एसपी सदर जो हैं कुमार अभिनव, तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम एविडेंस कलेक्ट किए हैं और पुलिस जांच कर रही है। छात्रा के परिजन समस्तीपुर से निकल चुके हैं, तो थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे हो सकता है। लेकिन जो कहानी अब तक सामने आई है या जो जानकारी छन के निकल आ रही है, हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं छात्रा परेशान थी और संभव है कि उसने अपने साथ जो दूसरे रूममेट्स, दूसरे स्टूडेंट्स रहती हैं उनको ये बात शेयर किया था। किसी लड़के का एंगल भी सामने आ रहा है, हालांकि छात्रा नाबालिग है थी और 17 साल की उम्र थी, तो उस पर बहुत कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जांच कर रही है अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से, और यही वजह है कि अभी जो शुरुआती बयान होता है पुलिस की तरफ से वही दिया गया है। संभव है कि छात्रा किसी युवक को लेकर के परेशान हो, शायद उसको परेशान किया जा रहा हो, ऐसी भी चीजें आ सकती हैं आगे। लेकिन जो पहले जानकारी आई थी कि संभवतः नीट की तैयारी वो करती थी, तो वो बात कन्फर्म कि वो नीट की तैयारी नहीं कर रही थी, वो आर्ट्स कैंपस में उसका एडमिशन था और वो ऑनलाइन पढ़ाई और बाकी अपनी तैयारियां कर रही थी। संभव है कि वो लॉ की तैयारी कर रही थी, हालांकि परिजन जब आएंगे तो उनके बयान से चीजें साफ हो पाएंगी नेहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर पटना के अंदर जो अलग अलग जगहों पर घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर जो नीट छात्रा प्रकरण हुआ था चर्चित पटना के अंदर, उसके बाद सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी हॉस्टल्स को लेकर के कि तमाम हॉस्टल्स में उन सेंसिटिव जगहों पर जहां भी जरूरी हो वहां सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। हैरत की बात यह है कि सरकार ने आदेश जारी करके छोड़ दिया और हम जब यहाँ पहुंचे तो पहले तो हॉस्टल ओनर बात करने को तैयार नहीं थे और बाद की स्थिति ये बनी कि हमने देखा।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे भोपाल की त्विशा मौत मामले की। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद आज त्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है। इस दौरान गिरिबाला सिंह ने खुद अपनी पैरवी की। गिरिबाला ने गुस्से में कहा कि उन्होंने सीसीटीवी को लेकर कोई जानकारी नहीं है और ये भी आरोप लगाया कि त्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर हाईकोर्ट में उनके बेटे समर से मारपीट की। खबर यह भी कि सीबीआई ने कोर्ट से दोनों आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्या वजह है कि सीबीआई ने अब आगे रिमांड नहीं मांगी है?
4: देखिए, जहां तक लग रहा है कि सीबीआई ने रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ाने की मांग अभी तो नहीं की है, लेकिन कोर्ट में सीबीआई ने ये जरूर कहा है कि अभी आप इन्हें जुडिशियल रिमांड पे अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अगर हमें तफ्तीश के दौरान बीच में जरूरत पड़ेगी इनसे दोबारा पूछताछ की तो हम एक बार फिर से रिमांड मांगेंगे, ये सीबीआई ने साफ कर दिया है। लेकिन आज की तारीख में, आज फिलहाल 2 जून को सीबीआई ने त्विशा की जो सास है गिरिबाला सिंह और जो पति है उनकी कोई रिमांड नहीं मांगी है। माना जा रहा है कि अभी तक की जो जांच हुई है सीबीआई उससे कुछ और आगे की बात करना चाह रही है। बीच में भी सीबीआई को कुछ गवाहों के भी बयान लेने हैं, उन डॉक्टरों से भी बात करनी है जिन्होंने गिरिबाला जो त्विशा है उनको देखा था, अबॉर्शन की सलाह किसने की थी, एमपीटी कहां से हुआ था, और इसके अलावा मनोचिकित्सक से भी पूछताछ होनी है। तो अभी ये कुछ और एलिमेंट भी है इस जांच में, तो सीबीआई फिलहाल उन पर भी ध्यान लगा रही है, इसलिए सीबीआई ने आज इन दोनों की रिमांड तो कम से कम नहीं मांगी है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर जांच के दौरान हमें जरूरत पड़ेगी कि इनके बयान लेने हैं तो फिर हम इन्हें दोबारा पुलिस रिमांड पे मांगेंगे, और ये बात कोर्ट को आज कह दी गई। तो आप ये मान के चलिए कि आज कम से कम सीबीआई की हिरासत में तो ये दोनों नहीं जा रहे हैं, हो सकता है संभवतः कोर्ट आज इन्हें यहां से जेल भेज दे।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी मामले में सीबीआई ने आज त्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। सवाल उठा है क्या आखिर दोनों से पूछताछ में त्विशा केस को लेकर क्या क्या खुलासे हुए?
5: क्या त्विशा केस में सीबीआई के हाथ कोई अहम सुराग लगा है? क्या 5 दिनों की रिमांड में समर्थ और गिरिबाला ने त्विशा केस को लेकर कोई बड़ा खुलासा किया है? क्या त्विशा के परिवार वालों के आरोपों में वाकई सच्चाई है? क्या त्विशा की मौत की असल वजह जल्द सामने आ सकती है? ये सवाल दोनों आरोपियों की 5 दिनों की सीबीआई रिमांड के बाद उठ रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह और गिरिबाला ने त्विशा से मारपीट के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि त्विशा शर्मा से उनके संबंध सामान्य थे, दोनों ने परिवार में किसी गंभीर तनाव या विवाद की बात से भी इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ससुराल में सब कुछ सामान्य था, रिश्तों में तनाव नहीं था, तो आखिर ट्विशा शर्मा ने खुदकुशी जैसे कदम क्यों उठाया? सीबीआई की पूछताछ में समर्थ ने ट्विशा के ड्रग एडिक्ट होने की बात कही है। दावा है कि इसी वजह से ट्विशा के व्यवहार में अचानक बदलाव होता था। समर्थ सिंह और गिरिबाला दोनों ने ही उन आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। तमाम सवालों पर पूछताछ के बाद आज सीबीआई ने ट्विशा केस के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।
6: बाला सिंह और समर्थ सिंह को लेकर सीबीआई कोर्ट पहुंच गई है जहां पे उन्हें पेश किया जाएगा। ये समर्थ है, आप गाड़ी में देखिए, ये समर्थ आपको दिखाते हैं हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें। समर्थ सिंह गाड़ी के बीच में बैठे हुए हैं जिन्हें लेकर के सीबीआई कोर्ट में पहुंच गई है। रिमांड आज खत्म हो रही है और सीबीआई आज इनकी रिमांड मांग सकती है यहां पे। और ये समर्थ की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे फिलहाल समर्थ सिंह अंदर है और दूसरी गाड़ी में हम आपको दिखाते हैं गिरिबाला सिंह भी है। और यहां से अब पुलिस की सुरक्षा में फिलहाल समर्थ और गिरिबाला सिंह को लेकर जाया जा रहा है। वो देखिए सामने समर्थ तस्वीरों में आपको दिख जाएगा। मुझ पे लाओ, मुझ पे। ये आप देखिए पहले समर्थ को हम दिखाते हैं। समर्थ यहाँ पे जा रहा है, समर्थ को सीबीआई टीम अपने साथ लेके रवाना हो रही है। समर्थ बताइए आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आप, कुछ बोलेंगे? तो समर्थ है जिसको सीबीआई लेके गई है अंदर और हमने सवाल पूछने की कोशिश की है। फिर से सामने आप तस्वीरों में देखिए कोर्ट रूम है जहाँ लेके जाया जा रहा है समर्थ गिरिबाला को, पुलिस सुरक्षा में लेके गया।
5: ट्विशा मौत मामले की जांच के दौरान सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने शुरुआती जांच की दिशा ही बदल दी थी। सीबीआई हर पहलू की पड़ताल कर रही है ताकि ट्विशा केस का सच सामने आ सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीबीआई की टीम ने ट्विशा केस में पति समर सिंह और सास गिरिबाला सिंह से कई सवाल किए हैं। पता यह चला है कि शुरुआती जांच में सीबीआई को कई ऐसे सबूत मिले जो खुदकुशी की थ्योरी पर सवाल उठाने के लिए काफी है।
7: ट्विशा के घर वालों का सीधा आरोप है कि मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि दहेज के लिए हत्या का है। चूंकि ट्विशा शर्मा की सास जज रही हैं, लिहाजा अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके हत्या को खुदकुशी में बदल दिया। घर वालों के आरोपों को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जैसे ही मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की, सास गिरिबाला

0: लोगों को डरे लोग, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी। न्याय
1: वही मैं कह रहा था, शुरुआत में आपको ये रसूख का पूरा मामला लगा, उसमें दबके रह गया शुरुआत में,
0: इसी वजह से तो श्वेत संज्ञान लेना पड़ा सीबीआई साहब को, उनका धन्यवाद। अगर उनको ये ऐसा केस नहीं लगता तो उसको संज्ञान में नहीं ले।
2: त्रिशा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी समर्थ सिंह ने सीबीआई को बताया है कि त्रिशा की मौत के बाद वो दो दिनों तक भोपाल में ही रुका था। इसके बाद वो जबलपुर चला गया जहां उसने फरारी के बाकी दिन बिताए। समर्थ ने यह भी बताया कि वो 22 मई को अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था। अब सीबीआई की जांच का फोकस इस बात पर है कि फरारी के दौरान भोपाल और जबलपुर में समर्थ की मदद किस किस ने की है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे ठहरने, आने जाने या अन्य सुविधाएं किसने उपलब्ध कराई। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस पहलू पर समर्थ पूछताछ में ज्यादा खुलकर जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ त्रिशा केस से जुड़े डॉक्टर भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई बहुत जल्द मामले से जुड़े चिकित्सकों से पूछताछ कर सकती है। दरअसल त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने पहले दावा किया था कि त्रिशा ड्रग्स की आदी थी, उसका इलाज चल रहा था और घटना के दिन उसने ड्रग्स ली थी। ऐसे में सीबीआई संबंधित डॉक्टर और मनोचिकित्सक से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि गिरिबाला सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों और दिए गए बयानों में कितनी सच्चाई है। हालांकि त्रिशा के घर वालों का दावा है कि केस हत्या का है।
3: बड़ा कारण तो यह है कि केवल 5 महीने हुए हैं, एक शादीशुदा महिला है वो, और विद इन फाइव मंथ्स ऑफ मैरिज अगर किसी शादीशुदा महिला की ऐसी दर्दनाक मौत हो रही है तो इटसेल्फ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि गलत हुआ है। दूसरी चीज, हमारे पास त्रिशा और उनकी मदर की व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि दर्शाती हैं, जो कि पूरे न्यूज़ चैनल्स भी दिखा रहे हैं, अन्य न्यूज़ चैनल भी, जो कि दर्शाती है कि वो किस तरीके से उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी उस घर में, और इसके साथ भी और भी कई सबूत हैं।
2: इसी बीच पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है। त्रिशा केस में गवाह नीरज दुबे ने आरोप लगाया है कि समर सिंह के दोस्तों ने उसके साथ मारपीट की है। ये पूरी वारदात कैमरे में कैद है। आरोप के मुताबिक 30 मई को समर के दोस्तों ने गवाह नीरज दुबे पर हमला किया। हमले की वजह केस में नीरज की गवाही है। दरअसल नीरज गिरिवाला सिंह के घर के करीब पार्लर चलाता है।
4: का दोस्त है संदीप भट्टाचार्य, उसने हमें धमकी दी है कि तुझे जान से खत्म करवा देंगे, मार डालेंगे। वो मारा भी है, हमारे साथ मारपीट की है 30 तारीख को।
5: क्यों मारेंगे?
4: ये हम गवाह हैं इस केस में और साक्ष्यों में
5: गवाह हैं। अरे आप पुलिस के पास गए थे आवेदन लेके?
4: हाँ, पुलिस के पास। पुलिस
6: क्या कहा? पुलिस ने
4: हमें आश्वस्त किया कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और टीआई साहब हमें लेने आए, बचाने आए, हम इतने बैठे थे।
2: नीरज दुबे के मुताबिक वो त्रिशा शर्मा मामले में गवाह है। एसआईटी ने पंचनामा बनाया था, उसमें नीरज दुबे को गवाह बनाया गया है। नीरज का आरोप है कि समर्थ के दोस्त संदीप भट्टाचार्य ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। नीरज ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। त्रिशा के घर वाले पहले ही भोपाल पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठा चुके हैं। यही वजह है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अब देखना यही है कि सीबीआई त्रिशा की मौत मिस्ट्री से पर्दा कब उठाएगी।
7: सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या दोनों के बयानों और सीन रिक्रिएशन के बीच कोई विरोधाभास तो नहीं है, क्योंकि 2 जून को दोनों की सीबीआई कस्टडी भी खत्म हो रही है। ऐसे में सीबीआई अब कोर्ट के सामने अपनी मजबूत दलील रखने के लिए आज के इस सीन रिक्रिएशन को एक बेहद अहम कड़ी मान के चल रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
8: और एक दिन पहले ही सीबीआई ने त्रिशा मामले में रिक्रिएशन कराया। माना जा रहा है कि इससे भी जांच एजेंसी को काफी मदद मिली है।
2: त्रिशा शर्मा के साथ मौत से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? केस हत्या का है या फिर आत्महत्या का? केस की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई आज क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची। यहां पर सीबीआई की टीम है, पुतला है तो वैसा ही फंदा है जिससे त्रिशा की डेड बॉडी लटकती हुई मिली थी। सीबीआई ने त्रिशा केस को सुलझाने के लिए क्राइम सीन पर वारदात का पूरा रिक्रिएशन किया। सीबीआई ने पहले डमी पुतले को क्राइम सीन पर फंदे से लटका

0: लटकाया और फिर पुतले को फंदे से उतारा। दरअसल पूछताछ के दौरान पति समर्थ ने जांच टीम को बताया है कि उसने ही त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि सास गिरिबाला ने त्विशा के गले में बंधे फंदे की गांठ खोली थी। सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ की मौजूदगी में घटनाक्रम का पूरा रिक्रिएशन किया ताकि सास और पति के बयानों के हिसाब से घटनाक्रम की टाइमलाइन को परखा जा सके। सीबीआई ने रिक्रिएशन के लिए 80 किलो के दो पुतलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि त्विशा की लंबाई को लेकर घर वालों का दावा अलग है और ससुराल वालों का अलग, लिहाजा त्विशा के दो पुतले तैयार किए गए थे। करीब 3 घंटे तक चले रिक्रिएशन के दौरान सीबीआई ने त्विशा की सास और पति के बयानों के हिसाब से घटना की कड़ियां आपस में जोड़ी।
1: आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीबीआई जो है त्विशा शर्मा का जो ससुराल है गिरिवाला सिंह के घर पर तीसरे फ्लोर पर मौजूद है और वो क्राइम रिक्रिएशन किया जा रहा है कि त्विशा जो उस दिन 12 मई की रात में जो फंदा था उस पर जो झूली थी उस पर समर सिंह को भी साथ में लेकर सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है, उसी तरह से रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो त्विशा का जो डमी पुतला है उसको क्राइम रिक्रिएशन के तहत उसको फिर से चढ़ाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हर एंगल को देखा जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि उस दिन क्या रात में हुआ था, क्योंकि सीबीआई का जो दल है वो 5 सदस्यीय टीम जो दिल्ली से आई हुई है वो लगातार इसको जाँच कर रही।
0: त्विशा केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन का सबसे बड़ा मकसद सास गिरिबाला और पति समर्थ के बयानों की सच्चाई परखने के साथ साथ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करना है। दरअसल जब किसी वारदात पर किसी तरह का कोई शक होता है, यानी वारदात को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने होती हैं, तो जांच एजेंसी गुत्थी को सुलझाने के लिए क्राइम सीन पर उसी स्थिति को दोबारा नाट्य रूपांतरण के जरिए दोहराती है। मकसद होता है घटनाक्रम को समझना, वारदात की टाइमलाइन को मैच करना, यानी वारदात की शुरुआत से लेकर अंत तक चीजें किस क्रम में हुई थी। रिक्रिएशन से जांच टीम बयानों और गवाहियों की सच्चाई परखती है। यही नहीं, इस दौरान जांच टीम आरोपियों की मौजूदगी में क्रॉस वेरिफिकेशन भी करती है ताकि पता चल सके कि जो बयान दिए गए हैं वो क्राइम सीन के हालात से मेल खाते हैं या नहीं। इसी कड़ी में पुतले का इस्तेमाल किया जाता है। जांच टीम मौजूद साक्ष्यों और बयानों के आधार पर क्राइम सीन पर ये तय करती है कि वारदात कैसे हुई।
2: रिक्रिएशन के बाद अब गिरिबाला सिंह को उनके घर से सीबीआई की टीम लेकर जा रही है, समर्थ सिंह को आगे की गाड़ी में, जबकि पीछे गिरिबाला सिंह को बैठाया गया है। 12:11 से ये पूरा सीन रिक्रिएशन चला है। करीब 3 घंटे के सीन रिक्रिएशन के बाद अब सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर से निकली है। गिरिबाला सिंह का घर है जहां पर त्विशा ने आत्महत्या की थी, उसका शव यहां पर मिला था।
0: त्विशा केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई अब तक कई गवाहों का बयान दर्ज कर चुकी है, तो वहीं त्विशा के घर वालों से एक एक डिटेल जुटा चुकी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई का पूरा फोकस त्विशा की मौत के पीछे की असल वजह तक पहुंचना है।
3: हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर्षित जो है सीबीआई की जो टीम यहाँ पहुंची है मिलने के लिए, देखिए सीबीआई के अफसर हैं जो हर्षित जो त्विशा का परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे, और बातचीत त्विशा का पूरा परिवार जो है उनसे आज यहाँ पे किया जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है, अहम तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो पहुंच गई है त्विशा के परिवार से मिलने के लिए उस जगह पर जहाँ पे सीबीआई के जो अफसर है और साथ ही में जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए ये सीबीआई के अफसर है, महिला अफसर भी है, क्योंकि त्विशा के परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पे होगी। तो फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंच गई है त्विशा के परिवार से बात करने के लिए, और यहाँ पे पहले ही दिन एक्शन मोड में सीबीआई दिख रही है। पहले गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और फिर गिरिबाला सिंह के बाद अब सीबीआई पहुंच गई है त्विशा के परिवार से बातचीत करने के लिए, और पूरी की पूरी जो सीबीआई की टीम है वो अपने तमाम जो सबूत उनके पास मौजूद है, जो केस डायरी उनके पास है, जो एफआईआर है उसे देखते हुए फिलहाल अब सीबीआई की टीम यहां पहुंच गई है, और साथ ही में लोकल पुलिस भी है जो लगातार सीबीआई की टीम के साथ बनी हुई है।
4: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
9: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
11: उन्नीस तारीख पार्टी का मीटिंग में जब हम लोग दूसरी बार गए थे वहां जब साइन किया गया था तो बोला गया था 19 तारीख मीटिंग है मगर आप साइन कर रहे हैं मगर डेट दीजिए 6 तारीख अगर आप पूछेंगे आप तब क्यों नहीं बोले इतना हिम्मत नहीं था फिर जब साइन कर रहे थे तब देखिए हम मैं और संदीपन थोड़ा पीछे साइन किया था मैंने बाद में पहले बहुत लोग का साइन हो गया था देखा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग मीटिंग में नहीं हैं अभिषेक बैनर्जी का ऑफिस के कुछ लोग खाता लेकर घूम रहे थे तो वो लोग ने ये नाम सिग्नेचर वगैरह देखे जो MLA है नहीं उन लोगों का नाम हुआ है
12: इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए ऐसा विधानसभा के जो आईन है उस आईन को नहीं मानते हुए करना इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है हम लोग बहुत खुश है
13: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है
12: हम लोग बहुत खुश है
13: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले है वहां कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहां वहां तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं कानून है ही नहीं और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है
14: आप देखें उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है झूठा पार्टी झूठा प्रपंच बना के दिखाना चाहते है उसको कौन विश्वास करता है ममता बनर्जी को देख के मन लागे बंगला में एक तो बात है ना उसके लिए पूरा सही लागू
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क के खिलाफ ईडी का एक बड़ा एक्शन हुआ है मुंबई सूरत समेत 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई सलीम डोला से जुड़े मामले में ईडी की 20 जगहों पर छापेमारी हो रही है सलीम डोला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का एक बेहद करीबी और कुख्यात सहयोगी है उसे डी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का एक बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है बुलेटिन मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट
17: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
19: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
20: Complete oral health ka sach.
9: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
20: विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। संदीपन साह का कहना है कि टीएमसी में नैतिकता की कोई जगह नहीं है और उन्हें सच बोलने की वजह से निशाना बनाया गया है। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि वे पार्टी के फैसले को चुनौती नहीं देंगे, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि सच्चाई अंततः सामने आएगी। इस बीच सीआईडी ने फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। उनसे 8 जून को पूछताछ की जाएगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी की ओर से विधानसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की सिफारिश की गई थी। इस प्रस्ताव पर पार्टी के करीब 70 नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षर थे। हालांकि पत्र की जांच में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए।
21: टीएमसी बंगाल के जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है।
20: इस मामले में शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच दो टीएमसी विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साह की शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
22: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
23: प्रेजेंटेड बाय
24: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
25: इन एसोसिएशन विद
26: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
27: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

टीएमसी पर बड़ा टूट का खतरा, कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में हैं पार्टी से निकाले गए एमएलए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ी बगावत के संकेत, बीजेपी बोली यहां कोई जगह नहीं। यूपी के चुनावी संग्राम में कानून व्यवस्था हो गए योगी का सबसे बड़ा एजेंडा, कुशीनगर में सीएम ने कहा माफिया और मच्छर को साफ कर देंगे, फाजिल नगर का नाम होगा पावागढ़। पंजाब में स्कूल की मनमानी पर दिल दहला देने वाली खबर, अमृतसर में 12वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड, 20,000 की बकाया फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई री इवेल्युएशन पोर्टल, ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच, सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग से सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया। और आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी साथ, बड़े बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, और दो बजते ही न्यूज रूम लाइव में हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको बता देते हैं कि न्यूज रूम लाइव में कौन सी वो खबरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात कहां की जाएगी? सबसे पहले बात की जाएगी पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी के सामने, तृणमूल कांग्रेस के सामने एक अलग सा संकट खड़ा हो गया है। टीएमसी बिखर रही है, अब कैसे उसको वापस जोड़ेगी, इस बारे में भी बात की जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर होगी, दूसरी खबर के बारे में हम आपको बता देते हैं, और वो होगी मुंबई में। मुंबई में दरगाह पर बुलडोजर चलने वाला है, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं और क्या हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही तीसरी बड़ी खबर की हम बात करेंगे, और वो तीसरी बड़ी खबर होगी कर्नाटक की, क्योंकि कल क्या है, कल शपथ ग्रहण है, और उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है, दिल्ली में क्या तैयारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर, छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई खबर, सीबीएसई की प्रक्रिया पर सवाल जारी हैं, और क्या इसको लेकर अपडेट है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो हम आपको बता दें, सबसे पहले बात की जाएगी तृणमूल कांग्रेस की, और टीएमसी को लेकर किस तरह की चुनौती है ममता बनर्जी के सामने, चलिए ये हम यहां पर आपको बता देते हैं। क्योंकि टीएमसी की जब बात की जा रही है, तो आप ऐसे समझिए कि टीएमसी में संकट है। सबसे पहले खतरा क्या है, टीएमसी में टूट का खतरा है, क्योंकि दो विधायकों की अलग मीटिंग होती है, फिर उनको अलग कर दिया जाता है, और अब जोड़े रखना ये ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी है मुसीबत क्या, कि अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी हुआ है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केएमसी की तरफ से, फर्जी दस्तावेज, और उसको लेकर जांच अब आगे बढ़ रही है। चुनौती क्या है, ममता बनर्जी का धरना अब वो होने वाला है, प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली, और ऐसे में अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है कि ममता बनर्जी घर से निकल चुकी हैं धरना स्थल के लिए, और वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन वहां पर मौजूद है, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कोई परमिशन नहीं। अब ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, बिल्कुल अभी की लाइव तस्वीरें ये आपके सामने है, जहां पर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी निकल चुकी है। आज बंगाल में सियासी टकराव का दिन है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि टीएमसी इस वक्त सुर्खियों में, चुनाव हार गए, उसके बाद ममता बनर्जी अभी धरने पर अड़ी हुई हैं, और धरना दिया क्यों जा रहा है, तो ये भी आपको याद होगा, अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर वो कोलकाता में धरने पर बैठने वाले। लेकिन अभी ये तस्वीरें देखिए, ये काफिला निकल चुका है, और अब धरने स्थल पर ममता बनर्जी पहुंच रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में ममता बनर्जी धरना दे सकती हैं, लेकिन वहां पर किस तरह का टकराव देखने को मिलेगा, ये सबसे पहले हम आपको आज तक पे बताएंगे, क्योंकि गतिरोध तो लगातार जारी है, प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली है धरना स्थल पर मंच लगाने की, और अब वो तस्वीरें भी आपने देखी कि कैसे ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकलती हैं, और उसके बाद अब कुछ ही देर में धरना स्थल पर वो पहुंचेंगी, और अंदरूनी कला तो टीएमसी में चली रही है, वो तो चुनौती है, लेकिन अभी की जो तस्वीरें जो बता रही हैं वो ये है कि आने वाले वक्त में अभी और गतिरोध देखने को मिल सकता है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अनुपम, क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, और धरना स्थल पर ममता बनर्जी पहुंचेंगी, क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं आज?
1: जी देखिए, मैं इस वक्त रानी रासमनी एवेन्यू पर हूं, यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं विजुअल्स, पुलिस बल भारी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है, और ये ओरिजिनल वो जगह थी जहां पर टीएमसी ने धरना प्रदर्शन करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने इस जगह पर अनुमति नहीं दी। पुलिस ने कहा कि यहां से थोड़ी ही दूर, इस तरफ लगभग आधा किलोमीटर दूर वाई चैनल है, वहां पर आप धरना कर सकते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने कल फेसबुक लाइव करके कहा था कि मैं इसी जगह से धरना प्रदर्शन करूंगी, अगर गिरफ्तार किया जाता है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है, ममता बनर्जी चूंकि निकल चुकी हैं, वो यहां आती हैं या वाई चैनल जहां पर पुलिस ने कहा है कि आप धरना कर सकती हैं वहां जाती हैं। तो फिलहाल हम लोग यहां पर मौजूद हैं, और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात किया गया है।
0: कर्ताओं को लेकर क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि आप गिरफ्तार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो धरना दूंगी। क्या ममता बनर्जी मन बना के आई हैं कि ठीक है गिरफ्तारी होने दीजिए, लेकिन यहां पर अपनी ताकत दिखाई जाएगी और यह बताया जाएगा हम कमजोर तो नहीं हुए अभी?
1: जी देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, दो जगह हैं, ये है रानी रासमनी एवेन्यू, फिर से मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार आपको दिखाए। इस जगह पर ओरिजिनली ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, पहले कहा गया था कि यहीं पर धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन अचानक से कल टीएमसी की ओर से दावा किया गया कि पुलिस ने इस जगह पर अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने कहा है कि वाई चैनल जो यहां से लगभग हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर है, वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने कल फेसबुक लाइव करके कहा था कि हम इसी जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता वाई चैनल पर भी पहुंचे हुए हैं जो यहां से हाफ किलोमीटर दूर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी यहां आती हैं या वाई चैनल में जाती हैं जहां पर पुलिस ने उनको धरना प्रदर्शन की अनुमति दे के रखी है।
0: वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी ना, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की, उनका क्या कहना है?
1: जी देखिए, साफ तौर पर पुलिस ने इस जगह पर कोई अनुमति नहीं दी है, पुलिस की ओर से नो कह दिया गया है। यहाँ पर कल स्टेज भी बनाया गया था टीएमसी की ओर से, लेकिन स्टेज को भी खोल दिया गया, जो सामग्री थी स्टेज की वो सब पुलिस यहाँ से लेकर चली गई। तो इस जगह पर पुलिस धरना प्रदर्शन नहीं करने देगी और इसी वजह से भारी संख्या में फोर्स जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, आप देख सकते हैं काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस जगह पर पुलिस धरना प्रदर्शन की अनुमति पुलिस ने नहीं दी है। तो यहाँ पर अगर वो धरना प्रदर्शन करने आती हैं तो क्या स्थिति होती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जब अगर वो धरना प्रदर्शन करती हैं तो पुलिस उनको रोके, लेकिन वाई चैनल अगर वो चली जाती हैं तो वहां पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है।
0: आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ममता बनर्जी के धरने को लेकर तो खबर हम बताते रहेंगे, लेकिन उनके सामने चुनौती भी है। और चुनौती क्यों है, क्योंकि टीएमसी में अभी जो हालात चल रहे हैं वो सही नजर नहीं आ रहे हैं। विधायकों की बैठक होती है, उसके बाद विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, फिर क्या होता है, विधायक कह रहे हैं नहीं हम तो पार्टी गाइडलाइन के अनुरूप ही चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर सबसे बड़ी ये है, जो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी के सामने पार्टी को एकजुट रखने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। ममता बनर्जी धरने पर बैठने जा रही हैं, पार्टी के सामने अंदरूनी कला से निपटने की चुनौती है। टीएमसी के बड़े नेता लगातार बदलते घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त है, पॉलिसी अपना रखी है। तो दूसरी ओर बीती रात पार्टी से निकाले गए विधायकों के साथ बैठक में शामिल एक विधायक ने कहा कि हम लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। विधायक ने यह भी कहा कि हम सब टीएमसी के बैनर तले ही काम करेंगे, फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति टीएमसी अपना रही है कि पहले देखेंगे क्या होता है और उसके बाद फिर आगे के फैसले लिए जाएंगे।

0: तो ये बात तय है कि टीएमसी के अंदर इस वक्त टूट-फूट की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी वहां पर मजबूती के साथ खड़ी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या समीकरण बन सकती है, क्या चुनौती इस वक्त टीएमसी और ममता बनर्जी के सामने है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
2: टीएमसी के टिकट से चुनाव जीते ऋतव्रत बनर्जी को एक दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, भर भर कर दिल से गुबार निकाला और निशाने पर रहे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी।
1: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
2: ऋतव्रत बनर्जी ने कई सवाल किए जो सीधे बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजे से जुड़े थे। इन सवालों के जरिए यह एहसास दिलाने की कोशिश कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, अभिषेक बनर्जी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो इन हमलों के बीच सवाल ये है कि क्या बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी ही सबसे बड़े विलन बन गए हैं। अब स्थिति ये है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए दो टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। बीती रात ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि टीएमसी का दावा है कि दोनों विधायकों पर एक्शन पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर किया गया है और इसका टीएमसी के भविष्य पर कोई असर नहीं होगा।
3: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
2: लेकिन इन दावों के बीच पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी हुई है। कल ममता बनर्जी की बैठक में 60 विधायकों के ना पहुंचने को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। दरअसल बंगाल में 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली टीएमसी इस चुनाव में महज 80 सीटों पर सिमट गई, वहीं बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद से ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन नाराजगी चरम पर तब दिखी जब सोनारपुर में भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर ही हमला बोल दिया। भले ही टीएमसी इस हमले के बीच बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब खबरें टीएमसी के भीतर से आ रही हैं। उसे साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। हालात के बाद अब टीएमसी नए संकट काल से गुजर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो ये तो आप समझ गए होंगे टीएमसी के सामने अभी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसी बीच टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष, अब वो नाराज कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अभी पार्टी के नेतृत्व पर आपको भरोसा रखना चाहिए। साथ ही जो कल होटल में गए थे मिलने हैं उन नेताओं को लेकर भी कुणाल घोष की तरफ से कहा गया है कि जो लोग गेटवे होटल की बैठक में गए थे वो अपने जमीर से सवाल करें। ये कुणाल घोष की तरफ से बयान आया है।
4: बाकी विधायक जादेर का फोन जाच्छे যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোন সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
0: तो कुणाल घोष तो यही कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए, मजबूती के साथ रहना चाहिए, लेकिन टीएमसी पर बीजेपी क्या बोल रही है ये भी आप समझ लीजिए। टीएमसी नेताओं के लिए बीजेपी के कपाट यानी दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया है, और टीएमसी के बागियों के लिए बीजेपी में तो कोई जगह नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से समीक भट्टाचार्य का बयान सामने आया। कि जो बागी हैं टीएमसी के, जो नाराज चले आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो उनकी कोई जगह नहीं है। किसी को इंपोर्ट किए बगैर हम 207 सीट तक पहुंचे हैं, ये बीजेपी कह रही है कि हमें तो जरूरत ही नहीं है। अगर कोई टूट रहा है ठीक है, वो उनका आपसी मामला है, लेकिन हम बागियों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे। टीएमसी के दागी नेताओं को शामिल हम नहीं कर सकते। सामिक भट्टाचार्य की तरफ से क्या कहा गया वो एक बार सुन लेते हैं।
5: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं।
0: अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, आपने बता दिया कि धरने को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो टूट की खबर सामने आ रही है, इंटेक्ट रहने के लिए कुणाल घोष कह रहे हैं, इसको लेकर अभी आपके पास क्या खबर आ रही है? ये अभी और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्या, ये थमेगा? जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अनुपम से, जिस जगह पर वो मौजूद है वहां से वो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि टीएमसी बिखर रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। टूट की टेंशन अभी टीएमसी को सता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर वो टूटते हैं तो टूटने दो, लेकिन हम बागियों को जगह नहीं देंगे, हमारे दरवाजे बंद है, ताला लटका हुआ है। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, और टीएमसी बंगाल से ही जुड़ी हुई है। अभिषेक बनर्जी ने एक याचिका लगाई है टीएमसी के नोटिस को लेकर, ये याचिका लगाई गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और उनका परिवार कोलकाता नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के मसले पर हाईकोर्ट पहुंचा है और टीएमसी के नोटिस को चुनौती दी है। अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कई संपत्तियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। नोटिस में संपत्तियों के संबंध में जानकारी देने को कहा गया था। अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया है कि 25 मई को ही सभी जरूरी दस्तावेज नगर निगम को तो सौंप दिए हैं, उसके बाद भी नोटिस वापस नहीं लिया गया। अब इस नोटिस की वैधता पर हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। याचिका अभिषेक बनर्जी की तरफ से लगाई गई है, कोलकाता नगर निगम के नोटिस को चुनौती दी गई है। संपत्तियों की जानकारी टीएमसी की तरफ से मांगी गई थी। अब याचिका में अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि 25 मई को ही सारी जानकारी हमारी तरफ से दे दी गई थी। 25 मई को सारी जानकारी, सभी जरूरी दस्तावेज नगर निगम को सौंप दिए गए थे, उसके बाद भी नोटिस वापस नहीं लिया गया और इसी के चलते ये याचिका लगाई गई और अब कल इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट सुनवाई करेगा कल इस मामले पर। तो टीएमसी के सामने इस वक्त कई परेशानियां एक साथ हैं। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ टूट का खतरा, तीसरी तरफ अभिषेक बनर्जी, टीएमसी विवाद, ताक्षर विवाद, और उसके बाद अब संपत्ति को लेकर जो जानकारी केएमसी की तरफ से मांगी गई थी, अब उस पर सुनवाई होगी। तो अभिषेक बनर्जी की तरफ से याचिका दायर की गई है, लेकिन केएमसी की तरफ से जो जानकारी मांगी गई थी तो उसको लेकर राहुल सिन्हा पार्टी के ही नेता है, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है।
6: जो चोर है, अपराधी है, वो बार बार समय मांगेगा, और जिनका सीना में दम है वो सीधा जाएगा और सारे कागज फेंक के प्रमाण कर देगा जो उनका कोई दोष नहीं है। अभिषेक बनर्जी दोषी है, अभिषेक बनर्जी का खिलाफ बहुत सारे केसेस है, इसीलिए एक भी केस जो है वो मुक्त नहीं हो पाएगा। कारण सारे केसेस का प्रमाण एजेंसी का पास है और इसीलिए वो बार बार एजेंसी से भागना चाहते हैं।
0: एक और बड़ी खबर, ये भी पश्चिम बंगाल से, टीएमसी से जुड़े ट्रेड यूनियन पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, ऐसी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि टीएमसी की परेशानी मुसीबतें कम होने वाली है तो ऐसा नहीं। टीएमसी से जुड़े ट्रेड यूनियन के दफ्तर पर बुलडोजर चला है और यह बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त आप देख भी रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। कैंटोनमेंट एरिया में दफ्तर के होने का हवाला भी दिया गया है और अब यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन सख्त है, सख्त लहजे में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी और अब आप देखिए वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें कि टीएमसी के पार्षद पर एक्शन लिया गया है और आसनसोल से गिरफ्तारी भी हुई है। ये भी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक एक्शन लगातार जारी है और टीएमसी पार्षद पर एक्शन लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं और यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां सूर्या के हत्याकांड के बाद से अब पुलिस का एक्शन दिखाई दे रहा है। पुलिस अब सख्त लहजे में कार्रवाई कर रही है, बड़ा एक्शन अपराधियों के खिलाफ। गाजियाबाद पुलिस ने इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया। अपराधियों के सत्यापन के लिए साहिबाबाद थाने पर बुलाया गया। तकरीबन 150 लोग जो आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं उनको बुलाया गया पूरे रिकॉर्ड के साथ और फिर हिदायत भी दी गई कि अगर भविष्य में किसी भी क्राइम की गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपराधी परिवर्ती के लोग थाने में खड़े दिखाई दिए और इस पर लिखा था, हमें माफ करो, हम कभी क्राइम नहीं करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता देते, गाजियाबाद सैया खोड़ा में वो एक्शन देखा गया, मदरसों पर ये एक्शन हुआ है और प्रशासन की तरफ से सख्ती यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो एक बार एक बड़ी खबर, अब ये बड़ी खबर है गाजियाबाद के खोड़ा में, जहाँ प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिला है और ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि प्रशासन की तरफ से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध मदरसों पर जिनके मान्यता मदरसा बोर्ड से नहीं है। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु बताइए किस तरह की कार्रवाई हो रही है यहाँ पर और प्रशासन क्या कह रहा है, दोनों तरफ से क्या दलीलें दी जा रही है
7: और इस समय जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस समय
8: ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो मदरसा रहमानिया अररिया काफी जो पूरा इलाके में किया जा रहा है। दरअसल प्रशासन का यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि पूरे इलाके में एक ड्राइव चलाई गई। ड्राइव में क्या देखा गया, अलग अलग तरीके से एक एक्शन किया गया जो यहाँ के हिस्ट्री शीटर है उनके खिलाफ और दूसरा एक्शन किया गया जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। तो जब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ कहीं भी नजर आया तो उसमें जब ये मदरसा रहमानिया तक पुलिस पहुंची तो पता चला कि ये जो है मदरसा इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद इसकी डिटेल अल्पसंख्यक विभाग से ली गई, वहां से भी नहीं पता चला कि इसके कोई मान्यता है। मदरसा बोर्ड से इसने मान्यता नहीं ली है। उसके बाद बाकायदा आप देखिए यहाँ गेट पर नोटिस चिपकाया गया है जिसे आप।
0: शुक्रिया मानशु आपका जानकारी के लिए। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जो एक बार फिर से पुराने माफिया राज की बात कर रहे थे और सख्त चेतावनी उन्होंने दे दी, सख्त लहजे में, जो आमतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते रहे हैं। और इस बार कहां थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस बार वो थे कुशीनगर में। कुशीनगर में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद जनसभा में कहा कि हमने यूपी से माफिया और मच्छर दोनों को खत्म कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में माफिया बेरोजगारी और मच्छर बीमारी फैलाते थे, इन दोनों को प्रदेश से खत्म किया है हमने। इससे पहले भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को लेकर पहले भी बयान देते रहे हैं, पूर्व की सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, एक बार फिर से आज यही।
9: वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था, पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा।
0: तो वही चित परिचित अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन यहां सिर्फ माफियाओं के बारे में नहीं बोले हैं, यहां पर नाम भी बदले गए हैं। फाजिल नगर और अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया है पावागढ़।
9: आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के उसको पूरा करते हैं, और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी।
0: तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
13: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
14: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
17: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
18: सोच बदलो और बैंक भी।
19: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
20: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
21: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
19: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
22: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
20: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
19: जहां खबर वहां खबरदार।
15: In association with
23: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
24: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: कानपुर की धरती से गूंजेगी यूपी के विकास की बुलंद आवाज। यूपी की तरक्की का क्या है रोड मैप? जनता के सवालों का सटीक जवाब, दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा संवाद। विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।
1: एसआईआर की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारतवर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले दो तीन दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
2: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हाकिमपुर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

टीएमसी पर बड़ा टूट का खतरा। कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में है पार्टी से निकाले गए एमएलए। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ी बगावत के संकेत। बीजेपी बोली यहाँ कोई जगह नहीं। यूपी के चुनावी संग्राम में कानून व्यवस्था होगा योगी का सबसे बड़ा एजेंडा। कुशीनगर में सीएम ने कहा माफिया और मच्छर को साफ कर देंगे। फाजिल नगर का नाम होगा पावागढ़। पंजाब में स्कूल की मनमानी पर दिल दहलाने वाली खबर। अमृतसर में 12वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड। 20,000 की बकाया फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। कई घंटे मेंटेनेंस मोड के बाद एक्टिव हुआ सीबीएसई। थी इवैल्यूएशन पोर्टल ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच। सीबीएसई चेयरमैन और शिक्षा विभाग से सचिव को संसदीय समिति ने तलब किया। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेम आनंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली। पत्नी अनुष्का भी साथ। बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।

0: और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर है। ट्विशा मौत मामले में साजगिरी बाला और समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस मामले में सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट ने ट्विशा की सास गिरीबाला और पति समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले गिरीबाला ने कोर्ट में गुस्से में कहा कि उन्हें सीसीटीवी को लेकर कोई जानकारी नहीं। साथ ही आरोप लगाया कि ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर हाईकोर्ट में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की। रविश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविश, क्या जानकारी है, क्या खबर आ रही है अभी आपके पास?
1: देखिए, बड़ी खबर यही है, बड़ा अपडेट है कि फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। 16 जून तक ये न्यायिक हिरासत में रहेंगे और इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों को, यानी गिरीबाला सिंह को, समर सिंह को जेल के बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा। ये बड़ी खबर है इस बीच में। और साथ ही में सीबीआई ने यह भी अपनी बात सामने रखी है कोर्ट में कि अगर जरूरत पड़ी पूछताछ के लिए, अगर दोबारा उन्हें जरूरत पड़ेगी गिरीबाला सिंह और समर सिंह की, तो दोनों की पीआर वो बीच में फिर मांग सकते हैं और उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि अभी कई और लोगों की पूछताछ होना बाकी है। कई गवाह हैं, जिसमें डॉक्टर है जिन्होंने एनटीपी करवाया था ट्विशा का, इसके अलावा मनोचिकित्सक है, उनसे पूछताछ होनी है। वो पुलिसकर्मी जिसके ऊपर आरोप है कि जो लिगिएचर है वो समय पर पोस्टमार्टम के लिए नहीं सौंपा गया था भोपाल एम्स को, उससे पूछताछ होना बाकी है। तो अभी बाकियों पर भी पूछताछ का जो केंद्र है फिलहाल सीबीआई का, वो वहां पर है। और उसके बाद अगर सीबीआई को जरूरत पड़ेगी दोनों से पूछताछ की, तो उन्हें जेल से वापस पीआर पे सीबीआई मांग सकती है। ये बड़ी खबर है। लेकिन आज दोनों जेल जा रहे हैं, ये तय है। गिरीबाला सिंह, जिन्होंने अपने फैसले से कईयों को अब तक जेल में भेजा होगा, वही गिरीबाला सिंह आज खुद जेल जाएंगी, साथ ही में उनका बेटा समर सिंह भी जेल जाएगा 14 दिनों के लिए। और 16 जून को ये न्यायिक हिरासत खत्म होगी, लेकिन इस बीच अगर सीबीआई को जरूरत पड़ेगी तो उन्हें न्यायिक हिरासत से बाहर लाके पीआर में ले सकती है, लेकिन आज दोनों जेल जाएंगे, ये तय हो गया है।
0: ये तय हो गया। शुक्रिया रविश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की जानकारी भी देने के लिए। तो देखिए, अब लोगों के मन में यही चल रहा है कि 14 दिन की अब न्यायिक हिरासत तो बढ़ा दी गई, सवाल जवाब होंगे, लेकिन अभी तक जो सवाल जवाब हुए, क्या सवाल हुए, क्या जवाब मिला, हर कोई यही जानना चाह रहा है। तो एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
2: क्या ट्विशा केस में सीबीआई के हाथ कोई अहम सुराग लगा है? क्या 5 दिनों की रिमांड में समर्थ और गिरीबाला ने ट्विशा केस को लेकर कोई बड़ा खुलासा किया है? क्या ट्विशा के परिवार वालों के आरोपों में वाकई सच्चाई है? क्या ट्विशा की मौत की असल वजह जल्द सामने आ सकती है? ये सवाल दोनों आरोपियों की 5 दिनों की सीबीआई रिमांड के बाद उठ रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह और गिरीबाला ने ट्विशा से मारपीट के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्विशा शर्मा से उनके संबंध सामान्य थे। दोनों ने परिवार में किसी गंभीर तनाव या विवाद की बात से भी इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ससुराल में सब कुछ सामान्य था, रिश्तों में तनाव नहीं था, तो आखिर ट्विशा शर्मा ने खुदकुशी जैसे कदम क्यों उठाया? सीबीआई की पूछताछ में समर्थ ने ट्विशा के ड्रग एडिक्ट होने की बात कही है। दावा है कि इसी वजह से ट्विशा के व्यवहार में अचानक बदलाव होता था। समर्थ सिंह और गिरीबाला दोनों ने ही उन आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। तमाम सवालों पर पूछताछ के बाद आज सीबीआई ने ट्विशा केस के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।
1: बाला सिंह और समर्थ सिंह को लेकर सीबीआई कोर्ट पहुंच गई है, जहां पे उन्हें पेश किया जाएगा। ये समर्थ है, आप गाड़ी में देखिए, ये समर्थ आपको दिखाते हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें। समर्थ सिंह गाड़ी के बीच में बैठे हुए हैं, जिन्हें ले करके सीबीआई कोर्ट में पहुंच गई है। रिमांड आज खत्म हो रही है और सीबीआई आज इनकी रिमांड मांग सकती है यहाँ पे। और ये समर्थ की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे फिलहाल समर्थ सिंह अंदर है और दूसरी गाड़ी में हम आपको दिखाते हैं गिरीबाला सिंह भी है। और यहाँ से अब पुलिस की सुरक्षा में फिलहाल समर्थ और गिरीबाला सिंह को लेकर जाया जा रहा है। वो देखिए सामने समर्थ, तस्वीरों में आपको दिख जाएगा। मुझ पे लाओ, मुझ पे। ये आप देखिए, पहले समर्थ को हम दिखाते हैं। समर्थ यहाँ पे जा रहा है, समर्थ को सीबीआई टीम अपने साथ लेके रवाना हो रही है। समर्थ जी बताइए, आप कहेंगे? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आप, कुछ बोलेंगे? तो समर्थ है जिसको सीबीआई लेके गई है अंदर, और हमने सवाल पूछने की कोशिश की है फिर से। सामने आप तस्वीरों में देखिए कोर्ट रूम है, जहां लेके जाया जा रहा है समर्थ और गिरीबाला को। पुलिस सुरक्षा में लेके गया।
2: ट्विशा मौत मामले की जांच के दौरान सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने शुरुआती जांच की दिशा ही बदल दी थी। सीबीआई हर पहलू की पड़ताल कर रही है ताकि ट्विशा केस का सच सामने आ सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: भोपाल की बात करेंगे लेकिन अभी आपको पश्चिम बंगाल कोलकाता लिए चलते हैं। ममता बनर्जी इस वक्त धरना स्थल पर पहुंच गई, क्या कह रही है सुनते हैं। बनर्जी जहां मौजूद हैं वहां पर टीएमसी के कई समर्थक कार्यकर्ता भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मीडिया का भी जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ उसी के विरोध में आज ममता बनर्जी धरना देने आई थी जहां इजाजत उनको नहीं मिली। सुनते एक बार अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुपम, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है वहां पर? अनुपम सुन पा रहे हैं? दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अनुपम से। लेकिन अभी आप ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी इस वक्त धरने का जो उन्होंने ऐलान किया था उस जगह पर वो पहुंच चुकी हैं पार्टी के सामने। हालांकि बहुत कुछ अंदरूनी कला है जिससे निपटने की चुनौती है, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि ममता बनर्जी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और ममता बनर्जी का कहना है कि वो पार्टी को मजबूत करके ही रहेंगी। बहुत चुनौती है, चुनावों में करारी हार के बाद टीएमसी पर एक साथ कई मुसीबतें टूटी। एक तरफ पार्टी बगावत की अटकलों से जूझ रही है, दूसरी ओर पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी को फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी के नोटिस के बाद बीजेपी हमलावर है। ममता के सामने टीएमसी को बचाए रखने की चुनौती है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर वो कोलकाता में धरने पर इस वक्त पहुंच गई है। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, बहुत स्पष्ट कह दिया। भारी पुलिस बल, महिला पुलिस भी वहां पर मौजूद थी ताकि कहीं से भी अगर समर्थक या कार्यकर्ता आए तो फिर उनको हटा दिया जाए। और अभी ये देखिए ममता बनर्जी मौजूद हैं और वो माइक हाथ में लेके अपने समर्थकों को संबोधित कर रही है। वाई चैनल पर इस वक्त धरना दे रही है ममता बनर्जी। प्रशासन भी है वहां पर, पुलिस के अधिकारी भी है वहां पर, भारी बल तैनात वहां पर किया गया है कि हालात ना बिगड़े। वाई सर्कल पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए भारी समर्थकों के हुजूम के बीच में इस वक्त ममता बनर्जी। तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्या कह रही है ममता बनर्जी इस वक्त वहां पर? भारी शोर है सर, आप समझिए कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और भारी शोर है, तो ऐसे में हमारे सहयोगी की बात आप तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो रही है। लेकिन दोबारा एक बार जुड़ेंगे। तापस, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर, क्या कह रही है ममता बनर्जी अपने समर्थकों से?
3: जी देखिए, ममता बनर्जी अभी थोड़ी देर पहले वाई चैनल में आप पहुंची हैं। यहां पर देख सकते हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है वो यहां पर मौजूद है और यहां ममता बनर्जी अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। दरअसल
0: आपस पुलिस प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया था कि धरना की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब चूंकि ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है?
3: देखिए प्रशासन की तरफ से रानी राजमनी रोड पे जो परमिशन था वो डिनाई किया गया था और उसके बाद इसी वाई चैनल में अनुमति दी गई थी कि चाहे तो वो यहाँ पर बैठ सकती हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। शुरुआती तौर पे तृणमूल कांग्रेस ने ना कहा था लेकिन आखिरकार ममता बनर्जी ये वाई चैनल आ पहुंची हैं, साथ में कई बड़े नेता भी आ पहुंचे हैं और लगातार यहाँ देख सकते हैं ममता बनर्जी जो क्राउड है उसे संबोधित करने की कोशिश में है। वो कह रही है कि लोगों को शांत होने, क्योंकि इतने तादाद में इतने पैमाने पे लोग काफी दिनों बाद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो जब सड़क पर आए उसके बाद इतने पैमाने पे लोग आए हैं कोलकाता और कोलकाता के आसपास से। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी का संदेश क्या होता है यहाँ से। लेकिन इस स्थल पर पहुंचने से पहले ममता बनर्जी पहले पहुंची थी गांधी मूर्ति, जहां महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उससे पहले पहुंची थी बी आर अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे जाकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करने के बाद वो सीधा यहां वाई चैनल में आ पहुंची है और यहां जो लोग हैं उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इंद्रनील सेन हमारे साथ है। इंद्रनील, आज इतने सारे लोग आए हैं ममता दीदी से सुनने?

0: जी देखिए, अभी बड़े नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ममता बनर्जी के घर के बाहर भी हमने बात करने की कोशिश किए थे, लेकिन उन्होंने उनके तरफ से एक ही बात कहा गया, जो कहेगी ममता बनर्जी कहेंगी, वो तय करेंगी कितनी देर तक यहाँ पर ये पूरा धरना प्रदर्शन चलेगा। इसको लेकर अभी ममता बनर्जी कुछ ही देर में देख सकते हैं कल्याण बनर्जी और तमाम बड़े नेताओं के साथ वो बात कर रही हैं, और जब कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे तब शायद वो बताएंगे कि कितनी देर तक। लेकिन अनऑफिशियली जो तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम को 8 बजे तक ममता बनर्जी यहाँ पर बैठने के लिए परमिशन मांगी
1: थी। स्पष्ट है कि यहाँ पर टीएमसी की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब के अमृतसर से, जहाँ एक दिल झकझोर देने वाली खबर सामने, 12वीं की छात्रा सुसाइड कर लेती है। क्यों? क्योंकि स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि बाकी बची 20,000 रुपए जो फीस है वो तुरंत जमा कराएं। शिक्षा विभाग ये बताया जा रहा है कि अब इस मामले में बेहद गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें, मुंबई, जहां ये बताया जा रहा है कि एक दरगाह पर एक्शन हुआ है और कार्रवाई यहां पर की गई है। ये महानगर मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि यहां पर कार्रवाई की गई, भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दरगाह को ध्वस्त किया गया। बरकत अली शाह बाबा की दरगाह कुछ दशक पुरानी है और इसे लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कुछ सप्ताह पहले दरगाह का दौरा किया था और इसे ध्वस्त करने की मांग की थी, और उसके बाद अब एक्शन हुआ।
2: आंध्रा के गरीब नगर के डिमोलिशन के बाद प्रशासन काफी जगहों पर इस वक्त डिमोलिशन कार्रवाई कर रहा है। बरसात के ठीक शुरू होने के पहले ये कार्रवाई सारी अंजाम दी जा रही है। इस वक्त हम हैं आरे के इलाके में, आरे जो एक सबब मुंबई का सबब है, और यहाँ पर आप देख लीजिए जिस तरीके से एक दरगाह बना हुआ था, काफ़ी बरसों से ये दरगाह यहाँ पर था और उसको डिमोलिश करने की ये फिलहाल कार्रवाई चल रही है। और पिछले कुछ दिनों में जैसे हम पुलिस अधिकारियों से भी बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना, अभी कुछ दिन पहले ही कल ही एक दिंदोशी इलाके में एक मंदिर जो अवैध तरीके से बना था उस पर भी डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। वहीं ये दरगाह पिछले कई दशकों से दरअसल था, लेकिन जो पुलिस कहना है, जो आरए प्रशासन है उसका कहना है कि ये सारी सरकारी जमीन है और उस पर अवैध तरीके से ये बना हुआ था और इसी वजह से ये तोड़ा कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा बांद्रा के इलाके में पथराव हो गया था, तो इस वक्त आप देख लीजिए कड़ी बंदोबस्त, पुलिस बंदोबस्त की रखी गई है। आसपास के लोगों को यहां तक फटकने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश इनकी यही है कि जब तक यहां पर पूरी तोड़क कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यहां पर पूरी पुलिस बंदोबस्त लगा के रखेंगे। कोशिश इनकी यही है कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से न बिगड़े। सब कुछ दिन पहले ही यहां पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी आए थे और किरीट सोमैया ने भी आग्रह किया था इस डिमोलिशन को कैरी ऑन करने के लिए, और इसी के बाद ये तोड़क कार्रवाई शुरू हुई थी। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
1: अब बिहार से खबर आपको बता देते हैं, और ये बताया जा रहा है कि अब बिहार में मदरसों की जांच होगी, इसको लेकर सरकार का फरमान जारी कर दिया गया है और सम्राट चौधरी इस मामले को लेकर अब काफी सख्त और गंभीर नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। शिक्षा विभाग ने मदरसों को दिए जा रहे अनुदान की जांच के आदेश दे दिए हैं। सभी जिलों में शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जांच के लिए ये बताया जा रहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी भी
3: गठित की जाएगी। शासन सिर्फ इतना जानना चाहता है कि इन मदरसों में एक्चुअली हो क्या रहा है, वहां की व्यवस्थाएं क्या है, किन चीजों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, किन किन चीजों की जरूरियात है। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है कि हर तबके के नौनिहालों को मॉडर्न एजुकेशन मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी जाए, इसीलिए इन व्यवस्थाओं को जानना जरूरी है।
4: सरकार ने मदरसों की जांच के लिए जो फैसला लिया है उसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसा ना हो कि मदरसों की जांच के नाम पर आप शिक्षा से लोगों को वंचित कर दें और जो बुनियादी

0: शिक्षा बुनियादी तालीम लोग हासिल कर रहे हैं उससे ही कहीं ना कहीं वंचित होना पड़े, क्योंकि जिस तरह से एजेंडे की राजनीति चल रही है और जिस तरह से एजेंडा बनाने का काम किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो मदरसों को कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से माहौल बनाने के लिए इस तरह का वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए और उसमें मदरसों के बेहतर रख रखाव और मदरसों के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के साथ साथ हर तरह का शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार के स्तर से पहल होनी चाहिए।
1: बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। फिल्म काला हिरण द बैटल ऑफ लेगेसी से जुड़े जितने भी किरदार हैं, कलाकार हैं, सलमान खान ने नोटिस जारी कर दिया है। अब आप जानते होंगे कि ये बहुत पुराना मामला है और काफी चर्चा में भी रहा है, और अब इस नोटिस में फिल्म के निर्माता निर्देशक से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और उससे जुड़े पोस्टर अन्य प्रचार सामग्री हटाने की मांग की गई है। कानूनी नोटिस में चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं होने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: हमेशा चर्चाओं में रहने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी की नई फिल्म काला हिरण को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। अब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की टीम ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है और उस लीगल नोटिस में यह साफ कहा गया है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाएं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर फिल्म के जितने पोस्टर्स, फोटोज आदि जानकारियां हैं उन्हें हटाएं, वरना कानूनी कार्रवाई फिल्म निर्माताओं के खिलाफ की जाएगी। आपको बता दें, काला हिरण जो फिल्म है वो उस प्रकरण से प्रेरित है जिसमें सलमान खान और हिरण को लेकर एक कानूनी केस जो लंबा चलता आया है उस घटना को दिखाया गया है। अमित जानी जो है वो इसका जवाब देते हुए कहते नजर आते हैं कि सलमान खान अपने ग्लैमर का फायदा उठाते हुए हम पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आपको बता दें, अमित जानी पहले भी विवादित फिल्में बना चुके हैं जिसमें उदयपुर फाइल, जिसमें कन्हैया लाल केस को दिखाया गया है, वो भी शुमार है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार।
1: अब ये जो मूवी बन रही है ना, काला हिरण, अब इस फिल्म के निर्माता हैं अमित जानी। अब सलमान खान की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, उस पर अमित जानी का भी बयान सामने आ गया, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
3: हमने सलमान खान को ना इसमें जो है गलत तरीके से दिखाया है, ना हमने उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। वो जो है पूरा मामला, वो पूरा जो है पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं सलमान खान, ब्लैक बक सलमान खान, एक ही बात है। तो ऐसे में लीगल नोटिस भेजना, वो पोस्टर जारी होने पे मुझे लगता है बहुत जो है ये छोटी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोस्टर ही जारी हुआ है, अभी फिल्म का ट्रेलर भी नहीं आया है, 20 जून को आएगा वो, और एकदम से जो है लीगल नोटिस भेजना बिना बातचीत के, यानी कि कोर्ट में ही मिलना चाहते हैं भाईजान।
1: तो अभी के लिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
10: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद
13: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

टीएमसी में टूट के खतरे के बीच सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, कोलकाता में धरने पर बैठी, कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में है पार्टी से निकाले गए एमएलए, बड़ी बगावत के संकेत। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में उतरे योगी आदित्यनाथ, कहा माफिया और मच्छर को साफ कर देंगे, जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। फाजिल नगर का नाम बदलकर किया पावागढ़। पंजाब में स्कूल की मनमानी पर दिल दहलाने वाली खबर, अमृतसर में 12वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड, 20,000 की बकाया फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। उन्नीस घंटे बाद एक्टिव हुए सीबीएसई री वैल्यूएशन पोर्टल में, अब भी आ रही है रुकावट, ओएसएम केस में कंपनी को ठेका देने की होगी जांच, संसदीय समिति के सामने सीबीएसई चेयरमैन तलब। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बनाकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी साथ, हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।

देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड बार बार फेल क्यों? जिस सिस्टम को बताया पारदर्शी वही मिली अंधेर गर्दी। कभी कॉपी जांचने में फेल, कभी पोर्टल खुलने में खेल। पहले कहा सब ठीक, लेकिन क्या टेंडर देने में थी ईमानदारी वीक? सीबीएसई के खाली निकले बड़े बोल, बच्चे ही खोल दे रहे हैं पोल। परीक्षा कराने वालों ने ना सीख ली ना लिया सबक। पूछता है आज तक लाखों बच्चों से खिलवाड़ कब तक?

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज एक बात बताना बहुत जरूरी है, बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। शिक्षा तंत्र में छिपे भ्रष्टाचार के दीमक पर सवाल पूछते रहेंगे, सिस्टम में दिख रही खामियों को उजागर करते रहेंगे और बच्चों के मन में उठ रहे सवालों को सामने लाते रहेंगे बिना इसकी परवाह किए कि ये सवाल किसे और क्यों चुभ रहे हैं। ये सवाल शिक्षा व्यवस्था पर है, ये सवाल NTA पर है, ये सवाल CBSE पर है, ये सवाल शिक्षा मंत्रालय पर है, ये सवाल उन कोचिंग माफियाओं पर भी है जो जगह जगह बच्चों के नाम पर अपनी दुकान सजाते हैं। आज भी हम देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड पर उठ रहे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। CBSE की 12वीं परीक्षा की प्रक्रिया पर कई गंभीर प्रश्न खड़े हुए। सोचिए पोर्टल 19 घंटे तक, ये जो रीवैल्यूएशन, पहले तो आपके पेपर में घपला हो रहा है, आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। जब आप देखते हैं पेपर तो आपको दिखता है कि उसमें धुंधले पेजेस अपलोड हुए हैं या किसी और का पेज आपके नाम से है, या फिर आंसर सिर्फ इसलिए कम मार्क किए गए हैं क्योंकि बिल्कुल NCERT के हिसाब से जवाब नहीं लिखा गया है। उसके बाद जब आप रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हैं, उस रीवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल है वो भी 19 घंटे से ठप है। अभी भी इसमें रह कर बड़ी की शिकायतें आ रही, कल तो दिन भर खुला ही नहीं। CBSE ने इसके लिए बाकायदा एक जानकारी साझा की और बताया कि छात्र 6 जून तक शिकायत या पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी, क्या धुंधले आंसर शीट के गायब पन्ने मिलेंगे, क्या रीवैल्यूएशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। आज देश भर से एक बार फिर हम बच्चों को लाइव जूम पर जोड़ रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने CBSE के एग्जाम दिए हैं और ये सारे बच्चे अपनी बातें लाइव आज तक पर रखेंगे और इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा पैनल जिसमें न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता होंगे बल्कि इसी के साथ साथ हमने रोहन गुप्ता जो कि BJP का पक्ष रखेंगे, हमने डॉक्टर रणवीर सिंह को बुलाया है, ये फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी है CBSE के। हमने डॉक्टर शिखा दरबारी को बुलाया है जो कि फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है, जिसकी आपको याद होगा कल भी बैठक हुई थी और NTA के DG को वहां काफी सवाल भी पूछे गए हैं सख्त। आशुतोष एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी आज लाइव जुड़ रही हैं, जो बच्चों को बताएंगी कि क्या हो रहा है और जो पूरा कोचिंग माफिया इस वक्त देश में चल रहा है उस पर भी वो अपनी बात रखेंगी। दलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रिंसिपल्स के। अर्जुन शर्मा CBSE स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे और अर्गम भी, और खास तौर पर ये दोनों इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत इसको जोर शोर से सोशल मीडिया पर उठाया है और वो आवाज एक तरह से बने हैं वैसे ही जैसे आज हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं ऐसे तमाम बच्चों की जिन्होंने, जिसमें आप देखिए निसर्ग अधिकारी, उनको पूरा क्रेडिट जाता है इसलिए क्योंकि 25 फरवरी को ही बच्चे ने CBSE के पोर्टल को हैक करके बता दिया था कि इसमें 46 वल्नरेबिलिटीज हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा इस पोर्टल में लॉगिन भी कर लिया उसके कोड को क्रैक करके, पासवर्ड को। उसके बाद क्रैक करने के बाद उन्होंने देखा अंदर जाकर कि उनके सामने वो सारे जो आंसर शीट्स हैं उसका भी उनको एक्सेस मिल गया, वो किसी के मार्क्स को बढ़ा घटा भी सकते थे। तो ऐसे बच्चों को आश्रय जाता है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये बच्चे हैं जिन्होंने इस पूरा सच को देश के सामने लाया है। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर बच्चों से बात करेंगे और गेस्ट से चर्चा।
1: CBSE 12वीं परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल और सियासत का सामना कर रहा है।
2: सरकार को ये बता रहे हैं CBSE के दफ्तर के बाहर बैठ के आंखों को बंद करके जो हमारी वेंटिलेशन हो रही है।
1: एक तरफ छात्रों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का हवाला देता विपक्ष लगातार हमलावर है। CBSE के बहाने उनके निशाने पर सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं।
3: And how many questions normally will someone apply for?
4: I guess abhi jo problem aa rahi hai, they can apply for all the questions.
3: So how many total questions?
4: 30-35 around right. Questions hote hain.
3: So huge amount of money.
4: Huge amount of money is involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation?
1: CBSE 12वीं के जिन छात्रों के रिजल्ट इस बार आए हैं, उनकी कई शिकायतें रही हैं। दरअसल मूल्यांकन के लिए कॉपी की स्कैनिंग सही से नहीं की गई। कई मामलों में कॉपी अदला बदली की भी शिकायत है। कुछ छात्रों का आरोप है कि उनके उत्तर सही थे फिर भी नंबर कम आए। और बड़ी शिकायत डिजिटल मार्किंग के लिए जिस कंपनी COEMPT को टेंडर दिया गया उस पर है। तमाम सवालों के बीच आज CBSE ने अपना पोर्टल शुरू कर दिया। दो बार तारीख टाले जाने के बाद आखिरकार पोर्टल की शुरुआत हो गई। छात्र 6 जून तक शिकायत या आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने बताया कि गायब पेज, गायब सप्लीमेंट्री शीट या मैप ग्राफिक्स, ब्लर पेज या गलत उत्तर पुस्तिका को लेकर शिकायत की जा सकती है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संसद भवन एनेक्सी में मीटिंग की। इसमें 12वीं की परीक्षा में ओएसएम तकनीक का इस्तेमाल और उससे बड़ी मुश्किलों को लेकर समीक्षा की गई। पैनल की मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव और सीबीएसई के चेयरमैन भी जवाब देने पहुंचे। छात्रों के कुछ प्रतिनिधि भी बैठक में बुलाए गए थे। खबर तो ये भी है कि ऑनलाइन मार्किंग प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने COEMPT कंपनी को दिए ठेके पर रिपोर्ट तलब की। साथ ही कंपनी की तकनीकी पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। छात्रों की नाराजगी, सियासत और सुधार की पहल के बीच ये मामला अदालत में पहुंच गया। गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में NSUI ने जनहित याचिका दाखिल की है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और एक बार सारे बच्चों को ऑन स्क्रीन दिखा दीजिए। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिए हैं और वो अपनी राय आज इस चैनल के जरिए रखना चाहते हैं पूरे देश के सामने। अर्जुन, चूंकि आप छात्र हैं, ये देखिए अलग अलग शहरों से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे और बच्चे, आप हमारी कोशिश होगी कि आप में से जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवाल हम ले सके, एक एक करके उनके सवाल जैसे आते हैं। ऑडियो कनेक्ट हो जाता है, आप दिखाएं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ। अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, आप अपनी बात आप बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? अर्जुन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अर्जुन, सबसे पहले आप दिख रहे हैं, आप मुझे इससे पहले स्क्रीन पर आप नहीं दिख रहे थे। अर्जुन, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हुआ, कौन से पेपर्स में आपकी प्रॉब्लम आई है, आप पूरे देश को दिखाइए जो कि लाइव है। और भाई, गलती सीबीएसई की है। जब आप रीवैल्यूएशन के लिए, हम लोग भी पहले पेपर्स देते थे, हम सब ने दिया होगा, लेकिन उसके लिए फीस मांगना अलग बात है कि भाई मेरा ये डाउट है कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स मिले, लेकिन यहां तो सीबीएसई की गलती है, तो फिर ऐसे में रीवैल्यूएशन को तो फ्री करना चाहिए। आप बताएं अर्जुन, क्या हुआ आपके साथ?
5: जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप मुझको एक जागरूक जेंजी या एक जागरूक नागरिक कह सकते हैं। मैं इस इशू से डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हूं, पर मैं भी एक कक्षा 12वीं का पास छात्र हूं। अच्छा। और जैनाजाट कम्युनिटी का फाउंडर हूं। मैं राहुल जी के साथ मीटिंग में भी प्रेजेंट था। हमने अब तक 2 प्रोटेस्ट हेल्ड कर चुके हैं, एक न्यू दिल्ली में जो 7 बच्चों का प्रोटेस्ट था और एक गाजियाबाद के अंदर इस इशू को लेकर। मैं समझता हूं कि मेरे साथ जितने मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनकी आवाज बनकर मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ। हम लोगों की कम्युनिटी है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज उठाते हैं। बहुत बच्चे इस इशू की वजह से बहुत मोड़ों पर इफेक्ट हुए हैं। पहले अगर आपने देखा, फ्रॉम द टाइम जब पीरियड खुला था, जिस टाइम पे बच्चों को अपनी आंसर शीट ऑब्टेन करनी थी, उसके अंदर सीबीएसई डेट एक्सटेंड करता रहा, बच्चों की एंग्जाइटी बढ़ती रही, उनका मनोबल कम होता गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को जिनको अपनी सीटें मिली, उनकी सीटें ब्लर थी। अब बच्चे जिन क्वेश्चंस के लिए अब अप्लाई करेंगे, वो बच्चे कैसे करेंगे जब तक उनको ये खुद नहीं दिख रहा है कि उनके क्वेश्चंस में क्या लिखा है, उनके पेजेस मिसिंग थे। आपने 24वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा।
0: अर्जुन, यही नहीं, अगर धुंधले अपलोड हुए हैं तो उस टीचर ने भी पता नहीं उनको सही से करेक्ट किया है नहीं किया है, उसको क्या दिखा, उसको क्या नहीं दिखा, मतलब सब कुछ सवालों में आ जाता है।
5: जी, हमने बहुत सारे ऐसे वो देखे हैं, एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे भरी हुई शीट को ब्लैंक मार्क कर रखा है, एक आई का सिंबल है बहुत शीटों के ऊपर। हाँ। जिसका मतलब यह है कि टीचर ने शीट देख ली है, शीट देखने के बाद नंबर नहीं दिए हैं। 24वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, 26वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, 25वां क्वेश्चन का पेज ही नहीं है। तो इन सब के बीच में बच्चे कैसे, और उसके बाद अगर हम देखें, ये समस्या यही नहीं रुकती है सिर्फ। अभी आपने देखा, पहले पोर्टल रीवैल्यूएशन अब जो मार्क आपको अपने क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करना था, उसकी डेट 1 जून रखी सीबीएसई ने, उस दिन भी पोर्टल नहीं खुला। आज पोर्टल खुला है। मैं आपको अभी की बात बताऊं, बच्चों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं पोर्टल के ऊपर, बच्चे अपने सारे क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे पेमेंट की स्क्रीन पे जा रहे हैं, जैसे ही वो पेमेंट की स्क्रीन पर पहुंचते हैं तो वापस होम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, या कभी साइट क्रैश हो जा रही है। तो हमारी सरकार, हमारा शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है एक अपनी वेबसाइट के पीछे, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
0: ठीक है, रोहन जी, चूंकि आप सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। और जैसे ही कोई छात्र हमारे साथ बाहर से जुड़ता है, मुझे बताइएगा उसका सवाल।
6: बिल्कुल अंजना जी, आपके सामने
0: जी रोहन जी।
6: आपके सामने जिम्मेदारी से बैठा हुआ और बिल्कुल छात्रों के साथ मेरी सहानुभूति है, किसी भी बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने चाहिए और सरकार संवेदनशील। अभी जो हमारे भाई ने कहा, अभी 15 मिनट पहले ही पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने क्लियर कर दिया गया कि जो रिवैल्यूएशन पोर्टल है उसकी जो ग्लिचेस कल भी थी आज भी है, उसको सॉल्व कर लिया गया है और उसमें बिल्कुल ग्लिच नहीं आनी चाहिए क्योंकि अधिकार है बच्चों का और उसमें किसी भी प्रकार की ग्लिच मुझे लगता है कि अब नहीं आएगी। आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी रही बात अंजना जी, जो बच्चे आपके माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि आज तक की हमेशा एक मुहिम रही है कि बच्चों की आवाज को बुलंद किया जाए, मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा जब तक सरकार की नीयत की बात है सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। जिसने भी गलत किया होगा, जो जो भी पहले तो काम था कि भी ये चीज को रोका जाए, वो एक काम खत्म हो गया। दूसरा, जो इसके पीछे जिम्मेदार है उनको देश के सामने लाया जाए जिसके किसी की दूसरी बार जरूरत ना हो कि इस प्रकार की कोई गतिविधि करे। और नंबर 3, ओवरऑल सिस्टम को इतना रोबस्ट किया जाए कि बच्चों के भविष्य के साथ कहीं पे भी खिलवाड़ का मौका भी ना आए और धीरे धीरे ये सिस्टम को हम, क्योंकि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, उसको हमको इतना फुल प्रूफ करना है कि कहीं पे भी कोई बच्चा जो एग्जाम की तैयारी की ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है उसको और एक स्ट्रेस ना आए कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बैठा हूं और सरकार ये तीनों काम बखूबी से 21 जून तक आपको करके दिखाएगी।
0: ठीक है, चलिए अब जो उजमा हमारे साथ कोटा से, और देखिए कोटा की चर्चा आ गई। उजमा, आप बताइए आपने क्या एग्जाम दिया है और क्या मुश्किलें आप लोगों को, बच्चों को आ रही हैं?
7: प्रेसिजन आएगा चेकिंग में, एक्यूरेसी आएगी चेकिंग में।
0: आप रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में क्या होगा, ये कह रही हैं आप?
7: जी।
0: तो आप लोग बच्चे क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं मैनुअल चेकिंग हो, क्या चाहते हैं आप लोग?
7: हम ये चाहते हैं कि जो भी चेकिंग हो वो प्रॉपर तरीके से हो। अगर AI बेस्ड की चेकिंग हो रही है, OSM बेस्ड की चेकिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट उसमें रेगुलेशन लाए, वो अच्छे से हो, जो भी टीचर्स, जो कम से कम हमारे क्वेश्चंस तो प्रॉपर जाए, आंसर्स तो प्रॉपर जाए, वो ये ताकि हमें बाद में ये रिलीज करने में तो ऐसा हो कि हाँ हमारे प्रॉपर थे। ये कैसा है कि एक्यूरेसी नहीं आती, प्रेसिजन ही नहीं आता, यहाँ तक कि स्कैन डॉक्यूमेंट भी प्रॉपरली स्कैन नहीं थे वहाँ पे।
0: डॉक्टर रणवीर सिंह, चूंकि आप फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं CBSE के, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप उस पर हैं अनम्यूट कीजिए। ऑडियो नहीं आ रहा आपका, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से स्वाति चतुर्वेदी आपके पास, और हमारे साथ कोटा से ही ये बच्ची भी जुड़ी हुई हैं। अब किस तरह से ये पूरा नेक्सस चलता है, अब जैसे नीट का भी पेपर लीक हुआ, 3 आरोपी जो पकड़े गए, एक तो टीचर है और एक उनमें से कोचिंग सेंटर की टीचर है, तो ऐसे में ये पूरा नेटवर्क जो चलता है, और जाहिर तौर पर NTA हो CBSE हो, दोनों का सबसे बड़ा फेलियर। स्वाति,
8: मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ रख दिया जब आपने कोचिंग सेंटर की बात की, जिस तरह से लोग पीछे पड़ गए, लग रहा है जैसे अंजना ओम कश्यप जिम्मेदार है इस सरकार की, नहीं जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक 2-3 पॉइंट रखना चाहती हूँ। जुलाई 2021 में चाइना ने सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बैन कर दिए। अब चाइना की इस वक्त जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में, उनमें 150 चाइना की हैं। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ NGO चला सकते हैं, इससे इक्वालिटी नहीं होती, इससे लोगों में बहुत इसके पैसे होते हैं। और दूसरी बात, एक इतनी बड़ी मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रही है हमारे कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स में, 65% सुइसाइड पिछले डेकेड 10 साल में 65% सुइसाइड बढ़ गए हैं। सुइसाइड इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 15 and 20 year old चिल्ड्रन। हम लोग इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों इन कोचिंग सेंटर्स को, जो लिटरली लूट रहे हैं लोगों को, जो लोगों को का फायदा उठा रहे हैं, चूस रहे हैं। कोटा को देखिए ना, 30 suicide 2023 में, और कोई कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार को करना चाहिए कि एक एक कोचिंग सेंटर को बंद करे। आपको कोचिंग सेंटर चलाना है तो आप एनजीओ चलाइए, आप अपने व्यूज से अर्न करिए, ये धंधा बंद करिए। ये कभी भी विद्या एजुकेशन एक धंधा नहीं हो सकता।
9: बिल्कुल। और आशुतोष जी आपके पास आऊं, उससे पहले हरलीन कौर हमारे साथ एक छात्रा जुड़ रही है धनबाद से। हरलीन बताइए बताइए बेटा, क्या
10: गुड
9: हुआ आपके
10: इवनिंग
9: साथ?
10: एवरीवन।
9: गुड इवनिंग।
10: तो अभी मैं करेंटली आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12। मैं इस साल बोर्ड्स दूंगी और मेरा क्वेश्चन सीबीएसई से ये है कि जो अभी बच्चों के साथ हो रहा है क्या वो फ्यूचर में मेरे साथ भी होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रेस हो रही है, मेरे को यू नो एंग्जाइटी हो रही है ये सब सोच के कि जो अभी बच्चों का हाल है क्या वो मेरा भी होगा फ्यूचर में। आई एम रियली कंफ्यूज अबाउट दैट।
9: बिल्कुल।
10: एंड इट्स वेरी शेमफुल व्हाट सीबीएसई इज डूइंग राइट नाउ विद द चिल्ड्रन।
9: बिल्कुल।
10: सो या
9: बिल्कुल, और हम आपकी चिंता समझ सकते हैं क्योंकि हरलीन आपको अगले साल एग्जाम देना है। मतलब आप ही क्यों, जितने भी बच्चे आने वाले वर्षों में एग्जाम देने वाले हैं स्कूल में, उन सबको चिंता हो रही है कि हमारे साथ ना हो। और जिनके साथ हो गया है उनकी तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से इस वक्त गुजर रहे होंगे। डॉक्टर शिखा क्या बताएंगे आप उनको?
11: सर्टेनली ये एक सीबीएसई का आई वुड से कि एक सिस्टम का फेलियर है, इन द सेंस कि कोई भी हम नया प्रोजेक्ट जब लाते हैं, अगर उनको ये करना था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी है, तो आई एम एसोसिएटेड विद फ्यू स्कूल्स एंड आई नो कि एकदम लास्ट मिनट पे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है ऑनलाइन मार्किंग करेंगे। अब उसमें ना उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, ना उनके पास उस तरह का सिस्टम टेक्नोलॉजिकली था कि हम सही से स्कैन करके सही से कैसे करेंगे। हमेशा होता है कोई भी आप नया सिस्टम लाते हैं ना तो आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, पर यहाँ पे बिना पायलट प्रोजेक्ट चलाए ऑल ऑफ अ सडन जल्दीबाजी में आपने डिसीजन लिया कि नहीं सब हम तो ऑनलाइन मार्किंग करेंगे, ना टीचर्स की ट्रेनिंग है, ना कैसे स्कैन करना है वो है, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे देश के जो 17 लाख बच्चे हैं जिन्होंने ये पेपर दिया वो सारे बेचारे एक उसमें आ गए कि हमने सही भी किया है तो उनको नहीं पता चला कि उन्होंने सही किया या नहीं किया है। जब उनके नंबर कम आए तो रिवैल्यूएशन में भी अगर आप देखिए कि अगर 17 लाख बच्चों ने दिया है, अगर 8 पेपर्स होते हैं तो पूरी 98 लाख इनकी जो है वो कॉपीज हैं। 98 लाख कॉपीज में उनके 40 करोड़ जो है पेजेस हैं, तो आप कितना रिवैल्यूएशन कर डालेंगे? तो इसमें जो है अगर 25% भी आया तो 25% में भी आप कितना रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और फिर आप हर एक से फीस ले रहे हैं रिवैल्यूएशन की, गलती आपकी है और फीस सीबीएसई ले रहा है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, बच्चों की सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। अपने एक युवा पीढ़ी को हमें एक ट्रस्ट देना चाहिए, हमें एक उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, हमें उनका संबल बनना चाहिए और हम उन्हीं के इमोशन से खेल रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम की जो खराबी है वो अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करके और सही से नहीं करेंगे, दिस इज वेरी गुड कि हमें ऑनलाइन टेस्टिंग करनी चाहिए, पर लेकिन ऑनलाइन टेस्टिंग करने से पहले हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एक टाइम फ्रेमवर्क रखना चाहिए
9: जब तक
11: कि हमें कैसे करना है।
9: बात बच्चों के भविष्य की, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो आप कैसे इस सिस्टम को ला सकते हैं। हमारे साथ तान्या, मुझे बताया जा रहा है कोटा से ही जुड़ी हुई है, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तान्या जल्दी से बताइए, आपने भी एग्जाम दिया है क्या, क्या परेशानी हुई है? तान्या तान्या आपको अगर आवाज आ रही है तो बताइए। चलिए उनके पास से एक बार फिर से उनसे कनेक्ट कीजिए। आप अर्गम के पास जाते हैं। अर्गम कल भी आप मेरे शो में थे, एक बार फिर से अगर आप वो पेपर दिखाएं, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी जुड़ रहे होंगे देख रहे होंगे कि आपका जो पेपर है उसमें 3-4 पन्ने तो टीचर ने चेक ही नहीं किए, और फिर जब इनको मार्क्स आए तो 33 आए, और जब ये स्कूल में आपने दिखाया तो 90%+ आपको मार्क्स टीचर ने दिया। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या। जी
12: उसमें मार्क्स ऑब्टेन डालने थे कि मतलब आपको कितने मार्क्स दे रखे हैं। करण जैसे ने फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने 12 की मार्किंग कर रखी है, 13 क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है। अब मैं किसके मार्क्स डालूं? मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ,
9: प्लीज दिखाइए। ये आप पोर्टल का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं?
12: ये तो स्क्रीन हुआ है। यहाँ से मेरा शुरू होता है एग्जाम,
9: ठीक है? हाँ।
12: ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लियर दिख रहा है,
9: ठीक है? हाँ।
12: इनफैक्ट लिख भी रखा है हमने, टीचर ने पढ़न में पढ़ा तो हो गई, पर टीचर ने मार्किंग कर रखी है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की। जबकि हम क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 5 या 6 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स होते हैं जिसमें से 8 पार्ट 1-1 मार्क्स होते हैं, 2 पार्ट्स 2 मार्क्स के होते हैं। देन इससे इन्होंने तब भी ये चेक नहीं कर रखा जबकि ये सारा सही है। उसके अलावा अगर हम 8 क्वेश्चन पे हैं, 8 क्वेश्चन पे इन्होंने कर रखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट की मार्किंग जबकि 8 क्वेश्चन है, मतलब पूरा ही अलग क्वेश्चन है तब भी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है। अब मैं मार्क्स ऑप्टेड में किसके मार्क्स डालू, ऊपर वाले के नीचे वाले के, और हम हर एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, रिवेल्यूशन सॉरी, और हम ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मैंने कार्ड कट कर रखा है तब भी चेक है,
9: काटा हुआ क्वेश्चन भी चेक है।
12: यस मैम, इसमें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग है 10th पार्ट की, यहाँ पे सेकंड की शुरू हो गई, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की मार्किंग। मैम ये देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक है, ये तीनों बस इसमें 0 दे रखे, सेकंड पार्ट की बीच वाले में कुछ भी ना टिके ना बुझे, इसमें टिके ना मार्क्स। और मैम अगर हम देखेंगे
9: वापस वापस जाइएगा उस पेज में, बीच वाले आंसर को मार्क ही नहीं किया है।
12: यस मैम,
9: थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर वाला चेक्ड है, नीचे वाला चेक्ड है, उसमें 0 दे दिया है और इसमें मार्क ही नहीं किया है, सेकंड जो क्वेश्चन जो
12: नीचे वाला पार्ट दिख रहा है उसमें मार्क ही नहीं है, बस टिक लगा हुआ है,
9: टिक लगा है सिर्फ, मार्क्स नहीं है।
12: यस मैम, ऐसी इसमें इसके 3rd पार्ट में कोई मार्किंग नहीं है, ऊपर वाले में इन्होंने 3rd क्वेश्चन की मार्किंग करके जबकि 11th क्वेश्चन है, ऐसी हम सब में हो रखा है। इसमें अगर हम देखे वाला क्वेश्चन भी बस टिक लगा रखा है, मार्किंग नहीं, ऐसी हम ये मैं नोटिस कट कर रखा है फिर दोबारा करके इसमें भी चेकिंग कर रखा है।
9: अच्छा, जो कट किया हुआ है उसमें भी टिक मार्क डाल दिया है,
12: ऐसी मैंने फिर आगे नोटिस रखा है, ये
9: भी चेक कर रखा है। कितने आंसर्स है जिसमें टिक किया है लेकिन मार्क्स नहीं दिया है?
12: मैम अराउंड 5-6 होंगे आराम से। मैम ये लेटर यहाँ से शुरू होता है 5th क्वेश्चन, इन्होंने कर रखे 7th क्वेश्चन की मार्किंग।
9: ये इंग्लिश का पेपर है ना आपका जिसमें लेटर भी होता है, फॉर्मल लेटर?
12: यस मैम, यस मैम, मैं पूरा बायोडाटा वाला है, मैं पूरा लिख रखा है, हर फॉर्मेट है, हर चीज लिख रखी है, एक चीज तभी हम सब देंगे 0-0। और मार्किंग इसमें 7th क्वेश्चन की मार्किंग है, 8th की मार्किंग है, 9th की मार्किंग, 10th की मार्किंग है, 1 क्वेश्चन।
9: हमारे साथ प्रिंसिपल एसोसिएशन की तरफ से भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इस पर बोलेंगे, और रणवीर जी का भी अगर ऑडियो आ गया हो तो बताइएगा। आ गया है दलीप शर्मा जी, आप एक टीचर के तौर पर इस पे क्या कहेंगे? आपने देखा, उन्होंने लाइव दिखाया सब कुछ।
13: अंजना जी, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इतना सेंसिटिव मुद्दा जो आज के युवा के साथ कंसर्न है वो उठाया है। जब से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हुआ है तो तब से जो एक एजुकेशन में सेवा की भावना थी ना वो चली गई है। मेरे से पहले भी एक स्पीकर ने ये मुद्दा उठाया था। दूसरा इशू जो मेरे को समझ में आता है कि CBSE जो एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए वो एक रेगुलेटर की तरह एक डिक्टेटर माइंडसेट बन जाता है, और वो सर्विस की जो भावना है खास करके एजुकेशन में वो मिसिंग है। अगर हम कहें कि किसी भी देश की अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो एजुकेशन उसकी फाउंडेशन होती है। अगर एजुकेशन ही क्वेश्चनेबल हो जाए तो हम देश की इकोनॉमी आने वाले टाइम में कैसे बढ़ाएंगे? और ये आज जो युवा है, कल ही हमारा भविष्य है, अगर इन्हीं के मन में संदेह और मिसट्रस्ट और लॉस ऑफ फेथ गवर्नेंस और सिस्टम के बारे में हो जाएगा तो उसको री एस्टैब्लिश करने में हमें सालों साल लग जाएंगे।
9: नहीं, पर अभी तो समझ नहीं आ रहा ना, अभी तो एक सेकंड जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक सेकंड मैं रणवीर जी के पास, मैं सर वापस लौट रही हूँ। रणवीर जी, अब ये बच्चा क्या करे? अब ये कह रहा है कि रीवैल्यूएशन पोर्टल पे भी जब ये जा रहा है तो रिड्रेसल नहीं है। अब आप चूंकि CBSE में संयुक्त सचिव रह चुके हैं तो आप बताइए कि अब ये क्या करें, मतलब ये कह रहा है कि कौन सा नंबर का मैं क्वेश्चन का मार्क्स उसमें डालूं जब पूछा जा रहा है। अर्गम को दिखा दीजिए अगर वो जुड़ गए।
14: मैम मेरा ये कहना है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई मॉनिटरिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं आती तब इस तरह की स्थितियां होती है। 2009 में एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया था अप टू क्लास 10, वो फेल हो गया, 4-5 साल में उसको बंद करना पड़ा। अभी हमारा मैनुअल सिस्टम इतना बेहतरीन चल रहा था मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि हेड एग्जामिनर और चीफ नोडल सुपरवाइजर के पास कापियां जाती थी, हेड एग्जामिनर के साथ करीब 10 से 12 लोग इवेल्युएटर होते थे और उसमें वो सब्जेक्ट के जो है कंसर्न सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते थे उसी में से कोऑर्डिनेशन वर्क वाले भी होते थे और डबल चेकिंग भी होती थी और फिर उसकी कोऑर्डिनेटर भी जो होते थे वो जो पोस्ट करते थे मार्क्स जो है और फिर ऑनलाइन अपलोड करते थे वो लोग भी उसी सब्जेक्ट के होते थे तो गलतियां नहीं होती थी। आज क्या कर दिया कि एक इवेल्युएटर के पास कापी गई जो बच्चे ने अभी दिखाया है और जो बच्चे बता रहा है उसमें तो बिल्कुल ब्लंडर है ये तो, क्योंकि टीचर को ये
9: ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आशुतोष जी जल्दी से आपका कमेंट, आपने देखा बच्चे का अर्गम कल भी लाइव थे, अब पोर्टल खुला भी है तो अब उसका रिट्रेसल नहीं।
15: शिखा जी ने जो सवाल खड़ा किया वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के पहले कम से कम आप उसको ठीक से देख तो लीजिए सिस्टम काम करा काम नहीं करा। इसमें दो लेवल पे प्रॉब्लम, एक तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहा
9: है। इस बैच का क्या होगा?
15: बिल्कुल मैंने कहा
9: ये है ना असल इशू।
15: तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब इसमें सीबीएसई को फौरन कोई कार्रवाई करनी चाहिए, फौरन कोई डायरेक्टिव इशू करना चाहिए कि जिन जिन बच्चों के मामले फंसे हुए हैं उनका क्या करना है। अगर करना है, अगर इवेल्युएशन का जैसे सवाल, अगर आप अभी भी पैसे ले रहे हैं तो ये तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आप कोई आपको चिंता ही नहीं किसी बात की, आप इमीडिएटली फैसले क्यों नहीं कर सकते? आप इमीडिएटली फैसले करिए, कैंसिल करना कैंसिल करिए, अगर सिस्टम को रिजेक्ट करना रिजेक्ट करिए, मैनुअली कराना मैनुअली कराइए। लड़के क्यों इतने लंबे समय तक सफर करें, ये जो प्रश्न है। और दूसरी बात क्या है कि बहुत एडहॉक बेसिस पे सारी चीजें होती, सडनली डायरेक्टिव आ गया आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपने उसकी कोई तैयारी नहीं
9: करने के अलावा
15: कोई तैयारी नहीं की, ना आपकी वेबसाइट तैयार है ना आपके टीचर्स तैयार। अरे मैं खुद टेक्नोलॉजी में काम करने वाला आदमी, अगर आप अचानक मुझे कहेंगे मैं तो मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे ना, कैसे करना है किस तरीके से करना है। तो ये इन सब चीजों को जब तक आप सिस्टम को फुल प्रूफ ना बनाए तब तक ये आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश, मैं इंटेंट पे डाउट नहीं कर रहा लेकिन कॉम्पिटेंस जरूर इसमें डाउटफुल है। और जब तक इसमें किसी जो जो जो बक शुड स्टॉप हियर, सवाल ये कौन इसके अंत तक जिम्मेदार होगा? क्या मंत्री महोदय जिम्मेदार होंगे, क्या डायरेक्टर जिम्मेदार होगा, सेक्रेटरी जिम्मेदार, किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी लेनी पड़े। किसने फैसला किया कि एक हफ्ते के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है और अभी हमको इंप्लीमेंट कर देना? अगर नहीं इंप्लीमेंट करते तो क्या हो जाता है, क्या आसमान गिर जाता? आप अगले साल इंप्लीमेंट कर लेते, उसको फुल प्रूफ सिस्टम बना लेते, पायलट प्रोजेक्ट कर लेते, आप उस टेक्नोलॉजी को चेक कर लेते, आप वेबसाइट को चेक कर लेते, आपने कोई चीज नहीं की, सीधे इंप्लीमेंट कर दिया। अब बच्चे सफर कर रहे हैं और देखिए इस उम्र के जो बच्चे होते हैं बड़े इंप्रेशनेबल एज के बच्चे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उनकी एंजाइटी का अंदाजा हम लोगों को शायद नहीं होगा,
9: नहीं,
15: हम लोग को उम्र के साथ थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को अगर कल पैनिक अटैक होने लगे कोई दिक्कत है फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा?
9: साथी और यही बात वो कह रहे हैं कि इंटेंट नहीं है, जिस जो जल्दबाजी में आपने किया है इसको वो बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहा है कि किसके मतलब कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये सबसे बड़ा इशू। और इस बैच का सोचना होगा कि इनका क्या करें। अब वो बता रहा है अर्गम लाइव कि भाई मैं पोर्टल पे जाके भी क्या वहां पर भरूं, कैसे रिड्रेसल कराऊं, 5-6 सवाल पे टिक है, मार्क्स ही नहीं दिए हैं। स्वाति
15: ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही
9: है, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट, म्यूट है क्या? अब बोलिए, स्वाति जी बोलिए, आपकी आवाज ये हो गई थी, म्यूट हो गई थी शायद। हाँ
16: पिछले दशक में स्टूडेंट्स अब 65% हो गए हैं, एंग्जायटी अटैक तो बहुत छोटी सी बात है, हम सबको चिंता करनी चाहिए। और जिस तरह से हम एक तरह से अपने पूरे एजुकेशन को फॉर प्रॉफिट बना रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं लगता हमें ये चाइना से सीखना चाहिए, उन्होंने क्यों बैन किए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स इसीलिए। और आप इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं कड़ियां मिलेंगी, जिस तरह से इनका डिफेंस हो रहा है कोचिंग सेंटर्स का, जिस तरह से धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, जिस तरह से ये यूट्यूब वगैरह पे आके पता नहीं कैसे कैसे क्लेम्स करते हैं, इनके मतलब इनकी क्या विश्वसनीयता है? हम लोग क्यों अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लोगों के हाथ में दें जो जिनको सिर्फ व्यूज और पैसा बटोरना है? और रोहन गुप्ता जी यहाँ मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनको हम बैन क्यों नहीं कर रहे? अगर चाइना ने किया है, उनका एजुकेशन सिस्टम काफी दुरुस्त है, एआई में वर्ल्ड लीडर्स हैं, तो हमारी सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती?
9: रोहन जी
6: डिबेटेबल है, बिल्कुल इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि हम जब छात्रों के भविष्य कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। पर आज जो मुद्दे के लिए हम बैठे हैं अंजना जी, मैं वापस छात्रों को आपकी माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, जैसे रिवैल्यूएशन पोर्टल अभी ठीक से काम कर रहा है, जो जो भी चीजें और बात आशुतोष जी ने की जवाबदेही की, पहले ही मंत्री जी ने जवाबदेही दे ली है, ऐसा नहीं कि कोई जवाबदेही से दूर भागता है। प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करके एंश्योर करना कि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो, इंटेंशन खराब नहीं था सबने का कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, उसके अंदर भी जैसे एक छात्र ने दिखाया कि ठीक से चेकिंग नहीं हुई, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दों को एक साथ में बैठ के सुलझाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। और वापस आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहूंगा कि ये सब गलतियां हो सके उतनी जल्दी रिजोल्व होगी और भविष्य में ना हो सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी।
9: स्वाति जी
16: मैं क्या बोलूं अंजना, ये बार बार कहना कि आगे जाके होगा, अभी जो बच्चे फेस कर रहे हैं, अभी जो बच्चे सफर कर रहे हैं, अभी जो मतलब जो जो अभी हमारी क्राइसिस है, ये तो फिर एक एक मतलब जैसे कोटा में बार बार लोग सुइसाइड करते हैं, लोग भूल जाते हैं, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई याददाश्त नहीं रखता कि ये कितना गलत हुआ था और ये गलती चलती रहेगी।
9: कोई नहीं, कोई नहीं। कोचिंग माफिया के खिलाफ बोलने पर इतनी नाराजगी, और आप सोचिए कि पूरे मतलब कोटा शहर में जिस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्कूल की फीस ना देने पर पंजाब से खबर आई है, बच्ची ने अपनी मौत के एन पहले कहा है कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, वो वीडियो भी हमारे पास है, जरा निकालिए अपने दर्शकों को।
15: अंजना, इसमें एक चीज क्या है कि अभी आपने थोड़ा सा कोचिंग माफिया के खिलाफ बोला, और जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए किया जाए, मतलब जो भी आदमी कोचिंग सेंटर से खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलेगा, मतलब ये इतनी हिम्मत इन लोगों की बढ़ गई है, लगातार चरित्र हनन करने की कोशिश करें, लगातार लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें। ये सवाल जो भी स्वाति जी ने उठाया, भाई चाइना ने बैन किया, क्यों बैन किया? हमारे स्कूल्स में स्कूल एजुकेशन लगातार खराब होती जा रही, हम लोग उत्तर प्रदेश के पढ़ से जब पढ़ के आ रहे थे तो गवर्नमेंट स्कूल्स शानदार होते थे और मेरिट लिस्ट में लोगों के नाम आते थे, आज उन स्कूल्स का कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये लुक्रेटिव सैलरीज देते हैं और ये बताते हैं कि आप ये 4 साल पढ़ लीजिए, 5 साल पढ़ लीजिए, 10 साल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टॉप कर जाएंगे। भाई बच्चे को तो पूरी किताब पढ़ाने के लिए बताएं, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी बुक्स होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये इतना इनका इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये आप लिंच मॉब की तरीके से अटैक कर रहे हैं, मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस, दे शुड बी बैन्ड इमीडिएटली।
9: हां स्वाति जी,
16: हाँ मैं जानती हूँ, आपको पता होगा कि मैंने थोड़ी रिसर्च की है सोशल मीडिया पे, मैंने एक किताब भी लिखी है, मुझे पता है कि आपके खिलाफ, क्योंकि आपने इस मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया है, ये जो पूरी ट्रोलिंग हो रही है ये ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें पैसे दिए जा रहे हैं, ये बॉट्स कर रहे हैं, इसलिए कि किसी भी तरह से आपकी आवाज दबाई जाए। और वो जो भी पत्रकार इस मुद्दे को उठा रहे थे, आशुतोष ने भी कहा कि बिल्कुल बैन होने चाहिए, उन सबको अटैक किया जा रहा है, हर तरफ से अटैक किया जा रहा है, बड़े बड़े पैसे दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से उन पत्रकारों का मुंह बंद किया जाए जो ये कोचिंग माफिया और कमर्शलाइजेशन और एजुकेशन की बात कर रहे हैं।
9: बिल्कुल, और देखिए ना, हम तो एग्जाम्पल और फैक्ट्स पे बात करते हैं, और इसीलिए साल 2020 की नीट परीक्षा के नतीजे में टॉपर शोएब आफताब को लेकर 6 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ने दावा किया था, एक स्टूडेंट
15: बताइए
9: और 6 कोचिंग सेंटर्स ने उसकी फोटो डाल दी, सभी का ये कहना था कि शोएब उनकी कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, और बाकायदा पेपर पे विज्ञापन छपवा कर उनका डाला था, और कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ इसकी वजह से एक्शन भी हुआ है क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। और इसीलिए 2022 की अब बात करते हैं, 2022 नीट के नतीजों की बात करें तो टॉपर तनिष्का को लेकर 3 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स अपने दावे करते हैं। अब एक बच्ची 3 सेंटर में पढ़ रही थी, कोचिंग सेंटर में एक बच्चा 6 जगह पढ़ रहा था, अलग अलग जगहों की यह हालत देखिए। नीट 2025 में 7वीं रैंक पाए केशव मित्तल को लेकर भी 2 कोचिंग सेंटर्स के दावे सामने आए थे कि 2 जगह वो पढ़े। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये व्यापार, ये धंधा बन गया है, ये स्टार प्रचार अपना करते हैं, गलत जानकारी भी देने से बाज नहीं आते हैं। और 12th पास में भी बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको दिखाया गया था, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक कोचिंग सेंटर कैसे लास्ट में आकर वहां पर माइक लेके घूमने लगता है वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए, वो 12th पास फिल्म में भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अब देखिए, नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो 3 आरोपी है उनको हमने दिखाया है, सोमवार को दिल्ली की अदालत ने 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। कौन है? डॉक्टर मनोज शिरूरे, तेजस शाह, मनीषा संजय हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर थे, मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। इनको पेपर मिलता है, फिर वो पेन से लिख के और आगे बेचती है। इन्हीं को एनटीए ने महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर आया। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ, इन्होंने पूरा पेपर कॉपी किया और किसको दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। और फिर ये पूरा जो नेटवर्क है वो काम पे लग गया। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने बेटे का यहाँ एडमिशन कराइए, हम उसको इतने इतने मार्क्स देंगे। तरह तरह के वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, पुराने पुराने वीडियोस मेरे लेकर आज उनको डाला जा रहा है, लेकिन कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी और अपनी आवाज बुलंद करती रहूंगी। एक बार फिर से सभी छात्रों को दिखा दीजिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तान्या हमारे साथ आ रही हूं, अर्जुन और अर्घम मैं तुरंत आ रही हूं, बट पूरे देश से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। तान्या हमारे साथ जुड़ रही है, अदिति मुंगेर से है और तान्या कोटा से है। तान्या जल्दी से अपनी बात बोलिए। जी तान्या बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए।
17: हाँ जी, जैसे हम देख रहे हैं कि टॉपिक ठीक हो रहा है, तो अभी तक बच्चे भी
18: कर रहे हैं, अगर वो अपना क्वेश्चंस कर भी रहे हैं जो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उस पे भी उन्हें मार्क्स नहीं मिल रहा है। और ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कब बनेगी?
9: बहुत अच्छा सवाल है तान्या आपका। अदिति आपका सवाल।
19: तीनी के पेपर मिले हैं, पेमेंट अपडेट हो चुका है उसपे, और अभी री एवल्यूशन एक ही बार कर सकते हैं, तो मैं अब क्या करूं? मुझे उस तीन सब्जेक्ट में डाउट है जिसमें क्वेश्चन मच मार्क्स नहीं मिले हैं।
9: एक बार फिर से बताइए, विस्तार से बताइए, आपने री एवल्यूशन के लिए डाला है अदिति, और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको?
19: मैंने 4 सब्जेक्ट के लिए पेमेंट किया था और मुझे अभी तक 3 ही पेपर रिसीव हुए हैं, और मुझे वो तीनों में डाउट है। अभी मैं री एवल्यूशन के लिए डालूंगी, और लेकिन मेरा जो 14th पेपर है बायो का पेपर मुझे नहीं मिला है अभी, तो मैं अच्छा। उसके लिए क्या करूं? और री एवल्यूशन बस एक ही बार में कर सकते हैं।
9: तो आपने क्या सब्जेक्ट वाइज 100 रुपीज जो है वो आपने फीस जमा की है, क्योंकि क्वेश्चन वाइज भी 25 रुपए ले रहे हैं? अच्छा
19: हाँ, वो मैंने पे कर।
9: एक बार अदिति बोले पूरा। हाँ अदिति बताइए, वो आपने फीस पे कर दिया है?
19: हाँ, वो मैंने कर दिया।
9: अब वो क्या बायो का पेपर नहीं मिल रहा है।
20: वो यही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, एंड दिस इज वेयर आई वांट टू पॉइंट आउट ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि नीट में भी और सीबीएसई में भी कहां पे सबसे बड़ा घपला हुआ कि आपने जो सिलेक्शन किया वेंडर का, वो वेंडर का सिलेक्शन गलत कर दिया। आप सीबीएसई ने क्वेम्प्ट का सिलेक्शन किया जो कि एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर था, और उसको लाने के लिए उसने उनके फाइनेंशियल जो होते हैं उसको भी लोअर किया। किसी को भी हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं जब वेंडर को, कम से कम वो 1 साल तक कहीं पे भी नहीं काम कर सकता है, उसकी जो है टाइम लिमिट उसकी कम कर दी गई। और जब वो वेंडर जो है ब्रोकन पेजेस दे रहा है, ब्लड डिजिटल स्क्रिप्ट्स दे रहा है, और जो एक्सपर्ट्स और टीचर्स थे जो जब ये कॉपीज चेक कर रहे थे, उन्होंने भी फीडबैक दिया कि देर आर 36 मेजर फ्लॉज इन वेन वी आर चेकिंग। मतलब कहीं पे शायद टीचर्स जब करना चाह रहे थे तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो वेंडर था उसने टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क जो दिया था वो इतना सब स्टैंडर्ड था कि वो हो ही नहीं पा रहा। यही जो अभी तान्या कह रही है कि उसका नहीं हो पा रहा है, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि उनका जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो फ्लॉड है। और वो क्यों फ्लॉड है? क्योंकि आपने L1 लेके और ऐसे आदमी को जो कॉम्पिटेंट नहीं था उसको आपने काम दे दिया।
9: इनकॉम्पिटेंट आदमी को काम देने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। कुछ और बच्चे
20: पेपर लीक कर दिया।
9: मैं कुछ और बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक रिदम हमारे साथ जुड़ रही है। रिदम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और कोटा में उनके साथ कई लोग हैं। कोटा में हमने देखा कि ऐसी कोचिंग के प्रेशर की वजह से किस तरह से, और ये पूरा नेक्सस जो एक सांठगांठ है उसकी चर्चा होती रहती है। कोटा उसका हब बना, अनेकों बच्चे और उनके साथ जो घटनाएं वहां होती रही। लेकिन ये जो अब पोर्टल को लेकर है, क्या 12th के वहां पर बच्चे हैं? कुछ बात करेंगे रिदम आप उनसे?
21: जी अंजना, 12th के और नीट के दोनों के स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं भी बात करके बता चुकी क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको इस बार ये नए मेथड्स आई है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इस बार 12th CBSE के एग्जाम दिए। आपका नाम क्या है? क्या कुछ चेंजेस जो अभी आए हैं उससे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी है, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है?
22: मुझे तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुई नहीं, मेरे को ठीक ठाक से मार्क्स भेजे हैं, और मैंने देखा था कि मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उनके मार्क्स जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं थे, और 2-3 लोगों से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने ये बताया कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ।
21: क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि इस बार 12th के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी है?
23: हाँ, मेरे जो स्कोर था वो 70% आया था, मैंने 90+ एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मेरे नीट में भी 660 आए थे, और मैंने इवोल्यूशन में देखा तो मेरी ब्लर आ रही थी, फिर मैंने री इवोल्यूशन के लिए डाला, पर उसमें कुछ उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसके लिए कुछ भी नहीं देखा। एक तो उन्होंने डिजिटल चेकिंग करने के चक्कर में मतलब बहुत अनफेयर हुआ है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ किया जाए सीबीएसई.
21: अच्छा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कुछ किया जाए, आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए अगर इस टाइप की चेकिंग हो रही है तो अगले साल जो अपेयर होने वाले हैं सीबीएसई में उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, उनकी चेकिंग कैसे होनी चाहिए?
1: मैनुअल चेकिंग होनी चाहिए उनकी, जिससे टीचर खुद देख के चेक करे, तो फिर कंप्यूटर बेस में तो ज़्यादा पता नहीं चलता.
21: हेलो, क्या सवाल आपके हैं सीबीएसई से?
2: इस बार जो है ना चेकिंग अच्छी से नहीं हुई और सबके जो है ना चेकिंग भी नहीं हुई, सीट भी सही नहीं आई.
21: कोई प्रॉब्लम आपको आई?
9: रोहन जी, इन बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए. आप सवाल आप भी लाइव सुन रहे हैं. रोहन जी.
6: नहीं बिल्कुल अंजना जी, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ और बिल्कुल दुख हो रहा है. बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए और इसीलिए जो रिवेल्यूशन उन्होंने कहा कि सेकंड टाइम लगता है, क्योंकि प्रावधान अभी एक टाइम रिवेल्यूएशन का है, फ्यूचर में उसका भी एक प्रावधान होगा. पर जो बात थी ट्रांसपेरेंसी की, सरकार का उद्देश्य वही था कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम से वो ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए. वापस एक डिबेट ये हुआ कि नहीं आपने उसको लोअर करके किसी को किया, ये भी इंक्वायरी बैठी हुई है. अगर ये पाया जाएगा कि किसी को जानबूझ के इस एजेंसी को उसमें लाया गया, उसको भी बरता नहीं जाएगा. तो मैं वापस आपको कह रहा हूं, मैं यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट करने नहीं बैठा हूं. मैं आपकी जो चीजें हैं, सरकार का काम है, हमारा काम है, रूलिंग पार्टी के तौर पे आपकी सब कई गलती होती है तो उसको सुने और सुन के उसका निराकरण लाए.
9: रोहन जी, रोहन जी,
6: एक लर्निंग कर्व है,
9: ठीक है,
6: आगे से.
9: रोहन जी, एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरह से अब ये पूरा मामला फैल गया है और जिस तरह से पेपर्स बच्चे ऑनलाइन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अर्गम जैसे बच्चे टीवी पर दिखा रहे हैं, ये अब इसके बस की दिख नहीं रही है. आपको नहीं लगता है कि सरकार को मैनुअल मार्किंग पर सोचनी चाहिए? क्योंकि अगर बंडल से आपको डिजिटल पर जाना था तो जाहिर तौर पर वो हो नहीं पाया है इस बार, और अभी भी रिवैल्यूएशन के लिए जब पेपर्स दे रहे हैं बच्चे तो नहीं हो पा रहा है.
6: देखिए,
9: एक बच्चे ने भी कहा मैनुअल चेकिंग की बात, मुझे लग रहा है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है.
6: देखिए अंजना जी, दो चीजें, एक आपने कहा सिस्टम ग्लिच और एक आपने कहा कि जिस पर्पस के लिए इस पूरी सिस्टम को इवेल्युएट कर रहा था वो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
9: हाँ.
6: जैसे जैसे आपने कहा कि रिवेल्युएशन के समय पे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि जहां पे वैल्यूएशन की गलती, इवेल्युएशन की गलतियां हैं, तो ऑब्वियसली वो भी ऑप्शन सरकार देखेगी. तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इट्स अ लर्निंग का जो अभी आपके सामने हो रहा है. पहली जिम्मेदारी थी कि रिवेल्युएशन पोर्टल को प्रॉपरली एक्टिव किया जाए. आधे घंटे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को आश्वस्त सीबीएसई ने किया कि अभी कोई टेक्निकल ग्लिचिस नहीं है. दूसरी बात है, उसमें रिवेल्यूशन करते समय पे जो इश्यू आ रहा है, मुझे लगता है कि उसको भी संवेदनशीलता से सरकार देखेगी और कोई भी बच्चे को अन्याय ना हो ये सरकार की जिम्मेदारी और सरकारी जिम्मेदारी को पूरा करेगी.
9: और सीबीएसई की जिम्मेदारी पे सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना जिन्होंने ये फैसला लिया होगा, जिन्होंने टेंडर में बदलाव किए हैं, है ना, ताकि इसको मिले, जो कि फॉर्मली ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी कोएम्प्ट. कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है रोहन जी?
6: बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल, वो कमिटी बैठी है.

0: मलेशियस इंटेंट है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा अंजना जी।
1: ठीक है, अब दो छात्र अर्गम और अर्जुन भी बोलना चाह रहे हैं, काव्या और उनको भी दिखा दीजिए साथ में। काव्या हमारे साथ जुड़ी हैं अहमदाबाद से और कोटा से हमारे साथ जुड़ी हैं आरुषि, लेकिन उससे पहले अर्जुन और अर्गम बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, छोटी छोटी दो तीन लाइनों में अपनी बात कह लीजिए।
2: जी अंजना जी, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि अभी हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थाओं की और रिव्यू मीटिंग की, ये सब एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अभी बच्चों को जो चाहिए वो चाहिए इमीडिएट रिलीफ।
1: हाँ, तो इसीलिए मैं मैनुअल चेकिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई इस बैच का क्या होगा, इस बैच का तो मामला फंसा हुआ है। अर्घम, अर्घम
3: Yes, I have universities की deadline आने वाली है, सब बच्चे इस वजह से अटके हुए हैं।
1: बिल्कुल,
3: पूरा मैनुअल चेकिंग ही होनी चाहिए।
1: हाँ, इसके अलावा मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अर्घम, आपको भी क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, दिखाइए। और अर्घम, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैनुअल चेकिंग करके जल्द से जल्द सोल्यूशन हो, ताकि बच्चे अपने कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सके।
3: अभी हम रिवॉल्यूशन के बाद क्या गारंटी है कि फेयर चेकिंग हो ना हो?
1: एग्जैक्टली,
3: यही बात है। मैम, अभी भी
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: पोर्टल दिखा दो।
1: अर्घम, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि इस बैच का तो निवारण करना पड़ेगा ना भाई। उनके लिए तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कई लोग बाहर के लिए भी एडमिशन के लिए डालते हैं, उसमें तो सबका फिक्स डेडलाइन होता है। रणवीर जी, इसके बाद मैं आपके पास फौरन आऊंगी। दोनों बच्चियां जो जुड़ी हुई है दिखाइए, कोटा से हमारे साथ एक बच्ची है और काव्या बोलिए। आरुषि है, आरुषि आप पहले बोल लीजिए, आप कोटा से जुड़ी हैं। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा आरुषि।
4: मैम, सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबने अपना अपना सवाल पूछा है। मेरा सवाल ये है कि सीबीएसई आगे हमारा,
1: ठीक है, बिल्कुल। काव्या, फोन पे ऑडियो लीजिएगा प्लीज।
5: ओके मैम, सीबीएसई ऐसा क्लेम करता था कि ये सबसे सिक्योर्ड साइट है, कि इफ ओएसएम वो परफॉर्म करेगी तो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही परफॉर्म होगा, बट इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ऊपर से हमारे ग्रेड्स लो हो गए, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में जो एग्जाम दी थी उसके अकॉर्डिंग तो हमारे कोई ग्रेड्स नहीं आए, जो हमने प्रिडिक्ट स्कोर किया था वो हमें नहीं मिला है। तो ये अनफेयर डील हुई एक सीबीएसई के साइड से हमारे लिए।
1: जो प्रिडिक्टेड स्कोर्स थे आपके स्कूल की तरफ से जो आपको मिले थे, उससे काफी कम मार्क्स आए हैं। अच्छा, ये बताइए काव्या, कि आपके कितने पेपर्स में इस तरह से गलती हुई है? गलत
5: मैम, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ये इशू रेज हुआ है मेरे पेपर में।
1: बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इश्यूज रेज हुए हैं,
5: हाँ, और उसके वजह से मेरा कॉलेज का भी एडमिशन डिले हो सकता है, क्योंकि पीसीबी इज द मेन सब्जेक्ट।
1: बिल्कुल,
5: फॉर द एडमिशन रिक्वायरमेंट।
1: बिल्कुल, उन्हीं का एवरेज देखा जाता है, और कौन नहीं इस सिस्टम से गुजरा है। डॉक्टर रणवीर, जल्दी से दिखा दीजिए उनको एक बार, आप सीबीएसई में काम कर चुके हैं, तो आप बताइए इन बच्चों का क्या हाल है, क्योंकि इनके लिए तो अब कॉलेज एडमिशन का टाइम है, और एवरी डे लॉस्ट फॉर देम इज अ बिग लॉस।
6: हाँ मैम, मेरा ये कहना है इसमें, मैम माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू?
1: हाँ बिल्कुल, अब आ रही है सर, बोले,
6: सुनाई दे रहा मैम?
1: बिल्कुल।
6: मेरा कहना यह है इसमें कि बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके लिए अब सीबीएसई क्या करे कि मैनुअल प्रोसेस से जो बच्चे स्क्रूटनी में अप्लाई कर रहे हैं या री इवेल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने कापियां लिया और फिर री इवेल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक तो उनसे पैसा ना ले, दूसरा कि उनकी कापियों को मैनुअल जो सिस्टम है हमारा उससे ठीक से दिखवाएं,
1: बिल्कुल,
6: और उसको वीकली बेसिस पे रिजल्ट रिवाइज करके उनके लेटर्स जारी करें और उनको तुरंत सूचना दें।
1: बिल्कुल।
6: दूसरा मेरा ये कहना है कि चूंकि ये पहला जो हमारा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम था इतना फुल प्रूफ था, और हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए और स्कूलिंग में जो है ये इस तरह की प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, हम बच्चों को प्रयोगशाला नहीं बना सकते। हमने 2009 में जो सीसी शुरू किया था उसमें प्रयोगशाला के तौर पर बनाया, और जब बाद में उसमें अनएथिकल चीजें होने लगी, अनफेयरनेस होने लगी और कदाचार और ये सब होने लग गया, तो उसको बंद कर दिया गया। फिर हम दोबारा आते हैं अभी जो है ओएसएम पे। अब ओएसएम में जो है जो टीचर का डेटा स्कूल्स भेजते हैं ओएसएस पोर्टल पे, वो टीचर जो क्लास 10th के लिए इलिजिबल है वो 12वीं के लिए भी आ रहा है। फिजिक्स में जो है साइंस का टीचर आ रहा है, इंग्लिश में हिंदी का टीचर आ रहा है, तो कैसे इवेल्युएशन की हम बात मान सकते हैं? दूसरी बात, तीसरी बात यह थी कि जो जो जो कापियां गई है इवेल्युएटर के पास,

0: उसका कोई डबल चेक नहीं, क्रॉस चेक नहीं, उसने जैसा कर दिया वैसा अपलोड हो गया। और 20 से 25 कॉपियां एक दिन में एक इवेल्युएटर को चेक करने के लिए अधिकृत है और यह हेड एग्जामिनर उसको इस हिसाब से अलॉटमेंट करेगा। परंतु इसमें ओएसएम की वजह से लास्ट में चूंकि डीले हो गया और प्रेशर डाल दिया, 50 कॉपी करवाओ, 60 कॉपी करवाओ, तो गलतियां तो होगी। और भविष्य बच्चों का अधर में लटका हुआ है, क्योंकि सीबीएसई का जो इंटरनल सिस्टम है वो भी और अभी ऐसा आपस में जो है द्वंद मचा पड़ा है कि उससे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा मैम, रीजन्स में बता रहा हूं मैं, अभी 22 रीजन का रिजल्ट इस बार आया है और संभवतः अगले आने वाले अगले साल जो है उसका 30 रीजन हो जाए। रीजन्स तो बढ़ा रहे हैं, हम डिजिटल की भी बात कर रहे हैं, परंतु आपके पास व्यवस्था है कि किसी मोस्ट ऑफ द रीजन्स में आईटी का असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जो पहले पोस्ट हुआ करता था, आईटी का कोई ऑफिसर नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी काम कर रहा है वहां। तो कैसे
1: पूरी व्यवस्था को बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है? रोहन जी, इन सभी बातों का जवाब आप दे। रोहन जी
2: ने बिल्कुल, मैंने पहले भी जवाब दिया जो आपने कहा कि रीवैल्यूएशन की बात है, अगर उसमें भी अभी बच्चों को लग रहा है कि जो वैल्यू रीवैल्यूएशन ठीक नहीं हुआ है, ऑब्वियसली से मैन्युअल का प्रावधान होना ही चाहिए। मतलब कोई भी चीज, भले आपने आपका इंटेंट सही है कि नहीं, आपने ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम से आपका इंटेंशन गलत नहीं है, बट अगर उसमें गलतियां हैं तो उसमें बच्चों की कीमत बच्चों को चुकानी पड़े, मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। तो इमीडिएटली मैनुअल इवेल्युएशन की बात हो या रिवेल्युएशन प्रोसेस की बात हो, सारे प्रावधान इमीडिएटली होने चाहिए, उसमें कोई शंका को मैं उसमें नहीं देखता हूं कि उसमें कोई डाउट है।
1: बिल्कुल रोहन जी, और यही हम उम्मीद करेंगे कि इस एक घंटे के शो से जब देश भर के बच्चे हमारे साथ आज तक पर जुड़े, तो कम से कम एक दबाव बने कि अब इसको जल्द से जल्द मैनुअल चेकिंग इन बच्चों के पेपर्स का हो, क्योंकि इनको उस रिवैल्यूएशन पोर्टल के जरिए बहुत इंसाफ मिल नहीं पा रहा है। इनको अपने कॉलेज एडमिशन्स को लेकर आगे भरना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। बहरहाल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो देश भर से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े थे। आप में से कईयों से बात हो पाई, कईयों से नहीं हो पाई एक घंटे के शो में, लेकिन आवाज आप सबकी देश भर में पहुंची है और इस मुद्दे को हम ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। आज शाम 6 बजे टीएमसी में बगावत के तेवर पर देखेंगे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: जैक एफएम नाउ प्लेइंग व्हाट वी वांट कमर्शियल फ्री ऑन ट्यून इन प्रीमियम।
6: What you got for me, Jack?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: In association with
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
4: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल
0: हिंड बड़े आराम से विमल बोलो जुबां केसरी
4: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
0: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
8: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
9: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
10: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
13: Where did you see all this?
12: Online at APGE.com.
13: Watson, you're always so plugged in.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
8: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

कोलकाता में धरने पर बैठी कई असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में है पार्टी से निकाले गए एमएलए, बड़ी बगावत के संकेत। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में उतरे योगी आदित्यनाथ, कहा माफिया और मच्छर को साफ कर देंगे, जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा,

या फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। उन्नीस घंटे बाद एक्टिव हुए सीबीएसई।

0: लेबनन में नेतन्याहू का संग्राम, ईरान के साथ तोड़ेगा युद्ध विराम, भड़क गए ट्रंप, फोन पर नेतन्याहू को लगाई फटकार, नहीं माने नेतन्याहू हिजबुल्ला पर विनाशकारी प्रहार, हुर्मुज के बाद अल मंदेब ठप करेगा ईरान, अमेरिका से रोकी बातचीत, इसराइल को ईरान के मिसाइल चीफ की चेतावनी, नेतन्याहू का भी बेरूत उड़ाने का प्लान, नेतन्याहू बेलगाम छेड़ेंगे विध्वंसकारी संग्राम।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। लेबनान में इसराइल की विनाशकारी सैन्य कार्रवाई से ईरान बेहद बौखला गया है और ईरान ने अमेरिका से बातचीत बंद कर दी है, इसराइल को सीधे धमकी दे दी है। ईरान ने इसराइल से कहा कि अगर उसने हिजबुल्ला पर हमला नहीं रोका तो उत्तरी इसराइल के कई शहर एक के बाद एक दहल जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर आ रही है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने कहा है कि तेहरान की बातचीत करने वाली टीम लेबनान पर हुए हमलों के बाद मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान अब रोक रही है। ये ऐसे समय हो रहा है जब 3 महीने से चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास पिछले दिनों तेज किए गए, कई दिन से जारी है, लेकिन ईरान ने उसे रोक दिया। एजेंसी के मुताबिक ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें यमन, लेबनान, इराक के उसके शिया सहयोगी शामिल है, सभी ने इसराइल और उसके समर्थकों को सजा देने के लिए होर्मुज न केवल पूरी तरह बंद करने बल्कि अब बाबल मंडप, जलडमरू मध्य सहित अन्य मोर्चों को सक्रिय करने का एजेंडा तय कर लिया है। यानी दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक शहरग को अब ईरान रोकने वाला है। जो बाबल मंडप है ना, वो रेड सी के जरिए यमन हूथी विद्रोही उसे रोक सकते हैं। अगर यमन में ईरान के सहयोगी जो है हूथी इस संघर्ष में दूसरा मोर्चा खोल देते हैं तो यह बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए होगा। उनका लक्ष्य यमन के तट पर बाबल मंदब जलडमरू मध्य होगा और यह हम आपको मानचित्र पर दिखाएंगे कि कैसे जो दूसरा बड़ा मेन शिपिंग आर्टरी है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण, अगर उसको भी रोक दिया गया तो एक तरफ तो होर्मुज और दूसरी तरफ बाबल मंडप, दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यह एक प्रमुख शिपिंग चेक पॉइंट है, बहुत ही सकरा समुद्री मार्ग है। यह स्वेज कैनाल, स्वेज नहर की ओर जाने वाले समुद्री यातायात को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और बहुत सकरा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने सोमवार को एक्स पर लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान का जिक्र करते हुए कहा, एक मोर्चे पर किया गया उल्लंघन सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा और किसी भी उल्लंघन के नतीजे के लिए अमेरिका और इसराइल ही जिम्मेदार होंगे। अमेरिका और इसराइल के हमलों में हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है लेबनान में, ज्यादातर ईरान और लेबनान के ये नागरिक थे जो मारे गए हैं। लेकिन अब हम आपको पहले वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो बताते हैं कि लेबनान में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर जो संग्राम है वो किस तरह से बेहद विकराल रूप ले चुका है और मध्य पूर्व में एक बड़े महायुद्ध का इस समय अंदेशा है। और अगर ये महायुद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हिजबुल्ला जो है वो उत्तरी इसराइल पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन उसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने न केवल दक्षिणी लेबनान में बल्कि लेबनान की राजधानी बेरूत और बेरूत का जो दक्षिणी का इलाका है दाहिया का, वहां तबाही मचाने वाले हमले करने का अब हुक्म दे दिया है। और इसी से बौखलाकर पहली बार ईरान ने अब धमकी दे दी है कि अगर इसराइल के हमले नहीं रुके तो ईरान की मिसाइलें इसराइल में खलबली मचाने के लिए तैयार है। इसराइल को सीधे तौर पर धमकी देने के साथ ही ईरान ने अमेरिका से भी बातचीत रोक दी है और इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद भड़क गए हैं। क्योंकि अमेरिका में जनता अब युद्ध के खिलाफ होती जा रही है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को जब बेंजामिन नेतन्याहू के बेरूत पर हमले का प्लान की जानकारी मिली तो उन्होंने बकायदा फोन किया बेंजामिन नेतन्याहू को, और खबरों के मुताबिक उन्हें फटकार लगाई। किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से कड़े शब्दों में अगर वो बात करते हैं तो इसे बहुत बड़ी घटना माना जाता है। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने बेरूत पर हमला फिलहाल तो रोक दिया है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले इस समय भी जारी है, और इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी है। हिजबुल्ला ने भी इजराइल के उत्तरी शहरों पर कुछ रॉकेट अटैक किए हैं। यह बड़ी खबर इस समय दक्षिणी लेबनान के टायर शहर से आ रही है, जहां इजराइल ने एक भीषण हमला किया है। अस्पताल के पास हुए हमले के बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लेबनान का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रमुख शहर है टायर का, दक्षिणी लेबनान का एक प्रमुख शहर है, और वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा इलाका इस समय धुआं धुआं है। इमरजेंसी में बचाव के लिए आने वाली गाड़ियों के सायरन हर ओर सुनाई दे रहे हैं। यह हमला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन पर हुआ, जिससे अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। कहा तो ये जा रहा है वहां पर अस्पताल के वार्ड्स क्षतिग्रस्त हुए हैं, अस्पताल के शीशे टूट गए, सीलिंग कई जगह गिर गई है, मेडिकल उपकरण तबाह हुए, आईसीयू तक की बिजली चली गई, पार्किंग में आग लग गई और हर ओर धुआं फैल गया। इजराइल ने टायर में जबल आमेल अस्पताल में लगी एक इमारत की पार्किंग पर हमला किया, क्योंकि इजराइल की सेना का यह मानना है कि यहां पर हिजबुल्ला के लड़ाके छिपे हुए थे, और इजराइल की सेना ने अब औपचारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। लेबनान से आ रही खबरों के मुताबिक अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ गंभीर है। हालांकि खबरों में मौत का आंकड़ा लेबनान की मीडिया के मुताबिक 6 पार कर चुका है, और लेबनान में लड़ाई जैसे ही तेज हुई तो IRGC यानी ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसकी मिसाइल फोर्सेस के जो प्रमुख है और ईरान की सेना ने सीधी इसराइल को चेतावनी दे दी है। ईरान के शीर्ष मिसाइल कमांडर और ईरान के सेना ने कल रात एक कड़ी चेतावनी जारी की। दरअसल इजरायली सेना लेबनान के अंदरूनी इलाकों में बहुत तेजी से बीती रात आगे बढ़ी। इससे संकेत यह मिला कि बेरूत के उपनगर में हिजबुल्ला के ठिकानों पर ग्राउंड अटैक होने वाला है, और अगर दक्षिणी बेरूत में जो हिजबुल्ला का प्रमुख गढ़ है, दाहिया का इलाका और दाहिया के आसपास का इलाका, अगर वहां पर ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो जाता है तो हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा नुकसान उनका हो सकता है। और इसी के बाद ईरान की सेना और IRGC ने एक संदेश दिया। उनकी जो एरोस्पेस फोर्स है, जो मिसाइल फोर्स के कमांडर है, ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मुसावी, ब्रिगेडियर जनरल सैयद मासिद मुसावी ने कहा है कि लेबनान में दुश्मन के अपराध के सामने हमारा सब्र अब जवाब देने लगा है। ब्रिगेडियर जनरल मुसावी ईरान के मिसाइल और ड्रोन बेड़े के एक तरह से मुख्य कमांडर हैं। IRGC के आधिकारिक सिपाह न्यूज अकाउंट ने इस पोस्ट के साथ इसराइल को सीधी चेतावनी देते हुए यह मैसेज दिया है, यह संदेश दिया है, IRGC एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलें कब्जे वाले इलाके की ओर दागे जाने वाली हर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यानी ऑक्यूपाइड लेबनान में इजराइल की सेना को निशाना बनाने के लिए इस समय ईरान की IRGC तैयार है। ईरान पूरे इजराइल को भी कब्जे वाला इलाका मानता है, तो यह हमला क्या केवल दक्षिणी लेबनान तक सीमित रहेगा या उत्तरी इजराइल या उससे भी और आगे जेरूशलम और टेल अवीव को भी निशाना बनाया जा सकता है, यह समय की बड़ी खबर है। और ईरान के एक महत्वपूर्ण सांसद हैं इब्राहिम अजीजी ने भी चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले पूरी तरह से नहीं तो इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका की सेना को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बकायदा उत्तरी इजराइल का नक्शा पोस्ट करते हुए धमकी दी कि अपर गलीली का इलाका, लोअर गलीली का इलाका, गोलान हाइट्स का इलाका और उत्तरी इजराइल में जो सबसे महत्वपूर्ण बड़ा शहर है इजराइल का हाइफा, जल्द एक जरूरी चेतावनी वहां जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इजरायली लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई कोरी धमकी नहीं है और ईरान सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके पास जो मिसाइलें हैं इन सभी इलाकों को, चाहे वो गलीली का इलाका हो या हाइफा का, उसे निशाना बना सकते हैं। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण इस पोस्ट ने अब नई अटकलों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि क्या इस बार ईरान पहल करेगा और इसराइल पर पहला बड़ा हमला करेगा। सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट से पूरे उत्तरी इसराइल में चिंता है और ईरान की ओर से अमेरिका के साथ बातचीत में मुख्य भूमिका निभा रहे ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बगेर गलिबाफ, उन्होंने भी एक बेहद कड़ा रुख अपना लिया। मोहम्मद बगेर गलिबाफ ने कल लेबनान की संसद के स्पीकर नबी बेरी से फोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, गलिबाफ ने कहा कि अगर लेबनान में इसराइल के हमले नहीं रुकते तो हम न केवल बातचीत को पूरी तरह से रोक देंगे बल्कि लेबनान के साथ और मजबूती से खड़े हो जाएंगे। गलिबाफ ने हिजबुल्ला का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस जिंदाबाद लिखा, जो ये बताता है कि ईरान अपने समर्थित हिजबुल्ला हो, हूथी विद्रोही हो, इराक के शिया संगठन हो, उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि तेहरान और वॉशिंगटन डीसी के बीच किसी भी संघर्ष विराम समझौते के लिए सभी मोर्चों पर और खासतौर पर लेबनान के मोर्चे पर इसराइल के हमले को रोकने की शर्त जरूरी है। अगर यह शर्त नहीं मानी गई तो बातचीत अमेरिका के साथ भी नहीं होगी और ईरान की धमकियों और ट्रंप के दबाव के बावजूद इसराइल के हमले दक्षिणी लेबनान में इस समय लगातार जारी है। हम कल देर रात और आज सवेरे इसराइल ने जो लेबनान में अलग अलग इलाकों में हमले किए उसकी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। आज सवेरे इसराइली ड्रोन्स ने नबीतिये जिले में 3 हवाई हमले किए। यह दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों की एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है जिसमें नबातिये के आसपास कई इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इन इलाकों में खबर इस तरह की थी कि हिजबुल्ला के हथियार और कुछ उनके लड़ाके मौजूद हो सकते हैं। इन हमलों में हिजबुल्ला से जुड़े ठिकानों को टारगेट किया गया। वहीं टायर शहर और टायर जिले में अल मंसूरी में इसराइल ने फाइटर जेट से हमला किया। आज सवेरे ही आर्टिलरी शेलिंग भी हुई। तो जो इसराइल के वॉरप्लेन्स हैं उन्हें टायर डिस्ट्रिक्ट के अल मंसूरी टाउन पर, वो जो शहर है अल मंसूरी और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस पर हमले किए और इस हमले में एक घर तबाह हो गया, 2 लोगों के घायल होने की खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू कई बार यह साफ कर चुके हैं कि लिटानी नदी के दक्षिण का जो पूरा इलाका है वो खाली कर दिया जाना चाहिए। लेबनान में इजरायली ऑपरेशंस यानी हवाई हमले और जमीनी फौज की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। बेरूत के दक्षिण के इलाके में दाहिये में भले ही बड़े हमले समय नहीं हो रहे लेकिन उसके आसपास और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इसराइल के जो सुरक्षा बल है वो बफर जोन बनाने के लिए अपने हमले और तेज कर रहे हैं। इजरायली सेना लिटानी नदी के आसपास के उन सभी इलाकों पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है जहां से हिजबुल्ला के दक्षिणी बेरूत के इलाके पे दहिये पे सटीक हमले किए जा सके। बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की सेना का यह दावा है कि सीज फायर का मतलब दक्षिणी लेबनान को वापस लौटाना नहीं है, वो हिजबुल्ला को खत्म करने और बफर जोन बनाने के लिए दक्षिण के इलाके में निरंतर बने रहेंगे। एक और आपको महत्वपूर्ण खबर बता दें, कल लेबनान के दाहिये में यानी बेरूत जो लेबनान की राजधानी है उसका जो दक्षिण का सबब है दाहिये, वहां हिजबुल्ला का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ है। इसराइल के हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर जब बातचीत शुरू हुई तो इसमें जबरदस्त गर्मा गर्मी हो गई, तनाव बढ़ गया। बेंजामिन नेतन्याहू जहां हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में बेरूत पर हमला करने का, जमीनी हमला करने का हुक्म दे चुके थे, उनकी सेनाएं आगे बढ़ने लगी थी, वहीं डोनाल्ड ट्रंप खबरों के मुताबिक चीख चीख कर कह रहे थे कि होश नहीं खोना चाहिए, कि बेंजामिन नेतन्याहू होश खो चुके हैं और उनकी वजह से ईरान के साथ बातचीत बिगड़ चुकी है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि नेतन्याहू जहां इसराइल की सुरक्षा का हवाला दे रहे थे वहीं ट्रंप उनके लिए लगातार अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर वो नहीं होते तो बेंजामिन नेतन्याहू अब तक जेल के अंदर होते। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू से सब लोग नफरत करते हैं और उनके चलते लोग अब इजराइल से भी नफरत करते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि दोनों के बीच आखिर किस तरह की तल्ख बातचीत रही। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक फोन मिलाया, नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्ला हमारे शहरों और नागरिकों पर हमला बंद नहीं करता तो इजराइल बेरूत तक हमला करेगा। इजराइल रुकेगा नहीं, बेरूत में दाहिये में जो हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर्स है, जो उनके अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं और जो उनके रिहायशी इलाके हैं, उन पर भी हमला करेगा। और इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रहे हैं। और यह सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है, यह बकवास काम हो रहा है और तुम बिल्कुल होश खो चुके हो, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड्स टू दिस इफेक्ट, उन्होंने कहा कि तुम संतुलन खो बैठे हो, होश खो बैठे हो। अगर मैं ना होता, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, अगर तुम ना हो, अगर मैं ना होता तो तुम इस समय जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। यह भी कहा कि अब तो लोग तुमसे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि लोग नफरत करने लगे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, और यह यहां तक कह दिया कि तुम्हारी वजह से, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री की वजह से लोग अब यहूदियों से या इजराइल के लोगों से भी नफरत करने लगे हैं। ट्रंप की फटकार सुनते ही नेतन्याहू ने कहा ओके, बस ये यकीन कर लेना कि इजराइल की सारी चिंताओं का ख्याल रखा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि बातचीत में गलतियां भी हुई, खबर ये आ रही है कि गालियां भी दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि हिजबुल्ला इजराइल के सैनिकों पर गोलीबारी लगातार कर रहा था, लेकिन उन्हें तो इस समय बस इसी बात की चिंता है कि नेतन्याहू स्थिति को जरूरत से ज्यादा उकसा रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, और हिजबुल्ला के साथ साथ वो अब नए इलाकों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक वो पहले लिटानी नदी और अब लिटानी नदी से भी 10 किलोमीटर और आगे जहरानी नदी तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं, और एक 900 साल पुराने किले को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है जो पिछले करीब 24-25 सालों से उनके पास नहीं था। अब समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू को फोन करना पड़ा। दरअसल सोमवार की सुबह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो रक्षा मंत्री है इजराइल काट्स, उन्होंने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिये में हिजबुल्ला के टेरर टारगेट्स पर हमला करने का लिखित आदेश दे दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशंस तेज कर दिए। हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इजराइल पर पलटवार कर रॉकेट्स दागे। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को रोक दिया और कहा कि लेबनान में अगर हमला नहीं रुका तो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। आखिरकार शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और उन पर दबाव बनाया कि बेरूत पर ग्राउंड ऑपरेशंस ना हो और कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई या एयर वॉरफेयर भी ना हो, हवा से बमबारी ना हो। जब बहुत तल्ख अंदाज में बातचीत हुई तो खबर आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री मान गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो बेरूत ना जाएं, दक्षिणी बेरूत पर हमला न करें और वापस जिस इलाके में उनके गढ़ हैं लेबनान के अंदर, दक्षिणी लेबनान में, वहीं पर वापस आ जाएं। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस फोन कॉल के बाद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बातचीत की जो जानकारी सोशल मीडिया पर दी, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि अगर हिजबुल्ला ने हमला किया तो इजराइल अगली बार रुकेगा नहीं, अगली बार दक्षिणी बेरूत पर और दाहिये पर बड़े हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई, मैंने कहा कि वो बेरूत पर कोई बड़ा हमला ना करे। उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। मेरी बातचीत हिजबुल्ला के नेताओं और उनके प्रतिनिधियों से भी हो गई है। वो इजराइल पर हमला रोकने पर सहमत हो गए हैं। इजराइल भी मान गया है कि अब वो आगे हमले नहीं करेगा। अब देखते हैं कि कितने समय तक दोनों पक्ष अपनी बात पर टिकते हैं। उम्मीद ये है कि अनंत काल तक शांति रहेगी। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर लिखा कि आज रात मेरी बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। मैंने कहा कि अगर हिजबुल्ला ने हमारे शहरों और हमारे नागरिकों पर हमले किए तो इसराइल बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर आतंक के गढ़ पर बड़ा हमला करेगा। हमारे इस रुख में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। साथ ही साथ इसराइल की सेना योजना के अनुसार दक्षिण लेबनान में अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। यानी नेतन्याहू ने बेरूत पर हमला तो रोक दिया लेकिन उनकी सेना दक्षिणी लेबनान में अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगी और अपनी स्थिति को वहां और मजबूत करेगी। जबकि ईरान की कोशिश यह है कि पूरी तरह से युद्ध विराम हो जाए और इसराइल की सेना अपने देश में लौट आए। दरअसल स्थिति पूरे मध्य पूर्व में इस समय बेहद गंभीर है। नेतन्याहू इसराइल में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उनके जो पार्टनर हैं यानी उनके कोएलिशन पार्टनर्स, उनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, उन पर हिजबुल्ला के खिलाफ खुलकर हमला करने का जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्री जो हैं उनके कैबिनेट में बेन गवीर ने तो यहां तक कह दिया है कि अब ट्रंप को ना कहने का समय इसराइल के लिए आ गया है। धुर दक्षिणपंथी नेता बेन गवीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेतन्याहू को उन्हीं के बयान याद दिलाते हुए कहा कि एक ताकतवर प्रधानमंत्री संभव हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति को हां कहे और जरूरी हो तो ना भी कहे। अब समय आ गया है कि मित्र ट्रंप को ना कह दिया जाए। इट्स टाइम टू से नो टू ट्रंप। वक्त आ गया है कि इसराइल अपने सैनिकों के हाथ खोल दे और हिजबुल्ला पर हमले के लिए जो भी जरूरी हो वो करे। बेन गवीर वो नेता हैं जिन्होंने गाजा में भी जो फ्लोटेला आ रहा था उसे रुकवा दिया था और उस पर सवार हो गए थे। तो इसराइल में भी जो दक्षिणपंथी हैं वो बड़े ऑपरेशन की मांग कर रहे हैं और इस बड़ी खबर पर लगे रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
11: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
12: Oh, yeah.
11: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
13: Tune in's how to.
6: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
13: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
17: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पर उतरी ममता बैनर्जी, कोलकाता में धरना, बागी विधायकों से बड़ी बगावत के संकेत। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में उतरे योगी आदित्यनाथ, कहा माफिया और मच्छर करेंगे साफ, जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। फाजिल नगर का नाम किया पावागढ़। उन्नीस घंटे के बाद खुले सीबीएसई रिवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश, सिर्फ दो मिनट में आए 15 लाख हिट, 16,000 छात्रों ने किया आवेदन।

यूक्रेन में मचा हाहाकार। की पर रूस का सबसे बड़ा प्रहार। रात भर यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों की मार। सोते लोगों पर बरसे बम, कई की गई जान। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम। कल की रात तबाही की रात थी। यूक्रेन की राजधानी कीव जल रही थी। कई इलाके आग के हवाले हो चुके थे। सेना पर हमला हुआ, घरों पर हमला हुआ, पावर प्लांट पर हमला हुआ। आग के शोले भड़क रहे थे। आखिर रूस ने अचानक इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्या यूक्रेन कर रहा है पलटवार की तैयारी, या एक बार फिर रूस के हमलों की ही है बारी?

0: मैं आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत और अब हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की जो 2022 फरवरी से लगातार चल रहा है। यूक्रेन की रणभूमि पूरी तरह से इस समय सुलग रही है क्योंकि 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है रूस के साथ उसका युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने मध्यस्थता की, कई बार युद्ध विराम की कोशिशें भी की गई और कई बार अमेरिका ही की तरफ से या यूरोप की तरफ से प्रयास हुआ कि यूक्रेन को और हथियार दिया जाए और युद्ध की आग और भड़काई जाए। इस समय मिसाइलों का दौर बहुत तेजी से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर इतनी मिसाइलें दागी, राजधानी किए भी नहीं बल्कि आसपास के इलाके भी धू धू कर जल उठे। सारी रात बम गोले बरसते रहे। बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ये अटैक्स किए। ये हमले सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब कुछ महत्वपूर्ण रिहायशी इलाकों के आसपास भी किए गए और कुछ बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा। कई इमारतें इस हमले की वजह से आग की लपटों में घिर गई। इन हमलों में 10 से ज्यादा लोगों ने पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा दी है। राहत अभियान अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी भी जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वैसे यूक्रेन की तरफ से भी लगातार रूस पर वार हो रहा है। उसके पास भी मिसाइलों की सीमा तो है लेकिन ड्रोन के मामले में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जिस तरह से इनोवेशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है, यानी एआई के जरिए ड्रोन निर्धारित करते हैं कि वो कहां जाकर कैसे हमला करेंगे। और रूस की एक बड़ी तेल की रिफाइनरी पर हमला किया गया, उसे तबाह कर दिया ताकि रूस के जो तेल उत्पादन की क्षमता है, निर्यात की क्षमता है, वो प्रभावित हो जाए। और खासकर ऐसे हालात हो जब ईरान में युद्ध की वजह से रूस तेल का ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना चाहता है, मुनाफा कमाना चाहता है, उसके मुनाफे पर असर हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर आसपास के कई इलाकों में, और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो रूस ने हमले किए हैं उसकी वजह से कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूस ने एक के बाद एक कई हवाई हमले किए, यानी मिसाइल अटैक्स किए, ड्रोन अटैक्स किए। लोगों को एयर रेड सायरन के बाद बंकरों में जाने की नसीहत तो दी गई लेकिन कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। देर रात ये हमले हुए थे, इमारतों को नुकसान भी पहुंचा और कई इलाके सारी रात अंधेरे में, ठंड में लोग वहां फंसे रहे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर विनाशकारी हथियारों से शहर शहर आपको केवल बर्बादी का मंजर इस समय दिखाई दे रहा है यूक्रेन में।
1: रूस सारी रात की पर परसाता रहा बम, इमारतें धुआं धुआं, कईयों ने गवाई जान। शेल्टर्स में छुपे लोग, कई इलाकों में कोहराम। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। बीती रात एक के बाद एक कई हमले किए गए। कीव, खारकीव और निप्रो जैसे कई शहरों पर 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों से भीषण हमले हुए। कीव में हमले की यह तस्वीर बर्बादी को बयां करने के लिए काफी है। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थी कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन के एयरबेस को रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए तबाह कर डाला। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में एयरबेस के इलाके से आग और धुआं उगता देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि रूस ने फ्यूल स्टोरेज और गोला बारूद रखने की जगह पर बम बरसाए जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अभी तक ये नहीं पता लग सका कि एयरबेस पर हमले में क्या किसी एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा है या नहीं। रूस ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी जमकर बमबारी की। इन हमलों में कई इमारतें जलकर राख हो गईं, मिसाइल अटैक में इमारतों में आग लग गई और कई लोग उनमें फंस गए। सूचना मिलते ही राहत दल फौरन आग बुझाने में जुट गए। कई घंटों तक आग बुझाने का काम चलता रहा। कीव के पोडिल्स्की जिले में एक हाईराइज बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई। कीव के मेयर के मुताबिक रूस ने यहां डबल टैप तकनीक का इस्तेमाल किया, मतलब एक ही जगह पर थोड़ी देर बाद हमला करना ताकि राहत के लिए आई चीन भी बच ना पाए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशंस को निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में भारी नुकसान के बाद ज्यादातर इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। रूसी सेना इन हमलों के लिए पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रही थी। सोशल मीडिया पर रूसी सेना का ये वीडियो इन्हीं तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस एक तरफ जमीनी हमले करने के साथ यूक्रेन की सरजमी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दूसरी ओर मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए तबाही मचा रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन पहले ही दावा किया था कि खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
2: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується і...
1: हैरानी की बात तो यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानकारी होने के बावजूद यूक्रेन रूस के हमलों को रोकने में नाकाम रहा। उनका एयर डिफेंस सिस्टम या तो उतना कारगर नहीं है या फिर रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने उनकी कमियों को उजागर कर दिया। 4 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूसी सेनाएं यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा जमा चुकी हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वैसे तो दोनों देशों को इस युद्ध की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा लेकिन यूक्रेन विनाश की कगार पर पहुंच चुका है। उनके हथियार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और कई मोर्चों पर अब वो दूसरे देशों की मदद पर निर्भर है। आज तक ब्यूरो।
0: फरवरी 2022 से चल रहा युद्ध अब और विकराल रूप लेता जा रहा है और जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है ये बेहद खतरनाक है क्योंकि पहले तो केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था लेकिन अब खबर आ रही है कि रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कौन कौन से हैं ये हथियार? लंबी दूरी तक मार करने वाले अत्यंत घातक हथियार हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कौन से है यह हथियार? जो इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है, यह दिशा बदलने की इसमें काबिलियत है। 500 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ हमला करने में पूरी तरह से सक्षम। इसके अलावा यह जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक यानी आवाज की गति से 5 गुना से 15 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चल सकती है। 2 तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 1100 किलोमीटर दूर वार करने में पूरी तरह से सक्षम। ये मिसाइलें आपको दिखाती हैं कि किस तरह के हमले इस समय हो रहे हैं। फिर टॉर्नेडो जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनको MBRLs या MRLS कहते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स या मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये 3 मिनट में रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं 150 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ सुख सुख सुख सुख सुख तेज गति से एक के बाद एक रॉकेट जाते हैं 150 किलोमीटर दूर। एक पूरा एरिया जो है ना, ये को एरिया डिफेंस एरिया डिस्ट्रक्शन वेपन इनको कहा जाता है। ये इसको डिफेंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। फिर ये जो S-300 या इसका अत्याधुनिक वर्जन जो समय भारत के पास भी है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये एंटी स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है। 150 से 300 किलोमीटर कोई आपके ऊपर खतरा आ रहा है तो उस पर वार करके उसे ध्वस्त करने में सक्षम है। हालांकि दुनिया में पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल किया था 320 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के एक विमान को गिराने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन भारत ने इसे एक ऑफेंसिव रूप में इसको इस्तेमाल किया था। तो ये हथियार है जो इस समय इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे रूस ने चीन के एक बड़े ब्रांड को भी अपने अटैक में ध्वस्त कर दिया। गलती से हुआ, जानबूझकर यह हमला किया गया, यह तो अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इन हमलों में चीन के ब्रांड का एक शोरूम भी तबाह हो गया। कंपनी की जो इलेक्ट्रिक कार है उसको बेचने का एक शोरूम यूक्रेन में खुला था और वहां पर एक मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लग गई, उसकी आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस का आमतौर पर कहना यह रहता है किसी भी इलाके की आड़ लेकर जब यूक्रेन रूस के ठिकानों पर हमला करता है तो जो वेपन लोकेटिंग रेडार्स हैं वो उन हथियारों को देखकर पलटवार जब करते हैं तो उसमें कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन यहां पर चीन की एक बड़ी कंपनी के शोरूम को भी आग पे पूरी तरह झुलस गए। अच्छा, इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि यूक्रेन ने पिछले 4 वर्षों में कितनी जमीन अपनी गंवा दी है। कई इलाकों पर रूस ने या तो कब्जा कर लिया है या लगातार वो धीरे धीरे इंच बाय इंच, किलोमीटर बाय किलोमीटर आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। अच्छा, हम सबसे पहले बात करेंगे इस पूर्वी इलाके की। अगर आप इसको लंबे मानचित्र पर समझे तो 2022 फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ और 31 मई 2026 तक वो इलाका कितना बढ़ गया है, लगभग 1/5

अतिरिक्त वर्ग किलोमीटर इलाका रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था और जनवरी 2026 363 वर्ग किलोमीटर इलाका अतिरिक्त रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो आप ये सोचिए 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ, हर साल थोड़ा और इलाका रूस के कब्जे में, और अब तो महीने दर महीने, आप अगर जनवरी 2025 की बात करें तो 354 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का इलाका रूस के पास था, जो बढ़कर फरवरी 2026 में अतिरिक्त 125 वर्ग किलोमीटर रूस ने अपने कब्जे में कर लिया। रूस सलामी स्लाइसिंग ऑफ यूक्रेन कर रहा है। अच्छा, मार्च 2025 में 203 वर्ग किलोमीटर, मार्च 2026 32 वर्ग किलोमीटर और रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है, और वहां पर झंडा रूस का और सिपाही रूस के। अप्रैल की बात करें तो 186 वर्ग किलोमीटर था, जो अप्रैल 2026 में 28 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। यानी धीरे धीरे ही सही और इलाके में आगे रूस की सेना बढ़ रही है। मई 2025 में अगर 515 वर्ग किलोमीटर था, तो एक साल में मई 2026 तक 40 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त रूस के पास उनके कब्जे में है। ऐसे आंकड़े दुनिया के अलग अलग भागों में जो आकलन हो रहा है वो ये हो रहा है कि यूक्रेन लड़ तो बहुत मजबूती से रहा है, लेकिन उसका इलाका वो खोता जा रहा है रूस की सेना। और क्यों? क्योंकि उसके पास हथियारों की समय कमी भी हो रही है। वैसे अब बात करते हैं रूस में हुए हमले की, यूक्रेन ने पलटवार भी किया। यूक्रेन स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को अक्वायर कर रहा है, यानी बेहद वो संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाके जो रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता या पैसे कमाने की क्षमता को और कंट्रोल में कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं। यूक्रेन लगातार रूस की रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, जहां से ईंधन रूस बेचकर पैसे कमा सकता है, ताकि तेल का निर्यात प्रभावित किया जा सके। उससे रूस को खासा नुकसान हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।

0: रूस यूक्रेन में बढ़ रहा घमासान। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारालोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। एक दूसरे हमले में किरोव इलाके में बने लाजा रेवो पंपिंग स्टेशन पर भी आग लग गई। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के तेल उत्पादन पर अच्छा खासा असर हुआ है। रूस की योजना थी कि ईरान युद्ध के दौरान बड़ी तादाद में तेल का निर्यात कर मोटा मुनाफा कमाया जाए, लेकिन यूक्रेन चुन चुन कर उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है ताकि रूस पर करारी आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। यूक्रेन के हाल ही के हमले में एक की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हुए थे। ये वही रिफाइनरी है जिसने 2024 में 1,35,00,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था। ये रूस में होने वाले कच्चे तेल के कुल प्रोडक्शन का 5% है।
1: लगभग 4 साल 4 महीने से ये युद्ध चल रहा है और कहीं भी शांति की कोई किरण, कोई उम्मीद नजर फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg

0: internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: Sokudo.
7: एसआईआर की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है, एक पैनिक क्रिएट हो गया है। इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
3: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हकीमपुर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्स ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
5: ट्यून इन हाउ टू अ ब्रीफ लुक इन ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव
6: लुकिंग फॉर योर फेवरेट लोकल रेडियो स्टेशंस लुक नो फर्दर TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

टीएमसी में टूट के खतरे के बीच सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, कोलकाता में धरना, बाकी विधायकों से बड़ी बगावत के संकेत। यूपी के चुनावी संग्राम में उतरे योगी, कहा माफिया मच्छर दोनों खत्म, जो बोली से नहीं माना उसका इलाज गोली से हुआ, फाजिल नगर का नाम किया पावागढ़।

0: 19 घंटे बाद खुले सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश, सिर्फ 2 मिनट में आए 15 लाख हिट, 16,000 छात्रों ने किया आवेदन। पंजाब में स्कूल की मनमानी का खौफनाक अंत, अमृतसर में 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, 20,000 बकाया फीस के लिए प्रताड़ना का गंभीर आरोप। आरसीबी को फिर से आईपीएल चैंपियन बना, प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे विराट कोहली, पत्नी अनुष्का भी साथ, हर बड़े टूर्नामेंट के मौके पर जाते हैं वृंदावन।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल हम देश की होनहार पीढ़ी के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती पर कर रहे हैं और वो चुनौती है शिक्षा व्यवस्था की, और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि सीबीएसई के पोर्टल पर लगातार बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हो रहे हैं। सीबीएसई की ओर से यह जानकारी दी गई है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल खोलने के बाद लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। सीबीएसई ने कहा है सीबीएसई के पोर्टल पर लगातार बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हो रहे हैं। सीबीएसई की ओर से यह जानकारी दी गई है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल खोलने के बाद लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। सीबीएसई ने कहा है कि साइबर अटैक का ताजा मामला डिनायल ऑफ सर्विस हमले की कोशिश का है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 मिनट के अंदर पोर्टल पर 15 लाख हिट्स आ चुके हैं। सीबीआई का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा बार अनधिकृत फाइल्स एक्सेस करने की कोशिशें की गई है। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि दोपहर 3 बजे तक 16,000 बच्चों ने पुनर्मूल्यांकन या कॉपी देखने के लिए आवेदन दिए हुए हैं और पोर्टल फिलहाल चल रहा है। सीबीएसई ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी थी, लेकिन उसके बावजूद सीबीएसई के पोर्टल पर जो दोबारा खोला गया था गड़बड़ियां पाने के बाद, उस पर लगातार अटैक चल रहे हैं। अनमोल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, कुल मिलाकर सीबीएसई यह कहने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे हिट्स इस वेबसाइट पर करने की कोशिश हो रही है जिसके वजह से लोगों को वो एक्सेस ही ना हो सके, यानी हैंग हो जाए एक तरीके से वेबसाइट, क्या ये कोशिश मानकर सीबीएसई कह रही है या कुछ और भी करने की कोशिश है सीबीएसई की तरफ से?
3: साहिल, जैसे आप जानते हैं कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर एक तरफ तो सियासत तेज है, वहीं आज सीबीएसई ने एक बड़े आरोप लगाए कि उनके जो पोर्टल पर है साइबर अटैक किए जा रहे हैं। उनका डिनाइल ऑफ सर्विस का एक बड़ा आरोप है कि 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रिक्वेस्ट उनको 2 मिनट में भेजी जा रही है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिक्वेस्ट भेजी जाती है ताकि जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाए, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई का एक बड़ा आरोप है। और 1 लाख से ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस के अटेम्प्ट हो रहे हैं यानी कि डाटा ब्रीच करने की कोशिश की जा रही। वही सीबीएसई ने यह भी डाटा साझा किया कि अभी जो सीबीएसई का पोर्टल है वो 8,000 बच्चों को संभाल रहा है और 3 बजे तक 16,000 बच्चों ने सक्सेसफुली अपनी रीवैल्यूएशन
0: की। ये तो सोशल मीडिया पर डाला है उन्होंने, लेकिन ये तो एंटीसिपेटेड था एक तरीके से कि जब रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा तो कई बच्चे उस पर जाएंगे, क्योंकि पहले से ही रीवैल्यूएशन को लेकर कई सारी शिकायतें हैं। तो इसके लिए एक तो सरकार तैयार थी क्या, सीबीएसई तैयार थी क्या, नंबर एक। नंबर दो, कौन अटैक कर रहा है? अगर वो कह रहे हैं कि साइबर अटैक हो रहे हैं तो कौन ये अटैक कर रहा है?
3: सीबीएसई सूत्रों की माने तो अभी उनकी टीम इस समय साहिल लगी हुई है, जानने में लगी हुई है कौन जो लोग हैं जो सीबीएसई को ऐसी सर्विस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इतने सारा जो डेटा है उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अकेली सीबीएसई नहीं आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीम्स भी लगी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी मीटिंग ली थी, धर्मेंद्र प्रधान खुद उस मीटिंग में थे, दोनों आईआईटी से जो बड़े डायरेक्टर्स थे उनको बुलाया गया और कल सुबह से ही देखा जा रहा है
0: एक छात्र ने इसी वेबसाइट पर जाकर यह पता करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इसे एक्सेस किया जा सकता है, जो बाकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो भी किस तरीके से गलत है, शायद इसलिए भी कई लोग इस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बड़ी चिंताजनक बात है कि आखिर जब देश के लाखों बच्चे परेशान हैं तो सीबीएसई के पोर्टल पर इतने बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हो रहे हैं, और कौन कर रहा है, क्या करवा रहा है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि वैसे ही देश में परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर फिलहाल घमासान मचा हुआ है। पिछले महीने से देश में दो परीक्षाओं को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल कॉलेजों में भर्ती की नीट परीक्षा के पेपर लीक का सवाल है और दूसरा सवाल सीबीएसई के 12वीं कक्षा की आंसर शीट्स में हुई मार्किंग की गड़बड़ी का है। नीट मामले में तो सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, सीबीआई जांच करा रही है, 21 जून को दोबारा परीक्षा भी तय हो चुकी है और खुद प्रधानमंत्री इस पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी ले चुके हैं। अब 22 लाख से अधिक विद्यार्थी जो पिछले ही महीने परीक्षा को लेकर नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वो फिर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के ऊपर कितना तनाव है इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। खबर है कि नीट परीक्षा लीक होने की खबर सामने आने के बाद देश में करीब 5 से 6 विद्यार्थी अपनी जान दे चुके हैं। आज झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि कोडरमा से यह खबर आ रही थी कि वहां तिलैया थाने के चित्रगुप्त नगर में 16 साल की एक नीट परीक्षार्थी संजय प्रसाद की बेटी रुचि ने खुदकुशी कर ली। परिवार का कहना है कि खुदकुशी से ठीक पहले उनकी बेटी ऑनलाइन सैंपल टेस्ट दे रही थी। हालांकि पुलिस को मिली अर्जी में नीट परीक्षा का कोई भी जिक्र नहीं पाया गया है। फिर भी नीट परीक्षा और नीट पेपर लीक के बाद से देश में विद्यार्थियों, अभिभावकों से लेकर राजनीतिक दलों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों के संगठन, फिर वो NSUI हो या ABVP हो, NTA के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। NTA के दफ्तरों से लेकर शिक्षा मंत्री तक के खिलाफ तमाम प्रदर्शन किए जा चुके हैं। खुद राहुल गांधी ने बच्चों से बातें की है। लगातार सियासी दल नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि मामला सिर्फ नीट पेपर लीक का अब नहीं रहा है। नीट पेपर लीक के भंडाफोड़ से सरकार निपट ही रही थी कि CBSE की 12वीं के रिजल्ट को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। CBSE 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में इतने तरह की गड़बड़ियां सामने आई कि CBSE को एक बार फिर रीएवेल्युएशन चाहने वाले बच्चों के लिए दोबारा पोर्टल खोलना पड़ा, जिसकी खबर हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। हालांकि उसमें भी तमाम परेशानियां अभी भी जताई जा रही है। अब मांग उठ रही है कि दोबारा फिजिकली बच्चों की कॉपियां जांच कराई जाए क्योंकि रीवैल्यूएशन की यह कंप्यूटर के जरिए रीवैल्यूएशन की पद्धति इस बार ही लागू की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक सुनवाई चल रही है, बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक न तो नीट के बच्चों को न्याय मिल पाया है और न ही CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले सिस्टम यानी OSM के पीड़ित बच्चों को। आखिरकार संसदीय समिति ने उन बच्चों से भी राय जानी है जिन्होंने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में तमाम खामियां पकड़ी है और सरकार को उन खामियों पर गौर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए हमने देश के लोगों से इस विषय पर राय जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन सभी मुद्दों पर देश के लोगों को क्या लगता है। सी वोटर ने 4 दिन पहले यानी 28 मई को देश के हर हिस्से में हर लिंग, जाति, क्षेत्र और उम्र के 1346 लोगों से बात की, उनसे कई सवाल पूछे, जरूरी सवाल पूछे और उनकी राय भी जानने की कोशिश की। वो राय हम आपके सामने रखेंगे और उसमें मिले जवाबों पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ और गेस्ट के साथ में हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि CBSE और नीट का मामला ये देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट है, फाउंडर डायरेक्टर सी वोटर के, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर शिखा दरबारी पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की, वो इस चर्चा में शामिल होंगी। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और डॉक्टर रणवीर सिंह पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी है CBSE के, उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे क्योंकि लोगों की राय बड़ी दिलचस्प है इस पूरे मामले को लेकर। आपके पहला सवाल जो हमने उनसे पूछा था, वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये पूछा था कि आपके परिवार और पहचान में कोई भी रद्द हुए नीट की परीक्षार्थी है या नहीं है। हाँ कहने वाले 45.1% लोग थे और कह रहे हैं कि बहुत हम नाराज हैं। हाँ हमारे बच्चे उसमें शामिल थे, हमारे पहचान वालों के बच्चे शामिल थे, लेकिन थोड़े से नाराज है 7% लोग, यानी 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि हमारे पहचान के कोई ना कोई बच्चा उस परीक्षा में शामिल था और हम नाराज हैं। नाराज नहीं है कहने वाले 10 और हमारे बच्चे कोई पहचान के उसमें नहीं थे पता नहीं है कहने वाले 28% और नहीं कह सकते जो आम तो अमूमन होता है 9.9% लोग उसके बारे में कह रहे थे। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि CBT से क्या पेपर लीक रुक जाएगा। हां कहने वाले 41.7%, नहीं कहने वाले 32.3% और पता नहीं कहने वाले 26%। यानी अभी लोग कहते हैं कि कंप्यूटर से परीक्षा कराए जाने से पेपर लीक रुक जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी गड़बड़ियां निकली है। हां कहने वाले हालांकि ज्यादा है, नहीं कहने वाले भी 32.3% है। NTA को बंद करके पहले की तरह राज्यों को परीक्षा कराने देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पहले एनटीए इसीलिए बना था कि राज्यों में जो परीक्षाएं होती थी उसमें गड़बड़ियां भी होती थी और कंफ्यूजन भी काफी होता था एडमिशंस के लिए। हां कहने वाले आज की तारीख में एनटीए की इस पेपर लीक के बाद 60.6% लोग कहते हैं कि हां अब एक बार फिर डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए पूरी तरीके से। नहीं कहने वाले 23%, पता नहीं 16.4%। और सबसे अहम सवाल कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी है, कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी कई सवाल पूछे गए थे। तो कोचिंग सेंटर्स के बारे में आपकी क्या राय है, क्या जरूरी है क्या कोचिंग सेंटर्स? तो जरूरी है कहने वाले 32.5% लोग कहते हैं कि हाँ जरूरी है। बुराई करने वाले है 11.9%, लेकिन चाहिए लेकिन रेगुलेशन जरूरी है ये कहने वाले 40.6%, और सब बंद कर दीजिए 9.3%, और पता नहीं कहने वाले 5.8% लोग। कुल मिलाकर एक बात साफ होती है कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी लोगों को लगता है कि वो होने चाहिए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उन पर रेगुलेशन भी होना चाहिए। हमारे तमाम मेहमानों से शुरुआत में तो मैं एक अहम मुद्दे पर सबसे राय जानूंगा और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या राज्यों को दोबारा एनटीए बंद करा के परीक्षा कराने का अधिकार देना चाहिए। 60.6% लोग कहते हैं कि हां यह अधिकार देना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड करने से ज्यादा दिक्कतें हो रही है। अजय आलोक जी, जल्दी से पहले आपकी प्रतिक्रिया, सभी से एक एक प्रतिक्रिया लेके फिर मैं आगे के रिजल्ट्स भी दिखा दूंगा, क्योंकि और भी कुछ सवाल है और उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे। अजय आलोक जी,
4: देखिए साहिल जी, एनटीए लागू करने का सजेशन माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से ही आया था। इसके एवज में केंद्र सरकार ने 2019 में एनटीए की स्थापना की है, 2020 से यह चल रहा है। कमोबेश अगर नीट 2026 को देख लें तो ये अभी तक 6 सालों में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। नीट एग्जाम 2026 एक पहला अपवाद हुआ, 2024 में भी हंगामा उड़ा था कि लीक हुआ है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 3 सेंटरों को रद्द किया जाए, बाकी एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया था। एनटीए की व्यवस्था इसलिए की गई थी, एक बार समझिए कि पूरा देश में एक होमोजेनिटी आए और पूरे देश में एक तरह की मेरिट एस्टैब्लिशमेंट, एक मिनिमम आंसरिंग स्कोर आए, और सेकेंडली कि हर वो व्यक्ति जिसको मार्क्स के बेसिस पे और एक एवरेज मार्किंग के सिस्टम के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस में, होम्योपैथी में, क्योंकि इसमें सारे स्ट्रीम्स को एक साथ दिया गया था, सबको एक साथ एक ही मार्क्स के बेसिस पे आप उसको टैबलेट कर सकते हैं बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड स्टेटस कि आपको कहां पे क्या मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि एनटीए डीरेगुलराइज करके राज्यों के पास भेज देना, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल प्रेशर पड़ता है, किसी किसी एग्जाम्स के डेट कॉन्साइड करते हैं, कोई कोई एग्जाम 2 महीने बाद होते हैं, कोई 1 महीना पहले होता है, तो तमाम तरह की इन सब चीजों को, विसंगतियों को देखते हुए एक एनटीए का फैसला था। अब एक एग्जाम के पेपर लीक हो जाने से यह मतलब नहीं है कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। जरूरत यह है कि उस सिस्टम को हम दुरुस्त करके, मजबूत करके कैसे आगे ले चलें कि भविष्य में यह गलती ना हो। अब जैसे अगले साल से
0: कंप्यूटराइज हो जाएगा, लोगों के मन में डर है, फिलहाल लगातार पेपर लीक की वजह से शायद लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए ही कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम लागू करिएगा जिससे पेपर लीक रुक जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रीवैल्यूएशन में गड़बड़ियां हुई है, तो कहीं ना कहीं उसे भी बेहतरी की जरूरत है। कंप्यूटराइज सिस्टम तो चाहिए लोगों को, कह रहे हैं कि 41.7% लोग कह रहे हैं कि हां जरूरी है पेपर लीक रोकने के लिए।
4: देखिए आप सीबीएसई और एनटीए दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। अभी जो सीबीएसई में हुई है निश्चित तौर पे ये उनका प्रयोग था पहली बार कि हम लोग रिवैल्यूएशन और बाकी पेपर चेकिंग भी इस बार ऑनलाइन स्कैनिंग करके करेंगे, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी की सारी आंसरशीट मार्कशीट सबके साथ हम उपलब्ध करवा सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने मात्र सीबीएसई वालों ने 5 स्कूलों पर किया, 5 स्कूलों में बहुत सक्सेसफुल हुआ, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। इनकॉर्पोरेट करने के बाद रीवैल्यूएशन के समय अभी जो 19 घंटे का सर्वर डाउन हुआ है वो इसलिए इनको करना पड़ा अपनी वेबसाइट शट, जो कि मुझे लगता है क्योंकि इनके वेबसाइट पे किसी ने हैक कर लिया था, तो निश्चित तौर पे एक सिक्योरिटी इशू है।
0: मैं उन दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूं, आलोक जी मैं जरा रिफाइन कर देता हूं सवाल, मैं दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूं। कहने की कोशिश यह है लोगों की कि पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि अभी देखिए सरकार की तरफ से कहा गया कि हम एयरफोर्स को लाएंगे, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके हम पेपर्स पहुंचाएंगे ताकि लीक ना हो सके, आर्म फोर्सेस को लेके आएंगे, यानी कहीं ना कहीं पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम से एनटीए की परीक्षाएं नहीं ली जाती। तो आप कंप्यूटराइज सिस्टम करिए तो कम से कम खतरा टलेगा पेपर लीक का, यह कहने की कोशिश करें, आप इससे सहमत है क्या?
4: निश्चित तौर बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि कंप्यूटराइज सिस्टम लाने से न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बल्कि रैंडमाइजेशन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को एक ही आदमी सेट नहीं करता है। हम लोग भी जब एग्जाम देते थे, आप भी जब एग्जाम देते होंगे, तो हमारे यूनिवर्सिटी में पैटर्न होता था कि पांच छह टीचरों से क्वेश्चन पेपर लिया जाता था और उसके बाद एक एक सब्जेक्ट के रैंडम क्वेश्चन किसी से 10 क्वेश्चन इससे लिए, 20 क्वेश्चन उससे लिए, 30 क्वेश्चन इससे लिए, तो उसमें पेपर लीकिंग 100% रोकी जाती थी। हमारे टाइम में भी होता था लेकिन मैनुअली होता था। अब यही काम अगर इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो डेफिनेटली पेपर लीक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। हमने आईटीजेई में तो कभी नहीं सुना पेपर लीक होते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन खुद अपना दिया कि रिटर्न एग्जाम होता है, सब कुछ होता है, यूपीएससी में तो पेपर लीक नहीं होता है। द रीजन बीइंग कि वो लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। और दो डेढ़ साल से 2025-24 से ही एनटीए इस मामले में काफी आगे बढ़ चुका है और उसी विश्वास पर एनटीए ने कहा कि अगले साल से हम इसको बिल्कुल सीओपीडी कंप्यूटर मोड में करेंगे इस एग्जामिनेशन को।
0: लेकिन क्या उसके लिए जरूरी तकनीक और जो कंपनियां होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम के लूपहोल्स भी किस तरीके से हो सकते हैं। कई छात्रों ने भले एनटीए के मामले में नहीं लेकिन सीबीएसई के मामले में जरूर उसको उजागर भी किया हुआ है, तो इसके लिए उस पर भी ध्यान देना होगा। कई इंटरनेशनल एग्जाम्स अभी भी कंप्यूटराइज तरीके से होती है और कई सालों से हो रही है लेकिन उसमें अब तक कोई गड़बड़ियां उस तरीके से नहीं देखी गई। लेकिन डॉक्टर दरबारी, आपने भी यह सर्वे देखा, पहला सवाल तो मेरा यह है कि क्या कारण है कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अब वापस एक बार पुराने तरीके से 2019 के पहले जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं अलग अलग ली जाती थी, वहां की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद सरकार ने इसलिए एनटीए लाई ये कहते हुए कि भाई कोऑर्डिनेशन आसान पड़ेगा, किसी भी छात्र को देश में कहीं भी एडमिशन लेना है तो एक ही उसके पास मार्किंग सिस्टम होगा, इसीलिए एनटीए का इंट्रोडक्शन किया गया था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि दोबारा राज्यों को चले जाइए, क्या यह सोल्यूशन है उसका? डॉक्टर दरबारी, शिखा जी से दोबारा संपर्क किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर रणवीर सिंह आपका क्या मानना है इस पर?
5: देखिए सर, मैं एनटीए को स्ट्रेंथन किया जाए और एनटीए को बंद ना किया जाए और एनटीए को अपना काम करने दिया जाए। दूसरी बात यह कि एनटीए जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए, जो भी सेंटर बनाए उनको देख के बनाए, जो ये बिल्कुल ही घरों में लोगों ने 100-100 कंप्यूटर लगा रखे हैं और उसमें से सेंटर चलते हैं, तो वहां पे ये सब परेशानियां पैदा हो सकती है, उन लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो एनटीए तो अच्छी बॉडी बनाई गई, अच्छी सोच से बनाई गई और एनटीए को स्ट्रेंथन किया जाए, वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को डिस्करेज किया जाए, वहां पे रेगुलर स्टाफ पोस्ट किया जाए और वहां पे रिक्रूटमेंट हो और उस बॉडी को बहुत मजबूत बनाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है और स्टेट को देना ठीक नहीं।
0: ठीक है, यशवंत देशमुख, आपकी क्या राय है, क्या लोगों में क्यों डर है अभी भी एनटीए को लेकर? वैसे तो उनकी आसानी के लिए एनटीए बनाया गया था क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को हर राज्य में जाकर परीक्षाएं देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या इतना बड़ा सदमा है कि लोग कहते हैं कि पहले वाला ही ठीक था? और दूसरा, कंप्यूटराइज सिस्टम को लेकर भी अभी भी सिर्फ 41.1%, मतलब मैं अलग तरीके से उसे देख रहा हूं, क्या भारत के भीतर कंप्यूटराइज्ड एग्जाम्स पर अभी भी लोगों का भरोसा नहीं है? क्या हम अभी भी लोगों को लगता है कि वो सिस्टम उस तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे? 32.3% लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं और पता नहीं कहने वाले भी 26% है उसमें।
6: साहिब, मुझे लगता है कि ये तात्कालिक गुस्सा है जिसके कारण आपको 33% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं करना, मतलब उनको बेसिकली भरोसा, जिसे कहते हैं ना ट्रस्टवर्दीनेस फैक्टर, ये तात्कालिक है। अदरवाइज अगर सामान्य रूप से अगर हम ये पूछते हैं सामान्य समय में, तो शायद इसमें 70% तक लोग हाँ में ही जवाब देते इस बात के लिए, क्योंकि आज ही देखिए, आज IIT JEE का फाइनल नतीजा आया, इसके दो राउंड पहले हो गए थे और फाइनल तीसरे वाले में नतीजा आया, कहीं पर आपको कहीं एक चूं भी सुनाई दिया किसी भी तरीके का? अभी अजय आलोक जी जैसे कह रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं, इतनी परीक्षाएं भारत में जो कंप्यूटर पे होती हैं उसमें कहीं आज तक किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी आपको दिखाई नहीं दी जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर की जाती है। तो नीट वाला ही क्यों इसको इतना डेफर किया गया? इसको करना चाहिए, जब JEE इतने बड़े पैमाने पर किया जा सकता है तो नीट भी किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, और मुझे उम्मीद है कि इसको इसके ऊपर अजय जी भी मुझसे सहमत होंगे, ट्रस्टवर्दीनेस जो नाम की चीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहिल, क्योंकि लाखों बच्चे जिस उम्मीद के साथ में जितनी तैयारी जितनी मेहनत करके इन परीक्षाओं में बैठते हैं, ऑलरेडी इस मुल्क में इतना बड़ा मिडिल क्लास है जो मेरिटोक्रेसी पे ही चलता है साहिल, उनके सामने उम्मीद और आशा केवल इस बात पे हमारे मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम की होती है, पढ़ाई करो, मेहनत करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये जो बच्चे मेहनत करते हैं उसमें जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आशाओं पे कुठाराघात होता है। हर बच्चा जो इस परीक्षा में बैठा जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, और वो मानिए सपोज कीजिए इस बार कैंसिल हो गया और अगली बार में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, वो बच्चा अंदर से इस बात में डर जाएगा कि ये पहली बार के रिजल्ट अगर गड़बड़ नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये चीजें एक एक अपने वैल्यू सिस्टम में मेरिटोक्रेसी को लेकर के जो उम्मीद होती है उसको कम करती हैं।
0: यानी कहीं ना कहीं
6: एक
0: आप कह
6: न्यूज
0: रहे हैं
6: आइटम
0: कि
6: आप
0: ये
6: देखिए, मैं
0: परीक्षाओं
6: इसको
0: को
6: बार बार
0: लेकर
6: कहता हूं,
0: भरोसे
6: तो
0: का मामला है, और ये तो
6: बिल्कुल
0: हम लोग
6: भरोसे का
0: इलेक्शन में भी
6: मामला
0: देखते
6: है।
0: हैं कि
6: इसको
0: कई
6: इसको
0: बार
6: इसको और भी
0: ये
6: ज्यादा
0: भरोसे का
6: मुझे
0: मामला
6: उम्मीद
0: है।
6: है कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि इस पे जिस तरीके से वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है भरोसे को वापस दिलाने के लिए, वो अर्जेंसी दिखाने की जिस तरीके की जरूरत है, मुझे उम्मीद है कि जो लोग
0: डॉक्टर
6: डिसीजन
0: दरबारी,
6: मेकर्स
0: आपने
6: हैं
0: ये,
6: वो इस
0: हमने
6: पे
0: चार ही
6: उस
0: सवाल
6: तरीके
0: फिलहाल
6: से
0: रखे
6: निर्णय
0: हुए हैं,
6: लेंगे।
0: बाकी सवालों पर भी हम जाने वाले हैं, लेकिन जो सवाल फिलहाल आपके सामने हैं उस पे सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जो एनटीए की सिस्टम है उसे बंद करके पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम पर चले जाइए। भले हमारे बच्चे 10 राज्यों में जाकर परीक्षाएं दे, लेकिन वही सिस्टम ठीक है, कम से कम पेपर लीक्स पर काबू पाने में आसानी हो जाएगी। लगता है कि उनको लगता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से इतनी बड़ी सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि अजय आलोक भी कह रहे हैं कि भाई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिस्टम बेहतर करना बेटर है बजाय उसके बंद करने के। डॉक्टर दरबारी,
7: बिल्कुल,
0: आप ही से सवाल पूछो।
7: मैं भी इस बात के लिए यही कहूंगी कि हाँ, तो मैं इसके लिए यही कहूंगी कि ये एक सोल्यूशन ही है, क्योंकि देखिए जब एनटीए बनाया गया था, वो एनटीए इसलिए बनाया गया था कि जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में सारी हम लोग एग्जाम कराते थे वो वहां पे लीक हो जाते थे, और वहां पे हर तरह का जिसे कहते हैं ना कि कंप्रोमाइज वो हो जाता था। तो एक एनटीए अगर हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और अगर आप यहाँ देखिए एनटीए की इस तरह से गलती नहीं है कि उसने जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराने में कहीं प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया था उसने लीक कर दिया। तो यहाँ पे एनटीए को क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है कि जो आप जिसको भी आप पेपर सेटर बना रहे हैं उस पेपर सेटर की आप 360 डिग्री आप उसका वेरिफिकेशन करिए कि वो किसी भी चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए वो कंप्रोमाइज ना हो। अगर किसी की भी एक्सप्लॉइटेबल वीकनेसेस हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं सिस्टम में, तो हमें ये देखना है कि इस तरह की वीकनेसेस सिस्टम में ना रहें, हम एनटीए को स्ट्रेंथन करें, हम उसका एनक्रिप्शन पोर्शन लगाएं। अगर यहां पे देखिए कि कैसे वो लीक हो
0: लेकिन
7: गया
0: डॉक्टर
7: पेपर,
0: दरबारी,
7: उसमें लीक हो
0: समस्या
7: गया तो
0: इस
7: शायद
0: बात को
7: उन्होंने
0: लेकर है
7: फोन से अलाउ कर
0: कि
7: दिया जाए।
0: 2024 में किसी और तरीके से पेपर लीक हुआ था। 2024 में जब पेपर को लेकर जाया जा रहा था, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तब वो लीक हो गया था। इस बार ट्रांसपोर्ट के समय पे लीक नहीं हुआ है, इस बार पेपर सेटिंग के समय, ट्रांसलेशन के समय लीक किया गया है। कहीं ना कहीं हर
7: हाँ, इस
0: बार
7: बार पेपर
0: क्या
7: हाँ,
0: एनटीए
7: तो
0: की
7: उसमें क्या
0: भूमिका यह दिखाई
7: हाँ,
0: देती है
7: इसकी
0: कि दिक्कत आने के बाद वो सोचते हैं कि ये इसको ठीक करना है, पहले से उसका कोई सोल्यूशन लेकर वो इस एग्जाम
7: हाँ नहीं,
0: लेने के लिए आगे नहीं गए, क्योंकि लाखों
7: एनटीए
0: बच्चों का भविष्य उससे अटक जाता है।
7: बिल्कुल, लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, और हमें अपनी युवा पीढ़ी के साथ हम मजाक नहीं कर सकते हैं, वो हमारा भविष्य है। हमें उनको एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस देना है सिस्टम में, एक ट्रस्ट देना है सिस्टम में। पर एनटीए की जो वर्किंग है उसके लिए इवन पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि इट इज नॉट इन्फ्यूजिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस, जब उनका हमने पिछले जब 2024 में उनका पूरा एक एनालिसिस किया गया था। अब अकाउंटेबिलिटी तो एनटीए की है ही कि अगर आपको पता चल रहा है कि ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हम उसको स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी एक वीक पॉइंट आपका जो है वो हैक हो जाता है, कभी दूसरा वीक पॉइंट आपका हैक हो जाता है। तो ये तो पूरे एक एग्जामिनेशन सिस्टम की आपकी एक एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी अकाउंटेबल कि हम हर पॉइंट पे एक अच्छे से करें। पर यहां पे जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जो अपने पेपर सेटर को लिया, पेपर सेटर ही आपका जो है वो आपका कंप्रोमाइज हो गया। तो किसी भी सिस्टम में अब आप जब प्रिंटिंग प्रेस पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, 24 में हुआ था, तो 24 में हुआ था, अभी तक सीबीआई की चार्जशीट कहाँ है? अभी तक अगर 24 में हुआ था, 24 में भी तो कितने हजारों
0: कुल
7: पेरेंट्स
0: मिलाकर
7: ने
0: डॉक्टर
7: पेपर
0: दरबारी ये
7: लिया
0: कहने
7: था
0: की
7: पब्लिक
0: कोशिश
7: पब्लिक
0: कर रही है कि
7: में
0: जब भी ऐसी
7: कहाँ है
0: घटनाएं
7: वो
0: हुई है उसमें अगर
7: पेरेंट्स पेरेंट्स
0: अकाउंटेबिलिटी ठीक से होती
7: बिल्कुल
0: तो हो
7: पेरेंट्स
0: सकता है
7: की
0: कि
7: लिस्ट
0: आगे
7: कहाँ
0: ये
7: है
0: मामले
7: हमें
0: इस तरीके से नहीं होते।
7: बिल्कुल
0: डॉक्टर आलोक इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जरा चार सवाल
7: आज
0: और ले
7: के एक
0: लेते हैं,
7: मिनट
0: क्योंकि
7: देखिए,
0: ये
7: एक और
0: सीबीएसई से जुड़े
7: एक
0: सवाल है। डॉक्टर दरबारी, और भी सवाल है, इस पर चर्चा करनी है हमें, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में, जरा आगे के सवाल भी देख लेते हैं। अब सीबीएसई से जुड़ा मामला, क्योंकि सिर्फ नीट का मामला नहीं है, सीबीएसई के लिए भी हमने ये पूछा था कि परिवार या पहचान में किसी ने विवादित मार्किंग वाली सीबीएसई परीक्षा दी थी क्या? हाँ, बहुत नाराज, ये कहने वाले 40.2% लोग हैं, यानी किसी न किसी से जुड़े हुए घर से पहचान के लोगों में से किसी बच्चे ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा दी थी और वो भी बहुत नाराज है, 40.2%। हाँ थोड़ा नाराज, 6.6%। हाँ नाराज नहीं है, 15.3%। और जानता नहीं कहने वाले 27.1%, नहीं कह सकते 10.8%। अगला सवाल सी वोटर के जरिए पूछा गया था कि सीबीएसई को रिजल्ट वापस लेकर दोबारा फिजिकली कॉपी चेक करनी चाहिए क्या, जिस तरीके से नीट में री एग्जामिनेशन हो रहा है, क्या सीबीएसई को भी री इवेल्यूएशन के लिए अब दोबारा फिजिकली कॉपी चेक करना जरूरी है क्योंकि उनके सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई है। हाँ कहने वाले 62.2% लोग ये कहते हैं कि हाँ फिजिकली चेक किया जाए, नहीं कहने वाले 14.5%, पता नहीं कहने वाले 20.3%। अगला सवाल यह था कि पिछले साल के मुकाबले सीबीएसई परीक्षा प्रबंधन सुधरा है या बिगड़ा है। थोड़ा सुधरा कहने वाले 18.2%, कुछ हद तक सुधरा कहने वाले 17.2%, और कुछ नहीं बदला कहने वाले 28.1%, बिगड़ गया है 11.3%, बहुत ही बेकार हो गया है 20.2%, पता नहीं 4.9%। अगला सवाल यह था कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा तंत्र में बड़े सुधार की जरूरत है क्या, 70.6%, करीब 71% लोग कहते हैं कि तुरंत बड़े बदलाव की जरूरत है। एक के बाद एक लगातार जिस तरीके से खुलासे सीबीएसई के रीवैल्यूएशन सिस्टम में ओएसएम सिस्टम के लिए दिखाए गए हैं, उसके बाद 70% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि हाँ बड़े सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे 14.4, सब ठीक है कहने वाले भी 10.4, और पता नहीं कहने वाले 4.7% लोग इस पे दिखाई देते हैं। बड़े सवाल, बड़े तंत्र में सुधार की जरूरत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजय आलोक जी, जिस तरीके से नीट एग्जाम में री एग्जाम कराई जा रही है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये कंप्यूटराइज सिस्टम बाद में लागू करिएगा, फिलहाल तो आप फिजिकली आप उसको चेक कराइए, क्योंकि बड़ी हड़बड़ी में लागू की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में पूछा था, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें आपको फिजिकली अब चेक करनी चाहिए।
4: देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात कि आपका एक और प्रश्न था कि क्या आपको गुस्सा है आपका अगर किसी ने अटेंड किया है या नहीं अटेंड किया है। मेरे कुछ दोस्त के बच्चों ने 12 दिया था, यंगर फ्रेंड्स लेकर उनको रीअपियर करना पड़ रहा है, कोई डायरेक्ट नहीं है मेरा, लेकिन मुझे गुस्सा है कि ये फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी लेवल मैं भी समझ रहा हूं कि क्या है। उन किसी के मार्क्स 15 मार्क्स घटे हुए, किसी का कोई कह रहा है मेरा 16 मार्क्स बढ़ जाएगा, कोई कह रहा है मेरा 18 मार्क्स बढ़ जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं किसी कॉलेजेस में, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 60+ का आया क्वालिफाई कर गया, कोई ना कोई एंट्रेंस कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो एक नंबर भी बहुत बड़ा मार्क्स होता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर किसी का मार्क्स घट रहा है। हमारे टाइम में जब हमारा बोर्ड देते थे तो उस वक्त रीचेकिंग नहीं होती थी, अगर आपको याद होगा, हम लोग अप्लाई करते थे सिर्फ रीवैल्यूएशन होता था, मार्क्स की रीटोटलिंग कर दी जाती थी। सीबीएसई ने ये ऑप्शन दिया पिछले 5 सालों में कि अब हम रीचेकिंग करवा सकते हैं, इस ऑनलाइन पोर्टल में भी रीचेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई रीवैल्यूएशन में देता है उसके सामने पेज बाय पेज खोल के उसके मार्क्स चेक कर लिए जाते हैं, अब वो सेटिस्फाइड नहीं है कि टीचर ने मुझे 4 ही नंबर दिए हैं, मुझे इस 10 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 8 आने चाहिए, देन ही इज एलिजिबल फॉर रीचेकिंग, फिर से टीचर ऑनलाइन ही रीचेक करेगा, ये प्रोविजन ऑलरेडी मेंशनड है। तो इस चीज का लोग एक्सरसाइज करें, मे बी ये फर्स्ट टाइम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फीचर नहीं पता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं रीचेकिंग दोबारा से पॉसिबल है ऑनलाइन आपके सामने,
0: ये तो अच्छी बात है
4: क्योंकि ये टीचर
0: टू टीचर वेरी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम
4: इन्फॉर्मेशन
0: देने बढ़ता है जिसके वजह से रीचेकिंग का अधिकार सब लोग मांगेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह पूछा गया था कि जिस तरीके से नीट एग्जाम को री एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जब पता चला कि पेपर लीक हुआ है, यहां पर भी जब आपको पता चल रहा है कि री वैल्यूएशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, ठीक तरीके से उसको अपलोड नहीं किया गया है, जो कहा गया था उसको फॉलो नहीं किया गया, कुछ बच्चों ने दिखा दिया है कि भाई वहां के, तो अभी अभी क्या आपको लगता है, जो लोग कह रहे हैं 70% से ज्यादा लोगों को लगता है कि फिजिकली आप चेक करिए, जो आपको लागू करना है अगले साल लागू करिए।
4: देखिए जितनी मेरी सीमित जानकारी है अपने अपने सूत्रों के हिसाब से, 19 घंटे के लिए सीबीएसई का पोर्टल इसलिए बंद किया गया था क्योंकि हैकिंग हो गई थी। बहुत लोगों ने इसको एथिकल हैकिंग कहा कि लोग खुद घुस गए, निकाल लिया, पता कर लिया, हैकिंग कर दिया। हैकिंग किसी भी तरह की हो एथिकल नहीं हो सकती है, पहली बात। ये हमारे सुरक्षा तंत्र सीबीएसई की सुरक्षा तंत्र को भी चैलेंज करता है। जब आप नया ऐप लॉन्च कर रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई होगी, जब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई तो हैक कैसे होगा?
0: एग्जैक्टली।
4: खैर, लेकिन हैकिंग बैंकों की भी होती है, तमाम सिक्योरिटी एप्स के बाद सिक्योरिटी सिस्टम्स की भी होती है, तो जरूरत है उसको समय समय पर मजबूत करने की। हैकिंग हो गई है, अब सीबीएसई फिजिकली वेरिफिकेशन दोबारा करेगी या ऑनलाइन रीचेकिंग दोबारा करेगी, ये निर्णय सीबीएसई का होगा। इस पर मैं कोई टिप्पणी अभी तुरंत नहीं कर सकता हूं, वो लोग अपने सिस्टम को देख के। लेकिन हाँ, ये मुझे कन्फर्म में बोल रहा हूं, 19 घंटे
0: की राय है कि होना चाहिए,
4: डेफिनेटली वो
0: आप बंद कर दिया। लगता है कि ये होना चाहिए?
4: नहीं, मुझे तो लगता है होना चाहिए,
0: होना चाहिए, होना चाहिए। डॉक्टर दरबारी,
7: बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि क्या हुआ ना इस बार जो सीबीएसई में, कि ऑल ऑफ अ सडन लास्ट मोमेंट पे दे डिसाइडेड कि हम ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे, ओएसएम करेंगे। तो उसमें हमेशा क्या होता है कि आपने इतनी जल्दीबाजी में डिसीजन लिया कि हम 10 दिन बाद ही ओएसएम से करेंगे। कभी भी कोई नई चीज आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमेशा पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, आप अपना टेक्नोलॉजिकली कि हमारा सिस्टम सही है या नहीं ये चेक करते हैं। ये सब कुछ चेक नहीं किया गया, और मैं खुद कुछ स्कूलों से जुड़ी हुई हूं और मैं ये जानती हूं कि टीचर्स ने ये शिकायत करी कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और हमें एकदम से कह दिया गया कि आप जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग कर दीजिए। और जिस वक्त वो मार्किंग कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा रेवलेशन है कि देर आर टीचर्स एंड देर आर एक्सपर्ट्स जिन्होंने कहा कि देर आर 36 मेजर फ्लॉज। आज जो बच्चे कुछ टीवी पे अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे थे अपनी कॉपी, इसकी मेरी ये मार्क ही नहीं हो रही है, तो एक्चुअली टीचर्स की अगर आप सुनेंगे तो बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको मार्क करने की, पर वो मार्क ही नहीं हो रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो दे हैव पॉइंटेड आउट कि देर आर 36 फ्लॉज इन द सिस्टम। और वो फ्लॉज क्यों है, क्योंकि ये भी एक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने किसको ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर दिया करने के लिए, उस वेंडर को जो कि ब्लैक लिस्टेड था। आपने उस ब्लैक लिस्टेड वेंडर को जबरदस्त, मतलब उसके लिए आपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो होते हैं उन पे भी उसको नीचा कर दिया। कभी भी कोई जो ब्लैक लिस्ट हो जाता है उसको एक साल तक वो कर ही नहीं सकता है, पर वो
0: टेंडरिंग में जो गड़बड़ किया गया, जो सार्थक जिनके आज पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उनको बुलाया गया था, बारहवीं की कक्षा के छात्र ने वो सब दिखाया हुआ, उसी की बात है। अजय आलोक, आप जवाब दीजिए पहले, अजय आलोक को जवाब देना चाह रहे हैं इसका।
7: देखिए, हैक
4: नहीं, मैं बस मैडम को एक बात कहना चाहता हूं कि मैं वेरीफाइड सोर्सेस से बोल रहा हूं, पायलट प्रोजेक्ट हुआ था मैडम ओएसएम का, 5 स्कूलों में हुआ था और वो सक्सेसफुल 100% था, इसीलिए ओएसएम लेने का निर्णय टॉप सोर्सेस द्वारा किया गया था। देयर वाज अ पायलट प्रोजेक्ट एंड इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड वेरी वेल इन ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा नहीं कि पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ,
7: आपने
4: मैं डिटेल आपको नहीं जानता हूं, मैंने पायलट प्रोजेक्ट के बारे में आपने बोला
7: किया है,
4: ये हमारे
7: ये
4: बात हमारे आपके बीच
7: जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है
4: ये बात मेरे आपके व्यक्तिगत बहस की बात नहीं है। मैं उस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ कि 5 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, उसके बाद ओएसएम ने लिया था। जहां तक रही बात को एम प्राइवेट टेंडर
0: सीबीएसई के बोर्ड की मीटिंग में भी ये सुझाव दिया गया था कि पायलट प्रोजेक्ट रीजनल बेसिस पे लागू किया जाए। अजय आलोक जी, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग सीबीएसई बोर्ड के जो रिपोर्ट किए गए थे उसमें भी ये कहा गया था 7 फरवरी को इसकी घोषणा की जाती है। टाइमलाइन भी बड़ी दिलचस्प है उसमें, यशवंत जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन 7 फरवरी को इसकी घोषणा की जाती है कि हम ओएसएम सिस्टम लागू कर रहे हैं। 13 फरवरी को जो मेरे पास है उसके बाद सीबीएसई नेशन वाइड वेबिनार ऑर्गेनाइज करती है ओएसएम के लिए। 15 फरवरी को सीबीएसई ने ट्रेनिंग पोर्टल खोला और उसके बाद कहा गया कि पिछले साल की आंसर शीट के आधार पर आप इसकी जांच करें। 7 मार्च को एक्चुअल री इवैल्यूएशन शुरू हो गया ओएसएम के अंडर, और 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 3 लाख टीचर्स ने किया है, जबकि पता चल रहा है कि सिर्फ 77,000 जो इवैल्यूएटर्स हैं उन्होंने सिर्फ उसका ट्रेनिंग लिया था। यह भी बात कहीं ना कहीं यहां पर नजर आती है। लेकिन पहले आगे के सवाल भी रख देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी फिक्स की बात की जा रही है और लोग इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प है। यशवंत जी, उसके बाद ही मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सवाल यह पूछा गया सी वोटर की तरफ से कि भारत में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की शुचिता पर क्या आपको भरोसा रह गया है। सिर्फ बहुत भरोसा कहने वाले 20.8, कुछ हद तक 19.8, ज्यादा भरोसा नहीं बचा है 29.4%, बिल्कुल भरोसा नहीं है 23.2% लोग कह रहे हैं, यानी 40% के आसपास से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि इन परीक्षाओं पर, प्रतियोगी परीक्षाओं पर हमारा भरोसा नहीं है। अगला सवाल, यह बहुत अहम सवाल है, मौजूदा नाकामी के लिए आप कौन जिम्मेदार मानते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया था कि बोर्ड या एनटीए, यानी सीबीएसई बोर्ड जिम्मेदार या एनटीए जिम्मेदार है। 27.2% लोग कहते हैं बोर्ड या एनटीए जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार मानने वाले 33.6% लोग हैं, उनका लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने वादा किया था कि इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं होगी, वो जिम्मेदार है ये चीजों के लिए। मंत्रालयों के अफसर यानी ब्यूरोक्रेसी 8% लोग इसको मानते हैं, और इनमें सभी लोग जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेसी, मंत्री, एनटीए, सीबीएसई बोर्ड 20.8%, पता नहीं कहने वाले भी 10.5% लोग हैं। और अहम सवाल, नीट 2026 पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार आप मानते हैं? जब लोगों को पूछा गया, 45.6% लोग शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार मानते हैं कि एनटीए की पेपर लीक के लिए जिम्मेदारी फिक्स करनी है तो वो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। एनटीए की जिम्मेदारी 12.1%, कोचिंग नेटवर्क, क्योंकि कोचिंग क्लासेस पर भी सवाल उठाए गए थे, जो ट्रांसलेटर्स थे वो कोचिंग क्लास से जुड़े हुए थे, कोचिंग नेटवर्क 5.8%, भ्रष्ट माता पिता 4.5%, और ये सभी लोग माता पिता का प्रेशर, कोचिंग क्लासेस, धर्मेंद्र प्रधान या बाकी ब्यूरोक्रेसी, एनटीए, सारे लोग पकड़कर 24.1%, पता नहीं कहने वाले 7.8%। और अहम सवाल जो आखिर में पूछा गया था, शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा है कि लाखों विद्यार्थियों से सरकार न्याय कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहने वाले 51.7% लोग ये कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है कि हम पर न्याय किया जा रहा है, भरोसा घट रहा है 22.7%, शंका के साथ भरोसा है 6.1%, पूरा भरोसा करने वाले भी 16.3% है, और नहीं कहने वाले 3.2%। यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो 80% लोग ये मानते हैं कि न्याय हो रहा है, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और पैनल के सामने ये रखने के बजाय, पहले क्यों ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में मीडिया को कुछ इंटरव्यूज दिए हुए हैं, पिछले साल भी इंटरव्यूज दिए थे, दोनों इंटरव्यूज आप देख लीजिएगा, दोनों रिएक्शन हम चलाएंगे, उसके बाद में ये सवाल आगे बढ़ाऊंगा। जरा देख लेते हैं कि पिछले साल क्या कहा था और इस साल क्या कह रहे हैं।
8: अव्यवस्था है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसको शून्य तक ले पहुंचाना ये हमारी दायित्व बनती है।
7: आपका कमिटमेंट है?
8: बिल्कुल,
7: ये कमिटमेंट
8: बिल्कुल, यह सरकार भाग ही नहीं सकता।
9: मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस पेपर कंप्रोमाइज को हम खत्म करके रहेंगे। इस बार नीट हमको एक अवसर दिया है एंड टू एंड उसको और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए, हम पूरा सरकार के सभी घटक उस काम पे लगे हैं।
0: अजय आलोक, 2025-2026 वादा किया गया था, 2025 में, 2026 में दोबारा वादा किया जा रहा है, इसीलिए भरोसा घट रहा है।
4: ये वादा की बात नहीं है साहिल, अगर आप देखिए तो इंटेंट है कि नहीं। यार सबसे पहले तो आप इंटेंट देखिए, इंटेंट है कि नहीं करने का। इंटेंट तो लगातार रहा है, इसी शिक्षा मंत्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हुए हमारे एम्स डबल हुए, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हुए हमारे आईटी डबल हुए, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हुए हमारे मेडिकल सीट बढ़ रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज बढ़ रही है, हमारे टेक्निकल कॉलेजेस के एडवांसमेंट बढ़ रहे हैं, तमाम एक चीज हो जाए। अगर आप इसको कंप्लीटली आज देखिए, आप लोग सबको यहां बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, एनटीए का पेपर लीक का मेन रीजन क्या था? इट वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट। जो पेपर लीस्ट सेट कर रहा था वो पेपर बता रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट ऑफ होम, एनटीए विच इज अंडर शिक्षा मंत्री, तो नेचुरल शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होंगे। आज सीबीएसई में हुआ है, व्हाट इज दिस? इज टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट ऑफ होम, पूरी की पूरी उनकी आईटी टीम, लेकिन सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय के अंडर में, तो नेचुरल शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होंगे। लेकिन इससे पूरे शिक्षा मंत्री को डेमोनाइज कर देना, उनको एक वेपन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेपन बना के कि सारा शिक्षा मंत्रालय इन्होंने ही भट्टा बैठा दिया, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, उन कामों की भी गिनती कीजिए। आज अगर प्रूफ आईटी जेई हो रहा है बिल्कुल 100% इलेक्ट्रॉनिकली और एक भी शिकायत नहीं है, इसमें शिक्षा मंत्री की तारीफ नहीं करेंगे। 90% एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट हो रहा है तो उसमें शिक्षा मंत्री की जो चीज अच्छे से हो जाए इस देश में उसकी चर्चा कभी नहीं होती है, ये भी सच्चाई है। जिस चीज में नुक्स निकल गया उस चीज में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि ताली आपकी नहीं लेकिन गाली सारी है।
0: लेकिन खामियों पर जनता और देश की,
4: ठीक है,
0: देश की राय क्या है, अभिभावकों की राय क्या है, छात्रों की राय क्या है, वही लेकर तो हम आपके सामने आएंगे ना, क्योंकि इससे भी लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है।
4: मैं भी गुस्सा हूं
0: और इसी राय पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस राय से सहमत है या नहीं है।
4: आप 100% भाई, आप 100% सही हैं, मैं इस राय से सहमत हूं क्योंकि मैं भी गुस्सा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसकी जिम्मेदारी मैं शिक्षा मंत्री पर डाल दूं, क्योंकि 25 में भी वो कह रहे हैं कि अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को शून्य तक लाना है। तो हाथ में कोई जादू का डंडा नहीं ना घुमा दिया ऊपर से नीचे अव्यवस्था शून्य हो जाएगी. यू विल हैव टू वर्क फॉर इट. पिछले बार संजीव मुखिया था बिहार में, खान मॉडल आया, उसके बाद रंजीत मॉडल आया, पता नहीं कितने कितने मॉडल इस देश में देखे चोरी के.
0: अजय आलोक तो गिना रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं राजस्थान में, शिक्षा मंत्री ने क्या क्या बदलाव किए हुए हैं. स्वाति चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपके सर्वे में यह साफ नजर आता है कि एक ही पूरी सिस्टम को जिम्मेदार तो मानते हैं कई लोग, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं. फिर वो नीट पेपर लीक का मामला हो या सीबीएसई के री इवेल्युएशन में जो गड़बड़ियां पाई गई है उसका मामला हो. और मैंने दोनों रिएक्शंस भी दिखाई, 2025 में भी यही सवाल पूछा गया था, 2026 में यही सवाल दोहराया गया था. 2025 के वादे के बावजूद जब होता है तब शायद इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है.
6: ताहिल, इसमें से दो चीजें जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजय भाई ने अपनी ओर से भी खुद बोला इस बात को कि वो उस बच्चों का, उनके परिवार के सदस्यों का या उनके जो माता पिता, उनका दर्द वो भी समझते हैं. कौन होगा जो बच्चों के साथ में अगर कुछ अन्याय हो, गलत हो, उससे देश का कौन सा ऐसा नागरिक होगा जो गुस्सा या नाराज नहीं होगा. सीधी सी बात है. और मैं अजय जी की इस बात से भी सहमत हूं कि नाराजगी है तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट होगी ना. जो कैप्टन होगा टीम का उसके ऊपर जाएगी. तो अगर प्रधान जी अगर उस मंत्रालय को लीड कर रहे हैं तो वहां जाएगी. तो स्वाभाविक सी बात है. मुख्य बात क्या है कि नाराज होना अपनी जगह पे है, लेकिन इसको जिस वॉर फुटिंग पे सुलझाया जाना चाहिए अब वो बहुत जरूरी है समझना. क्योंकि लोगों का उम्मीद, लोगों की उम्मीद कम होना या भरोसा कम होना ये बहुत बड़े खतरे.
0: लेकिन इससे पहले जिम्मेदारी फिक्स कराने की भी बात की गई थी. स्वाति चतुर्वेदी, लोग जो समझ रहे हैं, जो सी वोटर के सर्वे में निकल कर आ रहा है उसमें तो लोग ये समझ रहे हैं कि दो तीन चीजें बड़ी इस पर निकल कर आती. एक तो वो कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है. मेरे पास समय खत्म हो रहा है और स्वाति जी अभी उनका भी एक रिएक्शन मुझे लेना है. यशवंत जी आपकी बात.
6: आपने जैसे बोला था ना कि जिन बच्चों का नीट क्वालिफाई हो गया, सॉरी जेई क्लियर हो गया, उनको उतना नहीं है. ऐसा मेरे संज्ञान में कई सारे केस का आया सोशल मीडिया में, उसमें जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है जेई में, लेकिन सीबीएसई के जो मिनिमम रहता है मार्क्स.
0: स्वाति चतुर्वेदी, तो लोग समझते हैं सी वोटर के सर्वे में साफ शब्दों में लोग समझते हैं कि जो भी गड़बड़ियां हुई है उसकी जिम्मेदारी अगर फिक्स करनी है तो वो शिक्षा मंत्री पर फिक्स होगी.
10: बिल्कुल साहिल, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए. मुझे बताइए कि अगर इतना बड़ा हमारे पूरे फ्यूचर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, मजाक बना दिया गया है. मतलब मैंने कुछ आंकड़े देखे जो मुझे मुझे मुझे दुखी कर रहे हैं कि पिछले दशक में 65% रेट ऑफ सुइसाइड 15 से 20 साल के उम्र के बच्चों में बढ़ गया है. ये कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, और कोई फ्यूचर नहीं है इसका प्रेशर है. धर्मेंद्र प्रधान कब तक अपना जिम्मेदारी डक करते रहेंगे? अगर गलती हुई है, कहीं हुई है, तो सीबीएसई चेयरमैन हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, हमको देखना पड़ेगा. वी नीड टू शो प्रूफ कि कोई अकाउंटेबल है, किसी का सर उसके धड़ से अलग हुआ है. क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ देश नहीं झेलेगा.
0: कहीं ना कहीं लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारी फिक्स करिए. फिलहाल इस सिस्टम से लोगों का भरोसा उठा हुआ है, जो भी कारण है उसे कैसे फिक्स किया जाता है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी. फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक.
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
13: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: In association with
6: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
8: Summer cool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
5: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
9: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
12: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था, दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।

0: लेबनन में इसराइल के ताबड़तोड़ हमले, बमों की बरसात से कई जगह लगी आग, धू धू कर जल रही इमारतें, कईयों की गई जान। दक्षिणी लेबनन के कई इलाकों पर इसराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। एक के बाद एक की गई एयर स्ट्राइक से जगह जगह आग लग गई और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्बादी का मंजर किस कदर रहा होगा। सीज फायर का लेबनन के दक्षिणी इलाकों में कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इजरायली फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका दावा है कि उसने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को उड़ाने में कामयाबी हासिल की है और इस अभियान को जारी रखा जाएगा। इस हमले के कुछ घंटों पहले ही हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल की तरफ भीषण बमबारी की थी। पलटवार करते हुए इसराइल ने जबरदस्त हमले किए और लेबनन को भारी नुकसान पहुंचाया। नुकसान वैसे दोनों तरफ से हो रहा है। अभी दो दिन पहले ही दक्षिणी लेबनन में लड़ाई के दौरान 21 साल के एक सैनिक की मौत हो गई और 4 सैनिक घायल हो गए थे। ड्रोन हमले में सैनिक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसराइल ने पिछले कुछ महीनों में हिजबुल्ला के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अख्तियार किया है। लिटानी नदी से लेकर जहरानी नदी तक के इलाकों में उसने गांव के गांव खाली कराए हैं। इसराइल को शक है कि स्थानीय लोगों की मदद से हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ साजिश रचता है। इन लोगों को घर बार छोड़कर चले जाने की चेतावनी देकर इसराइल अपने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सिर्फ दक्षिणी इलाकों के साथ साथ इसराइली सेना ने बेरूत और टायर जैसे शहरों को भी लगातार निशाना बनाया है। इसराइल की एयर स्ट्राइक में टायर शहर में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। रिहायशी इलाकों की कई इमारतें जलकर राख हो गई हैं और उनसे उठते धुएं का गुबार कई सौ मीटर दूर से दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: वो बकरीद का दिन था, 28 मई की दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी असद और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। असद ने झगड़े की बात अपने पिता नवाब और अन्य आरोपियों को बताई। तभी गिरफ्तार आरोपी फरहान और आतिफ के साथ साथ अन्य आरोपियों ने मिलकर सबक सिखाने की साजिश रच डाली। महज बाइक चलाने का विवाद था। 28 मई की दोपहर 3:30 बजे आरोपियों ने सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला कि मैंने असद को चाकू दिया। असद के पिता ने कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्या के पेट में चाकू भोंक दिया। हमले के बाद सूर्या खून खून होकर वहीं गिर पड़ा। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हत्या के लिए उकसाने वाला असद का पिता नवाब के साथ साथ अन्य दो आरोपी फरहान और आतिफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक।

0: सीबीएसई 12वीं परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल और सियासत का सामना कर रहा है।
1: सरकार को ये बता रहे हैं सीबीएसई के दफ्तर के बाहर बैठ के आंखों को बंद करके हमारी इवेल्युएशन हो रही है।
0: एक तरफ छात्रों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का हवाला देता विपक्ष लगातार हमलावर है। सीबीएसई के बहाने उनके निशाने पर सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं।
2: And how many questions normally will someone apply for?
3: I guess abhi jo problem aa rahi hai, they can apply for all the questions.
2: So how many total questions?
3: 30-35 around right. Questions hote hain.
2: So huge amount of money.
3: Huge amount of money is involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation?
0: CBSE 12वीं के जिन छात्रों के रिजल्ट इस बार आए हैं, उनकी कई शिकायतें रही हैं। दरअसल मूल्यांकन के लिए कॉपी की स्कैनिंग सही से नहीं की गई। कई मामलों में कॉपी अदला बदली की भी शिकायत है। कुछ छात्रों का आरोप है कि उनके उत्तर सही थे फिर भी नंबर कम आए। और बड़ी शिकायत डिजिटल मार्किंग के लिए जिस कंपनी COEMPT को टेंडर दिया गया उस पर है। तमाम सवालों के बीच आज CBSE ने अपना पोर्टल शुरू कर दिया। दो बार तारीख टाले जाने के बाद आखिरकार पोर्टल की शुरुआत हो गई। छात्र 6 जून तक शिकायत या आवेदन कर सकते हैं। CBSE ने बताया कि गायब पेज, गायब सप्लीमेंट्री शीट या मैप ग्राफिक्स, ब्लर पेज या गलत उत्तर पुस्तिका को लेकर शिकायत की जा सकती है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संसद भवन NXE में मीटिंग की। इसमें 12वीं की परीक्षा में OSM तकनीक का इस्तेमाल और उससे बड़ी मुश्किलों को लेकर समीक्षा की गई। पैनल की मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव और CBSE के चेयरमैन भी जवाब देने पहुंचे। छात्रों के कुछ प्रतिनिधि भी बैठक में बुलाए गए थे। खबर तो ये भी है कि ऑनलाइन मार्किंग प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने COEMPT कंपनी को दिए ठेके पर रिपोर्ट तलब की। साथ ही कंपनी की तकनीकी पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। छात्रों की नाराजगी, सियासत और सुधार की पहल के बीच ये मामला अदालत में पहुंच गया। गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में NSUI ने जनहित याचिका दाखिल की है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले है वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
5: आप देखें, उसका सर पर अटैक हुआ था, कहीं भी खून निकला है। झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के उसका दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे, बंगला में तो बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, आप बने रहिए आज तक के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

तृणमूल में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार। 10 एमएलए भी आज दीदी के धरने में नहीं पहुंचे, बागियों के अलग पार्टी बनाने की सुगबुगाहट। दिल्ली दरबार में आज दक्षिण की राजनीतिक रणनीति। शपथ के पहले आलाकमान से मिले डीके, मंत्री और मंत्रालय पर माथापच्ची। बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे अन्नामलाई की शाह से मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान, आज फिर दिए ताबड़तोड़ बयान। कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला नाम। भरोसे की परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है सीबीएसई का सिस्टम, री इवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश। 19 घंटे बाद खुला पोर्टल, सिर्फ 2 मिनट में आए 15 लाख हिट। पंजाब में स्कूल की मनमानी का खौफनाक अंत, अमृतसर में 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, 20,000 बकाया फीस के लिए प्रताड़ना के गंभीर आरोप।

0: अब बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक और अब असर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीबीएसई ओएसएन की जांच के बाद अब ये खबर आ रही है कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया है। आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव का तबादला। आखिरकार पहली कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है जब आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। ओएसएन की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है और सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला हो गया है, चेयरमैन और सचिव दोनों का तबादला। एक के बाद एक जो जानकारी आ रही थी उसमें सीधे सीधे तौर पर सीबीएसई की नाकामी और तमाम तरीके से उसकी इनकम्पिटेंसी सामने आ रही थी, जिसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। 12वीं के छात्र अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं थे, हैकर्स ने हैक करके दिखाया कि ये पूरा वेबसाइट, ये पोर्टल हैक हो पा रहा था। पोर्टल से जब बच्चों ने अपने पेपर्स निकाले तो उसमें कई पेपर्स मार्क्ड नहीं है, कई पेपर्स मार्क्ड है तो उस पर नंबर नहीं है। और आज तक की खबर का आखिरकार असर हुआ है, अब चेयरमैन और सचिव दोनों का तबादला हुआ है। हिमांशु हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या है पूरी जानकारी?
1: देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जो है वो नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या सीबीएसई का मामला हो, और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर और इस पूरे सिस्टम को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, जिसके अंदर कई छात्रों ने जो है इसको अपने मार्किंग के लिए जो है वो अप्लाई किया। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसमें जिस तरीके की गड़बड़ियां पाई गई हैं, सीबीएसई के जो चेयरमैन है राहुल सिंह, उनके साथ साथ सीबीएसई सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया गया है और एक पूरी कमेटी बना दी गई है ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर। जो भी प्रोक्योरमेंट हुई है, जो भी टेंडर फ्लोट किया गया है, उन सब चीजों को लेकर अगर ऑन स्क्रीन मार्किंग के अंदर फुटफिल चीजें नहीं थी, अगर चीजों में अभी कुछ खामियां थी, तो इसको अभी इस साल लागू क्यों किया गया, इसको लेकर संसदीय समिति के अंदर भी अंजना सवाल पूछे गए हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई भी चीजें गड़बड़ है, तो ये सरकार इस तरीके से एक्शन ले रही है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी ने गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। जब चीजें सामने आ रही है तो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। नीट के मामले को लेकर बैठकें चल रही है, प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, और सीबीएसई का मामला भी, क्योंकि छात्रों के एक तरीके से देखा जाए तो भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं, उसमें कुछ खामियां नजर आई हैं, हैकर्स साइट क्रैक कर रहे हैं, एथिकल हैकर्स ने बताया आज संसदीय समिति के सामने कि उन्होंने किस तरीके से इन संसदीय जो वेबसाइट है इसको हैक किया, तो तमाम पूरी प्रेजेंटेशन हुई। उसके बाद कई सांसद ने यह भी कहा कि सीबीएसई को जो है ये एथिकल हैकर्स जो है इनको अपना असिस्टेंट बनाने लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उनको लेकर, जिनकी गलतियां हैं उनका, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीएसई चेयरमैन और सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनको ट्रांसफर किया गया और एक पूरी की पूरी कमेटी बनाकर जांच की जाएगी।
0: धन्यवाद आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आज तक लगातार उन बच्चों को पूरे देश से लाइव जोड़ रहा है जूम के जरिए, जिससे वो अपनी बात बता रहे हैं। लगातार इस मुहिम को हमने आगे किया और अब जाकर पहला कदम ये उठता हुआ दिख रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है। लेकिन अभी भी वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो री वैल्यूएशन चाहते हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके पेपर्स का, क्योंकि इस बैच को अभी एडमिशन्स लेना है, वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पूरा रिड्रेसल होगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन अब चर्चा उस विषय पर जिस पर आज हम हल्ला बोल करने वाले हैं। ममता से छिना बंगाल, अब पार्टी में बवा।
2: তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুরমতি দে ভগবান।
3: মমতা ব্যানার্জি কা তৃণমূল সে ইয়ে হাইজ্যাক হো চুকা, ইয়ে অভিষেক ব্যানার্জি কা জো রেড আই থা উসসে বঙ্গাল কো রাহত মিলি হ্যায়।
4: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता।

0: क्या वाकई बंगाल हाथ से छिन जाने के बाद अब पार्टी में ऐसा बवाल छिड़ गया है जो ममता के लिए परेशानी है? आज ये तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई। वैसे तो ममता बनर्जी आज बीजेपी के खिलाफ पार्टी का दमखम दिखाने के लिए कोलकाता में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आप उसको उसी धरना प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी की टूट साफ नजर आ रही है। आज भी ममता के धरने में सिर्फ 7 विधायक 2 सांसद पहुंचे। इससे पहले भी अगर आप देखिएगा लगातार विधायक जो उनकी बैठकों में पहुंच रहे हैं उनकी कमी हुई है, लेकिन आज तो सिर्फ 7 विधायक पहुंचे हैं 80 विधायकों में से। ममता बनर्जी ने इस बार चुनाव में कुल उनके 80 विधायक जीते हैं और उनमें से सिर्फ 7 विधायक पहुंचे। आप कल्पना कर सकते हैं इस वक्त क्या स्थिति है। जो विधायक पहुंचे उनके नाम है चंद्रमा भट्टाचार्य, शोभनदेव भट्ट चट्टोपाध्याय, नयना बंदोपाध्याय, मदन मित्रा, अशोक देव, असीमा मात्रा और विमान बनर्जी। इसके अलावा सांसदों डोला सेन और कल्याण बनर्जी की मौजूदगी जरूर इस बैठक में, इस धरना प्रदर्शन में रही। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं, 29 सांसद हैं, लेकिन आज ममता के विधायकों सांसदों की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। 31 मई को तो पार्टी की अहम बैठक में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। पार्टी की बैठक थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, सिर्फ 20 पहुंचे। इससे पहले 19 मई को 45 और 6 मई को बैठक में 70 विधायक पहुंचे थे। पार्टी से निकाले जा चुके विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने बीती रात टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात भी की। बागियों के तेवर सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बुलंद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। सवाल है, विधायक पहुंचे थे पार्टी से निकाले जा चुके विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने बीती रात टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात भी की। बागियों के तेवर सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बुलंद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। सवाल है कि क्या टीएमसी में टूट है और ममता की पकड़ छूट गई? क्या ममता के भाइपों की वजह से टीएमसी में संकट है? हल्ला बोल में इस बहस की शुरुआत करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उठे बगावत के स्वरों के बीच मानो ममता बनर्जी का ये पहला शक्ति प्रदर्शन था। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर 30 मई को हुए हमले समेत पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कथित हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। राज्य में बदल गई चुनावी हवा के बीच ममता का आरोप है कि टीएमसी में टूट का षड्यंत्र रचा जा रहा।
1: बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारे साथ जोड़ो।
0: ममता बनर्जी भले तृणमूल में हो रही बगावत को सियासी सवाल बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बंगाल की हार के बाद टीएमसी में बिखराव साफ नजर आ रहा। बीती रात कोलकाता के एमएलए हॉस्टल की ये तस्वीरें देखिए। वहां पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा कुछ अन्य टीएमसी विधायकों से मिले हैं। इन तस्वीरों में ऋतव्रता के साथ विधायक सीउली साहा के होने का दावा हुआ है। तृणमूल की ये दरार पार्टी में एंटी अभिषेक बनर्जी ब्लॉक बनने की संभावनाओं से बड़ी है।
2: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में जो नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। ये अभिषेक बनर्जी का जो रेड आई था उससे बंगाल को राहत मिली है, तो लोग इसलिए अपने नाराजगी जता रहे हैं।
0: ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा की ही शिकायत पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ टीएमसी विधायकों का फर्जी दस्तखत बनाने के आरोपों की जांच राज्य सीआईडी ने शुरू की है। ये फर्जी दस्तखत उस आधिकारिक दस्तावेज पर किए जाने का आरोप है जिसमें कथित तौर पर विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय और चीफ व्हिप के लिए फिरहाद हकीम को चुना है। जबकि सच्चाई ये है कि 19 मई की जिस बैठक में 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी तैयार हुई उसमें केवल 45 विधायक ही पहुंचे थे। टीएमसी के विधायक बार बार पार्टी की बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं। 6 मई को टीएमसी के 80 में से 10 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। 19 मई को 35 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। यही नहीं, सांसद काकोली घोष दस्तीदार, राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, पूर्व सांसद शांतनु सेन और पार्टी प्रवक्ता रिजू दत्ता जैसे नेता खुलेआम टीएमसी को आईना दिखा चुके हैं। बगावत थामने के लिए टीएमसी को पार्टी के लिए ममता के योगदान को याद दिलाना पड़ रहा है।
3: বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন সত্তর বয়সী ভদ্রমহিলা, সত্তর বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসছি এখানে। তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
0: इस बीच बीजेपी बार बार सार्वजनिक बयान दे रही है कि टीएमसी के नेताओं के लिए उसके दरवाजे बंद हैं।
4: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते।
0: सिर्फ एक हार से तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मचती दिख रही है, तो उधर दक्षिण 24 परगना में स्थानीय टीएमसी नेता ने पहले ली गई कटमनी वापस की, ये भी बदले हुए वक्त की गवाही दे रहा है आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं, गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता टीएमसी के, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस के, रिजु दत्ता राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजु दत्ता जुड़े हैं क्या, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे? पिछली बार जब रिजिजू जी से बात हुई थी तो रिजू दत्ता टीएमसी के लिए लड़ाई करते थे एकदम चैनल पे, अब लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं टीएमसी की पोल खोल रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि गौरव जी आपके पास आऊं उससे पहले एक स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से सवाल पूछ लिया जाए कि भाई, उससे पहले मुझे खबर बताई जा रही है कि अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुपम, कितने विधायक, कितने सांसद ममता बनर्जी के पास आज पहुंचे? अब सवाल यह है कि क्या पूरी पार्टी में एक जबरदस्त फूट की स्थिति पैदा हो गई है?
5: जी देखिए अंजना, सबसे बड़ी बात है कि हार के बाद पहली बार ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब वो विरोधी दल में थी तब भी देखा नहीं गया था कि इस तरह इतने कम कार्यकर्ता या इतने कम एमएलए या उनके जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ आए। आज भी जब वो सड़कों पर उतरी और पहली बार वो सड़क पर उतरी, उनके साथ महज 6 से 7 विधायक थे और 4 से 5 एमपीज थे। यहां पर ये धर्मतल्ला, इसी जगह पर मैं दिखा रहा हूं, स्थल पर अभी अभी ममता बनर्जी यहां से निकली है 10 मिनट पहले, और ऐसे में कार्यकर्ताओं की भी अगर हम संख्या देखें तो बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या रही हो ऐसा नहीं था, बमुश्किल 300 से 400 कार्यकर्ता आए हों। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो पकड़ ममता बनर्जी की कुछ महीने, 1-1.5 महीने पहले तक थी पार्टी पर, वो बिल्कुल नहीं रही है। और जो 80 विधायक जीते हैं, कम संख्या नहीं होती, 80 में से महज 6 से 7 विधायकों का आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी में किस कदर कमजोरी आ गई है और लोग कम हो रहे हैं।
0: इसी पर बात करेंगे, जल्दी से एक इस पर जवाब दीजिए, ये क्या हो गया स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या ये सीधा सीधा इशारा नहीं, अगर सिर्फ 6-7 विधायक जैसा कि अनुपम बता रहे हैं पहुंचते हैं और 4 से 5 सांसद, तो ये साफ नहीं दिखा रहा है कि ममता बनर्जी को अब लीडर ही नहीं मान रहे पार्टी के विधायक? 80 जीते थे।
6: नहीं नहीं देखिए, 80 जीते थे और वो ममता बनर्जी की तस्वीर लगाकर ही 80 के 80 जीते हैं, ठीक है, तो मैं वो बात नहीं करूंगा। जो कि जो आप जो मुद्दे पर बहस कर रही है ना, टीएमसी में टूटी है, लेटर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आज हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का लेटर है जिसको साइन किया हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैज मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट इसके पहले तय किया गया था कि ये हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये हमारा डिप्टी लीडर है, ये हमारा चीफ व्हिप है। ये सेम डिटेल वापस लेटर देके दिया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि 2001 के अंदर में जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन तय करने के लिए उस समय हमारे थे लेट पंकज बैनर्जी, उसके बाद में ऑनरेबल स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट किया, 2006 में किया, 2011-16-21 में हमारी सरकार चली, इस बार भी स्पीकर का जो दायित्व है, स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने मुख्यमंत्री को चुन लिया और हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको अभी तक हमारे लेटर के बाद में भी नहीं चुना गया। अब जो भी उनकी राजनीति उनको करनी है या कुछ लोग नाराज इधर उधर होंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक पार्टी को कैसे तोड़ा जाए लोकतांत्रिक तरीके में और इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, उस शक्तियों तक आपको पहुंचना है। और जनता सब देख रही है
0: ठीक
6: कि
0: है
6: देश
0: गौरव
6: के
0: जी,
6: अंदर में अन्य राज्यों में क्या हुआ,
0: ठीक है
6: महाराष्ट्र में क्या हुआ।
0: गौरव जी, उनका इशारा आप ही की तरफ है।
7: हाँ, देखिए ऐसा है अंजना जी, आज टीएमसी के लिए कहना गलत नहीं होगा, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, और कह रहे हैं इन्हें तोड़ा जा रहा है। अरे इन्हें कौन तोड़ेगा अंजना जी, आप मुझे बताइए। जो मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार, वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये फर्जी हस्ताक्षर का क्या खेला चल रहा है, ये खेला होबे खेला होबे। फर्जी हस्ताक्षर करोगे और टीएमसी के ही विधायक शिकायत करेंगे कि भाई हम पार्टी में गए नहीं, मीटिंग में बीच में। देखिए अंजना जी, अगर गुंडागर्दी यहां करेंगे तो फिर जनता को यहां पे भी बुलाया जाएगा। ये गुंडागर्दी क्यों करते हैं यहाँ
6: गुंडागर्दी
7: पे?
6: नहीं है,
0: बारी बारी बारी बारी बारी
7: शोभा
0: बारी,
7: नहीं देता है,
0: निचिल समय बोलो दादा। हाँ
7: शोभा नहीं देता। धन्यवाद। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि टीएमसी में दो फाड़ जो हुआ है ये विद्रोह ममता बनर्जी के विधायकों का है, और ये इसलिए है कि वहां तानाशाही है। और हमें समझना होगा, ममता बनर्जी का जो वर्चस्व था, जो गुरूर था, जो घमंड था, घमंड और गुरूर को तो जनता ने तोड़ा है, और जो वर्चस्व है वो टीएमसी के विधायक तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। आप मुझे बताइए, 80 विधायकों में 20 विधायक आते हैं, ये अभी कल की चर्चा में हम लोग बात कर
0: आपका
7: जी, बाकी 73 कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी नेतृत्व देंगी तो हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, स्वयं प्रकाश जी को मेरे ख्याल से थोड़ा जो विधानसभा की कार्रवाई होती है लोकसभा की, उसकी जानकारी कम है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन चुनेगा? जो विधायक चुन के आए हैं वही तो चुनेंगे। जब वो विधायक अपने हस्ताक्षरों को फर्जी बता रहे हैं, इसका मतलब अभिषेक बनर्जी, जो कि गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करके अपने मन के अनुसार चाह रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, जो एमएलए इसको स्वीकार नहीं है। और जो खबर अभी आ रही थी कि एक पार्टी नई शायद बन सकती है, 50 MLO ने विरोध किया है, अब आप मुझे बताइए अंजना जी, ये ठीकरा किसी और पार्टी पे क्यों फोड़ा जाए? अपने अंदर भी तो झांकिए। संदेश खाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो पीड़ित परिवार है उनकी हाय भी तो लग रही थी ममता बनर्जी को, ये वही हाय लग रही है। धन्यवाद।
0: चलिए अब ये बताइए, ये जो 6 मई की बैठक में 10 नहीं आए, एक बार दिखा दीजिए जरा, 6 मई की बैठक में 80 में से 10 नहीं आए, फिर तादाद बढ़ी है स्वयं प्रकाश जी, 80 में से 35 MLA नहीं आए, उसके बाद से 80 में से 60 MLA 31 मई की बैठक में नहीं आए, ये सारे कहाँ है? ये सारे मतलब आपकी बात समझे तो ये बीजेपी वालों के इशारे पर उधर चले गए, क्या हो रहा है? मतलब आप सोचिए, 60 MLA कोई छोटा नंबर नहीं होता है ना? 60 MLA अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मतलब कुछ तो अंदर भी झांकिएगा।
6: नहीं, एकदम एकदम देखिए, अंदर झांकने की बात ऐसी है कि एक
0: हाँ।
6: एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। पहले 4 तारीख से अब 12 बजे बाद में, जैसे पपीता ऊपर से हरा अंदर से केसरिया रहता है ना, वैसे लोग उजागर होकर आपको ज्यादा आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे समय गुजरेगा, अगले 2-4 महीने में आप और बहुत कुछ देखने मिलेंगे। देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने
0: आपने
6: बिफोर
0: इन,
6: इलेक्शन,
0: इन इन विधायकों
6: सुनिए
0: के सुनिए ना, आप ही से बात करिए दादा,
6: सुनिए,
0: आपने इन विधायकों का को पपीता कह दिया, मतलब पपीता से तुलना की है कि बाहर से हरे थे और अंदर से केसरिया।
6: हाँ नहीं तो वैसे लोग हैं ना जो 12 बजे बाद रंग बदलते हैं, गिरगिट गिरगिट जैसे समय देख के रंग बदलती है, समय काल देश परिस्थिति। अब वो लोग को तानाशाही देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और नीचे में स्टेट में यही नेताओं ने गुंडागर्दी की है, चाहे वो संदीपन शाह हो चाहे ऋतुव्रतो बनर्जी हो। तो अब उनको अपनी ताकत को बचाने के लिए जैसा अंकल कहेंगे, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चला के वैसा मानेंगे, अंकल जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा ना। संदीपन शाह के पिताजी 15 साल विधायक रहे हैं, एमआई वो चेयरमैन खुद रहा, क्या नहीं दिया दीदी ने उसको, इतना बड़ा नेता हो गया कि आज ममता
7: चलिए मैं
6: बनर्जी
7: उत्तर
6: को
7: देता हूं
6: चैलेंज कर रहा है।
7: अंजना
8: इतना बड़ा नेता हो गया जो अपने पिताजी के लॉलीपॉप की मदद से विधायक बना है और अभी ममता बनर्जी को आंख दिखा रहा है। वो बोलता है उसके खुद के एरिया में बुलडोजर चला है, उसके खुद के इलाकों में। और आपको पता है एक बोरो का चेयरपर्सन होना कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में, मतलब उस एरिया में जितने निर्माण वगैरह होंगे उनकी जानकारी में होते हैं। तो हर आदमी को अपने आप को बचाना है। सत्ता लोभ बहुत आसान, सत्पद लोलुपता में बहुत लोग इधर उधर जा सकते हैं और बहुत से लोग जाएंगे भी, हमें उनको नहीं रोकना है। हमें असली तृणमूल बनाना है। असली तृणमूल क्या है? जो मानुष्य
0: स्वयं प्रकाश जी कितना गंभीर आरोप है आप समझ रहे हैं? वो फर्जी सिग्नेचर का आरोप लगा रहे हैं सर, फर्जी सिग्नेचर का विधेयक। हाँ
8: नहीं, वो लगा लीजिए आप, आपको अगर किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। हमारी इंटरनल मीटिंग है, उस मीटिंग का अटेंडेंस रजिस्टर अगर हम जमा दे रहे हैं और वहां पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमारे घर में बोलेंगे। आपको अपने चैनल के किसी, सुन लीजिए बीच में नहीं, गौरव जी प्लीज, आपके चैनल में अगर कोई बात होगी आप अपने पहले कर्मचारी से या किसी आपस में कोई रिफ्ट होगा आप घर में बात करेंगे कि रस्ते में जाके आज तक को गालियां देना शुरू कर देंगे?
0: ठीक है गौरव जी,
8: समझ में आ रहा है?
0: ठीक है गौरव जी, रिस्पॉन्ड करें फिर मैं जाऊंगी।
8: जानकारी सारी भारतीय जनता पार्टी को है और किसी को नहीं है, सारी भाजपाइयों को कानून की जानकारी है। नीट की परीक्षा में लोगों का आक्रोश नहीं निकलता है, वो गुस्सा नहीं निकलता है। धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है, तब गौरव भाटी ने आज क्या है, आज क्या है? नीट की परीक्षा का जो विषय है वो तो आज का विषय नहीं है। करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चों का भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं और पार्टियों को तोड़ते हैं। जो लड़ी है, जो आपके खिलाफ खड़ी है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
0: अब जवाब दीजिए गर्व, गर्व जी जवाब,
7: गुस्सा क्यों है इतना? गुस्सा थूक दीजिए,
8: गुस्सा नहीं है, धन्यवाद।
7: देखिए सबसे पहले तो इनको विधिक ज्ञान नहीं है। आप मुझे बताइए फॉर्जरी होती है, चाहे आज तक के स्टूडियो में कोई करे, चाहे टीएमसी के दफ्तर में कोई करे, सबसे पहले तो पुलिस आएगी, ये विवेचना करेगी ये जाली हस्ताक्षर हैं या सही हैं। और मेरी जानकारी तो ये है अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने फर्जी दस्तखत बनवाए उनको सीआईडी ने बुलाया, सुवेंदु अधिकारी जी ने सीआईडी से कहा जांच करो। तो चाहिए था अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने जाते, प्रमाण देते, कहते देखिए हस्ताक्षर असली है, सारे विधायकों को बुलाते, कहिए पूछिए, विधायक कहते हाँ मेरे सिग्नेचर है। लेकिन अंजना जी ऐसा हुआ नहीं, सीआईडी के सामने अभिषेक बैनर्जी स्वयं नहीं गए। क्यों? डरे हुए हैं, जानते हैं फर्जीवाड़ा किया है, पकड़े जाएंगे। दूसरा, ममता बैनर्जी का देखिए वर्चस्व कैसे टूटा है। आज बौखलाई हुई थी, पहले जब मुख्यमंत्री थी रोड पे चलती थी, पूरी रोड घेर लेती थी, हजारों के कार्यकर्ता नेता सब साथ होते थे। आज 7 MLA और भीड़ भी नहीं थी, आपका चैनल खुद ये दिखा रहा था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विधायक ये कह रहे हैं कि कोई हमें विधायक का सम्मान नहीं देता है। ये वंशवादी पार्टी केवल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और लूट खसोट मचाएंगे तो हम साथ क्यों रहेंगे। तीसरी बात, ये जो प्रदर्शन था कितना फुस्सी निकला, एक फुस्सी बम होता है जो बचता ही नहीं है, सिर्फ आवाज निकलती है, हवा निकलती है, वैसे ही था। संविधान की कॉपी ली, अंजना जी आप मुझे ये बताइए, जब मुख्यमंत्री स्वयं थी तो ये कोई भी सभा करने के लिए अनुमति नहीं देती थी। बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, स्वयं जी गुस्सा,
0: बारी बारी बारी बारी गुस्सा पुरोहित जी, बारी बारी
7: गुस्सा थूक दी,
0: लेट हिम कंप्लीट
7: प्लीज,
0: निजी समय बोलो। हाँ
7: धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। तो देखिए सबसे बड़ी बात है संविधान आज पकड़ी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप मुख्यमंत्री थी तो आप प्रदर्शन का अनुमति नहीं देती थी, जनसभा की अनुमति नहीं देती थी, आपने संदेश खाली में FIR तक दर्ज नहीं कराई थी, तब संविधान कहाँ था? RG कर मेडिकल कॉलेज का हत्याकांड हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा लड़की को 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, तब कहाँ था संविधान? और जब 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था, मूक दर्शक बनी रही ममता बनर्जी, तब संविधान कहाँ था? देखिए अंजना जी बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो कमजोरी है ये नेतृत्व की कमजोरी है। विचारधारा कभी थी नहीं, सिंडिकेट और वसूली गैंग चलता था। अब विधायक कह रहे हैं हम आपका जुम्म नहीं सहेंगे और बगावत कर रहे हैं, जो बगावत देखी नहीं जा रही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से।
0: ठीक है, अब एक बार सापरा साहब बोल लें, सापरा साहब एक बार बोल लें फिर मैं आऊंगी आपके पास। स्वयं प्रकाश जी आपको बोलना ही, देखिए सापरा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा रिजू जी भी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन सापरा साहब आपका क्या टेक है इस पर, अगर लगातार विधायक कम आ रहे हैं ममता बनर्जी के, और हमने खुल के देखा है काकुली गोष्ठ से लेकर उनके तमाम नेता, रिजू जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये सब पॉइंट आउट कर रहे हैं, इन सब की शिकायत है अभिषेक बैनर्जी से और भी जो कुछ है उनसे जानेंगे, लेकिन आपका क्या इस पर टेक है सापरा साहब?
9: देखिए वो तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो उसके ऊपर उनके प्रवक्ता बोल ही रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो मैं पिछले 25 मिनट में देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जो अध्यक्ष है उन्होंने एक लाइन कही कि हम बीजेपी का तृणमूलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई, आपने मुख्यमंत्री वो बनाया है जो तृणमूल से आया है और तृणमूलाइजेशन नहीं करेंगे, ये कहां से कह रहे हैं? तो दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बोल है ना वो आदर्शवादी है, लेकिन ये है अवसरवादी, यानी बगल में मुंह में राम बगल में छुरी या फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के होर, ये ऑपरेशन लोटस एक तरह से चल रहा है। अंजना जी देखिए, आग तब तक नहीं सुलगती जब तक कोई चिंगारी न लगे, और चिंगारी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है। यही ऑपरेशन लोटस इन्होंने मध्य प्रदेश में चलाया, कर्नाटक में चलाया, गोवा उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में चलाया, कर्नाटक में चलाया, तब सरकार हत्यानी थी इसलिए चलाया। अब सरकार में है, जनता ने सत्ता दे दी है, लेकिन अब विपक्ष को कमजोर करना है, विपक्ष मुक्त बंगाल बनाना है या लंगड़ा लूला विपक्ष बनाना है, जो नूरा कुश्ती करे नाम मात्र विपक्ष रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग है। ये ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी खेला कर रही है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
0: ठीक है, एक छोटा सा जवाब आप दीजिएगा गौरव जी, लेकिन अब रिजु दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े दिनों के बाद जुड़े हैं, एक बार रिजु जी और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को जरा दिखा दीजिए एक साथ। स्वयं प्रकाश जी, थोड़ा सा आप भी धीरज रखिएगा, क्योंकि रिजु जी कह रहे हैं कि वो विसल ब्लोइंग कर रहे हैं, पार्टी के अंदर जो परेशानियां थी जिसकी वजह से इस डिबैकल का सामना टीएमसी को करना पड़ा इस चुनाव में, उसकी वो वजह बता रहे हैं। रिजु जी, आज सिर्फ 6 से 7 विधायक जैसा हमारे सहयोगी अनुपम वहां से बता रहे थे पहुंचे, और 4 से 5 सांसद, आपने भी पार्टी छोड़ दिया, भाई ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी हार गई तो आप सब एकदम निकल पड़े?
10: अंजना जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, पहली बात तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया है। और क्यों सस्पेंड किया है? जब 4 तारीख परिवर्तन हुआ और बीजेपी तृणमूल के जो गुंडे थे वो लोग खुद अपने ऊपर भगवा गुलाल लगा के तत्काल बीजेपी बन के सबके घरों पे हमला कर रहे थे, तब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो अभिषेक बनर्जी से लेके सुमित्रा से लेके किसी ने फोन नहीं उठाया किसी का। और ये सिर्फ रिजु दत्ता नहीं बोल रहा है, 3 बार के मंत्री, 4 बार 5 बार के विधायक अरूप राय हावड़ा के कल यही बात बोले उन्होंने कि पार्टी हमारे पास खड़ी नहीं थी। दीदी आज सड़क पे उतरी है और मैं उनको, हम लोग का बंगाली में कहावत है मातृ क्षमा, माँ का सम्मान मैं तब भी देता था, आज भी देता हूँ, भविष्य में भी दूंगा, बट आज जब वो सड़क पे थी तब 6 विधायक 4-5 सांसद, आज भी तो तृणमूल के पास 42 सांसद और 80 विधायक है। मैंने कल जो ब्रेकिंग न्यूज दिया था आज वो बात सही निकल रहा है। जब आपने अंजना जी मेरे ऊपर एक शो किया था, जब मैंने मुंह खोला था और तो आपने भी कुछ बाइट से चलाई थी, तब पूरे तृणमूल मिलके मेरे को गालियां दे रहे थे, तृणमूल की आईटी सेल लग गई थी मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उड़ाने के लिए रिपोर्ट मार मार के, बट टुडे आई स्टैंड विंडिकेटेड। इसी पार्टी ने जिन जिन को सांसद बना के भेजा, इसी पार्टी ने जिन जिन को टिकट देके, और जो लोग ममता बनर्जी के नाम पे जीते वो लोग तो आज वही बात बोल रहे जो 9 तारीख को रिजु दत्ता ने कहा था कि आईपैक पार्टी चला रही थी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हम लोग बोल रहे। मैंने तो अभी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ बोला भी नहीं, मैंने यही बोला कि आईपैक ने इस पार्टी को बेच दिया। और दो तीन और बात बता दूं, बाकी स्वयं जी बोलेंगे। अंजना जी मैं खत्म कर लूं कि स्वयं जी बोलेंगे?
0: खत्म कर लीजिए, दो लाइन में खत्म कीजिए, दो लाइन में खत्म कीजिए। मेरा आरोप लगेगा ही ना, ये आरोप लगेगा कि भाई पार्टी हार गई, डूब गई, तो आपने डूबता जहाज छोड़कर भागने का फैसला ले लिया।
10: तो मैं तो छोटा मोटा कार्य करता हूँ, छोड़ दीजिए। हाँ। पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, निंदनीय घटना है, जानलेवा हमला हुआ है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। जादवपुर जहां पर सोनापुर में ये घटना घटा, जादवपुर की सांसद है शालिनी घोष, कलकत्ता में रहती है, अभिषेक बनर्जी के पास क्यों नहीं पहुंची, छोड़ दीजिए, वहां नहीं जा पाई। हॉस्पिटल में जब अभिषेक बनर्जी का अपोलो और बेलव्यू लिया जा रहा था तब क्यों नहीं पहुंचे? सारे देश के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह, सबने निंदा की। तृणमूल के 42 सांसदों में कितने सांसदों ने ट्वीट किए, कितने विधायकों ने ट्वीट किए, और आज ऐसा माहौल हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस के 52 से 55 विधायक आज अपना एक नई असली तृणमूल बोल के नई पार्टी खड़ा करना चाह रहे हैं, शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल को लाना चाह रहे हैं, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं ऋतव्रत बंदोपाध्याय को, और कुछ दिन बाद ये सिंबल के ऊपर भी अपना हक जताने की कोशिश करेंगे।
0: जवाब दीजिए
10: तो सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है।
6: नहीं नहीं देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बता दिया है, शोभनदेव चट्टोपाध्याय सीनियर लीडर हमारे हैं, ये उस दिन मीटिंग में तय हो गया था। उसके बाद भी अगर किसी को बनना है वो अलग बात है, वो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। मगर आज जो पश्चिम बंगाल में जो नेत्री लोकतंत्र के अंदर में विपक्ष की सबसे पावरफुल लेडी के नाम से जानी जाती है ममता बनर्जी, उनसे ये नई नई सरकार जिसको एक महीना भी नहीं हुआ है, अभी भी दो दिन घटते हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया परमिशन, जहां पे ममता बनर्जी ने एक सभा के लिए 5 दिन पहले परमिशन मांगा था। आज एक बस अड्डे पे बोले आप वाई चैनल, पुलिस उनको बोलती है रात को 12 बजे के बाद में कि आप वाई चैनल में चले जाइए और वहां पर आप अपना जो भी वक्तव्य रखना रखिए। हमारे लोग गए, रात को मैसेज आया 1:30 बजे दोपहर में, दीदी अगर वहां पर जाकर के अपने जितने चाहने वाले वो पहुंचे हैं, बाकी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। रिजू दत्ता का जो सवाल है मैं उससे सहमत हूं कि अगर कांग्रेस के राहुल गांधी अगर सवाल कर सकते अपना समर्थन अभिषेक बनर्जी को जता सकते हैं और बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे जता सकते हैं, तो बाकी पार्टी के सांसदों को भी जताना चाहिए। मगर वो क्यों नहीं जता रहे हैं, इसके पीछे कौन सी ताकत है जिस ताकत ने उनको बचा कर रखा हुआ है, जो सीबीआई के घेरे में आकर के, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो तापस राय हो, बड़े बड़े नेता है
0: स्वयं प्रकाश जी कह रहे थे कि ये सारे नेता पपीता की तरह हैं, बाहर से हरे थे, अंदर से भगवा केसरिया थे, भगवा रंग के।
10: नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए ये सब का जवाब गौरव भाटिया जी अच्छे से दे सकते हैं, बट मैं सीधे तौर पे, मैं तो बीजेपी भी नहीं हूँ, तृणमूल भी नहीं हूँ, मैं सीधे तौर पे बता रहा हूँ, मेरे साथ गौरव भाटिया जी के बहुत डिबेट्स हुए। जब नड्डा जी के ऊपर पथरा हुआ था, मैं तृणमूल के तरफ से आके बोल रहा था जनरोष है। जब शुभेंदु अधिकारी को जिंदा जला देने की बात हो रही थी, मैं प्रवक्ता के तौर पर बोला जनरोष है। और जब वही चीजें हमारे नेताओं के साथ घट रहा है तो ये भी जनरोष है इसको। और बीजेपी देखिए, बहुत आसान है बीजेपी के ऊपर उंगली उठा देना, बाकी गौरव जी बोलेंगे, बट एक चीज समझिए, लोकसभा में इनका बीजेपी की मेजोरिटी हो रही है, विधान राज्यसभा में ये 150 सीटें मिलने के कगार पे बैठे हुए हैं, तृणमूल में बंगाल में इनको 208 सीटें मिल चुकी है, इनको तोड़ने की जोड़ने की क्या जरूरत है, सारे तो इन्हीं के पास है, तो ये क्यों तोड़ेंगे जोड़ेंगे। सवाल यहां पर पैदा होता है कि जो एक पार्टी जो ममता दीदी को देख के जो पार्टी बनी थी, जो पार्टी ममता दीदी को देख के रिजू दत्ता भी करता था और स्वयं प्रकाश पुरोहित भी करते हैं, उस पार्टी का 28 दिन में 215 से 80 क्यों हो गया, वो पार्टी क्यों टूट रही है, ये सवाल तो पार्टी को अपने से करना है। इसमें हमको गाली देके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है।
6: आपको गाली नहीं दी है, आपको किसने गाली दी है, आपको कोई गाली नहीं दे रहा है। नहीं, आप कोई गाली नहीं दे रहा है। देखिए अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ है, इसको करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, सुष्मिता दत्ता है, नाम आप पता कर लीजिए, आप तो बहुत जानते हैं बंगाल की राजनीति के बारे में, रिजू पता करिए कि सुष्मिता दत्ता कौन है, वो मिस्टर गायन कौन है जो पॉलर टान करके अभिषेक बनर्जी को मार रहा है, जो सामने से पत्थर मार रहा है जैसे कोई विकेट को उड़ा रहा है उसे, अगर हेलमेट नहीं होता तो मर जाते
0: ममता बनर्जी के छोटे भाई स्वपन बनर्जी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा है कि मैं भी भुक्तभोगी हूं। उनका कहना है कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुझे काम करने नहीं दिया जाता था। उन्होंने पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए।
11: 1931 साल से पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है,
12: लेकिन 2013 से आपको काम नहीं करने दिया।
11: 2013 साल से मेरा को काम करने नहीं देता है।
12: क्यों
11: काम करने नहीं देता है? कोई काम में नहीं देता। मैं बंगाल ओलंपिक का सेक्रेटरी था, चिट्ठी देता है, चिट्ठी फेंक देता है। मैं 2020 साल में चिट्ठी दिया, धीरे छोड़ा दिया, 2022 में दिया, 23 में दिया, 24 में मेरा को बैठा के हटा दिया। ये ठीक नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत गलती हुआ। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं पार्टी पॉलिटिक्स का काउंसलर नहीं है, मैं MLA नहीं है, मैं MP नहीं है, मैं कोई कुछ नहीं है,
12: लेकिन आप
11: स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है।
12: तो ये दीदी को पता नहीं था?
11: देखिए दीदी के बारे में, हम पोस्ट के बारे में क्रीड़ा मंत्री को बताएगा, हम दीदी को कैसे बताएं?
12: क्रीड़ा मंत्री तो ममता बनर्जी को ही रिपोर्ट करती थी,
11: बोलना जरूरी है, 100% सबको मालूम है इस बारे में।
0: जल्दी से आइए आपको दिखा देते हैं ममता बनर्जी, बताया जा रहा है ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है।
1: लड़ेंगे
13: या मरेंगे?
1: नहीं तो मरेंगे,
13: हाँ मरेंगे,
1: अगर जिएंगे
13: या मरेंगे,
1: लड़ेंगे तो बीजेपी को हटा देंगे।
0: जी इसका जवाब दीजिए, ममता बनर्जी वहां पर धरने पर कह रही हैं कि लड़ेंगे या मरेंगे, जिएंगे तो बीजेपी को हटाएंगे।
7: देखिए ऐसा है, ममता बनर्जी निराश हैं, हताश हैं, बौखलाई हुई हैं और वो कह रहे हैं मरेंगे या लड़ेंगे, तो वो तो पहले ही राजनीतिक तौर पे मर चुकी हैं। आज उनकी विचारधारा कुछ नहीं बची, उनके विधायक उनके सांसद उनके साथ नहीं खड़े हैं। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि हिंसा का रास्ता कोई नहीं अपनाएगा। अभिषेक बनर्जी पे अगर आक्रमण हुआ, अंडे मारे गए, जनता का आक्रोश था, ये सच्चाई है, लेकिन गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन आप याद करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा जी, जब उनका कारवा वहां पे जा रहा था पश्चिम बंगाल में, तो रोक दिया गया, पत्थरबाजी हुई। और ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये तो लोगों का गुस्सा है जो फूटेगा ही। दिलीप घोष जो अध्यक्ष रहे हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा के, 2020 की बात है, उनके कॉन्वॉय पे पत्थर मारे गए। अभिषेक बनर्जी ने बोला ये तो ठीक है ना, ये भड़काऊ बयान देते हैं, तब कानून व्यवस्था की बात, तब जान का खतरा, ये याद नहीं आया। आज स्वयं जी बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को अगर हेलमेट ना मिलता तो उनकी जान चली जाती है। बहुत दुखद होता अगर ऐसा कुछ होता, लेकिन 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के मार दिए गए। आपको बताऊं, दुलाल कुमार का केस चल रहा है, 23 साल का व्यक्ति, उसका शव मिला, इलेक्ट्रिक पोल से लाश लटक रही थी और 24 घंटे में बंद कर दिया गया केस, कह के ये आत्महत्या है। तो अंजना जी, यहां पर भड़काऊ बयान जो देता था, आज उसको उसकी हैसियत जनता दिखा रही है। अभिषेक बनर्जी का वो बयान याद करिए अंजना जी, जब उन्होंने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस चली जाएंगी 4 मई को, हम तुम्हें देखेंगे, वो भी याद करिए। जब कल्याण बनर्जी ने कहा था शुभेंदु अधिकारी के लिए, मैं पढ़ रहा हूं, आ तू देख जा, चले आ, आ शुभेंदु आ, पुलिस के बिना तू भी रहेगा, पुलिस के बिना हम भी रहेंगे,
0: पर गौरव जी
7: देखते हैं घर लौटेगा या नहीं।
0: गौरव जी, सापरा साहब कह रहे हैं कि आप लोग कमजोर विपक्ष चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है ताकि मनमानी कर सके। सापरा जी का तो जवाब दिए, इसके बाद
7: ऐसा है, पहले तो हाँ मैं दे देता हूँ, मैं बहुत जल्द 30 सेकंड में देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है पश्चिम बंगाल में? पिछले चुनाव में अंडा आया था 294 में, इस बार 2 सीटें आई है 294 में, मतलब आप बताइए करीब 600 सीटों में आई है 2 सीटें।
9: इनका उत्तर देना
7: और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में अंडा है इनका, दिल्ली में इनका अंडा है, और पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में इनकी सरकार थी, बसपा के 6 MLA थे, मर्जर करा लिया था अपनी पार्टी में। तो कम से कम तोड़ने की बात अगर आप करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही तोड़ने का है। भारत को तोड़ा, कांग्रेस पार्टी को खुद तोड़ा, सारे विधायकों को तोड़ने के लिए लगे रहते हैं। ये बात और है कि डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज में कोई आता नहीं है। और ये लोग प्रासंगिक नहीं है अंजना जी, इनका कोई वहां वजूद नहीं है, इसलिए इनकी बात को मैं गंभीरता से लेता भी नहीं हूं।
0: जवाब दीजिए जल्दी से, जवाब
9: मैं उत्तर देता हूं अंजना जी। देखिए हाँ, ये हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, इसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा प्रवचन दे दिया। इनका क्या हाल है, केरला के अंदर 3 सीटें हैं, तमिलनाडु में कितनी, 1 सीटें हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप गिनाने जाओगे तो हम भी गिनाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आपका चाल चरित्र और चेहरा क्या है
7: भैया?
9: क्या आपने अजीत पवार के ऊपर अब बीच में क्यों बोल रहे हो? अब मेरे समय में घुसपैठ मत करिए ना, अब घुसपैठिए मत करिए ना,
0: प्लीज
9: घुसपैठ मत करिए, चुनाव खत्म हो गया, घुसपेटिया नहीं, घुसपेटिया मत बनिए,
7: तो
9: ना ना घुसपेटिया मत बनिए। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि अजीत पवार को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भैया नेचुरल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाते हैं और 48 घंटे के अंदर उनको आप महाराज राज्य की चाबी पकड़ा देते हैं।
7: देख लो
9: हेमंता बिस्वा शर्मा को क्या कहते थे, पानी चोर कहते थे, सुवेंदु अधिकारी को क्या कहते थे, भाग सुवेंदु भाग, नारायण राणे को क्या कहते थे, ये तमाम सारे जितने भ्रष्टाचारी थे सबको आपने वॉशिंग मशीन में धो लिया ना। अब वॉशिंग मशीन में अगर धो लिया तो कमल डिटर्जेंट पर सवाल तो उठेगा ना। अंजना जी ये लगातार बोल रहे हैं,
0: बार बार गौरव जी आवाज नीचे कर दीजिए, गौरव जी
9: लगातार बोल रहे हैं,
0: आवाज नीचे कर दीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए।
9: देखिए हाँ ये इस तरह से बदतमीजी करते हैं, बीच में बोलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कमल डिटर्जेंट से ये धोएंगे किसी को भी वॉशिंग मशीन में तो कमल डिटर्जेंट पर सवाल तो उठेगा। फिर क्यों फुदक रहे हैं इतना भाई, क्यों उछल रहे हैं आप इतना? जब आप ऐसे कुकर्म करोगे तो फिर वही नतीजा निकलेगा ना। तो यही पश्चिम बंगाल के जरिए से जो हो रहा है ना वहां पर, तो जनता समझ रही है कि आप साम दाम दंड भेद सत्ता बल धन बल बाहुबल के जरिए से आप विपक्ष को नष्ट करना चाहते हो, विपक्ष मुक्त बंगाल बनाना चाहते हो, लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहते हो। लोकतंत्र का चीरहरण जब जब आप करना चाहोगे, जैसे आपने 400 पार का नारा लगाया था और कहा था कि 400 पार हो गया तो हम संविधान बदल देंगे, लोगों ने आपको औकात दिखा दी, 240 पर ला करके बिठा दिया, आपको बैसाखी लेकर के केंद्र की सरकार बनानी पड़ी है। यही आपके साथ में फिर हो सकता है, ये ध्यान रखिए। जनता से डरिए और जनता को कॉकरोच बोलना भी छोड़िए।
7: जवाब देता हूं, पहली बात सुनिए अंजना जी, सबसे पहली बात, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे दोस्त हैं, इन्होंने शौमिक भट्टाचार्य जी का बयान नहीं सुना है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि टीएमसी का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएगा, उनके लिए दरवाजे बंद है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, कम से कम अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं आपके पार्टी के। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की लाशों पे चढ़ के इंडी अलायंस का गठबंधन किया ममता बनर्जी से, धिक्कार है। आप उन पीड़ित परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपना बेटा भाई पति खोया,
0: चलिए ठीक है,
7: उनसे पूछिएगा, थूकते हैं वो कांग्रेस पार्टी पे, अपने कार्यकर्ताओं की लाशों पे खड़े होके इंडी अलायंस का गठबंधन कर लिया, आप क्या राजनीति करोगे?
0: चलिए वापस आइए टॉपिक पर। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप लोग अलग से लड़ लीजिएगा, कांग्रेस बीजेपी का ऑब्सेशन एक दूसरे से हटता नहीं है, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, दक्षिण 24 परगना से आई तस्वीर के बाद दावा किया जा रहा है कि एक वहां पर लोकल टीएमसी नेता है और उसने आज कटमनी वापस किया है। दक्षिण 24 परगना के नामखाना में आरोप है कि स्थानीय नेता ने 45 लोगों से 5,000 रुपए लिए थे, ये देखिए उसका वीडियो है। इसके बाद ही उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ उसने दिया था। इसके पहले काकद्वीप में भी कटमनी वापस करने की खबर आई थी। भाई वजह है ना,
6: ये नहीं वजह, नहीं वजह, वजह क्या है? अगर वो व्यक्ति किसी से पैसे लिया, अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी से पैसे ले रहा है और वापस दे रहा है, ये स्वयं प्रकाश पुरोहित का मैटर है। ये पैसा तो पार्टी फंड में है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में या पश्चिम बंगाल की सरकार में 15 साल की सरकार में जमा नहीं हुआ। तो जिसको
0: स्वयं प्रकाश जी आपकी पार्टी के नाम पे ले रहा था, नहीं मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो वहां पर लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं पार्टी के नाम पे ले रहा था।
6: नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले SIR की प्रक्रिया चल रही थी, तब हिंदू महासभा के नाम से लेटर पेड पर नागरिकता दे रहे थे, लेटर पेड पे पैसे भी ले रहे थे, नागरिकता भी दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वाले नागरिकता और पैसे दोनों दिए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले दे रहे थे। तो जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी, हमने आपको चैनल में भी दिखाया है। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आपको अगर लगता है जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपने जो वादे किए, अन्नपूर्णा भंडार का 12 पन्ने का फॉर्म दिया आपने, रेनन मार्टिन की किताब लेकर बैठना पड़ेगा उसको समझने के लिए, वो गरीब महिला की उसमें भी वो बोल रही है इनकी नेत्री कि वो नहीं मिलेंगे उनको, कि जो आप फॉर्म भी भर देते हैं तो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर आपको नहीं देना था पैसे तो आपने पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह क्यों किया? 3,000 का वादा किया, आपने कहा कि लक्ष्मी भंडार आपको बंद हो जाएगा, हम आपको नया ये देंगे अन्नपूर्णा भंडार, आप उसी अकाउंट में जांच कर लीजिए और कन्वर्सन कर दीजिए। जिनका अगर वोटर कार्ड तो SIR में आपने अभी नया बनवाया,
0: तो देखिए चुनाव खत्म हो गया रिजू जी। अब सवाल यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी को क्या वाकई अपनों से ही

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
5: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ बहुत अपसेट हूँ
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
7: लायन डेट नट बाइट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: In association with Monte Carlo, it's the way you make me feel. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 billion views, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
14: Giribala Singh ki, jo beech mein baithi hui hai, aur in tasveeron ke zariye, aap dekhiye, wo CBI ne 5 ghante tak poochtaach ki, aur ab Giribala Singh ko leke CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्विशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: बंगाल की चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उठे बगावत के स्वरों के बीच मानो ममता बैनर्जी का ये पहला शक्ति प्रदर्शन था। ममता बनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी पर 30 मई को हुए हमले समेत पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कथित हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। राज्य में बदल गई चुनावी हवा के बीच ममता का आरोप है कि टीएमसी में टूट का षड्यंत्र रचा जा रहा। ममता बैनर्जी भले तृणमूल में हो रही बगावत को सियासी सवाल बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बंगाल की हार के बाद टीएमसी में बिखराव साफ नजर आ रहा। बीती रात कोलकाता के एमएलए हॉस्टल की ये तस्वीरें देखिए। वहां पार्टी से निकाले गए विधायक रतब्रता बनर्जी और संदीपन साहा कुछ अन्य टीएमसी विधायकों से मिले हैं। इन तस्वीरों में रतब्रता के साथ विधायक सीउली साहा के होने का दावा हुआ है। तृणमूल की यह दरार पार्टी में एंटी अभिषेक बैनर्जी ब्लॉक बनने की संभावनाओं से बड़ी है। रतब्रता बनर्जी और संदीपन साहा की ही शिकायत पर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ टीएमसी विधायकों का फर्जी दस्तखत बनाने के आरोपों की जांच राज्य सीआईडी ने शुरू की है। ये फर्जी दस्तखत उस आधिकारिक दस्तावेज पर किए जाने का आरोप है जिसमें कथित तौर पर विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय और चीफ व्हिप के लिए फिरहाद हकीम को चुना है। जबकि सच्चाई ये है कि 19 मई की जिस बैठक में 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी तैयार हुई उसमें केवल 45 विधायक ही पहुंचे थे। टीएमसी के विधायक बार बार पार्टी की बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं। 6 मई को टीएमसी के 80 में से 10 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। 19 मई को 35 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। यही नहीं, सांसद काकोली घोष दस्तीदार, राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, पूर्व सांसद शांतनु सेन और पार्टी प्रवक्ता रिजू दत्ता जैसे नेता खुलेआम टीएमसी को आईना दिखा चुके हैं। बगावत थामने के लिए टीएमसी को पार्टी के लिए ममता के योगदान को याद दिलाना पड़ रहा है। इस बीच बीजेपी बार बार सार्वजनिक बयान दे रही है कि टीएमसी के नेताओं के लिए उसके दरवाजे बंद है। सिर्फ एक हार से तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मचती दिख रही है, तो उधर दक्षिण 24 परगना में स्थानीय टीएमसी नेता ने पहले ली गई कटमनी वापस की, ये भी बदले हुए वक्त की गवाही दे रहा है आज तक ब्यूरो।

0: बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में आपसी फूट पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, अब देखिए सात तक मारिया के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज तक की मुहिम का बड़ा असर, पीएम मोदी की दखल के बाद हटे सीए बीएससी चेयरमैन और सचिव। ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन कमेटी करेगी जांच। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता बैनर्जी लाचार। धरने में पहुंचे बस 8 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में आज दक्षिण की सियासी रणनीति, शपथ के पहले आलाकमान से मिले डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया। कैबिनेट पर फाइनल मुहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे अन्नामलाई की शाह से मुलाकात। सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, आज फिर दिए तीखे बयान, फाजिल नगर का बदला नाम। पंजाब में स्कूल की मनमानी का खौफनाक अंत, अमृतसर में 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, 20,000 बकाया फीस के लिए टॉर्चर के गंभीर आरोप। शो की शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर से। पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त हलचल है। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ आज ममता बैनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन में भी टीएमसी के सांसद और विधायकों की संख्या कम ही रही।
1: ये शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता बैनर्जी का धरना प्रदर्शन है। ये विरोध है उस हिंसा का जो सरकार बनने के बाद दिखाई दी है। ये आक्रोश है उस हमले के खिलाफ जो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुआ था।
2: लड़ेंगे या मरेंगे?
3: यही तो मरेंगे।
2: हाँ मरेंगे।
3: अगर जिएंगे
2: या मरेंगे?
3: जिएंगे तो बीजेपी को हटा पड़ेगा।
1: ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बैठी हैं, मगर उनके खुद की पार्टी में कलह मची हुई है। टीएमसी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी का भर भर के दिल से गुबार निकला है और निशाने पर हैं अभिषेक बनर्जी।
4: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
1: ऋतव्रत बनर्जी ने कई सवाल किए जो सीधे बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजों से जुड़े थे। इन सवालों के जरिए यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, अभिषेक बनर्जी ही उसकी सबसे बड़ी वजह हैं।
4: मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे।
1: सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। बीती रात ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं।
3: आज के गद्दारी करछे तृणमूलटाके भांगार जन्य।
1: ममता का बयान बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी नए संकट काल से गुजर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल के सियासत में मचे हड़कंप के बीच हमारे साथ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। समीक भट्टाचार्य जी कलकत्ता से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की नहीं, इसलिए बागियों से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बयान को कैसे देखते हैं?
5: देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रही है और तृणमूल कांग्रेस क्या कर रहे हैं, इसका ऊपर जनता की कोई भी आग्रह नहीं है। पीपल आर नॉट रेडी टू हियर तृणमूल कांग्रेस एनी मोर, इसका ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे। ममता जी का पार्टी बिखर रहे है, टूट रहे है, वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। ममता जी का पार्टी का मालिक ममता जी खुद थी, खुद है, और उसका बाद उसका परिवार के किसी लोग उसका पार्टी का जो ओनरशिप है जो है वो ले लेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं, इसका ऊपर तो डिबेट होना चाहिए। और हमारा ये विश्वास है कि पश्चिम बंगाल जैसे इतना बड़ा स्टेट में 15 साल सत्ता में रहने के बाद तो सारे यूनिवर्सिटी में इसका ऊपर पीएचडी होना चाहिए, जो वेदर तृणमूल कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी और नॉट। पॉलिटिकल पार्टी का जो डेफिनेशन है उसमें तृणमूल कांग्रेस को भी आता नहीं है, फिट नहीं बैठता है उसका साथ।
0: कल ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई उसमें जो उनके 80 विधायक हैं उसमें से बस 20 विधायक शामिल हुए। आज भी जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें बस 7 एमएलए और जो सांसद हैं वो मौजूद थे। क्या टीएमसी के बागियों को बीजेपी में जगह मिलेगी, ये सवाल आपसे क्योंकि आप अध्यक्ष।
5: भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है, बिना तृणमूल कांग्रेस से उधार लिए तृणमूल कांग्रेस को अपने पार्टी में शामिल नहीं करके भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल किया है। और ये जनता का जो फैसला है, जनता का जो वर्डिक्ट है, वो तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ है। इट्स अ क्लियर मैंडेट अगेंस्ट तृणमूल मिसडीड एंड मिसरूल। तृणमूल कांग्रेस और करप्शन ये सिनोनिमस था। आप किसी भी ऐसा मंत्रालय को ढूंढकर नहीं निकल पाएंगे जिसपे तृणमूल कांग्रेस कोई भी भ्रष्टाचार का छाप नहीं छोड़ा। तो तृणमूल कांग्रेस थोरोली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। तृणमूल कांग्रेस 2011 में जब सत्ता में आया था तब उसका सामने एक ही नारा था, द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जनता अच्छी तरह से जानती थी जो किसी भी हालत में कलकत्ता, लंदन, ये दीघा, गोवा, दार्जिलिंग, स्विट्जरलैंड, 40,000 बंद फैक्ट्री का दरवाजा खोलना, ये सब बकवास।
0: समित जी, एक और सवाल ये है कि ममता बनर्जी जब आज धरने में बैठी थी तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरी जो लड़ाई है अब दिल्ली तक जाएगी, तो आप अगर वो दिल्ली भाजपा के खिलाफ दिल्ली तक लड़ाई लाएंगी तो आप कैसे क्या करेंगे?
5: ये लोग सुनकर हंस रहे हैं ममता बा, अरे जाइए ना दिल्ली, जाइए अंटार्कटिका, जाइए मार्स पे चले जाइए, उसमें हमारा क्या आएगा? पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल का किसी भी बात से अभी कोई भरोसा भी नहीं करते और तृणमूल कांग्रेस का किसी बात वो सुनना भी नहीं चाहते। तो अभी कलकत्ता का लोग नहीं सुनने के लिए राजी नहीं है तो दिल्ली जाकर बैठ जाए, जंतर मंतर उधर है, इधर तो गांधी जी है, उधर तो तृणमूल कांग्रेस तो इकट्ठा रह नहीं पा रहे हैं।
0: चलिए, आज तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समित भट्टाचार्य थे वहां पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रक्रिया को लेकर विवाद जो चल रहा था उस पर एक बड़ा एक्शन लिया है। बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और सचिव को हटा दिया गया है। ओएसएम सर्विस की टेंडर प्रक्रिया की जांच कमेटी का गठन भी हुआ है। आज तक लगातार इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहा था जिसकी खबर का बड़ा असर आपको दिखाई दे रहा है और दो बड़े अधिकारियों का तबादला सरकार की ओर से किया गया है। अब बात यूपी की, जहां 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया तो वहीं सरकार के एक्शन पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं।
6: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
7: यूपी के चुनावी पिच पर योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो निशाने मारे। रोजगार और अपराध पर सरकार की पीठ थपथपाई तो वहीं अखिलेश राज की याद भी दिलाई।
6: हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, आज की पीढ़ी जिसकी उम्र।
7: योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी की सरकार को जंगल राज बता रहे हैं तो अपराध पर अखिलेश के पास भी आरोपों की एक लंबी लिस्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एशियन गेम्स में चयनित पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या, सूर्या चौहान और एक दूध व्यापारी की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ठप होने का प्रतीक है। गृह नामक कोई मंत्रालय यूपी में है क्या? यह अपराधियों के दुस्साहस को देखकर अंडरग्राउंड हो गया है। हैशटैग असफल मुख्यमंत्री। उधर योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी के फाजिल नगर विधानसभा का नाम बदलने का ऐलान भी कर दिया।
6: अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे।
7: बीजेपी का धर्म कार्ड कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रहा है।
8: मैं तो नहीं कहना चाहूंगा योगी जी से कि आप तत्काल गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, जिससे लोग कह रहे हैं तो वो चीजें लागू होनी चाहिए। हमारी मांग है केवल बड़ी बड़ी बात करना, गिरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठगने का काम बंद करिए।
7: 2027 के लिए यूपी की सियासी पिच तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बल्लेबाजी करने उतर चुकी है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में राबड़ी देवी का आवास नया सियासी अखाड़ा बन चुका है। राबड़ी के बंगला छोड़ने से इनकार के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि राबड़ी देवी को आवास खाली करना ही पड़ेगा।
9: लोगों को चिंता है कि मेरी पपोती मेरा घर है, एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ये जनता मालिक है, जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री।
7: ये जवाब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राबड़ी देवी को है, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी थी कि किसी भी कीमत पर वो 10 सर्कुलर वाला आवास नहीं छोड़ेंगी।
10: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
9: लेकिन कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा, कोई मायका लाल इसको रोक नहीं सकता है, घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है।
7: राबड़ी के तेवर बता रहे हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
11: जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा।
7: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया था। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास को अब तक खाली नहीं किया है। ये बंगला अब पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर को आवंटित है, जो राबड़ी के बंगला न खाली करने की अपनी वजह बता रहे हैं।
12: मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है।
7: पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए थे, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया था, जिसे अब उन्हें खाली करना है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
0: अब बात मुंबई में हुए बुलडोजर एक्शन की। गोरेगांव में प्रशासन का बुलडोजर एक दरगाह पर गरजा, आरोप है कि दरगाह को अवैध तरीके से बनाया गया था।
1: मुंबई के गोरेगांव में बुलडोजर चल रहा है, आरे मिल्क कॉलोनी में हजरत बरकत अली शाह बाबा की दरगाह ढहाई जा रही है।
13: आरे जो एक सबब मुंबई का सबब है, और यहाँ पर आप देख लीजिए जिस तरीके से एक दरगाह बना हुआ था, काफी बरसों से ये दरगाह यहाँ पर था और उसको डिमोलिश करने की ये फिलहाल कार्रवाई चल रही है। और पिछले कुछ दिनों में जैसे हम पुलिस अधिकारियों से भी बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना, अभी कुछ दिन पहले ही कल ही एक दिंडोशी इलाके में एक मंदिर जो अवैध तरीके से बना था उस पर भी डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। वहीं ये दरगाह पिछले कई दशकों से दरअसल था, लेकिन जो पुलिस का कहना है, आरए प्रशासन है उसका कहना है कि ये सारी सरकारी जमीन है और उस पर अवैध तरीके से ये बना हुआ था और इसी वजह से ये तोड़ा कार्रवाई की गई है।
1: आरोप है कि दरगाह की आड़ में लगभग 70,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके दरगाह को बनाया गया। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद थी, किसी तरह का विवाद न हो इसलिए भारी फोर्स तैनात थी।
14: अतिक्रमण ही था तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई कर दिए, उनको नोटिस भी दे दी थी, सफिशियंट उनको टाइम दिया था, उसके बाद भी उन्होंने वो डिमोलिश नहीं किया, निकाल कर नहीं गए, इसलिए पुलिस को बंदोबस्त मांगा था और वहाँ पर हमने बंदोबस्त दिया है और डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही, खत्म होगी, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
1: प्रशासन कह रहा है कि अवैध अतिक्रमण था और वारिस पठान पूछ रहे हैं कि यहाँ आसपास और भी अतिक्रमण है मगर बुलडोजर सिर्फ दरगाह पर ही क्यों चला।
15: नहीं है किसी, आप मेरे को बता दूंगा 400 यहाँ पे मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ के पूरे जो लोग हैं स्थानिक लोग, देखो यहाँ सब जमा है, सबका ये बोलना है कि यहाँ पे 400 से ज्यादा धार्मिक स्थल है जिसके पास बताओ 7/12 का उतारा है क्या, रजिस्ट्रेशन है क्या, डॉक्यूमेंट है क्या, अगर नहीं है उनका क्यों आप नहीं तोड़ते हो।
1: इस बुलडोजर कार्रवाई के बीच बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मांग की गई है कि मुंबई की सड़कों पर नमाज पर रोक लगाई जाए। अब इस मामले में भी सियासी उफान है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की खबर आ रही है। अचानक बादल फटने से सड़कों पर सैलाब आ गया है, कई जगहों पर रास्ता बंद हो गया है। किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे पर भी इसका असर पड़ा है जिसके बाद वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं आपके स्क्रीन पर हैं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं क्लाउड बर्स्ट के बाद जो वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है उसकी तस्वीरें हैं। रियल लाइफ की दुश्मनी जब रियल लाइफ पर उतरती है तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की तनातनी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन अब एक जंग और शुरू हुई है। सलमान खान और काला हिरन नाम की फिल्म बनाने वाले निर्माता के बीच
7: सारे विवाद की जड़ ये पोस्टर है। जैसे ही ये पोस्टर आया और मालूम चला कि काला हिरण के नाम से एक फिल्म बन रही है, उसने मुंबई में सलमान के दफ्तर में खलबली मचा दी। सलमान खान की लीगल टीम ने काला हिरण के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को फिल्म को लेकर एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के जरिए मेकर्स से फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है।
5: हमने सलमान खान को ना इसमें जो है गलत तरीके से दिखाया है, ना हमने उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। वो जो है पूरा मामला वो पूरा जो है पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं सलमान खान ब्लैक बक, सलमान खान एक ही बात है। तो ऐसे में लीगल नोटिस भेजना पोस्टर जारी होने पे मुझे लगता है बहुत जो है ये छोटी बात।
7: रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामे से लेकर सलमान खान की गिरफ्तारी और बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टकराव की पूरी कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा संभल मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में शूट किया गया है। इसी महीने की 20 तारीख को फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब सलमान के कानूनी नोटिस का इस रिलीज पर भी असर पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबरें शेयर बाजार की।
7: कारोबार के दौरान खरीदारी के सकारात्मक माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 383 अंक मजबूत होकर 74,650 और निफ्टी 101 अंक चढ़कर 23,484 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए पर दबाव बना रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 95.28 रुपए पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा और 10 ग्राम सोना 697 रुपए महंगा होकर 156,296 रुपए पर पहुंच गया। जबकि चांदी 3300 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 2,66,200 रुपए के स्तर पर पहुंच गई।
0: बाजार पर युद्ध का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ये जो तनाव है कब तक चलेगा और कब खत्म होगा, क्योंकि बातचीत की कोशिशों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है।
16: लेबनान पर इसराइल के ताजा हमलों ने एक बार फिर खाड़ी देशों में युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। टायर शहर में इसराइल ने जोरदार हमला किया है, जिससे अब ईरान भड़का हुआ नजर आ रहा है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने कहा है कि तेहरान की बातचीत करने वाली टीम लेबनान पर हुए हमलों के बाद मध्यस्थता रोक रही है। उधर ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने भी चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले पूरी तरह से नहीं रुके तो इसराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सेना को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि इन धमकियों के बीच इसराइल लगातार हमले कर रहा है, जिसे वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के हुए हैं, जहां नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर तीखी बहस की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक फोन मिलते ही नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्ला हमारे शहरों और नागरिकों पर हमले बंद नहीं करता तो इसराइल बेरूत में उसके ठिकानों पर स्ट्राइक करेगा। ये सुनते ही ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा, ये क्या बकवास काम कर रहे हो तुम बिल्कुल होश खो चुके। मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। मैं हूँ जो तुम्हें बचा रहा है। अब तो सब तुमसे नफरत करने लगे, इसी के चलते सब इसराइल से नफरत करते हैं। ट्रंप की फटकार सुनते ही नेतन्याहू ने कहा, ओके, बस ये यकीन कर लेना कि इसराइल की सारी चिंताओं का ख्याल रखा जाए। ये कहा जा रहा है कि इस बातचीत में गालियों का भी खूब इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप से फोन के बाद इसराइल लेबनान पर हमले रोकेगा या फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। आज तक फिर
0: भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा, जो किसी फाइनल से कम नहीं है। अब तक सीरीज 1-1 से के बराबर है। आज जो जीतेगा वही सीरीज जीतेगा।
1: वर्ल्ड कप से ठीक पहले आज होगा भारत इंग्लैंड फाइनल। जो जीता T20 सीरीज पर उसका कब्जा। आज रात भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जी हाँ, ये मुकाबला होगा इंग्लैंड के टॉन्टन में। दरअसल भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच T20 सीरीज चल रही है, जिसका आज रात तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। अब तक सीरीज 1-1 से बराबर है। इस सीरीज की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इंग्लैंड में ही भारतीय टीम को एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप खेलना है। उससे पहले इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम T20 की सीरीज खेल रही है। पहला T20 मैच टीम इंडिया ने 38 रनों से जीता था, जबकि दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड वापसी करते हुए 26 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया था। भारतीय टीम पहले भी इंग्लैंड को उसी के घर में पटखनी दे चुकी है। पिछले साल भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में जाकर T20 सीरीज में हराया था। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वनडे का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी अगुवाई में भारतीय महिला टीम T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: अब ब्रेक लेते हैं। ये थी खबरें 7 तक। आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अप
18: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
20: Har pal manao Kesri Tewahar. Vimal.
21: Bolo Zubaan Kesri.
20: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
22: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
23: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील पीएम की बात एकदम सॉलिड।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
23: Money every month.
24: Soch batlo aur bank bhi.
25: Oh no, bahut bore lag raha hai.
26: Take a date, not bites.
27: No added sugar, preservative ke bina. Dates, badam, pista, kaju aur shahad se taiyar kiya gaya. Lion dates, nut bites. Take a
26: lion date, nut bites.
28: Aage, aage.
29: Arre udhar, udhar kya?
28: Correct, correct.
30: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
31: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
32: In association with
33: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
34: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
35: Summer cool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
36: Hint, bade aaram se.
37: Vimal, bolo zuba kesri.
38: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
39: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
40: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजतक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।

0: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
0: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं। राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा। फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं। इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है। मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है। तारीख नोट करिए, 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा, जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं। तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर प्राइम मिनिस्टर मोदी की दखल के बाद हटे सीबीएसई चेयरमैन और सचिव ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन कमेटी करेगी जांच। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता बैनर्जी लाचार, धरने में पहुंचे बस 8 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में आज दक्षिण की सियासी रणनीति, शपथ के पहले आलाकमान से मिले डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया, कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे अन्नामलाई की शाह से मुलाकात। सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, आज फिर दिए उन्होंने तीखे बयान, फजल नगर का बदला नाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से सड़कों पर आया सैलाब, लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं मारिया शकील। आज विशेष में बात पंजाब के अमृतसर की, जहां एक प्राइवेट स्कूल की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोप है कि छात्रा के परिवार पर स्कूल पेंडिंग फीस जमा करने का दबाव बना रहा था, धमका रहा था, छात्रा को लगातार टॉर्चर कर रहा था। स्कूल ने छात्रा के पेरेंट्स को धमकाने के लिए फोन किया, कहा कि फीस जमा नहीं किया गया तो उसका नाम काट दिया जाएगा। ये सब सुनकर छात्रा डिप्रेशन में चली गई और उसने आत्महत्या कर ली। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बेटी को आईएएस बनाने का सपना देखा था। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर पंजाब सरकार से हम कुछ सवाल पूछेंगे।
4: क्या पंजाब के अमृतसर में एक स्कूल ने फीस के लिए एक छात्रा की जान ले ली? क्या प्राइवेट स्कूल ने फीस के लिए छात्रा को इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली?
5: 11 महीने स्कूल वाले से मुझे अलग रूम से बुलाते, बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया। नारे 11 महीने में मेरे सारे क्लास के बच्चे रूम में पहुंच गए।
6: ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਫੀਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੁਛ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਟੌਰਚਰ। ਮੈਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ।
4: ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ DDIS, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਪਰ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਕੀ ਛਾਤਰਾ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਉਸੇ ਫੀਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ। ਯਹ ਹੈ ਵੋ 17 ਸਾਲ ਕੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀ ਹੈ। अस्पताल के बेड पर मरणासन हालत में इस छात्रा ने स्कूल पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आप इस लड़की का डाइंग स्टेटमेंट सुनिए।
5: 11 महीने स्कूल वाले से मुझे अलग रूम से बुलाते, तो बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया। नारे 11 महीने मेरे सारे क्लास के बच्चे रूम में पहुंच गए।
4: अपनी बात रिकॉर्ड करने के कुछ ही देर बाद इस लड़की की मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने स्कूल के बारे में जो कुछ भी बताया है वो बहुत हैरान करने वाला है।
7: सर, में स्कूल फीस के दबाव के चलते 12वीं क्लास की छात्रा द्वारा आत्महत्या कर ली गई। हालांकि हम इस समय उसी स्कूल के बाहर खड़े हैं, DDIS स्कूल है, डिसिप्लिन डिसाइप्लस इंटरनेशनल स्कूल के नाम से ये मशहूर है। और जो मरने से पहले छात्रा द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें उसने कहा गया था कि उसे फीस के लिए जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मरने से पहले उसके द्वारा ये वीडियो हॉस्पिटल में बनाई गई थी और उसमें उसने साफ तौर पर कहा था कि 11 मई को उन्हें उसे अमरजोत को स्कूल बुलाया गया जहाँ उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, उसके क्लास को उसे क्लास के ग्रुप से भी हटा दिया गया। वीडियो में उसने साफ कहा कि उसकी मौजूदा हालत के लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है और वह जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। उसने मामले में न्याय की मांग करते हुए उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए।
4: लड़की की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को स्कूल की प्रिंसिपल शबनम शर्मा और क्लास टीचर आकांक्षा टॉर्चर कर रहे थे। आरोप है कि क्लास टीचर उससे बहुत से दूसरे काम भी करवाती थी। स्कूल की कुछ फीस पेंडिंग थी तो क्लास टीचर ने माँ को फोन किया और फीस जमा करने को कहा। आरोप है कि क्लास टीचर ने कहा कि फीस जमा नहीं की तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। फोन छात्रा ने सुन लिया जिसके बाद से वो टेंशन में थी और फिर उसने सुसाइड कर लिया।
8: मेरी बेटी थोड़ी जी फीस पेंडिंग सी उदे करके कुछ मेरी बेटी ने मेरी बेटी दस दी रही है कि मैं मेडिकल प्लस वन तो बाद आकांक्षा मैडम प्रिंसीपल शबनम शर्मा ये दो मेरी धी क्लास में टॉर्चर कर दिया रही ने आंधिया तेरे क्लास का जो सारा क्लास का काम सीगा वह भी क्लास मनीटर का काम भी दफ्तर का काम भी मेरी बेटी के बोझ पाँदियाँ सी। मेरी बेटी मैं दस दी रही थोड़ा थोड़ी थोड़ी फीस भी पैनी मैं जाना सी 11 मैं 22 तरीक नूं मैं अपनी बेटी नूं लैके मैं चल बेटा कोई नहीं सारा इन्ना साल तू इतने चलो क्लास पढ़ी है थोड़ा प्लस टू का रह गया बेटा मैं लैके गई चल प्रिंसीपल मैम ना थोड़ी गल कर लेने जाके तेनों तेरी वे लेने की कर दे एडमिशन नहीं मेरी बेटी जी ने की थी। हूँ तो मैडम आकांक्षा 22 मई में फोन अननोन नंबर दो आकांक्षा मैडम ने फोन किया कि ताड़ी बच्ची का असी ना कर दिता स्कूल विचों ये तुसी सानू फीस साडे स्कूल दी दे दो साडा बच्चा स्कूल नहीं आना चाहिए। मैं स्पीकर आउन ते फोन सी मेरी बेटी ने वह भी सुन लिया मेरी बेटी वह भी टेंशन लै गई।
4: लेकिन स्कूल इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। स्कूल का साफ कहना है कि उनकी तरफ से फीस वसूली का कोई दबाव नहीं डाला गया। मृतक छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल की तरफ से पेंडिंग फीस जमा करने को लेकर दबाव डाला जा रहा था। स्कूल का कहना है कि उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं डाला गया। मां का आरोप है कि टीचर ने धमकाते हुए स्कूल फीस जमा करने के लिए फोन किया था। स्कूल का कहना है कि पिछले 3 महीने से छात्रा स्कूल ही नहीं आ रही थी। स्कूल का कहना है कि उन्होंने छात्रा के घर वालों को नोटिस दिए, कॉल किया और ये पूछा कि उनकी बेटी स्कूल क्यों नहीं आ रही। घर वालों की तरफ से कहा गया कि जल्द ही वो स्कूल आएगी। स्कूल की तरफ से सफाई दी जा रही है कि जो बच्चे फीस नहीं भर पाते हैं वो तो उन्हें डिस्काउंट भी देते हैं। स्कूल अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ बता रहा है और ये भी दावा कर रहा है कि अभी तो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसलिए कितनी फीस पेंडिंग है वो ये नहीं बता पाएंगे।
9: स्कूल दा कोई किसी चीज दा रोल नहीं हैगा, मैं तुहानू पहले ही दस रही हां। स्कूल 3 महीने तो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है। उन्हां दे कार रजिस्टर लेटर्स एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स कॉल्स वगैरह सब जा चुके हैं ते इको गल ओह कह रहे हैं कि असीं भेज रहे हैं, वो ठीक नहीं हैगी, भेज रहे हैं ठीक नहीं हैगी। सर इस तों ज्यादा ते असीं की कर सकते हैं, असीं कॉल ही कर सकते हैं क्योंकि देखो सर हर स्कूल नूं होंदा कि बच्चा नहीं आ रहा ते आपां कॉल करिए, ठीक है ना। और रही जो असीं हुण सामने आ रहे हैं कि तुसीं कह मतलब सारे कह रहे हैं जी फीस वालों बच्चे ने तंग कीता, सर साडा स्कूल मैनू नहीं लगता कि कोई स्कूल एज अ 25-25% एक एज अ सिंगल चाइल्ड नू गर्ल चाइल्ड नू भी दे रहा होवे डिस्काउंट, ठीक है। सिबलिंग्स नू साडा वखरा डिस्काउंट जांदा, हर चीज मैनेजमेंट साडी कर रही है। मतलब तुसी ए नहीं हैगा कि तुसी कहो कि मैनेजमेंट वालों सानू पूरी हेल्प है, इहनू प्रॉब्लम हुई है, बट साडे वालों कदी भी प्रेशराइज नहीं किया गया बच्चे नू, किसी भी बच्चे नू, ए बच्चा नहीं किसी भी बच्चे नू कि फीस वालों, ठीक है। जदों जदों देखो किसी का अगर 50,000-60,000 हो जाए उदो एक बार कहना बनता है फर्ज या बोलना बनता है कि प्लीज अपनी, और सर रोज तो सच ही कॉल नहीं करते जो पीटीएम हो बंदा देखो फर्ज बनता है कि बंदा यह चीज तो क्लियर पेरेंट्स नू भी जब कभी पेरेंट्स हो भी पेरेंट्स साढ़े को जिन्होंने सर पूरे पूरे साल की फीसा दी हुई।
4: कुल मिलाकर दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि लड़की की माँ का दावा है कि उनकी बेटी 10वीं में 86% नंबर लेकर आई थी लेकिन फिर भी स्कूल ने उसे मेडिकल स्ट्रीम नहीं लेने दी, जबकि स्कूल कह रहा है कि इस छात्रा ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी और पढ़ाई में वो ठीक नहीं थी।
8: मेरी थी 5th क्लास तो थे पढ़ रही, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 98% ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਡਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ 10th ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 86% ਨੰਬਰ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਬਨਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। 80% ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਣ ਦੇਣ। ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਔਲਖ, 17 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ
4: ਅਬ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਭਲੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਕੂਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ।
7: ਫੋਰਟਿਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 115 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 BNS ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ 10+1 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ DDI ਸਕੂਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਫਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
4: ਇੱਕ ਛਾਤਰਾ ਕੋ ਫੀਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੜੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੋਂ ਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਇਸੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕਾ ਦਾਵਾ ਕੀਆ ਹੈ।
10: ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੈਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ।
4: ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ।
0: 17 ਸਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਮਨਮਾਨੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਯੇ ਸਵਾਲ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾ ਫਿਰ ਯੇ ਭੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਫਾਈਲ ਮੇ ਇੱਕ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬਣਕਰ ਦਬੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਕਰੇਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਫੀਸ ਕੇ ਲੀਏ ਗਰੀਬ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਮੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਐਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵੋ ਛਾਤਰੋਂ ਕੋ ਫੀਸ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ? ਕਿਆ ਐਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਫੀਸ ਕੇ ਲੀਏ ਛਾਤਰੋਂ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਧਮਕਾਤੇ ਹੈਂ? ਹਮੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਬ ਬਾਤ ਭੋਪਾਲ ਕੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕੇਸ ਕੀ, ਜਿਸ ਮੇ ਆਜ ਟਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸਾਸ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਤੀ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋ ਕੋ 14 ਦਿਨ ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਮੇ ਭੇਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੀ। ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
2: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
3: Money, money, money, money every month.
4: Soch badlo aur bank bhi.
5: In association with
6: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
8: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
0: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी है। इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है। सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं। कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ

0: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
1: टीएमसी के टिकट से चुनाव जीते ऋतव्रत बनर्जी को एक दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, भर भर कर दिल से गुबार निकाला और निशाने पर रहे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी। ऋतव्रत बनर्जी ने कई सवाल किए जो सीधे बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजे से जुड़े थे। इन सवालों के जरिए ये एहसास दिलाने की कोशिश कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, अभिषेक बनर्जी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो इन हमलों के बीच सवाल ये है कि क्या बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी ही सबसे बड़े विलन बन गए हैं। अब स्थिति ये है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए दो टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। बीती रात ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि टीएमसी का दावा है कि दोनों विधायकों पर एक्शन पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर किया गया है और इसका टीएमसी के भविष्य पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इन दावों के बीच पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी हुई है। कल ममता बनर्जी की बैठक में 60 विधायकों के ना पहुंचने को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। दरअसल बंगाल में 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली टीएमसी इस चुनाव में महज 80 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद से ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन नाराजगी चरम पर तब दिखी जब सोनारपुर में भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर ही हमला बोल दिया। भले ही टीएमसी इस हमले के बीच बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब खबरें टीएमसी के भीतर से आ रही हैं। उसे साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। हालात के बाद अब टीएमसी नए संकट काल से गुजर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
3: आप देखे उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के दिखाना चाहते है, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे, बंगला में एक तो बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: सर, पीएम मोदी के दखल के बाद हटे सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, कमिटी करेगी जांच। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 8 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में आज दक्षिण की सियासी रणनीति, शपथ के पहले आलाकमान से मिले डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया कैबिनेट पर फाइनल मुहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे अन्नामलाई की शाह से मुलाकात। सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, आज फिर दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली सो नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिलनगर का बदला नाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से सड़कों पर आया सैलाब, भूस्खलन और कीचड़ की वजह से नेशनल हाईवे प्रभावित, कई गाड़ियों को भी नुकसान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: आपको खबरदार करने का, युद्ध रुक नहीं रहा। सीबीएसई का पोर्टल दूसरे दिन भी खुलने से ज्यादा ठप होता रहा। जून शुरू होते ही बादल फटने की खबरें डराने लगी हैं। इन सब के बीच आज राजनीति और आपके हित की नीति दोनों से जुड़ी हर खबर से हम खबरदार करेंगे। जहां सबसे पहले जानेंगे कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने की उल्टी गिनती चल रही है। टीएमसी का मतलब टूट रही ममता की कांग्रेस होने लगा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश लिए चलेंगे, वहां मुख्यमंत्री योगी ने कौन से हिंदुओं को बांटी जमीन जो बनेगी वोट की मशीन। तीसरी खबर देश के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। जहां सीबीएसई कब तक लटकाएगी, भटकाएगी, अटकाएगी का सवाल बना हुआ है, तो अब प्रधानमंत्री ने लगातार नाकामी की रिपोर्ट आने के बाद सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को हटाने का निर्देश दिया और कार्रवाई हुई। लेकिन क्या इंसाफ के घर देर ही नहीं, बहुत देर है। जहां दोषी ही इतने साल बाद सजा पाया कि वो पीड़ित दिखने लगा। चौंकाने वाली खबर जो न्याय व्यवस्था से जुड़ी है। 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस एक महीने में शक्तिशाली तृणमूल कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है। अभिषेक बनर्जी समेत 2 टीएमसी सांसदों पर हमला हो चुका है। टीएमसी के पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं। नौबत ये आ गई कि पार्टी में अब टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा। लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई। मतलब 2 घंटे पहले ही ममता का धरना खत्म हो गया। ममता पार्टी के एकजुट होने का संदेश देने उतरी थी, लेकिन जिस पार्टी के अभी कुल 80 विधायक और 29 सांसद हैं, वहीं पार्टी प्रमुख के ही धरने में केवल 7 विधायक और 3 सांसदों के पहुंचने से सवाल उठा कि क्या तृणमूल कांग्रेस टूटने वाली है।
1: लड़ेंगे या मरेंगे? नहीं तो मरेंगे। क्या मरेंगे? अगर जिएंगे या मरेंगे?
2: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने, सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
3: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम ले, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर।
2: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए। जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई है? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही,
4: बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर।
2: क्या उसी विधानसभा में जल्द दो दो तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
5: टू थर्ड मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे।
2: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा। ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है। तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया। लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, यह आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा। इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी।
6: गद्दारी को
1: তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান।
2: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं। इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे, तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
6: और वो हमरा क्यों किंतु बाकी विधायक जादेर काछे फोन जाच्छे जारा आज के गेटवे होटेले मीटिंग करेछेन, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
2: পশ্চিম বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ বিপক্ষী দল কে কার্যকর্তাও কা সত্তাধারী পার্টি মে শামিল হোনা আম বাত রাহা হ্যায়, লেকিন ইস বার ইয়ে কাম বহুত তেজি সে হো রাহা হ্যায়। চুনাও নতিজে কো মহিনে ভর ভি নাহি বিতে হ্যায়, লেকিন খুদ চুনাও হারনে ওয়ালি মমতা বনর্জি কি পার্টি কো বরিষ্ঠ নেতা অর পার্ষদ টাটা বাই বাই কর রহে হ্যায়। মমতা কে লিয়ে সবসে পরেশান করনে ওয়ালি বাত আব শেখ বনর্জি পর হামলে কে খিলাফ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला रहा, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो, जनता की सहानुभूति लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने में पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल नहीं हुए।
7: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे, तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
2: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए। सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं।
5: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था, तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
2: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के 2 सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा।
8: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
2: ऋतुव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतुव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
8: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटरसाइड में जाना पड़ता था।
2: ऋतुव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी है।
8: मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
2: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
9: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस है तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
2: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
10: ये वो तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
9: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला।
11: बंगाल में हार का ठीकरा तृणमूल के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दें? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
2: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया, जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की, क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए, वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
12: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
2: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
13: चोर चोर चोटा
14: अभिषेक सीधा
13: चोर ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: घोटाला बाज ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: क्रांतिकारी ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: चोर ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: चोर चोर चोटा
14: अभिषेक सीधा
13: चोर चोर चोटा
14: अभिषेक सीधा
13: चोर चोर चोटा
14: अभिषेक सीधा
15: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
2: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन वित्तव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
11: तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों और 29 सांसदों में से आधे से ज्यादा विधायक और ममता बनर्जी से अलग होकर दो घास फूल वाले चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करते हैं, तब क्या होगा? इसीलिए ममता की पार्टी में टूट कोई सामान्य घटना नहीं होगी, ये उन्हें उद्धव ठाकरे शरद पवार की कतार में खड़ा कर देगी, जिनके हाथ से पार्टी विधायक और उनका चुनाव चिन्ह तक चला गया। क्या इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष विद्रोही नेताओं से हाथ जोड़कर गुजारिश करते दिखे कि वो डूबते जहाज को छोड़कर न भागें? लेकिन क्या तृणमूल के गैर हाजिर विधायक सांसद ये बात मानेंगे? उद्धव ठाकरे को उनके करीबी एकनाथ शिंदे ने कमजोर किया, 40 विधायकों के साथ विद्रोह किया, जिसकी वजह से उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन शिंदे की बगावत से उद्धव के हाथ से पिता की बनाई पार्टी और चुनाव चिन्ह भी चला गया। ऐसी कहानी शरद पवार के साथ दोहराई गई, जब उन्हीं की बनाई पार्टी के विधायकों को साथ लेकर अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए। पार्टी को लेकर तनातनी शुरू हुई, मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा और शरद पवार को अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह गंवाना पड़ा। शरद गुट को नया नाम एनसीपी एससीपी नया चुनाव चिन्ह मिला। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की यह कहानी बंगाल में दोहराई जाएगी? अगर ममता बनर्जी के आधे से ज्यादा विधायक सांसद टूटे और टूटने वाला गुट चुनाव आयोग के पास गया, तो क्या ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह चला जाएगा? यह खतरा अब उनके सामने मंडरा रहा है। अब यहां एक अहम सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी को 40% के आसपास वोट मिले, नतीजों को एक महीना भी नहीं हुआ, तब अचानक ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी में असंतोष भड़क उठा? क्या बीजेपी के लिए ममता की पार्टी का एक धड़ा टूटकर अलग होना फायदेमंद होगा?
16: तो अभी ये लोग बीजेपी में शामिल नहीं होगा। अगर बीजेपी में शामिल हो जाएगा या बीजेपी में सपोर्ट करेगा, तो जो लोग अभी अभी बीजेपी को वोट दे चुके हैं यही तृणमूल का खिलाफ, यही तृणमूल का जो करप्शन है इसका खिलाफ, वो लोग बीजेपी भी थोड़ा इस प्रकार से बोल रहा है जो वो डिस्टेंस में है, उसका जो हो रहा है वो इनसाइड वाला गेम है टीएमसी का। लेकिन बीजेपी जरूर इसको पीछे से हवा दे रहा है, क्योंकि उसका कोशिश है जितना जल्दी हो तृणमूल कांग्रेस का इंटरनल जो फाइटिंग है, इंटरनल जो रिप्ट है, आगे बढ़ जाए। और ऐसा हालत पे तापस राय जो टीएमसी से 2024 में आया था, बीजेपी में शामिल होते हुए उसका कलकत्ता का नॉर्थ कलकत्ता का टिकट मिल गया था लोकसभा का, लेकिन चुनाव हार चुके थे, इस बार वो मंत्री बना और उनका कहना 50 विधायक टूट सकता है, 80 में 50 विधायक, दो तो एक्सपेल हो चुका है, एक जेल में है, तो 377 से अगर 75 विधायक टूट के अलग गुट बनाएगा तो वो लोग हो सकता है जो बीजेपी को सीधा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन दे विल क्लेम दे आर द असली टीएमसी। अभी क्या होगा आने वाला दिन में वो देखा जाएगा।
11: तो ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैया नेता दावा है कट मनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले में कट मनी लिया करते थे वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर लौटा रहे हैं।
17: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
18: किंतु हमी नाम बोलछी ना तारा अवश्य ये जगह जाना भाई। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण मंडल।

0: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
1: আমাদের ঘরের টাকা,
2: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
1: রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকা বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
0: यहां पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहां पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कटमनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
3: ফিরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
0: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। लाभार्थियों में से एक विकास मंडल ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब दूसरी किस्त का समय आया तो पंचायत सदस्य ने दावा है 5,000 रुपए की कटमनी मांगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब पैसा वापस करना इन नेताओं ने शुरू कर दिया। बंगाल में कटमनी वापस करते कथित टीएमसी नेता का वीडियो बताता है वोट की असली ताकत क्या है। ममता सरकार में कटमनी वसूलने के आरोप लगातार लगते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था। सरकार बदली तो इस काले धंधे में लगे लोग खुद ही जनता को पैसा वापस लौटाने लगे। इसकी एक बड़ी वजह शुभेंदु सरकार में कटमनी से जुड़े नेताओं की पूरे राज्य में जनता के हाथों होती पिटाई भी है। अलग अलग जिलों में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की जनता ने अच्छे से खबर ली है, उन्हें खबरदार किया है, जिसने शायद कटमनी वसूलते रहे लोगों को डराया है और उन्हें अब सबके सामने आकर पैसा वापस लौटाने में अपनी भलाई नजर आने लगी है।
4: पश्चिम बंगाल का वो सच देश दुनिया को पता चल रहा है जिसे बताने की हिम्मत आज से पहले वहां के लोग नहीं कर पाते थे। ऐसा ही खुलासा कूच बिहार में आज तक की रिपोर्ट से हुआ, जहां जनता ने आज तक रिपोर्टर को बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुओं के घर में जबरन छिपाया जाता था ताकि किसी को शक न हो। जो ऐसा करने से मना करता उसे धमकी दी जाती थी। बांग्लादेश से सटे कूच बिहार से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
5: को जब ये होता है सब सो जाता है, पहले गोरु भी पार होता था इधर, बॉर्डर पूरा खाली है, फेंसी लगा नहीं है, इसलिए रात को जाता था, अभी तो बंद है।
6: पहले क्या कहा जाता था, गोरु और
5: गोरु भी जाता, गोरु भी जाता था, उसके बाद लोगों का आना जाना होता था।
6: लोगों को बांग्लादेश से लोग आते थे,
5: बांग्लादेश से लोग आते थे।
6: कैसे कैसे लोग आते थे?
5: रात को आता आके इधर रहता है किसी के घर में रह के, फिर इनका जो आधार कार्ड वो वोटर कार्ड हो पैन कार्ड हो कुछ बना लेता है, फिर बाहर जाता है काम करने के लिए।
0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की ये वो हकीकत है जो वोट से आए बदलाव की वजह से बाहर आ रही है। कूच बिहार बांग्लादेश से सटा इलाका है, जहां लंबे समय से घुसपैठ होती आई, लेकिन अब ऐसा पहली बार है कि वहीं के लोग बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुओं के घर में छिपाया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। एक बार फिर सुनिए आज तक संवाददाता मंसूर हबीबुल्ला को कूच बिहार में रहने वाले इस शख्स ने क्या बताया है।
5: ना, फिर बाद में एक दो दिन बाद ये लोगों का आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो क्या चाहे वोटर कार्ड हो ये लोग बना के ये लोग फिर चला जाता है।
0: बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ इस बार के चुनाव का प्रमुख मुद्दा रही, लेकिन पिछली सरकार का डर कुछ ऐसा था कि कोई ये बताने को तैयार नहीं होता था कि हिंदुओं को बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठहराने के लिए दबाव डाला जाता था।
6: तो आप लोगों का वोट कोई प्रेशर था, दबाव था, अगर नहीं करेंगे तो लोग टीम से लोग आप लोगों को तंग करता था?
5: हाँ ऐसे करता था, बोला रखना जैसे कोई रखना नहीं चाहता है। हाँ। बोला इधर बहुत हमारा हिंदू घर है।
7: हाँ।
5: वो उधर से सब मुसलमान आता था।
7: हाँ।
5: खाली वो बोलता है इधर हम लोग को रखने नहीं देते, ये करते।
7: हाँ।
5: तो वो लोग जबरदस्ती बोलता है खाली आज एक दिन के दो दिन का बाद है।
7: हाँ।
5: खाली रखो, उसका बाद हम लोग इनको आगे ले जाएंगे।
6: मतलब इधर इधर जो हिंदू लोग है, हिंदू लोग को डराया दिया जाता था।
5: हाँ, पहले बहुत डराता था।
6: हाँ। अभी वो माहौल नहीं है,
5: अभी माहौल नहीं है, अभी पूरा
6: मतलब दो दिन रहता था, उसके बाद जो कागज कलम बना था आधार कार्ड वगैरह बना के दूसरा जगह में भेजता था।
5: हाँ, आधार कार्ड बना, जैसे आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाना हो।
7: हाँ।
5: वो लोग दूसरा जगह चला जाता।
0: कुछ बिहार की बांग्लादेश से सटी सीमा दशकों से ऐसे ही खुली पड़ी थी, जहाँ से घुसपैठ करना बच्चों का काम रहा। सरकार बदलने के बाद इस सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया, लेकिन ये काम टीएमसी की सरकार में क्यों नहीं किया गया, इसकी चौंकाने वाली वजह कुछ बिहार में रहने वाले शख्स ने आज तक के कैमरे पर बताई।
5: तीनों लोग का जो आते हैं उनका पास पहले फोन करके बताता है जी हम लोग आपका इधर कार्ड वार्ड सब बना देंगे, अगर या काम करना है इधर काम करो और इलेक्शन का टाइम इधर आके इलेक्शन में खाली वोट डालना है। तृणमूल का जो सेटिंग है इधर बॉर्डर में जो है, ये लोग सेटिंग करके रखते थे पहले। ये लोग को पार करने के लिए इतना लेता था, फिर बाद में काम।
0: बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ ने बंगाल के कई जिलों में आबादी के संतुलन को बिगाड़ दिया। पहले लेफ्ट और फिर ममता बनर्जी पर ये आरोप लगते रहे कि बांग्लादेशियों को बसा कर उनसे उनके वोट बैंक से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा, लेकिन सरकार बदलने के बाद हालात सुधरने लगे। कुछ बिहार हो या फिर मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश से सटी सीमा पर हो रही सख्ती से भारतीय मुस्लिम हो या हिंदू दोनों खुश हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए सभी के लिए खतरा बन रहे थे।
6: ये जो सिंगीमारी रिवर है, इसी सिंगीमारी रिवर अभी यहाँ से जाते वक्त बांग्लादेश की मोगल हाट होके लालमनि हाट जाएगा। बांग्लादेश में घुसने से पहले जो मोगल हाट होके जाएगा ये रिवर का उसी तरफ इंडिया का दो गांव है, दोरीबर्स और जारीदल्ला। वो जो दो दोरीबर्स जारीदल्ला दो गांव है, उसी गांव का आगे कोई फेंसिंग नहीं है। इसी रिवर के आसपास बीएसएफ ने ड्यूटी करते हैं और इसलिए 10-20 मीटर का दूरी में रिवर की जो दोनों साइड है, दोनों साइड में बीएसएफ की पोस्ट बना हो चुका है। रात को इसी जगह में, दिन भर रात भर इसी जगह में बीएसएफ ड्यूटी करते हैं। यही है इंडिया का बंगाल का आखिरी डोमिनेशन लाइन जहाँ पे बीएसएफ डोमिनेट करते हैं। पहले कैसे था?
8: पहले तो खूब खतरनाक में था सर।
6: कैसे कैसे खतरनाक था?
8: जो टीएमसी का अम्बल था सर, जो मेंबर वगैरह सर सारे लूट करके सर खाते थे।
6: तो टीएमसी के जमाने में कैसे कैसे होता था, कैसे कावतस्करी होता था, कैसे
8: कैसे तो सारे सूरी वगैरह करके सर आता था सर। टीएमसी में मेंबर था।
6: हाँ।
8: उन लोगों का अम्बल था, उन लोग सारे किया था सर, जो है वही करता था।
6: उन लोग कैसे कैसे करता था बताइए।
8: सोलर था हमारा गांव में।
6: हाँ।
8: जो सरकार ने दिया था।
6: हाँ।
8: सारे चोरी करके बिक के खा लिया सर।
6: कहाँ का? बांग्लादेश में बेच दिया
8: सारे। बांग्लादेश
6: में बेच दिया।
8: बांग्लादेश
0: कुछ बिहार में सिंगीमारी नदी के किनारे से इंसानों की घुसपैठ के अलावा गायों की तस्करी भी होती थी। जहाँ टीएमसी राज में पहले घुसपैठ की अंधेरगर्दी चलती रही, वहाँ इस जगह से बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट हवाई अड्डा केवल 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ दावा है कि घुसपैठ से यह आबादी का असंतुलन फैला, क्योंकि घुसपैठियों ने यहाँ महंगी जमीन खरीदी और फर्जी दस्तावेज बनाकर स्थानीय लोगों का हक छीनना शुरू कर दिया।
9: जैसे इधर का जो बांग्लादेशी पहले आया था वो जमीन इधर ले लिया था और जमीन का दम थोड़ा ज़्यादा रेट के ले लिया था। अभी चला जाएगा दूसरा, वो जमीन का रेट कम होगा। दो नंबर इधर का जो किसी जमीन है ना, वो भी थोड़ा वृद्धि होगा।
10: हमारा जमीन उमीन कब्जा करके खरीद करके लेता है और खरीद करके उसका जमीन का रेट भाव बढ़ा देता है।
0: तो जनता खुद चाहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भागें, इसीलिए अब की बार सरकार जब सख्ती कर रही है तो बॉर्डर भागम भाग मची दिखती है।
4: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की नई राजनीति से खबरदार करते हैं। चुनाव में 9 महीने का वक्त है, अटकलें कल ये भी चलने लगी कि क्या चुनाव जल्दी यूपी में हो सकता है। इन सब के बीच सवाल है कि क्या वापस मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 वाले फॉर्मूले से तैयारी करने लगे हैं, जहां कुशीनगर पहुंचकर मुख्यमंत्री फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ रख देते हैं। मुख्यमंत्री पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को जमीन देते हैं और कल योगी आदित्यनाथ संभल के 48 साल पुराने दंगे के पीड़ित परिवार को जमीन देने वाले हैं। और इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। इन सब का संबंध किस तरह 80 बनाम 20 से है, एक एक करके देखेंगे।
7: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
0: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा, ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं। तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
11: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
0: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को बोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखिए, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध ना करने की कसम खाता हूं। चूंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि ये सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
12: सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है, अच्छे मैनेजमेंट की सभी की मीटिंग की जा रही है और इनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से ये दूर रहेंगे।
0: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहाँ भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके। और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
11: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
4: कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं ने पहले योगी आदित्यनाथ को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर चैलेंज किया था। योगी ने तल्ख होकर जवाब दिया, कहा कि गाय माता है, पशु नहीं समझते। इसके बाद मौलाना मौलवी मुस्लिम धर्मगुरुओं को योगी ने चैलेंज दिया, पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मौत पर ये लोग क्यों मौन रहते हैं। केवल चैलेंज ही मुख्यमंत्री योगी ने नहीं दिया, बल्कि विस्थापितों से लेकर दंगा पीड़ितों तक को जमीन देने की योजना चलाकर अब हिंदू वोट की नई जमीन योगी तैयार कर रहे हैं।
11: एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है।
0: बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया,
11: जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
0: बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ योगी का संदेश हमेशा जाति में बटकर नहीं बल्कि हिंदू वोट के एकजुट होकर साथ आने का रहा। क्या इसीलिए अब हिंदू वोट की जमीन को 2027 से पहले मजबूत करने में योगी जुटे हैं? आप कहेंगे कैसे? तीन तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर गाजियाबाद की, जहां माफिया के कब्जे से गरीब का घर छुड़वा कर प्रशासन उन्हें सौंपता है। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां 1600 से ज्यादा उन परिवारों को जमीन का हक योगी सरकार देती है जो परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए। और तीसरी तस्वीर संभल की, जहां अवैध कब्रिस्तान को तोड़कर खाली कराई गई जमीन अब दंगा पीड़ित हिंदू परिवार को दी जानी है। तो क्या यही वो हिंदू वोट की जमीन है जो हिंदू वोट की मशीन बनकर 2027 में चल सकती है?
11: याद रखना हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
0: कानून का शस्त्र उठता है तो समाज के खरदूषण का इलाज कैसे होता है, इसकी गवाही सबसे पहले गाजियाबाद से देखिए।
13: अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अपने दो लड़के और पोते कहाँ रह रहे हैं? किराए पे ले आना उनको वहीं पे। ठीक है,
2: चलिए चलिए।
0: जिस ताले को खोलकर चंचल कुमारी अब गाजियाबाद के डीएम और प्रशासन के दूसरे अफसरों के साथ बेखौफ भीतर दाखिल हो पा रही हैं, ये घर इन्हीं का है जिन्होंने 29 मई को प्रशासन से शिकायत की। बताया कि ताज मोहम्मद नाम के आरोपी ने 1.5 लाख रुपए की उधारी के बदले 7 लाख रुपए का ब्याज लगाकर इनके घर पर कब्जा कर लिया है। जांच में आरोपी पहले भी कई मकानों पर कब्जे का खेल करता पाया गया। इसके बाद गाजियाबाद के जिला अधिकारी पहुंचे और खुद घर खाली करा के चंचल कुमारी को दे दिया।
14: दबाव बना के इनकी जो प्रॉपर्टी लगभग 30 से 35 लाख रुपए की है, उस पे एक दूसरे व्यक्ति को बेच के कब्जा करा दिया और इनको बदले में एक जमीन का वादा किया जो LMC की जमीन थी। जिस प्रकार से फ्रॉड हुआ था उसको लेकर ही मुझे मिली थी। आज हमने 2 दिन में निर्णय लिया जांच के बाद में कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। आज जो मुमीन नामक व्यक्ति था, ताज मोहम्मद था, दोनों यहाँ से चले गए हैं। दोनों को समझा दिया गया था और इन महिला को वापस उनका कब्जा दिला दिया गया।
15: ताज मोहम्मद जी तो गाली गलौज पे उतारू रहते थे और उन्होंने मेरा मकान भी आगे सेल कर दिया था। मैं उस पार्टी से ही बात करती थी तो वो भी मतलब मेरे से अभद्र व्यवहार वगैरह करते थे, इस हेतु मुझे डीएम सर के पास जाना पड़ा। प्रशासन ने मेरी बहुत बहुत जल्दी से ही मेरी बहुत मदद की है, मैं इसलिए तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह का, जिला अधिकारी, बाकी सब टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
16: उनमें सर्वप्रथम कब्जे से घर छुड़वा कर दिया गया तो बिजनौर में मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से आकर दशकों से विस्थापित की जिंदगी गुजारते हिंदू और सिख नागरिकों को जमीन सौंपी है। इन्हीं में से मिल्खा सिंह, गुरमुख सिंह और बलकार सिंह के परिवार तक आज तक पहुंचता है, ये समझने के लिए कि आखिर पाकिस्तान से भारत आने के बावजूद भारतीय होकर भी जो दंश बिना जमीन के ये पहले झेलते रहे, क्या वो अब दूर होंगे।
17: तीन पीढ़ी गुजर गई, अब परिवार जो इतने बैठा आने के सामने जो भी योगी जी ने करा बढ़िया करा।
18: बढ़िया क्या?
17: हाँ।
18: कितनी जमीन मिली है?
17: एक एकड़।
18: एक एकड़ जमीन?
17: हाँ जी।
18: इससे पहले कुछ नहीं मिलता था?
17: ना जी, कुछ नहीं मिला।
19: जब जगह नहीं मिली इधर आकर थोड़ी बहुत जमीन जंगल बात करके अपनी जगह रहने लियो, हमने बनाइए बना रहे, जिसके बाद में अब लोग अपनी जिंदगी जैसे भी काटी, हल्की मड़ी जैसे भी कटी अपने काटते रहे। अब यो है आगे गवर्नमेंट एक एक एकड़ दे रही है, बड़ी खुशी हो रही है उसे कि आगे के लिए हमारे पैर जम जाएंगे अपने रहने के लिए। जगह थोड़ी बहुत जो भी मिल दे रही है, अपने योगी सरकार आए थे बता रहे हैं, हमारा भी नंबर कागजों में चढ़ चुका है।
16: जो सुकून अब विस्थापित परिवारों को बिजनौर में मिलने लगा, वही शांति अब संभल में 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के संभल में 10 महीने पहले कब्रिस्तान के अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त हुई सरकारी जमीन की 100 वर्ग मीटर हिस्से पर अब संभल के 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा। जिस जमीन पर बुधवार को हवन पूजन करके दंगा पीड़ित परिवार को उनके हक की जमीन दी जाएगी।
20: संभल में 10 महीने पहले कब्रिस्तान से कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर अब संभल के 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा। इसके लिए संभल के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और आज संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में उसी दंगा पीड़ित परिवार को इस जमीन का पट्टा देंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी जमीन पर है जो कि इस वक्त शेरखा सराय इलाके में स्थित है और आप यहाँ पर जो देख सकते हैं यही वो पूरी जमीन है जिसको यहाँ पर जो बीते 10 महीने पहले प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तान की कब्रों को हटा करके जो यहाँ पर जो कब्जा मुक्त जो है कराया गया था।
16: इस परिवार को जमीन देने का वायदा खुद मुख्यमंत्री ने किया था। इस परिवार से बात करने आज तक पहुँचता है ये राम सरनदास रस्तोगी का परिवार है, जिनकी निर्मम हत्या 1978 के दंगे में कर दी गई। शव को कहते हैं कि तराजू से बांध कर कुएं में फेंक दिया गया था। ये परिवार आज तक को बताता है कैसे 48 साल बाद जाकर कोई सरकार इनकी सुध ले रही है।
21: जो लोहे के गेंदाले होते हैं उससे उनके टांगों पर भी कई बार करे और फिर उन पर इतने चाकू के बार करे कि पोस्टमार्टम में भी 109 चाकू वो पाए गए हैं। और फिर उनकी हत्या करने के बाद में दुकान को लूट कर और जो भी मतलब उनका सपना उसे दुकान के तराजू के पल्लों से बांधकर और बाट बांधकर दुकान के सामने वाले कुएं में फेंक दिया गया था। उस
4: और अब वो खबर जिसे आज तक ने प्रमुखता से लगातार उठाया, वो खबर जहां बच्चे ही बच्चों के साथ होते अन्याय के विसल ब्लोअर से लेकर खुलासा करने वाले तक बने, खबर देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई, उसमें असर हुआ है, प्रधानमंत्री ने दखल दिया है। इसके बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। राहुल गांधी भी हालांकि इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं, ये कवर अप है।
16: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never. Sokudo.
1: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
5: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
4: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
12: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
11: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
13: आगे आगे,
14: अरे उधर उधर,
13: करेक्ट करेक्ट।
15: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems

0: with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
12: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आखिर में बदलते मौसम से आपको खबरदार करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, सड़कों पर सैलाब आ गया, भूस्खलन और कीचड़ की वजह से जो नेशनल हाईवे है वो भी प्रभावित हुआ। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको अपराधियों के दिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ दिखाएंगे। गाजियाबाद के खोड़ा में जब एक हिंदू लड़के की हत्या हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर जो गुस्सा दिखाया, इसके बाद अपराधियों में ऐसा डर बैठा कि आज खोड़ा थाने का नजारा ही बदल गया। जो हिस्ट्री शीटर कभी इलाके में खौफ का दूसरा नाम थे, आज वो खुद हाथों में तख्तियां लेकर हाथ जोड़कर थाने पहुंचे। तख्तियों पर क्या लिखा था? योगी जी हमें क्षमा कर दो, अब कभी अपराध नहीं करेंगे। और इसके बाद आपको आज तक की खबर का बड़ा असर दिखाएंगे। सीबीएसई मामले में प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर हुआ। ये बात पहले दिन से तय थी कि अगर छात्रों की कॉपियां जांचने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग का डिजिटल सिस्टम आया तो इसके पीछे किसी का दिमाग जरूर था। किसी ने तो इस लापरवाही को मंजूरी दी थी, किसी ने तो जल्दबाजी में बिना ओएसएम सिस्टम की जांच के टेंडर के तमाम पैरामीटर्स को बदला था ताकि वो कोएम्प्ट को मिले, और इन सब के बीच तैयारी ना होने की वजह से छात्रों को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम बार बार पूछ रहे थे कि लाखों बच्चों के भविष्य से हुई इस गड़बड़ी पर चेयरमैन की जवाबदेही, अधिकारियों की जवाबदेही, मंत्रालय की जवाबदेही कब तय होगी, और आखिरकार आज पहला कदम उठाया गया है। आज तक की खबर के बाद सीबीएसई के चेयरमैन नप गए हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती अब दुश्मनी में बदलने वाली है। आज सबसे बड़ा खुलासा उस सीक्रेट फोन कॉल का करेंगे जिसमें वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मच गया है। आज आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर एहसान फरामोश क्यों कहा, और लेबनान पर इसराइल के हमलों ने कैसे अमेरिका और ईरान की महाडील को कूड़ेदान में डाल दिया है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट के युद्ध ने दुनिया को एक नया सबक सिखा दिया है। आज के दौर में जंग वही जीतेगा जिसके पास होंगे दो सबसे बड़े हथियार, पहला अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा पलक झपकते ही तबाही मचाने वाले आत्मघाती ड्रोन्स। भविष्य की इसी चुनौती को भांपकर अब भारत ने भी अपनी ड्रोन्स की फौज तैयार करनी शुरू कर दी है। आज आपको सरहद पर हिंदुस्तान की ताकत बनने आ रहे इन नए आत्मघाती ड्रोन्स के बारे में बताएंगे। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी राज्य को अपराध मुक्त बनाने का मॉडल कैसा होना चाहिए। एक मॉडल वो है जिसमें अपराधियों को सरकारें संरक्षण देती हैं, उनको पार्टियां टिकट देती हैं, उन्हें विधायक बनाती हैं, सांसद बनाती हैं, चुनाव लड़वाया जाता है, और जब कभी अपराध बढ़ता है तो सांठगांठ करके इन माफियाओं पर दिखावटी कार्रवाई कर दी जाती है, जिसमें गिरफ्तार होने के बाद जेल को इन अपराधियों के लिए होटल में बदल दिया जाता है। आपने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे होंगे, यहां तक कि इस देश में जेल में बंद लोगों को भी टिकट मिलता है पार्टियों की तरफ से, वो चुनाव लड़ते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। एक दूसरा मॉडल है जिसमें माफिया को संरक्षण नहीं गोली मिलती है, और जिसमें अपराध रोकने के लिए अपराधियों को सांसद और विधायक नहीं बनाया जाता बल्कि उन्हें ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, उन्हें खत्म किया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि वो राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए दूसरे मॉडल पर काम कर रही है, और इन तस्वीरों को इस योगी मॉडल का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आई हैं, जहां 28 मई को 5 लोगों ने बकरीद के मौके पर एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया। इसके बाद खोड़ा के सभी हिस्ट्री शीटर अपराधियों के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य करा दिया गया। सत्यापन का मतलब यह होता है कि इन अपराधियों को पुलिस के पास जाना है, थाने में यह बताना है कि अब ये क्या करते हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, अब भविष्य में ये कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। अब इस आदेश का खोड़ा के हिस्ट्री शीटर अपराधियों में ऐसा डर है कि आज वो स्थानीय पुलिस थाने में कुछ तख्तियां लेकर आए। जानते हैं इन तख्तियों पर क्या लिखा था? इन पर लिखा था, योगी जी हमें क्षमा करें, ना तो अब हम कोई अपराध करते हैं और ना ही भविष्य में कोई अपराध करेंगे। कुछ अपराधियों ने यह भी लिखा था कि हम कसम खाते हैं कि हमेशा कानून का पालन करेंगे और कभी किसी अपराध को अंजाम नहीं देंगे। ये देखिए, अभी कोई मामूली बात नहीं है। माना जाता है कि पुलिस थाने में अक्सर पीड़ित ही हाथ जोड़ते नजर आते हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतने हिस्ट्री शीटर्स अपराधी एक साथ पुलिस थाने में हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि वो भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। देखिए,
1: का
0: हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अपराधियों को मिटाने का ये योगी मॉडल पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से गलत है, इस पर हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। इसकी विवेचना तो आप लोग करेंगे, क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आती हैं तो अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसा सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन ये तमाम ऐसे बीसीज हैं जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं, जो थाने में जिनका नाम दर्ज होता है, ये उन पर सत्यापन कराना जरूरी बताया गया और उनको इसीलिए गाजियाबाद में यहाँ पर थाने में आना पड़ा और फिर उन्होंने ये सब कराया। इसीलिए हम बहस में इसमें बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते, लेकिन हम इतना जरूर पूछेंगे कि क्या इससे पहले आपने इन अपराधियों को कि अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाते हुए देखा था? क्या अपराधियों ने कभी ऐसी शपथ ली थी? हमारे देश में राजनीति से इतर सबसे बड़ा सच ये है कि आज भी लोग पुलिस थानों में जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस शायद उन्हें इंसाफ नहीं दिलाएगी। बड़े बड़े अपराधी पहुंच से आसानी से छूट जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपराधियों के टूटते हौसलों की मिसाल है और इनसे देश में आम लोगों को आज सुकून जरूर मिल रहा होगा। आज कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अब उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों को खत्म कर दिया।
2: हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: हालांकि इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ये सवाल भी लगातार पूछ रही है कि क्या ये मॉडल सिर्फ मुसलमानों के लिए है? आज गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक मदरसे को सील कर दिया गया जिसका नाम है रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम। सरकार का कहना है कि यह मदरसा गैर कानूनी है और इसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि अगर ये मदरसा अवैध था तो पहले सरकार ने इसे सील क्यों नहीं किया, और क्या अब ऐसा करके उस हिंदू परिवार की नाराजगी कम की जा रही है जिससे 17 साल के बेटे, नाबालिग बेटे को पांच मुस्लिम लड़कों ने बकरीद के दिन ये कहकर मारा था कि तुमने बकरा हलाल होते देखा है?
3: तमाम अधिकारियों के पहुंचने के पहले ही एक सर्वे कराया गया था जिसमें गाजियाबाद प्रशासन की भी पूरी मदद ली गई थी, और इस सर्वे के दौरान पता चला कि 3 ऐसे मदरसे हैं जो जिन्हें मदरसा कल्याण बोर्ड से, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से उनको परमिशन ही नहीं थी। अवैध रूप से वो मदरसे जो है वो चलाए जा रहे थे, जिसके बाद अब तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और उन मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से सील किया जाएगा। उसके लिए भारी सुरक्षा यहाँ पे की गई है।
4: अच्छा, कागज मांगते हम कागज देते, ना देते तो सील लगा देते, दो लफ्जी बात ही।
3: तो आपसे नहीं मांगा
4: ना?
3: अच्छा, आप सारे डॉक्यूमेंट है आपके?
4: ये तो साहब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया,
5: हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब हम दिखाएंगे। अगर उन्होंने मांगा है, बस गलती है हमसे, अगर पहले मांगते हैं।
6: पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में।
3: अच्छा,
6: हाँ जी।
3: तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आगे कोर्ट?
6: मदरसा बंद चल रहा है, बच्चे अपने गाँव गए हुए हैं, छुट्टी में चल रहा है, उसके बाद में बैठ के बात कर लेंगे, दिखा देंगे डॉक्यूमेंट्स भी।
3: अभी आप लोगों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगा? क्या कहना है कि हमने जो है चेक किया तो जो मदरसा कल्याण बोर्ड है उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं?
6: नहीं नहीं, परमिशन किसी होगी? परमिशन है,
7: कमेटी
6: मेंबर आ जाएंगे, सारे छुट्टी में चल रहे हैं।
3: कब
6: की छुट्टी चल रही है? हाँ जी।
0: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि सीबीएसई मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा एक्शन लिया है। आज जो फैसला लिया गया है उसमें प्रधानमंत्री के दखल के बाद इस मामले में सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बात पहले दिन से कही जा रही है कि अगर सीबीएसई ने छात्रों की आंसर शीट्स को चेक करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग का नया डिजिटल सिस्टम अपनाया तो किसी ने तो इसके पीछे अपना दिमाग लगाया होगा। आखिर यह फैसला किसका था कि ओएसएम से इस बार जल्दबाजी में मार्किंग कराई जाएगी और इसे अपनी मंजूरी दी होगी किसी शख्स ने जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज शाम को यह कार्रवाई हुई, यह हमारी खबर का बड़ा असर है क्योंकि हम बार बार इस सवाल को पूछ रहे थे कि आखिर लाखों बच्चों की आंसर शीट्स को चेक करने में गड़बड़ी हुई तो सीबीएसई के चेयरमैन और जवाबदेह अधिकारी क्या कर रहे थे। देखिए, सीबीएसई की जिम्मेदारी में सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना जिन्होंने ये फैसला लिया होगा, जिन्होंने टेंडर में बदलाव किए हैं, है ना, ताकि इसको मिले जो कि फॉर्मली ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी कोएम्प्ट। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है रोहन जी?
1: बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल, वो कमिटी बैठी है और वो कमिटी बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट देगी। और कल प्रधान जी ने भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक होता है कि जो भी पैरामीटर्स है उसमें चेंज किया गया, अगर उसके पीछे इंटेंट है कि किसी को देने के लिए चेंज किया गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि L1 पे देना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो भी टेंडर जाते हैं। हाँ, क्राइटेरिया चेंज किया गया, अगर उसके पीछे मलेशियस इंटेंट है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
0: हम तो ये भी लगातार कह रहे हैं कि अगर इस OSM की वजह से अब उस पोर्टल में बच्चे अपने पेपर्स का रिवैल्यूएशन नहीं करा पा रहे हैं तो फौरन ये फैसला लिया जाए कि उनकी मैनुअल चेकिंग होगी, तमाम टीचर्स को काम पर लगाया जाए और इन बच्चों के जितने पेपर्स हैं उनकी फौरन से फौरन मैनुअल चेकिंग करके उनको मार्क्स दिए जाएं ताकि वो जल्द से जल्द फिर अपने कॉलेज एडमिशन्स के लिए आगे बढ़े। इस पूरे मामले में उन लाखों बच्चों को इंसाफ मिलना जरूरी है। इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता एस राधा चौहान करेंगी। यहां बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि यह समिति परीक्षा के रिजल्ट की भी जांच करेगी, जबकि यह दावा सही नहीं है। इस समिति को तीन बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पहला है पता लगाना कि सीबीएसई ने ओएसएम सिस्टम के लिए जिस कंपनी या एजेंसी को काम दिया क्या वो प्रक्रिया नियमों के मुताबिक थी। टेंडर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यह सामने आ रहा है और यह भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बल्कि छात्रों ने ही सामने उजागर किया है कि टेंडर में ऐसे अनेकों बदलाव किए गए जिसकी वजह से कोएम्प्ट को यह टेंडर मिला है। क्या टेंडर खरीद कॉन्ट्रैक्ट भुगतान की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और क्या किसी को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाया गया? सीबीएसई में इस साल से पहले तक ओएसएम सिस्टम नहीं हुआ करता था। पुराने सिस्टम में टीचर्स खुद आंसर शीट को चेक करते थे, खुद कॉपी पर नंबर लिखते थे और फिर इन नंबरों को अलग से कंप्यूटर के डेटा में फीड किया जाता था। लेकिन इस साल ये सिस्टम ये कहकर बदल दिया गया कि इससे नंबर जोड़ने में गलती होती है, कॉपियां कई बार खो जाती है। और ये सच भी है कि अगर आप डिजिटाइजेशन कर रहे हैं तो आपको आने वाले वक्त में ये करना पड़ेगा। लेकिन आपने तैयारी क्या की? क्या आनन फानन में ये ऐसा फैसला लिया गया जिससे अनेकों लाखों बच्चों के भविष्य को अधर में डाल दिया गया? कई बार छात्रों के आंसर शीट्स में सवालों का मूल्यांकन भी छूट जाता है जिसके कारण नया सिस्टम लाया गया। और इसमें क्या हो रहा है? ऑन स्क्रीन सिस्टम यानी ओएसएम, मार्क्स नहीं डल रहे हैं यहां पर कई सारे आंसर्स के। इसके तहत यह तय हुआ कि छात्रों की जो कॉपी है उसको सीधे चेक करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। मतलब बंडल के बंडल जो पहले आंसर शीट्स जाते थे फिजिकली, वो नहीं जाएंगे। इसकी जगह उनको स्कैन किया जाएगा, उनकी डिजिटल इमेज बनाई जाएगी, फिर जिस डिजिटल पोर्टल पर ये कॉपियां अपलोड होंगी वही टीचर्स को इन्हें चेक करके ऑनलाइन ही नंबर देने होंगे। अब जब ये प्रक्रिया अपनाई गई तो कई छात्रों की डिजिटल आंसर शीट्स में अनेकों गड़बड़ियां आने लगी। पता चला कि जो सवाल चेक हुए हैं उनके आगे निशान तो लगा है लेकिन उन सवालों के नंबर ही नहीं है, मतलब मार्क्स ही नहीं दिए गए। रिजल्ट पूरी तरह गलत तैयार हुआ। आज मैंने इस पर सीबीएसई के छात्रों के साथ एक शो भी किया जिसमें एक छात्र ने लाइव, उसने, आजकल के बच्चे भी बहुत तेज हैं, उन्होंने पोर्टल को लॉगिन किया, पोर्टल से स्क्रीन शेयरिंग कर दी आज तक पर लाइव, और फिर उन्होंने दिखाया कि पोर्टल पर उनको क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने अपना आंसर शीट हमें दिखाया और बताया कि कैसे ये सिस्टम उनके लिए फ्रॉड साबित हुआ है। देखिए, ठीक है, हाँ,
8: इनफैक्ट लिख भी रखा है हमने, टीचर ने पढ़ा में पढ़ा तो हो गई, टीचर ने मार्किंग कर रखी है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की, जबकि हम क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 5 या 6 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स होते हैं जिसमें से 8 पार्ट 1-1 मार्क्स होते हैं, 2 पार्ट्स 2 मार्क्स होते हैं। देन इससे इन्होंने तब भी ये चेक नहीं कर रखा जबकि ये सारा सही है। उसके अलावा अगर हम 8 क्वेश्चन पे हैं, 8 क्वेश्चन पे इन्होंने कर रखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट की मार्किंग जबकि 8 क्वेश्चन है, मतलब पूरा ही अलग क्वेश्चन है तब भी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है। अब मैं मार्क्स ऑप्टेड में किसके मार्क्स डालू, ऊपर वाले के नीचे वाले के, और हम हर एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन सभी, और हम ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मैंने कार्ड कट कर रखा है तब भी चेक है,
0: काटा हुआ क्वेश्चन भी चेक है।
8: यस मैम, मैम इसमें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग है 10th पार्ट की, यहाँ पे सेकंड की शुरू हो गई, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की मार्किंग। मैम ये लेटर यहाँ से शुरू होता है 5th क्वेश्चन, इन्होंने कर रखे 7th क्वेश्चन की मार्किंग।
0: ये इंग्लिश का पेपर है ना आपका जिसमें लेटर भी होता है, फॉर्मल लेटर।
8: यस मैम, यस मैम, मैं पूरा बायोडाटा वाला है, मैं पूरा लिख रखा है, हर फॉर्मेट है, हर चीज लिख रखी है, एक चीज। अभी हम सब देंगे 0-0 और मार्किंग इसमें 7th क्वेश्चन की मार्किंग है, 8th की मार्किंग है, 9th की मार्किंग, 10th की मार्किंग है, एक क्वेश्चन है।
0: यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस नए सिस्टम का टेंडर टाटा कंसल्टेंसी जैसी बड़ी कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी को कैसे सौंपा गया? क्या ये कंपनी वाकई नई सीएस और दूसरी कंपनी वाकई नई है, या फिर कम से कम ओएसएम में सीबीएसई के लिए काम करने में नई है, क्योंकि ये पहले एक बार ब्लैकलिस्ट हो चुकी कंपनी है। इस टेंडर के लिए मुख्य रूप से 2 कंपनीज दौड़ में थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस और दूसरी क्वेम्ट एडुटेक। अब इन कंपनियों को टेंडर देने से पहले 2 चीजें देखी गई, एक तकनीकी योग्यता, दूसरी है इस टेंडर के लिए कितना पैसा मांग रही है। तकनीकी योग्यता में क्वेम्ट कंपनी टीसीएस से 2 अंकों से आगे थी, क्वेम्ट कंपनी को 91 अंक मिले जबकि टीसीएस को 89, यानी दोनों कंपनीज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और यहां तकनीकी योग्यता के लिए टेंडर में 70% का वेटेज रखा गया था, लेकिन 30% का वेटेज कीमत को लेकर था जिसमें क्वेम्ट और टीसीएस के बीच 566 करोड़ रुपए का अंतर था। क्वेम्ट ने प्रति कॉपी 24.75 रुपए से 25.74 रुपए मांगे थे जबकि टीसीएस ने मांगे थे हर कॉपी के 53 से 65 रुपए। तो ये प्राइस डिफरेंस था, यानी जिस काम के लिए क्वेम्ट 384 करोड़ 60 लाख रुपए मांग रही थी, उसी काम के लिए टीसीएस ने 951 करोड़ 30 लाख रुपए मांगे थे। और इसी वजह से दावा है कि टीसीएस की जगह ये टेंडर क्वेम्ट को मिला और उसके बाद ये सारी गड़बड़ियां हुई। अब सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो इस बात की जांच करेगी कि क्या इस टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई, जानबूझ के क्वेम्ट को फेवर किया गया। आज इस मुद्दे पर सी वोटर ने भी एक सर्वे किया जिसमें पहला सवाल यह था कि क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से पेपर लीक को रोका जा सकता है। इस पर 41.7% लोगों ने कहा कि इससे पेपर लीक को रोका जा सकता है, नहीं कहने वाले 32.3% लोगों ने कहा पेपर लीक नहीं रुक सकता। इसके बाद अगला सवाल था कि क्या सरकार को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करके पुराने तरीके से परीक्षाएं करानी चाहिए। इस पर 60.6% लोगों ने कहा कि हाँ एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, जबकि सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि एनटीए को खत्म नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा सवाल यह था कि लोग कोचिंग संस्थानों के बारे में क्या सोचते हैं। इनमें 32.5% लोगों ने कहा कि कोचिंग संस्थान देश में शिक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा 40.6% लोगों ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की जरूरत है। वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं, यानी इनके संचालन के लिए देश में कड़े नियम कड़े कानून होने चाहिए। क्यों होने चाहिए उसे आप हमारी अगली खबर से समझिए। 1 जून 2026 को बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा के नतीजे आए जिनमें 19,838 उम्मीदवारों का चयन हुआ। फिर से सुन लीजिए, कितने पदों पर सिपाही भर्ती पर 19,838 पदों पर, लेकिन बिहार के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों ने यह दावा कर दिया कि उनके यहां से 22,000 युवा इस परीक्षा में पास हुए। अब चमत्कार यह है कि इस परीक्षा में चयन ही 19,838 उम्मीदवारों का हुआ, लेकिन कोचिंग संस्थानों ने 22,000 से ज्यादा छात्रों को पास करा दिया है। और यह आंकड़े भी पटना के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों के हैं। बिहार के ही कई और कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहां 1,500-2,000 छात्र इस परीक्षा में पास हुए। ऐसा नहीं है कि यह चमत्कार सिर्फ बिहार में हो रहा है। एक दिन पहले जेईई एडवांस की परीक्षा के नतीजे आए जिनमें बिहार के शुभम कुमार को पूरे देश में पहली रैंक आई, लेकिन यहां भी गजब का खेल हुआ। एक मशहूर कोचिंग संस्थान का दावा है कि शुभम कुमार उसके छात्र हैं। इसके लिए इस कोचिंग संस्थान ने शुभम कुमार की सफलता को अपना मेडल बनाकर बड़े बड़े विज्ञापन अब छपवाने शुरू कर दिए। लेकिन एक और कोचिंग संस्थान मेंटोर्स एडुसर्व का दावा है कि शुभम कुमार की तैयारी उसने करवाई और शुभम कुमार की सफलता का श्रेय उनको मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये दावे सिर्फ कुछ छात्रों को लेकर किए जा रहे हैं। जैसे मोहित नाम के छात्र की पूरे देश में चौथी रैंक आई, उसे भी एक नहीं बल्कि कई कोचिंग संस्थान अपना बता रहे हैं। इनमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का दावा है कि शेखर शुक्ला ने उसके यहां तैयारी की। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का दावा है कि मोहित उनके छात्र हैं। सिर्फ दो दिन पहले ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2023 के एक मामले में यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले दो कोचिंग सेंटर्स पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कारण यही है कि इन कोचिंग संस्थानों ने उन छात्रों की मेहनत पर अपना दावा किया जो इनके यहां पढ़े ही नहीं थे और ये एक परंपरा बन चुकी है। कोई भी माता पिता जब किसी कोचिंग संस्थान का विज्ञापन देखते हैं तो वो सिर्फ एक पोस्टर नहीं देख रहे होते, वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे होते हैं, वो उम्मीद देख रहे होते हैं, वो सपना देख रहे होते हैं, वो ये तय कर रहे होते हैं कि अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कहां खर्च करना है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को डालना है। अब इन कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन देखकर कई परिवार कर्ज भी लेते हैं, कई परिवार बचत तोड़ते हैं, कई परिवार दूसरे खर्च रोक देते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये कोचिंग संस्थान उनके बच्चों का भविष्य बनाए। लेकिन हकीकत में इनके विज्ञापन सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिके होते हैं, जहां बच्चों की मेहनत की कोचिंग माफिया अपनी मार्केटिंग समझ लेता है। सवाल यही है कि एक ही बच्चा 6 इंस्टीट्यूट्स का स्टूडेंट कैसे हो सकता है, और क्या वाकई इस बच्चे ने 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई की। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विज्ञापनों के कारण गलत कोचिंग चुनने की कीमत सिर्फ फीस से नहीं चुकाई जाती, उसकी कीमत समय होती है, उसकी कीमत साल होती है, कभी कभी 2 साल, कभी कभी किसी छात्र का आत्मविश्वास होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में समय ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, टाइम, क्योंकि उनको इतना कुछ सिलेबस कवर करना होता है। इसीलिए जब कोई संस्थान किसी टॉपर को अपना बनाता है तो वो सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं बेच रहा होता, वो भरोसा भी बेचता है। अब भरोसा ही झूठा निकले तो ये किसी नकली दवा का बेचने से कम नैतिक अपराध नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था के लिए सिर्फ कुछ कोचिंग संस्थान ही जिम्मेदार हैं, इसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप अमृतसर से आई ये खबर देखिए, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमृतसर में एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे फीस नहीं भरने पर उसके स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था और उसकी यह हालत कर दी गई कि वो मरने को मजबूर हो गई। इस बच्ची ने अपनी मौत से पहले फीस के लिए मुंह फाड़ कर बैठे प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या कहा है वो आप खुद सुनिए। ये उसने बयान दिया, उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही।

0: शिक्षा जब धंधा बन जाए तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जब पैसा किसी बच्चे की जिंदगी से भी बड़ा हो जाए तब ऐसी घटनाएं होती हैं। अब इस बच्चे की मौत को देखिए और उसके साथ इन आंकड़ों की पीड़ा समझिए। भारत में प्राइवेट स्कूल्स की संख्या सिर्फ 3,39,000 है, लेकिन इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 9,58,00,000, यानी कुल स्कूलों में प्राइवेट स्कूल्स की हिस्सेदारी सिर्फ 23% है, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में यही हिस्सेदारी 39% है। यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं, और इसी बात का ये प्राइवेट स्कूल फायदा उठाते हैं। भारत में प्राइवेट स्कूल्स की इंडस्ट्री 4,65,000 करोड़ रुपए की है, जो 2032 तक 12,00,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। भारत के प्राइवेट स्कूल्स में एक छात्र की सालाना फीस औसतन 31,000 से 36,000 के बीच होती है। बड़े स्कूल्स में तो यही सालाना फीस 1,50,000 रुपए 4,00,000 रुपए तक होती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे देश में ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाने के लिए केजी क्लास के बच्चों से कई प्राइवेट स्कूल्स हर साल 2,00,000 रुपए से ज्यादा की फीस ले रहे हैं, और यह शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों को बेरहमी से मार रही है। जानते हैं हमारे देश में पिछले 5 सालों में 67,000 छात्रों ने आत्महत्या की है, 67,000 छात्रों ने। इनमें भी 11,184 छात्रों की उम्र 18 साल से कम थी, और यही है हमारे छात्रों का असली दर्द जो कोई समझना नहीं चाहता। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको यह बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती टूटने वाली है। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी तब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर ही ईरान पर हमला किया था। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने सारी आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक एक बात मानी। ये तक कहा कि इसराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, और मुस्लिम देशों को भी यह धमकी दी कि अगर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करके इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी तो अमेरिका ईरान के साथ समझौता नहीं करेगा। यानी जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पूरा भरोसा था और दोनों की दोस्ती अटूट मानी जा रही थी, तभी एक बड़ा खेल हुआ। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक नई रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि वो अब उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। 1 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बताया जा रहा है फोन पर बात हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एहसान फरामोश कहा है। ये बोला कि अगर वो नहीं होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल के अंदर होते। बात यही नहीं रुकी, आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब हर कोई प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नफरत करता है, उनके कारण दुनिया में इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, और अगर इसराइल ने लेबनान में अपने हमले नहीं रोके तो अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहां हम आपको इस बातचीत का वो हिस्सा पढ़कर नहीं बता रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने गाली गलौज की है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अब तक युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इस कड़वाहट के पीछे भी एक ऐसा कारण है जो ये बताता है कि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो ईरान के साथ उनकी डील बीच में अटक जाएगी, और ये डर कहीं ना कहीं सही भी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि लेबनान पर हुए हमलों के कारण ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी बातचीत बंद करने का फैसला किया। ईरान की सरकार का कहना है कि अब अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी संदेश आएगा तो उसे कचरे के डिब्बे में उठाकर फेंक दिया जाएगा। यही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया। ये धमकी दी कि लेबनान के हमलों का बदला ईरान लेगा। यानी स्थिति यह है कि अमेरिका इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। और भारत की नजर इस पर क्यों रहनी चाहिए? भारत की नजर इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमतों पर किस तरह का असर इस युद्ध से हो रहा है। और नए सिरे से अगर ये भड़कता है, ये पीस डील नहीं होता है, तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। अमेरिका एक ऐसे दलदल में है जिसके पास ना तो इसराइल खड़ा रहना चाहता है और ना ही ईरान इस दलदल में फंसे अमेरिका से कोई डील करना चाहता है। अब तक हॉलीवुड में 1000 से ज्यादा ऐसी फिल्में बनी जिनमें यह दिखाया गया कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आया, जब भी दुनिया में कोई प्रलय आए, धरती पर एलियंस आए, हर संकट से दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका ने हमें सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कई सुपरहीरोज दिए और इनसे अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि दुनिया के हर संकट का समाधान बस अमेरिका ही है। लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका के पास अपनी खुद की समस्याओं का समाधान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल को सीज फायर लागू हुआ था और उस दिन से लेकर आज 2 जून तक अमेरिका ईरान के साथ एक डील नहीं कर पाया है। डील तो छोड़िए, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका काफी मजबूर नजर आता है, जिसे अब इसराइल भी ना यानी नो कहना सीख गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके ये दबाव बनाया कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोक दे, लेकिन प्रधानमंत्री इसराइल भी ना यानी नो कहना सीख गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके ये दबाव बनाया कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोक दे, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। आज भी उन्होंने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए जिनमें सबसे भीषण हमला टायर शहर पर हुआ। इस हमले में एक घर तबाह हो गया और 2 लोग घायल हुए। आप तस्वीरें देखिए और ये समझिए कि क्यों इन हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप का खून खौल रहा है।
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر راح الإسعاف
2: صحراء
0: अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इसराइल लेबनान में अपने हमलों को क्यों नहीं रोक रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसराइल का कम क्षेत्रफल। जब बात अर्थव्यवस्था की होती है तो मिडल ईस्ट के सभी 18 देशों में इसराइल की अर्थव्यवस्था सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर आती है। जब बात विकास की आती है तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इसराइल मिडल ईस्ट के सभी देशों में सबसे आगे है। जब बात सेना की, आधुनिक हथियारों की आती है तो इसमें भी इसराइल ईरान को छोड़कर मिडल ईस्ट के सभी देशों से बहुत आगे है। और टेक्नोलॉजी में भी इसराइल का कोई मुकाबला नहीं, ना ही इंटेलिजेंस में। यानी ज्यादातर मामलों में इसराइल मिडल ईस्ट के बाकी देशों के मुकाबले बहुत बहुत मजबूत है, लेकिन इसी जगह क्षेत्रफल का मामला यही उसकी कमजोर नब्ज है। क्षेत्रफल के मामले में वो बहुत पीछे है। उसका क्षेत्रफल लगभग उतना है जितनी हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास जमीन। जब मिडल ईस्ट का नक्शा देखा जाता है तो इसमें इसराइल बहुत छोटा नजर आता है। इसराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 21,937 वर्ग किलोमीटर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक ईरान में इसराइल जैसे 75 देश समा सकते हैं। ये देखिए मैप, ये जो आपको पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, डार्क बैगनी रंग का, जो गाढ़ा बैगनी रंग का कलर दिख रहा है, ये इसराइल है। अब इसके मुकाबले आप देखिए जॉर्डन भी बड़ा दिख रहा है, इराक, ईरान और सऊदी अरब तो खैर बहुत ही बड़ा। तो इस इसराइल जैसे 75 देश ईरान में समा सकते हैं। सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल में 98 इसराइल, यूएई में 4 इसराइल, इराक में 20 इसराइल और जॉर्डन के भी क्षेत्रफल में इसराइल जैसे 4 देश बन सकते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो इसमें इसराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के बारे में सोचता है और इस युद्ध में वो यही कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को बफर जोन बनाकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाहता है, जबकि गाजा में भी उसने 70% जमीन को अपने नियंत्रण के लिए में लेने के आदेश दिए हैं, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि लेबनान पर इसराइल के हमलों से वो ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहे। ईरान चाहता है कि लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह रोका जाए, वरना वो भी इसराइल पर हमले करेगा। अब इसराइल अपनी जगह अपनी सुरक्षा चाहता है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने कहा कि लेबनान में दुश्मन के अपराधों के सामने ईरान का सब्र अब जवाब देने वाला है, और अगर ये हमले रोके नहीं गए तो इसराइल को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और PM नेतन्याहू की दोस्ती टूटती है तो इसका असर आपकी जेब और रसोई दोनों पर पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान में सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकेंगे तो अमेरिका इसराइल से खुद को अलग कर लेगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की संभावना मुश्किल में आएगी। ईरान यह कहेगा कि वो और हिजबुल्ला अलग नहीं है। अगर लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध जारी रहता है तो इस डील का कोई मतलब नहीं है। इसराइल लेबनान पर अटैक अगर नहीं रोकता है तो ऐसे में ये डील नहीं होगी, ईरान अड़ा रहेगा। डील नहीं होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोलेगा नहीं। अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो 20% तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी, और अगर ये आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो भारत के लिए बड़ी ये संकट गहराएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार बढ़ चुकी हैं और ये 7.5% महंगा हो चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के 98 देशों में बढ़ी हैं, ये संकट गहराएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार बढ़ चुकी हैं और ये 7.5% महंगा हो चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के 98 देशों में बढ़ी हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के मामले में पेट्रोल डीजल का महंगा होना आम लोगों की जेब के लिए अच्छा नहीं है। भारत के आम लोगों की पेट्रोल डीजल खरीदने की क्षमता अगर आप देखिए तो लोगों के लिए चैलेंज है। अमेरिका के लोग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हर दिन 198.7 लीटर पेट्रोल, जापान में 92 लीटर पेट्रोल, ब्रिटेन में 74.3 लीटर, जर्मनी में 69 लीटर, फ्रांस में 55.3, इटली में 50.8, रशिया में 41.6, चाइना में 28.7, और भारत में आम लोगों की प्रतिदिन 7.6 लीटर पेट्रोल खरीदने की क्षमता है। यही कारण है कि भारत के लिहाज से इस युद्ध का और फैलना सही नहीं है और इससे भारत के चैलेंजेस बढ़ेंगे। बड़ी खबर जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, अगली खबर है, पहले आप ये वीडियो देखिए।
2: কিন্তু আমি নাম বলছি না, তারা অবশ্যই এই জায়গায় জানাবেন। অর্চনা মণ্ডল, রামগোপাল মণ্ডল, রামনারায়ণ মণ্ডল, মানে বিকাশ বাবুর দু ছেলে, অভিমন্যু মণ্ডল।

0: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
1: রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকা বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
2: पैसे बांटता दिख रहा ये शख्स जो आपको दिख रहा है वो कोई ऐसा मसीहा नहीं है जो लोगों में पैसे बांट रहा है, कट मनी का माफिया है। बंगाल में जैसे ही सत्ता के समीकरण बदले भ्रष्टाचार का वो किला ढहने लगा और जो कटमनी की दीवारों से खड़ा किया गया था वो लोग आज सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोग अपने पैसे मांगने आ रहे हैं। जो नेता और सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे थे, कभी जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डालते थे, सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों से कटमनी लेते थे, आज वो कैमरे के सामने जनता के पैरों में गिरकर पैसे लौटा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अब कानून के डर से और जनता के गुस्से से बंगाल में कटमनी माफिया कांप रहा है। ये तस्वीरें हैं साउथ 24 परगना के नमखाना इलाके की, जहां गरीब लोगों को पाई पाई के लिए तरसाने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता को कैमरे के सामने एक एक कर ग्रामीणों के पैसे लौटाने पड़े। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिलवाने के नाम पर 45 गरीब लाभार्थियों से 5,000 रुपए की अवैध वसूली की गई, लेकिन जैसे ही जांच की आंच पहुंची कटमनी का ये खिलाड़ी जनता के पैरों में गिर गिर कर गिड़गिड़ाने लगा और इसने कहा मैं पैसे लौटा दूंगा। एक और वीडियो आया है और वो है कोच बिहार का, जहां कटमनी के सरेंडर की कहानी और भी दिलचस्प है। कूच बिहार के घुगुमारी ग्राम पंचायत में अब बाकायदा लाउडस्पीकर और माइक लेकर ग्रामीण सड़कों पर मुनादी कर रहे हैं। इस मुनादी की वजह है टीएमसी की पंचायत सदस्य ज्योत्सना बर्मन, जिन्होंने गरीब जनता से कटमनी वसूली थी।
3: তিয়াত্তর নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ির থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামী 4 তারিখ ঘুঘুমারি 173 নম্বর বুথের কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়া হবে পঞ্চায়েতের বাড়ির থেকে, সকলেই নিজ নিজ দায়িত্বে টাকা ফেরত নিয়ে যাবেন।
2: आरोप है कि यहाँ के नेताओं ने आवास योजना के लाभार्थियों से 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की मोटी कटमनी वसूली थी। पैसे न देने पर अगली किस्त रोकने की धमकी दी जाती थी। डर के मारे ग्रामीणों ने पैसे दे दिए थे, लेकिन जैसे ही राज्य में सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार आई, जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने टीएमसी पंचायत सदस्य के घर का ऐसा घेराव किया कि नेताजी को घुटने टेकने पड़े। अब बाकायदा लिखित समझौता हुआ है कि लूटी गई कटमनी की पाई पाई 4 जून तक जनता को वापस कर दी जाएगी। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि बंगाल में फैले उस सिंडिकेट राज की पोल खोल रही है जो सालों से सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा था। बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए रास्ता एक ही था, नेता को पैसा देना, कटमनी। चाहे गरीब का घर हो, शौचालय हो, राशन हो, हर चीज पर गुंडे माफिया अपना टैक्स लेते थे। जनता बेबस थी क्योंकि इन वसूली बाजों को सत्ता का संरक्षण था, लेकिन वक्त बदला, कानून का फंदा गले में फंसता देख और जनता के आक्रोश को भांपते हुए ये गुंडे अब जेल जाने के बचने के लिए हड़बड़ी में कटमनी की रकम लोगों को लौटा रहे। आज आपको बंगाल की ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि राज्य में शासन प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। उस वक्त काम कर रहा था ममता बनर्जी के राज में संदिग्ध नागरिकता वाले रकीबुल शेख के खाते में लक्की भंडार योजना के तहत 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ये योजना महिलाओं के लिए थी और इस शख्स के अकाउंट में 1.5 लाख। खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लक्की भंडार योजना का पैसा जिन 2,10,00,000 बैंक खातों में डाला जा रहा था, उनमें कुल 30 लाख बैंक खाते या तो फर्जी हैं या घुसपैठियों के। सोचिए, इसी बंगाल में ममता बनर्जी के राज में इस बेचारी महिला को लक्की भंडार योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार बदली, उम्मीद जगी और ये महिला, असहाय महिला, सुंदरबन के सुदूर इलाके से अपने पति को, चूंकि उनके पति दिव्यांग हैं, वो अकेली थी, वो दिव्यांग पति को अपनी पीठ पर लादती है, मीलों का सफर तय करती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जनता दरबार तक ये महिला पहुंची। ये तस्वीर सिर्फ एक महिला की बेबसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि बंगाल में 15 साल तक चले उस शासन के खोखले दावों की जीती जागती हकीकत है। कितनी बड़ी विडंबना है, जहां घुसपैठिए फर्जी लोग सरकारी खजाने पर डाका डाल रहे थे, 1.5 लाख उनके अकाउंट में, पुरुष के अकाउंट में महिलाओं का पैसा, वहीं इस असली हकदार महिला को अपने दिव्यांग पति के लिए एक व्हील चेयर दिलाने के लिए पीठ पर लाद कर घुमाना पड़ा। सोचिए, जहां गरीबों से कट मनी लिया जाता रहा हो, वहां उन्हें व्हील चेयर कौन दिलाएगा। इस महिला के दिव्यांग पति ने कहा कि वो बिल्कुल मजबूर है, असहाय है, उन्हें एक व्हील चेयर की जरूरत है। उनकी पत्नी को लक्की भंडार योजना का कोई लाभ नहीं मिला, वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस परिवार को 7 दिन के भीतर मदद का भरोसा दिया है।
4: সুন্দরবন সাতজালিয়া গোসওয়া থানা থেকে আসছি। দাবি, আমি অসহায় মানুষ, আমার একটা ব্যাটারি চালিত গাড়ি চাই, এবং আমি একটা প্রতিবন্ধী মানুষ, আমার একটু ভাতিয়া এবং এনার লক্ষ্মীর ভান্ডার পাইনি, ও আমি একটু খোঁড়া মানুষ, আমার একটা ঘর যাতে হয় সেই আবেদনে উঠেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে হয়ে যাবে, 7 দিনের ভিতরে সমস্যা মিটে যাবে আপনাদের।
2: अब बात भारतीय वायुसेना की, भारतीय सेना की बढ़ती शक्ति की करेंगे। भारतीय सेना की शक्ति में पिछले सालों में बहुत इजाफा हुआ है। दुनिया ने एक जरूरी बात सीख ली है, से जो युद्ध अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, अगर दुश्मन से अपनी सुरक्षा करनी है तो दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। पहला है ताकतवर एक डिफेंस सिस्टम और दूसरा घातक आत्मघाती ड्रोन्स। ये दो चीजें जिस देश के पास है उसे दुनिया का कोई भी ताकतवर देश हरा नहीं पाएगा। अगर आपके पास हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम है तो दुश्मन के हमले कामयाब नहीं होंगे। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में आत्मघाती ड्रोन्स हैं तो दुश्मन को हराने या टकराने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस देश के पास भरपूर मात्रा में आत्मघाती ड्रोन्स हैं वो स्वॉर्म ड्रोन अटैक करके एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात देते हैं। ईरान युद्ध इसका एक उदाहरण है। ईरान के पास भले ही बहुत ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम ना हो, लेकिन उसके पास घातक आत्मघाती ड्रोन्स की बड़ी खेप है। उसने अमेरिका, इजराइल, मिडल ईस्ट के देशों को परेशान किया है। नतीजा यह है कि अभी तक उसे झुकाया नहीं जा सका। ईरान इन ड्रोन्स के दम पर अमेरिका जैसे देश के सामने खड़ा है। बस इसी से सीख लेते हुए भारत भी आत्मघाती ड्रोन्स की फौज तैयार करने में लगा है। भारतीय सेना की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए देश भर की कंपनियां अपने अपने कामकाजी ड्रोन्स की काबिलियत दिखा रही हैं। हथियार बनाने वाली भारतीय कंपनी होवरिट ने अपने आत्मघाती ड्रोन्स दिव्यास्त्र MK1 का प्रदर्शन किया। जोधपुर में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दिव्यास्त्र MK1 को एक सामान्य कार की छत से उड़ाकर दिखाया गया। भारतीय सेना को कुछ ऐसे ड्रोन्स चाहिए जिन्हें मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सके, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत के किसी भी बॉर्डर से भेजा जा सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दिव्यास्त्र को एक थार गाड़ी की छत से उड़ाकर दिखाया गया। दिव्यास्त्र MK1 का इस्तेमाल दुश्मन की जासूसी करने, टारगेट की निगरानी करने या फिर सटीक हमले के लिए किया जा सकता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये करीब 5 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कम्युनिकेशन रिले के तौर पर भी हो सकता है, यानी यह हवा में मौजूद किसी मोबाइल टावर की तरह होगा, जिसकी मदद से सेना की टुकड़ी का संपर्क कमांड सेंटर से हमेशा बना रहेगा। ये ड्रोन 15 किलोग्राम तक बारूद ले जाने में सक्षम है। हालांकि इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी जो दिव्यास्त्र MK2 है, उसकी क्षमता को बढ़ाकर 80 किलोग्राम तक ले जाने का प्रयास चल रहा है। 15 किलोग्राम तक बारूद ले जाने की क्षमता का फायदा यह है कि इसकी मदद से हम दुश्मन के रडार सिस्टम, उनके टैंक्स, उनके कमांड पोस्ट, उनके बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकते हैं। और यही नहीं, दुश्मन के ठिकाने या किसी आतंकी कैंप पर निगरानी के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। भारतीय सेना को कई तरह के ड्रोन्स की जरूरत है, इसीलिए ड्रोन्स बनाने वाली भारतीय कंपनियों को उनके ड्रोन्स की क्षमता दिखाने के लिए कहा गया। इसमें कुछ खास ड्रोन्स पर सेना की नजर है। जैसे भारत में दृष्टि 10 स्टार लाइनर नाम का एक ड्रोन तैयार हो रहा है, जो 450 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकता है, 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। भारत और इजराइल मिलकर तैयार कर रहे हैं। भारतीय सेना के पास फिलहाल स्वदेशी नागास्त्र ड्रोन है। इसके अलावा भारत में रुस्तम 2 ड्रोन भी बनाया गया है, जो 24 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है और 22,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये भी टेस्टिंग फेज में है। स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेशंस के लिए सुरेश शास्त्र MK1 ड्रोन्स बनाया गया है। इसका ट्रायल हो चुका है और जल्दी ही भारतीय सेना में इसे शामिल कर दिया जाएगा। DRDO और हाल ने HAL ने आर्चर NG ड्रोन तैयार किए हैं। ये 22,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 300 से 400 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकता है। टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही जल्द इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। रशिया और यूक्रेन ये युद्ध हो या फिर इसराइल अमेरिका और ईरान युद्ध, इन सभी में ड्रोन्स का बहुत कामयाब और घातक इस्तेमाल किया गया है। युद्ध में शामिल सभी देशों ने हमले के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा आत्मघाती ड्रोन्स पर किया। साल 2022 से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध में 60,000 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए। इसी तरह से इसराइल अमेरिका ईरान युद्ध में 2,000 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पाकिस्तान ने भी करीब 500 ड्रोन से हमले किए थे, जिनको भारतीय सेना ने नाकाम किया था। यानी अब युद्ध का जो पैटर्न दिख रहा है उसमें मिसाइल से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा, इसीलिए भारत भी भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी में जुट गया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई क्रांति आने वाली है। अभी तक आप एआई का इस्तेमाल एक ऐप के तौर पर या किसी ब्राउजर पर करते थे, आप उसे सवाल पूछते हैं या कोई टास्क देते हैं, उसके बाद वो ऐप दूर कहीं मौजूद क्लाउड सर्वर के जरिए डेटा निकालता है और टास्क पूरा करता है। लेकिन एआई चिप बनाने वाली कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनविडिया, ने एक ऐसा चिप लॉन्च कर दिया है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर को आपको पर्सनल एआई एजेंट बना देता है। मतलब आपका कंप्यूटर आपका पर्सनल एआई एजेंट बन गया, आप बिना इंटरनेट के भी उससे काम ले सकेंगे। इससे आपकी डेटा प्राइवेसी भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, जानकारी खोजनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वीडियो एडिट, आप बिना इंटरनेट के भी उससे काम ले सकेंगे। इससे आपकी डेटा प्राइवेसी भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, जानकारी खोजनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वीडियो एडिट करना है, तो इन कामों का बड़ा हिस्सा आपके कंप्यूटर चिप में मौजूद एआई एजेंट खुद संभाल लेगा, और वो भी आपके छोटे से वॉइस कमांड से। मतलब आपने बोला और हुआ। एनविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का दावा है कि उनका आरटीएक्स स्पार्क चिप पिछले 40 साल में हुई कंप्यूटर की दुनिया की सब

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
2: उसके बाद उन्होंने बोला कि आप आ जाइए कि ये अभी अपने लास्ट मोमेंट्स पे ही हैं तो फिर मैं गया मैंने उनका हाथ पकड़ा और उस बीच में ही फिर वो चले
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
1: Bharat ki apni electric sawari.
3: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: Sokudo.
4: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है
5: माल मैंने चुराया शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया
4: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला
6: समर कूल कूलर
4: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा के। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटरसाइड में जाना पड़ता था।
2: टीएमसी के टिकट से चुनाव जीते ऋतव्रत बनर्जी को एक दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, भर भर कर दिल से गुबार निकाला और निशाने पर रहे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी। ऋतव्रत बनर्जी ने कई सवाल किए जो सीधे बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजे से जुड़े थे। इन सवालों के जरिए ये एहसास दिलाने की कोशिश कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, अभिषेक बनर्जी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है।

हमलों के बीच सवाल ये है कि क्या बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी ही सबसे बड़े विलन बन गए हैं। अब स्थिति ये है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए दो टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। बीती रात ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि टीएमसी का दावा है कि दोनों विधायकों पर एक्शन पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर किया गया है और इसका टीएमसी के भविष्य पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इन दावों के बीच पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ी हुई है। कल ममता बनर्जी की बैठक में 60 विधायकों के ना पहुंचने को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। दरअसल बंगाल में 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली टीएमसी इस चुनाव में महज 80 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की। चुनावी नतीजों के बाद से ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन नाराजगी चरम पर तब दिखी जब सोनारपुर में भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर ही हमला बोल दिया। भले ही टीएमसी इस हमले के बीच बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब खबरें टीएमसी के भीतर से आ रही हैं। उसे साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। हालात के बाद अब टीएमसी नए संकट काल से गुजर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।

0: एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम जहर भी हैं और शहद भी, स्वाद आपके व्यवहार पर निर्भर है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को क्यों बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री को करो बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं ममता से अलग पार्टी। दिल्ली में आज दक्षिण की राजनीतिक रणनीति, शपथ के पहले आलाकमान से मिले डीके शिवकुमार सिद्धरमैया, कैबिनेट पर फाइनल मुहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे अन्नामलाई, मिले अमित शाह से। और मुख्यमंत्री योगी ने बढ़ाया यूपी का राजनीतिक तापमान, आज फिर ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजल नगर का योगी ने बदला नाम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान में धुरंधर ने आतंकवादियों से लेकर भारत के मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जीना मुश्किल और मुहाल कर दिया है। धुरंधर का साया ऐसा छाया है कि दाऊद इब्राहिम अब बुरी तरह से डर गया है और बौखला गया है। एक तरफ पाकिस्तान में अचानक एक एक करते करके मरते आतंकवादी और फिल्म धुरंधर में दाऊद, यानी बड़ा साहब को ऐसी स्थिति में दिखाना कि वो जिंदा है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, ऐसे में दाऊद इब्राहिम फिल्म धुरंधर को देखकर बुरी तरह से भड़क गया और अब दाऊद गैंग मुंबई से लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि क्या दाऊद की डी कंपनी अपने कमजोर पड़ते प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए हमारे देश में किसी बड़े हमले या हाई प्रोफाइल लक्ष्य की, टारगेट की कोई योजना बना रही है।
3: दाऊद पर धुरंधर का साया, डॉन बुरी तरह बौखलाया। मुंबई में सीक्रेट नेटवर्क एक्टिव, डी कंपनी का प्लान क्या है? दिल्ली में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश, 9 आतंकी गिरफ्तार, उड़ाने वाले थे एयरपोर्ट और पावर प्लांट। विदेशी हथियार और विस्फोटक बरामद, दाऊद गैंग की बड़ी साजिश। धुरंधर ने पाकिस्तानी आतंकी हमजा को निपटाया। धुरंधर ने एक एक करके पाकिस्तान में कई आतंकियों को मौत के मुंह तक पहुंचाया और अब धुरंधर से बौखलाया हुआ है भारत का मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। जी हां, जिस तरह से फिल्म धुरंधर में दाऊद यानी बड़ा साहब को बीमार और बिस्तर पर लेटे हुए आतंकी आखा के तौर पर दिखाया और ये भी दिखाया कि कैसे दाऊद अब कमजोर हो गया है और उसकी पकड़ घट रही है। धुरंधर 2 में दिखाया गया कि दाऊद पाकिस्तान के एक पौश इलाके में रहता है। कहानी में राकेश बेदी के किरदार जमील जमाली ने उसे जहर दे दिया, इसलिए वो लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। फिल्म धुरंधर के इस सीन से दाऊद गैंग बुरी तरह से भड़का हुआ है। वैसे तो फिल्म धुरंधर पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैन हो गई, लेकिन वहां टॉरेंट पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली फिल्मों में से एक बन गई, जिसके बाद दाऊद के गैंग ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और अब दाऊद इब्राहिम अपने आप को जिंदा और एक्टिव साबित करने के प्लान में जुट गया है। दाऊद गैंग के भीतर ये संदेश देने की कोशिश शुरू हुई है कि दाऊद अभी भी जिंदा है और उसका नेटवर्क सक्रिय है और मुंबई में दाऊद गैंग के नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि नए लोगों की भर्ती कर किसी बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है और टारगेट पर थे पावर प्लांट, बिजली उत्पादन और वितरण केंद्र, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दूसरे रणनीतिक महत्व वाले संस्थान। सुरक्षा बलों के जवानों को भी निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। अगर समय पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क न होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। IB के इनपुट पर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मॉड्यूल के 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये आतंकी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में हमले की योजना बना रहे थे। इनके कब्जे से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। शुरुआती जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि बरामद विस्फोटक सामग्री को सीमा पार से भारत में पहुंचाया गया था। इसमें सामने आया है कि धुरंधर फिल्म के पार्ट 1 और 2 में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है, उससे ISI और दाऊद तिल मिला उठे हैं। यही वजह है कि ISI और दाऊद इब्राहिम ने भारत में हमले की नई साजिश रची है। दिल्ली और मुंबई में तबाही मचाने के लिए कराची में ISI ने आतंकियों की नई खेप तैयार की। इसका ऑपरेशन हेड मुन्ना झिंगाड़ा को बनाया गया था। सभी 9 आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने मुन्ना झिंगाड़ा से इस काम के लिए 20 लाख रुपए की मांग की थी। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कराची के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक 5-स्टार होटल के पास मुन्ना ने ISI के संरक्षण में अपना सेफ हाउस बना रखा है, जहां से वो लगातार इन आतंकियों से वीडियो कॉल और सिग्नल ऐप के जरिए नियमित बात कर रहा था और भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था।
4: मुन्ना झिंगाड़ा ने हाल ही में कुछ आतंकियों को अपनी फोटो भी भेजी थी। कुछ आतंकियों को हेरोइन की लत थी, लिहाजा मुन्ना झिंगाड़ा ने सबसे पहले टोकन मनी भेजा, उसके बाद हेरोइन, हथियार और हैंड ग्रेनेड पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड और हथियार भी बरामद हुआ। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल फोन की जांच करने पर पता चला कि मुन्ना झिंगाड़ा कुछ आतंकियों से लगातार बातचीत कर रहा था। स्पेशल सेल के मुताबिक चैट में मुन्ना झिंगाड़ा गुर्गो से कह रहा था कि माशाल्लाह काम करके आना, तुम्हें नेपाल के रास्ते दुबई बुलवा लेंगे। वहीं गुर्गे कहते हैं कि सबसे पहले बड़े साहब चिट्टा भेजो और 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर भिजवा दो।
3: आज हम आपको पाकिस्तान में दाऊद के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा का पूरा सच दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जैसे ही ISI और दाऊद इब्राहिम गैंग की एक बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेल किया, तो उसके बाद दाऊद और हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के नाम से अहमदाबाद में धमाकों की धमकी दी जाती है। अहमदाबाद के SP स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स क्लब में ब्लास्ट करने की धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में दाऊद और लश्करे तैयबा के जिक्र के बाद लिखा है कि क्लब में 21 जून को ब्लास्ट होगा। स्पोर्ट्स क्लब के जिस कमरे में लेटर मिला है उसमें तंजानिया के 3 व्यापारी ठहरे हुए थे। कमरा खाली होने के बाद सफाई कर्मी जब सफाई कर रहे थे तब अलमारी से चिट्ठी मिली। तीनों अभी भारत में ही हैं। जानकारी मिलने के बाद बॉम्ब स्क्वाड, SOG, डॉग स्क्वाड समेत कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन 2 घंटे तक जांच करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम के करीबी ड्रग माफिया मोहम्मद सलीम डोला पर तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। ED ने सलीम डोला के मुंबई और गुजरात में 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि सलीम डोला को अप्रैल 2026 में तुर्की से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था, जो गुजरात और महाराष्ट्र में मेफेड्रोन यानी ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। अब एक तरफ जहां दाऊद गैंग धुरंधर के बाद अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो देश की धुरंधर एजेंसियां दाऊद गैंग को बेदम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह के पास लिए चलते हैं। मुंबई से दिव्येश हमारे साथ जुड़ गए हैं और समझते हैं कि कैसे भारत का मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गैंग धुरंधर के बाद अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दिव्येश किस तरह की साजिशें रच रहा है।
5: जी सईद, फिल्म धुरंधर में दाऊद इब्राहिम को लाचार और बिस्तर पर पड़ा हुआ दिखाए जाने के बाद भी भारत और खास तौर पर मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गैंग डी कंपनी की गैंग की गतिविधियां तेज होने की आशंका जताई जा रही है। भारत का मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम आतंकी संगठनों से भी जुड़ा रहा है। उसका जो ड्रग तस्करी का नेटवर्क है, जो कि पश्चिमी यूरोप, यूके, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा मध्य पूर्व, एशिया के कई इलाकों में सक्रिय है, इस रूट का, इस नेटवर्क का सहायता लेते आ रही हैं आतंकी संगठन, खासकर ओसामा बिन लादेन का संगठन अलकायदा और लश्कर ए तोयबा के आतंकी भी दाऊद इब्राहिम गैंग की मदद लेते आ रहे हैं, उसके नेटवर्क को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम क्रिकेट बेटिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, रियल एस्टेट, जमीन कब्जा करना, इसके अलावा जबरन वसूली करना, क्रिप्टो करेंसी रैकेट चलाना और खास तौर पर पाकिस्तान में छपे हुए नकली नोटों को भारत में प्रसार करना, ये सारे काम दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गे ही करते आ रहे हैं। और इन सारे जुर्मों में, इन सारे नेटवर्क्स में दाऊद इब्राहिम गैंग का ही रोल एजेंसियों को पता चला है। हाल ही में डिटेक्ट किए गए एक मॉड्यूल को, जिसमें ये पता चला कि दाऊद इब्राहिम का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा भारत में आतंकी हमले करने की प्लानिंग कर रहा था, परमाणु संस्थान, विद्युत संस्थान और इसके अलावा परिवहन संस्थानों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा था। इसे दिल्ली स्पेशल सेल और एजेंसियों ने बस्ट किया है। इसके बाद ये भी पता चला है कि दाऊद बहुत दिनों से जो भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठन है, उन्हें फाइनेंस करते रहा है, उन्हें लगातार फाइनेंस करते रहा है ताकि भारत में आतंकी हमले हो सके। दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, पाकिस्तान में कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है और वो ISI की संरक्षण में क्लिफ्टन कराची में रहता है और उसे वहां से आने जाने भी नहीं दिया जाता। ISI पूरी निगरानी रखती है, ISI पूरा संरक्षण देती है और उस ISI ने ही दाऊद इब्राहिम को क्लिफ्टन कराची में रखा हुआ है।
0: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हमारे देश के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी हमलों का जिम्मा सौंपा था। आतंकवादी हमलों की साजिश कराची में दाऊद इब्राहिम के व्हाइट हाउस से चंद किलोमीटर दूर एक 5-स्टार होटल में रची गई। हमले की हिटलिस्ट तैयार थी, हमलावर तैयार थे, हथियार, गोला बारूद भी तैयार था, मौजूद था, लेकिन IB और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ साथ ISI के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया।
3: जगह दिल्ली, ये वही धमाका है जिसका बारूद पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार हुआ। प्लान था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर दिल्ली और मुंबई को दहलाना। हमलावर तैयार थे, गोला बारूद तैयार था, हमले की तारीख और जगह तय थी, लेकिन ISI और दाऊद की नापाक साजिश पर देश की खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते पानी फेर दिया। वरना कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए एक बार फिर देश को दहलाने की खतरनाक साजिश रची थी।
6: तो ये एक इम्पोर्टेंट नेक्सस सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान ISI अंडरवर्ल्ड का यूज करके दिल्ली, मुंबई और बाकी जगहों पे अटैक करना चाहती है।
3: दाऊद और ISI की साजिश का बड़ा खुलासा। ISI के इशारे पर दिल्ली, मुंबई को दहलाना था। दाऊद ने मुन्ना झिंगाड़ा को सौंपा था जिम्मा। इन पाकिस्तान गोला बारूद आ चुके थे। दाऊद इब्राहिम का प्लान दिल्ली मुंबई। देश के दुश्मन नंबर एक दाऊद की नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल चंद हफ्तों पहले आईबी के कान कराची के क्लिफ्टन रोड पर बने दाऊद के इसी व्हाइट हाउस पर अचानक बढ़ी गतिविधियों ने खड़े कर दिए। वजह थी डॉन दाऊद के व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडरों के साथ साथ आईएसआई अफसरों की बढ़ी आवाजाही। दाऊद के घर पर बढ़ी हलचल पर नजर रखी गई तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर एक 5 सितारा होटल से भारत में मौजूद कुछ लोगों को लगातार कॉल की गई। जानकारी को आगे बढ़ाया गया तो चौंकाने वाली जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी। होटल से आ रही कॉल कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद सैयद मुदस्सर हुसैन कर रहा था।
6: मुंबई में ये बहुत एक्टिव था, इसने बहुत पहले कई सारे मर्डर्स किए थे जिसमें अरुण गावली का प्रकाश नायक को गोली मारी थी। उसके अलावा छोटा शकील के कहने पे छोटा राजन पे अटैक हुआ था 2000 में जिसमें इनको लंबे समय तक सजा मिली थी। बट उसके बाद काफी देर तक एक्स्ट्राडिशन का काफी कॉन्टेस्ट चला। बट ये पाकिस्तान जब ये गया था तो एक नकली नाम और पासपोर्ट से गया था जिसका नाम इसने अपना नाम सलीम रखा हुआ था। तो ये पाकिस्तान चला गया और ये वहां से इस मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रहा है।
3: जैसे ही सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सलीम की मूवमेंट को ट्रैक किया गया तो आईएसआई और दाऊद की डी कंपनी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया। दिल्ली स्पेशल सेल ने कराची के टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद दाऊद के शार्प शूटर रहे मुन्ना झिंगाड़ा के इशारे पर आतंकी हमलों को अंजाम देने निकले 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आतंकियों की लिस्ट में शामिल है उत्तर प्रदेश का विजय उर्फ शूटर, झारखंड का नीतीश पासवान, महाराष्ट्र का तौकीर रिजवान, अहमद शेख और साजिद, पंजाब का हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह और नेपाल का आंग कामी लामा शामिल हैं। आतंकियों के पास से स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान में बने ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल को एनएसजी की मदद लेनी पड़ी।
0: दिल्ली और मुंबई को दहलाने की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लिखी। स्क्रिप्ट लिखने के बाद दिल्ली मुंबई को दहलाने का जिम्मा आईएसआई ने भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम इस आतंकवादी को सौंपा। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर मॉड्यूल फेल होने के बाद आईएसआई ने इस आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से संपर्क किया और उसे हमलों को अंजाम देने को कहा। दाऊद इब्राहिम ने अपने भरोसेमंद मुन्ना झिंगाड़ा को दिल्ली और मुंबई की महत्वपूर्ण इमारतों, धार्मिक स्थलों, सरकारी बिल्डिंग्स पर आत्मघाती हमलों का टास्क सौंपा। प्लान के हिसाब से डी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुन्ना ने कराची में बैठे बैठे हमलावरों को हमारे देश भारत में भर्ती कर लिया।
3: कराची में आतंक का कंट्रोल रूम, दाऊद के हाथ में था रिमोट कंट्रोल। चार हैंडलर, 9 आतंकी और 5 शहर। दाऊद के आतंकियों का कबूलनामा। एक बार फिर कराची के क्लिफ्टन का व्हाइट हाउस एक्टिव हो चुका है। मतलब साफ है कि आईएसआई के इशारे पर डी कंपनी फिर से सक्रिय हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे खतरनाक आतंकी अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसकी साजिश दिल्ली और मुंबई में बड़े हमलों को अंजाम देने की थी।
6: तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि दिल्ली में और मुंबई में इनकी पूछताछ और इनकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज से ये पता चला है कि मुंबई में इन्होंने कई ठिकानों के वीडियोस बनाए हैं जिसके बीच में दादर रेलवे स्टेशन, कुछ ब्रिजेस और कुछ पार्क्स का सर्वे किया है और रेकी की है। दिल्ली में भी इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स की वीडियो बनाई हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं, और ये जो पंजाब में तीन लड़कों को पकड़ा है इनके पास से वो कोऑर्डिनेट्स भी मिले हैं हमारे को जहां पर इनको अटैक करना।
3: दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दाऊद के टेरर मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर सबसे पहले कुख्यात शूटर विजय डॉन को पुणे से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर झारखंड के साहिबगंज से एक और आरोपी को दबोचा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों सीधे पाकिस्तान में बैठे दाऊद के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में थे। इसके बाद मुंबई से तौकीर और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया, जिनका हैंडलर रहा विजय शूटर। जांच आगे बढ़ी तो मुजाफा और यावर खान के नाम भी सामने आए। पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी।
6: थे कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, कुछ नॉन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जो कि इनकी रैकी में हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा पब्लिक स्पॉट्स थे इम्पॉर्टेंट, जहां पर पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा होता है, जैसे मार्केट एरिया, ये थे।
3: जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल और कई वाइटल इंस्टॉलेशन। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली और मुंबई की कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी के वीडियो बरामद हुए हैं। इसमें मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन और कई बड़े ब्रिज भी शामिल हैं। दिल्ली की कई रणनीतिक लोकेशनों के वीडियो बरामद हुए हैं।
6: कई सारी वाइटल इंस्टॉलेशन है जिसमें इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और सिक्योरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उसके ऊपर भी अटैक करने की बात थी। वो गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं, वो इम्पोर्टेंट पब्लिक स्पॉट्स भी हैं, उसके ऊपर हम खुलासा हम बात में करेंगे।
3: गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि मुन्ना झिंगाड़ा ने उन्हें आतंकी हमले के लिए भर्ती किया था। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से वो चैट मिली है जिसमें मुन्ना झिंगाड़ा से लेन देन की बात हो रही है।
7: माशा अल्लाह करके आना काम, नेपाल के रास्ते तुम्हें वापस दुबई बुला लेंगे।
8: बड़े साहब ड्रग्स दो पहले, हमें 20 लाख रुपए चाहिए।
0: और आइए अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑपरेशन दाऊद के बारे में आखिर कैसे जांच एजेंसीज ने दाऊद की साजिश को नाकाम किया।
3: एक फोन कॉल और साजिश नाकाम। कराची से आए कॉल से मिला सुराग। कॉल से खोला हमले के प्लान का राज। दाऊद इब्राहिम के प्लान पर पानी। करीब एक महीने पहले कराची से आए कॉल को आईबी ने इंटरसेप्ट किया। इसके बाद कॉल की डिटेल को दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ शेयर किया गया। कॉल में इंटरसेप्ट हुई बातचीत ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि मामला दिल्ली और मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा था। आनंद फानन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। टीम को कराची से रची गई साजिश का पर्दाफाश करने का जिम्मा सौंपा गया। जांच टीम के पास सबसे बड़ी लीड एक मोबाइल नंबर था जिस पर कराची से फोन आया था। जैसे ही जांच टीम के हाथ उस आतंकी तक पहुंचे, साजिश का पर्दाफाश हो गया।
6: जो कल लड़के आए हैं और ये कल ही पहुंचे हैं और इनके पास हथियार भी थे, देर रात को ये लोगों को आना था और शायद किसी भी समय अटैक एज पर दी एडवाइस ऑफ देयर हैंडलर्स लॉन्च कर सकते थे।
0: आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। दाऊद ने मुंबई और दिल्ली को दहलाने की जिम्मेदारी मुन्ना को सौंपी। आखिर दाऊद का प्लान मुन्ना क्या है, आइए समझते हैं हम हमारे संवाददाता अरविंद ओझा से।
4: सबसे पहले आपको बता दूं कि मुन्ना झिंगाड़ा का असली नाम सैयद मुदस्सर हुसैन है। ये मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला है और दाऊद इब्राहिम को जब कोई बड़ा असाइनमेंट देना होता था तो वो मुन्ना झिंगाड़ा को ही देता था। अब मुन्ना झिंगाड़ा को ये टारगेट क्यों दिया गया, तो इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है। तो चलते हैं साल 2000 में, जब दाऊद इब्राहिम को अपने सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को रास्ते से हटाना था, तब टास्क दिया गया था मुन्ना झिंगाड़ा को। मुन्ना झिंगाड़ा बैंकॉक पहुंचा था, छोटा राजन पर जानलेवा हमला किया। वो अलग बात है कि उस हमले में छोटा राजन घायल हुआ था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। मुन्ना झिंगाड़ा बैंकॉक में गिरफ्तार हुआ। कुछ सालों बाद भारतीय एजेंसियां मुन्ना झिंगाड़ा को भारत लाने की जब कोशिश करने लगी, तब दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई के कई अफसरों को बैंकॉक भेजा और साथ ही साथ दर्जनों वकील बैंकॉक की अदालत में खड़े कर दिए, पानी की तरह पैसा बहाया और ये साबित कर दिया बैंकॉक की अदालत में कि दरअसल मुन्ना झिंगाड़ा भारतीय नहीं है बल्कि पाकिस्तानी है और उसका नाम सलीम है। और जैसे ही बैंकॉक की अदालत में साबित हुआ, स्पेशल फ्लाइट से मुन्ना झिंगाड़ा को पाकिस्तान शिफ्ट कराया गया और पाकिस्तान में बैठकर वो दाऊद इब्राहिम का पूरा नेटवर्क जो भारत में है उसको संभालता है और हाल फिलहाल में उसे जो भारत में एक नया मॉड्यूल अंडरवर्ल्ड का और आईएसआई का तैयार करने के लिए बोला गया। और इसके लिए खास तौर से कराची से जो दाऊद इब्राहिम का घर है वहां से 4 किलोमीटर दूर एक होटल में उसे शिफ्ट कराया गया, सेफ हाउस बनाया गया और वहीं से लगातार वो गिरफ्तार इन तीनों आतंकियों के कॉन्टैक्ट में था। और मकसद यही था दिल्ली और मुंबई में बड़े आतंकी हमले कराना, जिससे डी कंपनी एक बार फिर से सुर्खियों में आ सके। और ये बताने की कोशिश थी कि डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम की जुर्म की दुनिया में, आतंकवाद की दुनिया में अभी भी मौजूदगी है।
0: हमारी इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय आ गई है। मुन्ना झिंगाड़ा का एक गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है और फरार चल रहा था। इस आतंकवादी का नाम हुजैफा है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस और स्पेशल सेल दोनों ने पकड़ा है। जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों ने पकड़ा। 3 दिन से महाराष्ट्र एटीएस स्पेशल सेल का एक ऑपरेशन चल रहा था, छापे चल रहे थे, जब जाके हुजैफा पकड़ा गया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद, कैसे पकड़ा गया यह आतंकी और कितना महत्वपूर्ण है इसका पकड़ा जाना? अरविंद,
9: सबसे अहम कड़ी है, देखिए जो अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे सईद, उस मामले में हुफैजा वांटेड था, 3 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था, मुंबई से हिरासत में लिया गया है, इससे पूछताछ होगी। पाकिस्तान में जो सैयद मुजफ्फर हुसैन मुन्ना झिंगाड़ा बैठा, उससे सीधे संपर्क में अगर कोई था तो हुफैजा था। कड़ी मशक्कत के बाद अभी कुछ देर पहले इसे हिरासत में लिया गया है, अब इससे ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा और बाद में दिल्ली लाया जाएगा। सईद,
0: बहुत धन्यवाद अरविंद। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और ये गुर्गा पकड़ा गया है, इसका नाम हुजैफा है। ये हुजैफा पकड़ा जाना काफी महत्वपूर्ण है इसका, क्योंकि 9 आतंकवादी पहले हम पकड़ चुके हैं, एक और आतंकवादी पकड़ा। दिल्ली मुंबई दोनों को दहलाने की बेहद खतरनाक साजिश दाऊद इब्राहिम की और आईएसआई की यहां पर खत्म हुई है। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौटकर जब आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ट्रंप और नेतन्याहू क्यों भिड़े। आप देखते रहिए दस्तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
10: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: नीड अ गुड लाफ? वी नो अ प्लेस, जस्ट फॉर लाफ्स रेडियो ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्टैंड अप बिट्स बाय द बेस्ट कॉमिक्स इन द गेम, फ्रॉम ऑल टाइमर्स टू राइजिंग स्टार्स एंड द पंचलाइन, इट्स ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन TuneIn। हेड ऑन ओवर टू जस्ट फॉर लाफ्स रेडियो टुडे।
2: सोकुडो
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
13: आगे आगे,
14: अरे उधर उधर,
13: करेक्ट करेक्ट।
15: मिल गया, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: AU current account ke saath milta hai free UPI QR overdraft facility aur ek hi app se bank ke sare kaam.
7: AU!
8: Soch badlo aur bank bhi.
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: कानपुर की धरती से उठेगी यूपी के विकास की आवाज। जनता के सवालों का सीधा और सटीक जवाब। हर क्षेत्र के दिग्गजों से आमने सामने होगी बातचीत। यूपी तक बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।
18: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
19: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक, हकीमपुर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। स्वागत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान की उस धमकी की जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नींद उड़ा दी। ईरान ने ऐलान कर दिया कि जब तक लेबनान पर इसराइल के हमले जारी रहेंगे तब तक अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर कोई भी बातचीत या चर्चा नहीं होगी। इधर ईरान ने धमकी दी, उधर ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके जमकर लताड़ा और उनकी क्लास लगा दी। व्हाइट हाउस के हवाले से आई खबर के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान पर हमले रोकने को तुरंत कहा। बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकी तक दी। आखिर नेतन्याहू पर ट्रंप का पारा इतना हाई क्यों है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं।

0: ईरान की धमकी से डरे अमेरिकी राष्ट्रपति। युद्ध को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में तू तू मैं। नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई है। ट्रंप ने इजरायली पीएम को पागल कहा। पीस डील को बेताब ट्रंप की बौखलाहट। ईरान पर नेतन्याहू ट्रंप में जुबानी जंग शुरू। लेबनन पर इसराइल के हमलों से नाराज ईरान ने अमेरिका के साथ पीस डील का बॉयकॉट करने का ऐलान किया। जिस दिन से लेबनन पर इसराइल के हमले जारी हैं, उसी दिन से पीस डील को लेकर ईरान ने चर्चा से दूरी बना रखी है। अब ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए अपनी शर्त रखी है। ईरान की शर्त यही है कि जब तक लेबनन पर इसराइल के हमले नहीं रुकते, तब तक पीस डील पर बात नहीं होगी। यही नहीं, हमले जारी रहे तो ईरान बदला लेगा। हुर्मुज़ स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा। ईरान की इसी धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनन पर हमलों को लेकर डांट लगाई है। दोनों नेताओं के बीच जमकर तू तू मैं हुई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस हुई, जिसमें ट्रंप ने लेबनन पर इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा किया गया है कि ट्रंप इस बात से बेहद नाराज थे कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली हमलों से ईरान के साथ चल रही पीस डील की चर्चा पटरी से उतर सकती है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को अपने तमाम एहसान याद दिलाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम क्या कर रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इसराइल से नाराज है। नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अगले एक हफ्ते में पीस डील को लेकर बात बन सकती है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका और ईरान अगले एक हफ्ते के अंदर युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक हमारे बीच एक समझौता हो जाएगा। दरअसल पीस डील को लेकर ट्रंप के सुर अब बदले बदले हैं। वजह है लेबनन को लेकर ईरान की अमेरिका को दी गई धमकी। मंगलवार को लेबनानी संसद के स्पीकर नबी बेरी के साथ ईरान के स्पीकर गालिबाब से फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान ईरान ने अपना स्टैंड एकदम स्पष्ट कर दिया, जब तक लेबनन पर हमले जारी रहेंगे तब तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमारा जीवन एक है और ईरान और लेबनन के बीच का बंधन अटूट है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता हो जाता है तो इसमें लेबनन में शांति शामिल होगी। पिछले 48 घंटों में हमने इजरायली हमलों को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। अगर अपराध जारी रहते हैं तो हम पीस डील पर कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि इजरायल और अमेरिका के खिलाफ भी खड़े होंगे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान हुआ और तभी से दोनों देशों के बीच पीस डील को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और इस बीच दोनों के बीच समय समय पर हुई सैन्य झड़पों के बावजूद बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। लेकिन लेबनान पर इसराइल के ताजा हमलों के बाद ईरान ने बातचीत से अब किनारा कर लिया, मतलब दोबारा युद्ध शुरू होने के संकेत ईरान ने दे दिए। अब सवाल यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते तो फिर ईरान झुकने को तैयार क्यों नहीं?
0: ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील अटकी और लटकी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह खुद ट्रंप है, क्योंकि जब जब पीस डील पर समझौते की उम्मीद जागी तब तब ट्रंप की धमकियों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ट्रंप की धमकी हर बार पीस डील के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। सवाल यही है कि ईरान के साथ ट्रंप पीस डील चाहते हैं तो धमकी की क्या जरूरत है? चंद दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए थे।
2: Would cross for you to go on the offensive again militarily?
3: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. In the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. Every single one. We take pictures of them. We have people going down taking pictures of hundreds of ships. Their navy is totally gone, 100%. Their air force is totally gone, 100%. Their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. They have other people that aren't moderate. We've taken them out. We've taken different forms of leadership out. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that.
0: वहीं ईरान अमेरिका को यही पैगाम बार बार दे रहा है कि उसकी पलटवार करने की ताकत कमजोर नहीं पड़ी है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ खाड़ी के देशों को निशाना बना सकता है, लेकिन ट्रंप कई बार ईरान के सब्र का इम्तिहान ले चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पीस डील होगी तो कैसे, क्योंकि ट्रंप अपनी गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं है।
4: Let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree?
3: You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces.
0: भले ही ट्रंप दर्जनों बार युद्ध के मैदान में ईरान को हराने का दावा कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो ईरान झुका और ना ही ईरान ने अमेरिका के सामने हथियार डाले। ट्रंप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, जबकि ईरान ने हुर्मुज को अभी तक बंद कर रखा है। ये तब है जब ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में ईरान ने भी तय कर रखा है कि हुर्मुज तभी खुलेगा जब उसकी कीमत अमेरिका से वसूलेगा, यानी अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत या फिर अपनी फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करवाना। ईरान की इस डिमांड को लेकर भी ट्रंप पूरी तरह कंफ्यूज हैं। कभी कहते हैं कि ईरान की मांग को मानेंगे तो कभी अपने बयान से पलट जाते हैं।
3: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: अपने बयान से मुकरना ट्रंप की पुरानी आदत है। ये वही आदत है जिसके चलते ईरान को उन पर रत्ती भर भरोसा नहीं, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। मतलब यही है कि ट्रंप की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है।
3: The strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
1: ईरान के साथ युद्ध ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अहंकार और घमंड को चूर चूर नहीं किया, बल्कि अमेरिका की सुपर पावर वाले तमखे को सीधी चोट पहुंचाई। आज ईरान को लेकर ट्रंप फंस गए हैं तो अपने ही घर में घिर भी गए हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ आधी अधूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ना ट्रंप की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी अब दुनिया भर में आलोचना हो रही है।
0: ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी हो रही है, क्योंकि 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ, उससे पहले तक हुर्मुज खुला हुआ था। दुनिया के सामने तेल और गैस का कोई संकट नहीं था, लेकिन ट्रंप के युद्ध की कीमत आज दुनिया चुका रही है। हुर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है और तमाम मुल्कों को पहुँचने वाले तेल और गैस ठप है। यही नहीं, अमेरिका ईरान युद्ध की भारी कीमत मिडिल ईस्ट के देश चुका रहे हैं। एक तरफ दुनिया ट्रंप को कोस रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की विपक्षी पार्टियों के निशाने पर ट्रंप हैं।
5: दिस वॉर इन ईरान is the worst foreign policy blunder since Iraq. And just like the Iraq War, it's a war built on lies. Let's just update the record. On day one of the war, day one, the president said it was running ahead of schedule. On day 10, he said it was very complete. Day 21, getting very close. Day 32, leaving very soon. On day 39, the president of the United States said a whole civilization will die tonight. And on the next day, day 40, he declared total and complete victory. Day 67, great progress. Day 79, the clock is ticking. Today is day 92. And on day 92, Iran's ballistic missiles and drones have not been destroyed. The Strait of Hormuz, which was open before the war, is still closed. The regime is intact, along with its stockpile of highly enriched uranium. A stockpile Iran only built after President Trump shredded President Obama's Iran deal. You remember that?
6: भले ही ट्रंप युद्ध में ईरान को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, यहां तक कि कुवैत पर मिसाइलें दागी। ईरान की नीति और नियत एकदम साफ है, पीस डील होगी तो ईरान की शर्तों पर ही होगी, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। ईरान की यही नीति अब कारगर साबित होती दिख रही है, क्योंकि ट्रंप भी समझ चुके हैं कि सैन्य कार्रवाई के दम पर ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज तक ब्यूरो
1: हमारे साथ इस समय सीधे अमेरिका वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता रोहित शर्मा जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइए कि नेतन्याहू पर ट्रंप के इस क्रोध यानी कि गुस्से की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या हुआ रोहित?
7: देखिए सईद, ये बात उतनी ही सही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी हालत में अब इस वॉर को, इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। और जिस तरह की हमने अब जो ये जो कॉल की जो लीक जो ट्रांसक्रिप्ट आई है, जिसमें जिस तरह के भाषा का उपयोग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है नेतन्याहू से बात करते हुए, ये कह देना कि आप जो है आपको मैं बचा रहा हूं, क्योंकि हर जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के विरुद्ध काफ़ी केसेस चल रहे हैं इसराइल में, तो ये कह देना, एक्सप्लिसिटली कह देना भाषा को, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सचमुच चाहते हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। और अगर इसराइल जिस तरह से वहाँ पे कार्रवाई कर रहा है लेबनान में, अगर वो नहीं करता है जो शर्त है ईरान की इस युद्ध को रोकने के लिए, अगर उसको बढ़ावा दिया जाए इस लेबनान में जो स्ट्राइक्स कर रहा है इसराइल को, तो ऑब्वियसली ये जो सीज फायर है ये नहीं होगा, एक जो नेगोशिएशन है वो नहीं हो पाएगी, इस युद्ध का जो है अंत नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अमेरिका बिल्कुल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चाहते हैं कि इस युद्ध ना हो। देखिए ऑलमोस्ट 40 के आसपास ज़्यादा दिन हो गए हैं जब से सीज फायर अनाउंस किया गया था, तब एक टाइम लिमिट दिया गया था कि 7 दिन 10 दिन, उसके बाद मीटिंग्स हुई, उसके बाद आप देखिए कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो थे जेडी वेंस, वो पाकिस्तान आए, वहाँ से गए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अमेरिका ने एक ही चीज़ की है, उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो रोक दी है, ब्लॉकेट जो है वो शुरू है। उसके बावजूद भी ईरान जो है अभी तक नहीं माना है, और ईरान की ये जो डिमांड है कि अगर इसराइल नहीं रुकता है लेबनान के वॉर को तो वो बात नहीं करेंगे, तो दर्शाता है कि टेक्निकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है। और ये बात हमने आज तक के माध्यम में कही थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि July 4th के पहले, जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है अमेरिका, उसके पहले ये जो वॉर है इसका रेजोल्यूशन निकल जाए, ताकि आने वाले July 4th के बाद, क्योंकि अमेरिका चुनाव में जाने वाला है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि वॉर की परछाई जो है वो छाई रहे इलेक्शन में। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जहां तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो बिल्कुल चाहते हैं कि युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए, एक एग्रीमेंट हो जाए, और ईरान भी यही चाहता है। लेकिन ये जो नई कंडीशन ईरान ने डाली है, आई थिंक यहाँ से थोड़ा हमें समझ में आ रहा है कि पहली बार एकदम पब्लिक रूप से जितना फ्रस्ट्रेटेड शायद डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं इस फोन कॉल में, शायद वो सचमुच फ्रस्ट्रेटेड है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने में जो भी चीज वो कर सके, जिस पे प्रेशर डाल सके वो डालना चाहते हैं, भले ही फिर वो बेंजामिन नेतन्याहू क्यों ना हो।
1: बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से लेबनान पर इसराइल ने फिर से हमले शुरू किए हैं, पूरी दुनिया ये जान चुकी है, समझ रही है और समझ में सबको आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान और अमेरिका के बीच शांति का पूरा प्लान बिगाड़ना चाहते हैं। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लेबनान पर हमले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से न सिर्फ बात की है बल्कि उन्हें काफी कुछ सुनाया भी है और धमकाया भी है। लेकिन नेतन्याहू अपने प्लान में सफल होते दिख रहे हैं क्योंकि ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण से अमेरिका के साथ सीजफायर की बातचीत को रोक दिया है और ईरान ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक अमेरिका से मध्यस्थों के द्वारा कोई बात हम नहीं करेंगे। आइए हम आपको दिखाएं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या नेतन्याहू लेबनान पर हमले रोकेंगे या फिर और तेज करेंगे? क्या ट्रंप की बात मानेंगे या नहीं?
8: बेंजामिन नेतन्याहू ने लगाया अमेरिका ईरान की डील में पलीता। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर वार्ता रोकी, हुर्मुज फिर से होगा बंद। लेबनान पर इजरायली हमलों से भड़का ईरान, डील पर लगाया विराम। नेतन्याहू का प्लान कामयाब, हमले लेबनान पर, नजर ईरान की डील पर। ईरान युद्ध से दुनिया परेशान, अब कैसे डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध भड़काने के पीछे इजराइल का हाथ था। जी हां, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर युद्ध थोपा और जंग इतनी जबरदस्त चली कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। और जब 8 अप्रैल को युद्ध विराम के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच संपूर्ण युद्ध विराम के लिए बैठकों पर बैठके और मध्यस्थताओं का दौर चल रहा है, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिर से रोड़ा अटका रहे हैं। और अब जैसे ही पाकिस्तान से हटकर कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता शुरू की और डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे करने शुरू किए कि अब ईरान के साथ डील पक्की होने वाली है, इसराइल ने लेबनान पर फिर से बम और मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए क्योंकि इसराइल को पता है कि लेबनान और ईरान एक सिक्के के दो पहलू हैं। ईरान किसी भी कीमत पर लेबनान में हमले बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि लेबनान में युद्ध विराम भी ईरान और अमेरिका की डील में शामिल है। ऐसे में डील वाला पूरा खेल बिगड़ जाएगा और हुआ भी वैसा ही।

0: अमेरिका और इसराइल जिम्मेदार होंगे। ईरान ने गाजा और लेबनन में इसराइल की सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और लेबनानी क्षेत्र से इसराइली सेना की पूरी वापसी की मांग की है। तेहरान का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर उसकी और उसके सहयोगियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक बातचीत दोबारा शुरू नहीं होगी। तस्नीम की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान और उसके सहयोगी हुर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने और दूसरे मोर्चों को एक्टिव करने के ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं। इसमें लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी शामिल है। आपको बता दें कि लेबनन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च को लड़ाई फिर शुरू होने के बाद से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 3433 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि में 10,395 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। लेबनन में बढ़ते घमासान पर फ्रांस ने लेबनन में इसराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। ये मांग इसराइली सेना के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा करने के बाद की गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बारो ने कहा है कि फ्रांस इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मानता है, लेकिन लेबनन के भीतर लगातार सैन्य अभियान चलाना और वहां और अंदर तक कब्जा करना उचित नहीं है। मौजूदा हालात क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकते हैं।
1: आइए हम इस समय हमारे संवाददाता अशरफ वानी के पास आपको लिए चलते हैं। अशरफ, क्या लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण अब अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं हो पाएगी?
2: बिल्कुल, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लगातार यही कोशिश है कि किस तरह से वो सबटाज करें अमेरिका और ईरान के बीच मसौदे यानी बातचीत की प्रक्रिया को। जब से सीजफायर की घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई है और तब से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू न सिर्फ हमलों में तेजी ला रहे हैं लेबनान में, बल्कि साथ ही साथ उसका दायरा और कब्जा जो है लेबनान में वो बढ़ा रहे हैं, जिससे इसराइल के साथ साथ दुनिया ईरान के साथ साथ दुनिया के कई सारे देश नाखुश है। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस में एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी इसराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान पर कब्जे को लेकर। उस बीच जिस अंदाज से कल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर यह दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्ला और इसराइल के बीच समझौता करवाया है, सीज फायर होगा अब दोनों के बीच में, बातचीत की प्रक्रिया भी लेबनान और इसराइल के बीच पेंटागन में चल रही है, लेकिन उसके बीच भी हमलों की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की तरफ से लेबनान में कोई कमी नहीं आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो बीरूत का सबर्ब इलाका है वहां पर इसराइल की तरफ से अभी तक कोई हमला नहीं किया गया आज, जिसकी वार्निंग दी थी इसराइल ने, और लेकिन दक्षिणी लेबनान जहां पर उपस्थिति और मौजूदगी है इसराइली सेना की, वहां पर लगातार अलग अलग जगहों पर इसराइल की तरफ से बमबारी जारी है, चाहे फिर वो टायर सिटी हो दक्षिणी लेबनान की या फिर निबातिया शहर हो, वहां पूरी दोनों शहरों को जो है वहां पर वार्निंग जारी कर दी गई है, लोग वहां से निकाले गए हैं। लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा मामला देखा जाए तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो। यदि कोई समझौता होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल हाशिए पे आएगा। दुनिया में पहले ही लोगों का विरोध, देशों का विरोध झेलते हुए इसराइल को अगर सहारा है तो वो मात्र अभी तक अमेरिका का है, और जो रंजिशें बढ़ रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानते हैं तो जाहिर है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल अकेले पड़ जाएंगे इस युद्ध में जो कई मोर्चों पर इसराइल लड़ रहा है, और वो इसराइल के लिए आने वाले समय में काफी दिक्कत भरा समय होगा। इसलिए यही माना जा रहा है कि अगर पूरा नहीं लेकिन कुछ आदेश डोनाल्ड ट्रंप का बेंजामिन नेतन्याहू को मानना ही पड़ेगा।
1: दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: उसके बाद उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, कि ये अभी अपने लास्ट मोमेंट्स में ही है। तो फिर मैं गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उस बीच में ही फिर वो चले।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद
10: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

स्वच्छता की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग शिक्षा मंत्री हो बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी ने में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। आज दक्षिण की सियासी रणनीति, शपथ से पहले आलाकमान से मिले डीके शिवकुमार सिद्धरमैया, कैबिनेट पर फाइनल मुहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे अन्नावलाई की शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, आज फिर दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला नाम।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे इज्जत की मौत देने का हुक्म सुनाया था। देश के सबसे बड़े अस्पताल ने धीरे धीरे उसकी सांसों की रफ्तार थामी। फिर 24 मार्च को हरीश राणा की आंखें और दिल की धड़कनें दोनों बंद हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए, क्योंकि अब हरीश की आंखें किसी और की अंधेरी दुनिया में रोशनी ला चुकी है। हरीश का दिल अब किसी और के सीने में धड़क रहा है, यानी हरीश मरकर भी जिंदा है।

नहीं ना, याद तो अब भी होगा आपको। वैसे भी हरीश राणा को भूलना, वो भी इतनी जल्दी, मुमकिन भी नहीं। जो नौजवान अपनी मौत का रास्ता खोलकर खुद जैसे न जाने कितनी ही जिंदा लाशों के लिए इज्जत की मौत का रास्ता खोल गया, उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। तेरह सालों तक हरीश एक लाश बनकर बिस्तर पर पड़ा रहा, पर इसके बावजूद उसकी आंखें अपने आसपास की हर चीज देख रही थी। लाश बनकर भी जिंदा यूं था क्योंकि उसके दिल की धड़कनें तब भी धड़क रही थी। देश की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पर देश के सबसे बड़े अस्पताल में पूरे 11 दिन तक हरीश की मौत का इलाज हुआ। इलाज कामयाब रहा और 24 मार्च को हरीश की आंखें और दिल की धड़कन दोनों बंद हो गई।

0: लेकिन हरीश की इन्हीं बोलती आंखों से हमारे इसी देश के किसी कोने में कोई है जो अब भी दुनिया देख रहा है, कोई है जिसकी अंधेरी दुनिया में जाते जाते हरीश रोशनी भर गया। हरीश की इन्हीं आंखों से जिस शख्स की अंधेरी दुनिया रोशन हुई, वो कौन है, क्या नाम है, किस धर्म या जात का है, कहां रहता है, क्या करता है, ये खुद हरीश के माँ बाप और छोटे भाई को भी नहीं पता। उन्हें सुकून है कि उनके बेटे और भाई की आंखें अब भी किसी की आंखें बनी हुई है।
1: उसमें बेसिकली एक इवेंट होता है, उसमें सारे ऐसे डोनर्स को, रिसीवर्स को बुलाया जाता है। उसमें वो ये ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे ये कौन है, उनमें से कोई एक होगा अगर वो आए होंगे तो आप वैसे ही देख सकते हैं, बट ऐसे नहीं बताते हैं कि वो कौन है, क्योंकि हमारा एक इमोशनल टच हो जाता है। हमें भी उम्मीद रहेगी कि हम भी अपने भाई की आंखें दोबारा देख पाएँ, जिस किसी को भी लगी हैं, बट उनका भी सही है मानना कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो सामने वाले से, मतलब हम तो अगर नहीं बोल रहे, आजकल बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, कोई कहते हैं कि कुछ भी चीज़ें आगे बढ़ सकती है, एस्केलेट हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करा जाता है। जो उन्होंने हमें पहले बता दिया था उसके बाद ही हमने ये डिसीजन भी लिया।
0: क्योंकि हरीश के दिल की धड़कन कानून और मेडिकल साइंस की रजामंदी से बंद की गई थी, डॉक्टर जानते थे कि हरीश की धड़कनें कब रुकेंगी, लिहाजा ये भी साफ था कि अगर हरीश के घर वालों की मर्जी हो तो धड़कन रुकने के बाद भी हरीश का दिल किसी और को अपनी धड़कन दे सकता है। हरीश के परिवार ने आंखों के साथ साथ किसी और के दिल में जगह बनाने के लिए उसका दिल भी उसे दे दिया।
1: सर ये बहुत डिस्क्रीट मैटर है और ये चीजें ना एक्चुअली शेयर भी नहीं होती है। हमने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी ये बोला कि हम आपको, मतलब ये कभी भी बताते नहीं है कि वो कहाँ है, किसके पास जा रही है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इन द वर्ल्ड इन इंडिया में भी कहीं ना कहीं वो यूज़ ज़रूर होंगे। किसको होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, बिकॉज उसकी भी कुछ वो उसको कंटेन करके रखते हैं तो उसका कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जैसे हार्ट वर्ल्ड्स अप टू 8 ईयर्स तक रह सकते हैं, तो विद इन दोज 8 ईयर्स वो कभी भी किसी को भी अगर ज़रूरत है और वो मैच होता है तो लग सकता है।
0: हरीश की मौत के बाद पहली बार हरीश के माँ बाप और छोटे भाई ने आज तक से बातचीत की। पहली बार हरीश के परिवार ने बताया कि क्यों हरीश के लिए मौत मांगने परिवार कोर्ट पहुंचा था, कैसे हरीश की जिंदगी के आखिरी 13 साल और एम्स में वो 11 दिन बीते। हरीश की आखिरी घड़ी में क्या कुछ हुआ, कैसे धीरे धीरे आखिरी वक्त में हरीश का खाना और पानी बंद किया गया, कैसे हरीश के छोटे भाई के सामने हरीश ने आखिरी सांस ली। कैसे हरीश को पूरी इज्जत के साथ इच्छा मृत्यु देने के बाद देश भर से अब उन्हें फोन आते हैं। कैसे हरीश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बरसों से लाश बनकर जी रहे लोगों के हिस्से ठीक वैसी ही इज्जत की मौत आई जैसे हरीश के हिस्से आई थी, और हरीश के जाने के बाद अब इनकी जिंदगी में क्या कुछ बदला है, तो सुनिए खुद हरीश के पिता, छोटे भाई और हरीश की माँ की जुबान। एक लंबा अरसा हुआ था हरीश को इसी घर में रखा था, इलाज चल रहा था, आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, ठीक होने की उम्मीद नहीं थी, तो जब आप कोर्ट पहली बार इस अर्जी के साथ आप लोग पहुंचे कि उसे इच्छा मृत्यु दी जाए, तब बहुत सारे लोगों ने शायद ये भी कहा होगा कि ये कैसे माँ बाप है।
2: सबसे पहले इस माँ के मन में ये संकल्प उठा कि आप प्रधानमंत्री को बोलो या राष्ट्रपति को बोलो, मैं थोड़ी देर चुप रहा, मैंने कभी ऐसा होना संभव नहीं है, परंतु कोशिश करते हैं, जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे।
0: जब आप इस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि हम बंद कमरे में सुनवाई करेंगे, जो आखिरी दिन फैसला होना
2: हुआ था वैसे,
0: तो उस कमरे में क्या बात हुई थी आपसे?
2: नहीं, ऐसा है, बातें तो क्या हुई, उन्होंने जो हम चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ASG मैडम ऐश्वर्या भाटी से हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों माता पिता और बेटा था, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ घर पे आई, उन्होंने देखा, वो उन्होंने आंसू भी बहा दिए वहाँ। मैंने अंत में उनको ये बोला, फल फ्रूट ले आई वो हमें बहुत सारा। मैंने कहा जी आपकी अंतरात्मा, आपकी जो रूह बोले वो आप जजमेंट दे देना, आपने इसको देख लिया, ये ना बोल सकता है, ना हमारी बात सुन सकता है, ना ये कह सकता है, ना अपनी दुख दर्द को हमें आधे तक पहुंचा सकता है। बस इसकी हर घंटे करबड़ दो, और नाली निकल जाए तो 6-6 बार भी इसकी बेडशीट चेंज करना पड़ती है, और देख लो ये टॉक्समी ट्यूब बलगम निकालने के लिए है। आपको जो उचित लगे, घंटा भर वो लगभग बैठी होंगी, उन्होंने बहुत कुछ पूछा हमारे से, तो उन्होंने पूछा भाई आप देखो जो ईश्वर करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मैं कहा जी आप आएँ तो मेरी भी अंतरात्मा यही कह रहेंगी जो होगा वो अच्छा होगा, हम इस पॉजिटिव थॉट को लेकर के चल दिए, वो चलेंगे स्टेटमेंट भी। 13 जनवरी को जजमेंट होंगे, 13 जनवरी को हमें बुलाया था, हम तीनों गए थे। जज साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जो हम चाह रहे थे कि ये मानवता के हित का ही फासला था। हमने उनको यही बोला था कि जैसे ये पढ़ा है, पता नहीं इस हमारे भारत देश में कितने सारे लोग हो सकते हैं ऐसे पढ़े हों, तो इसके द्वारा अगर किसी का ये मार्ग खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, वो आर्थिक संकट भी झेल रहे होंगे, हमें पता है कि हमारी रात रात भर नींद नहीं आती थी, कैसे कैसे उस समस्या का सामना करना। पहले जब इसको RT डली हुई थी रैलिस ट्यूब, तो हमें हर हफ्ते में 2-3 बार एम्स भागो, परंतु जब किसी ने हमें ये वेदांता से डॉक्टर अरेंज किया, इसको बोलते हैं फुल पैक सेट विल्सन कुक का, तब से, क्योंकि वो नाली में सीधा जाता है, ऐसे जो RT से खाना जाता है वो यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट बाया चेस्ट होके फिर नीचे जाता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हम पहुँचे, और वकीलों ने आगे प्रोसेस चलता रहा, जज साहब ने हमें जो हम चाह रहे थे वो ही उन्होंने दी।
0: जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले आप तीन
2: पहले सर जब ये स्टेटमेंट आई थी तो मेरे को तो सारी रात नींद नहीं आई कि ऐसे ऐसे, क्योंकि 2 महीने बाद अब जजमेंट आई कि ऐसे ऐसे वो हो गया, मतलब हरीश का जो है इच्छा मृत्यु का। परंतु इससे पहले हमने कई प्रश्न किए, बेस को ऐसा ना बोले कोई कि एक्टिव यूथनेशिया, और हमने ये माननीय जो अदालत में बैठे थे पर्दीवाला न्यायाधीश जी, हमने उनको भी कहे कि मैं तो बोल रहा हूँ कि ये इसको हम प्रकृति की गोद में छोड़ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल डेथ ही मानी जाएगी उसका। जैसे जब इंसान खाना मतलब मौत होती है तो वो अनजल तो छोड़ता है, तो मैंने कहा इसको ये न किया जाए, कहा जाए कि ये सक्रिय मृत्यु है, इसको निष्क्रिय मृत्यु बोलेंगे, जैसे कि आम आदमी छोड़ता है, वो तो वो हो गई, जैसे पागल कुत्ते ने किसी इंसान को काटा और फिर वो उसके बाद वो इंसान भी पागल होता है तो उसको वो इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया वाले भी सारे वही बोल रहे हैं, और तो वो एक हमारी भी अंतरात्मा उसमें न एक अलाउड नहीं करती। हाँ, जैसे आम आदमी छोड़ता है वो भी अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में, तो वो उसको उसको रखा जाए, और उसके बाद उन्होंने वैसे ही किया।
0: जब तीनों को आपको बुलाया कोर्ट में, तो बाकायदा जजेस बैठे हुए थे, आपकी राय उनके लिए बहुत कीमती थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त उन्होंने क्या कहा था आपसे?
1: ये कोर्ट, ये जो केस है वो तो हाई कोर्ट में भी पिछले एक साल से चली
0: रहा, वो तो चल रहा,
1: तो आई थिंक उन्हें सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी पता ही थी कि क्या है इस केस में, और उससे पहले भी 2 बार डॉक्टर्स की टीम आके चेक करके गई थी, CMOs भी आए थे, तो सब कुछ उन्हें मेडिकली दे वर ऑलरेडी रेडी कि ये तो होना ही है, बट दे जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर कि जब अब, क्योंकि एक मेडिकल टर्म है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, बट उसके बाद आती है फैमिली, क्योंकि वो हैं जिनका मेन डिसीजन है, तो बस हमसे जानना ही चाहते थे कि आप जो भी अब हम डिसीजन देना है, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें क्या डिसीजन देना है, बट जो हमें देना है क्या आप उसमें सहमति और आप यही चाहते हैं, तो एक तरीके से बस हमसे मिलकर देखना चाहते थे कि क्या हम भी यही चाहते हैं, और बस उन्होंने एक दो ही सब, उन्होंने ज़्यादा बात भी नहीं करी हमसे, उन्होंने सिंपल हमें बोलने भी नहीं, उन्होंने बोला मैं समझ गया हमारे एक्सप्रेशन से, हमारी पूरी जो भी इतने सालों की जर्नी रही है, तो बस वो।
0: आशीष, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, चूँकि ये हाई कोर्ट में पहले मामला था, रिजेक्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, एक लंबा वक्त लगा इसमें, और आप लोग इसके लिए कोर्ट में जा भी रहे थे, उधर अलग परेशानी थी, लेकिन जिस दिन ये फैसला आया, इस फैसले के बाद जो पहले रिएक्शन था कि आप एक चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, लेकिन ये वो फैसला था जिसमें न जीत में खुशी थी ना हार में वो थी। तो जब वो आया कि हाँ ठीक है अब ये होने वाला है, तो फिर आपका, आप लोगों का पूरे परिवार का क्या रहेगा?
1: सर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में जिनका आपको समझ नहीं आता है कि रिएक्शन क्या है, या आपको वो फीलिंग ही नहीं पता होती है कि आप क्या फील करना चाहते हो उस टाइम पे। आप जो जिस चीज़ के लिए आपने इतने सालों से मेहनत करी है, आज उस चीज़ का एक एक सही तरीके, एक सही उसका आउटकम निकल रहा है, क्या आप उसके लिए खुश हैं? या अब जो आपका बड़ा भाई है, आपका बेटा है, जिसके साथ आपने बचपन गुजारा है, इतने साल आप रहे हैं, अब हमारे बीच में वो आने वाले कुछ टाइम में नहीं रहेगा, तो मैं तो चाह के भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि वो बहुत
2: कठिन,
1: बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। उस समय पे एक तरफ आंसू भी आ रहे थे, बट उन्हें देख के लग रहा था कि शायद इनके लिए ये ठीक हो रहा है, क्योंकि हम तो उनकी सेवा करने के बाद अंदर बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बट वो हैं जो उस डॉक्टर राजमणि ने ये बात करी थी कि ही इज़ इन अ प्रिजन। वो आपको लग रहा है कि वो एक शरीर में है बट वो एक जेल में है, और वो आपको कोई इंसान नहीं समझ सकता।
0: पहली बार ये आपको पता चला कि अब कल एम्स ले जाना है, और ये मालूम है कि इतने बरसों से वो यहीं हैं और एम्स आप उसको लेकर जाएंगे और वापस वो उसी हाल में आना है जिसके लिए कोर्ट ने भी कहा था। तो जब आप एम्स ले गए, एम्स में 11 दिन रहे, वो 11 दिन क्या थे?
1: सर वो 11 दिन, वो 11 दिन मेरी जिंदगी के तो सबसे सबसे मुश्किल समय भी मैं कह सकता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं मैं बस चाहता था कि मैं आखिरी समय जो भी है भैया के साथ उसमें रहूं, और इसी वजह से मैं 11 दिन मैं वहीं रहा रात दिन, ताकि मुझे कल को ये ना हो कि जो मैंने 13 साल करा हो आखिरी के 11 दिनों में मैं नहीं कर पाया। और वो सर बहुत मुश्किल थी, हर चीज़ समझाना एक ही चीज़ को हमें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतना पहला केस है इंडिया का, उस सारी चीज़ों का डिस्कशन डॉक्टर्स के साथ, वो सारे मोमेंट्स रिलीव करना, बट उसके बाद फिर देखना भैया को रात दिन की।
0: मैं इसीलिए, चूँकि पहला केस था तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ये सवाल थे जानना चाहते। जब आप एम्स ले गए तो हरीश को एक अलग कमरे में रखा गया था, और शायद आप लोग वहीं पर एक अलग कमरे में थे, तो डेली एक मीटिंग होती थी, क्या वो पूरा प्रोसीजर क्या होता था?
1: मीटिंग तो डे वन पे ही उन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स, बट अगेन क्योंकि हम पिछले 13 सालों से कर रहे हैं, तो हर उनके लिए भी ये चीज़, अब इसको कैसे प्रोसेस करना है, मतलब मेडिकली ये प्रूवन है कि ऐसा ही करना है, बट प्रैक्टिकली ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो उस चीज़ में उन्हें भी हमारी गाइडेंस की ज़रूरत थी और हमें तो उनकी गाइडेंस की ज़रूरत थी कि ये क्या हो रही हैं चीज़ें, तो वो हमसे पूछ के करते थे, या उन्हें कुछ कन्फ्यूजन है या हमें कुछ कन्फ्यूजन है तो हम उनसे पूछ लिया करते थे कि अब ये क्या हो रहा है। तो यही सारे डिस्कशन रहते थे कि आज हमने इनको बेड सोर पे पट्टी वगैरह करी है, अभी करवट दिया है, मोटर लेवल आज इतना है, कल उतना है, तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन रह के, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर वो आगे, बेसिकली हमारे बिना किसी कंसेंट के या हमें बिना बताए ऐसा वहाँ पे
2: कोई काम नहीं हुआ,
1: कोई काम
0: नहीं। क्योंकि ये एक पैसिव यूथनेशिया था, इसलिए वो शुरू में ही उन्होंने बताया था एम्स की तरफ से भी कि कैसे वो खाना पानी ये सब कम करेंगे। तो ये 11 दिनों में किन चरणों में ये सारी चीज़ें पूरी हुई थी? तकलीफ दे है, लेकिन
1: सर
2: 3-4 दिन बाद
1: तो स्टेप्स तो सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आई मीन ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, वो मेडिकली ऐसे ही है कि आप जब आते हैं पेशेंट तो उनको डे वन पे तो सेम जो जैसे घर पे आपकी केयर होती है, जितना खाना जाता है वैसे ही जाता है, फिर ग्रेजुअली वो उसको कम करते जाते हैं और ऐसे ही इसका आगे प्रोसेस रहता है।
0: 10 दिन बाद आप लोगों को बता दिया गया था?
1: एक्चुअली क्या है ना कि ह्यूमन बॉडी वर्क ही ऐसे करती है कि प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो 15 ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 महीने तक चल सकता है बिना खाने पीने के, अदरवाइज़ 5-6 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम में हो जाता है उसमें, क्योंकि जब इनटेक नहीं है और बॉडी को अंदर एनर्जी चाहिए काम करने के लिए और कुछ एनर्जी नहीं जा रही है, तो वो धीरे धीरे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिकली शट डाउन होते हैं. तो ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक डे था, इट कुड हैव गोन लिटिल लॉन्गर कि वो आगे 5-6 दिनों के लिए चला जाए.
0: लास्ट डे सबसे पहले डॉक्टर ने आप लोगों को बताया था या वही था?
1: डॉक्टर्स ने, मैं था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप अभी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, उन्हें थोड़ा सेक्शन कराना है. देन दे कॉल्ड मी कि उनके अभी सुबह उन्हें बुखार आया था. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, कि अभी अपने लास्ट मोमेंट्स में ही हैं. तो फिर मैं गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उस बीच में ही फिर वो चले गए.
0: आपके अभी पापा ने मुझे बताया था कि आपने बहुत सेवा की थी अपने बड़े भाई की, सुबह उठकर उसको नहलाना धुलाना, बाकी देखभाल. अब जाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया?
1: मैं पर्पसलेस हो गया हूँ लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है. पहले मुझे, मेरे पास कुछ था सुबह उठ के, शुरू में तो मुश्किल था, बट उसके बाद लगा कि शायद ऐसा ही है. और फिर वो इतने सालों से करा कि वो बहुत नॉर्मलाइज होने लगा, तो लगा कि शायद बड़े भाई की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, और जो मैंने करा. अब ऐसा लगता है कि अब लाइफ में पर्पस कुछ बचा नहीं है, कि अब मुझे आगे क्या करना है. मुझे लगता था शायद लाइफ यही है कि उठना है, करना है, और फिर तो मुझे लगता है अभी तो मुझे टाइम लगेगा चीज़ें समझने में, कि आगे लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और अब क्या पर्पस है. मे बी देर इज़ अ बिगर पर्पस. अब इतनी चीज़ें हुई हैं, आई डोंट नो, मैं अभी स्टिल फिगर आउट कर रहा हूँ इस चीज़ को.
0: जब ये हरीश पढ़ने गए थे तब आप दोनों की उम्र कितनी थी?
1: मैं 12th में था जब भैया पढ़ने गए थे, तब तो मैं 9th या 10th में था. हाँ जी.
0: दोनों के एज में कितना डिफरेंस था?
1: 3 साल भैया, 90. हाँ,
0: तो जब तक आप लोग यहाँ होंगे तब तो एक फ्रेंड की तरह ही.
1: एक्चुअली भैया तो पापा जैसे ही थे, सच बताऊँ. अच्छा. मेरे को इतना डर पापा से नहीं लगता है आज भी जितना भैया से लगता था उस समय भी. मतलब ये एक टाइम था जब तक भैया अभी गए नहीं थे चंडीगढ़, उस समय तक भैया का बहुत डर था. बहुत ऐसा कि कुछ भी हो, अगर हम सुबह नहीं भी उठ रहे हैं और भैया चंडीगढ़ में हैं, तो मम्मी फ़ोन करके बोल रही हैं उन्हें कि ये उठ नहीं रहे हैं, तो वो फ़ोन पे बोलते हैं उठ जाओ. तो इतना डर था कि हम फ़ोन से ही डर के उठ जाते थे. बट वो इवेंचुअली जब भैया बाहर गए, उन्होंने लाइफ देखी, तो वो चेंज हुआ. फिर आने के बाद वो दोस्तों की तरह रहते थे, एकदम जाना, चिल करना, बता कैसा चल रहा है, क्या है बताना, कि प्लान करना कि मेरे तू फटाफट 12th कर ले, देन चंडीगढ़ आ जा, फिर साथ में दोनों भाई कोर्स करेंगे, ये सारे डिस्कशन रहते थे बाद में.

0: 13 साल बनाम 11 दिन, वो 13 साल जो हरीश ने जिंदा लाश बनकर काटी और वो 11 दिन जो हरीश ने एम्स में बिताए। हरीश की मां की पूरी जिंदगी अब इन्हीं 13 सालों और 11 दिनों में सिमट कर रह गई है। हरीश के पिता और भाई के बाद अब हरीश की मां के जज्बात।
1: जब मैं आपके इस घर में आज से 3 साल पहले आए होंगे और आज भी जब मैंने यहाँ कदम रखा तो मुझे सबसे पहले जहन में आया कि यही वाला कमरा था हरीश का। आप हर रोज इस घर में रहते हैं और हर दिन इस कमरे में आते हैं, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपके मन में क्या एहसास होता है?
2: मन को तो पूछो मत, मन में तो बहुत विचार आते हैं। खाली हो गया बिल्कुल कमरा, अब एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख हो गया है। जो लगे रहते थे पूरा दिन सेवा करना, खाना देना, कभी करवट देनी, कभी कुछ करना, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए।
1: जिस दिन हरीश को यहाँ से लेकर गए, जिस दिन इस घर में आखिरी दिन था, वो रात जब एक बची होगी तो वो तो बड़ी काट रही होगी कि कैसे क्या होगा।
2: आज जिस दिन जजमेंट आया उस दिन हम दोनों ही थे, कोई नहीं था घर पे, बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी और हम दोनों ही थे। खाना हमारा बना हुआ था, वो ऐसे ही पड़ा था और जब जजमेंट आए तो ऐसे लगा जैसे कमर बिल्कुल बस सब टूट गई, बिल्कुल कमर आखिरी उम्मीद थी। और हमें ये लग रहा था दो महीने निकल गए, अब नहीं आएगी जजमेंट, नहीं आएगी। पर उसके दुखों को देख के लगता था भाई भगवान जज के मुंह से ऐसा फैसला आए जो मतलब इसके हित में हो, क्योंकि हालत देखो अभी इतनी गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी में बुरा हाल, बिजली चली जाए तो बुरा, यहाँ तो चलो फिर भी ये था बिजली जाती है तो जनरेटर चलता है, पर कई बार ऐसे होता था बिजली नहीं आती थी तो उसकी वो जो मैं लगाया हुआ था हमने एयर मैट्रेस वो बंद हो जाता था, उसके जख्म में ब्लड आने लग पड़ता था, चादरें ख़राब हो जाती थी, बुरा हाल होता था। तो उस दुख को देख के तो ऐसे लगता भाई भगवान बस। अब
1: ये जो 11 दिन हॉस्पिटल में रहे थे हरीश, और उस हर 11 दिन में एक दुआ ये भी थी कि जल्दी कबूल हो जाए और हरीश चला जाए, और दुख ये भी था कि जब चला जाएगा तो फिर वो दिन भी कैसा देखा जाएगा,
2: क्या होगा उसके बाद। 11 दिन तो हमने 13 साल से भी ज़्यादा काटे, जो 11 दिन हमने काटे वो हमने 13 साल से भी ज़्यादा काटे, क्योंकि उसको देखा नहीं जा रहा था हमें, हम खुद खा रहे थे। उसको एक पानी के जरिए रखा हुआ था और बेचारा ना बोल सकता ना सुन सकता, सारी चीज़ें बंद कर रहे थे। कई लोग तो बोल रहे थे पाइपें निकाल दी थी, पर पाइपें कुछ नहीं निकाली थी उन्होंने, कुछ भी नहीं निकाला हुआ था, सब कुछ वैसे ही था, दे रहे थे बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पर हम वहाँ बैठ के बस यही था भाई, लगता था भाई भगवान भाई सही में वहाँ हमें कई बोलते रहे आप चाय पी लो रोटी खा लो, वहाँ मन ही नहीं करता जो हम कुछ खाएं इसके सामने, ना नहीं जाता था। वो हमें 11 दिन 13 साल से भी ज़्यादा लगे, ऐसे लग रहा था भाई इतना तो 13 साल में ही था भाई। हम टाइम से खाना देते थे, टाइम से उसकी के वहाँ, तो हम ऐसे हो गए बंद गए और कुछ अपनी मर्जी से कर भी नहीं सकते थे। और ऐसे लग रहा था जैसे उसको जब वो भूखा था तो ऐसे लग रहा था चुपचाप लाओ और दे दो उसको, फिर नहीं देखा जा रहा था।
1: जब डॉक्टरों ने वो आखिरी सांस ली होगी हरीश ने और कहा आपको कि अब, जब आपको ये खबर मिली फिर?
2: बताया नहीं बच्चों ने, हमें नहीं बताया। मैंने जाना था सुबह जाना था तो इसने मना कर दी थी, मेरा कह रहे मम्मी आप ना दोपहर के बाद आना, पर मेरे को लग रहा था भाई बस अब ज़्यादा नहीं है, एक दो दिन का मैं वहाँ आना, क्योंकि हालत में

आज तक ये मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग शिक्षा मंत्री हो बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में आज दक्षिण की सियासी रणनीति, शपथ से पहले आलाकमान से मिले डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे अन्नामलाई की शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, आज फिर दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे होली से मनाया, फाजिल नगर का नाम बदला।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नेपाली सत्ताधारी पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने आज नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने भारत नेपाल के बीच संबंधों को लेकर चर्चा की, साथ ही राजनीति में युवाओं की क्षमता और प्रतिभा के इस्तेमाल को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरएसपी चीफ को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं के भीतर अद्भुत पकड़ है। उन्होंने बताया कि युवाओं की सोच, आकांक्षा, भाषा और ऊर्जा को प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए जब वो मिलेनियन से मिलते हैं तो उनसे ज्यादा वो खुद मिलेनियंस नजर आते हैं। जब वो जेंजी से मिलते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, तो खुद ज्यादा जेंजी नजर आते हैं और वो पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को हमेशा विकास के केंद्र में रखा है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को किस तरीके से उनकी भाषा, सोच, उनकी एनर्जी सब बखूबी समझते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री के युवा रहते हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र नितिन नवीन की तरफ से किया गया। तो बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि भारत नेपाल संबंधों को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनीति में जेंजी की क्षमता और भूमिका पर भी नितिन नवीन की तरफ से चर्चा की गई। आरएसपी चीफ के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से युवाओं को केंद्र में रखते हैं, इसका भी जिक्र बीजेपी अध्यक्ष ने किया।

0: अब मुंबई मेट्रो में हम बात करेंगे अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और उसके बाद जो हंगामा देखने को मिल रहा है उसके बारे में। आज आरे इलाके में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई एक दरगाह को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि इसे दो बार अतिक्रमण करने की वजह से गिराया जा चुका था, लेकिन जमीन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं उसे ऐसे समझिए कि आरे पुलिस स्टेशन से महज 400 मीटर की दूरी पर तीसरी बार दरगाह की आड़ में अवैध निर्माण किया गया था।
1: मुंबई के आरे इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत इस दरगाह को जमींदोज कर दिया। आरोप है कि दरगाह की आड़ में लगभग 70,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके दरगाह को बनाया गया था।
2: बांद्रा के गरीब नगर के डिमोलिशन के बाद प्रशासन काफी जगहों पर इस वक्त डिमोलिशन कार्रवाई कर रहा है। बरसात के ठीक शुरू होने के पहले ये कार्रवाई सारी अंजाम दी जा रही है। इस वक्त हम है आरे के इलाके में, आरे जो एक सबब मुंबई का सबब है, और यहाँ पर आप देख लीजिए जिस तरीके से एक दरगाह बना हुआ था, काफी बरसों से ये दरगाह यहाँ पर था और उसको डिमोलिश करने की ये फिलहाल कार्रवाई चल रही है। और पिछले कुछ दिनों में जैसे हम पुलिस अधिकारियों से भी बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना, अभी कुछ दिन पहले ही कल ही एक दिनदोशी इलाके में एक मंदिर जो अवैध तरीके से बना था उस पर भी डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। वहीं ये दरगाह पिछले कई दशकों से दरअसल था, लेकिन जो पुलिस कहना है, जो आरए प्रशासन है उसका कहना है कि ये सारी सरकारी जमीन है और उस पर अवैध तरीके से ये बना हुआ था और इसी वजह से ये तोड़ा कार्रवाई की गई है।
1: हैरानी की बात है कि बरकत अली शाह बाबा की ये दरगाह आरए पुलिस स्टेशन से महज 400 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से बनी थी। इसे पहले साल 2017 और फिर 2018 में भी इसे गिराया गया था, लेकिन इसे जब दोबारा बनाया गया तो दरगाह के नाम पर पहले से कई गुना बड़ी जगह पर कब्जा कर लिया गया।
3: यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि जो एक ट्रस्ट बनी थी, एक वानखेड़े करके एक है और उनके साथ तीन और भी ट्रस्टी है, उन्होंने ट्रस्ट बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाया था। वो एक्चुअली अतिक्रमण ही था, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई कर दिए, उनको नोटिस भी दे दी थी, सफिशियंट उनको टाइम दिया था, उसके बाद भी उन्होंने वो डिमोलिश नहीं किया, निकाल कर नहीं गई, इसलिए पुलिस को बंदोबस्त मांगा था और वहाँ पर हमने बंदोबस्त दिया है और डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही, खत्म होगी। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शासकीय वसाहत पर अतिक्रमण किया हुआ था कि जिन लोगों ने किया हुआ था उन लोगों की वो जगह नहीं थी, तो वो ताबे में जगह ले रही
4: है। क्या ये कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है?
3: लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कोई इशू धार्मिक
5: स्ट्रक्चर है? कितने लोग हैं यहाँ पे जो आपको
3: नहीं, डिमोलिशन का काम करने के लिए उनको जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार जितनी व्यवस्था करनी चाहिए उतनी उन्होंने व्यवस्था की है।
1: आरे महाराष्ट्र सरकार का एक डेयरी विकास प्रोजेक्ट है जहां भैंसों के कई तबेले और घास के मैदान मौजूद हैं। इसे मुंबई का ग्रीन लंग कहा जाता है।
2: इस वक्त हम आरे के इलाके में हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारी पुलिस खड़ी है और यहाँ तक ये जो लोग हैं, पुलिस बंदोबस्त इस तरह का है कि लोग जो हैं उनको तक जाने नहीं दे रहे। आप कहाँ पे रहते हैं?
6: 32 नंबर,
2: यहीं पर जहाँ पे दरगाह है वहीं पर।
6: दरगाह में नहीं रहता हूँ, तबेले में जहाँ दूध निकलता है वहाँ रहता है, यही रास्ते में।
2: तो यहाँ पे लेकिन आपको जाने नहीं दे रहे?
6: हाँ, जाने नहीं दे रहा है।
2: क्या बोल रहे हैं?
6: बोलते हैं नहीं उधर से जाओ, ऐसा करो वैसा करो, भी क्या बोलो,
2: नहीं जाने
6: दे रहे।
2: आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे?
6: नहीं, उम्र के लिहाज नहीं कर रहे हैं।
2: ये बताइए दरगाह और आप लोग यहाँ पे कब से है, दरगाह कब से है यहाँ?
6: दरगाह देखो मैं 20 साल इधर हो गया, तो उसके पहले भी है,
2: उसके पहले से ये दरगाह
6: है। हाँ,
2: तमाम दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, वो रहते वहीं पर हैं, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा कड़ी बंदोबस्त है दरगाह के डिमोलिशन के दौरान, तो हालांकि इनका घर जो एक तबेले में ही है वो है दरगाह के आगे, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा इनको।
1: बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस साल अप्रैल में इस दरगाह का दौरा किया था और इसे हटाने की मांग की थी ताकि सरकारी जमीन का सही इस्तेमाल किया जा सके। सोमैया ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ा एक लैंड माफिया धर्म की आड़ में शहर की कीमती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने डेयरी विकास बोर्ड को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने अधिकारियों से दरगाह वाली जमीन को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। आरए प्रशासन ने दरगाह से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया था और इसके ट्रस्टियों को दरगाह की वैधता साबित करने के लिए कुछ समय दिया था। हालांकि ना तो ट्रस्टी दरगाह की वैधता साबित कर पाए और ना ही उसने इसे खुद से हटाया, इसीलिए आरए प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।
7: 400 धार्मिक अधार्मिक जितने भी है, इल्लीगल अतिक्रमण यहाँ पे 400 से ज्यादा है। आप अगर वाकई के अंदर कायदे कानून का पालन सुन नहीं
1: रहे। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM नेता वारिस पठान बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस से कार्रवाई रोकने की मांग की।
7: खाली एक पे कार्रवाई करने से तो फायदा नहीं होने वाला, खाली एक पे कार्रवाई करना बोले तो
8: 7-12 के उतारे मांगे जा रहे हैं या किसी धार्मिक स्थल 7-12 का उतारा हमको पेश करो।
7: नहीं है किसी, आप मेरे को बता दूंगा 400 यहाँ पे मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ के पूरे जो लोग हैं स्थानिक लोग, देखो यहाँ सब जमा है, सबका ये बोलना है कि यहाँ पे 400 से ज्यादा धार्मिक स्थल है जिसके पास बताओ 7-12 का उतारा है क्या, रजिस्ट्रेशन है क्या, डॉक्यूमेंट है क्या, अगर नहीं है उनका क्यों आप नहीं तोड़ते हो? कायदा कानून देखे संविधान क्या बोलता है, इक्वालिटी, कानून सबके लिए बराबर है। चौहान साहब, कानून मेरे लिए है तो कानून आपके लिए भी वही है, लेकिन आप कानून के ऊपर जाके खाली मुसलमान के धार्मिक स्थल को तोड़ेंगे? एक 70 साल से ज्यादा की दरगाह थी, बोलो 70 साल पुरानी दरगाह आप लोग ने तोड़ दिया। पिछली मरतबा आरए के सीईओ ने हमको बोला था कि ठीक है आश्वासन कुछ नहीं करेंगे, आपने नोटिस दिया ईद के एक दिन पहले जब लोग बकरी ईद में बिजी थे, आप नोटिस दिया, कल पिटीशन डाला है लोगों ने, आज बोलता हियरिंग के लिए रखने वाले थे 2 बजे, आपने आके सुबह में दे तोड़ दिया। अब ये धानली दादागिरी जुल्म नहीं है तो बताओ क्या? अरे पावर का मिसयूज है ये सर।
1: जेसीबी एक्शन के दौरान दंगा नियंत्रण पुलिस के जवान भी मोर्चे पर तैनात रहे जिससे किसी तरह की हिंसा या पथराव जैसी घटना न हो।
2: जो सीईओ हैं यहाँ के, जिन्होंने कार्रवाई करने के पहले नोटिस दी थी, नोटिस का कोई जवाब तरीके से नहीं मिला जिसकी वजह से ये थोड़ा कार्रवाई शुरू की गई है। सवेरे से हमने देखा कि दरगाह को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें का इस्तेमाल करते हुए काफी एकदम नेस्तनाबूत कर दिया गया है इस वक्त। और फिलहाल ये जो तोड़क कार्रवाई है उसमें ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसके अलावा तो मुंबई पुलिस के अलावा यहाँ पे रायड कंट्रोल पुलिस बड़ी तादाद में फिलहाल उनको तैनात किया गया है। कोशिश इनकी यही है कि कोई भी बाहर से न आए, किसी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग हमने देखा था गरीब नगर इलाके में हुआ था, वैसी इस तरह की कार्रवाई के दौरान यहाँ पर ना हो किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से तैनात किया गया है। लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में कोई तोड़ा कार्रवाई नहीं होती है बारिश के समय में, तो इसलिए बारिश के पहले काफी जगह पे जहां पे अवैध कंस्ट्रक्शंस होते हैं वहां पे ये इस तरह की डिमोलिशन की ड्राइव्स होते हैं। और हमने देखा कि कल एक इलीगली कंस्ट्रक्टेड यहीं डिंडोशी इलाके में पास के ही वहां पे एक मंदिर था अवैध तरीके से जो बना था, उसकी भी तोड़ा कार्रवाई की गई थी। और आज इस तरह से दरगाह को पूरी तरीके से यहां पर डिमोलिश किया जा रहा है ताकि सरकारी जो जमीन है वो सरकारी इस्तेमाल के लिए वापस इसको लाया जा सके। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के 80 लाख लाभार्थियों के नाम कटने से सियासी हंगामा शुरू हो चुका है क्योंकि सरकार ने KYC के बाद जो महिलाएं पात्र नहीं है उन्हें हटने का दावा किया था। उन्होंने कहा था उन्हें उन लोगों को तो हटा दिया गया है। अब विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार महिलाओं को धोखा दे रही है। आज सीएम फडणवीस को खुद विपक्ष के आरोपों पर सफाई देने के लिए आना पड़ा।
9: लाड़की बहन या लाडली बहन योजना हमने शुरू की, उसमें कुछ उसमें कंडीशंस थी। चूंकि वो कंडीशन पूरा करने के लिए लोगों के पास कागज पत्र जमा करने को समय नहीं था, इसलिए हमने अलाउ किया था कि जो बहनें सेल्फ सर्टिफिकेशन करके कहेगी कि हम इन कंडीशन को पूरा करते हैं उनको ये पैसा मिलेगा। उसके बाद वो पैसा देना हमने शुरू किया। पर आप जानते हैं कि जो सरकार का पैसा होता है उसमें सीएजी का ऑडिट होता है और कोई भी सीएजी का ऑडिट जो होता है उसमें से लाभार्थी कंडीशंस पूरे करते हैं कि नहीं इसका वेरिफिकेशन आपको करके सीएजी को देना पड़ता है, इसलिए उसके बाद हमने वेरिफिकेशन शुरू किया। इस वेरिफिकेशन में कई प्रकार की एनोमलीज ध्यान में आई, मसलन 10 लाख हमको ऐसी महिलाएं उसमें मिली कि जो हमने ये कहा था कि 2.5 लाख जिनको मिलते हैं उससे ऊपर, अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी का उत्पन्न हो तो उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो 10 लाख ऐसी हमारी बहनें थी कि जिनका जो वार्षिक उत्पन्न था ये 2.5 लाख से ऊपर था। 5 लाख ऐसी बहनें थी कि जिनके घर में सरकारी नौकरी थी। 14,000 तो पुरुषों ने ही उसमें अप्लाई किया था। हमने इनकम टैक्स का डेटा लिया, हमने परिवहन का डेटा लिया। इन सारे डेटा के साथ यह एक घर में दो बहनों को देना चाहिए था, तो हमने जो हमारा रेशन कार्ड का डेटा है उस डेटा को भी इस डेटा बेस के साथ रन किया। इसमें जो जो लोग वॉयलेट कर रहे थे, जो जो लोग कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे, उनको हमने अब रोक दिया है। साथ साथ हमने केवाईसी करने को कहा था, 9 महीने तक लगातार हम लोगों ने नोटिसेस भेजी, लगातार कहा, एक्सटेंशन दिया, फिर भी जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कंडीशंस में वो नहीं बैठते। इसलिए ऐसे लोगों का अभी जो हम लोग उनको पैसा देते तो हमने बंद किया है। उनमें से कोई अगर आगे भी केवाईसी करेगा तो हम उसको पैसा देंगे, लेकिन अब इसको हमने इस पर फ्रीज किया है। और साथ साथ ये भी फैसला किया है, इनमें से किसी के भी पैसे वापस हम वसूलेंगे नहीं। केवल जो पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर पैसा लिया है वो वसूला जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, 1,70,00,000 महिलाओं की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, उनको पैसा मिलते ही रहेगा, योजना कभी बंद नहीं होगी। और आज भी देश में अलग अलग राज्य जो योजनाएं चला रहे हैं उसमें आज भी सबसे बड़ी योजना ये महाराष्ट्र की योजना है और ये चलते रहे।
0: आज महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत वाली खबर आई है, क्योंकि फडणवीस कैबिनेट ने मानसून से पहले किसानों को 2,00,000 तक की फसली कर्ज माफी को मंजूरी दे दी है। इस राहत से महाराष्ट्र के करीब 56,00,000 किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। 36,585 करोड़ के इस राहत पैकेज से 65,00,000 से ज्यादा कर्ज खाते साफ हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने उन अनुशासित किसानों को इनाम देने का भी फैसला किया है जो अपने बिल समय पर चुकाते रहे हैं। अब उन्हें नियमित भुगतान के लिए 50,000 तक का प्रोत्साहन बोनस भी दिया जाएगा। किसान नेताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है।
9: शेतकरी कर्जमाफीचा विषय कॅबिनेटला आहे, मंत्रिमंडळ त्याच्यावर निर्णय घेईल, पण आम्हाला इलेक्शन कमिशननी अट टाकली आहे। जेव्हा आम्ही त्यांना परवानगी मागितली तसंनी अट टाकली आहे की तुम्ही विषय मंजूर करून पुढची कारवाई करा, पण त्याची घोषणा तुम्हाला करता येणार नाही। त्यामुळे आम्ही आज अधिकृत घोषणा इलेक्शन कमिशनमुळे करू शकत नाही। आज आम्ही निर्णय घेऊ, निर्णयाप्रमाणे कारवाई सुरू करू, इलेक्शन संपल्यानंतर त्याची घोषणा करू। घोषणा ही तर मला असं वाटतं औपचारिकता आहे, आज आम्ही निर्णयच करतोय, त्याचा निर्णय आम्ही आज करतोय, पण काय निर्णय घेतो आहोत याची घोषणा आम्हाला करता येणार नाही।
10: किसान सभा और बाकी किसान संगठनों के आंदोलन के चलते आखिर आज महाराष्ट्र के सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के बैठक में किसानों के कर्जा माफी का निर्णय लिया है। इस निर्णय का महाराष्ट्र किसान सभा की ओर से मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये निर्णय के साथ उसमें किस प्रकार की शर्तें रहेगी, किस किसान को कर्जा माफी दी जाएगी, कितनी रकम की दी जाएगी और किन्हें इससे दूर रखा जाएगा, इसके बारे में बताने से सरकार बच रही है, उसके लिए आचार संहिता का बहाना बनाया जा रहा है। हम किसान सभा की ओर से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की अपारदर्शकता इस निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन को बाधा पहुंचाएगी, किसानों के लिए ये बहुत खतरनाक बात होगी।
11: तो अब देखना यह होगा कि मानसून से पहले मिली ये बड़ी राहत क्या सही मायने में किसानों तक पहुंच पाती है या फिर नियमों और शर्तों के फेरे में फंसकर रह जाती है। किसान सभा ने दी हुई चेतावनी के बाद अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है कि चुनावी आचार संहिता के बाद कितनी पारदर्शिता के साथ सरकार ये योजना जमीन पर उतारती है। कैमरा पर्सन सिद्धेश अजगावकर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीद लिया है। फडणवीस सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से बेहद मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग को 1,601 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब राज्य सरकार की योजना कई सरकारी दफ्तरों को इसी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की है।
12: अब एयर इंडिया बिल्डिंग नरीमन पॉइंट मुंबई में जो 23 माले का स्ट्रक्चर है वो महाराष्ट्र सरकार का हो चुका है। इस वक्त हम जिस रोड पर खड़े हैं नरीमन पॉइंट का, वो रोड महाराष्ट्र के मंत्रालय की तरफ जाता है। इस मंत्रालय में एक एनेक्स बिल्डिंग है, उसके साथ साथ 8 माले की एक नई बिल्डिंग जो है उस तरफ आप कह सकते हैं कि बन रही है, लेकिन फिर भी जो महाराष्ट्र सरकार का कामकाज है, उनके ऑफिसेज हैं, उसके लिए जगह कम पड़ रही थी। और इसीलिए जब एयर इंडिया होल्डिंग्स ने इस बिल्डिंग को बेचने का फैसला किया तो उसमें एक बिडर महाराष्ट्र सरकार थी। हालांकि उस समय पर तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का ऑफर था और आज के समय में 1600 करोड़ रुपए दे करके ये रकम अदा करके आप कह सकते हैं कि एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से महाराष्ट्र सरकार ने ये बिल्डिंग को हासिल किया है। इस बिल्डिंग का आज एग्रीमेंट साइन हो चुका है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल्डिंग को आप कह सकते हैं ले लिया है। उसके आगे अब मुंबई में मंत्रालय के जो सरकारी ऑफिसेज रेंट पर लिए गए हैं, अलग अलग जगह पर शिफ्ट किए गए हैं, उन सभी ऑफिसेज को इस बिल्डिंग में लाया जाएगा। आपको
0: और अब एक और अहम खबर आपको बता दें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी ड्रग्स माफिया सलीम डोला पर ईडी का शिकंजा कसने लगा। ईडी ने मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। सलीम डोला की गिरफ्तारी तुर्की में हुई थी, जिसके बाद उसे

0: जिसे तुर्की से एक्सट्राडाइट कर लाया गया है पिछले महीने, उसके खिलाफ ईडी ने केस रजिस्टर कर ये कार्रवाई शुरू की है। सलीम डोला फिलहाल जेल में है, उससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट किया था। इसके अलावा उस पर मुंबई क्राइम ब्रांच के केसेस हैं और अब ईडी का केस भी रजिस्टर हो गया है। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है और एक बड़ा ड्रग तस्कर है, जिसकी ड्रग तस्करी वो मुंबई से करता था और मुंबई से अपनी गैंग चलाता था और मुंबई से ही पूरे देश में मेफेड्रॉन नाम का ड्रग वो सप्लाई किया करता था। वो देश छोड़कर भाग गया था, तुर्की में छुपा हुआ था, वहां पर इंटरपोल की मदद से तुर्की पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उसके बाद उसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। भारत में लाने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। ईडी की इस कार्रवाई के बारे में बता दें तो ईडी का टारगेट ये रहा कि जो ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल खास तौर इस्तेमाल होते हैं, वो केमिकल कहां से सप्लाई होते थे, उन कंपनियों पर राजकोट, अंकलेश्वर और अन्य इलाकों में सर्च ऑपरेशन की गई है। इसके अलावा जो सीए सलीम डोला की मदद करते थे पैसा हवाला करने के लिए, उसके जो गैंग के लोग हैं उन तक पैसा पहुंचाने के लिए, उसके जो सप्लायर हैं उनके पास पैसा पहुंचाने के लिए, उन पर सर्च की गई है। इसके अलावा जो हवाला ऑपरेटर्स थे उनको भी पकड़ा गया है। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां मिली है जो कि सिर्फ भारत में नहीं दुबई में भी हैं। सलीम डोला की दुबई की प्रॉपर्टीज भी ट्रेस हो गई हैं ईडी की इस सर्च में, और आगे भी ऑपरेशन ईडी की जारी रहेगी। ईडी की सर्च जारी है और आगे भी बढ़ सकती है। आपको
1: रियल लाइफ की दुश्मनी जब रील पर उतरती है तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की तनातनी अक्सर ही सुर्खियों में बनी रही है, लेकिन अब एक और नई जंग शुरू हुई है सलमान खान और काला हिरण नाम की फिल्म बनाने वाले निर्माता के बीच। देखिए ये पूरा का पूरा मामला है क्या।
2: सारे विवाद की जड़ ये पोस्टर है। जैसे ही ये पोस्टर आया और मालूम चला कि काला हिरण के नाम से एक फिल्म बन रही है, उसने मुंबई में सलमान के दफ्तर में खलबली मचा दी। सलमान खान की लीगल टीम ने काला हिरण के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को फिल्म को लेकर एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के जरिए मेकर्स से फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है।
3: हमने सलमान खान को ना इसमें जो है गलत तरीके से दिखाया है, ना हमने उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। वो जो है पूरा मामला वो पूरा जो है पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं सलमान खान ब्लैक बक, सलमान खान एक ही बात है। तो ऐसे में लीगल नोटिस भेजना, पोस्टर जारी होने पे मुझे लगता है बहुत जो है ये छोटी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोस्टर ही जारी हुआ है, अभी फिल्म का ट्रेलर भी नहीं आया है, 20 जून को आएगा वो, और एकदम से जो है लीगल नोटिस भेजना बिना बातचीत के, यानी कि कोर्ट में ही मिलना चाहते हैं भाई साहब।
2: रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामे से लेकर सलमान खान की गिरफ्तारी और बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टकराव की पूरी कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा संभल, मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में शूट किया गया है।
3: देखिए 1998 में काकानी गांव है जो जोधपुर का, उसमें हिरण शिकार की घटना हुई। सलमान खान, सैफ अली खान सब नामजद हुए तब्बू से लेके और सोनाली बेंद्रे तक। उसमें सलमान खान को जेल जाना पड़ा, 3 बार जेल गए, 2 बार सजा हुई, 1 बार सजा हुई लोअर कोर्ट से, दोबारा हुई सेशन कोर्ट से। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि साहब मैं तो बरी हो गया हूं और आप मेरे विषय पे फिल्म नहीं बना सकते। यहाँ कितने कोर्टरूम ड्रामे बने हैं जिसमें हमने भट्टा पारसोल से लेके बाकी सब पे जीत की फिल्म के जरिए दिखाई है। यहाँ अजमल का साहब के 26/11 फिल्म बनी है, यहाँ पे भगत सिंह की फांसी फिल्म बनती है, जितने रियल इंसिडेंट है अभी हमने धुरंधर में देखा कि नोटबंदी दिखाई गई है और अतीक अहमद का हमने पूरा काला चिट्ठा उसमें दिखाया है। तो तमाम चीजें जो है फिल्मों में दिखती हैं। तो सलमान खान को अछूत थोड़ी है कि हम उनकी जिस घटना में नामजदगी है उस घटना को पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। तो ये कोर्टरूम ड्रामा भी है, जो संघर्ष था बिश्नोईयों का, जो लड़े वो पूरे स्टारडम से, पूरे बॉलीवुड से, और वहां पे हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से वकील आते थे, उनके पास प्रिया स्कूटर वाले वकील थे, वो गरीब लोग थे, उनके घर में अभाव था और ये करोड़ों रुपए रिश्वत की पेशकश करते थे इनके लोग, उसके बावजूद भी ना कोई बिश्नोई बिका ना रुका ना झुका।
2: इसी महीने की 20 तारीख को फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब सलमान के कानूनी नोटिस का इस रिलीज पर भी असर पड़ सकता है आज तक।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Better internet?

0: Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में बगावत की आग ने सियासत गर्मा दी है। संभाजी नगर जालना चुनाव क्षेत्र में शिवसेना से बागी अब्दुल सत्तार ने बीजेपी को चुनौती दी है, जिस पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने पलटवार किया है।
4: महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले बगावत की आग ने महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा दिया है और ये बगावत देखने मिल रही है एकनाथ शिंदे के शिवसेना पार्टी से। हम बात करें अगर संभाजीनगर जालना कॉन्स्टिट्युएंसी की, तो वहां पर एकनाथ शिंदे के पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री, उन्होंने अपने बेटे को बागी उम्मीदवार कर उतारा है। वहीं से बीजेपी के आला नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बगावत को अब ठंडा कैसे करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं अब्दुल सत्तार, जिन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि बीजेपी शिवसेना की मुंडी काट रही है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी को खत्म किया बीजेपी ने, उसी तरह वो शिवसेना को भी महाराष्ट्र में खत्म करेगी।
5: देखिए, एक तो ये चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि बगावत होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, 4 तारीख को विड्रॉ है। तीनों पार्टियों के नेता ने एक साथ बैठ के तय किया है कि कौन सी सीट कौन से पार्टी के खाते में जाएगी, और सोच समझकर पार्टी के नेताओं ने यह फैसला लिया है। अब उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था टिकट, नहीं मिला तो थोड़ा नाराज हो गए, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। लेकिन मीटिंग में यह तय हुआ था कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता नाराज होगा, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने की जिम्मेदारी उस पार्टी के नेता की है। और मुझे ऐसा लगता है कि विड्रॉल 4 तारीख को है, जहां जहां पर बगावत हो रही है वहां पर जो कार्यकर्ता है उनके संपर्क में तीनों पार्टियों के नेता है, और उनको बुलाएंगे, समझाएंगे, और 4 तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि विड्रॉल करेंगे जिन्होंने बगावत की है। वो आज उनको हम बगावत नहीं मानते।
3: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हों बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। Presented by

0: शिवेंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का प्रदर्शन, कहा जब तक इन्हें हटाऊंगी नहीं तब तक नहीं मरूंगी। टीएमसी के बागियों पर बोली ममता बनर्जी, सबको सन्मति दे भगवान। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बागियों पर वार, कहा ममता पर करें भरोसा, उन्हीं के भरोसे जीते थे चुनाव। टीएमसी निष्कासित ऋतुव्रत बनर्जी ने साधा अभिषेक बनर्जी पर निशाना, कहा उन्हीं की वजह से पार्टी की यह हालत हो गई है। टीएमसी में गहराए टूट का खतरा, निष्कासित विधायकों को कई और टीएमसी विधायकों ने की है मुलाकात। आसनसोल के बंडपुर में टीएमसी के पूर्व पार्षद के दफ्तर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण का आरोप था। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी गर्जा बुलडोजर, टीएमसी से जुड़े ट्रेड यूनियन का दफ्तर ढहाया गया। आसनसोल में वार्ड नंबर 87 से टीएमसी के पार्षद की गिरफ्तारी, घर में सरकारी तिरपाल रखने के आरोप। दक्षिण 24 परगना में कटपनी लौटाते दिखे टीएमसी के नेता, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के लिए लिए थे 5,000 रुपए। कोलकाता के टीएमसी छात्र विंग यूनियन के कमरे में दीमक खाए नोट बरामद किए गए, बीजेपी ने लगाया आरोप, करीब 1 करोड़ तक की हो सकती है राशि। सीबीएसई मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, चेयरमैन और सचिव का तबादला। प्रधानमंत्री के दखल के बाद ओएसएम केस में लिया गया एक्शन, कमेटी करेगी मामले की जांच। राहुल गांधी ने सरकार को किया हमला, कहा अधिकारियों को हटाया, असली जिम्मेदार मंत्री सुरक्षित। सरकार के एक्शन पर विपक्ष ने खड़े किए सवाल, केजरीवाल का ट्वीट, ये सजा है बचाव। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा, 8 जून को होगी सुनवाई। सीबीएसई के सिस्टम पर फिर से खड़े हुए हैं सवाल, पोर्टेबल साइबर अटैक। 10 घंटे के बाद खुला सीबीएसई का री इवेल्युएशन पोर्टल, 2 मिनट में 15 लाख हिट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में कोर्ट सख्त हुआ, आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई रिमांड 5 दिन बढ़ाई गई। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, सीबीआई का दावा पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक पहुंचना जरूरी। नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी पर कार्रवाई का दबाव, नोटिस के बाद खुद तोड़ा अवैध निर्माण। योगी आदित्यनाथ ने अपराध को लेकर फिर किया अखिलेश पर तंज, बोले माफिया और मच्छर का किया सफाया।
1: इसकी बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: योगी आदित्यनाथ ने बदला फाजिल नगर का नाम, पावागढ़ होगा नया नाम। अखिलेश यादव ने अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, बोले अपराधियों को देखकर अंडरग्राउंड हुआ गृह मंत्रालय। लखनऊ में आज शाम सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। कर्नाटक में कांग्रेस में सियासी मंथन जारी है, शपथ से पहले दिल्ली में आलाकमान से मिले डीके और मंत्री। आज कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार, शाम 4 बजे होगी शपथ। तमिलनाडु में अन्नामलाई के बगावती संकेत, दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। अमृतसर में स्कूल फीस के दबाव में परेशान 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, अस्पताल में दम तोड़ा। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, पंजाब शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूल के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार में राबड़ी देवी को बंगले को लेकर घमासान जारी, सम्राट चौधरी बोले हर कीमत पर खाली करना होगा बंगला। सम्राट चौधरी ने कहा कानून सबके लिए समान है, मैं भी सीएम से हटने के बाद झोला उठाकर चला जाऊंगा।
2: सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा।
0: आज बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। बिहार में मदरसों की जांच के आदेश, राज्य सरकार के फैसले पर सियासत तेज हुई। गाजियाबाद के कोड़ा में दूसरे दिन में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, संदिग्ध घरों की पहचान, लोगों से पूछताछ। गाजियाबाद में सील किया गया मदरसा, अवैध तौर पर चलाने के आरोप हैं। कोड़ा में कुछ और अवैध मदरसों को किया गया है चिन्हित, जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के कोड़ा में पुलिस ने कराई हिस्ट्री टीचर्स की परेड, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे आरोपी। आरोपी ने पुलिस के सामने शपथ ली थी कानून का सम्मान करेंगे, नहीं करेंगे अपराध। पेशा मामले में पति और सास की सीबीआई कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सीबीआई ने नहीं मांगी रिमांड, जरूरत पड़ने पर पूछताछ कर सकती है। भोपाल की सेंट्रल जेल भेजे गए पति और सास, अलग से जेल में रखा जाएगा। कोर्ट में त्रिशा की सास ने रखा अपना पक्ष, मीडिया ट्रायल को लेकर जताई आपत्ति। त्रिशा केस में गवाह की पिटाई का आरोप है, वीडियो जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, सड़कों पर सैलाब। बादल फटने के बाद किश्तवाड़ डोडा हाईवे पर हुआ प्रभावित, कई जगहों पर रास्ते जाम। बादल फटने के बाद लोगों का रेस्क्यू, जानमाल का नुकसान भारी हुआ। देहरादून में भारी बारिश और आंधी के बाद तबाही मची, कई जगहों पर गिरे हुए नजर आए पेड़। बेंगलुरु में भी बदला है मौसम का मिजाज, जबरदस्त बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। मुंबई के गोरेगांव में हजरत बरकत अली शाह की दरगाह पर गर्जा बुलडोजर, अवैध रूप से बनाने का आरोप। करीब 70,000 फीट की सरकारी जमीन पर बनाई गई थी दरगाह, एक्शन के बाद सुरक्षा चाक चौबंद। दरगाह गिराने के बाद महाराष्ट्र में गरमाई है सियासत, वारिस पठान ने सरकार पर साधा है निशाना। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रशासन को लिखा है खत, कहा मुंबई में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। किसानों को महाराष्ट्र सरकार की बड़ी सौगात, 2 लाख की फसली कर्ज माफी को मंजूरी दी गई। चेन्नई में 23 साल के युवक की हत्या, गांजा बिक्री का विरोध करने पर युवक को उतार दिया गया मौत के घाट। सुल्तानपुर पुलिस के सामने चलते रहे लाठी डंडे, दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में बकरीद के दिन एसपी कार्यालय में बकरी की कुर्बानी करने के आरोप में एसपी जिला महासचिव नसीफ अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज, जांच शुरू। बिलासपुर में संकी आशिक ने लड़की का हाथ मांगा, पिता के मना करने पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी फुटेज वायरल। अलवर में दर्दनाक हादसा, 11,000 केवी लाइन का तार गिरा, बाइक सवार 2 लोग जिंदा जलकर मरे। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत, सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। गाजियाबाद में पीएम की सख्ती से भूमाफियाओं पर प्रहार, बुजुर्ग महिला को मिला अपना आशियाना। उत्तरकाशी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तीर्थयात्रियों का गुस्सा, यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों पर पूजा कराने के नाम पर आपसी विवाद के आरोप लगाए। उत्तराखंड बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर लापता नोएडा के इंजीनियर अभिषेक चौहान का 4th दिन भी कोई सुराग नहीं, एसडीआरएफ पुलिस लगातार कर रही है तलाश। राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है, लगातार 11वें दिन मंजाकोट सेक्टर के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ वृंदावन पहुंचे, संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। पूर्व क्रिकेटर्स साईराज को दी बीसीसीआई ने नई जिम्मेदारी, बनाया टीम इंडिया का नया स्पिन बॉलिंग कोच। कालेरन फिल्म पर कानूनी विवाद, सलमान खान की लीगल टीम ने भेजा है नोटिस, रिलीज रोकने की मांग की गई। कालेरन फिल्म की शूटिंग संभल और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई है, जबकि इसके निर्माता अनिल जानी यूपी से हैं। कालेरन विवाद पर अमित जानी का पलटवार, नोटिस का मकसद डराना है, ग्लैमर के आगे हम झुकेंगे नहीं। इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का धमाल, एक्शन क्राइम और फैमिली ड्रामे का मिलेगा फुल डोज, रिलीज होगी गुल्लक, धुरंधर और मां बहन। तमिल सिनेमा के अभिनेता सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है करप्पू, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है गोल्ड, मोहनलाल की दृश्यम 3 रिलीज के 12 दिनों के भीतर 100 करोड़ से ज्यादा कमाए। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज राख का ट्रेलर रिलीज किया गया, वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली ब्रिंदे और साथ ही अभिनेता अली फजल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। खतरों के खिलाड़ी 15 का पहला बीटीएस प्रोमो जारी किया गया, धमाकेदार एक्शन में नजर आए रोहित शेट्टी, टीवी पर जल्द लौटने वाला है स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी 15। लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई से भड़का है ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी गई। बढ़ते हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच वॉशिंगटन डीसी में इसराइल और लेबनान के राजदूतों ने मुलाकात की, बैठक में सीमा क्षेत्र की स्थिति को और सुरक्षा को लेकर चर्चा। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, ईरानी शासन की नींव हो चुकी है कमजोर, उनका पतन अब तय है। कट्टर यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा में भर्ती को लेकर यरूशलम में हुआ हिंसक विरोध प्रदर्शन। यूक्रेनी राजधानी कीव समेत डनिप्रो पर रूस का बड़ा हमला, मंगलवार को हुए हमले में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई। डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मेटे लगा 3री बार बनी देश की प्रधानमंत्री। अमेरिका के राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार में दर्ज की गई भारी गिरावट, जनवरी 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रणनीति पेट्रोलियम भंडार। रन के स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार है, ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने की अश्लील सामग्री को सीमित करने की पहल। लंदन में मेट्रो ट्रेन चालकों की हड़ताल से बढ़ गई है यात्रियों की मुश्किलें, काम के घंटों में बदलाव के प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल की। यूरोप में भयंकर गर्मी, संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने कहा है कि आने वाले महीनों में अल नीनो के असर से दुनिया भर में भीषण गर्मी रहेगी।

0: बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको अपराधियों के दिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ दिखाएंगे। गाजियाबाद के खोड़ा में जब एक हिंदू लड़के की हत्या हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर जो गुस्सा दिखाया, इसके बाद अपराधियों में ऐसा डर बैठा कि आज खोड़ा थाने का नजारा ही बदल गया। जो हिस्ट्री शीटर कभी इलाके में खौफ का दूसरा नाम थे, आज वो खुद हाथों में तख्तियां लेकर हाथ जोड़कर थाने पहुंचे। तख्तियों पर क्या लिखा था? योगी जी हमें क्षमा कर दो, अब कभी अपराध नहीं करेंगे। और इसके बाद आपको आज तक की खबर का बड़ा असर दिखाएंगे। सीबीएसई मामले में प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर हुआ। ये बात पहले दिन से तय थी कि अगर छात्रों की कॉपियां जांचने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग का डिजिटल सिस्टम आया तो इसके पीछे किसी का दिमाग जरूर था। किसी ने तो इस लापरवाही को मंजूरी दी थी, किसी ने तो जल्दबाजी में बिना ओएसएम सिस्टम की जांच किए टेंडर के तमाम पैरामीटर्स को बदला था ताकि वो कोएम्प को मिले, और इन सब के बीच तैयारी ना होने की वजह से छात्रों को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम बार बार पूछ रहे थे कि लाखों बच्चों के भविष्य से हुई इस गड़बड़ी पर चेयरमैन की जवाबदेही, अधिकारियों की जवाबदेही, मंत्रालय की जवाबदेही कब तय होगी, और आखिरकार आज पहला कदम उठाया गया है। आज तक की खबर के बाद सीबीएसई के चेयरमैन नप गए हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती अब दुश्मनी में बदलने वाली है। आज सबसे बड़ा खुलासा उस सीक्रेट फोन कॉल का करेंगे जिसमें वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मच गया है। आज आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर एहसान फरामोश क्यों कहा, और लेबनान पर इसराइल के हमलों ने कैसे अमेरिका और ईरान की महाडील को कूड़ेदान में डाल दिया है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट के युद्ध ने दुनिया को एक नया सबक सिखा दिया है। आज के दौर में जंग वही जीतेगा जिसके पास होंगे दो सबसे बड़े हथियार, पहला अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा पलक झपकते ही तबाही मचाने वाले आत्मघाती ड्रोन्स। भविष्य की इसी चुनौती को भांपकर अब भारत ने भी अपनी ड्रोन्स की फौज तैयार करनी शुरू कर दी है। आज आपको सरहद पर हिंदुस्तान की ताकत बनने आ रहे इन नए आत्मघाती ड्रोन्स के बारे में बताएंगे। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी राज्य को अपराध मुक्त बनाने का मॉडल कैसा होना चाहिए। एक मॉडल वो है जिसमें अपराधियों को सरकारें संरक्षण देती हैं, उनको पार्टियां टिकट देती हैं, उन्हें विधायक बनाती हैं, सांसद बनाती हैं, चुनाव लड़वाया जाता है, और जब कभी अपराध बढ़ता है तो सांठगांठ करके इन माफियाओं पर दिखावटी कार्रवाई कर दी जाती है, जिसमें गिरफ्तार होने के बाद जेल को इन अपराधियों के लिए होटल में बदल दिया जाता है। आपने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे होंगे, यहां तक कि इस देश में जेल में बंद लोगों को भी टिकट मिलता है पार्टियों की तरफ से, वो चुनाव लड़ते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। एक दूसरा मॉडल है जिसमें माफिया को संरक्षण नहीं गोली मिलती है, और जिसमें अपराध रोकने के लिए अपराधियों को सांसद और विधायक नहीं बनाया जाता बल्कि उन्हें ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, उन्हें खत्म किया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि वो राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए दूसरे मॉडल पर काम कर रही है, और इन तस्वीरों को इस योगी मॉडल का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आई हैं, जहां 28 मई को 5 लोगों ने बकरीद के मौके पर एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया। इसके बाद खोड़ा के सभी हिस्ट्री शीटर अपराधियों के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य करा दिया गया। सत्यापन का मतलब यह होता है कि इन अपराधियों को पुलिस के पास जाना है, थाने में यह बताना है कि अब ये क्या करते हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, अब भविष्य में ये कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। अब इस आदेश का खोड़ा के हिस्ट्री शीटर अपराधियों में ऐसा डर है कि आज वो स्थानीय पुलिस थाने में कुछ तख्तियां लेकर आए। जानते हैं इन तख्तियों पर क्या लिखा था? इन पर लिखा था, योगी जी हमें क्षमा करें, ना तो अब हम कोई अपराध करते हैं और ना ही भविष्य में कोई अपराध करेंगे। कुछ अपराधियों ने यह भी लिखा था कि हम कसम खाते हैं कि हमेशा कानून का पालन करेंगे और कभी किसी अपराध को अंजाम नहीं देंगे। ये देखिए, अभी कोई मामूली बात नहीं है। माना जाता है कि पुलिस थाने में अक्सर पीड़ित ही हाथ जोड़ते नजर आते हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतने हिस्ट्री शीटर्स अपराधी एक साथ पुलिस थाने में हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि वो भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। देखिए,
1: क्राइम ऑफ़
0: हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अपराधियों को मिटाने का ये योगी मॉडल पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से गलत है, इस पर हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। इसकी विवेचना तो आप लोग करेंगे, क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आती हैं तो अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसा सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन ये तमाम ऐसे बीसीज हैं जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं, जो थाने में जिनका नाम दर्ज होता है, ये उन पर सत्यापन कराना जरूरी बताया गया और उनको इसीलिए गाजियाबाद में यहाँ पर थाने में आना पड़ा और फिर उन्होंने ये सब कराया। इसीलिए हम बहस में इसमें बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते, लेकिन हम इतना जरूर पूछेंगे कि क्या इससे पहले आपने इन अपराधियों को कि अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाते हुए देखा था? क्या अपराधियों ने कभी ऐसी शपथ ली थी? हमारे देश में राजनीति से इतर सबसे बड़ा सच ये है कि आज भी लोग पुलिस थानों में जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस शायद उन्हें इंसाफ नहीं दिलाएगी। बड़े बड़े अपराधी पहुंच से आसानी से छूट जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपराधियों के टूटते हौसलों की मिसाल है और इनसे देश में आम लोगों को आज सुकून जरूर मिल रहा होगा। आज कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अब उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों को खत्म कर दिया।
1: हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: हालांकि इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ये सवाल भी लगातार पूछ रही है कि क्या ये मॉडल सिर्फ मुसलमानों के लिए है? आज गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक मदरसे को सील कर दिया गया जिसका नाम है रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम। सरकार का कहना है कि यह मदरसा गैर कानूनी है और इसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि अगर ये मदरसा अवैध था तो पहले सरकार ने इसे सील क्यों नहीं किया, और क्या अब ऐसा करके उस हिंदू परिवार की नाराजगी कम की जा रही है जिससे 17 साल के बेटे, नाबालिग बेटे को पांच मुस्लिम लड़कों ने बकरीद के दिन ये कहकर मारा था कि तुमने बकरा हलाल होते देखा है।
2: तमाम अधिकारियों के पहुंचने के पहले ही एक सर्वे कराया गया था जिसमें गाजियाबाद प्रशासन की भी पूरी मदद ली गई थी, और इस सर्वे के दौरान पता चला कि 3 ऐसे मदरसे हैं जो जिन्हें मदरसा कल्याण बोर्ड से, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से उनको परमिशन ही नहीं थी। अवैध रूप से वो मदरसे जो है वो चलाए जा रहे थे, जिसके बाद अब तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और उन मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से सील किया जाएगा। उसके लिए भारी सुरक्षा यहाँ पे की गई है।
3: कागज मांगते हैं, हम कागज देते, ना देते तो सील लगा देते, दो लफ्जी बात ही।
2: तो आपसे नहीं मांगा
3: ना?
2: अच्छा, आप सारे डॉक्यूमेंट है आपके?
3: ये तो साहब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया,
4: हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब हम दिखाएंगे। अगर उन्होंने मांगा है, बस गलती ये है हमसे, अगर पहले मांगते हैं।
5: पूरे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास में।
2: अच्छा,
5: हाँ जी।
2: तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आगे कोर्ट?
5: मदरसा बंद चल रहा है, बच्चे अपने गाँव गए हुए हैं, छुट्टी में चल रहा है, उसके बाद में बैठ के बात कर लेंगे, दिखा देंगे डॉक्यूमेंट्स भी।
2: अभी आप लोगों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया? कहना है कि हमने जो है चेक किया तो जो मदरसा कल्याण बोर्ड है उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं।
5: नहीं नहीं, परमिशन किसी होगी? परमिशन है,
6: कमेटी
5: मेंबर आ जाएंगे, सारे छुट्टी में चल रहे हैं।
2: अच्छा,
5: कब की छुट्टी चल रही है? हाँ जी।
0: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि सीबीएसई मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा एक्शन लिया है। आज जो फैसला लिया गया है उसमें प्रधानमंत्री के दखल के बाद इस मामले में सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बात पहले दिन से कही जा रही है कि अगर सीबीएसई ने छात्रों की आंसर शीट्स को चेक करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग का नया डिजिटल सिस्टम अपनाया तो किसी ने तो इसके पीछे अपना दिमाग लगाया होगा। आखिर यह फैसला किसका था कि ओएसएम से इस बार जल्दबाजी में मार्किंग कराई जाएगी और इसे अपनी मंजूरी दी होगी किसी शख्स ने जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज शाम को यह कार्रवाई हुई, यह हमारी खबर का बड़ा असर है क्योंकि हम बार बार इस सवाल को पूछ रहे थे कि आखिर लाखों बच्चों की आंसर शीट्स को चेक करने में गड़बड़ी हुई तो सीबीएसई के चेयरमैन और जवाबदेह अधिकारी क्या कर रहे थे। देखिए, सीबीएसई की जिम्मेदारी में सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना जिन्होंने ये फैसला लिया होगा, जिन्होंने टेंडर में बदलाव किए हैं, है ना, ताकि इसको मिले जो कि फॉर्मली ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी कोएम्प्ट। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है रोहन जी?
7: बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल, वो कमिटी बैठी है और वो कमिटी बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट देगी। और कल प्रधान जी ने भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक होता है कि जो भी पैरामीटर्स है उसमें चेंज किया गया, अगर उसके पीछे इंटेंट है कि किसी को देने के लिए चेंज किया गया, किसी को बरका नहीं जाएगा, क्योंकि L1 पे देना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो भी टेंडर जाते हैं। हाँ, क्राइटेरिया चेंज किया गया, अगर उसके पीछे मलेशियस इंटेंट है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
0: हम तो ये भी लगातार कह रहे हैं कि अगर इस OSM की वजह से अब उस पोर्टल में बच्चे अपने पेपर्स का रिवैल्यूएशन नहीं करा पा रहे हैं तो फौरन ये फैसला लिया जाए कि उनकी मैनुअल चेकिंग होगी, तमाम टीचर्स को काम पर लगाया जाए और इन बच्चों के जितने पेपर्स हैं उनकी फौरन से फौरन मैनुअल चेकिंग करके उनको मार्क्स दिए जाएं ताकि वो जल्द से जल्द फिर अपने कॉलेज एडमिशन के लिए आगे बढ़े। इस पूरे मामले में उन लाखों बच्चों को इंसाफ मिलना जरूरी है। इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता एस राधा चौहान करेंगी। यहां बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि यह समिति परीक्षा के रिजल्ट की भी जांच करेगी, जबकि यह दावा सही नहीं है। इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता एस राधा चौहान करेंगी। यहां बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि यह समिति परीक्षा के रिजल्ट की भी जांच करेगी, जबकि यह दावा सही नहीं है। इस समिति को तीन बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पहला है पता लगाना कि सीबीएसई ने ओएसएम सिस्टम के लिए जिस कंपनी या एजेंसी को काम दिया क्या वो प्रक्रिया नियमों के मुताबिक थी। टेंडर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यह सामने आ रहा है और यह भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बल्कि छात्रों ने ही सामने उजागर किया है कि टेंडर में ऐसे अनेकों बदलाव किए गए जिसकी वजह से कोएम्प्ट को यह टेंडर मिला है। क्या टेंडर खरीद कॉन्ट्रैक्ट भुगतान की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और क्या किसी को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाया गया? सीबीएसई में इस साल से पहले तक ओएसएम सिस्टम नहीं हुआ करता था। पुराने सिस्टम में टीचर्स खुद आंसर शीट को चेक करते थे, खुद कॉपी पर नंबर लिखते थे और फिर इन नंबरों को अलग से कंप्यूटर के डेटा में फीड किया जाता था। लेकिन इस साल ये सिस्टम ये कहकर बदल दिया गया कि इससे नंबर जोड़ने में गलती होती है, कॉपियां कई बार खो जाती हैं। और ये सच भी है कि अगर आप डिजिटाइजेशन कर रहे हैं तो आपको आने वाले वक्त में ये करना पड़ेगा, लेकिन आपने तैयारी क्या की? क्या आनन फानन में ये ऐसा फैसला लिया गया जिससे अनेकों लाखों बच्चों के भविष्य को अधर में डाल दिया गया? कई बार छात्रों के आंसर शीट्स में सवालों का मूल्यांकन भी छूट जाता है जिसके कारण नया सिस्टम लाया गया। और इसमें क्या हो रहा है? ऑन स्क्रीन सिस्टम यानी ओएसएम, मार्क्स नहीं डल रहे हैं यहां पर कई सारे आंसर्स के। इसके तहत यह तय हुआ कि छात्रों की जो कॉपी है उसको सीधे चेक करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, मतलब बंडल के बंडल जो पहले आंसर शीट्स जाते थे फिजिकली वो नहीं जाएंगे, इसकी जगह उनको स्कैन किया जाएगा, उनकी डिजिटल इमेज बनाई जाएगी, फिर जिस डिजिटल पोर्टल पर ये कॉपियां अपलोड होंगी वहीं टीचर्स को इन्हें चेक करके ऑनलाइन ही नंबर देने होंगे। अब जब ये प्रक्रिया अपनाई गई तो कई छात्रों के डिजिटल आंसर शीट्स में अनेकों गड़बड़ियां आने लगी। पता चला कि जो सवाल चेक हुए हैं उनके आगे निशान तो लगा है लेकिन उन सवालों के नंबर ही नहीं है, मतलब मार्क्स ही नहीं दिए गए, रिजल्ट पूरी तरह गलत तैयार हुआ। आज मैंने इस पर सीबीएसई के छात्रों के साथ एक शो भी किया जिसमें एक छात्र ने लाइव, उसने, आजकल के बच्चे भी बहुत तेज हैं, उन्होंने पोर्टल को लॉगिन किया, पोर्टल से स्क्रीन शेयरिंग कर दी आज तक पर लाइव और फिर उन्होंने दिखाया कि पोर्टल पर उनको क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने अपना आंसर शीट हमें दिखाया और बताया कि कैसे ये सिस्टम उनके लिए फ्रॉड साबित हुआ है। देखिए,
8: क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर दिख रहा है,
0: ठीक है, हाँ,
8: इनफैक्ट लिख भी रखा है, टीचर ने पढ़ा तो हो गई, मैम टीचर ने मार्किंग कर रखी है क्वेश्चन नंबर वन के सेकंड पार्ट की, जबकि हम क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि 5 या 6 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स होते हैं जिसमें से 8 पार्ट 1-1 मार्क्स होते हैं, 2 पार्ट्स 2 मार्क्स के होते हैं, तो देन इससे इन्होंने तब भी ये चेक नहीं कर रखा जबकि ये सारा सही है. उसके अलावा अगर हम 8 क्वेश्चन पे हैं, 8 क्वेश्चन पे इन्होंने कर रखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट की मार्किंग, जबकि 8 क्वेश्चन है, मतलब पूरा ही अलग क्वेश्चन है तब भी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है. अब मैं मार्क्स ऑप्टेड में किसके मार्क्स डालू, ऊपर वाले के नीचे वाले के, और हम हर एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, रिवेल्यूशन सॉरी, और हम ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मैंने कार्ड कट कर रखा है तब भी चेक है,
0: काटा हुआ क्वेश्चन भी चेक है.
8: यस मैम. मैम इसमें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग है 10th पार्ट की, यहाँ पे सेकंड की शुरू हो गई, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की मार्किंग. मैम ये लेटर यहाँ से शुरू होता है 5th क्वेश्चन, इन्होंने कर रखे 7th क्वेश्चन की मार्किंग.
0: ये इंग्लिश का पेपर है ना आपका जिसमें लेटर भी होता है, फॉर्मल लेटर.
8: यस मैम. यस मैम. मैम पूरा बायोडाटा वाला है, मैं पूरा लिख रखा है, हर फॉर्मेट है, हर चीज लिख रखी है एक चीज. अभी हम सब देंगे 0-0 और मार्किंग इसमें 7th क्वेश्चन की मार्किंग है, 8th की मार्किंग है, 9th की मार्किंग, 10th की मार्किंग है, एक क्वेश्चन है.
0: यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस नए सिस्टम का टेंडर टाटा कंसल्टेंसी जैसी बड़ी कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी को कैसे सौंपा गया, क्या ये कंपनी वाकई नई है या फिर कम से कम ओएसएम में सीबीएसई के लिए काम करने में नई है, क्योंकि ये पहले एक बार ब्लैकलिस्ट हो चुकी कंपनी है. इस टेंडर के लिए मुख्य रूप से 2 कंपनीज दौड़ में थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS और दूसरी क्वेम्ट एडुटेक. अब इन कंपनियों को टेंडर देने से पहले 2 चीजें देखी गई, एक तकनीकी योग्यता, दूसरी ये इस टेंडर के लिए कितना पैसा मांग रही है. तकनीकी योग्यता में क्वेम्ट कंपनी TCS से 2 अंकों से आगे थी, क्वेम्ट कंपनी को 91 अंक मिले जबकि TCS को 89, यानी दोनों कंपनीज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था. और यहां तकनीकी योग्यता के लिए टेंडर में 70% का वेटेज रखा गया था, लेकिन 30% का वेटेज कीमत को लेकर था जिसमें क्वेम्ट और TCS के बीच 566 करोड़ रुपए का अंतर था. क्वेम्ट ने प्रति कॉपी 24.75 रुपए से 25.74 रुपए मांगे थे, जबकि TCS ने मांगे थे हर कॉपी के 53 से 65 रुपए. तो ये प्राइस डिफरेंस था, यानी जिस काम के लिए क्वेम्ट 384 करोड़ 60 लाख रुपए मांग रही थी, उसी काम के लिए TCS ने 951 करोड़ 30 लाख रुपए मांगे थे. और इसी वजह से दावा है कि TCS की जगह ये टेंडर क्वेम्ट को मिला और उसके बाद ये सारी गड़बड़ियां हुई. अब सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो इस बात की जांच करेगी कि क्या इस टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई, जानबूझ के क्वेम्ट को फेवर किया गया. आज इस मुद्दे पर सी वोटर ने भी एक सर्वे किया जिसमें पहला सवाल यह था कि क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से पेपर लीक को रोका जा सकता है. इस पर 41.7% लोगों ने कहा कि इससे पेपर लीक को रोका जा सकता है, नहीं कहने वाले 32.3% लोगों ने कहा पेपर लीक नहीं रुक सकता. इसके बाद अगला सवाल था कि क्या सरकार को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करके पुराने तरीके से परीक्षाएं करानी चाहिए. इस पर 60.6% लोगों ने कहा कि हाँ NTA को खत्म कर देना चाहिए, जबकि सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि NTA को खत्म नहीं करना चाहिए. फिर तीसरा सवाल यह था कि लोग कोचिंग संस्थानों के बारे में क्या सोचते हैं. इनमें 32.5% लोगों ने कहा कि कोचिंग संस्थान देश में शिक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा 40.6% लोगों ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की जरूरत है. वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं, यानी इनके संचालन के लिए देश में कड़े नियम कड़े कानून होने चाहिए. क्यों होने चाहिए उसे आप हमारी अगली खबर से समझिए. 1 जून 2026 को बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा के नतीजे आए जिनमें 19,838 उम्मीदवारों का चयन हुआ. फिर से सुन लीजिए, कितने पदों पर सिपाही भर्ती पर 19,838 पदों पर, लेकिन बिहार के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों ने यह दावा कर दिया कि उनके यहां से 22,000 युवा इस परीक्षा में पास हुए हैं. अब चमत्कार यह है कि इस परीक्षा में चयन ही 19,838 उम्मीदवारों का हुआ, लेकिन कोचिंग संस्थानों ने 22,000 से ज्यादा छात्रों को पास करा दिया है. और ये आंकड़े भी पटना के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों के हैं. बिहार के ही कई और कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहां 1500-2100 छात्र इस परीक्षा में पास हुए. ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार सिर्फ बिहार में हो रहा है. एक दिन पहले JEE एडवांस की परीक्षा के नतीजे आए जिनमें बिहार के शुभम कुमार को पूरे देश में पहली रैंक आई, लेकिन यहां भी गजब का खेल हुआ। एक मशहूर कोचिंग संस्थान का दावा है कि शुभम कुमार उसके छात्र हैं। इसके लिए इस कोचिंग संस्थान ने शुभम कुमार की सफलता को अपना मेडल बनाकर बड़े बड़े विज्ञापन अब छपवाने शुरू कर दिए। लेकिन एक और कोचिंग संस्थान मेंटोर्स एडुसर्व का दावा है कि शुभम कुमार की तैयारी उसने करवाई और शुभम कुमार की सफलता का श्रेय उनको मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये दावे सिर्फ कुछ छात्रों को लेकर किए जा रहे हैं। जैसे मोहित नाम के छात्र की पूरे देश में चौथी रैंक आई, उसे भी एक नहीं बल्कि कई कोचिंग संस्थान अपना बता रहे हैं। इनमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का दावा है कि शेखर शुक्ला ने उसके यहां तैयारी की। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का दावा है कि मोहित उनके छात्र हैं। सिर्फ दो दिन पहले ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2023 के एक मामले में यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले दो कोचिंग सेंटर्स पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कारण यही है कि इन कोचिंग संस्थानों ने उन छात्रों की मेहनत पर अपना दावा किया जो इनके यहां पढ़े ही नहीं थे, और ये एक परंपरा बन चुकी है। कोई भी माता पिता जब किसी कोचिंग संस्थान का विज्ञापन देखते हैं तो वो सिर्फ एक पोस्टर नहीं देख रहे होते, वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे होते हैं, वो उम्मीद देख रहे होते हैं, वो सपना देख रहे होते हैं, वो ये तय कर रहे होते हैं कि अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कहां खर्च करना है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को डालना है। अब इन कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन देखकर कई परिवार कर्ज भी लेते हैं, कई परिवार बचत तोड़ते हैं, कई परिवार दूसरे खर्च रोक देते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये कोचिंग संस्थान उनके बच्चों का भविष्य बनाए, लेकिन हकीकत में इनके विज्ञापन सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिके होते हैं, जहां बच्चों की मेहनत की कोचिंग माफिया अपनी मार्केटिंग समझ लेता है। सवाल यही है कि एक ही बच्चा 6 इंस्टीट्यूट्स का स्टूडेंट कैसे हो सकता है, और क्या वाकई इस बच्चे ने 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई की। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विज्ञापनों के कारण गलत कोचिंग चुनने की कीमत सिर्फ फीस से नहीं चुकाई जाती, उसकी कीमत समय होती है, उसकी कीमत साल होती है, कभी कभी 2 साल, कभी कभी किसी छात्र का आत्मविश्वास होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में समय ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, टाइम, क्योंकि उनको इतना कुछ सिलेबस कवर करना होता है। इसीलिए जब कोई संस्थान किसी टॉपर को अपना बनाता है तो वो सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं बेच रहा होता, वो भरोसा भी बेचता है। अब भरोसा ही झूठा निकले तो ये किसी नकली दवा का बेचने से कम नैतिक अपराध नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था के लिए सिर्फ कुछ कोचिंग संस्थान ही जिम्मेदार हैं, इसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप अमृतसर से आई ये खबर देखिए, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमृतसर में एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे फीस नहीं भरने पर उसके स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था और उसकी यह हालत कर दी गई कि वो मरने को मजबूर हो गई। इस बच्ची ने अपनी मौत से पहले फीस के लिए मुंह फाड़ कर बैठे प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या कहा है वो आप खुद सुनिए। ये उसने बयान दिया, उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही।

0: 们每次出来的时候，我来吃我们吃不来吃，吃不吃的满足少吃一个。哪里来们每次每次啥的吃来吃的，都是我们少吃的。哪里来的都出来了。ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
1: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
2: ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਜਬ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जब पैसा किसी बच्चे की जिंदगी से भी बड़ा हो जाए तब ऐसी घटनाएं होती हैं। अब इस बच्चे की मौत को देखिए और उसके साथ इन आंकड़ों की पीड़ा समझिए। भारत में प्राइवेट स्कूल्स की संख्या सिर्फ 3,39,000 है, लेकिन इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 9,58,00,000, यानी कुल स्कूलों में प्राइवेट स्कूल्स की हिस्सेदारी सिर्फ 23% है, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में यही हिस्सेदारी 39% है, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं, और इसी बात का ये प्राइवेट स्कूल फायदा उठाते हैं। भारत में प्राइवेट स्कूल्स की इंडस्ट्री 4,65,000 करोड़ रुपए की है, जो 2032 तक 12,00,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। भारत के प्राइवेट स्कूल्स में एक छात्र की सालाना फीस औसतन 31,000 से 36,000 के बीच होती है। बड़े स्कूल्स में तो यही सालाना फीस 1,50,000 रुपए 4,00,000 रुपए तक होती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे देश में ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाने के लिए केजी क्लास के बच्चों से कई प्राइवेट स्कूल्स हर साल 2,00,000 रुपए से ज्यादा की फीस ले रहे हैं, और यह शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों को बेरहमी से मार रही है। जानते हैं हमारे देश में पिछले 5 सालों में 67,000 छात्रों ने आत्महत्या की है, 67,000 छात्रों ने। इनमें भी 11,184 छात्रों की उम्र 18 साल से कम थी, और यही है हमारे छात्रों का असली दर्द जो कोई समझना नहीं चाहता। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज सबसे पहले अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती टूटने वाली है। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी तब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर ही ईरान पर हमला किया था। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने सारी आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक एक बात मानी। ये तक कहा कि इसराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, और मुस्लिम देशों को भी यह धमकी दी कि अगर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करके इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी तो अमेरिका ईरान के साथ समझौता नहीं करेगा। यानी जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पूरा भरोसा था और दोनों की दोस्ती अटूट मानी जा रही थी, तभी एक बड़ा खेल हुआ। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक नई रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि वो अब उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। 1 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बताया जा रहा है फोन पर बात हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एहसान फरामोश कहा है। ये बोला कि अगर वो नहीं होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल के अंदर होते। बात यही नहीं रुकी, आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब हर कोई प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नफरत करता है, उनके कारण दुनिया में इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, और अगर इसराइल ने लेबनान में अपने हमले नहीं रोके तो अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहां हम आपको इस बातचीत का वो हिस्सा पढ़कर नहीं बता रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने गाली गलौज की है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अब तक युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इस कड़वाहट के पीछे भी एक ऐसा कारण है जो ये बताता है कि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो ईरान के साथ उनकी डील बीच में अटक जाएगी, और यह डर कहीं ना कहीं सही भी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि लेबनान पर हुए हमलों के कारण ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी बातचीत बंद करने का फैसला किया। ईरान की सरकार का कहना है कि अब अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी संदेश आएगा तो उसे कचरे के डिब्बे में उठाकर फेंक दिया जाएगा। यही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया। ये धमकी दी कि लेबनान के हमलों का बदला ईरान लेगा। यानी स्थिति यह है कि अमेरिका इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। और भारत की नजर इस पर क्यों रहनी चाहिए? भारत की नजर इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमतों पर किस तरह का असर इस युद्ध से हो रहा है। और नए सिरे से अगर ये भड़कता है, ये पीस डील नहीं होता है, तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। अमेरिका एक ऐसे दलदल में है जिसके पास ना तो इजराइल खड़ा रहना चाहता है और ना ही ईरान इस दलदल में फंसे अमेरिका से कोई डील करना चाहता है। अब तक हॉलीवुड में 1000 से ज्यादा ऐसी फिल्में बनी जिनमें यह दिखाया गया कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आया, जब भी दुनिया में कोई प्रलय आए, धरती पर एलियंस आए, हर संकट से दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका ने हमें सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कई सुपर हीरोज दिए और इनसे अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि दुनिया के हर संकट का समाधान बस अमेरिका ही है। लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका के पास अपनी खुद की समस्याओं का समाधान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल को सीज फायर लागू हुआ था और उस दिन से लेकर आज 2 जून तक अमेरिका ईरान के साथ एक डील नहीं कर पाया है। डील तो छोड़िए, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका काफी मजबूर नजर आता है, जिसे अब इसराइल भी ना यानी नो कहना सीख गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके ये दबाव बनाया कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोक दे, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। आज भी उन्होंने दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए जिनमें सबसे भीषण हमला टायर शहर पर हुआ। इस हमले में एक घर तबाह हो गया और 2 लोग घायल हुए। आप तस्वीरें देखिए और ये समझिए कि क्यों इन हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप का खून खौल रहा है।
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر راحوا الإسعاف
4: صحراء
2: अब यह बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इजराइल लेबनान में अपने हमलों को क्यों नहीं रोक रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इजराइल का कम क्षेत्रफल। जब बात अर्थव्यवस्था की होती है तो मिडिल ईस्ट के सभी 18 देशों में इजराइल की अर्थव्यवस्था सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर आती है। जब बात विकास की आती है तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इजराइल मिडिल ईस्ट के सभी देशों में सबसे आगे है। जब बात सेना की आधुनिक हथियारों की आती है तो इसमें भी इजराइल ईरान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के सभी देशों से बहुत आगे है। और टेक्नोलॉजी में भी इजराइल का कोई मुकाबला नहीं, ना ही इंटेलिजेंस में। यानी ज्यादातर मामलों में इजराइल मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के मुकाबले बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन इसी जगह क्षेत्रफल का मामला, यही उसकी कमजोर नब्ज है। क्षेत्रफल के मामले में वो बहुत पीछे है। उसका क्षेत्रफल लगभग उतना है जितनी हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास जमीन। जब मिडिल ईस्ट का नक्शा देखा जाता है तो इसमें इजराइल बहुत छोटा नजर आता है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 21,937 वर्ग किलोमीटर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक ईरान में इजराइल जैसे 75 देश समा सकते हैं। ये देखिए मैप, ये जो आपको पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, डार्क बैगनी रंग का, जो गाढ़ा बैगनी रंग का कलर दिख रहा है, ये इजराइल है। अब इसके मुकाबले आप देखिए, जॉर्डन भी बड़ा दिख रहा है, इराक, ईरान और सऊदी अरब तो खैर बहुत ही बड़ा। तो इस इजराइल जैसे 75 देश ईरान में समा सकते हैं। सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल में 98 इजराइल, यूएई में 4 इजराइल, इराक में 20 इजराइल और जॉर्डन के भी क्षेत्रफल में इजराइल जैसे 4 देश बन सकते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो उसमें इजराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के बारे में सोचता है और इस युद्ध में वो यही कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को बफर जोन बनाकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाहता है, जबकि गाजा में भी उसने 70% जमीन को अपने नियंत्रण के लिए में लेने के आदेश दिए हैं, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि लेबनान पर इजराइल के हमलों से वो ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहे। ईरान चाहता है कि लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह रोका जाए, वरना वो भी इसराइल पर हमले करेगा। अब इसराइल अपनी जगह अपनी सुरक्षा चाहता है। आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने कहा कि लेबनान में दुश्मन के अपराधों के सामने ईरान का सब्र अब जवाब देने वाला है, और अगर ये हमले रोके नहीं गए तो इसराइल को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की दोस्ती टूटती है तो इसका असर आपकी जेब और रसोई दोनों पर पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान में सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकेंगे तो अमेरिका इसराइल से खुद को अलग कर लेगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की संभावना मुश्किल में आएगी। ईरान यह कहेगा कि वो और हिजबुल्ला अलग नहीं है। अगर लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध जारी रहता है तो इस डील का कोई मतलब नहीं है। इसराइल लेबनान पर अटैक अगर नहीं रोकता है तो ऐसे में ये डील नहीं होगी, ईरान अड़ा रहेगा। डील नहीं होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोलेगा नहीं। अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो 20% तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी, और अगर ये आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो भारत के लिए संकट गहराएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार बढ़ चुकी हैं और ये 7.5% महंगा हो चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के 98 देशों में बढ़ी हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के मामले में पेट्रोल डीजल का महंगा होना आम लोगों की जेब के लिए अच्छा नहीं है। भारत के आम लोगों की पेट्रोल डीजल खरीदने की क्षमता अगर आप देखिए तो लोगों के लिए चैलेंज है। अमेरिका के लोग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हर दिन 198.7 लीटर पेट्रोल, जापान में 92 लीटर पेट्रोल, ब्रिटेन में 74.3 लीटर, जर्मनी में 69 लीटर, फ्रांस में 55.3, इटली में 50.8, रशिया में 41.6, चाइना में 28.7, और भारत में आम लोगों की प्रतिदिन 7.6 लीटर पेट्रोल खरीदने की क्षमता है। यही कारण है कि भारत के लिहाज से इस युद्ध का और फैलना सही नहीं है और इससे भारत के चैलेंजेस बढ़ेंगे। बड़ी खबर जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, अगली खबर है, पहले आप ये वीडियो देखिए।
4: কিন্তু আমি নাম বলছি না, তারা অবশ্যই এই জায়গায় জানাবেন। অর্চনা মণ্ডল, রামগোপাল মণ্ডল, রামনারায়ণ মণ্ডল মানে বিকাশ বাবুর দু ছেলে, অভিমন্যু মণ্ডল, জয়দেব পাত্র, নিতাই পাত্র, গোবিন্দ পাত্র, রাধাশ্যাম পাত্র, মধুসূদন পাত্র, শক্তিপদ সিট বাড়ি পেয়েছেন কিন্তু ওনার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়নি।
5: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
6: রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকা বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
2: पैसे बांटता दिख रहा ये शख्स

0: कभी जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालते थे, सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों से कटमनी लेते थे, आज वो कैमरे के सामने जनता के पैरों में गिरकर पैसे लौटा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अब कानून के डर से और जनता के गुस्से से बंगाल में कटमनी माफिया कांप रहा है। ये तस्वीरें हैं साउथ 24 परगना के नमखाना इलाके की, जहां गरीब लोगों को पाई पाई के लिए तरसाने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता को कैमरे के सामने एक एक कर ग्रामीणों के पैसे लौटाने पड़े। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिलवाने के नाम पर 45 गरीब लाभार्थियों से 5,000 रुपए की अवैध वसूली की गई, लेकिन जैसे ही जांच की आज पहुंची, कटमनी का ये खिलाड़ी जनता के पैरों में गिर गिर कर गिड़गिड़ाने लगा और इसने कहा मैं पैसे लौटा दूंगा। एक और वीडियो आया है और वो है कोच बिहार का, जहां कटमनी के सरेंडर की कहानी और भी दिलचस्प है। कूच बिहार के घुघुमारी ग्राम पंचायत में अब बाकायदा लाउडस्पीकर और माइक लेकर ग्रामीण सड़कों पर मुनादी कर रहे हैं। इस मुनादी की वजह है टीएमसी की पंचायत सदस्य ज्योत्सना बर्मन, जिन्होंने गरीब जनता से कटमनी वसूली थी।
1: ग्राम पंचायत 173 নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ির থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামী 4 তারিখ ঘুঘুমারি 173 নম্বর বুথের কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়া হবে পঞ্চায়েতের বাড়ির থেকে, সকলেই নিজ নিজ দায়িত্বে টাকা ফেরত নিয়ে যাবেন।
0: आरोप है कि यहां के नेताओं ने आवास योजना के लाभार्थियों से 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की मोटी कटमनी वसूली थी। पैसे न देने पर अगली किस्त रोकने की धमकी दी जाती थी। डर के मारे ग्रामीणों ने पैसे दे दिए थे, लेकिन जैसे ही राज्य में सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार आई, जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने टीएमसी पंचायत सदस्य के घर का ऐसा घेराव किया कि नेताजी को घुटने टेकने पड़े। अब बाकायदा लिखित समझौता हुआ है कि लूटी गई कटमनी की पाई पाई 4 जून तक जनता को वापस कर दी जाएगी। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि बंगाल में फैले उस सिंडिकेट राज की पोल खोल रही है, जो सालों से सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा था। बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए रास्ता एक ही था, नेता को पैसा देना, कटमनी। चाहे गरीब का घर हो, शौचालय हो, राशन हो, हर चीज पर गुंडे माफिया अपना टैक्स लेते थे। जनता बेबस थी क्योंकि इन वसूली बाजों को सत्ता का संरक्षण था, लेकिन वक्त बदला, कानून का फंदा गले में फंसता देख और जनता के आक्रोश को भांपते हुए ये गुंडे अब जेल जाने के बचने के लिए हड़बड़ी में कटमनी की रकम लोगों को लौटा रहे। आज आपको बंगाल की ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि राज्य में शासन प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। उस वक्त काम कर रहा था ममता बनर्जी के राज में संदिग्ध नागरिकता वाले रकीबुल शेख के खाते में लक्की भंडार योजना के तहत 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ये योजना महिलाओं के लिए थी और इस शख्स के अकाउंट में 1.5 लाख। खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लक्की भंडार योजना का पैसा जिन 2,10,00,000 बैंक खातों में डाला जा रहा था, उनमें कुल 30 लाख बैंक खाते या तो फर्जी हैं या घुसपैठियों के। सोचिए, इसी बंगाल में ममता बनर्जी के राज में इस बेचारी महिला को लक्की भंडार योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार बदली, उम्मीद जगी और यह महिला, असहाय महिला, सुंदरबन के सुदूर इलाके से अपने पति को, चूंकि उनके पति दिव्यांग हैं, वो अकेली थी, वो दिव्यांग पति को अपनी पीठ पर लादती है, मीलों का सफर तय करती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जनता दरबार तक ये महिला पहुंची। ये तस्वीर सिर्फ एक महिला की बेबसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि बंगाल में 15 साल तक चले उस शासन के खोखले दावों की जीती जागती हकीकत है। कितनी बड़ी विडंबना है, जहां घुसपैठिए फर्जी लोग सरकारी खजाने पर डाका डाल रहे थे, 1.5 लाख उनके अकाउंट में है, पुरुष के अकाउंट में महिलाओं का पैसा, वहीं इस असली हकदार महिला को अपने दिव्यांग पति के लिए एक व्हील चेयर दिलाने के लिए पीठ पर लाद कर घुमाना पड़ा। सोचिए, जहां गरीबों से कटमनी लिया जाता रहा हो, वहां उन्हें व्हीलचेयर कौन दिलाएगा। इस महिला के दिव्यांग पति ने कहा कि वो बिल्कुल मजबूर हैं, असहाय हैं, उन्हें एक व्हीलचेयर की जरूरत है। उनकी पत्नी को लक्की भंडार योजना का कोई लाभ नहीं मिला, वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस परिवार को 7 दिन के भीतर मदद का भरोसा दिया है।
2: সুন্দরবন সাতগালিয়া গোসবা থানা থেকে আসছি, দাবি আমি অসহায় মানুষ, আমার একটা ব্যাটারি চালিত গাড়ি চাই।

0: এবং আমি একটা প্রতিবন্ধী মানুষ, আমার একটু ভাতিয়া এবং এনার লক্ষ্মীর ভান্ডার পাইনি ও আমি একটু খোঁড়া মানুষ, আমার একটা ঘর যাতে হয় সেই আবেদনে উঠেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে হয়ে যাবে, 7 দিনের ভিতরে সমস্যা মিটে যাবে আপনাদের।
1: बात भारतीय वायु सेना की, भारतीय सेना की बढ़ती शक्ति की करेंगे। भारतीय सेना की शक्ति में पिछले दिनों, पिछले सालों में बहुत इजाफा हुआ है। दुनिया ने एक जरूरी बात सीख ली है से, जो युद्ध अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, अगर दुश्मन से अपनी सुरक्षा करनी है तो दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। पहला है ताकतवर एक डिफेंस सिस्टम और दूसरा घातक आत्मघाती ड्रोन्स। ये दो चीजें जिस देश के पास है उसे दुनिया का कोई भी ताकतवर देश हरा नहीं पाएगा। अगर आपके पास हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम है तो दुश्मन के हमले कामयाब नहीं होंगे। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में आत्मघाती ड्रोन्स हैं तो दुश्मन को हराने या टकराने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस देश के पास भरपूर मात्रा में आत्मघाती ड्रोन्स हैं वो स्वॉर्म ड्रोन अटैक करके एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात देते हैं। ईरान युद्ध इसका एक उदाहरण है। ईरान के पास भले ही बहुत ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम ना हो लेकिन उसके पास घातक आत्मघाती ड्रोन्स की बड़ी खेप है। उसने अमेरिका, इजराइल, मिडल ईस्ट के देशों को परेशान किया है। नतीजा यह है कि अभी तक उसे झुकाया नहीं जा सका। ईरान इन ड्रोन्स के दम पर अमेरिका जैसे देश के सामने खड़ा है। बस इसी से सीख लेते हुए भारत भी आत्मघाती ड्रोन्स की फौज तैयार करने में लगा है। भारतीय सेना की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए देश भर की कंपनियां अपने अपने कामकाजी ड्रोन्स की काबिलियत दिखा रही हैं। हथियार बनाने वाली भारतीय कंपनी होवरिट ने अपने आत्मघाती ड्रोन्स दिव्यास्त्र MK1 का प्रदर्शन किया। जोधपुर में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दिव्यास्त्र MK1 को एक सामान्य कार की छत से उड़ाकर दिखाया गया। भारतीय सेना को कुछ ऐसे ड्रोन्स चाहिए जिन्हें मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सके ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत के किसी भी बॉर्डर से भेजा जा सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दिव्यास्त्र को एक थार गाड़ी की छत से उड़ाकर दिखाया गया। दिव्यास्त्र MK1 का इस्तेमाल दुश्मन की जासूसी करने, टारगेट की निगरानी करने या फिर सटीक हमले के लिए किया जा सकता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये करीब 5 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कम्युनिकेशन रिले के तौर पर भी हो सकता है, यानी यह हवा में मौजूद किसी मोबाइल टावर की तरह होगा जिसकी मदद से सेना की टुकड़ी का संपर्क कमांड सेंटर से हमेशा बना रहेगा। यह ड्रोन 15 किलोग्राम तक बारूद ले जाने में सक्षम है। हालांकि इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी जो दिव्यास्त्र MK2 है उसकी क्षमता को बढ़ाकर 80 किलोग्राम तक ले जाने का प्रयास चल रहा है। 15 किलोग्राम तक बारूद ले जाने की क्षमता का फायदा यह है कि इसकी मदद से हम दुश्मन के रडार सिस्टम, उनके टैंक्स, उनके कमांड पोस्ट, उनके बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकते हैं। और यही नहीं, दुश्मन के ठिकाने या किसी आतंकी कैंप पर निगरानी के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। भारतीय सेना को कई तरह के ड्रोन्स की जरूरत है, इसीलिए ड्रोन्स बनाने वाली भारतीय कंपनियों को उनके ड्रोन्स की क्षमता दिखाने के लिए कहा गया। इसमें कुछ खास ड्रोन्स पर सेना की नजर है। जैसे भारत में दृष्टि 10 स्टार लाइनर नाम का एक ड्रोन तैयार हो रहा है जो 450 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकता है, 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। भारत और इजराइल मिलकर तैयार कर रहे हैं। भारतीय सेना के पास फिलहाल स्वदेशी नागास्त्र ड्रोन है। इसके अलावा भारत में रुस्तम 2 ड्रोन भी बनाया गया है जो 24 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है और 22,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह भी टेस्टिंग फेज में है। स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेशंस के लिए सुरेशास्त्र MK1 ड्रोन्स बनाया गया है। इसका ट्रायल हो चुका है और जल्दी ही भारतीय सेना में इसे शामिल कर दिया जाएगा। DRDO और HAL ने आर्चर NG ड्रोन तैयार किए हैं। ये 22,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 300 से 400 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकता है। टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। रशिया और यूक्रेन ये युद्ध हो या फिर इजराइल अमेरिका और ईरान युद्ध, इन सभी में ड्रोन्स का बहुत कामयाब और घातक इस्तेमाल किया गया है। युद्ध में शामिल सभी देशों ने हमले के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल तो किया लेकिन उससे ज्यादा भरोसा आत्मघाती ड्रोन्स पर किया। साल 2022 से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध में 60,000 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए। इसी तरह से इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध में 2,000 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पाकिस्तान ने भी करीब 500 ड्रोन से हमले किए थे जिनको भारतीय सेना ने नाकाम किया था। यानी अब युद्ध का जो पैटर्न दिख रहा है उसमें मिसाइल से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा, इसीलिए भारत भी भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी में जुट गया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई क्रांति आने वाली है। अभी तक आप एआई का इस्तेमाल एक ऐप के तौर पर या किसी ब्राउजर पर करते थे, आप उसे सवाल पूछते हैं या कोई टास्क देते हैं, उसके बाद वो ऐप दूर कहीं मौजूद क्लाउड सर्वर के जरिए डेटा निकालता है और टास्क पूरा करता है। लेकिन एआई चिप बनाने वाली कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनविडिया, ने एक ऐसा चिप लॉन्च कर दिया है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर को आपको पर्सनल एआई एजेंट बना देता है। मतलब आपका कंप्यूटर आपका पर्सनल एआई एजेंट बन गया, आप बिना इंटरनेट के भी उससे काम ले सकेंगे। इससे आपकी डेटा प्राइवेसी भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, जानकारी खोजनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वीडियो एडिट करना है, तो इन कामों का बड़ा हिस्सा आपके कंप्यूटर चिप में मौजूद एआई एजेंट खुद संभाल लेगा, और वो भी आपके छोटे से वॉइस कमांड से। मतलब आपने बोला और हुआ। एनविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का दावा है कि उनका आरटीएक्स स्पार्क चिप पिछले 40 साल में हुई कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति साबित होगा। उनके मुताबिक ये केवल एक ग्राफिक्स चिप नहीं बल्कि सिस्टम ऑन चिप है। ये चिप ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम होगा। इसमें सीपीयू, जीपीयू, एआई की सारी प्रोसेसिंग एक साथ मिलेगी। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि इस चिप पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर को ऑन करने या उस पर काम करने के लिए आपको माउस या कीबोर्ड की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ कमांड देंगे, आरटीएक्स स्पार्क चिप आपके कमांड पर खुद ब खुद काम करेगा। आरटीएक्स स्पार्क एक अगर आप देखिए तो काफी हद तक एक पेटफ्लॉप तक ये एआई कंप्यूटरिंग पावर दे सकती है। यानी जो काम इंसान को पूरा करने में 3 करोड़ साल लगेंगे, ये चिप जानते हैं 1 सेकंड में कर सकता है। ये आपके पर्सनल कंप्यूटर में छोटे से सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। एनविडिया के इस नए चिप ने इंटेल, एएमडी, क्वालकॉम और एप्पल के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अभी तक एनविडिया एआई के लिए जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाती थी, लेकिन अब उसने एप्पल जैसी कंपनीज की तरह संपूर्ण कंप्यूटर चिप बना दिया और इसमें इनबिल्ट एआई भी होगा। एनविडिया के इस नए चिप के आने के बाद माना जा रहा है कि विंडोज का कायाकल्प हो जाएगा। दोनों कंपनियां मिलकर एआई प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स बनाएंगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हम जहर भी हैं और शहद भी। स्वाद आपके व्यवहार पर निर्भर है। नमस्कार।

0: सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है। लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवर जाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
2: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स। तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया। मैंने अपने फोन पे 2 बारी ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में, जब मैंने 3 बारी ट्राई किया था एंड तब, लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी, तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है।
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी।
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से सीबीएसई करा नहीं पाई और फिर री इवेल्युएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए सीबीएसई के चेयरमैन सचिव को हटाकर ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई।
0: चार मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं। टीएमसी में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई। मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था। धरने में टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे।
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने, सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
4: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम ले, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर।
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए। जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई हैं? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही,
5: बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर,
1: क्या उसी विधानसभा में जल्द दो दो तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
6: टू थर्ड मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे।
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा। ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है। तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया। लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, यह आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा। इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी।
7: গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান।
1: মমতা মান রহী হ্যাঁ কি পার্টি মে বগাওত হো রহী হ্যায়, জিসকি শুরুআত নতিজো কে সাথ হি দিখনে লগি। 4 মই কো তৃণমূল কংগ্রেস সত্তা সে বাহার হোতি হ্যায়, উসকে 80 বিধায়ক জিততে হ্যায়। इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे, तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती है। और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
8: और वो हमरा क्यों किंतु बाकी विधायक जादेर का से फोन जाच्छे
9: যারা আজকে গেটওয়ে হোটেল হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
10: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
11: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे, तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
10: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
6: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था, तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
10: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
12: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
10: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
12: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में जो नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
10: ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ, उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी है।
12: मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ।
10: ममता की पार्टी के ऋतव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गयी।
6: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
13: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
14: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
6: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आया ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दे? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
13: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
15: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
13: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
16: चोर चोर चोटा अभिषेक सीधा चोर ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: घोटाला बाज ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: क्रांतिकारी ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: चोर ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: चोर चोर चोटा
17: अभिषेक सीधा
16: चोर चोर चोटा
17: अभिषेक सीधा
16: चोर चोर चोटा
17: अभिषेक सीधा
18: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट नाउ इवन पीपल कैन नॉट गेट द ट्रीटमेंट।
13: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है, इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले में बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले कठमनी लिया करते थे, वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर लौटा रहे हैं।
13: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
19: किंतु हमी नाम बोलछी ना, तारा अवश्य ये जगह जाना भी। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण मंडल।

0: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
1: আমাদের ঘরের টাকা
2: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
1: রাজালয়া আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকার বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
0: यहां पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहां पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कटमनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
3: ফিরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
0: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। लाभार्थियों में से एक विकास मंडल ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब दूसरी किस्त का समय आया तो पंचायत सदस्य ने दावा है 5,000 रुपए की कटमनी मांगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब पैसा वापस करना इन नेताओं ने शुरू कर दिया। बंगाल में कटमनी वापस करते कथित टीएमसी नेता का वीडियो बताता है वोट की असली ताकत क्या है। ममता सरकार में कटमनी वसूलने के आरोप लगातार लगते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था। सरकार बदली तो इस काले धंधे में लगे लोग खुद ही जनता को पैसा वापस लौटाने लगे। इसकी एक बड़ी वजह शुभेंदु सरकार में कटमनी से जुड़े नेताओं की पूरे राज्य में जनता के हाथों होती पिटाई भी है। अलग अलग जिलों में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की जनता ने अच्छे से खबर ली है, उन्हें खबरदार किया है, जिसने शायद कटमनी वसूलते रहे लोगों को डराया है और उन्हें अब सबके सामने आकर पैसा वापस लौटाने में अपनी भलाई नजर आने लगी है।
4: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंड ने प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हों बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवेल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
3: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स।
2: तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बार ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बार ट्राई किया था एंड तब लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी. तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से सीबीएसई करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए सीबीएसई के चेयरमैन सचिव को हटाकर ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. टीएमसी में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
4: लड़ेंगे
5: या मरेंगे?
4: नहीं तो मरेंगे.
5: हाँ मरेंगे.
4: अगर जिएंगे
5: या मरेंगे?
4: लड़ेंगे.
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
6: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई हैं? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
7: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा 10 तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
4: गद्दारी करके भांगार जन्य ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान.
1: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी. 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं. इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में
8: टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती है और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
9: আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
8: পশ্চিম বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ বিপক্ষী দল কে কার্যকর্তাও কা সত্তাধারী পার্টি মে শামিল হোনা আম বাত রাহা হ্যায়, লেকিন ইস বার ইয়ে কাম বহুত তেজি সে হো রাহা হ্যায়। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
10: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
8: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
7: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
8: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
11: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
8: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
11: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
8: ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ
1: उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
11: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 16 तारीख 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
1: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
7: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
1: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
9: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
7: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दें? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
1: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया, जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की, क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए, वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
12: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
1: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे। अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
13: चोर चोर चोर
14: अभिषेक
13: चोर ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: घोटाला बाज ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: एक कलंकारी ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: चोर ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: चोर चोर चोर
14: अभिषेक सीता
13: चोर चोर चोर
14: अभिषेक सीता
13: चोर चोर चोर
14: अभिषेक सीता
15: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
1: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले में बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले कठमनी लिया करते थे, वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर लौटा रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
16: किंतु हमें नाम बोलछी ना तारा अवश्य ये जगह जाना। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण मंडल।

0: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
1: আমাদের ঘরের টাকা
2: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
1: রাজালয় আমাদেরকে বলেছে।

0: দিবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
1: यहां पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहां पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कट मनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
2: ফিরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
1: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। लाभार्थियों में से एक विकास मंडल ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। जब दूसरी किस्त का समय आया तो पंचायत सदस्य ने दावा 5,000 रुपए की कट मनी मांगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब पैसा वापस करना इन नेताओं ने शुरू कर दिया। बंगाल में कट मनी वापस करते कथित टीएमसी नेता का वीडियो बताता है वोट की असली ताकत क्या है। ममता सरकार में कट मनी वसूलने के आरोप लगातार लगते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था। सरकार बदली तो इस काले धंधे में लगे लोग खुद ही जनता को पैसा वापस लौटाने लगे। इसकी एक बड़ी वजह शुभेंदु सरकार में कट मनी से जुड़े नेताओं की पूरे राज्य में जनता के हाथों होती पिटाई भी है। अलग अलग जिलों में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की जनता ने अच्छे से खबर ली है, उन्हें खबरदार किया है, जिसने शायद कट मनी वसूलते रहे लोगों को डराया है और उन्हें अब सबके सामने आकर पैसा वापस लौटाने में अपनी भलाई नजर आने लगी है।
3: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की नई राजनीति की बात दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव में 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। अटकलें चलने लगी हैं कि क्या चुनाव जल्दी ही यूपी में हो सकता है।
4: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
1: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव की पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा, ऐसे बयान देते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं। तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
5: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
1: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखी, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध

0: नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध न करने की कसम खाता हूं।
1: अब तो नहीं काम कर रहा ना कोई काम, कोई क्राइम अब करना मत तुम लोग, अपराध।
0: चूंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि ये सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें, और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
2: सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है, अच्छे डॉक्यूमेंट की सभी की मीटिंग की जा रही है, और इनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है, और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहेंगे।
0: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके, और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
3: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंड ने प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हों बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
3: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स।
2: तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बारी ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बारी ट्राई किया था एंड तब लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से CBSE करा नहीं पाई और फिर री इवेल्युएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए CBSE के चेयरमैन सचिव को हटाकर OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. TMC में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में TMC के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
1: एकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
4: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई हैं? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
5: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा 10 तक नहीं पहुंचता दिखा जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
6: গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য. আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান.
1: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी. 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं. इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में
7: टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती है और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
8: और वो हमरा क्यों किंतु बाकी विधायक जादेर काछे फोन जाच्छे जारा आज के गेटवे होटल होटले मीटिंग करेछेन आमी तादेर अनुरोध करब आमरा क्यों निर्दल जीते आसिनी একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা 70 বছর বয়সী তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
7: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
9: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे, और तब क्या होगा एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
7: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
5: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
7: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
10: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
7: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
10: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
1: ऋतुव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
10: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 16 तारीख 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
1: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
5: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस है तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
1: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
8: ये वो तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
5: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीक रहा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दे? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
1: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
11: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
1: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
12: चोर चोर चोटा
13: अभिषेक एबीसी
12: का चोर ममता दूर हटो
13: दूर हटो दूर हटो
12: घोटाला बाज ममता दूर हटो
13: दूर हटो दूर हटो
12: एक क्रांतिकारी ममता दूर हटो
13: दूर हटो दूर हटो
12: चोर ममता दूर हटो
13: दूर हटो दूर हटो
12: चोर चोर चोटा
13: अभिषेक एबीसी का
12: चोर चोर चोटा
13: अभिषेक एबीसी का
12: चोर चोर चोटा
13: अभिषेक एबीसी का
14: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
1: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले में बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले कठमनी लिया करते थे, वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर लौटा रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
15: किंतु हमी नाम बोलछी ना तारा अवश्य ये जगह जानाबे। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण।

0: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
1: আমাদের ঘরের টাকা,
2: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
1: রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকার বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
0: यहां पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहां पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कटमनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
3: ফিরত দিতে চাই এবং আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
0: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे।
4: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की नई राजनीति की बात दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव में 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। अटकलें चलने लगी हैं कि क्या चुनाव जल्दी ही यूपी में हो सकता है।
5: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
0: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव की पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं, तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
6: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त तो हो जाती है।
0: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखिए, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध न करने की कसम खाता हूं।
7: अब तो नहीं काम कर रहा ना कोई काम, कोई क्राइम अब कर रहा तुम लोग अपराध।
0: चूंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि ये सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
8: सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है, अच्छे मैनेजमेंट की सभी की मीटिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से ये दूर रहेंगे।
0: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
6: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हो बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया, सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वहीं ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवेल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
3: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स।
2: तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बार ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बार ट्राई किया था एंड तब लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी. तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बार डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से CBSE करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए CBSE के चेयरमैन सचिव को हटाकर OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. TMC में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में TMC के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
4: लड़ेंगे या मरेंगे? यही तो मरेंगे.
5: हाँ मरेंगे.
4: अगर जीएंगे
5: या मरेंगे?
4: लड़ेंगे.
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
6: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकता है तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन
6: आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई है? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही,
7: बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर.
1: क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
8: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी. सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
4: গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য. আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান.
9: सरकार मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं। इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे, तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती है। और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
10: और वो हमरा क्यों किंतु बाकी विधायक जादेर काछे फोन जाच्छे जारा आज के गेटवे होटेले मीटिंग करेछेन आमी तादेर अनुरोध करबो आमरा केउ निर्दल जीते आसिनि। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা 70 বছর বয়সী তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে দলকে ঢেলে সাজানো সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
9: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
11: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे, और तब क्या होगा एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
9: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती है कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
8: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
9: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के 2 सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
12: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
9: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
12: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
9: ऋतुप्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी है।
12: मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
9: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन सहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई।
8: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
9: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
10: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
8: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दे? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
9: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
13: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
9: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
14: चोर चोर चोर अभिषेक चोर ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: घोटाला बाज ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: करंकारी ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: चोर ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: चोर चोर चोटा
15: अभिषेक सीता
14: चोर चोर चोटा
15: अभिषेक सीता
14: चोर चोर चोटा
15: अभिषेक सीता
16: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
9: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की नई राजनीति की बात दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव में 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। अटकलें चलने लगी हैं कि क्या चुनाव जल्दी ही यूपी में हो सकता है।
17: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको

0: मानता गोली से मानेगा, ऐसे बयान देते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं। तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
1: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
0: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखी, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध ना करने की कसम खाता हूं।
2: अब तो नहीं काम कर रहा ना, कोई काम
0: क्योंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि यह सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
3: सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है, अच्छे बैठ में सभी की डिटेलिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से ये दूर रहेंगे।
0: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके, और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
1: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
4: कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं ने पहले योगी आदित्यनाथ को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर चैलेंज कर दिया था। योगी ने तल्ख होकर जवाब दिया, कहा कि गाय माता है, पशु नहीं समझते। इसके बाद मौलाना मौलवी मुस्लिम धर्मगुरुओं को योगी ने चैलेंज कर दिया, पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मौत पर ये लोग मौन क्यों रहते हैं।
1: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है।
0: बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया,
5: जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर

0: ते हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
1: बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ योगी का संदेश हमेशा जाति में बटकर नहीं बल्कि हिंदू वोट के एकजुट होकर साथ आने का रहा। क्या इसीलिए अब हिंदू वोट की जमीन को 2027 से पहले मजबूत करने में योगी जुटे हैं? आप कहेंगे कैसे? तीन तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर गाजियाबाद की, जहां माफिया के कब्जे से गरीब का घर छुड़वा कर प्रशासन उन्हें सौंपता है। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां 1600 से ज्यादा उन परिवारों को जमीन का हक योगी सरकार देती है जो परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए। और तीसरी तस्वीर संभल की, जहां अवैध कब्रिस्तान को तोड़कर खाली कराई गई जमीन अब दंगा पीड़ित हिंदू परिवार को दी जानी है। तो क्या यही वो हिंदू वोट की जमीन है जो हिंदू वोट की मशीन बनकर 2027 में चल सकती है?
2: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
1: कानून का शस्त्र उठता है तो समाज के खरदूषण का इलाज कैसे होता है, इसकी गवाही सबसे पहले गाजियाबाद से देखिए।
3: अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अपने दो लड़के और पोते कहाँ रह रहे हैं? किराए पे ले आना उनको वहीं पे। ठीक है,
4: चलिए चलिए।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हो बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वहीं ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवेल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
2: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स। तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बार ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बार ट्राई किया था एंड तब लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी. तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बार डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से CBSE करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए CBSE के चेयरमैन सचिव को हटाकर OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. TMC में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में TMC के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
4: लड़ेंगे या मरेंगे? यही तो मरेंगे.
5: हाँ मरेंगे.
4: अगर जीएंगे
5: या मरेंगे?
4: लड़ेंगे.
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने, सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
6: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई है? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
7: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज़ देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा 10 तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
4: गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙার জন্য. আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান.
1: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी. 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं. इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में
8: टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है।
9: 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
10: আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকেছি, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
9: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
11: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे, तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
9: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
7: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था, तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा? पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
9: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
12: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
9: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
12: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी का लीडरशिप में नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
8: ऋतुव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
12: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 16 तारीख 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
8: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
7: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
8: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
10: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
7: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दे? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
8: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
13: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
9: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
14: चोर चोर चोर अभिषेक अभिषेक चोर ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: लकोटाला बाज ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: एक कलंकारी ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: चोर ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: चोर चोर चोर
15: अभिषेक अभिषेक
14: चोर चोर चोर
15: अभिषेक अभिषेक
14: चोर चोर चोर
15: अभिषेक अभिषेक
16: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
9: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले में बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले कठमनी लिया करते थे, वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर लौटा रहे हैं।
9: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
17: किंतु हमी नाम बोलछी ना तारा अवश्य ये जगह जानाबे। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण

0: करने वाले।
1: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
2: আমাদের ঘরের টাকা,
0: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
2: রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকা বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
1: यहां पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहां पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कटमनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
3: ফিরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
1: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे।
4: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80-20 की नई राजनीति की बात दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव में 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। अटकलें चलने लगी हैं कि क्या चुनाव जल्दी ही यूपी में हो सकता है।
5: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
1: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80-20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं, तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80-20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
6: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
1: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखी, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध न करने की कसम खाता हूं।
7: अब तो नहीं काम कर रहा ना कोई काम, कोई क्राइम अब कर रहा तुम लोग अपराध
1: कि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि यह सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
8: सारी चीजों की जा रही है, सभी की मीटिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास आपराधिक गतिविधियों से दूर रहा।
1: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
6: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंड ने प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हों बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवेल्युएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
3: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स।
2: तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बार ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में, जब मैंने 3 बार ट्राई किया था एंड तब, लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी, तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से सीबीएसई करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए सीबीएसई के चेयरमैन सचिव को हटाकर ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. टीएमसी में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
4: लड़ेंगे
5: या मरेंगे?
4: नहीं तो मरेंगे.
5: हाँ मरेंगे.
4: अगर जिएंगे
5: या मरेंगे?
4: लड़ेंगे.
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
6: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई हैं? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
7: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा 10 तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
4: गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য. আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান.
1: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी. 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं. इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में
8: टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
9: আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
8: পশ্চিম বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ বিপক্ষী দল কে কার্যকর্তাও কা সত্তাধারী পার্টি মে শামিল হোনা আম বাত রাহা হ্যায়, লেকিন ইস বার ইয়ে কাম বহুত তেজি সে হো রাহা হ্যায়। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
10: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
8: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
7: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
8: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
11: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
8: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
11: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
8: ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
11: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 16 तारीख 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी के खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
8: ममता की पार्टी के ऋतव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
7: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
8: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
9: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
7: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दें? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
8: जहां तक 49 साल के ऋतव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
12: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
1: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
13: चोर चोर चोर अभिषेक एबीसी का चोर ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: घोटाला बाज ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: एक कलंकारी ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: चोर ममता दूर हटो
14: दूर हटो दूर हटो
13: चोर चोर चोर
14: अभिषेक एबीसी का
13: चोर चोर चोर
14: अभिषेक एबीसी का
13: चोर चोर चोर
14: अभिषेक एबीसी का
15: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
1: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले में बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले कठमनी लिया करते थे वो राजनीतिक

0: মণ্ডল, রামগোপাল মণ্ডল, রামনারায়ণ মণ্ডল মানে বিকাশ বাবুর দু ছেলে, অভিমন্যু মণ্ডল, জয়দেব পাত্র, নিতাই পাত্র, গোবিন্দ পাত্র, রাধাশ্যাম পাত্র, মধুসূদন পাত্র, শক্তিপ্রদশীর বাড়ি পেয়েছেন কিন্তু ওনার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়নি।
1: जगह है दक्षिण 24 परगना जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
2: আমাদের ঘরের টাকা,
3: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
2: রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকার বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
1: यहाँ पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुँचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कट मनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
4: ফিরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
1: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को एक स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे।
5: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की नई राजनीति की बात दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव में 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। अटकलें चलने लगी है कि क्या चुनाव जल्दी ही यूपी में हो सकता है।
6: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
1: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं, तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
7: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
1: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखिए, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध न करने की कसम खाता हूं।
8: अब तो नहीं काम कर रहा ना कोई काम, क्राइम अब करना तुम लोग अपराध।

0: चूंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि ये सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
1: सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है, अच्छे डॉक्यूमेंट की सभी की डिटेलिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से ये दूर रहेंगे।
0: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
2: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हों बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। यह सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वहीं ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवेल्युएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहली जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
2: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स। तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बार ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इन वैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बार ट्राई किया था एंड तब लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी. तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही इन फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बार डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से CBSE करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए CBSE के चेयरमैन सचिव को हटाकर OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. TMC में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में TMC के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
4: मरेंगे या मरेंगे?
5: यही तो मरेंगे.
4: हाँ मरेंगे.
5: अगर जिएंगे
4: या मरेंगे?
5: लड़ेंगे. अब जिएंगे तो
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
6: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई है? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
7: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी. सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा 10 तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
5: गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙার জন্য. আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান.
1: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी. 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं. इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में
8: टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रहीं, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
9: और वो हमरा केउ किंतु बाकी विधायक जादेर काछे फोन जाच्छे जारा आज के गेटवे होटेले मीटिंग करेछेन আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানো সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
8: পশ্চিম বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ বিপক্ষী দল কে কার্যকর্তাও কা সত্তাধারী পার্টি মে শামিল হোনা আম বাত রাহা হ্যায়, লেকিন ইস বার ইয়ে কাম বহুত তেজি সে হো রাহা হ্যায়। চুনাও নতিজে কো মহিনে ভর ভি নাহি বিতে হ্যায়, লেকিন খুদ চুনাও হারনে ওয়ালি মমতা বনর্জি কি পার্টি কো বরিষ্ঠ নেতা অর পার্ষদ টাটা বাই বাই কর রহে হ্যায়। মমতা কে লিয়ে সবসে পরেশান করনে ওয়ালি বাত অভিষেক বনর্জি পর হামলে কে খিলাফ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
10: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे, और तब क्या होगा एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
8: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती है कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस है, पहले की तरह है, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
7: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
8: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
11: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
8: ऋतुव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतुव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
11: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
8: ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ
1: उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
11: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
1: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
7: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
1: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
9: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
7: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीक रहा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दें? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
1: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
12: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
1: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए,
13: अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे। अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
14: चोर चोर चोर अभिषेक चोर ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: घोटाला बाज ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: कलंकारी ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: चोर ममता दूर हटो
15: दूर हटो दूर हटो
14: चोट चोट चोटा
15: अभिषेक भी सीता
14: चोट चोट चोटा
15: अभिषेक भी सीता
14: चोट चोट चोटा
15: अभिषेक भी सीता
16: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रुटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
13: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन वित्तव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की नई राजनीति की बात दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव में 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। अटकलें चलने लगी हैं कि क्या चुनाव जल्दी ही यूपी में हो सकता है।
17: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
13: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव की पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा, ऐसे बयान देते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं। तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
18: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
13: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखी, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध ना करने की कसम खाता हूं। चूंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि ये सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें, और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
19: सारी चीजों की जा रही है, सभी की मीटिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से ये दूर रहेंगे।
13: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
18: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं ने पहले योगी आदित्यनाथ को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर चैलेंज कर दिया था। योगी ने तल्ख होकर जवाब दिया, कहा कि गाय माता है, पशु नहीं समझते। इसके बाद मौलाना मौलवी मुस्लिम धर्मगुरुओं को योगी ने चैलेंज कर दिया, पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मौत पर ये लोग मौन क्यों रहते हैं।
18: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है।
13: बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया,
18: जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
13: बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ योगी का संदेश हमेशा जाति में बटकर नहीं बल्कि हिंदू वोट के एकजुट होकर साथ आने का रहा। क्या इसीलिए हिंदू वोट की जमीन को 2027 से पहले मजबूत करने में योगी जुटे हैं? आप कहेंगे कैसे? तीन तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर गाजियाबाद की, जहां माफिया के कब्जे से गरीब का घर छुड़वा कर प्रशासन उन्हें सौंपता है। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां 1600 से ज्यादा उन परिवारों को जमीन का हक योगी सरकार देती है जो परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए। और तीसरी तस्वीर संभल की, जहां अवैध कब्रिस्तान को तोड़कर खाली कराई गई जमीन अब दंगा पीड़ित हिंदू परिवार को दी जानी है। तो क्या यही वो हिंदू वोट की जमीन है जो हिंदू वोट की मशीन बनकर 2027 में चल सकती है?
18: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
13: कानून का शस्त्र उठता है तो समाज के खरदूषण का इलाज कैसे होता है, इसकी गवाही सबसे पहले गाजियाबाद से देखिए।
20: अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अपने दो लड़के और पोते का रह रहे हैं किराए पे, ले आना उनको वहीं पे।
21: हाँ
20: ठीक है, चलो।
2: चलिए चलिए।
0: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंड ने प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हों बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
2: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स। तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बारी ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बारी ट्राई किया था एंड तब, लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी, तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से CBSE करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए CBSE के चेयरमैन सचिव को हटाकर OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. TMC में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में TMC के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
4: लड़ेंगे या मरेंगे?
5: यही तो मरेंगे.
4: हाँ मरेंगे.
5: अगर जिएंगे
4: या मरेंगे?
5: लड़ेंगे. अब जिएंगे तो बीजेपी को हटा
6: देंगे. जैसे जेल में तो शक्त
1: 71 साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने, सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
7: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई हैं? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
8: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा 10 तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
5: गद्दारी करके भांगार जन्य ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान.
1: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी. 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं. इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में
9: टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती है और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
10: और वो हमरा क्यों किंतु बाकी विधायक जादेर काछे फोन जाच्छे जारा आज के गेटवे होटेले मीटिंग करेछेन आमी तादेर अनुरोध करब आमरा क्यों निर्दल जीते आसिनि। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা 70 বছর বয়সী তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
9: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
11: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे, और तब क्या होगा एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
9: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
8: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
9: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
12: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
9: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
12: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
13: ऋतुपर्ण बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
12: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
13: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन सहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई।
14: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
13: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
10: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
14: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दे? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
13: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
15: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
13: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
16: चोर चोर चोर अभिषेक चोर ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: घोटाला बाज ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: करंकारी ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: चोर ममता दूर हटो
17: दूर हटो दूर हटो
16: चोर चोर चोटा
17: अभिषेक सीता
16: चोर चोर चोटा
17: अभिषेक सीता
16: चोर चोर चोटा
17: अभिषेक सीता
18: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
13: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले में बंगाल में जो

0: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
1: किंतु हमें नाम बोलछी ना तारा अवश्य ये जगह जानबे। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण।

0: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
1: আমাদের ঘরের টাকা,
2: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
1: রাজালয়া আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকা বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
0: यहां पर क्या हो रहा है पहले आप।
3: और अब आपको उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की नई राजनीति की बात दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव में 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। अटकलें चलने लगी हैं कि क्या चुनाव जल्दी ही यूपी में हो सकता है।
4: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं, 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
0: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा, ऐसे बयान देते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं। तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
5: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
0: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को बोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखी, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध ना करने की कसम खाता हूं। चूंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि ये सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
6: सारी चीजों की जा रही है, सभी की मीटिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं

0: करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अपराधी गतिविधियों से ये दूर रहेंगे।
1: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी, जहां भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा, ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके। और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
2: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंड ने प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हों बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी, जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
3: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स।
2: तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया. मैंने अपने फोन पर 2 बारी ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बारी ट्राई किया था एंड तब, लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी, तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है.
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी.
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से सीबीएसई करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. इसीलिए सीबीएसई के चेयरमैन सचिव को हटाकर ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई.
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं. टीएमसी में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई. मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था. धरने में टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे.
4: मरेंगे या मरेंगे? नहीं तो मरेंगे.
5: हाँ मरेंगे.
4: अगर जिएंगे
5: या मरेंगे?
4: लड़ेंगे. अब जिएंगे तो बीजेपी को हटा देंगे.
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने, सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
6: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो. आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर.
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए. जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई है? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही,
7: बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर.
1: क्या उसी विधानसभा में जल्द दो दो तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
8: टू थर्ड मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे.
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा. ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है. तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे. वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया. लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए. ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा. इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी.
4: গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য. আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান.
1: মমতা মান রহী হ্যাঁ কি পার্টি মে বগাওয়াত হো রহী হ্যায় জিসকি শুরুয়াত নতিজো কে সাথ হি দিখনে লগি. 4 মই কো তৃণমূল কংগ্রেস সত্তা সে বাহার হোতি হ্যায়, উসকে 80 বিধায়ক জিততে হ্যায়. ইসকে 2 দিন বাদ 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में
9: टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
10: और वो हमरा क्यों किंतु बाकी विधायक जादेर काछे फोन जाच्छे जारा आज के गेटवे होटल होटल मीटिंग करेछेन आमी तादेर अनुरोध करब हमरा क्यों निर्दल जीते आसिनि একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা 70 বছর বয়সী তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
9: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
11: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे, और तब क्या होगा एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
9: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती है कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
8: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
9: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
12: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
9: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
12: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
13: ऋतुव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
12: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
13: ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन सहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
8: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
13: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
10: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी, वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
8: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दे? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
13: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
14: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
13: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
15: चोर चोर चोर
16: अभी से कैसी सीधा
15: चोर ममता दूर हटो
16: दूर हटो दूर हटो
15: घोटाला बाज ममता दूर हटो
16: दूर हटो दूर हटो
15: क्रांतिकारी ममता दूर हटो
16: दूर हटो दूर हटो
15: चोर ममता दूर हटो
16: दूर हटो दूर हटो
15: चोर चोर चोटा
16: अभी से कैसी सीधा
15: चोर चोर चोटा
16: अभी से कैसी सीधा
15: चोर चोर चोटा
16: अभी से कैसी सीधा
17: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट Now even people cannot get the treatment.
13: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले में बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले कठमनी लिया करते थे, वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर लौटा रहे हैं।
13: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
18: किंतु आमी नाम बोलछी ना तारा अवश्य ये जगह जानाबेन। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण

0: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
1: আমাদের ঘরের টাকা,
2: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
1: রাজালয়ে আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকা বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
0: यहां पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहां पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कटमनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
3: ফিরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
0: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। लाभार्थियों में से एक विकास मंडल ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब दूसरी किस्त का समय आया तो पंचायत सदस्य ने दावा है 5,000 रुपए की कटमनी मांगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब पैसा वापस करना इन नेताओं ने शुरू कर दिया। बंगाल में कटमनी वापस करते कथित टीएमसी नेता का वीडियो बताता है वोट की असली ताकत क्या है। ममता सरकार में कटमनी वसूलने के आरोप लगातार लगते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था। सरकार बदली तो इस काले धंधे में लगे लोग खुद ही जनता को पैसा वापस लौटाने लगे। इसकी एक बड़ी वजह शुभेंदु सरकार में कटमनी से जुड़े नेताओं की पूरे राज्य में जनता के हाथों होती पिटाई भी है। अलग अलग जिलों में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की जनता ने अच्छे से खबर ली है, उन्हें खबरदार किया है, जिसने शायद कटमनी वसूलते रहे लोगों को डराया है और उन्हें अब सबके सामने आकर पैसा वापस लौटाने में अपनी भलाई नजर आने लगी है।
4: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: क्या होता है मूल नक्षत्र? मूल नक्षत्र में जन्म लेना क्या अशुभ होता है? मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर क्या उपाय करना आवश्यक है? क्या मूल नक्षत्र के लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते? क्या है मूल नक्षत्र का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज तक की मुहिम का बड़ा असर, प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। सीबीएसई चेयरमैन सचिव पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अधिकारियों को हटाकर मंत्री को बचाया, बोले हमारी मांग, शिक्षा मंत्री हो बर्खास्त। बंगाल हारने के बाद टीएमसी में हाहाकार, अपने ही विधायकों के सामने ममता लाचार, धरने में पहुंचे बस 9 एमएलए, बागी बना सकते हैं अलग पार्टी। दिल्ली में दक्षिण की सियासी रणनीति, आज डीके शिवकुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट पर फाइनल मोहर, बीजेपी से बगावत का संकेत दे रहे हैं अन्नावलय की, अमित शाह से मुलाकात। और सीएम योगी ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान, फिर से दिए ताबड़तोड़ बयान, कहा खत्म किया माफिया और मच्छर, जो बोली से नहीं माना उसे गोली से मनाया, फाजिल नगर का बदला ना। सीबीएसई को नया बॉस मिल गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत को राहुल सिंह की जगह कमान दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक